0: मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पीछे हट सकते हैं। हमारे पास जो डेटा आया है पिछले साल का, जो हमने रियलाइज करा आज ये प्रेजेंटेशन, ये सेशन मैंने बहुत सोच समझ के रखा है। मोर देन 50% ऑफ द कम्युनिटीज विद होम वी हैव वर्कड और हमने उनको ट्रेन करा है, उनकी मंथली इनकम है 2,000 से 5,000 तक। अगर उनमें से कोई भी ये सेशन सुन रहा है तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2,000 और 4,000 की रेंज में कमाने से मुझे 20,000 और 25,000 की रेंज में कैसे पहुंचना है। कोई फर्क नहीं है, आपके पास सेंटर है, आपके पास सुइंग मशीन है, आपके पास ट्रेनर है, आपके पास अपने टाइम भी निकाला है सीखने के लिए, पर आपने वो जो मोटिवेशन है, जो करेज है, नॉलेज को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है, कहीं ना कहीं वहां गैप। आप लोग सहमत है मेरी बात से, है ना? क्योंकि
1: जी
0: हम
1: मैम,
0: आपको सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ मेरी जरूरत जो है वो 4,000 में पूरी हो रही है, मेरे को ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। यही सोच है सब लोगों की। कोई हाथ खड़ा करेगा? सो देट आई गेट द रिस्पॉन्स कि कितने लोग ये सोचते हैं और कितने लोग ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है, मुझे कुछ डिफरेंटली करना है, तो हम अपनी लाइफ में नॉलेज, विजडम, करेज और पोटेंशियल का बैलेंस बना के रखते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के एग्जाम्पल दूंगी, मैं नाम नहीं लूंगी, जिन्होंने अपने लाइफ में रीड सेंटर के थ्रू बहुत आगे बढ़े हैं, अपनी एजुकेशन को भी आगे किया है, अपने मोटिवेशनल लेवल को भी आगे किया है, अपने करेज को भी आगे किया है, अपने पोटेंशियल को भी बढ़ाया है, बट समवेयर दे आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स डिफरेंटली सो दैट दे कैन मीट विद देयर गोल्स, दे कैन रियलाइज देयर ओन ड्रीम्स। कहीं ना कहीं गैप आ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो बेसिक स्टेटमेंट मैं कहना चाह रही थी वो सबको समझ में आ गई है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जो अपना जीवन जीते हैं, हम घर पे, सोसाइटी पे, अपने ऑफिस पे, अपने नेटवर्क पे, अपनी फैमिली पे, अपने रिलेटिव्स पे ही फोकस रहते हैं, और हमारा जो छोटा सा दायरा बना हुआ है हम उस दायरे से कभी बाहर सोचने के लिए, हिम्मत करने के लिए नहीं निकल पाते हैं। मोस्टली लोगों के साथ ऐसे होता है। बहुत एग्जाम्पल्स और भी हैं जो अपने दायरे से बाहर निकल के मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, बट नॉर्मली 70% जो मैंने पहले अपनी स्टेटमेंट में बोला था, 3% आगे बढ़ते हैं, 97% अपनी रूटीन में रह जाते हैं। वो इसलिए रह जाते हैं कि वो अपने घर की जिम्मेदारियों से, अपने समाज की जिम्मेदारियों से, अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों से वो अपने दायरे से बाहर नहीं आ सकते हैं और वो ही उनकी एक दुनिया बन के रह जाते हैं। और जब तक हम उस दुनिया से, उस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकलेंगे, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं डालेंगे, हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने में कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए कि आप आसमान में उड़े, उड़े तो बहुत अच्छी बात है, पर हाँ अपनी रूटीन के दायरे से बाहर आने के लिए अपने ड्रीम्स को प्लान करना चाहिए, अपने गोल सेट करने चाहिए। और कोई बुरी बात नहीं है अगर हम ड्रीम्स देखें कि आज अगर मैं इस जगह पे हूँ तो मुझे 15 साल बाद किस जगह पे होना है, और अगर 15 साल बाद हमें किस जगह पे होना है अगर आज हम नहीं सोचते हैं तो ये 15 साल ऐसे ही बीत जाएंगे, आपके गोल्स वहीं के वहीं रहेंगे, 15 साल बाद आप उसी पोजीशन पे रहेंगे, उसी दायरे में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये मैं आपको बहुत क्लियरली, बहुत साइंटिफिक स्टेटमेंट बता रही हूँ। मैं अपना भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ। 30 साल पहले मैं पीएचडी नहीं थी, मैं बहुत लोअर पोजीशन से डायरेक्टर की पोजीशन पे आई हूँ, क्योंकि 30 साल पहले मैंने विजुअलाइज कर लिया था जब मैं टेबल के दूसरी साइड पे बैठी थी और मैंने कहा था मुझे तो इसी कुर्सी पे बैठना है जहां पे मेरे सामने बैठे, और वो सामने वाली कुर्सी पे आने के लिए मुझे जो मेहनत करनी थी मैंने वो करी। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ा, मैंने अपनी एजुकेशन को छोड़ा, मैंने अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं किया, बट द ओनली थिंग विच मेड मी सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल वॉज करेज। करेज बहुत जरूरी है हमारे में आना, जिससे हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते। और हमें बहुत ये पहचान भी होनी चाहिए, सोच भी होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ कंडीशंस कैसे क्रिएट करते हैं अपने लिए। लाइफ कंडीशंस क्या होती हैं, आज मैं आपको ये भी समझाऊंगी। लाइफ कंडीशंस होती हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोगों की सोच, हमारे आसपास जो लोग हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए वो, और हमारी अपॉर्चुनिटीज जिनको हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं, मे बी एनी ऑफ द रीजन। तो वो जो हमारी अपनी सोच है और जो हमारा अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, आज मैं पहले उसकी बात कर रही हूँ। एक वर्ड है, आपने सुना होगा, हेल्प। हम बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को। आई एम लिविंग इन अ हेल, माई एनवायरमेंट इज वेरी नेगेटिव, मेरे आसपास लोग वो सोच ही नहीं रखते जो मैं अपनी सोच रखती हूँ। ये जो हेल वर्ड है, जो हम अपने ही दायरे में, अपने ही कुएं में गिरते हैं, वो किस तरीके से गिरते हैं, सिर्फ अपनी सोच से। हम एक नॉर्मल सोच से हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। सबके साथ बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जिनसे हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, पर हमारे अंदर की सोच वो क्या है, वो हमारी है। वो सोच पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। मेरे वर्ड्स पे आप जरूर एम्फेसाइज करें, जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हमें कहता है, हमारे डायलेक्ट्स, हमारी लैंग्वेज हमारी सोच को बदलता है। पर अगर हम अपनी सोच पे कंट्रोल रखें, कीपिंग इन व्यू द पॉइंट्स आई शेयर्ड इन माय फर्स्ट लाइफ, तो हम अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। 97% ऑफ द पीपल जो अपनी लाइफ में रूटीन से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो हमेशा एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनको ब्लेम करते हैं। माई मदर इन लॉ इज लाइक दिस, माई हस्बैंड डजंट लिसन टू मी, मेरे घर का काम खत्म नहीं होता, मेरे पे बहुत प्रेशर है, मेरे पे बहुत टेंशन है। वो किसकी सोच है? वो हमारी सोच है। हमने वो सोच अपने ऊपर इतनी जबरदस्त उसको हावी होने दिया है, उस हावी होने के कारण हम अपना करेज लूज कर सकते हैं, हम अपनी नॉलेज के ऊपर धूल छोड़ देते हैं, हम अपने जो एक्शंस लेने हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए उनको डाइल्यूट कर देते हैं। वो एक ही बहुत बड़ी चीज है जो हमारी सोच है, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी सोच के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, मैं कोई अलग से नहीं हूँ, बट हाँ ये हमारे अपनी लाइफ में रूटीन में प्रैक्टिस करना है कि हम जितना अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने ऊपर प्रेशर ना क्रिएट करने दें, उतना ही हम हमारे लिए अच्छा है। तो ये हेल वर्ड आपको समझ में आ गया, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी फैक्टर्स जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। दूसरा है हंगर। हंगर क्या होता है? ग्रीड। हम हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है। वी डोंट ट्राई टू लिव विद इन द मीन्स वी हैव, और हम कंपैरिजंस में उन सब चीजों को लेने की एक जिज्ञासा रखते हैं, हंगर रखते हैं, और उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हम गलत काम भी कर लेते हैं। हम अपनी ट्रांसपेरेंसी पे, अपना जो ट्रूथफुलनेस है इनसाइड आउट, उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है हमारी लाइफ में, और हर कोई करता है ये। आई एम जस्ट ओपनिंग योर आईज ऑन दिस। हम कहते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम ये कर सकते हैं, बट अगर हम इनसाइड आउट एक ही हैं, हम फर्क नहीं हैं, तो हम इस जिज्ञासा से बाहर आ सकते हैं। तीसरा बहुत ही नेगेटिव पॉइंट, जो मैं रूटीन लाइफ की बात कर रही हूँ, वो एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो है एनिमैलिटी। एनिमैलिटी का मतलब होता है कि हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि हम दूसरों को प्रॉब्लम में देख के वी आर सेटिस्फाइड। चाहे हमारे से छोटे ऑफिसेस में भी यही होता है, रूटीन होता है कि मैनेजर अपनी जूनियर टीम के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में इतना आ जाता है कि वो अपने करेज को भी डाउन कर लेते हैं, अपने एम्बिशंस को भी किल कर लेते हैं, अपने पोटेंशियल को भी रियलाइज नहीं कर पाता है। तो ये जो एनिमैलिटी है, एनिमैलिटी मीन्स नॉट गिविंग स्पेस टू एनीवन, और अपने जूनियर्स को जूनियर समझना और अपने आप को बड़ा समझना, ये जो रोल होता है जो मेंटरशिप के आगे बिल्कुल उसको धुआं डाल देता है, उसको किल कर देता है, जो हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वो चीज हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकती है। वो हमारी एक नेगेटिव पर्सनालिटी हो जाती है। चौथा पॉइंट है एंगर। हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, हमारी लैंग्वेज फर्क हो जाती है, हम स्कोल्ड करना शुरू कर देते हैं दूसरों को, हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं, हम इतना नेगेटिव लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर देते हैं गुस्से में, और बहुत कुछ हम बोल जाते हैं जो असल में हमें नहीं बोलना चाहिए। तो वही होता है ना, गिव एंड टेक प्रोसेस। अगर हम नेगेटिविटी को एम्बाइब कर रहे हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, हम एनिमैलिटी की पर्सनालिटी में जाते जा रहे हैं कि हम दूसरों को छोटा समझते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, और हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो ये सारा कुछ मिला के हमारी पर्सनालिटी को नेगेटिव कर देता है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजों को समझना शुरू करते हैं, अपने आप को रिफाइन करना शुरू कर दें, अपने आप को हम इस दायरे से बाहर ले आए, तभी हम करेज जो है हमारा, वो हमें अलाउ करेगा कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ के कुछ कर सकें। तो ये जो चार पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और दो और हैं जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी इन द सेंस ऑफ नेगेटिव अप्रोच, और दूसरा रैप्चर है, ये भी ऑलमोस्ट सेम चीज है जो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि अगर हमारी सोच ही नेगेटिव है, हम अपने आप को बेचारा समझते हैं कि ये बेचारी है, इस वर्ड से मुझे बहुत ही नफरत। कोई बेचारा नहीं है इस दुनिया में, कोई बेचारी नहीं है, सिर्फ ये हमारी सोच है जो हमें एक पॉजिटिव दायरे में रहने से बाहर खींचती है, और ये एक यूनिवर्सल नेचर एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है। पर हमें अपने आप को स्थिर रखना है, हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, हमें अपनी लाइफ को अपने हाथों में रखना है। चाहे हम जिस, जरूरी नहीं है कि हम एक महीने में स्काई लिमिट तक पहुंच जाएंगे, नहीं, पर अगर

ट्रू इनसाइड आउट जो मैंने ह्यूमैनिटी के साथ लिंक करा था, अगर वो है और हम इसको अपनी लाइफ के एक पहलू बना लेते हैं, अपने मंत्रा बना लेते हैं, और हम डिस्कवर करते हैं कि हम क्या अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं. हम वी आर ऑलवेज एस्पायर्ड दूसरों को देख के जो अच्छा कर रहे हैं, और सेल्फ रियलाइजेशन की भावना हमारे में आ जाती है विद प्योर प्योर, मतलब कि हमारी सोच बिल्कुल सही, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है हमें. इनडिस्ट्रक्टिबल हैप्पीनेस हम अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते. तो मैंने शुरू कहाँ से किया? अपनी बर्थ से. लाइफ को कैसे हमने सही रास्ते पे लेके जाना है, और सही रास्ते पे हमने अपनी नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है, क्योंकि हमारा स्मूथ पाथ रहे लाइफ का, और लर्निंग से, रियलाइजेशन से, ट्रूथफुलनेस से हमने अपनी लाइफ को कैसे हैप्पीनेस की तरफ टर्न करना है. मैं ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. जब तक हैप्पीनेस नहीं है विद इन योर सेल्फ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आते हैं. बट अगर आपके करेक्टरिस्टिक्स इन 5-6 मुद्दों पे डिपेंडेंट हैं, तो आप बहुत जल्दी अपने आप को डेविएट कर लोगे दूसरी तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ. और जैसे ही आप पॉजिटिविटी की तरफ टर्न करोगे, आपको करेज आएगा, आपको एहसास होगा कि हाँ, मेरा लाइफ का गोल तो फर्क है, मैं क्यों इन सब चीजों में उलझी हुई हूँ, मुझे इस उलझन से बाहर आना है. और मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं. दो पॉइंट्स मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे, कि हमें बहुत आदत होती है हम सेल्फ बूस्टिंग करते. मैं भी करती, मैं बहुत कभी कभी बोल देती हूँ, मैं अपनी फेस कर लेती हूँ, मैं अपने आप के बारे में दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को अच्छा साबित करती हूँ, जो नहीं करना चाहिए. हमें दूसरों को भी उसी दायरे में देखना चाहिए जिस दायरे में हम हैं. अगर हम ये प्रैक्टिस ले लेते हैं, अपनी लाइफ का एक पैटर्न बना लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हैं. हम कितने सच्चे हैं अपने लिए, ये एक एग्जामिनेशन है, सेल्फ एग्जामिनेशन है, जो हमें हर रोज अपने लिए करना चाहिए. बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं अपनी लाइफ में कि हम दूसरे के मुंह के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ हिम और हर वी आर हैविंग डिफरेंट फेस, बट अंदर से हम उसके लिए नेगेटिव. तो ये ट्रूथफुलनेस जो है, ये एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है अपनी अचीवमेंट्स में. इनविजिबली वो ब्लॉकेट क्रिएट कर देते. हम कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी ही लाइफ की. हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसने ये नहीं किया मेरे लिए, इसलिए मैं आज नहीं इस लेवल पर पहुंच पाई, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस हैं. जो हम आम वुमेन से बात करते हैं अपने सेंटर्स पे, जो हमारे सामने आती हैं, पर हमने कभी उनको समझाया नहीं इस लेवल पे आके कि ये मुश्किलें तो सबके साथ हैं. अगर हम इन मुश्किलों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे. और उसके लिए क्या जरूरी है? अपना आत्मविश्वास, अपने पे बिलीव करना कि यस आई कैन डू. अपने जो अंदर अंदरूनी पोटेंशियल है, उसको हम हिलने नहीं दें, उसको डगमगाने नहीं दें, और अपनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें और पॉजिटिव स्पिरिट्स रखें, तो हम हमारा जो आगे का रास्ता है वो बहुत ही रोशनी वाला हो जाएगा, और हम अपने लाइफ के गोल तक पहुंच सकते हैं. गोल कोई भी हो, मैं पैसे का गोल नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, पर यस

0: पैसा सबको चाहिए, पैसा सबको कमाना चाहिए, और हमारा रीड इंडिया का मिशन यही है कि हम सबको इस लेवल तक ले आए कि वो किसी के आगे भी औरत हाथ नहीं फैलाए और वो डिपेंडेंट नहीं हो। यही हमारा बेसिक मुद्दा है जिसको हम सपोर्ट करते हैं नॉलेज से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, विजडम से, और उसको हम ये सेशंस लेके मोटिवेट करते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ करना है। हमें नॉर्मली सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको ये लगेगा कि मैम हवा में बातें कर रही है। मैं इसको फिर से दोहराना चाहूंगी कि हमें अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड से सपोर्ट नहीं मिलता और हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? उस सिचुएशन में जो इनविजिबल पावर है उसके ऊपर फेथ रखनी है, उसके ऊपर विश्वास रखना है, और वो इनविजिबल पावर ही जो है, अगर आप सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं, और जो मैंने सिक्स डेविल्स की बात करी है जो आपकी पर्सनालिटी को अटैक करते हैं, अगर आप उनमें ट्रुथफुल हैं तो आपके रास्ते, मैं गारंटी से कहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत खुल जाएंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में है, पर अपनी लाइफ को कैसे हमने डायरेक्शन देनी है वो हमारे हाथ में। मैं अपना ये सेशन बाद में हम डिस्कशन करेंगे, मैं हाफ एन आवर का सेशन रखती हूँ, और हाफ एन आवर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल्सो। मैं एक छोटी सी स्टोरी से कंक्लूड करूंगी और फिर आप लोग कन्वर्सेशन करेंगे मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगी आपके जो क्वेरीज हैं उनको आंसर करने के लिए। एक फिशरमैन था, वो सुबह सुबह अंधेरे में ही उठ के सी के शोर पे चला गया और वो अपनी तैयारी करने लगा कि आज उसने कहा कि मैं रोज जितनी मछलियां पकड़ता हूँ उससे मैं ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा और मेरे परिवार के लिए मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। अब वो अंधेरे में जब चला गया और उसको रेत में एक पैर के साथ टक्कर हुई किसी लिफाफे की, उसने वो लिफाफा अपने हाथ में उठा लिया और वो जाके शोर पे बैठ जाता है सी के। और अंधेरा होता है क्योंकि सूरज अभी रोशनी नहीं निकली होती, तो वो उसमें से उस पत्थर को एक एक को लेके वो सी में फेंकता जाता है। बाय द टाइम जब लास्ट पत्थर उसके हाथ में आता है तो सूरज की पहली रोशनी पड़ती है उस पत्थर के ऊपर, तो वो देखता है ये तो हीरा है, ये पत्थर नहीं है। तो वो रियलाइज करता है कि मैंने बहुत सारे पत्थर आधा घंटा बैठ के यहाँ पे सी में फेंक दिए जो हीरे थे, और मैंने उन हीरों को अपने हाथ से, अपने ही हाथों से उनको किल कर दिया, मैंने उनको पानी में फेंक दिया। तो वो अफसोस करता है कि मैंने ये जेम्स जो थे मेरे, मैंने पानी में फेंक दिए। पर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप अपने जो जेम्स हैं, जेम्स ऑफ थॉट्स, आपकी सोच, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, आपका रिलेशनशिप, आप इनकी इम्पोर्टेंस रियलाइज किए बिना आप उनको अपनी लाइफ से दूर मत करिए। जैसे ही ये आपके साथ जुड़े रहेंगे आपकी पॉजिटिव सोच बनी रहेगी और आप भी हीरे की तरह शाइन करेंगे, और ये जो जेम्स हैं आपकी लाइफ के आपको आपकी लाइफ के गोल तक पहुंचाने में बहुत मदद करें। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न?
1: मैम क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैम बहुत बहुत मोटिवेशन है। सीरियसली इस टाइम हम लोगों को इसकी बहुत जरूरत थी। आई रियली फील वेरी हैप्पी। बहुत सारी चीजें ऐसे जो बीच बीच में छूटने लग जाती हैं, वो रिवाइज होने के बाद हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है।
0: तो ये बहुत एक सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है जिंदगी की, और अगर हम इस कड़वे घूंट को पी लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत

0: एक डायरेक्शन वाली हो जाती है और हम भटकते नहीं हैं इधर उधर। किसी के कोई प्रश्न प्लीज।
1: मैम आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन था कि आपने पीएचडी साइकोलॉजी में की हुई है?
0: नहीं, मैंने पीएचडी तो फैमिली वेलफेयर में की है, साइकोलॉजी में नहीं की है।
1: मैम अच्छा समझाते हैं आप लाइफ के बारे में।
0: अच्छा, ये एक्सपीरियंस से आता है और जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम ऐसे माहौल में रहेंगे, जो मैं भी किसी से सीखती, हर कुछ तो आदमी लेके पैदा नहीं होता। तभी मैंने बर्थ और लाइफ के बारे में आपको डिफरेंस बताया है कि बर्थ इज समथिंग एल्स बट लाइफ इज समथिंग एल्स। ये सब कुछ जो है ये लाइफ की एक्सपीरियंस ही होगी।
1: मैम हमारे सेंटर से ये कैंडिडेट है, ये कुछ शेयर करना चाहते
0: हाँ बोलिए।
2: हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग। माय नेम इज हाफिजा और हम यहाँ कंप्यूटर सीखने आते हैं। आपकी मीटिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी। आपने जो भी शेयर किया, जो बताया, वो सब बहुत अच्छा लगा। और आपने जो पॉइंट्स बताए थे, मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगे। एक तो अपना गोल सेट करना चाहिए और मतलब जो एनवायरमेंट एक्सक्यूज होते हैं वो नहीं बनाना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग हमें मतलब माहौल अच्छा नहीं है या कुछ भी। मतलब अपना गोल सेट करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए और एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, अपने गोल पर काम करते रहना चाहिए।
1: जैसे पढ़ाई वाला
2: जैसे पढ़ाई, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं हम तो बस पढ़ते ही रहे, उस पर ये नहीं सोचें कि हमें आगे करना क्या है या हम बनना क्या चाहते हैं, ये सब सोच कर रखना चाहिए, अपना गोल सेट करना चाहिए।
1: आपका जवाब देते हैं।
0: बिल्कुल, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि जो विनर्स होते हैं, जो जीतते हैं, वो चीजें अलग नहीं करते हैं, चीजें वही हैं पर वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। कि अगर आपको पढ़ना है तो आम लोग 1 घंटा पढ़ते हैं पर आपको 3 घंटे पढ़ना है। अगर कंप्यूटर कोई 1 घंटा आपको अगर सेंटर में मिल रहा है तो उस 1 घंटे को कैसे जुडिशली अच्छे से यूज करना है सीखने के लिए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं अपनी लाइफ में, हम भटक जाते हैं और अगर हम हमेशा हमारी अलार्म बजता रहे कि हाँ हमें ठीक ढंग से अपनी लाइफ को जीना है, तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हम अनजाने में भी करते हैं ना, उन पे भी हम कंट्रोल कर पाते। अब सब लोग ये अपनी कॉपी में नोट करेंगे, मैंने आज जो बताया है कि मैं अपनी लाइफ में इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कैसे करूं। ठीक है, जब आप लिखना शुरू कर देंगे ना, तो आधी चिंता आपकी किस पे आ जाएगी, पेपर पे। अब जब आधी चिंता आपकी पेपर पे आ जाएगी तो आपका माइंड फ्री हो जाएगा कुछ अच्छा सोचने के लिए, कुछ अच्छा करने के।
1: नमस्ते मैम, जय गुरु जी मैम।
0: जी
1: हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक खुद मोटिवेशन है, आपको देख के अपने आप ही एक अंदर से निकलता है उस चीज के लिए। सेशन तो है ही बहुत जरूरी, पर आपको अगर शक्ल अगर याद भी कर लेते हैं या सामने भी आ जाते हैं, सोच भी लेना, तो आपसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। आपको देख के ही, सोच के ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से होगी, और अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जो किया, एक अपना तो चलाया, लोगों के साथ इतने लोगों को चला रहे हो, साथ में इतने लोगों की फैमिली चला रहे हो, तो कैसे चला रहे हो, वो चीज बहुत बढ़िया है मैम सोचने के लिए। तो वही चीज, एक छोटी सी कोशिश है मैम।
0: तो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है वो, मैं नहीं चला रही हूँ, पर हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, मैं कभी सोचती भी हूँ ना कि मुझे छोड़ के जाना है, तो आप सब लोगों की शक्लें मेरे सामने आ जाती है, मैं फिर कहती हूँ नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगी।
1: मैम ऑर्गेनाइजेशन ठीक है चला रही है, पर आपके बिना जब तक एक घर तब तक नहीं चल सकता जिसमें जो कोई पावरफुल बंदा वहां पे ना हो, कोई भी चीज हो, तब तक कोई भी संस्था हो या कोई भी समाज हो, आगे नहीं जा सकता। और वही मैं चीज में बहुत बार सोचती हूँ कि जब मैडम छोटे से लेके यहाँ तक ला सकती है, तो हम थोड़ा थोड़ा करें तो हम लोग कहाँ तक भी जा सकते हैं उस चीज के लिए जो आप लोग सोच
0: जो मैंने वैल्यूज की बात करी है ना,
1: रहे।
0: नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की, वो क्रक्स है, वो एक
1: जी
0: दर्पण है हमारे लिए। अगर हम उस दर्पण पे और हम उसको रोज साफ नहीं करेंगे तो ये जो हमारे लाइफ के गोल्स हैं हम उनको कभी अचीव
1: अचीव नहीं कर सकते मैम उनको हम लोग।

0: कि अगर जो जैसे मैंने अपनी जॉब शुरू करी थी पहले, मैं वहीं पे रहती अगर मेरे गोल डिफाइन नहीं होते, है ना।
1: जी
0: हाँ, तो ये
1: जी
0: बहुत जरूरी।
1: थैंक यू मैम।
0: नमस्ते मैडम। नमस्ते
1: मैडम आपको तो हम हमेशा सुनते हैं, आपके विचार भी बहुत अच्छे रहते हैं और समझते भी बहुत है। हम अपने जीवन में उसका इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, इसी वजह से हम सक्सेस भी है। मगर मैं अपने महिलाओं को जब समझाना चाहती हूँ तो समझ नहीं पा रही है। अगर आप एक बार भी सेशन ऐसा महिलाओं के लिए ले तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो आप महिलाओं को ज्वाइन कराइए, उनको सुनने दीजिए, और मैं ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी सब सब सेंटर्स पे, जो आप जब महिलाएं काम कर रही होती है मशीन पे, आप ये रिकॉर्डिंग चला दें तो उनको सुनने दें, क्योंकि ये एक बार ही सुनने से नहीं आता। ये जो
1: नहीं
0: मैंने आपके साथ शेयर करा है, मैंने कम से कम 100 बारी अपनी लाइफ में पढ़ा होगा, और
1: यस
0: उसको ये आधे घंटे में एक्सप्लेन करना और वो लैंग्वेज को चुनना, दिस इज एन आर्ट। तो आप लोग भी उनको बार बार सुनाइए, बार बार सुनाइए, और देखिए फिर आपको अपने सामने ही बदलाव नजर आएगा।
1: 100% थैंक
0: हाँ,
1: यू मैम,
0: रिकॉर्डिंग भेजेंगे हम सबको, और
1: थैंक यू मैम।
0: आप मराठी में ट्रांसलेट कर लीजिए उसको और मराठी में बताएं, ठीक है।
1: हिंदी भी समझती है महिलाओं को, लेकिन क्या होता है जो आपकी लैंग्वेज, आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो हम लोग नहीं उसमें पिरो सकते अपने शब्द को, तो इसीलिए ऐसे थोड़ा सा अलग रहता है। आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो बहुत ही अच्छा रहा, अट्रैक्टिव रहता है मैडम, रियली।
0: आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा।
1: थैंक यू मैम।
2: हेलो मैम।
0: हाँ जी, हेलो, नमस्ते।
2: मैम नमस्ते,
0: मैं
2: कैसे हो आप?
0: बिल्कुल ठीक हूँ।
2: मैम आपका मोटिवेशन बहुत बहुत अच्छा है। मेरी लाइफ में बहुत कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, घर की प्रॉब्लम भी होती है, यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, कॉलेज में पढ़ाई चल रही है उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। मोटिवेशन इंसान का होना बहुत जरूरी होता है, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाती, पढ़ नहीं पाते हैं। मैम आपने इतना अच्छा मोटिवेट किया है, थैंक यू सो मच सच में।
0: तो आप अब अपनी पढ़ाई खूबसूरती से अच्छे से करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। प्रॉब्लम्स
2: ओके थैंक यू मैम।
0: तो आएंगी, आप प्रॉब्लम्स को नहीं रोक सकते हैं, पर प्रॉब्लम्स से बाहर कैसे निकलना है वो आपके हाथ में।
1: पर मैम
0: इतनी
1: सीरियसली, आपकी मोटिवेशन की ना हमें सच में बहुत जरूरत होती है। ऑनेस्टली मैम ऐसे लगता है जैसे आपने भी हमें बताया ना कि हमें कभी कभी, मैं भी इतनी बार पढ़ी तो मुझे आज फर्स्ट टाइम फिर ऐसे फील आ रहा है। मैंने पहले आपका सेशन लिया था, उसके टाइम हम बहुत टाइम मोटिवेट रहे, एक्टिवली वर्क किया, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम ऐसे हो जाता है कि आज ऐसा लग रहा था कि सीरियसली मैम लग के फिर दोबारा से री एनर्जाइज हो गए हम लोग। बहुत अच्छे से आगे इस पे कोशिश करेंगे।
0: मैं कोशिश करूँ हर हफ्ते एक सेशन लेने का, तो
1: जी मैम
0: ना
1: जी
0: वो जो मोटिवेशनल लेवल है वो बने रहना चाहिए। थैंक
1: जी मैम जी मैम जी मैम जी मैम थैंक यू सो मच मैम।
0: यू।
3: नमस्ते
0: फर्स्ट
3: फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने हमारे लिए जो कीमती वक्त निकाले है इसलिए हम आपका आभारी है। और आपने जो हमें लास्ट में जो स्टोरी कही कि जो हीरे थे वो पानी में बहा दिए और लास्ट में उसे जब रियलाइज हुआ कि एक ही हीरा बच गए, हमारे लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती है, हमें उसको समझना चाहिए। लेकिन जब उसके पास एक ही हीरा बचा तो आपसे हमें ये सीख मिली कि एक उस हीरे से भी हम कुछ भी कर सकते हैं। ओ थैंक यू मैम, और आप बहुत मोटिवेट करती है हमारे काम करने के लिए, इसके लिए आपको थैंक यू कहते हैं। ऐसा सेशन आप ऑर्गेनाइज कर दीजिएगा जो हमें मोटिवेट करता है और कितना भी काम करने के लिए प्रेरित होता रहता है। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू सो मच तुषार, और मुझे पता है कि पुणे का सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं सब लोगों को, खाली मैं नहीं करती हूँ, आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं।
1: थैंक यू मैम इतना आगे तक लाने के लिए, उस चीज के लिए और एक बढ़ावे के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। कोशिश है जो प्रॉमिस आपसे किया है उसको बिल्कुल पूरा करने की, बिल्कुल गुरुजी ने चाहा तो बहुत जरूरी। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू सुमन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम।

0: लिस्निंग टू मी।
1: नमस्ते मैम। आप जब जब ट्रेनिंग देते हैं तब तक तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कहने की बात नहीं है। बट जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो हम थोड़े से नीचे आ जाते हैं, लगता ही नहीं है कि कोई हमारे ऊपर है, या फिर हम ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई देख रहा है हमारे काम को। तो जब जब आप हमें ट्रेनिंग देते हो तो फिर एनर्जी आ जाती है हमें काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप हर हफ्ते ये लीडरशिप का एक सेशन रखिए।
0: ठीक है जरूर सर।
1: गुड
0: हेलो,
1: आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून, कैसी हो? ठीक है।
1: अच्छा, आप कैसे हैं मैम? मैम, आपका सेशन मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, लीडरशिप का, और आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो मैम।
0: आप बस फिर उसको याद रखना है अपनी जिंदगी में, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई तुम मोटिवेशन से, है ना?
1: जी मैम,
0: अब
1: मैं और आगे पहुंचना चाहती हूँ मैम।
0: आप पहुंचोगी, तुम 100% पहुंचेंगे। ठीक है। गुड
1: थैंक यू मैम।
0: इवनिंग
1: नमस्ते
0: मैम। जी, क्या हाल है मीना? मैं
1: मैम। मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल ठीक हूँ।
1: आज मैं जो कुछ भी हूँ तो सब आपका ही सपोर्ट है, वरना मैंने सोचा नहीं कि मैं मेरी लाइफ में तीसरी बार भी घर बना लूंगी।
0: देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे बढ़ोगी तुम मीना, पीछे मुड़ के तुम देखने वाली नहीं हो, आप मुझे पक्का विश्वास
1: जी
0: है
1: मैम,
0: ना? हाँ, और गुंजन के आगे बढ़ेगी बहुत।
1: जी मैम, अभी
0: अरे
1: वैकेंसी निकली है तो गुंजन ने उसमें अप्लाई भी किया है, अभी नर्सिंग की। जी,
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी।
1: और मैम मैं कोशिश भी करती हूँ, जो आप सेशन ले रही हो तो जो महिला ट्रेनिंग में आती हैं उनको भी मैं लीडरशिप के बारे में कोशिश कर रही हूँ सेशन देने की भी।
0: बहुत अच्छी बात है, सब लोग करिए, जो मीना कर रही है, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अगले हफ्ते, बिफोर आई टेक अनदर सेशन, आप प्लीज इस सेशन को रिपीट करिए अपने बेनिफिशियरीज के साथ, तभी
1: जी मैम,
0: इस सेशन का फायदा है, नहीं तो आप मोटिवेट होते जाएंगे, वो बेचारे पीछे रहते जाएंगे, उनको अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र। आज हम चर्चा करेंगे ग्रेट निकोबार परियोजना के आर्थिक और सामरिक महत्व पर। यह परियोजना भारत की समुद्री रणनीति, व्यापारिक संभावनाओं और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक्सपर्ट और जेएनयू के प्रोफेसर राहुल मिश्र। राहुल जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी।
1: राहुल जी, हमारे बहुत सारे श्रोता शायद पहले ये जानना चाहेंगे कि ग्रेट निकोबार परियोजना क्या है और इसकी मूल अवधारणा क्या है।
2: ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसके पीछे कई मकसद हैं। उनमें सबसे प्रमुख ये है कि भारत के अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद हमें गहराई से ये बात समझ में आ रही है कि इंटरनेशनल चोक पॉइंट्स जो हैं या समुद्री व्यापार के जो केंद्र हैं, क्षेत्रीय जो हम हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और ट्रांसशिपमेंट के लिए तमाम देशों को ये कोशिशें करनी पड़ेंगी कि कैसे उनके जो ईस्ट वेस्ट ट्रांसशिपमेंट है उसमें सुधार कैसे हो। तो इस लिहाज से ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसकी बहुत महत्ता है, क्योंकि भारत का जो

0: व्यापार है वो ईस्ट वेस्ट जो ट्रांसशिपमेंट कॉरिडोर है उसमें भारत के जो बड़े पोर्ट्स हैं वो पश्चिमी भारत में हैं, मुंद्रा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और अब क्योंकि पश्चिम और पूर्व दोनों क्षेत्रों में भारत को अपनी जो समुद्री व्यापार है और ट्रांसशिपमेंट जो है उसको एक संतुलित करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत के पास एक ऐसा पोर्ट हो जो हिंद महासागर से और स्ट्रेट ऑफ मलाका से जोड़ने के लिए नजदीक हो और जिसकी मदद से भारत के पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तरी भारत में तेजी से जो समुद्री व्यापार से जो सामान आता है उसको तेजी से भारत के अंदर इम्पोर्ट किया जा सके और भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाए। फिलहाल भारत क्लांग जो मलेशिया का पोर्ट है और सिंगापुर पोर्ट और भारत के नजदीक कोलंबो पोर्ट है इन पर बहुत ज्यादा आधारित है। तो इसलिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को एक दिशा दी जा रही है, 2047 तक इसे 3 फेजेस में पूरा करने का प्रस्ताव है और उस पर कार्य चल रहा है। दूसरी ये इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी जो डिपेंडेंस है, हमारी जो निर्भरता है विदेशी पोर्ट्स पर, उसको कम किया जा सके। जो मेगा पोर्ट्स हैं सिंगापुर और क्लांग उन पे हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। कल को ऐसी स्थिति आ सकती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसी घटनाएं हुई वैसी ही चीन के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है और मलाका स्ट्रेट में ऐसी दिक्कतें आती हैं तो भारत के लिए इन फॉरेन पोर्ट्स की डिपेंडेंसी एक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट होगा। और इसके लिए जरूरी है कि भारत पोर्ट्स के मामले में भी आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने। अभी विजयनगरम पोर्ट जो केरला में है वो 2024 में फंक्शनल हो गया, उससे बहुत ज्यादा ट्रांसशिपमेंट का काम हो रहा है, भारत का पहला ग्रीन फील्ड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें निकोबार में गलथिया बे में हमें जो ये पोर्ट बनेगा उससे भारत की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, भारत का व्यापार भी बढ़ेगा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, समुद्री व्यापार में और सामरिक तौर पर भी एक नई पहचान बनेगी।
1: जी, और जितने बिंदु आपने अभी बताए किस तरह से इसका लाभ हो सकता है और किस तरह से हमारे देश को ये सशक्त बनाने में सहायक हो सकता है, तो क्या इन्हीं कारणों से इसे एक गेम चेंजर माना जा रहा है या और भी कुछ बिंदु हो सकते हैं?
0: देखिए, गेम चेंजर तो सामरिक और आर्थिक तौर पे ये बहुत ही स्पष्ट है। गलथिया बे जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, गलथिया बे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट उसका एक हिस्सा है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। साथ ही साथ इसको गेम चेंजर इसलिए माना जा रहा है, आपको याद होगा बीते वर्षों में एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और कैसे भारत के सैलानियों के लिए, भारत के टूरिस्ट के लिए मालदीव्स और मॉरिशस और मलेशिया से ज्यादा भारत के जो पोर्ट्स हैं, भारत के जो इस तरह के आइलैंड्स हैं वहां की यात्रा एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही आकर्षक एक डेस्टिनेशन लगा। तो मुझे लगता है कि जो ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट है उसमें चार पहलू हैं। एक तो ट्रांसशिपमेंट है ही है, उसके साथ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देखिए, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो होते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच शुरू होते हैं, एक खाली जमीन पे वो एयरपोर्ट बनते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि उसे एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे मानव संसाधनों से रिलेटेड या मानवीय जो आवश्यकताएं उनको ध्यान में रखते हुए, पर्यावरणीय जो आवश्यकताएं और कंस्ट्रेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जिसको सस्टेन करने के लिए 400 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट भी होगा। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा उससे इनबाउंड जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो भी आएंगे भारत में, और पोर्ट ब्लेयर तो एक बहुत बड़ा पोर्ट है ही है, उसके साथ साथ गलथिया बे से सटे हुए इस एयरपोर्ट पर भी लोग आएंगे और सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, भारतीय टूरिस्टों के लिए भी एक बहुत अच्छी संभावना प्रदान करता है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स, जो ट्रांसशिपमेंट कंटेनर जो पोर्ट है और एयरपोर्ट, इसको चलाने के लिए सोलर पावर प्लांट है उसको चलाने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए। किसी भी एक जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वहां पे जो मैन पावर या वुमन पावर है उसको सस्टेन किया जा सके, वहां की लोकल इकोनॉमी को सस्टेन किया जा सके, वहां के पर्यावरणीय जो आकर्षण के केंद्र है उनको भी सहेज के रखा जा सके, उसके लिए जरूरी है कि एक टाउनशिप भी बनाई जाए। तो इसमें एक टाउनशिप का भी प्रोग्राम है। तो मुझे लगता है इन सभी को अगर हम साथ में रख के देखें तो न सिर्फ एक ये समुद्री व्यापार के हिसाब से बहुत बड़ा गेम चेंजर है बल्कि आर्थिक तौर पे और सैलानियों को उस क्षेत्र में ले जाने के लिए, अंडमान निकोबार में ले जाने के लिए बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ इसमें जो भारत की विदेश नीति में हम अगर देखें तो पिछले 10-12 सालों में हमने देखा है कि पोर्ट लेड ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ को डोमेस्टिकली बहुत प्रमोट किया गया है। तमाम ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, उड़ान एक स्कीम है, या उत्तर पूर्वी भारत में तमाम जो फ्लाईओवर्स और हाईवेज बन रहे हैं वो हैं। लेकिन साथ ही साथ जो सागरमाला

0: का इनिशिएटिव है, भारत के तमाम जो पोर्ट्स हैं उनको जोड़ा जाए, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे मानकों पर खरा उतरे हमारे भारत के सारे पोर्ट्स कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी सुनिश्चित कर सकें, समयबद्ध ढंग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित कर सकें और साथ ही साथ वो इंटरनेशनल ट्रेड में आगे आने वाली जो संभावना है उसको भी टैप कर सकें। इसके साथ जो भारत की जो हाल में जो नीतियां आई हैं विदेश नीति के संदर्भ में, महासागर है जिसे हम पहले सागर कहते थे, महासागर के हिसाब से भी देखा जाए तो हिंद महासागर के तमाम जो देश हैं, छोटे देश, कोलंबो और श्रीलंका बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बड़ा देश है, लेकिन और छोटे देश हैं जिनके साथ मिलकर काम किया जा सकता है और इस बे ऑफ बंगाल क्षेत्र को और समृद्ध किया जा सकता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी पहल है मुझे लगता है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में और साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ जोड़ने के लिए इस नीति को हम कह सकते हैं कि विदेश नीति के मामले में भी ये एक बड़ा गेम चेंजर है, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हिंद महासागर के साथ जुड़ेंगे और आगे पश्चिमी एशिया के लिए भारत एक पुल का काम करेगा।
1: जी, आपने व्यापक जो आर्थिक लाभ है इसे तो काफी विस्तार में बताया, लेकिन अगर हम फोकस करें सिर्फ शिपिंग मार्गों के संदर्भ में, हम जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग है, तो किन किन देशों के साथ व्यापार में इसका सीधा लाभ मिल सकता है, अगर संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बता सकें।
0: भारत के अगर हम समुद्री व्यापार को देखें तो समुद्री रास्ते से जितना भारी माल जिसका आयात और निर्यात होता है वो समुद्री मार्ग से ही होता है, और भारत का बड़े पैमाने पर जो व्यापार होता है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, हिंद महासागर के तमाम देशों के साथ, पश्चिमी एशिया के देशों के साथ और यूरोप और अमेरिका के साथ भी, ये सारा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। अगर भारत के पोर्ट्स, अभी के जो पोर्ट्स हैं, हमारे पास एक दर्जन ऐसे पोर्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खड़े उतरते हैं, 8 उसमें से बहुत अच्छी तरह फंक्शन कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, 11 पोर्ट्स ऐसे हैं जिनको हम मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि गलथिया बे पे जो ये पोर्ट बनेगा या ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट का जो ये हिस्सा है, इससे भारत का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, हिंद महासागर के साथ, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तमाम देशों के साथ, न्यूजीलैंड के साथ अभी हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, तो उसमें बड़ी मदद मिलेगी, और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ, मिडिल ईस्ट जिसे दुनिया के तमाम देश कहते हैं, उनके साथ व्यापार के लिए हमारे पास पश्चिमी क्षेत्र में ऑलरेडी अच्छे पोर्ट्स हैं। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भारत की लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति और भारत की जो महासागर नीति है उसका फोकस दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देश हैं, जापान, कोरिया, 10 आसियान के देश और हमारे बे ऑफ बंगाल के जो लिटोरल स्टेट्स है, साथ ही साथ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके साथ व्यापार में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी मुझे लगता है।
1: और पहले आपने सामरिक जो इससे लाभ है उसका भी थोड़ा सा उल्लेख किया है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति को बेहतर बनाने में, उसे मजबूत करने में इस परियोजना की कितनी भूमिका हो सकती है?
0: देखिए, 2012 में जब चीन ने बेल्ट और रोड परियोजना को लॉन्च किया, तब से उनका फोकस रहा है दुनिया के और इस खास तौर पे इस क्षेत्र के, हिंद प्रशांत क्षेत्र के तमाम देशों के पोर्ट्स के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना। जैसे म्यांमार में क्याकफू पोर्ट को चीन ने डेवलप किया और अपने यूनान प्रोविंस से वो रेलवे लाइन उन्होंने बिछाई है जिससे म्यांमार के पोर्ट से वो ट्रांसशिपमेंट करते हैं, ऐसे ही बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट किए हैं और अपने व्यापार में विस्तार किया है। सो चीन की आर्थिक विस्तार की जो नीतियां हैं और सामरिक तौर पर उनकी जो विस्तारवादी नीति है दोनों ही क्षेत्रों में, तो सामरिक और आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में ये जो नए पोर्ट्स को उन्होंने ड्यूअल यूज पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है वो भारत के लिए चिंता का कारण था पिछले बहुत वर्षों में, और इससे निपटने के लिए ही मुझे लगता है जो पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है उनको ड्यूअल यूज फैसिलिटी के लिए लाया जा रहा है, इसमें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट या भारत के पूर्वी क्षेत्र में विजिनजाम पोर्ट है, इन तमाम पोर्ट्स को डेवलप करने के पीछे मंशा कहीं ना कहीं ये भी है कि सामरिक तौर पे भी भारत तैयार रहे, कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति हो या चीन की तमाम जो कोशिशें चल रही कि हिंद महासागर में वो अपनी पैठ बना सके, उसको रोकने के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि इस तरह के पोर्ट्स को आर्थिक तौर पे, सामरिक तौर पे विकसित किया जाए और भारत अपनी सुरक्षा की जो और सामरिक हित जो है उनको संवर्धित कर सके।
1: जी, और ऐसी परियोजनाएं जब भी शुरू होती हैं तो पर्यावरण से जुड़ी हुई चिंताएं भी यहां वहां उभरने लगती हैं, तो पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन, ये हर परियोजना के

0: पूल में होता है, तो उसके लिए यहाँ पर किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं?
1: आज से दो दशक तीन दशक पहले हमने देखा था कि जब भी विकास के और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आते थे तो उनमें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और पर्यावरण से जुड़े हुए या शेड्यूल ट्राइब्स और ट्राइबल एरियाज से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता था। ये बहुत हर्ष का विषय है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 और ICRZ 2019 दोनों के जो कंसर्न्स हैं दोनों से जुड़े हुए, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो, चाहे वो बायोडायवर्सिटी हो या ट्राइबल कम्युनिटीज के जो हितों की बात हो, उन सभी को ध्यान में रखा गया है। 40 से ज्यादा इसमें कंप्लायंसेस को फॉलो करने की बात हो चुकी है और तमाम जो एक्सपर्ट ग्रुप्स बने हैं, भारत के तमाम जो बड़े संस्थान हैं उनके सहयोग से इन सभी कंप्लायंसेस को ध्यान में रखा गया और इस प्रोजेक्ट में उनको नजर में रख करके ही इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम जो कंसर्न्स थे, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन को लेकर के हो या वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हो जिसे हम PVATG कहते हैं और जिनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 338(a)(9) में है, उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो मुझे लगता है कि किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो पर्यावरण हो या बायोडाइवर्सिटी हो या ट्राइबल हितों की बात हो, सभी को ध्यान में रखा गया और इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। एक मुझे बड़ी ही स्मार्ट स्ट्रेटजी लगी ये हमारे नीति निर्धारकों की कि इस प्रोजेक्ट को तीन फेजेस में बांटा गया है। तो पहला फेज 2025 से 2035 तक जो चलेगा, ये सबसे बड़ा है, तीनों में सबसे ज्यादा क्षेत्र इसी में कवर होगा। 166 स्क्वायर किलोमीटर में से मुझे लगता है कि करीब 72 स्क्वायर किलोमीटर का प्रोजेक्ट, तो आधे से ज्यादा इसमें ही कवर हो रहा है। और इन तीन फेजों में बांटने की जो ये बात है उसके पीछे मुझे लगता है एक बड़ा कारण यह है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जनता पर उसका कैसा असर पड़ता है, ट्राइबल कम्युनिटीज पर कैसा असर पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी में हमें कुछ जोड़ घटाव करने की जरूरत है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे कोर्स करेक्शन भी किया जा सकता है। तो ये तीन फेजेज में बांटने की जो स्ट्रेटेजी है मुझे लगता है ये बहुत ही सोची समझी है और ये जो जमीनी हकीकत है उसको ध्यान में रखते हुए योजनाओं में और जो मास्टर प्लान है उसमें भी परिवर्तन करने की गुंजाइश देती है। तो इस लिहाज से भी ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि काफी अच्छा है और उसके दूरगामी परिणाम होंगे।
0: जी, तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, आज हमने ग्रेट निकोबार परियोजना के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि इससे आपको इस महत्वपूर्ण पहल के आर्थिक और सामरिक महत्व को बेहतर तरीके से समझने में सहायता मिलेगी। राहुल जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

0: Surgió Me.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के मुक्त व्यापार समझौते पर। और साथ हमारे आज जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। वाधवा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: वाधवा जी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैसा कि हमने आज देखा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये एक बहुत ही

0: लैंडमार्क फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसे वहां के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं न्यूजीलैंड मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिस्टर टॉड मैकले, उन्होंने इसे वंस इन अ जेनरेशन काइंड ऑफ एफटीए की संज्ञा दी है। अगर हम शुरू करें तो बहुत सारे आयाम इसके सामने निकल करके आ रहे हैं, अलग अलग घटक हैं इसके, तो हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में इसे बताएं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और आज जो चर्चा हुई, आज जो ये अग्रीमेंट साइन हुआ, उनमें क्या प्रमुख बिंदु हैं इसके अंदर।
1: भारत और न्यूजीलैंड का मुक्त व्यापार समझौता जो एफटीए है
0: जी,
1: जिस पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं, इसकी चर्चा काफी सालों से चल रही थी, लेकिन पिछले एक साल में हमने देखा है कि इसमें वॉलेटिलिटी जो टॉक्स होती है उसमें बहुत तेजी आई है, और इसकी जो प्राथमिकता ये है कि ये द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गहरा करेगा और निवेश को बढ़ावा देने और वस्तुओं एवं सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए ये व्यापक रूपरेखा स्थापित करेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐतिहासिक समझौता है और भारत की उन रणनीतियों के अनुरूप है जिसके तहत भारत अपने व्यापारिक भागीदारों में विविधता चाहता है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ उच्च स्तरीय आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करना चाहता है।
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो प्रोग्राम है विकसित भारत 2047 तक, उस दिशा में ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कितना बल दे रहा है, और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमने पिछले दिनों में भी देखा है कि और भी जो अन्य देश हैं, खास करके अगर हम अमेरिका की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो कई सारी अटकलें बीच में लगी, कई सारे प्रॉब्लम्स बीच में आ रहे थे, तो अगर उनके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये कितना महत्वपूर्ण है और क्या क्या संभावनाएं इसके साथ हम जोड़कर इसे देख सकते हैं।
1: देखिए, ये समझौता संरचित व्यापार उदारीकरण और जिसको हम बोलते हैं दीर्घकालिक निवेश प्रतिबद्धताओं के माध्यम से आपसी विकास पर केंद्रित है और इसमें चार बहुत ही मुख्य बिंदु हैं। एक तो बाजार तक पहुंच है, जो भारत ने न्यूजीलैंड को निर्यात की जाने वाली 100% वस्तुओं के लिए पहुंच प्राप्त कर ली है और इसके बदले में भारत ने न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात, अगर हम मूल्य के आधार पर देखें, को कवर करते हुए अपनी लगभग 70% टैरिफ लाइनों को उदार बनाया है। दूसरा, निवेश प्रतिबद्धता की बात करें तो इस समझौते की एक महत्वपूर्ण विशेषता न्यूजीलैंड द्वारा अगले 15 वर्षों में भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता है। इसे एक रीबैलेंसिंग मैकेनिज्म को बोलते हैं, पुनर्संतुलन तंत्र का समर्थन प्राप्त है, जो भारत को इन निवेश लक्ष्यों के पूरा न होने की स्थिति में एफटीए लाभों को निलंबित करने की अनुमति देता है। तीसरा, सेवाएं और गतिशीलता की बात करें तो ये समझौता भारत के लिए 118 सेवा क्षेत्रों में बाजार की पहुंच को खोलता है, जिनमें आईटी है, वित्त है, शिक्षा है, पर्यटन है और निर्माण, ये सभी शामिल हैं। और इसमें 5,000 अस्थायी वर्क वीजा के साथ साथ वर्किंग हॉलिडे और पढ़ाई के बाद काम करने के विकल्प भी शामिल हैं। और चौथा जो इसमें मुख्य बिंदु है, ये क्षेत्रीय सहयोग, क्योंकि ये सौदा एमएसएमई के लिए संस्थागत जुड़ाव स्थापित करता है और कृषि, विशेष रूप से बागवानी को देखें, जैसे सेब और कीवी फल है, और जैविक प्राथमिक उत्पादकों में साझेदारी को बढ़ावा देता है। अगर हम इसको जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में देखें तो भारत ने ईयू के साथ में एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम एफटीए उसको भारत ने एस्टैब्लिश किया है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एक्टा साइन हुआ था, फिर चार यूरोपियन देशों के साथ एक अलग बहुत बड़ा समझौता निवेश के साथ साथ हुआ था, और फिर ओमान न्यूजीलैंड के पहले वो अग्रीमेंट एक साइन हुई थी एफटीए की। तो हम इन सभी को अगर परिपक्ष में देखें, भारत अपने व्यापारिक भागीदारों में विविधता लाना चाहता है और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो विकसित देश है उनके साथ में आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करना चाहता है। न्यूजीलैंड एक विकसित देश है और इसकी सोसाइटी बहुत डेवलप्ड है।
0: जी वाधवा जी, अगर हम ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करें तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आज के अग्रीमेंट में ये निकल कर गया है, जैसे पीछे भी काफी इस पर चर्चा हुई है, एग्री सेक्टर की, अगर हम फार्मर्स की बात करें, रूरल इकोनॉमी की बात करें, डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करें, तो जब हम अमेरिका के साथ जब बातचीत चल रही थी, या यूरोपियन यूनियन की भी बात करें या अन्य विकसित देशों की भी बात करें, तो यहां पे पेच अक्सर फंसता हुआ दिखता था। यहां पे बिल्कुल साफ ये बिंदु है कि हमारे जो फार्मर्स हैं, रूरल इकोनॉमी है, उन्हें प्रोटेक्ट करके और बहुत अच्छे ढंग से इस अग्रीमेंट को एक शेप दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: इस एफटीए में कुछ संवेदनशील क्षेत्र है और उनको छूट दी गई है, क्योंकि बातचीत का एक मुख्य केंद्र भारत के संवेदनशील घरेलू उद्योगों को आयात के दबाव से सुरक्षित रखना था। तो अगर हम डेयरी और कृषि को देखें, जिसका आपने जिक्र किया
0: जी,
1: तो समझौते से लगभग 30% टैरिफ लाइनों को बाहर रखा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डेयरी क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है, जिसका अर्थ है कि न्यूजीलैंड भारत में डेयरी उत्पादों का शुल्क मुक्त निर्यात नहीं कर सकता। और फिर एक बहिष्करण सूची भी है, तो शुल्क निर्यातों से बाहर रखी गई अन्य वस्तुओं में कुछ पशु उत्पाद हैं, कुछ विशिष्ट सब्जियां हैं, बादाम है, चीनी है, तेल है, मसाले हैं, धातु और रबर, ये सभी इसमें शामिल हैं। और जिस एफटीए की जब अनाउंसमेंट हुई थी कुछ महीने पहले, तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट में, उन्होंने ये कहा था कि इसमें भारत के लिए ज्यादा फायदा है और न्यूजीलैंड के लिए जो मेन इम्पोर्टेंस की चीजें थी उनको बाहर रखा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के जो नेगोशिएटर्स थे, उन्होंने भारत के बड़े मार्केट को ध्यान में रखते हुए इन चीजों पर अपनी सहमति दे दी है। और इस समझौते में कुछ वाणिज्यिक और विनिर्माण वस्तुएं हैं, तो उनकी कुछ बढ़ी हुई पहुंच जरूर होगी भारत में। अगर इसको हम ओवरऑल तरीके से देखें तो ये एफटीए भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा एफटीए साबित होगा।
0: आज के इस अग्रीमेंट में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एंगेजमेंट विद अ डेवलप्ड वर्ल्ड की बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में ये 7वां अग्रीमेंट है और अगले कुछ महीनों में ही 2 बड़े अग्रीमेंट और होने की बड़ी संभावना है, जिसमें कि ईयू की बात उन्होंने की और अमरीका की बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने।
2: The signing of this FTA today marks another defining milestone in India's engagement with the developed world and brings us closer to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of Viksit Bharat 2047. With this FTA, it is the 7th free trade agreement that I am signing in the last 3.5 years. 2 more to go very soon in the next few months with the European Union and the United States of America, and we would have had 9 free trade agreements.
0: वाधवा जी, जैसा कि आपने भी सुना, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस 7वें अग्रीमेंट की बात की। पिछले 3.5 वर्षों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके आज के तारीख में अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो इस तरह के एंगेजमेंट, इस तरह के आउटरीच उतने ही आवश्यक हो जाते हैं। ईयू के साथ हमारा एक अग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, यूएसए के साथ भी हम समझते हैं कि बात काफी आगे बढ़ रही है। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बात अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड की करें तो उनके साथ एंगेजमेंट करना उतना ही आवश्यक है आज की तारीख में?
1: बिल्कुल, जैसा कि पीयूष गोयल जी ने अभी बताया, भारत के लिए बहुत जरूरी है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके साथ में जितने समझौते भारत कर सके उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास ही जो न्यूजीलैंड का जो एफटीए है, इसमें जो 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई गई है, तो इसलिए इस समझौते की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये जो निवेश है वो दर्शाता है। और दूसरी बात यह है कि भारत जो है उसने 118 सेवा क्षेत्र जो है उनमें आईटी और वित्त और शिक्षा, पर्यटन और निर्माण, ये सभी शामिल है। तो भारत को अपनी सर्विसेज के लिए न्यूजीलैंड की सोसाइटी में एक ओपनिंग मिलेगी और भारत को इससे बहुत सहूलतें मिलेंगी और हमारे जो वर्कफोर्स है उनको इसमें एक ओपनिंग मिलेगा। और फिर उसके साथ साथ जो पारंपरिक बाजार हैं हमारे, उनके ऊपर निर्भरता कम होती है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में हमारे जो संबंध है वो भी इस एफटीए से मजबूत होते हैं।
0: और आइए सुनते हैं कि न्यूजीलैंड के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर Todd McLay ने इस अवसर पर क्या कहा।
3: This agreement is also being concluded at a time of heightened global and regional uncertainty. In this context, strong, reliable partnerships matter more than ever before. New Zealand sees India as an essential partner in supporting regional stability, economic resilience and shared prosperity. As ministers, we recognise that signing this agreement is not the end of the process. In fact, it is a beginning. Its success will be measured by how well it is implemented, how effectively businesses and institutions make use of it. We look forward to continuing our close cooperation as we move into the next phase of implementation and of delivery.
0: आज इस एफटीए अग्रीमेंट को जो साइन किया गया है उस मौके पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पूरे मसौदे को लेकर के उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, आइए वो सुनते हैं.
2: The free trade agreement is very comprehensive, very forward looking. While it opens the doors for goods and services in a massive way, it also has an investment commitment which will encourage businesses to leverage the strengths and scale that India offers. It will also encourage Indian businesses to look at New Zealand market both for access in goods and services and potential investment. It'll, as Todd said, it could open up the doors for cultural exchanges, could open the door for education. It can expand our engagement on pharmaceuticals and the medical side. It can encourage new job creation, technology transfers, joint innovation projects. As Prime Minister Modi said, and I quote, the India-New Zealand Free Trade Agreement sets the stage for doubling the bilateral trade in the coming 5 years. Let's look at greater ambition together.
0: जी वाधवा जी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को हमने सुना. किस तरह से इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के साइन होने के साथ ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड को लेकर के काफी डेवलपमेंट होने की संभावना. उन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही, स्टूडेंट मोबिलिटी की बात की, फार्मास्यूटिकल की बात की, हेल्थ सेक्टर की बात की. अक्सर देखा गया है कि ये तीन सेक्टर बहुत ज्यादा, खास करके जब हम भारी भरकम सेक्टर्स की बात करते हैं, तो कहीं ये पीछे रह जाते हैं. कैसे देखते हैं आप इसको?
1: देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जहां तक एजुकेशन के संबंध है वो पहले से ही बहुत स्ट्रांग संबंध रहे हैं. और इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से, क्योंकि इसमें 5,000 अस्थायी वर्क वीजा के साथ साथ वर्किंग हॉलिडे और पढ़ाई के बाद काम करने के विकल्प भी शामिल है, तो इसलिए न्यूजीलैंड का जो एफटीए है, ये हमारे जो छात्र हैं जो वहां न्यूजीलैंड में पढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अहम समझौता होगा. और दूसरी बात यह है कि इसके चलते न्यूजीलैंड की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो देखेंगी कि भारत में अगर कैंपस खुल सके तो उनको इनवाइट किया जाएगा यहां पर अपना कैंपस खोलने के लिए, क्योंकि ड्यूअल डिग्रीज जो हमने ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों के साथ स्टार्ट किए हैं उनकी सक्सेस रेट बहुत हाई है. और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी 9 कैंपसेस भारत में खोलने का वायदा कर दिया है, और अभी डीकिन यूनिवर्सिटी जो है उसका पहला बैच वो ग्रेजुएट भी हो चुका है गिफ्ट सिटी से. तो ये सब एग्जांपल है न्यूजीलैंड के सामने, और ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो कि एक नेबरिंग कंट्री है, उसको देखते हुए न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज यहां पर जरूर सोचेंगी कि यहां कैंपस खोले जाएं. आपने मोबिलिटी की बात करी, मोबिलिटी भी बहुत ही अहम मुद्दा है. भारत जितने भी विकसित देश हैं उन सभी के साथ में आजकल एफटीए के साथ साथ मोबिलिटी के ऊपर भी जोर दे रहा है, क्योंकि अगर मोबिलिटी होगी तो भारत वर्कफोर्स है उसको एफटीए के थ्रू जो एडवांटेजेस मिलेंगे उनको लेने के लिए बहुत जरूरी है कि उनको वर्क वीजा आसानी से मिल सके. तो इसके चलते मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में चलकर भारत और न्यूजीलैंड का जो एफटीए है ये काफी अहम साबित होगा, और दोनों देशों के बीच में जो आदान प्रदान है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, वो सब बढ़ेंगे.
0: एम्बेसडर वाधवा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो बिंदु रखे हमारे श्रोताओं के लिए उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद.
1: धन्यवाद.
0: श्रोताओं, यह कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
4: सुर्खियों में

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: अब हमारे बीच में है मैम जो एटीटीसी से आए गुड़गांव से और ये अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। जब मैं पहली बार इनसे मिली थी सांवन से, बबीता सांवन है इनका नाम, और ये मैम आप जैसी लड़कियों को जो पे कर सकते हैं 50,000 वो कोर्स सिखाती है, 50,000 फीस भी देंगे ये मैम अपने इंस्टीट्यूशन में कोर्स सिखाती हैं, और हम इनके मुकाबले में तो नहीं सिखा सकते, बट यस आज हमने इनको रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बुलाया है कि आपके साथ एक विजन बिल्ड करें कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं और हम फैक्ट्री प्रेमिसेस में कैसे काम कर सकते हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मोस्ट वेलकम, वी गॉट योर अपॉर्चुनिटी
1: अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर। हम लोगों के पास डिग्री कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं ट्रेड कोर्सेज हैं, यस। और यदि आप बात करेंगे प्लेसमेंट की तो मोस्टली इटीसी 100% जो है स्टूडेंट को प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करा। तो सबसे फर्स्ट बात वहां पर हो रही है स्विंग मशीन ऑपरेटर। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर से आप लोग क्या समझते हैं कि स्विंग मशीन ऑपरेटर क्या होता है? एनीवन कोई बताना चाहेगा? स्विंग मशीन ऑपरेटर आई थिंक जब से भी स्टार्ट हुआ है आई थिंक बहुत बार हम सिर्फ स्विंग मशीन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। स्विंग मशीन ऑपरेटर आखिर कौन होता है? ये चीज बताइए प्लीज, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी आपको, आज नहीं तो कल। स्विंग मशीन ऑपरेटर ये स्विंग मशीन ऑपरेटर मीन्स जो आपकी सिलाई की मशीन है उसको ऑपरेट करना, उसको चलाना सीखना और उससे रिलेटेड ऐसे गार्मेंट बनाना, ऐसी टेक्निक सीखना, वो स्विंग मशीन ऑपरेटर का रोल है एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो और हम अपने पैरों पर खड़े हो। तो स्वामी विवेकानंद जी ऐसी एक शिक्षा की बात कर रहे हैं कि जिसमें अपने पैरों पर हम खड़े हो पाए। आप अभी यहां पर बोर्ड पे भी आपने देखा है स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, स्किल डेवलपमेंट, स्किल। आप भी शायद बहुत बार सुनते होंगे स्किल। तो एक्चुअल में स्किल क्या है? कोई वैसे नजीएस बताइए स्किल। हाँ जी, स्किल का मतलब है हुनर। अब वो हुनर आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका खाना बनाना भी हुनर हो सकता है, वो आपका कपड़े काटना सिलाई करना भी हो सकता है, वो हुनर आपको कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग करना भी हो सकता है। तो उस हुनर को सबसे पहले आपको अपना पहचानना है कि आपका एक्चुअल में वो स्किल क्या है। और आज भी मुझे लगता है 99% में श्योर हूं कि आप जितने भी यहाँ बैठे हैं अपने स्किल को पहचान चुके हैं। जो आपका स्किल है दैट इज स्विंग मशीन ऑपरेटर, सिलाई मशीन या सिलाई कपड़े बनाना, कैसे कपड़े बनाना है, कैसे कपड़े बना के आपको मार्केट में उसको सेल करना है। तो जब आपने उस स्किल को पहचान लिया तो नेक्स्ट जो बारी आई है आपकी उससे रिलेटेड ट्रेनिंग करने का, जो कि रीड एनजीओ ने आपको प्रोवाइड कराया है। आई थिंक मैम ने अभी शेयर किया मुझे कि इट्स 90 डेज का आपका ट्रेनिंग है जिसमें आपने बहुत सारा कुछ। स्टार्टिंग जब आपकी हुई होगी आई थिंक सबसे पहले आपने मशीन पर बैठे होंगे, मशीन पर बैठने के बाद आपने उसको चलाना सीखा होगा, उसकी मशीन के पार्ट्स के नेम सीखे होंगे कि कौन सी मशीन के पार्ट्स को वो क्या बोलते हैं, उसके बाद उस मशीन को कैसे चलाना है, फिर कैसे कपड़े से उसको चलाना है, कपड़ा रख के कैसे चलाना है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको पहले से थोड़ा बहुत सिलाई आता हूँ और यहाँ आके जैसे उनको पता

स्विंग मशीन ऑपरेटर की हम बात कर सकते हैं और एक हम बात कर सकते हैं टेलर। टेलर जो आप बुटीक में भी देखते हैं या फिर मशीन को जो चलाते हैं, दैट इज टेलर। तो आपको इसकी अपॉर्चुनिटी की यदि हम बात करें तो अपैरल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है स्विंग मशीन ऑपरेटर की। और यदि आप अपना बुटीक ओपन करते हैं और वहां पर दो तीन टेलर रख के यदि आप अपना बुटीक ओपन करें, बिजनेस करना चाहें, तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर यदि गवर्नमेंट इंडस्ट्री की हम बात करें तो 99% स्विंग मशीन ऑपरेटर से ही पूरा इंडस्ट्री चलता है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जब तक गारमेंट इंडस्ट्री में स्विंग मशीन ऑपरेटर की मशीन का निडल चलता है तब तक बिजनेस है। जैसे वो स्टॉप हो जाता है तो आपका इनकम कम। तो दैट मीन्स जो मशीन की निडल वहां इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां स्विंग मशीन ऑपरेटर की वैल्यू है। तो सबसे पहले आपको स्विंग मशीन ऑपरेटर की वैल्यू को समझना पड़ेगा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि गारमेंट इंडस्ट्री में यदि स्विंग मशीन ऑपरेटर नहीं है तो गारमेंट इंडस्ट्री नहीं चल सकती। चल सकती है? तो दैट मीन्स गारमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेटर की यदि जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट ऑपरेटर के लिए भी कुछ स्किल हमें बहुत जरूरी है। स्किल मतलब कि आपको सिर्फ स्टिचिंग आना ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इनकेस आप इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या फिर इवन अपना कोई बुटीक या कोई छोटा सा ओपन करते हैं तो उसमें वो आपको हेल्प करेगा। तो आपको क्या लगता है कि एज ए ऑपरेटर आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको मशीन चलाना आना चाहिए। दूसरा कपड़ा सीना आना चाहिए, मतलब आपको सारी सीम्स आनी चाहिए। सीम्स का मतलब है कि गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारी सीम्स को यूज करते हैं, जैसे सुपर इको सीम होगी, फैन सीम होगी, माउस सीम होगी, ये बहुत सारी टेक्निकल सीम्स के नाम है। सीधे तौर से यदि मैं बात करूं, यदि हम दो कपड़ों को यदि हम सिलाई करते हैं तो उसको हम सुपर इम्पोज सीम कहते हैं। हर सीम्स का एक अपना अलग वैल्यू है। फ्रेंच सीम जिसे लोकल भाषा में लोअर फोर्थ सीम भी बोलते हैं, तो जो कि आपको पूरे गारमेंट को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। अभी तक आपने सीखा होगा कि आप साइड सीम को सिर्फ सीम कर दो, उसको बट उसको फिनिश कैसे करना है, उसमें क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, तो वो आपको बेसिक सीम क्लासेस आपको हेल्प करती है। कहां पर किस एरिया में कौन सा सीम यूज आपका होना है, कहां सुपर इम्पोज सीम यूज होना है, कहां फ्रेंच सीम यूज होना है आपका, कहां लेट सीम यूज होना है आपका, कहां फेट एंड फेल सीम यूज होना है। तो आपको मशीन आने के साथ साथ आपको सीम के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा सीम, सीम मतलब सिलाई की टेक्निक आप कहां यूज करेंगे। आपने सुना होगा गुम सिलाई, सुना है आपने गुम सिलाई? गुम सिलाई का क्या काम है? गुम सिलाई का काम है कि जो जब आप कपड़े को कटिंग करते हैं तो उसके धागे निकल जाते हैं तो उनको छिपाने का काम करते हैं। या तो हम उनको छिपाने के लिए ओवरलॉक मशीन यूज करते हैं या फिर हम लोग गुम सिलाई यूज करते हैं। सेम इंडस्ट्री वाली लैंग्वेज में भी हम इसको फ्रेंसिंग बोलते हैं। तो मीन्स ये है कि सबसे फर्स्ट थिंग आपको मशीन ऑपरेट करनी आनी चाहिए। अब मशीन भी आपकी दो तरह की मार्केट में मशीन अवेलेबल है, तो सिंपल डोमेस्टिक मशीन जिसे आप अम्ब्रेला मशीन बोलते हैं। सेकेंड आपका जो इंडस्ट्री में मशीन यूज होता है दैट इज SLLS सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन। वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक से चलती है और बहुत अच्छा और प्रोडक्शन क्वालिटी में मटेरियल है। तो ये दो मशीनों का आपको आना चाहिए। यदि आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको SLLS मशीन तो आने भी चाहिए, ठीक है, सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन और प्लस में ओवरलॉक मशीन, ये दो मशीनें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको सीम क्लासेस आनी चाहिए। सीम क्लासेस कौन सी सिलाई कहाँ यूज होनी है, उसके लिए कौन सी हम लोग टेक्निक यूज करेंगे। थर्ड थिंग क्या आनी चाहिए स्विंग मशीन ऑपरेटर को, आपको सिलाई भी आ गई, सीम क्लासेस की टेक्निक भी आ गई, थर्ड थिंग क्वालिटी मेंटेन। क्वालिटी कैसे आपको मेंटेन करनी है, जब आप कोई भी गारमेंट को स्टिच करते हैं।

0: जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका थ्रेड कट करना, जब एंडिंग करते हैं तो बैक स्टिच आप समझते हैं उसको पक्का करना बोलते हैं। पक्का करना मतलब दो स्टिच आगे पीछे हम करते हैं जब, उसको हम बैक कट बोलते हैं। तो वो करना, उसको पक्का करना, लास्ट के जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट करना। ओवरलॉक यदि आप कर रहे हैं तो ओवरलॉक भी प्रॉपर होना चाहिए, उसके भी थ्रेड आपके प्रॉपर कट होने चाहिए। तो देट मीन्स कोई भी जब आप स्टिच करते हो आपको टेक्निक के साथ साथ क्वालिटी का पता होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी के बाद जो सबसे लास्ट है इम्पोर्टेंट, स्पीड है ना। यदि आपकी स्पीड है तो आप गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा वहां से काम कर सकते हैं, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री में आपका पीस रेट पे काम होता है, समटाइम पीस रेट पर समटाइम मंथली बेसिस पर भी होता है, लेकिन प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको ये बेसिक चीजें आनी ही आनी चाहिए। इवन आप अपने बुटीक भी ओपन करते हैं या कुछ भी आप करते हैं तो उसमें क्वालिटी, स्पीड, टेक्निक, ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में आप लेकर आ सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने स्किल की बात की गारमेंट इंडस्ट्री में या क्या इसका वैल्यू है, तो हम लोगों की बेसिक नीड, यदि हम एक सिंपल इंसान की बेसिक नीड क्या हो सकती है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। आई थिंक सब इससे सहमत है, रोटी कपड़ा और मकान ही चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड है। तो यदि हम बात करें कपड़ा जो कि सेकंड नंबर पे आता है, तो यदि हम कपड़े टेक्सटाइल लाइन की बात करते हैं, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं या अपैरल सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, तो ये सेकेंड नंबर पे भी है डिमांड वाइज। तो यदि आप इसमें फ्यूचर बनाते हैं और उसमें आप अपना हार्डवर्क करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपनी फैमिली को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, और अपनी फैमिली को ही नहीं आप अपने पूरी टीम को साथ में लेकर जा सकते हैं। शायद शाही एक्सपोर्ट हाउस आप लोगों ने सुना होगा, सुना है किसी बच्चे ने शाही एक्सपोर्ट हाउस, गारमेंट इंडस्ट्री है, शेयर किया होगा। तो मैं उनकी थोड़ी सी आपको स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे वो स्टार्ट हुआ। जैसे कि वहां की जो अभी मेन ऑनर है मतलब वो रिटायर हो चुकी है अभी, सरला आहूजा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, और जब उन्होंने वो स्टार्ट किया था बिजनेस एक ऑपरेटर से किया, सिर्फ एक ऑपरेटर से। लेकिन यदि आप आज देखेंगे तो उनकी 50 यूनिट्स है, उनके वहां पर 11 लाख के आसपास जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं, 75,000 के आसपास वहां पर फीमेल जो है काम कर रही है। तो जब एक ऑपरेटर, एक सिंपल हम बोलते हैं कि ऑपरेटर, लेकिन यदि वो ऑपरेटर भी यदि हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ काम कर सकता है तो आप शाही क्या किसी का भी मुकाबला। बट उसके लिए आपको अंदर जरूर होना चाहिए। सरला आहूजा जी का नाम सुना है, सोनम कपूर का नाम सुना है, कौन है, अनिल कपूर का नाम सुना है, अनिल कपूर की जो डॉटर है सोनम कपूर, और सोनम कपूर सरला आहूजा जी की बहू है। तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको उनकी बहुत स्टोरी मिलेंगी। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटर को आप सिंपल ना समझिए, इसमें बहुत पावर है, बहुत पावर है, लेकिन उसको किस डेडिकेशन के साथ, किस हार्डवर्क के साथ, किस क्वालिटी के साथ आपको आगे लेकर जाना है वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग सिर्फ आपको आधे घंटे का लेक्चर दे देंगे, मैम आपको शेयर करेंगे, अभी मैम ने शेयर किया आपको क्वालिटी टाइम मैनेजमेंट, यदि आप यहां से सुनते हो यहां से निकालते हो तो ऐसे मुझे लगता है ना तो हमारा कोई वैल्यू है ना ट्रेनिंग का कोई वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है। लेकिन यदि आप यहां से सुन के और सीधा आपने दिमाग में डालते तो 100% गारंटी के साथ में ये बोल रही हूं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपने कोर्स किया, आप घर बैठ गए, एक दो सिंपल सिंपल चीजें स्टिच कर दी, तो ना तो हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे ना मैं सक्सेसफुल रहेंगे। तो आपको इसका वैल्यू समझना है कि मैंने जो ट्रेनिंग दिलवाई है आपको उसको कहां तक आपको लेकर जाना है। अभी 17 इयर्स मुझे सेम इसी फील्ड में हो गया है. डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में मैंने क्लासेस ली हैं, पैटर्न मेकिंग, गार्मेंट कंस्ट्रक्शन, कैट की मैं क्लासेस लेती हूँ. तो मेरा मेन जो है वो टेस्ट स्विंग मशीन से रिलेटेड ही है. स्विंग मशीन मेरी एक्चुअल में फ्रेंड है, मैं उसके साथ बातें करती हूँ. मेरे माइंड में जो इमेजिनेशन होती है, माइंड में इमेजिनेशन मतलब कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बनाती हूँ. अपनी इमेजिनेशन मैं उसके साथ बैठ के बनाती हूँ, अपने सपनों को पूरा करती हूँ. और ऐसे मैंने कितने ही जानो, हजारों बच्चों को मैंने ट्रेन किया है. तो आज के टाइम में अच्छे गार्मेंट इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे मैनेजर लेवल पे वो जॉब कर रहे हैं. और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, फैशन के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अपना बुटीक फैशन स्टूडियो ओपन किया, बहुत अच्छा वो रन कर रहे हैं. तो व्हाई नॉट, आप क्यों? तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको मेन अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, स्विंग मशीन आपने सब सिखा दिया. टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, वो आपको अपने गार्मेंट में इंप्लीमेंट करनी है. क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है. यदि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, सी आप लोगों ने मार्केट्स में यदि आप देखा होगा, मेंस शर्ट यदि आपने खरीदा होगा, वही शर्ट आपकी 400 रुपए में भी मिल रही है, वही शर्ट आपकी 1000 रुपीज में भी मिल रही है, और वैसे ही शर्ट आपकी 4000 में भी मिल रही है, और वैसे ही शर्ट आपकी 10000 में भी मिल रही है. तो क्या रीजन है इनके बीच में? क्वालिटी, ओनली क्वालिटी. क्वालिटी में बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, अभी हम लोग वो शेयर नहीं करेंगे. बट जब भी आप कोई गार्मेंट स्टिच करते हैं तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए कि आपकी वो गार्मेंट की वैल्यू कौन सी आप रखना चाहते हैं. 100 रुपीज रखना चाहते हैं या 1000? 100 रुपीज के लिए हो सकता है आप चलता फिरता काम करें, हो गया कस्टमर एक बार ले लेगा, बट अच्छा कस्टमर को आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे. जब तक आप उसे क्वालिटी नहीं देंगे, गार्मेंट को टच करते ही क्वालिटी का पता चल जाता है. तो आपको उसमें इतना कोई भी आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो टाइम पास करने के लिए नहीं बनाना, आपको उसमें अपनी जान डालनी है. और आपको जान डालनी है कि आप इंस्पिरेशन के लिए सलाह ऊर्जा मैं आपको ले सकते हैं कि जब वो एक ऑपरेटर से इस स्टेज पर आ सकती है, 51 यूनिट उन्होंने ओपन कर दिए, तो आप ही कर सकते हैं. हालांकि उनको बहुत टाइम लगा, एक दिन में नहीं होती ये चीजें, बहुत टाइम लगा, बट उन्होंने अपना मोटिवेशन को कभी भी डाउन नहीं किया. उनके सामने भी बहुत सारी हर्डल्स आए. और एक गार्मेंट इंडस्ट्री में फीमेल के लिए आप समझिए उस टाइम कितना मुश्किल काम रहा होगा उनको सर्वाइव करना. आजकल तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री में इतनी फैसिलिटी वुमेन्स को मिला है, परसेंटेज आपको मिला है, बहुत फैसिलिटी है, बट उस टाइम में वो नहीं थी. उन्होंने फिर भी इतना स्ट्रगल किया और वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं. तो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा. आप ये मत सोचिए कि आपकी टीचर ने सिखा दिया काम खत्म, हमारा काम खत्म हुआ है, आपका काम अभी शुरू हुआ है ना. तो क्वालिटी मेंटेन करने की कुछ एक मैं छोटा सा आपसे कुछ शेयर करूंगी. फॉर एग्जाम्पल आप कोई कुशन कवर बनाते हैं, अभी जैसे मैम ने आपको दिखाया था ये प्रोडक्ट, तो जब आप उसको कुशन कवर को बनाते हैं, सबसे पहले आप अपने माइंड में मैपिंग कीजिए, माइंड में सोचिए किसको कैसे बनाना है, इसमें कौन सी मशीन यूज होगी आपकी, SNLS मशीन यूज होनी है या अम्ब्रेला मशीन यूज करनी है, ओवल ऑफ मशीन यूज करनी है ना. यदि गार्मेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट अभी हम एक वूवन फैब्रिक की बात कर रहे हैं, नॉट नेट की. वूवन फैब्रिक आपका वो फैब्रिक होता है जो कि अभी सबने डाला हुआ है, जो टी शर्ट वाला कपड़ा होता है वो निट फैब्रिक होता है, ठीक है. तो वूवन फैब्रिक की हम बात कर रहे हैं. तो वो कुशन कवर में आप कौन कौन सी मशीनें यूज करोगे, कौन कौन सी उसमें सीम यूज करेंगे, कहाँ पर कौन सी सीम लगने वाली है ना, आप ये डिसाइड करेंगे. वो किस टाइप का डिजाइन है, तो जब आप ये माइंड मैपिंग कर लेते हैं, माइंड मैपिंग के बाद आप अपना काम करना शुरू कीजिए. और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो सिर्फ आपके माइंड में दो चीजें रहनी चाहिए, क्वालिटी और स्पीड. क्वालिटी और स्पीड, क्वालिटी और स्पीड होंगी. आपने क्वालिटी मेंटेन कर ली, एक क्वेश्चन का आप दो दिन में बना रहे हो, एक दिन में बना रहे हो, कोई फायदा नहीं है ना. आपको अपने टाइम को भी वैल्यू देना है, आप यदि अपने टाइम को वैल्यू नहीं देंगे तो आप आगे सेल करने में आपके यू नो टाइम लॉसेस और काफी कुछ हो जाते हैं. तो आपको स्पीड पे, क्वालिटी पे मेन फोकस करना है. और स्विंग मशीन ऑपरेटर की बहुत अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा. आप गुड़गांव सेंट्रल गुड़गांव में आप देखते हैं इंडस्ट्री एरिया उद्योग विहार मानेसर आप जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां वो स्किल्ड ऑपरेटर्स को ढूंढती है. स्किल्ड मतलब क्योंकि मैं मुझे एक्सपीरियंस है मैं असेसमेंट के लिए भी जाती हूँ गवर्नमेंट इंडस्ट्री में मैट्रिक्स क्लोदिंग में मुगलामा में तो वहां असेसमेंट लेने के लिए हम लोग जाते हैं. बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो काम करते होते हैं तो जब हम उनकी स्पीड देखते हैं उनका काम देखते हैं बहुत डिफरेंस है. मतलब आप ये समझिए कि स्किल ऑपरेटर्स को हम असिस्ट करने जाते हैं और वो इतनी स्पीड में काम कर रहे होते हैं इतना नीट एंड क्लीन काम कर रहे होते हैं उनको कोई भी कोश नहीं होता सिर्फ काम से मतलब होता है ना. और जैसे अभी मैंने स्पीड की बात की तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस गार्मेंट को बनाने में आपको इतना टाइम लगेगा. जैसे एक बेसिक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग में यदि बात करो एक मेन शर्ट आप लोगों ने कभी मेन शर्ट स्टिच किया है मेन शर्ट आपने किया है जिसने मेन शर्ट करी है ना आप समझो कुछ भी स्टिच कर सकता है. मेन शर्ट में सारी सीम क्लासेस यूज होती है कैसे कॉलर अटैच करना है कैसे पॉकेट अटैच करनी है लेफ्ट सीम क्या होती है आपके कप कैसे बनाना है पैकेट कैसे बनाना है आप ये समझिए कोई भी गार्मेंट स्टिच कर सकता है. तो एक मेन शर्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है यदि आपने स्टिच किया है तो बताइए मुझे कितना टाइम लगता है. तीन घंटे और किसी को कोई शेयर करेगा कितना दो घंटे
1: काम तो मैं टाइम तो लगता है मेरे को थोड़ा सा मतलब तीन से चार घंटे भी लग सकते हैं मुझे बट मैं मेरे काम में मतलब कोई लेकिन नहीं निकाल सकता क्योंकि सर मुझे इस हिसाब से
0: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन अभी आपको बीट करना है इंडस्ट्री को गवर्नमेंट इंडस्ट्री को बीट करना है.
1: जी मैम मैं कोशिश करूंगी मैम टाइम मैनेजमेंट
0: और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस गवर्नमेंट को स्टिच करने में कितना टाइम लगेगा. यदि वो आपको नहीं पता होगा आप टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे. प्लीज बैठिए एक मेन शर्ट को स्टिच करने के लिए 26 मिनट चाहिए. अब आप सोचिए किस लेवल पे हैं आप और आपको कितना इम्प्रूव करना है. मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि इंडस्ट्री में स्पीड से बहुत स्पीड से काम होता है आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तभी आप प्रोडक्शन निकाल है ना. यदि आप मार्केट में कुछ सेल भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नंबर ऑफ पीसेस देने पड़ेंगे तो उसके लिए भी आपको स्पीड चाहिए स्पीड और क्वालिटी. तो आप देखिए मेन शर्ट में इतना टाइम लगता है 26 मिनट के आसपास तो आप बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यदि आपको 50 शर्ट बनानी है तो कितना टाइम लगेगा है ना. ये नहीं बताओ मुझे टाइम लगेगा क्वेश्चन कवर है सिंपल क्वेश्चन का आवाज है तो कितना टाइम लगेगा 10 मिनट या 15 मिनट. यदि आप 10 मिनट में एक क्वेश्चन कवर स्टिच करते हैं तो 50 क्वेश्चन कवर को आप कैसे कितने टाइम में स्टिच करेंगे तो बहुत आराम से आप ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं. यदि आप अपना छोटा सा यूनिट भी ओपन करते हैं दो तीन टेलर नहीं तो हो सकता है आप भी 5-6 लोग मिलकर अपना एक छोटा सा यूनिट 5-6 मशीनों का यदि आप ओपन करते हैं तो हमें कुछ तो प्लानिंग करनी होगी ना. ये नहीं बिना प्लानिंग के हम नहीं कर पाएंगे तो आपको उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट आपको उसमें एस्पेक्ट रखने हैं कि आप क्या स्टिच करने जा रहे हैं कैसा गार्मेंट है उसको कितना टाइम देना है कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए है ना. क्योंकि बहुत सारी चीजें होती आप इस लेवल पे कर रहे हो जब आप बाहर शॉप भी लेंगे हो सकता है रेंट पर हो सकता है टेलर हो आपको उनकी भी पेमेंट करनी होगी. बहुत सारी चीजें यदि आप प्लान करके करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुली आप कर पाएंगे. कोई आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज आप कर सकते हैं. हो सकता है मे बी आप लोगों के माइंड में कुछ चल रहा हो मैं आपको हेल्प कर पाऊँ इसमें स्पेशली रेडीमेड गार्मेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर कुछ भी डोमेस्टिक का आपको कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछिए. आज मौका मिला है बोलते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आती है ना बोल के नहीं आती एकदम से आ जाती है तो उसको पकड़ लेना चाहिए.
2: मैम हाँ जी छोटी सी दुकान है, मैंने अभी डाली है पिछले साल से,
0: तो
2: उसमें सिलाई में खुद ही करती हूँ। तो मेरे को ग्राफ बढ़ाने के लिए या मतलब अच्छा काम देने के लिए क्या करना चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहले बुटीक किस लेवल पे आपने ओपन किया है और किस लेवल के आपके कस्टमर आ रहे हैं?
2: मैं अभी तो छोटा मोटा चल रहा
0: है। देखिए, यदि आपने अपना बुटीक ओपन किया है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले अपने बुटीक का आसपास का एरिया चेंज करना होगा, ताकि कोई आपके कस्टमर में आए, कस्टमर आए आपकी शॉप पर, तो सबसे फर्स्ट लुक आपके बुटीक में देती कि क्या स्टिच किया है। सेकेंड थिंग डिजाइनिंग, क्योंकि फैशन एक ऐसी लाइन है, मैं बोलती हूँ कि हर 2 घंटे में फैशन चेंज होता है।
2: मुझे ज्यादातर सिलाई का ही काम करना है, वो तो मैंने कॉस्मेटिक में चीज साथ में रखा हुआ है, पर जितना मेरा ज्यादा ध्यान है तो सिलाई का ही ध्यान है।
0: तो सबसे फर्स्ट आपको अपने डिस्प्ले पे फोकस करना पड़ेगा कि आप बुटीक पर कैसा डिस्प्ले कर रहे हैं, ताकि कोई भी कस्टमर आए तो उसको कुछ डिजाइन चाहिए। वो आपके पास आया ही इसलिए है कुछ नया डिजाइन देखने के लिए। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी डिजाइन होते हैं माइंड में, होता है कि ऐसा ज्यादा चाहिए, ऐसी बाजू चाहिए मुझे, ये स्टाइल चाहिए, बट समटाइम उनकी सोच से भी ऊपर आप उनको बता दें, आपको उनको बताना है, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं कि आजकल ये फैशन चल रहा है मैम, आप ऐसा बनवाइए, ऐसा अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। तो सबसे फर्स्ट टाइम आपको कस्टमर को रीड करना है। रीड मतलब कि रीडिंग की उसको क्या चाहिए,
2: मतलब डिजाइन पे मुझे भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मैं जल्दी दूसरों को बताऊंगा।
0: हाँ बिल्कुल, सबसे मेन तो है कि आपको अपने आप को डिजाइन में करना पड़ेगा, बट अपने बुटीक का डिस्प्ले आपको अच्छा करना पड़ेगा। फिर सेकेंड थिंग, कस्टमर किस टाइप के कस्टमर आ रहे हैं आपको उनको रीड करना पड़ेगा। कस्टमर की माइंड मैपिंग करने के बाद आप उनके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो देखिए आपके कस्टमर क्या व्यू बढ़ेगा, है ना। तो माइंड मैपिंग आप लोग कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। कोई भी 2 स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि वो किस टाइप से हम उनकी माइंड मैपिंग कर सकते हैं। जैसे तो अभी मेरे पास ये होता है 3 कस्टमर है, आपका नाम सुनीता है, आपका नाम सितारा है और आपका नाम खुशी है। तो ये 3 कस्टमर है आपके सामने और इनको आप समझिए कुछ स्टिच करा रहे हैं। आप अपने माइंड में सेट कीजिए कि आपको क्या अपने लिए स्टिच करा रहे हैं, आप इधर आ जाइए, क्या स्टिच करा रहे हैं वो अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले कस्टमर आता है हमारे पास, वो हमारे पास आया है तो हमें पहले उसके लुक को समझना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बोलने से नहीं, आपको आंखों से और माइंड से समझना है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में समझना है, किस बैकग्राउंड से, वो आपको लुक से बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। फिर दूसरा, जब आप ये पता कर लेते हैं फिर आप ऐसे क्वेश्चन रखिए जो कि आपके गार्मेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, किस टाइप की फैशन, वो किस लिमिट तक वो जा सकती है। आपको डायरेक्ट नहीं पूछना बहुत सारे क्वेश्चन, आपको इनडायरेक्ट वे से भी पूछने पड़ सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको क्या स्टिच कराना है, एक इनको सूट स्टिच कराना है, तो आप एज ए बुटीक आप उनको क्या हेल्प करेंगे, आपको रिप्रेजेंट करना है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर सकती हूँ। यदि आप अच्छा नहीं करेंगे भाग जाएगा, है ना, तो आप एक बार डील करके मुझे दिखाएं। ये सबके लिए एग्जांपल है, प्लीज आप एक एक पॉइंट को, मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप यहां से ना सुने, यहां से सुने और यहां से ना निकालें, यहां से सुने और माइंड में सीधा डालें, क्योंकि ये चीजें आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, है ना। तो
2: आपको कैसे सोच है, तो आप डिजाइन बता सकते हैं, जो मेरे को मतलब पसंद है वही बताएंगे। हाँ, तो जैसा आप बताओगे वैसा हम सिल देंगे।
0: पीछे तक आवाज आ रहा है? ओके, आ रहा है पीछे तक? देखिए, मुझे ये लगता है यदि आप लोगों के टेंशन होगी ना तो सुई गिरने तक की आवाज भी पीछे आ जाएगी। है ना, तो आपको अटेंशन देनी है, इतना स्लोली वो नहीं हो रहे, तो प्लीज।
2: तो जैसा आप मेरे को डिजाइन बताएंगे वैसा हम कोशिश करेंगे आपके लिए बनाने की।
0: तो आपने कस्टमर समझ के क्या आपने ऑब्जर्व किया कि क्या उसके लिए किस टाइप का आउटफिट होना चाहिए?
2: ज्यादातर तो लोग जैसे बोलते हैं कि जैसे हमने डिजाइन
0: लोग की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ
2: हाँ मतलब जो भी आती है मेरी दुकान पे वो ये कहते हैं कि जैसा हमने पहना हुआ है वैसा हमें बनाना है, और कुछ चेंज करना होगा तो वो हम बता देंगे आपको।
0: ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब कस्टमर आपके सामने आते हैं आपको उसकी ड्रेसिंग सेंस देख के ये समझ आना चाहिए कि उसको कैसा फिटिंग चाहिए। यदि उसने लूज डाला है
2: तो दैट मींस ऐसा ही बनाना,
0: तो दैट मीन्स उसको लूज फिटिंग में चाहिए। यदि उसको कंफर्टेबल पसंद है और आप उसके लिए टाइट स्टिच कर देंगे तो वो फिर कैसे आएगा, स्माइल करता हुआ या
2: गुस्से?
0: और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ थोड़ा सा टाइट करते हैं तो सकता है वो आपके मुंह पे मार के जाएगा कपड़े, ये क्या स्टिच कर दिया मेरे कपड़े वापस, ऐसे कस्टमर भी आते हैं या नहीं? हो सकता है आप लोगों में से भी किसी ने ऐसे
2: नहीं। मैम मेरे साथ हुआ था ना ऐसे, एक बार गलती से टाइट हो गया था किसी का, तो गुस्सा कर रहे थे इतना टाइट कर दिया आपने मेरा कपड़ा खराब कर दिया, ऐसे बोला उन्होंने।
0: तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये माइंड मैपिंग कर रही है, माइंड में देखना है कस्टमर को, देखकर आपको बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट करनी है कि उसको कैसा लूज पसंद है, टाइट पसंद है, वो देख के पता चल जाता है फिटिंग है ना। यदि हम इन कस्टमर की बात करें है ना, तो इनके लिए आपके डिफरेंट माइंड मैपिंग होगी किस टाइप का उनको पसंद है ना। एज ग्रुप उसमें मैटर करता है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आपके ड्रेसिंग डिजाइन हो सकती है। अब जो ये इस एज ग्रुप के लिए आप डालेंगे इसके लिए तो नहीं बना पाएंगे है ना, तो एज ग्रुप भी बहुत मैटर करता है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको सजेस्ट करेंगे, अच्छे आइडियाज देंगे कि आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा, आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा। यदि ये कस्टमर है जो कि आपकी क्या एज है 15 ईयर की है, यदि मैं इनको ये बोलूं कि आपके लिए मैं सूट बना देती हूँ, इतनी लंबी बाजू का बना देती हूँ, यहाँ तक का गला बना देती हूँ और ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा, और एक दुपट्टा बना देती हूँ सर पे डालने के लिए, उसमें बहुत आप मस्त लगोगे और दो ऐसे से झुमके आगे, तो क्या वो कस्टमर खुश होगा? हमें अपनी एज ए बुटीक या एज ए डिजाइनर या फिर हम अपनी चॉइसेस के ऊपर नहीं रख सकते, हम उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम उसका ड्रेस डिजाइन करेंगे, तो कस्टमर उसमें हमेशा खुश रहता है। बट कस्टमर को हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीजें भी बतानी है कि देखो मैम ये फैशन में न्यू है, हम ये करेंगे तो ये भी आपके लिए अच्छा है, हम ऐसे उनको सजेशन हमें देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं
2: थोड़ा पॉइंट ये नहीं दे पाती
0: हूँ, कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी होता है कि कस्टमर ये सोचता है, ट्रस्ट हो जाता है उसके ऊपर कि क्योंकि वो एक जैसा नहीं डालना चाहता, कुछ डिफरेंट डालना चाहता है, कुछ डिफरेंट नेकलाइन डालना चाहता है, कुछ डिफरेंट बाजू के डिजाइन बनाना चाहता है, तो वो जो डिजाइनिंग आपको जो बतानी है वो सोच समझ कर और कस्टमर ट्रस्ट करके ऊपर आ रहा है आपके ऊपर कि ये मुझे बेस्ट डिजाइन मिलेगी और मेरे बजट के अंदर। समटाइम ये सिचुएशन भी हो जाती है कि कोई ऐसा डिजाइन है जिसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, मैं उस टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे अभी आपने बताया शर्ट को आपको 3 घंटे लगे या एक पूरा दिन लग गया, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, उस टाइम पे टाइम की बात है। समटाइम कुछ डिजाइन में हमें ज्यादा टाइम लगता है, तो जहां ज्यादा टाइम लगेगा वहां आपका ड्रेस का कॉस्ट भी बढ़ेगा, स्टिचिंग कॉस्ट बढ़ेगी नहीं? ओके, एक सिंपल सूट है और यदि आप उसके गले में छोटा सा पाइप में लगाते हो तो दोनों में सेम टाइमिंग लगेगा नहीं? अलग अलग लगेगा, क्योंकि उसमें पाइपिंग लगी है तो टाइम ज्यादा लगे, अब टाइम ज्यादा लगेगा तो पैसा भी तो ज्यादा लगेगा है ना। तो वो यदि आपके किसी डिजाइन में यदि एक्स्ट्रा टाइम आपको लग रहा है उसको वर्कआउट करने में, तो आपको बहुत पोलाइटली अपने कस्टमर से शेयर करना है कि इस डिजाइन में मैम देखो लेबर कॉस्ट बढ़ सकता है आपका, लेकिन आपके पास अच्छा बहुत लगेगा और ऐसा डिजाइन मैं आपको बना के दूंगी, लोग आप लोगों से पूछे। तो ये कुछ कुछ टेक्निक्स हैं आपको अपने कस्टमर से बात करने की, या फिर जिससे भी आप डील कर रहे हैं, या बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, या फिर जिससे भी है जो भी एक्स वाई जेड है आप उससे बात करते हैं, तो उन टेक्निक्स को आपको माइंड में जरूर रखना है ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि डोमेस्टिक मार्केट में कैसे काम होता है. डोमेस्टिक मार्केट मतलब जैसे जितने भी छोटे बुटीक्स हैं, छोटे टेलर्स हैं आपके, वहां पर इस टाइप का आप नहीं कर सकते. प्लीज हम थैंक यू. थैंक यू. सबसे पहले तो क्लैपिंग हम तीन बच्चों के लिए खड़े हुए. अरे मुझे लगता है आप खड़े होना भी इसके लिए भी चाहिए कुछ ना कुछ. ये नहीं जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं. मतलब यहाँ आने का मतलब है कोई भी जो अपॉर्चुनिटी आती है आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपका हाथ होना चाहिए. मैम करूँगी, मैम मैं करूँगी. जब आपने ये सीख लिया तो आप आगे बढ़ने से आप करेंगे. कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा?
3: तो अभी जैसे मैंने प्रोडक्शन का स्टार्ट किया है कि मुझे अपना जुनून समझ लो इस चीज के लिए कि सेंटर को आगे लेके जाना है. कम्युनिटी को जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे उनके लिए मैं काम खुद लेके आना है और कुछ लोगों से हटके मुझे करना है इस चीज के लिए. तो अभी जैसे मैंने स्कूल का ऑर्डर लिया था उन्होंने इसे कम्प्लीट करके दिया पर मुझे वहां पर सबसे ज्यादा चैलेंज क्या आया, एक तो क्वालिटी में कोई वो नहीं है. चैलेंज क्या आया, एक तो कपड़े का GSM का बहुत दिक्कत है मुझे उस चीज के लिए जो उनका रेट है. अगर मान एक शर्ट का रेट मुझे 145 रुपए देते हैं तो कट टू पैक में 145 में उनको कई बार दे पा रही हूँ कई बार नहीं दे पा रही हूँ कि क्वालिटी में उस चीज क्या हो जाएगी. वो कपड़ा जो दिखा रहे हैं उस चीज के लिए ये हमें कपड़ा चाहिए तो उस चीज के लिए मैं मार्केट में ट्राई कर रही हूँ, मार्केटिंग में देख रही हूँ सब चीज के लिए उसमें मुझे काफी दिक्कत आ रही है उस चीज के लिए.
0: मुझे लगता है इस टाइप के चैलेंज यदि हम अच्छी क्वालिटी देना चाहें, अच्छी क्वालिटी मीन्स फैब्रिक अच्छा देना चाहें, अच्छे स्टिचेस देना चाहें तो बट जो बाय करने वाला है उसको उसके कॉस्ट में फिट नहीं होता है. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट कस्टमर है या कैसा कस्टमर है. फर्स्ट कस्टमर यदि है और यदि आप अपना काम उसमें प्रूव करना चाहते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है स्टार्टिंग में नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करना चाहिए.
3: पहला ऑर्डर में नो प्रॉफिट नो लॉस में.
0: सेकंड आपको उस कस्टमर को ये भी शेयर करना है कि सी मैं अभी आपको इतनी क्वालिटी में इतनी कम कॉस्ट में दे रही हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नहीं दे पाऊँ, मेरा ये कॉस्ट है क्योंकि आपको अपना वैल्यू खुद ही शो करना. जब तक आप अपना वैल्यू नहीं शो करेंगे और शो करना नहीं है वो आपके गाउन में अपना दिखेगा वो वैल्यू क्वालिटी आपके गाँव में देखेगा 100% वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपके पास. और मैं बहुत सारी ऐसी चीजें GSM के अकॉर्डिंग आपको देखा तो इसमें सबसे मेन चीज है मार्केट में आप रिसर्च कीजिए, मार्केट में आप सर्वे कीजिए. इतने टाइप के आपको मार्केट्स का यदि आपको नॉलेज होगा अच्छे से
3: एक महीने पूरा सर्च किया है मार्केट को गांधीनगर यहाँ तक की कपड़े की क्वालिटी को बड़े दुकान पे मैंने जाके जो आपका मैटी है स्पन है उसकी क्वालिटी को पहले वो क्या था कि मुझे स्पन और मैटी में फर्क नहीं पता लगा. इवन दुकानदार को भी फर्क नहीं पता लगा. एक शॉपर ने ही मुझे बताया कि मैम आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं. उसने मुझे दोनों कपड़े को जला के दिखाया. मैटी जला तो एक राख बन गया, जब स्पन जला तो चिपक गया आपस में. तब मुझे जो कपड़े का जीन्स की समझ में आया उस टाइम पे.
0: बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे अभी जैसे मैं आपने शेयर किया बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. जैसे अभी आपने 90 डेज का कोर्स किया है तो 90 डेज के कोर्स में बहुत सारी चीजें हम लोगों के लिए सिखा पाना मुश्किल होता है. तो दैट्स व्हाई चीजों के लिए जो है 6 मंथ के कोर्सेज, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज बने हैं. उसमें आपको नॉट स्विंग टेक्सटाइल कपड़ा कैसे बनता है, फैब्रिक साइज क्या होता है, आपका पैटर्न मेकिंग क्या होता है, गार्मेंट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होता है. तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको ये बेसिक एजुकेशन में आप लर्न कर सकते हैं. और इन केस आपको कुछ इस टाइप के हर्डल्स आते हैं तो बिल्कुल बहुत पास में ही मेरा इंस्टीट्यूट है 44 सेक्टर में अपना ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर, एज ए गाइडेंस के लिए आप वहां भी आ सकते हैं. और किसी बच्चे का हो कोई सोल्यूशन कुछ पूछना चाहता हूँ, कोई क्वेरी हो? कुछ क्वेरी नहीं है तो मुझे लगता है कि क्वेरी नहीं है तो आप लोगों ने आज तक अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया कि आप करना क्या चाहते हैं. जब मेरे पास बच्चे आते हैं डे वन मैं उनकी ओरिएंटेशन लेती हूँ और डे वन ही मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन बच्चों के सामने रख देती हूँ और वेरी फर्स्ट डे मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको करना क्या है. नेक्स्ट डे मुझे क्लास में बताना, क्योंकि आपने किस चीज में क्या ज्वाइन जो भी किया है किस पर्पज से किया है। जैसे अभी मैम ने भी कहा कि यदि आप यहाँ पर सिर्फ अपनी हॉबी पूरा करने के लिए आप पोस्ट कर रहे हैं तो सॉरी इस टाइप की सीट्स आपने मुझे मिलेगी। तो सबसे फर्स्ट आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपने कैरियर में करना क्या है। आपका कैरियर सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक सिर्फ सूट सलवार स्टिच करना है, नो, आप उससे आगे सोचिए। आप अपने पैरों पे कैसे खड़े हो सकते हैं, अपने आप को कैसे आप अर्न मनी अर्न कर सकते हैं, अपनी फैमिली को कैसे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, है ना। तो वो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो देट मीन्स आपने अभी तक नहीं सोचा।
2: एक्चुअली मेरे दो बच्चे हैं, मैं इसी वजह से घर से ज्यादा निकल नहीं पाती। तो इंस्टीट्यूट में ये एलईडी इंस्टीट्यूट जब मेरे बिल्कुल करीब है तो मैं दो घंटे लगा रहती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते तो मैं दो घंटे लगा रहती हूँ। लेकिन अभी जैसे एग्जाम हो गए तो मैं घर की घर पे मैं चाहती हूँ कि जो भी काम हो मेरे घर पे आके मैं घर पे बैठ कर सकती हूँ, क्योंकि घर पे संभालना और मेरी एक्चुअली में छोटा मोटा बुटीक भी खोल रखा नहीं घर पे, तो थोड़ा बहुत आता है वो मैं करती हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं साथ ही हूँ कई बार दो तीन घंटे फ्री रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ घर पे कोई ऐसा काम आए कि मैं घर पे बैठ के आराम से कर
0: सकती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहाँ तक फ्रीजर बैठी फीलिंग का बात है या मूवमेंट की बात है, इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग मैम, हम लोग सब उस चीज को फेस करते हैं। बट मुझे लगता है एज ए वुमेन हमें ये मेंटेलिटी को निकालना पड़ेगा कि कोई काम हमारे घर चल गया, हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। यदि आपको आगे बढ़ना है तो ठीक है, आपके टाइम आपके घर पे कुछ टाइम के लिए आ जाएगा, आपको आप उससे मनी भी अर्न करना शुरू कर देंगे, लेकिन कब तक और कितना? आपको आगे बढ़ने के लिए आगे निकलना ही पड़ेगा। घर बैठे चीजें नहीं मिलेंगी, अब वो आपको देख रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चों को सेट करें, है ना, कैसे आप सेटिंग करें। वो ऐसे यही हम लोगों का मेन वुमेन का मैनेजमेंट होता है, हमें घर भी देखना है। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, अभी यदि आप मेरी बात करते हैं तो मेरा भी जो है थर्ड क्लास में बच्चा पढ़ता है, मैं भी अपना बच्चा भी संभालती हूँ, अपनी फैमिली भी संभालती हूँ, और इधर आकर कम से कम मेरे पास 300 के आसपास स्टूडेंट हैं, उनको मैनेज करना, क्लासेस मैनेज करना, बाहर जाना, इंडस्ट्री में जाना, एज ए मैं आप लोगों के पास भी यहाँ शेयरिंग हमें ऐसे भी जाना पड़ता है। तो ऐसे अपने आपको आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी बाउंड्रीज से निकलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हर टाइम आपके घर में ही सब चीजें आए, थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा यदि आपको आगे बढ़ना है। मीनवाइल आप अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं घर रहकर, जितना अपने स्किल को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्किल को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है? दृढ़ निश्चय, इसके अलावा दृढ़ निश्चय तो बहुत छोटी चीज है ना,
2: प्रैक्टिस करके।
0: यस, आप अपना कोई भी स्किल है जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लाउज स्टिच किया, एक दिन में आपने 3 घंटे में स्टिच किया, उसको दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपका टाइम कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है। तो वो आप जब बार बार प्रैक्टिस करके अपना क्वालिटी और टाइम को, यदि आप क्वालिटी बढ़ाना है आपको और टाइम कम करना है तो आपको स्किल इम्प्रूव होता है ना। तो स्किल को आपका स्किल ही ऐसा है जो उस स्किल को लेके आप अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। इस बेटे लास्ट में आपको कोई है इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं, आप कुछ पूछना आपको नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पूछना है। इधर से पीछे मैं तो अपने बच्चों को यू नो हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देती हूँ, यदि वो नहीं भी आते मैं बुलवाती हूँ उनसे। बोलना बहुत जरूरी है, अपनी चीजों को बताना जरूरी है, हो सकता है कुछ आपको बेनिफिट हम लोग दे पाए, कुछ आपको हो सकता है गाइड कर पाए। हाँ जी, ये
2: फैशन डिजाइनर बनना है, बट मैं उसको ये नॉलेज नहीं है कि मतलब आगे क्या करूँ, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, और उसका कॉस्ट क्या रहेगा, उसके चार्जेस क्या होंगे, मतलब इन चीजों के बारे में अभी तक मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। तो
0: वैसे आपके मन में कुछ आया कि मुझे फ्यूचर में ये करना है तो क्या करते हैं? घर में बैठे बैठे अपने दिमाग में उस चीज को रखते हैं या उससे रिलेटेड आगे पूछना शुरू करते हैं? और आई थिंक आप अभी ये क्वेश्चन कर रहे हो, अभी तक आपको कम से कम 10-12 इंस्टीट्यूट छान मार देते हैं। गाँव में काफी सारे इंस्टीट्यूट है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर आप अपने इस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। डिग्री प्रोग्राम भी है, डिप्लोमा प्रोग्राम भी है. डिग्री प्रोग्राम में आपका जैसे हम लोगों के इंस्टीट्यूट में है बैचलर वोकेशनल इन फैशन डिजाइनिंग रिटेल, तो ये 3 ईयर का प्रोग्राम है. 3 ईयर प्रोग्राम्स में आप फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. फैशन डिजाइनिंग को लोग सिर्फ अच्छा दिखने में आई थिंक सोचते हैं, बट फैशन डिजाइनिंग में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें. कपड़ा कैसा बनता है, कैसे उसकी वीविंग होती है, कैसे उसको कलरिंग होती है, कैसे उसकी डाइंग होती है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज हो गई, आपकी बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है. तो जाकर यू नो तो भी प्रोडक्ट आपका बनता है. तो इसमें फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ आपका एक मैन्युफैक्चरिंग डिप्लोमा कोर्सेज भी है, वो भी बहुत ज्यादा आजकल सबसे ज्यादा. यदि मैं स्ट्रेंथ बोलूँ मेरे इंस्टीट्यूट में तो सबसे ज्यादा जो मेरे पास स्ट्रेंथ आती है दैट इज EMT कोर्स के लिए आती है. EMT मीन्स अपैरल मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी. मीन्स सबसे ज्यादा यदि जॉब अपॉर्चुनिटी की बात यदि हम गारमेंट इंडस्ट्री में करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है इसमें हमें 100% बच्चों को हम प्लेसमेंट दे पाते हैं. बट यदि फैशन डिजाइनिंग में जब बच्चे करते हैं हमारे पास तो सबसे ज्यादा सर हम हर्डल्स करते हैं. या तो बच्चे अपने बुटीक ओपन कर सकते हैं या फैशन स्टूडियो ओपन कर सकते हैं, बट एज ए डिजाइनर यदि इंडस्ट्री में वो जाते हैं तो वहां पर बहुत कम पोस्ट होती है एज ए डिजाइनर के लिए. तो यदि आप डिजाइनिंग यदि अपना बुटीक अपना फैशन स्टूडियो या फिर इस टाइप का कुछ अपना डिजाइनर ब्रांड ओपन कर सकते हैं तो आप इस लाइन में जा सकते हैं. अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बहुत लार्ज स्केल पे जो है इसमें काम हो रहा है, आप इसमें भी आप जा सकते हैं. तो यदि आप गुड़गांव सेंटर में करेंगे तो इधर IIFD है, विंकर इंडस्ट्री है, आंसर यूनिवर्सिटी है, इधर पैराग्रेन डिजाइन सेंटर है, वो भी मतलब आप सर्च करेंगे मिल जाएगा. इवन काफी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहां पर फ्री कोर्सेज भी नॉट फ्री स्पॉन्सर्ड कोर्सेज CSR के अंदर जो कोर्सेज आते हैं वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब पेड अनपेड दोनों.

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर लोकतंत्र के सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका पर। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार लोहानी, पंचायती राज मंत्रालय में अपर सचिव। लोहानी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: सभी श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार।
1: लोहानी जी, सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं और लोकल लेवल पे जो गवर्नेंस होता है वो आज कितने अहम और कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे इस लोकतंत्र में। तो सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे कि आप हमें पंचायती राज संस्थाएं जब से शुरू हुई और उनकी जो यात्रा है अभी तक की, उसे लेकर के हमें बताएं कि इसका इतिहास कैसा रहा है।
2: भारतीय संविधान में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 40 में लिखा हुआ था कि स्टेट्स विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करेंगी, उनको पावर देंगी ताकि वो यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के तरह फंक्शन कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल इतना ही प्रावधान दिया था पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, किंतु इसकी जब तक विस्तृत व्याख्या नहीं की जाएगी तब तक पंचायती राज सिस्टम को सेटअप करना मुश्किल था। तो इसलिए 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, संविधान का 73वां संशोधन हुआ, जिसमें एक आर्टिकल 243 ऐड किया गया इन पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल के थ्रू पंचायती राज व्यवस्था की व्याख्या की गई, जिसमें बताया गया कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होंगे। इसके अलावा ग्राम सभा को स्वीकृति मिली कि ये इट विल बी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और इलेक्शंस की बात की गई, इलेक्शंस में रिजर्वेशन की बात की गई, जिसमें एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन और एक तिहाई रिजर्वेशन महिलाओं के लिए इसकी व्यवस्था की गई। और यह भी बोला गया कि यदि स्टेट चाहे तो इसको 1/3 को 50% तक बढ़ा सकता है। टर्म की घोषणा की गई कि हर एक इलेक्टेड बॉडी 5 साल तक के लिए रहेगा। इसके बाद इनको पावर दिया गया कि ये आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के ऊपर कार्य करेंगे। इनको टैक्स कलेक्शन करने का पावर दिया गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन करने के बारे में बताया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन करने के बारे में बताया गया ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। और 29 सब्जेक्ट्स जो कि पंचायत को ट्रांसफर करने हैं उसके सब्जेक्ट्स की लिस्ट बताया गया। तो एक बार जब एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तो उसके बाद एक पंचायती राज व्यवस्था की विस्तृत रूपरेखा तैयार हुई। उसके बाद स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में के थ्रू स्टेट को बताया गया कि आप अपने स्टेट में एक्ट एंड रूल पारित कीजिए ताकि इस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इसी तरह पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ और उसके बाद सारे स्टेट्स ने एक्ट बिल्स पास करने शुरू किए।
1: लोहानी जी, हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद कई सारी ऐसी संस्थाएं स्थापित की गई जो आधुनिक भारत के निर्माण में जिसने अहम भूमिका निभाई है, जिसमें कि पंचायती राज संस्थान एक ऐसी संस्था है जो कि खास करके ग्रामीण इलाकों में और स्थानीय निकायों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। आपने भी जैसा अभी बताया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि किस तरह से ये काम करके हमारे प्रगति को, हमारे विकास को आगे बढ़ा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये कितना अहम भूमिका निभा रहा है पंचायती राज संस्थाएं, खास करके जब हम बात करते हैं कि लोकल गवर्नेंस, स्थानीय निकायों की बात करते हैं, तो उन्हें मजबूत करने में ये किस कदर और किस हिसाब से ये भूमिका निभा रहा है।
2: जैसा मैंने बताया कि सारे स्टेट्स ने अपने एक्ट्स और बिल्स पास किए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सभी जगह सेटअप हो चुका है, इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे होती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ। उसके बाद पंचायती राज जो कानून बने स्टेट्स के, उसमें रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी व्याख्या की गई। पंचायतें भारत सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीमों के जो गाइडलाइन बने उसमें पंचायतों की भूमिका के बारे में भी वर्णन किया गया है, कैसे बेनिफिशियरी सिलेक्शन हो या प्रोजेक्ट का सिलेक्शन हो या प्रोजेक्ट का अप्रूवल हो, ग्राम सभा ग्राम पंचायत में कैसे पारित किया जाएगा उसके बारे में डिटेल गाइडलाइन आई। सर्विस डिलीवरी का हब बना है पंचायती राज संस्थान, पर्टिकुलरली ग्राम पंचायत में ढेर सारे पावर्स फंक्शंस डेलीगेट किए गए ताकि ग्रामीणों को कई सारी सुविधाएं ग्राम पंचायत स्तर पर ही प्राप्त हो सके। डिजिटल टेक्नोलॉजी का विस्तृत उपयोग किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन सर्विसेज भी पंचायत दे सके। उसके अलावा जो एक था कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बारे में जो पंचायतों को दायित्व दिया गया था, उसमें ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जिला परिषद स्तर में एनुअल प्लान, वार्षिक प्लान तैयारी होता है और उस प्लान के मुताबिक कार्य भी किए जाते हैं। तो जो जो प्रावधान दिए गए थे अलग अलग स्तर पे उसका बाय एंड लार्ज सारे स्टेट्स में अब उसका पालन किया जा रहा है।
1: लोहानी जी, हम जानते हैं कि खास करके पिछले 13 वर्षों में केंद्रीय सरकार ने ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो कि भारत के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाया है। और जहां तक पंचायती राज संस्थाओं का सवाल है तो हम इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, खास करके तब जबकि पंचायती राज संस्थान आम आदमी की सहूलियत, आम आदमी को मजबूत करने से जुड़ा हुआ हो। जहां तक आम आदमी का सवाल है और खास करके ग्रामीण इलाकों में अगर हम बात करें तो पंचायती राज संस्थानों ने हमारे इस कॉज को या इस फ्यूचर को जिसे कहते हैं कैसे इसको फर्दर करने में अपनी भूमिका निभाई है?
2: जैसे मैंने बताया कि पंचायतों को यदि काम करना है तो उनके पास तो एक तो आर्थिक व्यवस्था होनी जरूरी है, उनके पास फंड होने जरूरी है। तो इस संदर्भ में यदि आप देखें लास्ट 12-13 सालों में, उसके पहले जो पंचायती राज संस्थाओं को जो फंड ग्रांट दिए जाते थे जनरली वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट होता है, फिर स्टेट अपने स्टेट फाइनेंस कमीशन ग्रांट देती है। जहां तक सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट का सवाल है जो कि केंद्र सरकार देती है, पिछले 13 वर्षों में यदि आप देखेंगे 2010 से 15 के बीच जो 13 फाइनेंस कमीशन के पीरियड का, उस पीरियड का आप देखेंगे करीब 65,000 करोड़ डिवॉल्व किया जाता था पंचायतों को, जो कि 15 फाइनेंस कमीशन जो कि 2021 से 25 तक का काल था उसमें 2,35,000 करोड़ दिया गया। 16 फाइनेंस कमीशन जो कि 2025-26 से 31 का पीरियड है उसमें 2,35,000 से बढ़ाकर 4,35,000 किया गया। तो कई 7-8 गुना वृद्धि हुई है जो पैसे पंचायत को जाएंगे, जो ग्रांट्स पंचायत को जा रहे हैं। पैसे आएंगे तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और उसके लिए हमने बहुत विस्तृत रूपरेखा तैयार की है कि कैसे पंचायत अपनी प्लानिंग कर सकेंगे। प्लानिंग में हमने 9 थीम के बेसिस पे प्लानिंग किया है ताकि महिला बाल हितैषी पंचायत बनाए, महिला हितैषी पंचायत बनाए, अपना वाटर कंजर्वेशन में काम कर सके, सैनिटेशन में, ड्रिंकिंग वाटर में काम कर सके। इस तरह हमने प्लानिंग को काफी स्ट्रीमलाइन किया है ताकि अलग अलग क्षेत्रों में वो अपनी योगदान दे सके। हम रेगुलर बेसिस में पंचायतों के साथ, पंचायती राज संस्थाओं के साथ वर्कशॉप्स करते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के इनिशिएटिव लिए हैं ताकि उनकी अपनी कैपेसिटी टू डिलीवर बढ़ सके। हमने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके हमने अच्छा सा एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ERP सिस्टम है, जो इतने जो फंड जाते हैं उनकी ठीक मॉनिटरिंग हो सके, फंड ठीक से खर्च हो सके, उनकी ऑडिटिंग हो सके, अकाउंटिंग हो सके। हमने सारी व्यवस्था तैयार की है ताकि पंचायतें ठीक से फंक्शन करें, सर्विस डिलीवरी ठीक से कर सके और गांव के लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके।
1: जी लोहानी जी, पंचायती राज संस्थाएं किस तरह से हमारे अगर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात करें तो पावर डायनेमिक्स को कैसे इसने बदला है?
2: पंचायती राज व्यवस्था की बात होती है तो हम डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात करते हैं। विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जहां पे डिसीजन है केंद्र में ना होके कि राज्य में ना होके गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे। इसके लिए जो अलग अलग गाइडलाइंस बनी है, जैसे फाइनेंस कमीशन ग्रांट जो इतना पैसा जा रहा है कि जो जितनी प्लानिंग होती है वो पंचायत स्तर पे ही होती है। वहां पे ग्राम सभा बैठती है, ग्राम सभा डिसाइड करती है कि अपने गांव के विकास के लिए किस तरह के काम लिए जाए। तो इसमें ऊपर से कोई चीज थोपा नहीं जाता, गांव के लोग खुद ही डिसाइड कर पाते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग स्कीम्स में ग्राम पंचायतों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कई जगह तो फंड भी दिए जाते हैं ताकि इम्प्लीमेंट, जैसे पहले नरेगा बोल के एक स्कीम थी जो कि जी राम जी में कन्वर्ट हुआ, उसमें भी 50% ग्रांट पंचायतों के थ्रू इम्प्लीमेंट होता था 50% काम। और कई सारे स्कीम है जैसे हमारे पेंशन स्कीम है या और भी कई सारे स्कीम्स है, हाउसिंग स्कीम है, सारे स्कीम्स में जो बेनिफिशियरी सिलेक्शन है उसकी दायित्व पंचायतों को दी गई है, ग्राम सभा को दी गई है। मैं तो ऐसे कई कम से कम 10-15 ऐसे स्कीम का मैं नाम बता सकता हूँ जिसमें पंचायत का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। इससे जो पहले होता था कि स्टेट से एक लिस्ट चली गई कि क्या प्रोजेक्ट लेने, या डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक लिस्ट चली गई, या हमारे सीनियर पॉलिटिकल फंक्शनरीज कुछ सजेशन दे दिए, वो अब ना होके पंचायत स्तर पे सारे स्कीम फाइनल होते हैं, प्रोजेक्ट फाइनल होते हैं, बेनिफिशियरी सिलेक्शन होते हैं। बिकॉज ये जो गांव में है पंचायत में, उन्हें पता है उनको अपने गांव के लिए क्या काम करना है, कौन से बेनिफिशियरी है जिनको ज्यादा सरकारी सहायता की जरूरत है। तो पूरा पावर डायनेमिक्स बहुत चेंज हुआ है और ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है पिछले 10-15 सालों में, और ये आप देखेंगे भविष्य में और अधिक से अधिक पावर्स ट्रांसफर होंगे, फंक्शंस ट्रांसफर होंगे पंचायतों को।
1: पावर डायनेमिक्स की बात हम कर रहे थे, हम ये भी जानते हैं कि कोई भी संस्था हो, कोई भी राष्ट्र हो या प्रदेश हो या स्थानीय निकाय ही हो, अगर हम महिलाओं को उसमें शामिल नहीं करते हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि हम पूरी तरह से विकसित या पूरी तरह से हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में लोहानी जी, आप हमें कृपया बताएं कि किस तरह से महिलाओं की भागीदारी हो रही है जहां तक पंचायती राज संस्थाओं का सवाल है।
2: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा मैंने बताया, संविधान में एक तिहाई रिजर्वेशन महिलाओं के लिए करने का प्रावधान है
1: जी,
2: जबकि आपको प्रसन्नता होगी ये सुन के कि एक्चुअल में आप देखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 48-49% महिलाएं हैं। इसका मतलब है कि इवन जो सीटें रिजर्व नहीं है उनमें भी महिलाएं बढ़ चढ़कर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है और चुन कर आ रही है। कई राज्यों ने अपने रिजर्वेशन जो 33% उसको बढ़ा के 50% तक ले आया है। इससे तो महिलाओं को एक अवसर मिल रहा है लीडरशिप पोजीशन में काम करने का। दूसरा ये भी हमने देखा है, हमारा अपना अनुभव रहा है कि जहां पे महिलाएं नेतृत्व वाली पोजीशन में है, जहां पे वो लीडरशिप पोजीशन में है, ग्राम सभा में जब महिलाएं सरपंच चेयर कर रही है तो वहां पे आप देखेंगे महिलाओं की संख्या ग्राम सभा में पार्टिसिपेशन उनका बेटर है। ग्राम सभा में महिला और चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज पे ज्यादा डिस्कशन होता है, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में ज्यादा चर्चा होती है ग्राम सभाओं में। वहां पे जो आशा वर्कर है, एएनएम वर्कर है, आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, महिलाएं होती है उनके साथ पंचायत का जो कोऑर्डिनेशन है बेटर होता है जहां महिलाएं होती है। वहां पे जो महिला हितैषी या बाल हितैषी जो एक्टिविटीज है अच्छे प्रकार से इम्प्लीमेंट होती है। तो महिलाओं का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और हम महिलाओं को लीडरशिप क्षमता को और बढ़ाने के लिए हमने उनके लिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमने शुरू किया है जो उनके लीडरशिप क्वालिटीज, उनके जो एस्पेक्ट है पार्टिसिपेशन के लिए और थोड़ी जो घर में रह जाती है जो शुरू में हिचक होती है उनके हिचक दूर करने के लिए हमने स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल उनके लिए डेवलप किया गया है। उनको हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन उनका पंचायती राज व्यवस्था के साथ हो सके।
1: और महिलाओं के साथ लोहानी जी, हम युवा को भी नहीं भूल सकते हैं। आपने ग्राम सभा की बात की तो ग्राम सभा में युवाओं का काफी बढ़ चढ़कर योगदान रहा है। हम जानना चाहते हैं कि युवाएं किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं।
2: युवाओं का पार्टिसिपेशन ग्राम सभा में होना बहुत जरूरी है क्योंकि नवयुवकों के साथ नई ऊर्जा का संचार होता है, वो नए जनरेशन भविष्य के बारे में सोचते हैं। हमने देखा है कि जहां युवा ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं वहां पे ग्राम सभा बहुत वाइब्रेंट होती है। उनके पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने के लिए एक तो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है मॉडल यूथ ग्राम सभा। इसमें हम जो अभी युवा 16-17 साल के है जो कि 11th-12th में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल्स में हमने एक मॉडल यूथ ग्राम सभा, एक मॉक ग्राम सभा का आयोजन कर रहे हैं स्कूलों में, जो कि एक ग्राम सभा होती है जो सारे बच्चे अलग अलग रोल प्ले करते हैं। उनके इस माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, पंचायती राज व्यवस्था की क्या क्षमता है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, गांव की समस्याओं के बारे में जानने का मौका मिलता है ताकि जब वो वयस्क हो और जब वो सिटीजन बने पंचायत के तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग उनकी बेटर हो और वो बढ़ चढ़ कर ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करे। यदि वो चाहें तो पंचायती राज व्यवस्था में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके पीआरआई मेंबर बन सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो कंसेप्ट है कैच देम यंग, वो एडल्ट बनने के पहले ही हम उनको इस व्यवस्था के साथ उनको हम सचेतन करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और ग्राम सभा को वाइब्रेंट बनाए। हमेशा हमारा उद्देश्य रहा और हम इस डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं।
1: लोहानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
0: सुर्खियों में

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं। लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे बाय हुक एंड क्रूक, वेदर दे स्टैंड अलोन, वेदर दे हैव चैलेंजेस, वेदर दे हैव पीपल दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे वॉक थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं? चेजिंग योर गोल्स। हम अपने गोल्स को चेज करते हैं कि हम कैसे उनको फुलफिल करें। तो जब हम अपने गोल्स चेज करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस, तो हमें डिसरिगार्ड द पीपल हु टेल यू इट कैन नॉट बी डन। जो लोग बोलते हैं कि ये तो हवा में बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए। ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर

बस क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है। तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है तो हमारे एम्बिशंस तो है ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे, और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे और नेचुरली रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें। हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है, राइट? होता है ना ऐसे हमारे साथ? और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे। 3 4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप, नो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू, एनी इंटरेस्ट, एनी थिंग इन इट, बिकॉज वी आर नॉट विजनरीज, राइट? दोज हु डिफाइन द गोल्स विद वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन गो अहेड टू देयर लैडर अप। हम बोलते हैं, मतलब कि हम कमिट करते हैं, हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस की तरफ, तो हम somehow we are able to realize our dreams, somehow we are able to ambitiously do the things what we want to do. Do you all agree with me what I have said? Chasing your goals, बिल्कुल ये practical चीजें हैं, मैंने कोई theory नहीं लिखी है यहाँ पे, सारी ये practical day to day हमारी life में हमारे साथ ऐसे ही होता है। तो हम एक स्टोरी छोटी सी मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में, आई विल जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू। सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत। एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे, और अगर उन अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टॉवर है, एंड दे कलेक्टिवली डिसाइडेड कि आज हम टीवी टॉवर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं, राइट? तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में। थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे। कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे ही छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा। मतलब कि दे वर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज। तो 3 4 ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टॉवर तक पहुंच गए, एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टॉवर, ऊपर टॉप में पहुंच गए, एंड दे सेड ओ गॉड इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड, और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टॉवर के टॉप पे पहुंच गए। जब वापिस

0: आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे, जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे और उन्होंने वो दो तीन जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे। और जो भी हमने तो इतना शाउट किया था, मत जाओ, डर रहे थे हम लोग, तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना, वो फ्रॉग कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बहरा था, वो फ्रॉग ही बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं, लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसने आसपास परवाह ही नहीं करी कि क्या हो रहा है, क्या शोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, बस उसके माइंड में तो एक ही था कि मुझे टीवी टावर पे जाना। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसके टर्न है डेफ ईयर टू क्रिटिक्स। तुम सुनो ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा मिशन इतना क्लियर है, तुम्हारा तुम्हारा गोल इतना क्लियर है कि आपको वो कंबाइन करना है। बाकी के दो से पूछा कि तुम्हारा क्या था, मतलब कि तुम कैसे चले गए ऊपर, तो उसने बोला कि हमने ये जो डेफ फ्रॉग था उसको फॉलो किया, बिकॉज हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर ये हमारा लीडर है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम तो इसके पीछे पीछे चलेंगे, तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर। तो हमने तो क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया, रास्ते में हमने किसी की परवाह नहीं करी और हम इसके पीछे पीछे पीछे पीछे चल के ऊपर पहुंच गए इसके साथ। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और फ्रॉग बहुत टिमिड होता है, देखा जाए तो बहुत छोटा सा होता है, तो वो क्या टीवी टॉवर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टॉवर पे मैं चढ़ जाऊंगा, पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है। और दो लोग जो उसके साथ चढ़े वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे। तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना, और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से, बहुत इजी स्टोरी है, और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे। तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई थॉट लेट मी शेयर विद यू। बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको। तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आर बिग गोल्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है, वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स। वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आर प्रोग्रेस। बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और हमारी जो अचीवमेंट है उसको वो ब्लॉक कर देती है। वी ऑलवेज डिस्कस एंड हाईलाइट द हर्डल्स एंड आर ऑब्सेस्ड बाय देम एंड फेल टू ऑब्जर्व द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ अस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जब मैं पढ़ रही हूँ तो सुबह मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रही थी तो ये बहुत फिट बैठती है वहां पे, कि हम हाइलाइट्स करते हैं जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और हम उस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ कि हम हमेशा फेलियर्स की ही बात करते हैं, पर उसमें से एक जो रे ऑफ होप है, जो एक सनशाइन की छोटी सी किरण है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ। तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था, कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है। हम अपने आप को इतना स्ट्रांगली बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए, मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस दिस दैट, पर द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू, राइट? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन द सोल्यूशंस. द साइकोलॉजिस्ट हैव प्रूव दैट व्हाट योर माइंड फोकसेस ऑन दैट टेंड्स टू ग्रो. साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80% जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देते. पर हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें. और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी चेज करना पड़ता है. और अपॉर्चुनिटीज को चेज हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ कि हमें ये करना ही करना है. अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं. ये सारे जार्गन्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना कि हम एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज. अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ खुल रहा है, तीसरा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, हम कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम अपने जो पड़ाव है उनको पार कर लें. सो द प्रॉब्लम्स लुक बिगर, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स. द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर गैप्स को एनालाइज कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन गैप्स को कैसे रिजॉल्व करें, तो हमारे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर्स आर विजन. ग्रेट लीडर्स हैव अ विजन. दे कैन सी इन टू द फ्यूचर. दे हैव अ क्लियर एक्साइटिंग आइडिया ऑफ वेयर दे आर गोइंग एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश एंड आर एक्सिलेंट एट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में पहली दो स्लाइड्स में बताया. ये डेफिनेशन है कि ग्रेट लीडर्स विजन होती है, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसकी. दे कैन सी द फ्यूचर, वो जो मैं रे ऑफ सनलाइट की बात कर रही हूँ. दे हैव अ वेरी क्लियर एक्साइटिंग आइडियाज, उनके आइडियाज बहुत क्लियर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं. एंड दे आर गोइंग वेयर दे आर गोइंग एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, वो उनको सब क्लियर है. एंड दे हैव वेरी एक्सलेंट, वेरी गुड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑल्सो. तो जो लीडर्स हैं उनमें ये सब हुनर है और इन हुनर को शेप देके वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही विजनरी कहलाते हैं. दूसरा क्या है? करेज. वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज. अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से, जमीन से, खड्डे में से निकल के टीवी टॉवर पे क्लाइंब कर गया. Having the quality of courage means that you are willing to take risks in the achievement of your goals with no assurance of success. अब आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ, मैं प्रपोजल लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा. मैं बिल्कुल नहीं डिफाइन कर पाती हूँ. क्या मुझे पता था कोविड आ जाएगा जब हम प्रपोजल लिख रहे थे? पर हमने क्या किया, कोविड में हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी. हम आईसीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम बेटर अचीव कर पाए क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कनेक्ट कर लिया और हमारे कार्यक्रम कहीं पे भी रुके नहीं. तो करेज था कि हम कैसे करें. अभी बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं वो बंद पड़े हैं जो सितंबर 2020-21 में खुलेंगे. बट हम सेंटर्स भी खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं बिकॉज वी आर टेकिंग द रिस्क. वाई रिस्क? रिस्क इज नॉट ओनली फॉर माई ओन जॉब, रिस्क इज फॉर द वर्क द होल ऑल द सेंटर्स ऑफ रीड इंडिया इज डूइंग इन इंडिया. दे आर रीचिंग टू 400,000 प्लस पीपल. उनका क्या होगा? वो काम कहाँ जाएगा? वो गोल तो अचीव करना है हमें, तो वो कलेक्टिव गोल है जो हमें अचीव करना है, तो हम रिस्क भी ले रहे हैं, राइट? और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की. मुझे आज नहीं पता कि रीड इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या होगा, बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे, कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं. क्या है? ट्रस्ट है. क्या देखते हैं? कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं. क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है? कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने. जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं. कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे. इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन, बट हम आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गए. आईटी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है? इमीडिएट नीड्स क्या है? कम्युनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए. इमीडिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स. किसने उनको बोला करने के लिए? हम ही ने बोला. तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया. और कोई ऐसा डोनर नहीं है एक्सेप्ट वन और टू अमॉन्ग 13-14 डोनर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कि किसी ने एक साल में ही हमारे साथ काम करके बंद कर दिया हो. दे ऑल आर कंटिन्यूइंग विद अस. सो बिकॉज देर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ और बिजनेस, एवरी कमिटमेंट यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक एंटेल्स अ रिस्क ऑफ सम काइंड. हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क तो है ही है, पर हम रिस्क को सोच के बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे. हम करके उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, वो हमारा एक्शन है, राइट? तो जब हम कहते हैं वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन, तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हम रिस्क को साथ में लेके चलते हैं, और रिस्क को मिटिगेट करना भी हमें सिचुएशंस सिखाती हैं, राइट? तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर. आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. और आपको नहीं पता, आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था. आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि एक साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे. तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही है, चाहे 2,000 कमाए, चाहे 4,000 कमाए, चाहे 6,000 कमाए, राइट? और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2,000 से 6,000 तक लेके जाए, 6,000 से 12,000 तक लेके जाए. ये कोशिश हमने करनी करनी है. सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है. हम कैसे करें उसको हमें करना है. जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है. इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन. ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस. कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे. क्योंकि हम मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है, इवन बिजनेस में भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस में तुम झूठ बोल सकते हो, जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट? It means that you have the self-confidence and self-awareness to recognize the value of others without feeling threatened. समझ में आया सबको? मतलब कि अगर मैं बहुत ही हलीमी से बात करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, that doesn't mean कि मैं कमजोर personality हूँ या मुझे अपने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका ये मतलब है कि मैं बहुत हलीमी से बात कर रही हूँ, पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ और मैं जो लोग मुझे वैल्यू मेरे में वैल्यू देखते हैं वो तो मेरे लिए थ्रेट नहीं है, पर अगर मेरी वैल्यूज के ऊपर मतलब कि दे आर थ्रेटनिंग मी, तो आई एम नॉट टेकिंग दोज, राइट? तो ह्यूमिलिटी पर्सनालिटी में लाना बहुत जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द रेयरर एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ वन्स ईगो। अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे। पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट? इट मींस दैट यू आर विलिंग टू एडमिट यू कुड बी रॉन्ग, that you recognize you may not have the answers, but it means that you give credit where credit is due, which many people struggle to do. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्लैग तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए। हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ, मैं तो ठीक था, बिल्कुल, मैं तो टीवी टावर पे चढ़ रहा था, अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता, जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टावर पे चढ़ के क्या करेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े, पर उसने क्रेडिट किसको दिया? जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया? जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं श्योर, और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए। लीडर एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं, तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है। और ये अपनी पर्सनालिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं। ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ, ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन, इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट? और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनालिटी ही वही बन जाती है। तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए, और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं। बिकॉज इफ यू हैव दिस ह्यूमिलिटी एज योर पर्सनैलिटी ट्रेट, देन द रिस्पॉन्स इज 100% श्योर, You will definitely get the response. उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। The best qualities में तीसरा आ रहा है ये strategic planning. Leaders have the ability to anticipate trends well in advance of their competitors. Competitors तो हर एक जगह पे ही होते हैं, एनजीओस मशरूम कर रही हैं इतनी, पर हम उनको थ्रेट ना मान के अगर हम उनके ट्रेंड्स को समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करें, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। दे कॉन्टिन्यूअली आस्क बेस्ड ऑन वॉट इज हैपनिंग टूडे, वेयर इज द मार्केट गोइंग, वेयर इज इट लाइकली टू बी इन 3 months, 6 months और 1 year और 2 years। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सब लोग प्रोडक्शन यूनिट्स भी चला रहे हैं और वोकेशनल सेंटर्स भी चला रहे हैं। अब आने वाले टाइम में जो एनजीओ पॉलिसी लेवल पे काम कर रही हैं, उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज सरकार कहती है हमें तो अभी मतलब कि ग्रास रूट्स में काम चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या है, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें, तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है। तो दैट्स वाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले 5 साल से 6 साल से सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है। और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ, तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात करें कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं, कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं, राइट? हम आज के बारे में सोचते हैं और 1 महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस, ओनली द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन एक्यूरेटली एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट्स कैन पॉसिबली सर्वाइव। ओनली लीडर्स विद फोरसाइट कैन गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है, कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं, उनसे हम आगे लोन कैसे, सबसे आगे कैसे स्टैंड करें। तो ये जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? क्या आप लोग मुझे एक पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं दैट यू रिफाइन एंड मेक एज योर गोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेकिंग लीडरशिप ट्रेनिंग्स। दिस इज द प्रैक्टिकल एक्शन विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, राइट? तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, कि आप जहाँ बैठे हो, आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो, उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो, क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे? दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? दे फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द थिंग्स दैट द कंपनी डज बेस्ट इन सेटिस्फाइंग डिमांडिंग कस्टमर्स इन ए कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस। आप किस पे फोकस कर रहे हो? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हो, जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, कभी आपने उनको बोला कि आगे आने वाले टाइम पे देखो, कोविड ने ही हमें सिखा दिया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए। जिनको नहीं आता, दे आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएजुकेटेड, बिकॉज अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे। मुझे पेटीएम नहीं आता था, मैंने पेटीएम सीखा। मुझे बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं आती थी, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखी। बिकॉज बैंक कह रहे थे कि 60+ के लोगों को हम बैंक आना अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं एनकरेज करते। तो टाइम ने मुझे सब कुछ सिखाया। इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज राइट, और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं, दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड राइट। योर एबिलिटी एज ए लीडर टू कॉल द शॉर्ट्स एंड मेक श्योर दैट एवरी वन इज फोकस्ड एंड कंसेंट्रेटेड ऑन द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ देयर टाइम इज एसेंशियल टू द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। मैंने जान के ये बिजनेस लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे बिकॉज हमारा 1/3 फोकस ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्राइज ही है। तो इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माई ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है। ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे राइट। द लास्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन। गेन द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स बाय मेकिंग ए कमिटमेंट टू गेट अलोंग वेल विद ईच की पर्सन एवरी सिंगल डे। रोज आप अपने कनेक्शंस, अपनी नेटवर्किंग, अपने स्टाफ का लाइक यू नो टीम वर्क को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे रिफाइन करें इसको, हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं। आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है 5 है 6 है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन। सी दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। These 5 qualities I have the strength, I can contribute additionally. Do this exercise. This will really help you to do that, right? You always have a choice when it comes to a task. You can do it yourself or you can get someone else to do it for you. Which is it going to be? ये exercise आपको बहुत बहुत help करेगी। मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने, बहुत इम्पोर्टेंट है। विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ठीक है, आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये 7ों पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें, और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर राइट। लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल, हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको। अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 ईयर्स ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज। झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना। इज ऑफन डिफाइंड एज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल। दिस स्टाइल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन बाय रिसर्चर बर्नार्ड एम बास। मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, दीज लीडर्स टेंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड पैशनेट। दे आर नॉट ओनली कमिटेड टू हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल बट ऑल्सो टू हेल्पिंग ग्रुप मेंबर्स फुलफिल देयर पोटेंशियल। ये एक सेंटेंस में मैंने समराइज किया है जो लास्ट 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं एक लीडर की क्वालिटीज के बारे में। अब लीडर की क्वालिटीज तो बता दी कि लीडर को करना क्या है। पहले तो हमने गोल्स भी चेज करे, फिर हमने अपने वो पॉइंट्स भी यहाँ पे हाईलाइट करे बेस्ट क्वालिटीज के। फिर अभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेस्ट है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। इमोशनली इंटेलिजेंट का मीन्स है कि मैं दूसरों के पर्सनालिटी की कदर करती हूँ, उनके थॉट्स की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग आई रिस्पेक्ट दैट। और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है। तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये हमें बहुत ध्यान रखना है। रिसर्च शोज दैट दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हायर होगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन। आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है। तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं हैं। हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं। तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है। द लास्ट स्लाइड इज कि जब हम मोटिवेशन की बात करें, मैंने अभी मोटिवेशन वर्ड यूज करा था, तो मोटिवेशन है क्या चीज? हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि हम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। इट इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट। मोटिवेशन ये नहीं कि हमने दो बात कर दी तो मोटिवेट हो गए हम। हमें उसको एक्शन में कैसे लाना है, अपने बिहेवियर में कैसे लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 पॉइंट्स हैं इसके, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। हम मोटिवेट तो करके हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा। उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम। और परसिस्टेंस जो मैंने बोल रहा था, परसिवेरेंस एक स्लाइड में पिछले 3-4 सेशन में मैंने बात की थी परसिस्टेंस की, हम कितना उसको कंटिन्यूअसली करते हैं चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं। अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट। हर एक इम्पोर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है। बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट, हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को, हम चल रहे हैं, हम 2 मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं अब हम नहीं और भाग सकते। वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो। तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है, राइट। दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या। हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन तीनों पॉइंट से नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो ये बहुत जरूरी है। हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीपल एज दे वर्क टूवर्ड्स गोल। एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की जरूरत है। हेल्प पीपल टेक एक्शन। एनकरेज पीपल टू एंगेज इन हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स। हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं, राइट? हेल्प पीपल अवॉइड अनहेल्थी एंड माल एडेप्टिव बिहेवियर्स। ये दूसरा रिस्क मैं बात कर रही हूँ कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं उसको रोकने की जरूरत है, राइट? बहुत जरूरत है रोकने की, क्योंकि हम हमारा माइंड इतना नेगेटिव भागता है कि हम छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, हमें विश्वास ही नहीं बैठता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टवर्दी हैं, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है यहाँ पे। हेल्प पीपल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स। बहुत इस पे हम बात कर चुके हैं, 10 स्केल फॉर्मूला ही इस पे है। इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 प्रेजेंटेशंस थोड़ी लाइट थी, ये थोड़ी सी मैंने टफ की है। बिकॉज किस लिए टफ की है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको रिट्रेट करूं, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले बात की, फिर मैंने एक लाइट सी स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम नेगेटिव ना सोचें, हम प्रॉब्लम्स को ना फोकस करें, हम उसमें जो एक सूर्य की किरण आ रही है उसकी तरफ देखें और आगे बढ़ें। फिर मैंने बेस्ट क्वालिटीज क्या है लीडरशिप की, उस पे मैंने 7 क्वालिटीज की बात की, विजनरी, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ये एक संस्था के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है। इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है, पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे, राइट? और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है? आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है। एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, राइट? इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी कि हम अपनी पूरी एनर्जीज उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें। दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन। दैट्स ऑल। आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसको, ठीक है? 5 मिनट है
1: यस
0: हमारे पास। हाँ, और ये स्लाइड्स रो हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं। मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा। अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, राइट? आप प्लीज ये करिए, आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे, पर अगर 8 स्लाइड्स है, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे, तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के लिए। आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होएगी और आप एनकरेज फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपने शार्प कर लेंगे अपने विजन को और एक्शन उसी तरीके से लेंगे। ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की, आप करके देखिए। ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इन टू ए डिस्कशन लेवल कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स, आई एम ओपन फॉर दैट।
1: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। ब्लेम करके ही हम अपने अपने अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग।
0: हाँ
1: तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, पर्सनल लाइफ में भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी।
0: बिल्कुल,
1: हमेशा
0: पता
1: कोई
0: है
1: चीज हो
0: इसको
1: जाती है, घट जाती है।
0: बहुत बहुत मायने रखता है ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम ना
1: जी
0: सुनने
1: मैम,
0: की अपनी जो स्किल है ना, उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं। हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं। ये ह्यूमन
1: हाँ जी,
0: बिहेवियर है, टेंडेंसी है। वेरी नाइस,
1: यस
0: कंटिन्यू।
1: मैम, हाँ जी। हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है तो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा। तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में, पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है, एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट, और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें। यही आप बता रहे थे, दिस वाज वेरी नाइस
0: वेरी
1: मैम,
0: नाइसली समराइज
1: थैंक यू सो
0: किया,
1: मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस वेरी वेल। एनीबडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी। मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से। जी मैम, जैसा सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं। आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में, आपका ये एग्जाम्पल देके, और मैंने उसको ना एक ग्रेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3-4 दिन से। मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था, और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता था कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा। बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है, तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पे करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा। वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, रियली थैंक यू मैम। आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो। पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए। तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है। देयर एंड देन यू फाइंड अ सोल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
2: बिल्कुल। और एक चीज और कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे। तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो।
0: बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी। हम
2: जी
0: डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको। हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने के, राइट?
2: यस
0: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है?
2: यस मैम
0: थैंक यू सो मच। और मैं इनकरेज करूंगी अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट? बिकॉज
2: राइट मैम
0: लीडिंग में तो आपको बनना ही बनना है, राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।

0: Sergio Me.
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज के कार्यक्रम का विषय है ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन संबंधी नियम 2026। केंद्र सरकार ने कल इन नियमों को अधिसूचित किया है और ये इस साल 1 मई से लागू हो जाएंगे। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अजीत कुमार और साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप गिरधर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताकि वे इन नियमों की मुख्य बातें और इन पर अपने विचार और राय साझा कर सकें। श्री कुमार और डॉक्टर गिरधर, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: अजीत जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार और विनियमन 2026 क्या है, जिन्हें कल अधिसूचित किया गया था, इसके कुछ मुख्य बिंदु आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल 22 अगस्त 2025 को संसद ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास किया था और उसी के तहत हमने करीब अक्टूबर 2025 में ही एक ड्राफ्ट रूल्स जो है कंसल्टेशन के लिए बनाए थे और ड्राफ्ट रूल पब्लिश किए थे। उसके बाद हमें करीब 2500 स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन आए और हम अब फाइनली रूल बनाकर उसको हमने कल पब्लिश किया है। दरअसल जैसा कि एक्ट में कहा गया कि हम ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरी तरह रोकना चाहते हैं क्योंकि वो सामाजिक परेशानी के रूप में वो उभर रहा था, तो एक्ट के अनुसार 3 भागों में ऑनलाइन गेम्स को बांटा गया, सोशल गेम्स, ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन मनी गेम्स। मनी गेम्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है और सोशल गेम और ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में गेम्स को खेला जा सकता है और उनको खेलने के लिए ही ये रूल्स बनाए गए हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए और उनको खेलने के लिए। इसमें एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का प्रावधान किया है जिससे कि उस ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के द्वारा इस कानून को जो है संचालित किया जाए।
1: अजीत जी, इस अथॉरिटी के बारे में विस्तार से हम आगे बात करेंगे, इसके अलावा और क्या मुख्य बिंदु हैं?
2: इसमें सोशल गेम्स की कैटेगरी में आप अगर चाहें तो आप हमारे पास सोशल गेम को रजिस्टर करा सकते हैं, डिटरमाइन करा सकते हैं। ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जो भी गेम होंगे वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा रिकॉग्नाइज होंगे और उसके बाद वो अथॉरिटी के पास रजिस्टर होंगे। हमने रजिस्ट्रेशन को, डिटर्मिनेशन को पूरी तरीके से सोशल गेम के लिए वॉलंटरी रखा है। अगर आप गेम में कोई भी पैसे का एलिमेंट नहीं है तो आप उसे खिला सकते हैं बगैर किसी रजिस्ट्रेशन और डिटर्मिनेशन के। डिटर्मिनेशन के कुछ फैक्टर हैं जिसके अनुसार मनी गेम अगर है तो वो नहीं खिलाया जा सकता। अथॉरिटी की कुछ पावर्स हैं जिसमें कोड ऑफ प्रैक्टिसेस और जो कोड ऑफ एथिक्स बनाने की बात है। दूसरा, जो बैंक के तरफ से जो ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे उसमें भी जो है सावधानी रखी जाए कि जिस तरीके से बैंक वगैरह किसी भी ऑनलाइन मनी गेम के लिए पैसे नहीं ले सकते, वो ई स्पोर्ट और सोशल गेम के लिए ही बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मनी गेम को पूरी तरीके से खत्म किया गया है और सोशल गेम और ई स्पोर्ट्स के बढ़ावे के लिए और देश को एक गेमिंग हब बनाने के लिए उस तरीके से इस रूल्स को बैलेंस बना के हम लोगों ने पब्लिश किया।
1: अनूप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी अजीत जी ने जो मुख्य बिंदु बताया, इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु आपको क्या लगता है जिससे कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को एक स्ट्रक्चर और एक क्लैरिटी मिली है?
3: जहां गेमिंग की बात आती है, गेमिंग एक ऐसा एरिया था जो बिल्कुल ग्रे एरिया में चल रहा था अभी तक। स्पेशली हम गेम्स को प्रावधान देते हैं, जैसे इसमें 3 कैटेगरी बताई, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जिससे बच्चों का एक लर्निंग कल्चर, एक एनवायरमेंट, एक चीजें समझ में आती हैं। और हम इसको अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो हम लोग इसको बोलते हैं जैसे सिमुलेशंस या इम्युलेशंस के थ्रू हम एनालाइज करते हैं और ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें और नई नई के बारे में जिज्ञासापूर्ण उसको अच्छे से समझ सकें और उस पर कार्यरत हो सके। था वो कहाँ हो रहा था, कुछ ऐसी गेम्स जैसे क्रिकेट या जो कॉमन गेम्स हैं ऐसे, उनकी कुछ एप्स बन गई और वहां पर इन्वॉल्वमेंट हो गई साइबर क्राइम की, इन्वॉल्वमेंट हो गई पेमेंट्स की और चाहे ना चाहे उनसे जबरदस्ती पैसा लिया जाता था, उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता था और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, रजिस्टर हुए जिसकी वजह से, और उनकी कोई अथॉरिटीज नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था जिसकी वजह से कोई भी क्राइम कमिट कर सकता था
1: जी।
3: तो बड़े बड़े जो गेमिंग पोर्टल्स थे, जहां पर हमें ये समझना है कि गेम को गेम की तरह लिया जाए, स्पोर्ट्स की तरह लिया जाए, तो इसमें एक अपारदर्शिता आई है, एक क्लैरिटी दी गई है और जहां पर जिस चीज को रोक लगानी थी, जो कि गलत है, सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट डाल रही थी, उस चीज को रोकना इम्पोर्टेंट, तो ये स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग बना है
1: जी। अजीत जी, कल अपनी प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस कृष्णन ने कहा था कि सरकार ने नियमों के तहत नॉन मनी गेमिंग कंपनीज के लिए लाइट टच रेगुलेटरी अप्रोच को अपनाया है। तो चलिए पहले सुनते हैं कि सचिव श्री कृष्णन ने क्या कहा।
0: पिछले साल जो है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बनी थी और जिसके अंतर्गत ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरी तरह से बैन किया गया और ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इसके लिए कुछ प्रावधान बनाए गए थे। रूल्स मेनली ये है कि अथॉरिटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसमें कौन कौन सदस्य रहेंगे और वो अथॉरिटी अपना काम कैसे करेगी। कोई एक ऑनलाइन गेम को, ये ऑनलाइन मनी गेम है या ऑनलाइन सोशल गेम है, इसका निर्णय कैसे किया जाएगा और एक बार ये डिटर्मिनेशन हो जाता है तो फिर वो गेम का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई वायलेशन होता है तो उसका बैन या उसका सस्पेंशन या उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, उसका विड्रॉल ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी, इन सब चीजों का और ग्रीवेंस मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट करेगा, इन सब चीजों के लिए प्रावधान बनाया गया है नियमों में।
1: जी, आप इस लाइट टच रेगुलेटरी अप्रोच के बारे में विस्तार से बता सकते हैं।
2: देखिए, इसका मतलब ये है कि हमने जो ड्राफ्ट रूल पब्लिश किए थे उसमें हम चाहते थे कि सारे गेम रजिस्टर्ड हो
1: जी।
2: सारे गेम आकर हमारे पास जो है बताएं कि किस तरीके का वो गेम खिलाना चाहते, और हमने ये देखा कि जहां पर पैसे का कोई आदान प्रदान ही नहीं है, जो केवल एक प्योर सिंपल सोशल गेम है, उसको हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी तरफ से इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए हम एक किसी तरह का लाइसेंसिंग सिस्टम या किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाना चाहते थे। हम चाहते थे कि गेमिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिले, भारत एक गेमिंग हब बनने की तरफ बढ़े, इसलिए हमने एक तरीके का एक बहुत ही लाइट अप्रोच लिया है जहां पर ई स्पोर्ट, चूंकि ई स्पोर्ट में पैसे का आदान प्रदान होगा इसलिए हमने उनको जरूर बाध्य किया है कि आप आके हमारे रजिस्टर हो और अपना गेम डिटरमाइन कराए कि आप एक मनी गेम है कि नहीं। पर अगर आप एक सोशल गेम है और आप अगर कोई ऐसा गेम खिलाना चाहते हैं जिसमें पैसे का कोई भी आउटकम नहीं है, जहां पे कोई भी दाव की या जुड़े की बात नहीं है, तो आप उसे खिला सकते हैं, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। पर हमने बैलेंस के लिए ये प्रावधान जरूर रखे हैं कि कोई अगर कंप्लेंट हो या कहीं से सूचना मिलती है कि आपका एक मनी गेम है तो अथॉरिटी सुओ मोटो बेसिस पर उसकी जांच कर सकती
1: है।
2: इस तरीके का इसमें बैलेंस अप्रोच लिया।
1: अनूप जी, जैसे कि अजीत जी ने हमें बताया कि जो नियम बने हैं उसमें एक जो विशेषता ये है कि ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो वॉलंटरी बना दिया गया है, तो इस फीचर को आप कैसे देखते हो? साथ ही एक और फीचर है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि सरकार ने इन गेम्स के लिए लाइसेंस की वैधता को भी आसान बना दिया, खासकर वो गेम्स जैसे कि हम बात कर रहे थे

0: सारी फीचर्स, सारे जो एक्टिविटीज हैं, अगर वो कंप्लाइंट हैं एज पर द नॉर्म्स जो तीन कैटेगरी में जैसे बताया गया, अगर उसमें से अगर कहाँ पे कंप्लाइंट हैं और वो वैध हैं, तो उनको सीधा 10 साल का लाइसेंस भी तो मिल रहा है.
1: जी
0: सो द पीरियड ऑफ दैट लाइसेंस जो है वो सीधा 10 साल के लिए है. यानी एक अच्छी बात यह है कि एज अ यूजर अगर मैं गेम खेलने लगाऊं और अगर मैं उसका गेम खेलने से पहले एक लाइसेंस चेक कर लूं कि उसकी वैधता है और उसके पास 10 साल का है उसका है, यानी ये गेम एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करती है, लेजिटिमेट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम आराम से उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं. तो टेक्निकली आप देखेंगे तो ये एक अच्छी बात है ना.
1: जी
0: हालांकि बहुत सारे गेम्स और जो ओनर्स हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली स्टार्टअप्स हैं, उन लोगों को इन सब चीजें लीगल और टेक्निकल
1: जी
0: कंप्लाइंसेस देख के उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि अभी उनको अपने फीचर्स को वैसा मोल्ड करना पड़ेगा.
1: बिल्कुल
0: बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो अभी अलग तरीके से बन रही थी, किसी भी डायरेक्शंस नहीं थी उनके पास और कैसे भी वो प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें ये नॉर्म्स को लेके अपनी गेम को चेंज करना पड़ेगा, नया वर्जन लाना पड़ेगा, नए तरीके से उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी रजिस्ट्रेशन मिलेगी, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं.
1: अजीत जी, आपने पहले ही जवाब में आपने बात की थी कि इन नियमों के अंतर्गत एक भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण यानी कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन भी होगा, तो ये अथॉरिटी, इसकी क्या भूमिका होगी और ये ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के विनियमन को किस प्रकार से सुनिश्चित करेगी?
2: जी, हम लोगों ने इसमें एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का प्रावधान किया है, जिसमें चेयरमैन जो है वो मेटी के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होंगे, और उसमें अन्य मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, लॉ एंड जस्टिस, फाइनेंस के मेंबर वगैरह होंगे, और इस अथॉरिटी के द्वारा ही इस पूरे कानून को संचालित किया जाएगा. अथॉरिटी की कुछ शक्तियां हैं, जिसमें अथॉरिटी एक गेम्स की लिस्ट भी बनाएगी जो गेम मनी गेम की कैटेगरी में फॉल होंगे. अथॉरिटी इन गेम को डिटरमाइन भी करेगी, अथॉरिटी इन गेम को रजिस्टर भी करेगी, अथॉरिटी कोड ऑफ प्रैक्टिस भी बनाएगी जिसमें गेम को रेगुलेट करने के लिए समय समय पर जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, अथॉरिटी एडवर्टाइजमेंट, अथॉरिटी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए भी गाइडलाइन बनाएगी. तो पूरी तरीके से अथॉरिटी को हमने एक तरीके से शक्तियां भी दी हैं, और अथॉरिटी को हमने एक कंप्लेंट सुनने का जरिया भी बनाया है.
1: जी
2: अगर किसी यूजर को किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म से समस्या है तो अथॉरिटी के पास कंप्लेंट कर सकता है और अथॉरिटी उस पर एक्शन भी ले सकती है. अथॉरिटी एक तरीके से आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ऑनलाइन ऑफिस है, किसी को भी फिजिकली आने की भी जरूरत नहीं है, एक पोर्टल है जिसके जरिए एक ऑनलाइन ऑफिस की तरह ये काम है. तो अथॉरिटी के पास इस पूरे संचालन की शक्ति भी है, और अथॉरिटी के पास जो है कंप्लेंट सुनने की भी शक्ति है, अथॉरिटी के पास समय समय पर जैसे जैसे इस इकोसिस्टम में बदलाव आएगा वो जो प्रैक्टिस गाइडलाइंस जारी करने की भी शक्ति हमें भी दी है.
1: जी अजीत जी, अगला सवाल भी मेरा आपसे ही है कि पिछले साल जब संसद ने ये एक्ट यानी कि प्रॉग एक्ट को पास किया था, तब प्रधानमंत्री ने उसके बाद कहा था कि भारत को गेमिंग, इनोवेशन और क्रिएशन का हब बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में एक बात कही थी, और साथ ही उन्होंने कहा था कि हमारे समाज को ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स के बुरे असर से बचाने की भी उन्होंने बात कही थी जब ये एक्ट पास हुआ था. तो ये जो नियम कल जो नोटिफाई किए गए हैं, इनसे इनोवेशन और उपभोक्ता सुरक्षा के बीच में संतुलन कैसे बनाया गया है?
2: सबसे पहले तो मनी गेम को हटाकर एक तरीके से हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को पूरी तरीके से संरक्षित किया है. दूसरी तरफ हमने सोशल गेम और ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी को हमने एक स्ट्रक्चर देकर उसके बढ़ावे के लिए एक माहौल तैयार किया है, और जैसा कि गिरिधर जी कह रहे थे कि बिल्कुल भी इसका ऑनलाइन गेम का जो एरिया था वो बिल्कुल अनरेगुलेटेड था, तो इसके रेगुलेट होने से इंडस्ट्री को भी एक इंडिकेशन मिला है कि उसे किस डायरेक्शन में बढ़ना है. और ऑनलाइन गेम जो है बनाकर इस देश को एक गेमिंग हब बनाने के लिए इस पूरे रूल में एक तरीके से इकोसिस्टम तैयार करने की शक्ति है, और हम इसके धीरे धीरे इसके उपयोग के बाद देखेंगे कि किस तरीके से ये एक्ट संचालित होता है, और आगे अगर कोई संशोधन की या कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है जो इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए आवश्यक है तो वो भी हम इसमें करते हैं.
1: अनूप जी, आप क्या कहेंगे कि ये जो नियम बने हैं इनसे इनोवेशन और उपभोक्ता सुरक्षा के बीच में किस तरह का संतुलन बना है?
0: देखिए, संतुलन बहुत जरूरी है.
1: जी,
0: बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा इमोशनल, इजिली कनेक्टेड और सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जिसकी वजह से सभी एप्स जो बनाने वाले थे उन्हीं को टारगेट करके उन्हीं से उनका यूपीआई आईडी ले लेना या कोई कार्ड्स लगवा लेना या वॉलेट बना के उसमें कुछ पैसे डलवा के और उनसे प्रोसेस करवाना, ऐसे बहुत सारी गेम्स रही, यहां तक कि कुछ ऐसे भी रही कि बच्चों का दिमाग आप समझिए हिप्नोटाइज हो गया.
1: जी,
0: जैसे ही टेक्निकली वो लोग अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को या उन सबको बुलाते हैं, वहां पर आप समझेंगे जो लोग कनेक्टेड हैं वो अपना माइक, अपना स्पीकर, अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, और वो सब स्पेसिफिक वीपीएन में कनेक्टेड है.
1: जी जी,
0: अब ये टेक्निकली अगर आप समझे तो वीपीएन से कनेक्ट होने का मतलब उनके सारे डिवाइसेस एक्सेस किए जा सकते हैं, उनके

0: प्रोवाइडर्स के थ्रू
1: जी जी,
0: और वही डिवाइसेस कहीं ना कहीं क्राइम करने के लिए भी यूज हो रहे थे। तो बैकएंड अगर आप देखें, टेक्निकल देखेंगे, तो वो आपको बहुत ही बड़ा गैप नजर आएगा। इन सब के लिए ये चीजें होनी बहुत जरूरी थी, इम्पॉर्टेंट थी, और इनको रोक लगाने का तरीका भी यही।
1: जी अजीत जी, जो इंडस्ट्री का इकोसिस्टम के अगर नजरिए से देखें, तो ये जो नए नियम बने हैं, हम अभी इनोवेशन की बात कर रहे थे, हम इतनी ये जो तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री इसकी बात कर रहे थे, तो ये जो नियम बने हैं निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में कैसे मदद करेंगे, खासकर स्टार्टअप्स को किस तरह से ये प्रोत्साहित करेंगे?
2: हम लोगों ने बिल्कुल साफ कर दिया है और हमने सेक्टर्स को बिल्कुल डिवाइड कर दिया। हमने कहा है कि आप मनी गेम नहीं खिला सकते इस देश में, पर बाकी जो दो गेम है, सोशल गेम है, ई स्पोर्ट्स है, उसमें आप इनोवेशन करिए, स्किल डेवलपमेंट करिए, चाहे छोटे स्टार्टअप करें, चाहे बड़ी कंपनियां करें, चाहे, और इस देश में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऐसे देशों से भी आ सकता है जहां पर बहुत अच्छे अच्छे गेम्स की इंडस्ट्री ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है। तो हमने इंडस्ट्री को पूरी तरीके से एक इंडिकेशन और डायरेक्शन दिया है, और ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन के बाद।
1: बिल्कुल,
2: अगर ये इकोसिस्टम थोड़े दिनों में अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चला तो हमें पूरी उम्मीद है वैश्विक स्तर पर भारत एक गेमिंग हब बनके उभरेगा।
1: जी, अजीत कुमार जी और डॉक्टर अनूप गिरिधर आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल होने और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

मधुमक्खी पालन जी हाँ एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हमारे किसानों को कई तरह के लाभ होते हैं। एक तो ये कि जो उनकी फसलें हैं उनमें परागण बेहतर होता है और अच्छी फसल प्राप्त होती है। दूसरा ये कि मधुमक्खी पालन से उन्हें शहद बेचकर लाभ होता है। इसके अलावा कई और भी उत्पाद होते हैं जिनकी बाजार में अच्छी मांग होती है, उनसे भी हमारे किसान आय अर्जित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं और व्यावसायिक दृष्टि से आज के समय में इसकी क्या उपयोगिता है।

0: शहद एक प्राचीन पदार्थ है, बल्कि पत्थरों के बसेरों और जंगलों में रहने वाले लोगों ने जिस मीठे पदार्थ को पहली बार चखा वो शहद ही था। बाद में जब दुनिया ने इसके फायदों के बारे में जाना तो मधुमक्खियों को बाकायदा पालना शुरू किया। आज खेतों के बीच कुछ पेटियां रखकर इन्हें पालने का चलन बढ़ता जा रहा है। मधुमक्खियां सिर्फ शहद ही नहीं देती, बल्कि इनसे मोम, रॉयल जेली, पोपोलिस यानी रालाभ, परागकण और डंक विष भी प्राप्त होता है। ये सभी चीजें इंसान की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। भारत में प्राकृतिक और वनस्पति खेती दोनों में मधुमक्खी पालन को विकसित करने की काफी क्षमता है। यहाँ करीब लगभग 500 तरह के फूलों वाले पौधे पराग और मकरंद के स्रोत हैं। शहद की किस्म इस बात पर निर्भर करती है कि मधुमक्खियों ने उसे किस फूल से चूसा है। जैसे सरसों का शहद, नीलगिरी शहद, लीची शहद, सूरजमुखी शहद, करंज का शहद, मल्टीफ्लोरा, हिमालयी शहद, बबूल शहद, जंगली वनस्पति शहद, मल्टी और मोनोफ्लोरा शहद। भारत में मधुमक्खियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। हमारे किसानों ने इनका लाभ भी उठाया है। 1953 के दौरान देश में केवल 230 मधुमक्खी पालक थे, जिनके पास बक्सों में लगभग 800 कॉलोनियां थीं। तब शहद का उत्पादन बहुत कम था। आज यहां लगभग 25 लाख कॉलोनियां और 2.5 लाख पालक हैं। जंगलों से शहद इकट्ठा करने वाले इनसे अलग हैं। हम इस समय दुनिया कॉलोनियां और 2.5 लाख पालक हैं। जंगलों से शहद इकट्ठा करने वाले इनसे अलग हैं। हम इस समय दुनिया में लगभग 83 देशों को शहद का निर्यात कर रहे हैं, बल्कि 2022-23 के दौरान देश से लगभग 80,000 टन का निर्यात किया गया। भारत में जितना भी शहद होता है उसका आधा निर्यात कर दिया जाता है। फसल उत्पादन में भी मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जानते हैं कि शहद की तलाश में ये एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हैं। इस तरह जाने अनजाने ये परागण का काम करती हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस तरह के परागण से उपज में 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यही वजह है कि बहुत से किसान मधुमक्खी पालकों के बक्से अपने खेतों में रखवाते हैं और बदले में उन्हें कुछ रकम भी देते हैं।
1: इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन।
2: भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
3: खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा।

0: यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
1: इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
2: कृषि स्टार्टअप कृषि दर्शन का वो सेगमेंट है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने चुनौतियों के सामने ना झुकते हुए कृषि के क्षेत्र में कुछ नया किया, कामयाबी हासिल की। इन्होंने नई तकनीक को अपनाया और साथ ही सरकार की योजनाओं का भी भरपूर लाभ लिया। आइए जानते हैं कि आप भी कैसे इनके जीवन से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज के किसान की कहानी।
3: गर्दन तक पानी में डूबा ये शख्स कभी भारतीय वायुसेना का हिस्सा हुआ करता था। 2003 में इन्होंने नौकरी को अलविदा कहा और अपना कारोबार शुरू किया। जिस काम में भी हाथ डाला, कामयाबी में कदम चूमे। फिर एक दिन ये रांची विश्वविद्यालय में मछली विभाग के संपर्क में आए। यहीं पर इनके जहन में मछली पालने का ख्याल आया। इसके बाद इन्होंने आगरा में जमीन लीज पर ली और काम शुरू कर दिया। ये बात 2016 की है। बाद में इन्हें मछली पालन से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी पता चला। इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर इन्होंने सरकार से अनुदान हासिल किया। इनकी मेहनत जल्द ही रंग ले आई और अगले ही साल यानी 2017 में इन्हें आगरा मंडल में मछली उत्पादन का पुरस्कार मिल गया।
4: मछली पालन में पहले भारतीय वायुसेना की नौकरी 2003 में छोड़ने के बाद कई अन्य व्यवसाय किया करने के बाद सब में अच्छा हुआ। उसके बाद जब हम झारखंड में रांची में किसी का यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, वहां पे हम मत्स्य विभाग के भारत सरकार और झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के टच में आए और वहां जो मछली पालन हमने देखा, तो वहां देखने के बाद जब हम अपने आप को फिर वापस आगरा में सेटल किए, तो हमने आगरा में जमीन को लीज पे लेके मछली पालन 2016 में स्टार्ट किया। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो अब भारत सरकार के जो किसानों की आय दोगुनी करने का जो प्लान है, उसमें ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता साबित हो रहा है। मछली पालन के साथ साथ मैं किसानों से यह भी सुझाव दूंगा कि इसके साथ वो अपने डेयरी और पोल्ट्री को भी बढ़ावा दें, जिससे कि उनका ये आय में वृद्धि हो। 2016 में जब मैं आगरा आया, आगरा मत्स्य विभाग से हमें भारतीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे संबंध में पता लगा। हमें काफी सहयोग मिला। उनके सहयोग के वजह से हमें कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान भी दी गई। उसके बाद जब 2017 में जो हमने प्रोडक्शन करके दिया, उस प्रोडक्शन के आधार पे 2017 में हमें फर्स्ट प्राइज आगरा मंडल के लिए दिया गया था, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मछली में। उसके बाद से 2020 में जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के संपर्क में आया तो वहां हमें और अपने कामों में सहयोग बहुत ज्यादा मिला। उनके वहां जाने से हमें पशुपालन से संबंधित जानकारी भी काफी मिली और उन्होंने यह बताया कि यदि आप पशुपालन भी साथ में करते हैं तो मछलियों के जो फीड की समस्या है, जो हम मार्केट पर डिपेंड रहते हैं, उससे हमें हटके जो पशुपालन में गाय के गोबर होंगे, उस गोबर को भी हम डायरेक्ट मछली के फीड के रूप में प्लैंकटन क्रिएट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि उस गोबर का हम अगर वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाते हैं तो जैविक खाद को हम खेतों में यूज करते हैं और उसमें जो केचुआ का प्रोडक्शन होता है उस केचुआ को हम तालाब में भी डाल सकते हैं। इस तरह से 2020 के बाद कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के सहयोग से और उनकी मदद से या उनके गाइडलाइन के तहत हमारी ये जो मछली पालन का व्यवसाय है बढ़ता जा रहा है।
3: आनंद कुमार गिर और साहिवाल किस्म की देसी गाय पाल रहे हैं और गोबर को मछलियों के आहार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनका इरादा गोबर से कंपोस्ट बनाने का है। कंपोस्ट से दो फायदे होंगे, पहला तो ये कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद मिल जाएगी और दूसरे मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में केंचुए। मछलियों को बढ़वार के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और केंचुए में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।
2: तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन।
1: आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की।
0: इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है।
1: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
5: लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया।
1: राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
6: ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತಹ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ।
1: राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

0: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं बासमती धान की उन खास किस्मों की जो कम पानी में भी शानदार पैदावार देती हैं। मौजूदा समय में जल संकट और सिंचाई लागत बढ़ने के कारण किसानों के लिए ऐसी किस्मों को अपनाना न सिर्फ जरूरी हो गया है बल्कि लाभदायक भी। ऐसी ही कुछ प्रमुख किस्में हैं पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, स्वर्ण शुष्क पूसा बासमती 1121, 140 से 145 दिनों में पककर तैयार होती है और इसकी उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। इसका दाना लंबा पतला होता है और इसमें सुगंध भी बेहतरीन होती है। यह किस्म कम पानी वाले क्षेत्रों में भी अच्छा उत्पादन देती है। पूसा बासमती 1509 सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है जो सिर्फ 120 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी खासियत है कि इसमें 3 से 4 बार कम सिंचाई की जरूरत होती है और यह 33% तक पानी बचाती है। वहीं स्वर्ण शुष्क 110 से 115 दिनों में पकती है और 40 से 45 क्विंटल तक उपज देती है। यह किस्म रोग प्रतिरोधक होती है और कम पानी में भी अच्छा विकास करती है। कुल मिलाकर इन सभी किस्मों की खासियत यही है कि ये कम सिंचाई में भी अच्छी उपज देती है और पानी की 3 से 4 बार तक बचत कराती है। इससे आपकी खेती की लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, इस बार बासमती की खेती में इन कम पानी वाली किस्मों को जरूर आजमाएं और जल संरक्षण के साथ अपनी आय भी बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
1: फार्मिंग इंडिया में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एआई एंकर कृष की, जो कि खेती किसानी से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां हमारे किसानों के लिए लेकर आते हैं। तो आइए रुख करते हैं एआई एंकर कृष का।
0: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद जरूरी योजना की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। यह योजना किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देती है। इस योजना के तहत यदि आपकी फसल को बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, कीट या बीमारी से नुकसान होता है तो सरकार आपको बीमा राशि देती है। यहाँ तक कि फसल कटाई के बाद भी अगर बारिश या तूफान से नुकसान होता है तो भी इसका कवरेज मिलता है। लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और जमीन से जुड़ा दस्तावेज या खसरा नंबर। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो इन सभी को स्कैन करके अपलोड करना होगा, और अगर आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो अपने नजदीकी कृषि विभाग, बैंक या सीएससी केंद्र पर जाकर ये दस्तावेज जमा कर सकते हैं। ध्यान रखें, हर सीजन की एक तय सीमा होती है, उसी के अंदर ही आवेदन करें। तो किसान भाइयों, इस बार की फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाएं, समय रहते आवेदन करें, दस्तावेज पूरे रखें और अपनी मेहनत की फसल को आर्थिक सुरक्षा दें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
1: फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए, जो कि हमारे किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। जी हाँ, इससे मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में उन्हें उचित जानकारी मिल पाती है, जिससे वो सही अनुपात में ही पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ लागत कम होती है बल्कि मिट्टी की सेहत भी बेहतर होती है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से जुड़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं।
2: मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है, साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90-95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85-90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8-10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं।
1: तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि दर्शन को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते ये भी बता दें कि आप हमारे ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में और कुछ ऐसी नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

0: सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आकर्षिता सिंह और आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए उचित कचरा प्रबंधन पर। हमारे साथ आज जुड़े हैं टेरी के चक्रीय अर्थव्यवस्था और अपशिष्ट प्रबंधन निदेशक सुनील पांडे। सुनील जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, आज का दिन खास क्यों है?
1: आज का दिन अगर हम देखें तो यूएन एजेंसी जो है वो एज अ जीरो वेस्ट करके मनाती हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी वैश्विक स्तर पे और जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ, वैसे वैसे हम ज्यादा कचरा जनरेट करते गए, और इसलिए जो है कचरा प्रबंधन एक सीरियस प्रॉब्लम हो गया, और इसलिए जो है एक खास दिन इसलिए रखा गया कि आज हम जो है वैश्विक स्तर पे देखें कि सारे देश क्या कर सकते हैं जिससे कि हम कचरा कम से कम उत्पन्न करें और जितना भी हो सकता है उसको मैनेज करें ढंग से।
0: जी, तो आज वो दिन है जब हम बात कर सकते हैं जीरो वेस्ट पर, और भारत ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत कचरा मुक्त शहरों का लक्ष्य रखा है। पिछले कुछ वर्षों में जमीनी स्तर पर आप क्या बड़े बदलाव देखते हैं?
1: जब से स्वच्छ भारत द्वितीय चरण शुरू हुआ है तब से इस पे जो है ठोस कचरा प्रबंधन खास करके इस पे सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जब कचरा हम काफी शहरों में जो हम आम भाषा में बोलते हैं सूखा कचरा और गीला कचरा, जिनको हम अलग करने की मुहिम चला रहे थे, काफी सारे शहरों ने उसको जो है स्थापित किया है अपने यहाँ, और खाली शहर नहीं बल्कि गांवों ने भी जो है इसमें काफी काम करना शुरू किया है। तो सबसे बड़ा हमारा स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य जो था जो हमने अचीव किया है वो है कि सूखे और गीले कचरे को कैसे हम अलग कर सकते हैं और कैसे गीले कचरे को ज्यादा से ज्यादा हम प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हैं, या जैसे खाद बनाना हुआ या जो है उसे बायोगैस बनाना हुआ, और सूखे कचरे को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करके हम रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं।
0: और सर, आज के डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट तेजी से बढ़ रहा है और बहुत बड़ी समस्या बन रहा है, तो पुरानी बैटरी और मोबाइल का सही निपटान कैसे हो और इसमें कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है?
1: कंपनियों की जिम्मेदारी अगर हम ई वेस्ट से जो है संबंधित नियमों को देखें तो वो डायरेक्टली ये बोलते हैं कि एक टर्म उन्होंने दिया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी करके, जिसके तहत कंपनियां जो बनाती हैं इस तरह का ई प्रोडक्ट्स, उनकी जिम्मेदारी ये है कि जब ये कचरे के रूप में परिवर्तित हो जाएं, जब ये यूजफुल ना रह जाएं, तो उनको वापस लेने की जिम्मेदारी जो है हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, या जो बाहर के देशों से मंगा के सामान बेच रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनकी होती है कि वो कैसे इसको कलेक्ट कर सकें और कैसे इसको फिर से रिसाइकिल करके इसमें से जो भी यूजफुल सामान है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें और उसको फिर से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में यूज कर सकें। तो ये जिम्मेदारी उनकी है, और इसके साथ ही उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि जो आम नागरिक है जो ई प्रोडक्ट्स यूज करता है, जब वो वेस्ट हो जाए तो कहाँ उसको डिपॉजिट कर सकता है, कहाँ उसको जमा कर सकता है, वो उसको सेंसिटाइज करें।
0: क्या हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं जो कचरे को ऊर्जा या कीमती संसाधनों में बदल सके?
1: बिल्कुल, क्योंकि जैसे गीला कचरा है, गीले कचरे में काफी नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, और गीले कचरा जैसे हमारे खाने का और फूड वेस्ट और ग्रीन वेस्ट से निकलता है, उसको हम बड़ी आसानी से खाद के रूप में बना सकते हैं, और इसकी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा कोई खास नहीं है, सदियों से किसान ये करते आए हैं और शहरों में भी लोग करते हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास लोकल संसाधन नहीं है कि लोकल रूप में हम खाद बना सकें और जगह इतनी नहीं है, तो बड़े लेवल पे हम इसको बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इंदौर में बड़ा प्रोजेक्ट लगाया सरकार ने 500 टन का, जो है इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लगाए जा सकते हैं जिसमें बायोगैस बने, और जैसे सीएनजी होता है वैसे सीवीजी होता है, कॉम्प्रेस बायोगैस, उस तरह से करके इसको जो है जैसे सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं हम, उस तरह से सीवीजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ियों में स्वच्छ ईंधन की तरह, इंडस्ट्रीज में स्वच्छ ईंधन की तरह इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: हमने देखा है कि पर्यटन के क्षेत्र में भी प्लास्टिक की बोतलों से जो है बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां बनाना और सजाना संवारना शहर को, आप इस क्षेत्र में क्या कहेंगे? जो कलाकार हैं जो प्लास्टिक कचरे से जो है बड़ी बड़ी कलाकृतियां बना रहे हैं, या टूरिज्म को जिससे बढ़ावा मिल रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
1: ये अच्छा वो है स्टेप प्लास्टिक का कचरा, क्योंकि प्लास्टिक का कचरा जो है ये प्रॉब्लम इसलिए करता है, खास करके जिसको हम सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं, कि इसको अगर हम कलेक्ट न करें तो ये नदियों में चला जाता है और जो है वेस्ट के उसमें चला जाता है, उसको जलाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है, नदियों से फिर समुद्र में चला जाता है। तो ये जो हम तरह तरह की चीजें बना रहे हैं डेकोरेटिव आइटम्स प्लास्टिक को इस्तेमाल करके, ये कम से कम ये इंश्योर करता है कि वो प्लास्टिक जो है फेंका नहीं जाए और जो है वो फिर वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित न करे।
0: जो कूड़ा बीनने वाले वेस्ट पिकर्स हैं वो हमारे सिस्टम की रीढ़ हैं। अगर वो ना हो तो शायद हर सुबह हमारे घर का कचरा कौन लेके जाएगा। उनके लिए या उन्हें मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था और सुरक्षित कार्य वातावरण से कैसे जोड़ा जा सकता है वेस्ट पिकर्स को?
1: वेस्ट पिकर्स को अगर हम अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों को देखें तो उसमें सरकार ने यह प्रावधान किया हुआ है कि जो वेस्ट पिकर्स हैं उनको हम मुख्य धारा में कैसे लाएं, और मुख्य धारा में इस तरह से ला सकते हैं कि जैसे जो नगर निगम है उनको जो है घर घर से कचरा उठाने का जो मैंडेट है उसमें एक तो हम उनको यूज करें, उनको रोजगार दें, उनका काम ये हो कि वो घरों से कचरे को उठाएं और ये निश्चित करें कि वो सूखा और गीला कचरा और जो अन्य तरह के कचरे हैं वो अलग अलग हों, और वहां से जो है फिर वो काफी सारे शहर जैसे करते हैं कि जो सूखा कचरा होता है वो उनको दे देते हैं कि आप जाओ इसको बेच दो, तो उनसे उनकी आमदनी भी होती है, और गीले कचरे को वो कहते हैं कि आप जो है या तो बायोगैस संयंत्र पे डाल दो या कंपोस्टिंग संयंत्र पे डाल दो, तो उससे क्या है उनको भी सहूलियत होती है, उनकी भी आमदनी होती है और इनकी आमदनी सिक्योर रहती है और सरकार का काम भी होता है। और काफी सारे शहरों ने ऐसा भी किया है कि जो सूखे कचरा है, सूखे कचरे में जैसे पेपर हुआ, प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, कैन हुआ, तो इसको हम फिर से जो उठा के एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बना रहे हैं, तो उसमें भी हम इनको एम्प्लॉय कर सकते हैं कि वहां जाके इसको फर्दर जो है सेपरेट करें, कागज अलग सेपरेट करें, प्लास्टिक अलग सेपरेट करें, ग्लास अलग सेपरेट करें, मेटल अलग सेपरेट करें, तो इस तरह से जो फर्दर सॉर्टिंग है वेस्ट की मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी पे वहां भी जो है हम जो है अपने वेस्ट पिकर्स को एम्प्लॉय करके गेनफुली यूज कर सकते हैं। काफी सारे शहरों ने ऐसा किया भी है।
0: सिंगल यूज प्लास्टिक आज भी बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, क्या हमारे पास इसके कुछ सस्ते और टिकाऊ विकल्प मौजूद हैं?
1: बिल्कुल, ये प्रॉब्लम बना हुआ है क्योंकि अभी भी जो सिंगल यूज प्लास्टिक हैं, खास करके जैसे पॉली बैग्स हैं या जो है प्लास्टिक के छोटे कप्स हैं जिसमें चाय वगैरह पीते हैं हम लोग जब शहरों में घूमते हैं, तो वो अभी भी पूरे फेज आउट नहीं हो पा रहे हैं, और जो है हम जो है प्लास्टिक की पन्नियों में जो लाते हैं सामान वो अभी भी पूरे फेज आउट नहीं हो पा रहे हैं। इसका सबसे सस्ता विकल्प है जो कि बार बार हम लोग भी बोलते हैं कि कपड़े की थैलियां यूज करें, आप जूट के बैग्स यूज करें, कपड़े की थैलियां यूज करें, और आजकल काफी बार जब हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं तो इसमें कपड़े की थैलियां देते हैं लोगों को कि जिससे लोग जो है प्लास्टिक की पन्नियां ना यूज करें, और सरकार को भी काम करना पड़ेगा इसमें, जो शहरों की सरकारें हैं वो कैसे जो है हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके साथ काम कर उनको सहूलियत देते हुए कैसे वो सस्ता ऑप्शन इस तरह का जो है पेपर कप, पेपर प्लेट्स हैं या जो है जैसे वनस्पति बेस्ड जो है कप्स और प्लेट्स हैं उनको हम कैसे सस्ते मूल्य पे उपलब्ध कराएं जिससे कि वो जो है प्लास्टिक को रिप्लेस कर सके।
0: और सुनील जी, हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण तो कुल्हड़ का है, कुल्हड़ के कप जो है जो आज से नहीं इतने सालों से चलते आए, हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम एक आम नागरिक की तौर पे एक सवाल पूछें कि एक आम नागरिक अपनी रसोई या एक आम नागरिक जो एक दफ्तर में काम करता है वो जीरो वेस्ट की शुरुआत कैसे कर सकता है, मतलब कुछ सुझाव देंगे कि अगर मुझे शुरू करना हो व्यक्तिगत तौर पे जीरो वेस्ट तो मैं कैसे शुरू कर सकती हूँ, ये एक आम नागरिक कैसे शुरू कर सकता है?
1: आम नागरिक जैसे घर में अगर है, हम घर में खाना पकता है तो हम कोशिश करें ये कि जितना जरूरत है हम, क्योंकि खाना पकाते पकाते हमको अंदाज हो जाता है कि हम कितना खाना खा सकते हैं जिससे कुछ वेस्ट ना हो, तो उससे क्या होता है कि फूड वेस्ट में बचत होती है। दूसरा, जो बर्तनों में हम खाना लेते हैं वहां पे हम ऐसे कंटेनर्स यूज करें जो फिर से साफ करके फिर से यूज किए सकते हैं, जैसे स्टील के बर्तन हैं या क्रॉकरी की प्लेट है या इस तरह के कंटेनर ग्लास हैं, और रेदर देन हम जो है जो डिस्पोजेबल आइटम्स यूज करते हैं उनको जो है हम अपनी लाइफ से जो है धीरे धीरे खत्म कर दें। यही ऑफिस में भी है कि ऑफिस में अगर हम डिस्पोजेबल आइटम्स को यूज करना बंद कर दें और जो रीयूजेबल आइटम्स को यूज करना शुरू करें तो ऑफिस में भी इस तरह से जो है बचत की जा सकती है।
0: अक्सर हमने देखा है सुनील जी कि जो पर्यटन वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे कचरा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, वो अक्सर होता है कि प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हैं और चिप्स और इन सबके पैकेट्स पड़े हैं, इन सब चीजों से हम निदान कैसे पा सकते हैं? अगर एक यात्री की बात करें, एक टूरिस्ट की बात करें, तो वो कैसे अपने जीवन में कुछ चीजों को अपना सकता है जिससे जीरो वेस्ट मैनेजमेंट में आसानी हो सकती है?
1: कुछ चीजें हैं जैसे वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल अगर हम जहां तक हो सके अगर अपनी बॉटल खुद जो है स्थायी बॉटल जो है यूज करना शुरू करें, कैरी करें और उसको यूज करना शुरू करें तो धीरे धीरे हमारी आदत में आ जाता है। और जैसे हमारे चिप्स के पैकेट हैं, चिप्स के पैकेट के लिए तो कुछ ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि वो जो क्वालिटी फूड है वो उस तरह की पैकिंग में ही जो है वो सेफ रहता है, तो उसमें क्या है जैसे आपने चिप्स खा लिए और जो पैकेट आपके पास बचा उसको आप एक कपड़े की थैली में अपनी, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो कपड़े की थैली में अपनी गाड़ी में रखो, फिर कहीं कोई वेस्ट बिन आए वहां पे फेंको, या अगर आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो तो भी उसको अपने कपड़े की थैली में रखो जिससे कि जहां पे सरकारी बिन आए वहां फिर आप उसको डिस्पोज करो जिससे कि वो इधर उधर फैला ना दिखे, इधर उधर उसकी लिटरिंग ना हो।
0: सुनील जी, जैसा कि आपने हमें बताया गीले और सूखे कचरे के बारे में, तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि गीला और सूखा कचरा अलग करें। ये छोटा सा कदम पूरे सिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम नागरिक तो समझ ही नहीं पाता। उसको लगता है कि कचरा तो कचरा ही है, चाहे वो सूखा हो चाहे वो गीला हो, और वो आज तक ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
1: होता क्या है कि अगर गीला कचरा हम सूखे कचरे के साथ मिक्स करके फेंकते हैं, तो जो सूखा कचरा है जो आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे दूध की थैलियां हैं, वो दूध की थैलियों में वापस रिसाइकल की जा सकती हैं, या किसी और बकेट में या मग में या इस तरह की चीजों में वापस रिसाइकल की जा सकती हैं। अगर आपने एक बार गीला कचरा उसमें मिला दिया, उसको कंटेमिनेट कर दिया, तो उसकी क्वालिटी जो है खत्म हो जाती है। तो ये हम नहीं चाहते हैं कि जो भी रिसाइकल करने लायक वस्तु है उसको किसी तरह से हम कंटेमिनेट करें। और सूखे कचरे को अगर हम गीले कचरे में मिलाते हैं, जैसे हमने खाद बनाई, तो उसमें पता चलेगा वो पॉलीथीन की पन्नियां पड़ी हुई हैं, तो खाद भी जो है किसान नहीं लेना चाहेगा, या जो भी अपने नर्सरी या फार्म में यूज करना चाहता हो वो भी कहेगा कि ये तो खाद खराब है। तो इसीलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्यों उनको अलग अलग करें, जिससे कि हम जब उनका प्रबंधन करते हैं तो हम उसको जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट में बना सकें।
0: तो कुल मिलाकर हम अपने श्रोताओं को ये बता सकते हैं कि कुछ चीजें डिग्रेडेबल होती हैं, कुछ चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो अगर हम एक दूसरे को चीजों को मिक्स करेंगे तो उससे जो है हमें कचरा प्रबंधन में परेशानी होती है, और कहीं ना कहीं खाद बनने और बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उसको रीयूज नहीं कर पाते। जो ये 3 R's हैं, रीयूज और रिसाइकल, इन पे आप कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम इसका प्रयोग जो है कचरा प्रबंधन के लिए कर सकते हैं?
1: कचरा प्रबंधन की असल में पूरी जो आत्मा है वो एक्चुअली 3 R है, जिसको हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल बोलते हैं। और कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट जो है, कोई भी कचरा प्रबंधन जो है, ये 3 R पे ही निर्भर करता है। सबसे पहले तो रिड्यूस का मतलब ये है कि हम जिन चीजों की जरूरत न हो उन चीजों को संकलित न करें, उन चीजों को न खरीदें न संकलित करें, और उससे क्या होता है कि हम अननेसेसरी परचेजिंग नहीं करते हैं। उसके बाद जिन चीजों को हम रीयूज कर सकते हैं, जैसे हमारा कोई कंटेनर है, उसमें अगर हमने कोई सामान लाया, उस कंटेनर को हम किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हैं बाद में सामान खत्म हो जाने के बाद। जैसे हमारे बेवरेज बॉटल्स हैं या जो है ग्लास बॉटल्स हैं, उनमें जो सामान खत्म हो जाता है, जो कि भारतीय गृहिणियां करती भी हैं और काफी बार चीजों को रीयूज करती हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जो चीजें रीयूज नहीं कर सकते उसको फिर हम वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकल करें।
0: सुनील जी, फैशन के आज के युग में जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, तो आप अननेसेसरी बाइंग पे कुछ कहेंगे? जो एक होता है कि फैशन के दौर में हम दिन पे दिन कपड़े बदलते जाते हैं और हम ये भी नहीं सोचते कि वो कपड़े जो है किस तरीके से वो वेस्ट में जाते हैं और उनका प्रबंधन करने में कितनी मुश्किलें होती हैं, उस पर आप कुछ कहेंगे?
1: हाँ, इसमें हम कोशिश करें, क्योंकि फैशन तो फिर अपनी जगह पे है और ज्यादातर जो लोग हैं वो चाहेंगे कि हम जैसे जैसे फैशन बदले वैसे वैसे भी हम अपने वस्त्र भी बदले। तो उसमें हमको ये ध्यान देना होगा न तो केवल जो फैशन के फैब्रिक बनाते हैं, बल्कि जो यूजर्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं उनको ये ध्यान देना होगा कि हम ऐसे ड्रेसेस बनाएं, ऐसे फैब्रिक बनाएं जो आसानी से जो है रिसाइकल किया जा सके, जिसको कि अगर हम 5-6 महीने के बाद अगर फेंक भी देते हैं तो आसानी से वो रिसाइकल किया जा सके। तो ये ध्यान हमको देना होगा। और उसमें अगर सिंथेटिक है तो केवल सिंथेटिक हो, और कॉटन है तो केवल कॉटन हो, जिससे कि वो बाद में जो है आसानी से रिसाइकल किया जा सके।
0: सुनील जी, मेरा आखिरी सवाल कि जीरो वेस्ट डे पर आप हमारे श्रोताओं को एक कोई विशेष संदेश देना चाहते हैं?
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे सिटीजन हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझें, और जो सरकार नियमों के अधीन कराना चाहती है उसमें वो अपनी भागीदारी भी समझें। जैसे कि सरकार ने मिशन लाइफ वो किया, मिशन लाइफ जो है हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है, तो हम अपनी जिम्मेदारी समझें और प्राउड फील करें कि जो है हमने इसमें जो है अच्छे कचरा प्रबंधन के लिए अपना योगदान दिया।
0: सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी अच्छी ढेर सारी जानकारियां दी जिन्हें वे अपने व्यक्तिगत जीवन में जिनका उपयोग कर सकते हैं, और कहते हैं सम्मानजनक जीवन के साथ एक ऐसे नागरिक बन सकते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं और देश के प्रति जिनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज चर्चा का विषय है प्रारंभ 2026 नए आयकर अधिनियम पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान। चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। शुभमोय, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: शुभमोय, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की मौजूदगी में आज प्रारंभ 2026 अभियान शुरू किया गया। चलिए सुनते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कार्यक्रम के दौरान क्या कहा।
3: द इनकम टैक्स एक्ट 2025 ऑब्वियसली रिप्लेसेस द 1961 एक्ट इन मेकिंग इट सिंपलर एंड फेयर एंड क्लियर विद ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर आल्सो बीइंग गिवन फॉर पीपल टू यूज इट विल सर्टनली सेट द ट्रेंड फॉर इंडिया टू बी सीन एज अ वेरी टैक्स फ्रेंडली कंट्री।
1: तो शुभमोय, ये क्या अभियान है और ये क्यों शुरू किया गया है?
2: आपको जैसे पता होगा कि नए इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रावधान जो लाए गए हैं वो मोर ऑर लेस शुरू होते हैं 2026 के 1 अप्रैल से, यानी कि कुछ ही दिन आगे की बात कर रहे हैं जब ये शुरुआत हो जाएगा, जो ये कंट्री में हम एक नया इनकम टैक्स एक्ट मिलेगा। और ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 से चल रही इनकम टैक्स एक्ट है, उसके बदले में ये नया एक्ट शुरू होगा। तो ये जो नया एक्ट आया है इनकम टैक्स एक्ट का, ये अभी नेचुरली कहा 1961 वो जो चीज था कहा वो, और आज जो हम 21वीं सदी के बीच में आ गए हैं, इंडियन इकोनॉमी का जो रूप है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इनकम टैक्स एक्ट जो नया बनाया गया है उसका ये अभी नया इकोनॉमी को एड्रेस

0: चीजों पर ध्यान देता है जिन चीजों पर पहले हमारे पास कोई इस पर कोई खास प्रावधान नहीं थे। मोटा मोटी इसमें इस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई किया गया है, बहुत सारे इसके जो डेफिनेशंस हैं जिनमें बहुत सारे कोर्ट केसेस चलते, फिर बहुत सारे अमेंडमेंट्स की वजह से बहुत सारे जिसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए थे, उनको सरल किया गया है। इन सभी चीजों को चलते हुए प्रारंभ का जो हम नाम इसलिए देते हैं क्योंकि खासकर इनकम टैक्स एक उन तबकों के लिए बहुत जरूरी होता है जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनके लिए इनकम टैक्स लंबे दौरे की तरफ स्टेडी रहे, स्टेबल रहे और उनके लिए सुचारू रहे, ये बहुत जरूरी है। और इस तरफ भारत सरकार का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे जो नए प्रावधान लाए गए हैं, जो नए सिंप्लीफिकेशन किए गए हैं, डेफिनेशनल चेंजेस लाए गए हैं, वो इसीलिए किया गया है।
1: इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं अपने श्रोताओं के साथ कुछ आंकड़े साझा करना चाहती हूं। जैसे शुभमॉय भी बता रहे हैं कि पुराना जो अधिनियम था उसको सरल बनाया गया है, तो सरलीकरण जो प्रक्रिया है उसका थोड़ा अंदाजा मैं देना चाहती हूं। नए अधिनियम में अनावश्यक प्रावधानों को और पुरानी जो टर्मिनोलॉजी थी उनको हटा दिया गया है। 1961 के एक्ट में 47 चैप्टर्स थे जबकि 2025 के कानून में 23 चैप्टर्स हैं। 1961 के एक्ट में 819 सेक्शन थे जबकि नए एक्ट में सिर्फ 536 सेक्शन है। और अगर हम शब्दों की संख्या की बात करें तो पुराने एक्ट में 5,12,000 शब्द थे जबकि उनको घटाकर अब नए एक्ट में 2,60,000 शब्द उसको कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही नए एक्ट में कुछ नई टेबल्स और फॉर्मूले भी पेश किए गए हैं ताकि जो एक कानूनी भाषा होती है उसको सरल बना दिया जाए। तो शुमा, जैसा आप बता रहे थे कि एक तो स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम एक आम नागरिक की बात करें, हमारे और आपकी जैसे आम नागरिक की बात करें, तो ये जो नया अधिनियम है ये आयकर को फाइल करने की प्रक्रिया को या रिवाइज्ड फाइलिंग को या रिफंड क्लेम जैसे चीजों को कैसे और आसान बनाता है?
0: देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में जो मूलभूत बदलाव आया है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार के कई सारे कदमों की वजह से इनकम टैक्स एक्ट की जो चरण है या जो चलन है वो अभी बहुत सारे जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए उनके ऊपर से उसका इफेक्ट हट गया है और ये बहुत बड़ी चीज है। जिसलिए भारत में अभी आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डायरेक्ट की इनकम टैक्स फाइलर्स उनके संख्या बढ़ गए हैं, लेकिन इनकम टैक्स देने के लिए जो लोअर इनकम ग्रुप्स थे उनको जो जरूरत था वो हट गया है। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल वित्त मंत्री जी ने 12 लाख रुपए के एनुअल इनकम तक के लोगों को इनकम टैक्स से फ्री कर दिए हैं, मुक्त कर दिए हैं कि उनको इनकम टैक्स फाइल नहीं कर, उनको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और साथ में ही उसके साथ बहुत सारे ऐसे चीजें रूल्स में बदलाव लाए गए जिनके वजह से उनका पूरा प्रोसेस को सिंप्लीफाई नहीं, बहुत सारे जगह पे एग्जम्पशंस कर दिया गया। तो इनकम टैक्स अभी किन के ऊपर लागू होता है? आप कह रहे थे साधारण नागरिक, ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि भारत में साधारण नागरिक बोल के हम जब बोलते हैं तो उनके ज्यादातर लोगों के ऊपर इनकम टैक्स का प्रेशर हट गया है। उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाने की, इनकम टैक्स के डिटेल्स करने का, साल में मतलब आमदनी अठन्नी लेकिन रिटर्न देने में एक रुपया खर्च हो जाता था, वो चीज हट गया है और ये सच में एक बहुत बड़ी बदलाव है।
1: बिजनेस, कॉरपोरेट और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इस नए अधिनियम में क्या बदलाव है?
0: एक तरफ तो हम कॉरपोरेट्स वगैरह की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जो स्टार्टअप वाले जो छोटे छोटे हम एमएसएमई सेक्टर के जो कंपनियां स्टार्टअप कर रहे हैं भारत के तमाम जगह से, उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट में जो नए जो रूल्स आए हैं, जो नए एक्ट के जो प्रावधान आए हैं, वो बहुत बड़े बदलाव लाए हैं। नया इनकम टैक्स में इसीलिए प्रारंभ से इसको जोड़ा गया क्योंकि आपको याद होगा 1921 में प्रारंभ स्कीम बनाया गया था स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। वही इकोसिस्टम, वही प्रारंभ वाला चीज भारत सरकार अभी फिर से उसी को जोड़ रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में अभी जो बदलाव आया है वो भी उनके लिए एक ब्रिज, एक सेतु बन जाता है कि सरकार की जो पुरानी जो प्रॉमिस थी उसको साकार किया जा रहा है। आज का जो प्रारंभ वाला अनाउंसमेंट है, प्रारंभ की जो बात चल रही है, वो इसलिए बहुत ज्यादा जुड़ी हो जाता है। सेकेंड वाली चीज जो आप कह रहे थे कि कंपनीज के लिए या जो एस्टेब्लिश्ड इन्वेस्टर्स है, तो इनके लिए बेसिकली क्या किया गया है तो कि बहुत सारे जो हमारे पुराने जो प्रावधान थे खासकर एग्जेम्पशंस वाले, ये एग्जेम्पशंस के बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे बहुत सारी चीजें थे जो आपको बजट के फिगर्स में देखेंगे कि इसके चलते भारत सरकार के करीब 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का

0: घाटा होता था, क्योंकि ये सारे एग्जम्पशंस कोई खास फायदा नहीं देते थे, लेकिन ये सारे इनकम टैक्स एक्ट में चारों तरफ बिखरे हुए थे, तो इनको रिमूव किया गया है। साथ में जो डेफिनेशंस हैं कि क्या चीज इनकम बनेगा, जैसा आप देखेंगे एक्सपैट्रिएट्स हमारे देश में आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनको लिए इनकम स्टेटस क्या रहेगा, किस अवस्था में उनके ऊपर टैक्स लगेगी, इन चीजों में बहुत सारे असंगतियां थे, वो सारे असंगतियों को रिमूव किया गया है। क्लैरिटी आया है कि किस कंडीशन में उनको टैक्स भरना पड़ेगा और अगर भरना पड़ेगा तो कितने इजीली और कितने क्लियरली वो दे सकते हैं। हम जब इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो सिर्फ कैपिटल ही नहीं आता है, कैपिटल के साथ काम करने के लिए लोग आते हैं जो हमारे देश में आके कुछ दिनों के लिए काम करेंगे और फिर काम करके चले जाएंगे, तो उनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके लिए पहले कोई भी क्लियरिटी नहीं था। इन सभी चीजों को इस नए इनकम टैक्स में उनके ऊपर ये सारे क्लियर स्टेप्स लाए गए हैं। साथ में हमारे जो सेविंग्स वगैरह बहुत सारी चीजों का जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स थे जिन पर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जम्पशंस थे, प्रोविजंस थे, जो लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो जाता था कि हम अगर सेविंग्स करना चाहें तो किसमें इन्वेस्ट करें, तो वो रिटर्न देने के बजाय वो ज्यादा देखते थे कि इसमें टैक्स के छूट किसमें हैं, जो बिल्कुल विसंगत तरीके थे। तो उन सभी चीजों को क्लियर किया गया है इस इनकम टैक्स एक्ट में।
1: पुराने कानून में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के जैसे शब्द इस्तेमाल होते थे, जबकि नए कानून में एक टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका क्या मतलब है?
0: फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो कई सारे डिफरेंस थे कि साल का मतलब क्या होता है, जनवरी 1st से दिसंबर या 1st अप्रैल से 31 मार्च, उसको क्लियर कर दिया गया है। हर पर्पज के लिए साल का मतलब होगा 1st अप्रैल से 31 मार्च अगले साल तक। तो उसके अंदर जब हम टैक्स ईयर बोलते हैं तो टैक्स ईयर का मतलब है पहले असेसमेंट ईयर, फिर प्रीवियस ईयर, ये लोगों को कंफ्यूज करता था, इसीलिए अभी सिर्फ टैक्स ईयर का मतलब है कि द ईयर इन विच इनकम वॉज अर्नड, यानी जिस साल मैंने इनकम अर्न किया उसको उसी साल में ही टैक्स किया जाएगा, और अलग से कोई असेसमेंट ईयर का सवाल नहीं रहेगा कि मैंने 2024-25 में मैंने अगर टैक्स अर्न किया तो 2024 में ही जो रेट था उस रेट में ही उसको उस साल असेस किया जाएगा। अगला कोई असेसमेंट ईयर की नहीं, अभी असेसमेंट ईयर तो ये वाला आ गया है या दूसरा कुछ चार साल चल रहा है, इन सभी चीजों का झमेला नहीं रहेगा। सो प्रीवियस ईयर बोल के जो था कि जिस साल चल रहा है उसका प्रीवियस ईयर, इन सारे जो डेफिनेशनल झमेला है क्लियर, सिर्फ एक ही है टैक्स ईयर, द ईयर इन विच इनकम हैज बीन जनरेटेड, उस साल में क्या रेट था, दैट इज द इनकम।
1: जी, तो ये भी एक सरलीकरण, एक प्रक्रिया जो हम बात कर रहे हैं कि जो नया अधिनियम आया है वो पुराने अधिनियम के तुलना में किस तरह बेहतर है, तो सरलीकरण कर दिया है सरकार ने इसका। अगला सवाल मेरा आपसे ये है शुभ मोहन, कि आयकर अधिनियम 2025 में वर्चुअल डिजिटल स्पेस और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के कॉन्सेप्ट भी शामिल किए गए हैं, ये क्या है, इन्हें क्यों लाया गया है और करदाताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा?
0: अभी आपको जब बहुत सारे ऐसे एसेट की पहले हमारे होते थे एक फिजिकल एसेट और एक फाइनेंशियल एसेट, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी में एक वर्चुअल एसेट भी बहुत सारा बन गया है। वर्चुअल एसेट कौन से हैं? जो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो वर्ल्ड में, हालांकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड की तो टैक्सेशन की तो अभी बात नहीं हुई है, लेकिन जब हम किसी नए डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या किसी दूसरे और भी नए नए जो एसेट्स डेवलप कर रहे हैं, इन सारी चीजों को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसके लिए एक नए डेफिनेशन का जरूरत था। तो वर्चुअल एसेट यानी कि ये एसेट वो सेट्स हैं जो यू कैन नॉट टच एंड फील, लेकिन दे आर अवेलेबल इन द साइबर स्फीयर। हालांकि मैं क्लियर करना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी से हम इसको लिंक ना करें, क्योंकि भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन के उस सिस्टम्स में हम लोग अभी भी आगे चल रहे हैं और वो अभी वहां पे नहीं पहुंचे, लेकिन डिजिटल में बहुत सारे डिजिटल एसेट्स हमारे बन रहे हैं और उन सारी चीजों को टैक्सेशन करने का ये हम लोग उसके जिसे कहते हैं उसका बुनियादी स्तर होता है कि उसका डिफाइन करना, उसका डिफिनेशन का वो वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर से किया गया है।
1: तो कह सकते हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया में तकनीक का विकास हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो जो हमारे आयकर के जो हमारे नियम कानून हैं उनको भी उन बदलावों से, उन जो ये विकास हो रहा है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, और इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वर्चुअल डिजिटल स्पेस और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इनको इस नए अधिनियम में शामिल किया गया है।
0: और इसी के चलते हम बहुत सारे अभी हम देखेंगे कि इसके नए इस्तेमाल, इसके नए जरूरतें और इनकी नई खूबियां वो हमें बहुत जल्दी हमें मिलते जाएंगे। अभी जैसे भारत में हम कह रहे हैं कि हम GCC में हो या दूसरी चीजों में, हम AI के चलते हम लोग बहुत सारे नए नए चीजें आ रहे हैं, उन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए टैक्सेशन स्ट्रक्चर को अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा, और वो टैक्सेशन स्ट्रक्चर अभी हमारे पास थ्रू द न्यू इनकम टैक्स एक्ट आया है।
1: नए एक्ट में करदाता की जो वॉलंटरी कंप्लायंस है वो उसे कैसे बेहतर बनाता है और मुकदमेबाजी को कैसे कम करता है?
0: सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जो नए करदाताओं के लिए सबसे पहली बात यह है कि कौन टैक्स देगा, इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने होंगे, ये हमारे लिए सबसे पहले जिसे कहते हैं हमें कोई टैक्सेशन स्ट्रक्चर में आने से पहले नए करदाताओं के लिए सबसे पहली बात ये थी कि बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत पड़ रही थी कि एक नया समरी जो उनको टैक्स का समझा दे, उनको नए किस्म का स्ट्रक्चर में उनको ले आए, उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है समझा के दे। आपको याद होगा कुछ सालों पहले हमने एक सिस्टम शुरू हुआ था कि टैक्स पेइंग असिस्टेंट, कि एक असिस्टेंट्स होंगे जो असिस्टेंट्स हेल्प करेंगे। ये सब चीजें लोगों के मन में अपने आप में एक टैक्स के ऊपर एक भीति एक संदेह बना देता है, और हम जब चाहते हैं कि नए टैक्स पेयर्स हमारे बीच में आए, हमारे साथ में जुड़ जाए, बिकॉज उसका टैक्स सिस्टम का अपने आप का बेनिफिट रहता है, तो ये सारी चीजें वे रोड ब्लॉक्स, उस रोड ब्लॉक्स को सिंप्लीफाई करने का इनकम टैक्स एक्ट का है कि भाई इन सभी चीजों की जरूरत नहीं है। जितने सारे फॉर्म्स थे, बहुत सारे फॉर्म्स को सेटल कर दिया गया है, क्लीन कर दिया गया है, तो नए इनकम टैक्स पेयर्स के लिए लाइफ को काफी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया गया है।
1: शुभमय, आप हमारे साथ सुर्खियों में कार्यक्रम में जुड़े और प्रारंभ 2026 के बारे में और आयकर अधिनियम 2025 के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

0: surgió Me.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आकर्षिता सिंह और आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए उचित कचरा प्रबंधन पर। हमारे साथ आज जुड़े हैं टेरी के चक्रीय अर्थव्यवस्था और अपशिष्ट प्रबंधन निदेशक सुनील पांडे। सुनील जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, आज का दिन खास क्यों है?
2: आज का दिन अगर हम देखें तो यूएन एजेंसी जो है वो एज अ जीरो वेस्ट करके मनाती हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी वैश्विक स्तर पे और जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ, वैसे वैसे हम ज्यादा कचरा जनरेट करते गए, और इसलिए जो है कचरा प्रबंधन एक सीरियस प्रॉब्लम हो गया, और इसलिए जो है एक खास दिन इसलिए रखा गया कि आज हम जो है वैश्विक स्तर पे देखें कि सारे देश क्या कर सकते हैं जिससे कि हम कचरा कम से कम उत्पन्न करें और जितना भी हो सकता है उसको मैनेज करें ढंग से।
1: जी, तो आज वो दिन है जब हम बात कर सकते हैं जीरो वेस्ट पर, और भारत ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत कचरा मुक्त शहरों का लक्ष्य रखा है। पिछले कुछ वर्षों में जमीनी स्तर पर आप क्या बड़े बदलाव देखते हैं?
2: जब से स्वच्छ भारत द्वितीय चरण शुरू हुआ है तब से इस पे जो है ठोस कचरा प्रबंधन खास करके इस पे सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जब कचरा हम काफी शहरों में जो हम आम भाषा में बोलते हैं सूखा कचरा और गीला कचरा, जिनको हम अलग करने की मुहिम चला रहे थे, काफी सारे शहरों ने उसको जो है स्थापित किया है अपने यहाँ, और खाली शहर नहीं बल्कि गांवों ने भी जो है इसमें काफी काम करना शुरू किया है। तो सबसे बड़ा हमारा स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य जो था जो हमने अचीव किया है वो है कि सूखे और गीले कचरे को कैसे हम अलग कर सकते हैं और कैसे गीले कचरे को ज्यादा से ज्यादा हम प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हैं, या जैसे खाद बनाना हुआ या जो है उसे बायोगैस बनाना हुआ, और सूखे कचरे को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करके हम रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं।
1: और सर, आज के डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट तेजी से बढ़ रहा है और बहुत बड़ी समस्या बन रहा है, तो पुरानी बैटरी और मोबाइल का सही निपटान कैसे हो और इसमें कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है?
2: कंपनियों की जिम्मेदारी अगर हम ई वेस्ट से जो है संबंधित नियमों को देखें तो वो डायरेक्टली ये बोलते हैं कि एक टर्म उन्होंने दिया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी करके, जिसके तहत कंपनियां जो बनाती हैं इस तरह का ई प्रोडक्ट्स, उनकी जिम्मेदारी ये है कि जब ये कचरे के रूप में परिवर्तित हो जाएं, जब ये यूजफुल ना रह जाएं, तो उनको वापस लेने की जिम्मेदारी जो है हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, या जो बाहर के देशों से मंगा के सामान बेच रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनकी होती है कि वो कैसे इसको कलेक्ट कर सकें और कैसे इसको फिर से रिसाइकल करके इसमें से जो भी यूजफुल सामान है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें और उसको फिर से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में यूज कर सकें। तो ये जिम्मेदारी उनकी है, और इसके साथ ही उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि जो आम नागरिक है जो ई प्रोडक्ट्स यूज करता है, जब वो वेस्ट हो जाए तो कहाँ उसको डिपॉजिट कर सकता है, कहाँ उसको जमा कर सकता है, वो उसको सेंसिटाइज करें।
1: क्या हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं जो कचरे को ऊर्जा या कीमती संसाधनों में बदल सके?
2: बिल्कुल, क्योंकि जैसे गीला कचरा है, गीले कचरे में काफी नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, और गीले कचरा जैसे हमारे खाने का और फूड वेस्ट और ग्रीन वेस्ट से निकलता है, उसको हम बड़ी आसानी से खाद के रूप में बना सकते हैं, और इसकी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा कोई खास नहीं है, सदियों से किसान ये करते आए हैं और शहरों में भी लोग करते हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास लोकल संसाधन नहीं है कि लोकल रूप में हम खाद बना सकें और जगह इतनी नहीं है, तो बड़े लेवल पे हम इसको बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इंदौर में बड़ा प्रोजेक्ट लगाया सरकार ने 500 टन का जो है, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लगाए जा सकते हैं जिसमें बायोगैस बने, और जैसे सीएनजी होता है वैसे सीवीजी होता है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, उस तरह से करके इसको जो है जैसे सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं हम, उस तरह से सीवीजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ियों में स्वच्छ ईंधन की तरह, इंडस्ट्रीज में स्वच्छ ईंधन की तरह इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: हमने देखा है कि पर्यटन के क्षेत्र में भी प्लास्टिक की बोतलों से जो है बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां बनाना और सजाना संवारना शहर को, आप इस क्षेत्र में क्या कहेंगे? जो कलाकार हैं जो प्लास्टिक कचरे से जो है बड़ी बड़ी कलाकृतियां बना रहे हैं या टूरिज्म को जिससे बढ़ावा मिल रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
2: ये अच्छा वो है स्टेप प्लास्टिक का कचरा, क्योंकि प्लास्टिक का कचरा जो है ये प्रॉब्लम इसलिए करता है, खास करके जिसको हम सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं, कि इसको अगर हम कलेक्ट न करें तो ये नदियों में चला जाता है और जो है वेस्ट के उसमें चला जाता है, उसको जलाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है, नदियों से फिर समुद्र में चला जाता है। तो ये जो हम तरह तरह की चीजें बना रहे हैं डेकोरेटिव आइटम्स प्लास्टिक को इस्तेमाल करके, ये कम से कम ये इंश्योर करता है कि वो प्लास्टिक जो है फेंका नहीं जाए और जो है वो फिर वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित न करे।
1: जो कूड़ा बीनने वाले वेस्ट पिकर्स हैं वो हमारे सिस्टम की रीढ़ हैं। अगर वो ना हो तो शायद हर सुबह हमारे घर का कचरा कौन लेके जाएगा। उनके लिए या उन्हें मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था और सुरक्षित कार्य वातावरण से कैसे जोड़ा जा सकता है वेस्ट पिकर्स को?
2: वेस्ट पिकर्स को अगर हम अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों को देखें तो उसमें सरकार ने यह प्रावधान किया हुआ है कि जो वेस्ट पिकर्स हैं उनको हम मुख्य धारा में कैसे लाएं। और मुख्य धारा में इस तरह से ला सकते हैं कि जैसे जो नगर निगम है उनको जो है घर घर से कचरा उठाने का जो मैंडेट है उसमें एक तो हम उनको यूज करें, उनको रोजगार दें, उनका काम ये हो कि वो घरों से कचरे को उठाएं और ये निश्चित करें कि वो सूखा और गीला कचरा और जो अन्य तरह के कचरे हैं वो अलग अलग हो। और वहां से जो है फिर वो काफी सारे शहर जैसे करते हैं कि जो सूखा कचरा होता है वो उनको दे देते हैं कि आप जाओ इसको बेच दो, तो उससे उनकी आमदनी भी होती है। और गीले कचरे को वो कहते हैं कि आप जो है या तो बायोगैस संयंत्र पे डाल दो या कंपोस्टिंग संयंत्र पे डाल दो, तो उससे क्या है उनको भी सहूलियत होती है, उनकी भी आमदनी होती है और उनकी आमदनी सिक्योर रहती है और सरकार का काम भी होता है। और काफी सारे शहरों ने ऐसा भी किया है कि जो सूखे कचरा है, सूखे कचरे में जैसे पेपर हुआ, प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, कैन हुआ, तो इसको हम फिर से जो उठा के एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बना रहे हैं तो उसमें भी हम इनको एम्प्लॉय कर सकते हैं कि वहां जाके इसको फर्दर जो है सेपरेट करें, कागज अलग सेपरेट करें, प्लास्टिक अलग सेपरेट करें, ग्लास अलग सेपरेट करें, मेटल अलग सेपरेट करें, तो इस तरह से जो फर्दर सॉर्टिंग है वेस्ट की मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी पे वहां भी जो है हम जो है अपने वेस्ट पिकर्स को एम्प्लॉय करके गेनफुली यूज कर सकते हैं। तो काफी सारे शहरों ने ऐसा किया भी है।
1: सिंगल यूज प्लास्टिक आज भी बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, क्या हमारे पास इसके कुछ सस्ते और टिकाऊ विकल्प मौजूद हैं?
2: बिल्कुल, ये प्रॉब्लम बना हुआ है क्योंकि अभी भी जो सिंगल यूज प्लास्टिक हैं, खास करके जैसे पॉली बैग्स हैं या जो है प्लास्टिक के छोटे कप्स हैं जिसमें चाय वगैरह पीते हैं हम लोग जब शहरों में घूमते हैं, तो वो अभी भी पूरे फेज आउट नहीं हो पा रहे हैं। और जो है हम जो है प्लास्टिक की पन्नियों में जो लाते हैं सामान वो अभी भी पूरे फेज आउट नहीं हो पा रहे हैं। इसका सबसे सस्ता विकल्प है जो कि बार बार हम लोग भी बोलते हैं कि कपड़े की थैलियां यूज करें, आप जूट के बैग्स यूज करें, कपड़े की थैलियां यूज करें। और आजकल काफी बार जब हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं तो इसमें कपड़े की थैलियां देते हैं लोगों को कि जिससे लोग जो है प्लास्टिक की पन्नियां ना यूज करें। और सरकार को भी काम करना पड़ेगा इसमें, जो शहरों की सरकारें हैं वो कैसे जो है हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके साथ काम कर उनको सहूलियत देते हुए कैसे वो सस्ता ऑप्शन इस तरह का जो है पेपर कप, पेपर प्लेट्स हैं या जो है जैसे वनस्पति बेस्ड जो है कप्स और प्लेट्स हैं उनको हम कैसे सस्ते मूल्य पे उपलब्ध कराएं जिससे कि वो जो है प्लास्टिक को रिप्लेस कर सके।
1: और सुनील जी, हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण तो कुल्हड़ का है, कुल्हड़ के कप जो है जो आज से नहीं इतने सालों से चलते आए, हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: अगर हम एक आम नागरिक की तौर पे एक सवाल पूछें कि एक आम नागरिक अपनी रसोई या एक आम नागरिक जो एक दफ्तर में काम करता है वो जीरो वेस्ट की शुरुआत कैसे कर सकता है, मतलब कुछ सुझाव देंगे कि अगर मुझे शुरू करना हो व्यक्तिगत तौर पे जीरो वेस्ट तो मैं कैसे शुरू कर सकती हूँ, एक आम नागरिक कैसे शुरू कर सकता है?
2: आम नागरिक जैसे घर में अगर है, हम घर में खाना पकता है तो हम कोशिश करें ये कि जितना जरूरत है हम, क्योंकि खाना पकाते पकाते हमको अंदाज हो जाता है कि हम कितना खाना खा सकते हैं जिससे कुछ वेस्ट ना हो, तो उससे क्या होता है कि फूड वेस्ट में बचत होती है। दूसरा, जो बर्तनों में हम खाना लेते हैं वहां पे हम ऐसे कंटेनर्स यूज करें जो फिर से साफ करके फिर से यूज किए सकते हैं, जैसे स्टील के बर्तन हैं या क्रॉकरी की प्लेट है या इस तरह के कंटेनर ग्लास हैं। और रेदर देन हम जो है जो डिस्पोजेबल आइटम्स यूज करते हैं उनको जो है हम अपनी लाइफ से जो है धीरे धीरे खत्म कर दें। यही ऑफिस में भी है कि ऑफिस में अगर हम डिस्पोजेबल आइटम्स को यूज करना बंद कर दें और जो रीयूजेबल आइटम्स को यूज करना शुरू करें तो ऑफिस में भी इस तरह से जो है बचत की जा सकती है।
1: अक्सर हमने देखा है सुनील जी कि जो पर्यटन वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे कचरा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, वो अक्सर होता है कि प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हैं और चिप्स और इन सबके पैकेट्स पड़े हैं, इन सब चीजों से हम निदान कैसे पा सकते हैं? अगर एक यात्री की बात करें, एक टूरिस्ट की बात करें, तो वो कैसे अपने जीवन में कुछ चीजों को अपना सकता है जिससे जीरो वेस्ट मैनेजमेंट में आसानी हो सकती है?
2: कुछ चीजें हैं जैसे वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल अगर हम जहां तक हो सके अगर अपनी बॉटल खुद जो है स्थायी बॉटल जो है यूज करना शुरू करें, कैरी करें और उसको यूज करना शुरू करें तो धीरे धीरे हमारी आदत में आ जाता है। और जैसे हमारे चिप्स के पैकेट हैं, चिप्स के पैकेट के लिए तो कुछ ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि वो जो क्वालिटी फूड है वो उस तरह की पैकिंग में ही जो है वो सेफ रहता है, तो उसमें क्या है जैसे आपने चिप्स खा ली और जो पैकेट आपके पास बचा उसको आप एक कपड़े की थैली में अपनी, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो कपड़े की थैली में अपनी गाड़ी में रखो, फिर कहीं कोई वेस्ट बिन आए वहां पे फेंको, या अगर आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो तो भी उसको अपने कपड़े की थैली में रखो जिससे कि जहां पे सरकारी बिन आए वहां फिर आप उसको डिस्पोज करो जिससे कि वो इधर उधर फैला ना दिखे, इधर उधर उसकी लिटरिंग ना हो।
1: सुनील जी, जैसा कि आपने हमें बताया गीले और सूखे कचरे के बारे में, तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि गीला और सूखा कचरा अलग करें। ये छोटा सा कदम पूरे सिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम नागरिक तो समझ ही नहीं पाता। उसको लगता है कि कचरा तो कचरा ही है, चाहे वो सूखा हो चाहे वो गीला हो, और वो आज तक ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
2: होता क्या है कि अगर गीला कचरा हम सूखे कचरे के साथ मिक्स करके फेंकते हैं, तो जो सूखा कचरा है जो आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे दूध की थैलियां हैं, वो दूध की थैलियों में वापस रिसाइकल की जा सकती हैं, या किसी और बकेट में या मग में या इस तरह की चीजों में वापस रिसाइकल की जा सकती हैं। अगर आपने एक बार गीला कचरा उसमें मिला दिया, उसको कंटेमिनेट कर दिया, तो उसकी क्वालिटी जो है खत्म हो जाती है। तो ये हम नहीं चाहते हैं कि जो भी रिसाइकल करने लायक वस्तु है उसको किसी तरह से हम कंटेमिनेट करें। और सूखे कचरे को अगर हम गीले कचरे में मिलाते हैं, जैसे हमने खाद बनाई तो उसमें पता चलेगा वो पॉलीथीन की पन्नियां पड़ी हुई हैं, तो खाद भी जो है किसान नहीं लेना चाहेगा, या जो भी अपने नर्सरी या फार्म में यूज करना चाहता हो वो भी कहेगा कि ये तो खाद खराब है। तो इसीलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्यों उनको अलग अलग करें, जिससे कि हम जब उनका प्रबंधन करते हैं तो हम उसको जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट में बना सकें।
1: तो कुल मिलाकर हम अपने श्रोताओं को ये बता सकते हैं कि कुछ चीजें डिग्रेडेबल होती हैं, कुछ चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो अगर हम एक दूसरे को चीजों को मिक्स करेंगे तो उससे जो है हमें कचरा प्रबंधन में परेशानी होती है, और कहीं ना कहीं खाद बनने और बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उसको रीयूज नहीं कर पाते। जो ये 3 R's है, रीयूज और रिसाइकल, इन पे आप कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम इसका प्रयोग जो है कचरा प्रबंधन के लिए कर सकते हैं?
2: कचरा प्रबंधन की असल में पूरी जो आत्मा है वो एक्चुअली 3 R है, जिसको हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल बोलते हैं। और कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट जो है, कोई भी कचरा प्रबंधन जो है, ये 3 R पे ही निर्भर करता है। सबसे पहले तो रिड्यूस का मतलब ये है कि हम जिन चीजों की जरूरत न हो उन चीजों को संकलित न करें, उन चीजों को न खरीदें न संकलित करें, और उससे क्या होता है कि हम अननेसेसरी परचेजिंग नहीं करते हैं। उसके बाद जिन चीजों को हम रीयूज कर सकते हैं, जैसे हमारा कोई कंटेनर है, उसमें अगर हमने कोई सामान लाया, उस कंटेनर को हम किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हैं बाद में सामान खत्म हो जाने के बाद। जैसे हमारे बेवरेज बॉटल्स हैं या जो है ग्लास बॉटल्स हैं, उनमें जो सामान खत्म हो जाता है, जो कि भारतीय गृहिणी करती भी हैं और काफी बार चीजों को रीयूज करती हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जो चीजें रीयूज नहीं कर सकते उसको फिर हम वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकल करें।
1: सुनील जी, फैशन के आज के युग में जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, तो आप अननेसेसरी बाइंग पे कुछ कहेंगे? जो एक होता है कि फैशन के दौर में हम दिन पे दिन कपड़े बदलते जाते हैं और हम ये भी नहीं सोचते कि वो कपड़े जो है किस तरीके से वो वेस्ट में जाते हैं और उनका प्रबंधन करने में कितनी मुश्किलें होती हैं, उस पर आप कुछ कहेंगे?
2: हाँ, इसमें हम कोशिश करें, क्योंकि फैशन तो फिर अपनी जगह पे है और ज्यादातर जो लोग हैं वो चाहेंगे कि हम जैसे जैसे फैशन बदले वैसे वैसे भी हम अपने वस्त्र भी बदले। तो उसमें हमको ये ध्यान देना होगा न तो केवल जो फैशन के फैब्रिक बनाते हैं, बल्कि जो यूजर्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं उनको ये ध्यान देना होगा कि हम ऐसे ड्रेसेस बनाएं, ऐसे फैब्रिक बनाएं जो आसानी से जो है रिसाइकल किया जा सके, जिसको कि अगर हम 5-6 महीने के बाद अगर फेंक भी देते हैं तो आसानी से वो रिसाइकल किया जा सके। तो ये ध्यान हमको देना होगा। और उसमें अगर सिंथेटिक है तो केवल सिंथेटिक हो, और कॉटन है तो केवल कॉटन हो, जिससे कि वो बाद में जो है आसानी से रिसाइकल किया जा सके।
1: सुनील जी, मेरा आखिरी सवाल कि जीरो वेस्ट डे पर आप हमारे श्रोताओं को एक कोई विशेष संदेश देना चाहते हैं?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे सिटीजन हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझें, और जो सरकार नियमों के अधीन कराना चाहती है उसमें वो अपनी भागीदारी भी समझें। जैसे कि सरकार ने मिशन लाइफ वो किया, मिशन लाइफ जो है हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है, तो हम अपनी जिम्मेदारी समझें और प्राउड फील करें कि जो है हमने इसमें जो है अच्छे कचरा प्रबंधन के लिए अपना योगदान दिया।
1: सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी अच्छी ढेर सारी जानकारियां दी जिन्हें वे अपने व्यक्तिगत जीवन में जिनका उपयोग कर सकते हैं, और कहते हैं सम्मानजनक जीवन के साथ एक ऐसे नागरिक बन सकते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं और देश के प्रति जिनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं।
2: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
0: सुर्खियों में
3: मेरा नाम दिव्यांश वर्मा, 8वीं का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने गुरु के ऊपर 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। अक्सर अक्सर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते।
4: हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम इन टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है, मतलब अभी हमारा 12th नंबर सेशन था, जैसे तो ये अभी तक के सेशंस में हम करियर से रिलेटेड काफी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कई स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। और मेरे हिसाब से कई स्ट्रीम्स आपको ऐसी नहीं भी पता चली होंगी अभी, जो शायद पहले आपको नहीं पता हूं, या कई स्ट्रीम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी, जो हो सकता है आपको आगे अपना करियर बनाने में काफी हेल्पफुल रहे। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कि 10th के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, उनमें क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस टाइप के डिप्लोमाज होते हैं। आप सब जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में। ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है और इक्वलेंट टू 12th माना जाता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है आपका, एक तरह से 12th के इक्वलेंट होता है। तो जो लोग 10th के बाद, मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या लें, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्वलेंट टू क्लास 12th। अब डिप्लोमा की जो फिलोसफी थी, ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है वो हम ये कह सकते हैं जैसे A to D क्लास में अगर हम जॉब्स को डिवाइड करें तो सी कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलती हैं, और वही अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपकी जॉब जो है वो आपकी डी कैटेगरी की हो जाती है। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में देखिए, वर्कशॉप में, या इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर भी कहां कहां वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, आज ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि डिप्लोमाज, मतलब वैकेंसीज आफ्टर डिप्लोमा, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निकलती हैं, या प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज आप देखेंगे NCR एरिया के अंदर, गुड़गांव के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर डिप्लोमाज की जॉब काफी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद इट, थोड़ा ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं 10th के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल, जो हमारे फैमिली जो है, वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उनका कहना ये होता है भी 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए, जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें। तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगिनिंग, ठीक है। मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की, और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट PSUs में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है, ठीक है, इस तरह से, मतलब बहुत स्ट्रीम है। अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 5-6 स्ट्रीम की हम बात करते हैं, बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती है, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद में। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज की 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और ये इक्वलेंट टू 12th क्लास होता है, तो इसका मतलब 3 साल में आपकी 12th भी हो जाती है और प्लस में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आप सीख जाते हैं जिस स्ट्रीम में आप अपना काम करना चाहें। इसके कई सारे किन किन स्ट्रीम में ये रहता है आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, एनिमेशन में, फैशन एंड टेक्सटाइल में, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। यस, स्टिचिंग में है, ब्यूटी कल्चर में है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वोकेशनल में आती है। आप देखते हैं जैसे रीड के ऊपर भी एक तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आप स्टिचिंग, जैसे बहुत आप में से लेडीज ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे मतलब जो यहाँ रहता है वो इसे इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि 10th के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है। तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं, या जी हम ये कहें कि काफी लोग ऐसे भी हैं आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपको मतलब कुछ साल मेहनत करनी रहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल से एंट्री नहीं होती, एक तरह से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और धीरे धीरे 2-5 साल मेहनत करने के बाद में फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, एक हैंडसम सी सैलरी आपकी हो जाती है, बट स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल हार्डवर्क करना रहता है क्योंकि एज भी आपकी कम है ना, अभी 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, मतलब 20-21 साल के आसपास आपकी एज है, तो 20-21 ईयर्स के अंदर आपने अपना जॉब स्टार्ट किया और 4-5 सालों में आप जब आपकी एज 25 ईयर्स तक होती है तो आप एक ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच जाते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो, राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमा की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहां से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है, जैसे आप सोच के देखिए गुड़गांव में या एनसीआर के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है, मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती है काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं। और स्मॉल स्केल पे आप देखिए आज के टाइम के अंदर जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स है। देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सके। ठीक है, जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमाज होते हैं ना, देखिए 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सभी 3 साल के होते हैं। ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्विवेलेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है। क्वेश्चन था जिसे मैंने आंसर किया उसका। हाँ जी, मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक। ठीक है, छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए एसेंशियल आइटम है। ठीक है, आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती हैं, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना 17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है, तो उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स है। आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं। प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है। मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल है, बट भाईपाल जी ने आंसर किया है कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें। ठीक है, फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए। ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है BSc इन होटल मैनेजमेंट, उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं होटल मैनेजमेंट फैशन डिजाइनिंग का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने 12th किया और 12th के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसा लोग, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद सेकंड आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे एक तरह से जो टेक्निकल हम कहें जिसको, कि ज्यादातर बच्चे जिस लाइन में जाके डिप्लोमा करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जब जहां भी हम वोकेशनल या वोकेशनल कोर्सेज या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं। ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है। आप देखेंगे इंडिया में इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली। स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो। रेलवेज में पीछे हमने बात किया था, जैसे रेलवेज में तो डिप्लोमाज की वैकेंसी ज्यादा आती है, जैसे आपको ध्यान हो मैंने अभी पीछे एक सेशन लिया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे, जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो रेलवे में जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उन टेक्निकल पोस्ट में काफी पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपसे डिप्लोमा मांगती है। तो उसमें अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं। पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है इसके अंदर 3-3 साल का, तो अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमाज को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, 3 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे, जैसे मैं आप एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे गो फॉर आईटीआई, वो क्या करते हैं आईटीआई भी करते हैं, ठीक है। अब वही चीज देखिए, जो आईटीआई है वो डिप्लोमा से भी लो लेवल में काउंट किया जाता है। मतलब ये 3 आपकी लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर जैसे सबसे लो लेवल पे अगर हम बात करें तो आईटीआई आता है, सेकेंड लेवल पे आपके डिप्लोमाज होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज होते हैं, और थर्ड लेवल पे आपका बीटेक होता है। तो एक तरह से ये तीनों ही टेक्निकल एजुकेशन की लेयर्स हैं, राइट। तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी करना चाहें, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसमें ये सारी फील्ड्स में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद अगर आप उसी में अपना करियर बनाना चाहें आगे फर्दर, आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है, उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब से अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं एनसीआर एरिया में स्पेशली, जो डिप्लोमा करने के बाद में एक ठीक ठाक कंपनी में जिनकी सेटलमेंट हो जाती है और एक अच्छा लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी फील्ड्स हैं जिसमें डिप्लोमा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग है, हेयर एंड स्किन केयर में। आप देखते हैं आजकल वीएलसीसी का नाम आप सबको पता ही होगा, वीएलसीसी एक तरह से आपका जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, या उसमें आपका हेयर या जो स्किन केयर के कोर्सेज रहते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमाज होते हैं। ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है। तो मतलब इट्स अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में। डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है, तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। देखो डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूँ। वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं। वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोग की जो वेबसाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। साइट्स जो बनती हैं वो आप बन सकते हैं बना। जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं। आप देखो मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है, और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं लेवल वन लेवल टू, और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है। मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था पीछे हो गया मुझे साल सवा साल, तो वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जांपल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टाइम से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था आपका माने, मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं। तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं इज अ करियर। SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप देखते हैं आजकल लोग YouTube के थ्रू Facebook के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है, अगर आपने ये किया हुआ है SEO का कोर्स किया हुआ है तो फिर आप एज ए SEO पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए। हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रीम। मैं आपको बताऊं जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, USA की बात करें, UK की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है। हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है अभी, इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। आप देखते हैं सुनते भी होंगे कि जो मोदी जी जितनी बार भी स्पीच देते हैं कई मैक्सिमम टाइम, चाहे वो अपने मन की बात में दे चाहे कहीं भी दे, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए। मतलब हम ये ना माने कि सरकार हमें जॉब देगी, हम खुद ही अपने एंड के ऊपर जॉब क्रिएशन की बात करें, ठीक है। मतलब अभी हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है, हम चाहते हैं कि हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, अपना कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो हमें जॉब दे दे, एक तरह से ये हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है, जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो हमें खुद कुछ भी कोर्स कोई भी टेक्निकल स्किल लेने के बाद में हमें अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए और खुद भी हम अपने पैरों पे खड़ा हो, और उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को अपने साथ में एम्प्लॉय भी करा, उनको भी हमने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो ये एक तरह से मतलब ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है जो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एक तरह से अपना काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको किसी की नौकरी करने की नीड नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है। मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के हमें शो करता हूँ किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलती है जब गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं जिसमें सेल या आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ठीक है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है। अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए, और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशंस के हैं, हायर क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है, तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। अब देखिए कहीं भी JEE की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जहां भी JEE की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है, तो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सर, जो बीटेक में हाँ उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन PSU में जाना है तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं, पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स है, होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है, तो मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई हुई है, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे CMPDI आई है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, CMPDI सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना अलग अलग पूरे इंडिया में PSU फैली हुई है, आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, पर इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास है, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नजर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई है, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है। हाँ दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए अपना NCR एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गावा की बात करते हैं तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज है, तो बहुत इजीली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती हैं, जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड पोस्ट है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी, कहां से आपको पता चल पाए कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई हुई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर हैं या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ जिसे हम कहते हैं, कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है। पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी हैं जो आपको एक टाइप से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है, बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर एनसीआर में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है उसके बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज हैं। आप देखिए ये 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो है ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है। कहीं पर 500 वैकेंसीज है, कहीं 42 है, कहीं 21 है।

प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अप्लाई नहीं करते जॉब्स के लिए. आप मतलब मैं हम कई बच्चों को जानते हैं कि उनका एम तो है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट उनसे पूछे अगर भाई कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, कहता जी मैंने तो कभी फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया. फिर फॉर्म अप्लाई करता है तो वो तैयारी नहीं करता. तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अवेयरनेस होना भी, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, अब ये तो मैंने आपके ऑलमोस्ट सारी बातें आपको समझा दी क्या क्या डिप्लोमा में रहता है. और कुछ चीजें और भी हैं, जैसे जो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप प्रोफेशनल स्किल साथ साथ सीख जाते हैं. ठीक है भाई, आपने जो टेक्निकल जो भी आपने ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल आपने सीख लिया तो जॉब लेने में आसानी रहती है. स्किल्ड एम्प्लॉयज की डिमांड हमेशा से रही है इंडिया में स्पेशली, और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम में तो स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा. जैसे आपने सुना होगा अभी कोविड के बाद में, जैसे कोरोना का अटैक हुआ कोविड-19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे, जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल. और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इनटू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे. ठीक है, जैसे जिसमें जापान था, यूएसए था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से, दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना. ठीक है, अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहाँ पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा. तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं. तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए भी उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं. ठीक है, तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहां पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी. ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं. दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूं जो DMRC है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों एम्प्लॉयज ऐसे हैं DMRC के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं DMRC में. और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद. काफी वैकेंसीज निकलती है. आप तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है क्योंकि DMRC ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है. बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था, उसमें जब नई नई वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो DMRC के अंदर लग गए, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे. और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए. फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है. ठीक है जी, मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है. ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो अगर आपने 12th-10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है. तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंट ही हो जाता है. किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले 12th किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी. वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा. हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है. जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीट का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीट का पेपर होता है. हर स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो अपना एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं. ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में, और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है. ठीक है, तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है भी, आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा 3 साल के अंदर. अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीट कहते हैं, लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं.
और आपका कोई

0: ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं, फिर साल दो साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट। तो ये एक एक अच्छी आपके लिए वो हो जाता है भी, आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो ये भी एक स्कोप रहता है। और हर स्टेट में पेपर होता है, मैंने तो हरियाणा का आपको बताया, जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही डीटीई केरला के अंदर होता है, वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है, एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था, मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं पीएसयू की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ओएनजीसी, गेल, इन सबके बारे में बताया। देखिए उनमें क्या होता है, ओएनजीसी में, गेल में, कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की, तो बीटेक आप करते हैं तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है, तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड, टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है, और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है, तो वह आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहां पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिटर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते। जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप फॉरेन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत रहती है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड, बाकी आप कि कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना दो तीन पॉइंट ऐड था। टेंथ के पास, टेंथ पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, टेंथ पास
0: जी, जी सर जी बिल्कुल सर।
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में है, आपको ऑलरेडी चेन्नई में भी है, जैसे ज्वेलरी पर भी आपको डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। प्लस सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारत वर्ष में जो है टेंथ पास करके फाइव इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो टेंथ पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं प्लस टू करके भी, जैसे इंडो डेनिश टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों टेंथ पास करके या प्लस टू पास आउट करके, टेंथ पास करके जाएंगे तो फाइव इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लस टू करके जाएंगे तो फोर इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं। तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात यह है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है, ठीक है, वो एक स्कोप है। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते, मतलब अपना आपने जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफी वाइड एरिया होता है।
1: गोल्फ कंट्री में भी सर, आपने बताया भी है, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड होती है डिप्लोमा के।
0: गोल्फ कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत सर, मेरा एक
0: ऑस्ट्रेलिया
1: क्वेश्चन
0: है।
1: था कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहां पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है इंटरनल, वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या? जैसे जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर के जो कंडक्ट जो जहां पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं
0: सर
1: शायद आईटीआई।
0: बेसिकली क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो
1: करेक्ट
0: इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं। एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं और
1: करेक्ट
0: सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं। जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो आपकी एडवोक इन नेचर होती है, 1 साल की 2 साल की, या जो टेम्परेरी पोस्ट होती है, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं। बट एक्चुअल जो जो आपके परमानेंट जॉब्स हैं, जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है 10th पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

विद्यार्थियों की एक टोली पढ़ने के लिए रोजाना अपने गांव से 6-7 मील दूर दूसरे गांव जाती थी। एक दिन चलते हुए अचानक विद्यार्थियों को लगा कि उनमें से एक विद्यार्थी कम है। ढूंढने पर मालूम हुआ कि वो पीछे रह गया है। एक साथी ने पुकारा, तुम वहां क्या कर रहे हो? उसने वहीं से उत्तर दिया, ठहरो, मैं अभी आता हूं। ये कहते हुए उसने धरती में गड़े एक खूंटे को जोर से हिलाया, उखाड़ा और दूर फेंक कर फिर से टोली में आ मिला। उसके सहपाठी ने पूछा, तुमने वो खूंटा क्यों उखाड़ा? उसे तो किसी ने अपने खेत की सीमा बताने के लिए गाड़ा था। इस पर उसने जवाब दिया, लेकिन वो बीच रास्ते में गड़ा हुआ था, चलने में रुकावट डालता था। जो चीज रास्ते की रुकावट बने उसे तुरंत उखाड़ फेंकना चाहिए। भविष्य में अखंड और एक भारत का मार्ग प्रशस्त करने वाले वो विद्यार्थी कोई और नहीं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाड़बाई था। उन्होंने करमसद में माध्यमिक विद्यालय और पेटलाद स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन अधिकांश ज्ञान उन्होंने स्वाध्याय से ही अर्जित किया। 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह झावेर बा के साथ संपन्न हुआ। आर्थिक तंगी के कारण उनकी शिक्षा में व्यवधान पड़ा। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास किया, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति अत्यंत मजबूत थी। वो बैरिस्टर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड के मिडिल टेम्पल में प्रवेश लिया और 36 महीने का कोर्स मात्र 30 महीने में ही पूरा कर लिया। भारत लौटने के बाद वो अहमदाबाद के सबसे सफल बैरिस्टर बने। अपने कर्तव्यों के प्रति वो अत्यंत ईमानदार थे, जिसके अनेक उदाहरण उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। एक बार वो कोर्ट में केस लड़ रहे थे। बहस के दौरान ही उन्हें तार द्वारा पत्नी की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। उसे पढ़कर उन्होंने चुपचाप अपनी जेब में रख लिया और 2 घंटे बहस कर उस निर्दोष व्यक्ति की जान बचा ली। वो केस जीत चुके थे। बहस खत्म होने के बाद सबको उनकी पत्नी के देहांत की खबर मिली। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं उस वक्त अपना कर्तव्य निभा रहा था। पत्नी तो जा ही चुकी थी, लेकिन एक जीवन मैं बचा सकता था, मैंने वही किया। ये उनका संवेदना और करुणा से भरा मन ही था जो उन्हें हर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता था। गांधी जी के विचारों को सुनकर ही वो स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए थे। सन 1918 में गुजरात जिले के किसानों की साल भर की फसल नष्ट हो गई थी। खेड़ा सूखे की चपेट में था, लेकिन लगान पूरा देना था। जब किसानों की सारी प्रार्थनाएं निष्फल हो गईं, तब गांधी जी ने सत्याग्रह की सलाह दी। गांधी जी की अपील पर वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चलती हुई वकालत छोड़ी और आंदोलन के लिए खड़े हो गए। यही उनके सार्वजनिक जीवन का श्री गणेश था। पटेल जी की अगुवाई में खेड़ा सत्याग्रह अत्यंत सफल रहा। अंततः ब्रिटिश सरकार को करों में राहत देनी पड़ी। ये सरदार पटेल की पहली सफलता थी, जिससे उन्हें देशव्यापी ख्याति प्राप्त हुई। इस तरह खेड़ा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन कहलाया। यहीं से वल्लभ भाई पटेल की अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष यात्रा आरंभ हुई।

सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन के समर्थक थे। उन पर गांधी जी के कार्यों और आदर्शों का बहुत गहरा प्रभाव था। यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने संपूर्ण स्वदेशी को अपना लिया था। उन्हीं दिनों ब्रिटिश शासन ने भारतीय झंडा फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गांधी जी जेल में थे। ऐसे समय में इस कानून के विरुद्ध सन 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उन्होंने गुजरात में शराब, छुआछूत, जातीय भेदभाव जैसी कुरीतियों का जमकर विरोध किया। सन 1922, 1924 और 1927 तीन बार वो अहमदाबाद के नगरपालिका अध्यक्ष भी चुने गए। सन 1928 में प्रांतीय सरकारों ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे कठिन समय में अपनी आवाज बुलंद करते हुए बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। आंदोलन जारी रहा। अंततः विवश होकर सरकार को झुकना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल को इस मामले की जांच का दायित्व सौंपा गया। गहरी पड़ताल के बाद उन्होंने इस लगान वृद्धि को गलत ठहराया और इसे घटाकर 6.03% कर दिया। ये वल्लभ भाई पटेल की बड़ी जीत थी। बारडोली सत्याग्रह अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छा गया। देश भर में इसकी चर्चा हुई। इस आंदोलन की सफलता के बाद ही वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की और वो कहलाए सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो वाकई सरदार थे, मुखिया थे। वो कहा करते थे कि मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे ठंडा रहना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना होगा, अन्यथा वो स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो जाए, अंत में उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। उनका मानना था कि एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है, जब तक उसे सामंजस्य में न लाया जाए और एकजुट न किया जाए। उन्होंने अपने नेतृत्व के बल पर अनेक बार लोगों को एकजुट किया और वांछित परिणाम हासिल किए। वो वाकई लौह पुरुष थे, जिनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी और युक्तियां इतनी विवेक सम्मत कि कठिनाइयां समाधान को स्वतः रास्ता देकर किनारे हो जाया करती थीं। लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, उनका उद्देश्य सिर्फ चलना या संघर्ष करना नहीं, हर हाल में विजयी होना था। सन 1930 में उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने इतना प्रभावशाली भाषण दिया कि हजारों लोग उनके शब्दों से प्रभावित होकर इस सत्याग्रह में शामिल हुए। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो गांधी जी के साथ रहे। सभी प्रमुख नेताओं के साथ वो भी गिरफ्तार हुए और सन 1945 तक अहमदनगर जेल में कैद रहे।

15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ और वल्लभ भाई पटेल को देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री का दायित्व सौंपा गया। उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी अलग अलग रियासतों में बंटे भारत को एक सूत्र में बांधना। सरदार पटेल ने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करने का अविस्मरणीय कार्य किया। विश्व इतिहास में ऐसे एक भी व्यक्ति का उदाहरण नहीं है जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण किया हो। अखंड भारत का स्वप्न लिए वो खड़े हुए, अपना थैला उठाया और वीपी मेनन को साथ लेकर चल पड़े। वो उड़ीसा पहुंचे और वहां के 23 राजाओं से कहा कि वो भारतीय संघ में शामिल हो जाएं। उनकी भाषा स्पष्ट और कड़ी थी। उन्होंने कहा, कुएं के मेढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। इस तरह उड़ीसा की जनता का सपना कुछ ही घंटों में साकार हो गया। यहां से वो नागपुर पहुंचे और 38 राजाओं से मिले। सरदार पटेल ने इन राज्यों की बादशाहत को समाप्त कर भारतीय संघ में मिला लिया। इसी तरह वे काठियावाड़ पहुंचे और वहां की 250 रियासतों का भारत में विलय किया। एक शाम वो मुंबई पहुंचे, आसपास के राजाओं से बातचीत क्या की, उनकी राजसत्ता ही लेकर चले आए और एक भारत के नक्शे पर उसे जड़ दिया। जोधपुर, त्रावणकोर, भोपाल, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद जैसी रियासतें उनके समक्ष चुनौती बनकर खड़ी थीं। लेकिन पटेल लौह पुरुष थे। 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 रियासतें, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर सभी रियासतों को भारत में मिलाकर उन्होंने आज के भारत की तस्वीर तैयार कर दी थी। 9 नवंबर सन 1947 को जूनागढ़ भी भारतीय संघ में शामिल हो गया। 13 नवंबर को सरदार पटेल ने सोमनाथ के भग्न मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। सन 1948 में हैदराबाद का भी ऑपरेशन पोलो के तहत 4 दिन की सशस्त्र कार्रवाई द्वारा भारतीय संघ में विलय करा लिया गया। 562 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। ये एक रक्तहीन क्रांति थी। गांधी जी ने इस उपलब्धि पर सरदार पटेल से कहा था कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी कि इसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। अपनी कूटनीति, दूरदर्शिता और प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर सरदार पटेल ने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया और लौह पुरुष कहलाए। उनका जन्मदिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्वानों ने उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा, लेकिन लंदन टाइम्स ने इस पर टिप्पणी की कि जर्मनी के एकीकरण से जुड़ी बिस्मार्क की चुनौतियां पटेल की चुनौतियों के समक्ष कुछ भी नहीं थीं। इसलिए बिस्मार्क की सफलताएं पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती हैं। सरदार पटेल का स्वास्थ्य अब लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। राष्ट्र सेवा करते हुए ही 15 दिसंबर सन 1950 को उन्होंने अंतिम सांस ली। देश आंसुओं में डूब गया। नम आंखों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल की चिता के पास भाषण देते हुए कहा, सरदार के शरीर को तो अग्नि जला रही है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि को दुनिया की कोई अग्नि नहीं जला सकती। सन 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित किया गया। 31 अक्टूबर सन 2018 को सरदार सरोवर बांध के पास स्थित साधु बेट नामक स्थान पर उनकी एक विशाल मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये मूर्ति लौह पुरुष सरदार पटेल के यश को सदियों तक कहती रहेगी, भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखेगी। नमन ऐसी महान विभूति को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर निधि गुलाटी, रीड इंडिया लखनऊ से, आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखे के अंतर्गत आप तक लाया गया है। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी। मनुष्य के शरीर में 60-70% पानी होता है। पानी के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता। पानी हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, या हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, या सेल्स के आंतरिक भाग के भीतर मौजूद होता है पानी। हमारे वाटर लेवल को संतुलित रखने के लिए हमें दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के सारे फंक्शंस प्रॉपर होते हैं अगर हम पानी अच्छे से पिएं। हमारे शरीर से पानी पसीने से, शौच जाने से, या पेशाब करने से, या हम थूक जब फेंकते हैं बाहर, तो हमारे शरीर से पानी ख़त्म होता है। जो पानी हमारे शरीर से ख़त्म होता है, उस पानी को हमें पीकर पूरा करना होता है। चाहे हम पानी पीकर करें, चाहे हम खाना या फल जिसमें पानी भरपूर मात्रा में होता है उसे खाकर करें। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण में आपको प्यास लगती है, आपका मुंह सूखा होता है और चिपचिपा होता है, आपको पेशाब नहीं आता है, और जब आता है तो वो गाढ़े पीले रंग का पेशाब आता है। हमारा जो त्वचा होती है वो रूखी हो जाती है, सिर में दर्द होता है, हमें मांसपेशियों में भी दर्द होता है, सुस्ती आती है, सोने का मन करता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हम सांसें जोर जोर से लेने लगते हैं, हमारे आंसू नहीं निकलते जब हम रोते हैं, और हमें चक्कर भी आता है। श्रोताओं, ये कुछ लक्षण थे। आइए अब जानते हैं कि डिहाइड्रेशन के कारण क्या क्या हो सकता है। बहुत बार डिहाइड्रेशन होने के कारण बहुत ही आम होता है, जैसे कि आप जब बीमार हो, आपका पानी पीने का मन नहीं करता है, या आप कोई लंबी यात्रा में हो तब आपका पानी पीने का मन नहीं करता है। ये तो साधारण कारण है, किंतु बहुत बार कुछ स्वास्थ्य समस्या कारण भी होते हैं, जैसे कि दस्त या उल्टी के कारण। गंभीर तीव्र दस्त के कारण हमारे शरीर में कम समय में ही पानी और डिहाइड्रेशन का नुकसान हो सकता है, और यदि आपको दस्त के साथ उल्टी भी होती है तो आपके शरीर से और भी अधिक मात्रा में पानी निकल सकता है। बुखार, सामान्य तौर पे बुखार जितना अधिक होगा आप उतने ही निर्जलित हो सकते हैं। दस्त और उल्टी के अलावा बुखार होने पर समस्या और बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा पसीना आना, पसीना आने पर भी हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होती है। श्रोताओं, आप जानते हैं डिहाइड्रेशन से बचाव कैसे करें। डिहाइड्रेशन के लिए रोकथाम ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इलाज है। इसके लिए बहुत सारे तरल पदार्थों और खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। लोगों को अधिक गर्मी या दिन में सबसे जब गर्म होता है तो अपनी गतिविधियों को कम करना चाहिए और पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। बुजुर्गों और बहुत कम उम्र वाले बच्चों को डिहाइड्रेशन होने के सबसे अधिक खतरा होता है, इसलिए उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वे अच्छे से पानी पिए और वह भोजन करें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। यदि आपको दस्त, उल्टी या बुखार है तो भी जितना हो सके तरल पदार्थों का सेवन करें
और भरपूर मात्रा में पानी पिएं। श्रोताओं, आप जानते हैं डिहाइड्रेशन का इलाज क्या होता है? अगर शरीर में पानी की कमी है तो हमें पानी अधिक मात्रा में पीना है। यही एक सरल उपाय है, यही एक सरल इलाज है डिहाइड्रेशन का। अधिक से अधिक पानी पिएं और वो फल या खाना खाएं जिसमें अधिक मात्रा में पानी हो। जो लोग डिहाइड्रेट होते हैं उन्हें कॉफी, चाय और सोडा का सेवन कम करना चाहिए। हमारे शरीर में पानी की जरूरत है, चाहे हम उसको पानी से पूरा करें, चाहे हम नींबू पानी ले सकते हैं, हम नारियल पानी पी सकते हैं, हम कोई भी फल का जूस निकाल कर पी सकते हैं। इससे हमारे शरीर में पानी की कमी कम हो सकती है और हमें भरपूर मात्रा में पोषण मिल सकता है। गंभीर डिहाइड्रेशन होने पर तुरंत इलाज किया जाना चाहिए, लेकिन हल्के डिहाइड्रेशन से आपके मूड और ऊर्जा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि आप लक्षणों को पहचान लें और तुरंत उसका इलाज किया जाए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो और आप अपने जीवन में अधिक से अधिक पानी पीने की कोशिश करें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं प्रतिमा यादव बाराबंकी सेंटर से यहाँ आज दिल्ली ट्रेनिंग अटेंड करने आई हूँ और मुझे आकर यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आज हम लोगों ने जो ट्रेनिंग की उससे इतनी सारी चीजें सीखने को मिली और सिर्फ यही नहीं, रीड इंडिया में आने के बाद इतनी सारी चीजें सीखने को मिली हैं, शायद पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस में मुझे वो चीजें सीखने को नहीं मिल पाई। तो थैंक्स टू गीता मैम, थैंक्स टू रीड इंडिया सेंटर फॉर दैट। और मैं बाराबंकी में एज अ लाइब्रेरियन काम करती हूँ और वहाँ पे एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज भी सिखाती हूँ। और यहाँ पर आने का मकसद था कि कैसे रीड इंडिया सेंटर जो पहले से चल रहे हैं उनमें कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, उनको देखना, उनको समझना और अपने साथियों से मिलना जो रीड इंडिया सेंटर में बहुत पहले से ही काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम अपनी बाराबंकी में मोबाइल लाइब्रेरी का भी प्रचार कर रहे हैं और उस पर काम करना शुरू कर दिया है और वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे सेंटर का। और इसी के साथ मैं एक छोटा सा सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक देखें सितम की इंतहा क्या है। जो शुजनों से लबरेज वो दीवाने थे आजादी के, जिनकी रगों में लहू नहीं ज्वालामुखी धधकता था। गुलामी के विरुद्ध उनकी जिद जब भी लिखती इनकलाब ही लिखती। ब्रिटिश सत्ता के बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए भगत सिंह के जरिए जिस क्रांतिकारी संगठन ने जोर का धमाका किया था, उसी संगठन से जुड़े थे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी राजगुरु, जिन्होंने इस संगठन के साथ मात्र 4 साल का सक्रिय जीवन पाया, लेकिन यही 4 साल उन्हें अमर कर गए। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त सन 1908 को पूना जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता श्री हरि नारायण का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मां और भाई ने किया। राजगुरु को कसरत का बहुत शौक था। वे हिंदू धर्म ग्रंथों और वेदों के अध्ययन में भी विशेष रुचि रखते थे। वीर शिवाजी और बाल गंगाधर तिलक से वो अत्यंत प्रभावित थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने 11 साल के राजगुरु को हिलाकर रख दिया था और भारत की गुलामी उन्हें बेचैन करने लगी थी। अंग्रेजी की शिक्षा उनके मन को नहीं भाती थी, सो पढ़ाई में मन नहीं रमता। इसीलिए भाई और भाभी का बहुत तिरस्कार सहना पड़ता था। अंततः तंग आकर उन्होंने घर छोड़ दिया और विद्या अध्ययन और संस्कृत सीखने के लिए वाराणसी आ गए। यही उनके क्रांतिकारी जीवन का प्रस्थान बिंदु था। यहां अनेक क्रांतिकारियों से उनका संपर्क हुआ। चंद्रशेखर आजाद से वो इतना अधिक प्रभावित हुए कि उनके संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से तुरंत जुड़ गए। दल की ओर से सबसे पहले शिव वर्मा के साथ मिलकर उन्हें दिल्ली के एक गद्दार साथी को मारने का दायित्व सौंपा गया। दोनों के पास मात्र एक ही रिवॉल्वर थी, इसलिए शिव वर्मा दूसरा रिवॉल्वर लेने लाहौर चले गए। लेकिन राजगुरु के जोश को इतना सब्र कहां था। एक शाम मौका पाते ही उन्होंने उस गद्दार को अकेले ही मार गिराया। गोली चलाने के कुछ ही देर बाद वहां पुलिस पहुंच गई। वो 2 बार फंसते फंसते बचे। उन्होंने शहर की तरफ न जाकर रेलवे लाइन के सहारे मथुरा की तरफ का रास्ता पकड़ लिया। वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे चले जा रहे थे कि अचानक सर्च लाइट की तेज रोशनी उन पर पड़ी और उसके साथ ही कई तरफ से गोलियां चलने लगी। राजगुरु तुरंत पेट के बल लेट गए और रेंग कर एक नाली में छिप गए। फिर वहां से उसी तरह रेंगते हुए पास के खेतों में चले गए। खेत में पानी भरा हुआ था। कोई रास्ता न देखकर वो उसी पानी में लेट गए। ऊपर सर्च लाइट नाच रही थी और राजगुरु सांस रोके खेत में पड़े रहे। कभी कभी राइफल की गोली हवा को चीरती हुई इधर से उधर निकल जाती और फिर सन्नाटा छा जाता। थोड़ी देर बाद पुलिस के बूटों की आवाज और सिपाहियों की बातचीत उन्हें सुनाई देने लगी। वो लोग आसपास के सूखे खेतों में उनकी तलाश कर रहे थे। जाड़े की उस ठिठुरती रात में कोई पानी के अंदर भी लेट सकता है, इसका पुलिस को अनुमान नहीं था। काफी देर बाद चारों ओर सन्नाटा हो जाने पर राजगुरु बाहर निकले। कीचड़ और पानी से तर उनका शरीर एकदम सुन्न हो रहा था। उसी हालत में रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलते हुए उन्होंने 2 स्टेशन पार किए, तब मथुरा की गाड़ी मिली। मथुरा पहुंचकर उन्होंने जमुना में कपड़े धोए, उन्हें रेत पर सुखाया और लंगोट बांधे धूप में बहुत देर तक पड़े रहे। इतनी कठिन परिस्थितियों को सहकर अपनी सूझबूझ से वो सही सलामत कानपुर पहुंचे। इस घटना के बाद उनकी योग्यता, निष्ठा, साहस और दृढ़ संकल्प के प्रति दल आश्वस्त हो गया।

इस क्रांतिकारी दल से जुड़ने के बाद राजगुरु के जीवन को न केवल एक दिशा मिली, एक लक्ष्य मिला, बल्कि क्रांतिकारी साथियों के रूप में उन्हें जैसे एक अत्यंत स्नेहिल परिवार मिल गया, जिसके लिए वो बचपन से तरस रहे थे। एक तरफ भगत सिंह, सुखदेव, जतिन दास आदि से उनकी अत्यंत आत्मीयता थी, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें बड़े भाई सा प्रेम दिया, निशानेबाजी सिखाई और बहुत जल्द वो एक कुशल निशानेबाज बन गए। राजगुरु को दल में रघुनाथ के छद्म नाम से पुकारा जाता था। शुरू में उन्होंने दल की ओर से घूम घूम कर लोगों को जंगे आजादी के लिए जागृत किया, लेकिन दिल्ली के गद्दार साथी को मारने की उस घटना में उनकी सूझबूझ और बहादुरी को देखते हुए उन्हें सैंडर्स हत्याकांड में शामिल कर लिया गया। 17 दिसंबर 1928 की तारीख तय हुई। लाहौर के पुलिस कार्यालय के बाहर क्रांतिकारी साथी जय गोपाल को तैनात कर दिया गया। वो अपनी बिगड़ी हुई साइकिल को सुधारने का अभिनय करने लगा। पुलिस कार्यालय के सामने वाली सड़क पर भगत सिंह और राजगुरु खड़े होकर पढ़ाई लिखाई की बातें करने लगे। पुलिस कार्यालय के सामने ही डीएवी कॉलेज था। उसके फाटक की ओट में चंद्रशेखर आजाद अपना माउजर पिस्तौल लिए भगत सिंह और राजगुरु की सुरक्षा में तैनात हो गए कि घटना के बाद अगर किसी ने भगत सिंह और राजगुरु का पीछा किया तो वो उसे मार गिराएंगे। शाम के 5 बज रहे थे। सैंडर्स बाहर निकला और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे स्टार्ट करने लगा। उसे ऐसा करता देख जयगोपाल ने अपनी साइकिल की ठुक ठुक बंद की और उठकर खड़ा हो गया। ये इशारा था भगत सिंह और राजगुरु के लिए। दोनों के हाथ अपनी जेबों में चले गए। भगत सिंह ने सोचा गोली खाली न जाए, इसलिए बेहतर होगा कि सैंडर्स को और पास आने दिया जाए। लेकिन राजगुरु को भला सब्र कहां था। उन्होंने तुरंत पिस्तौल निकाली और गोली दाग दी। उनका निशाना अचूक था। गोली सैंडर्स के माथे पर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। अब भगत सिंह ने भी 4-6 गोलियां जड़ दी। गोलियों की आवाज सुनकर एक पुलिस इंस्पेक्टर फर्न बाहर दौड़ा। जब उसने भगत सिंह को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तब राजगुरु की पहलवानी काम आई। उन्होंने अपने दोनों हाथों में इंस्पेक्टर फर्न को ऊपर उठा लिया और पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटक दिया। उसके बाद फर्न उठ नहीं सका। अब 3 सिपाही उनकी ओर दौड़े। आजाद ने कड़कती आवाज में गोली मार देने की चेतावनी दी। 2 सिपाही तो लौट गए, लेकिन हवलदार चानन सिंह आगे बढ़ने लगा। आजाद ने उसके पैरों पर गोली चलाई, लेकिन जब लंगड़ाता हुआ भी वो आगे बढ़ने लगा तब उसे चंद्रशेखर आजाद ने मार गिराया। लाहौर के चप्पे चप्पे में पुलिस छा गई, लेकिन इस नाकेबंदी के बीच भी जिस अनोखे ढंग से ये सभी क्रांतिकारी लाहौर से बाहर निकले, इतिहास का वो पन्ना भी बेहद रोचक है। भगत सिंह ने एक अंग्रेज अधिकारी का वेश बनाया और भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी अपने 3 वर्षीय पुत्र के साथ भगत सिंह की पत्नी बनकर चल पड़ी। राजगुरु उनके नौकर बन गए और उधर चंद्रशेखर आजाद ने साधु का वेश बनाया और सभी लोग लाहौर से बाहर हो गए। इस घटना ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। भगत सिंह ने दल की ओर से चिट्ठी जारी करते हुए कहा, जेपी सैंडर्स मारा गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। आज संसार ने देख लिया कि हिंदुस्तान की जनता निष्प्राण नहीं हो गई है, उनका खून जम नहीं गया, वो अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा सकती है।

अपने क्रांतिकारी जीवन में राजगुरु अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानते थे भगत सिंह को। ये स्वाधीनता संग्राम में आगे बढ़कर मौत को गले लगाने की प्रतिस्पर्धा थी। यही कारण है कि दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने के लिए भगत सिंह के साथ वो स्वयं जाने की जिद पर अड़ गए। आजाद ने उन्हें समझाया कि इसमें बयान देने का सवाल आएगा, तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, गिरफ्तारी के बाद तुम्हें भगत सिंह से अलग कर दिया जाएगा। उन हालात में अगर तुम बम फेंकने के राजनैतिक महत्व को एक अच्छे बयान द्वारा न समझा सके तो केस का सारा महत्व ही खत्म हो जाएगा। इस पर राजगुरु ने दलील दी कि आप भगत सिंह से कहकर मेरे लिए अंग्रेजी में एक बयान लिखवा दीजिए, मैं उसे कॉमा फुल स्टॉप के साथ कंठस्थ कर लूंगा, आप सुन लीजिएगा, अगर एक कॉमा की भी भूल हो जाए तो मुझे मत भेजिएगा। कैसी दीवानगी थी ये। पद, पैसा, प्रतिष्ठा के लिए होड़ तो आम बात है, लेकिन स्वातंत्र्य समर में मौत को गले लगाने की ये होड़ एक ईमानदार क्रांतिकारी के भीतर ही हो सकती थी। बहरहाल बात बनी नहीं और राजगुरु नाराज होकर पूना चले गए। असेंबली बम कांड में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच नागपुर में राजगुरु की मुलाकात केशव बलिराम हेडगेवार से हुई, जिनके साथ उन्होंने आगे की योजना बनाई, लेकिन इस योजना पर वो चल पाते उसके पहले ही 30 सितंबर सन 1929 को वो पूना में गिरफ्तार हो गए। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक कर अपनी गिरफ्तारी दी तो गिरफ्तार हुए सारे क्रांतिकारियों को मुकदमा चलाए जाने के लिए लाहौर में फिर इकट्ठा किया गया। इस प्रकार राजगुरु भगत सिंह से फिर जा मिले। वो इस बात से खुश थे कि शहादत के रास्ते पर अब वो भगत सिंह से पीछे नहीं रहेंगे। जेल में हुई भूख हड़ताल के दौरान जब डॉक्टर ने राजगुरु को दूध पिलाने के लिए गले में नली डाली तो राजगुरु ने लंबा संघर्ष किया और दूध पेट में न जाकर फेफड़ों में पहुंच गया, उन्हें निमोनिया हो गया। राजगुरु खुश थे कि वो भी यतीन्द्रनाथ दास की तरह अनशन में मृत्यु का वरण कर भगत सिंह से पहले शहीद हो जाएंगे। अनशन से घबराकर सरकार ने क्रांतिकारियों की मांगें मान ली, हड़ताल स्थगित करने का फैसला हुआ। भगत सिंह ने दूध का गिलास राजगुरु के होठों से लगाते हुए कहा, आगे भागना चाहते थे बच्चू? राजगुरु ने मजाक किया, मैं सोच रहा था पहले जाकर तेरे ठहरने के लिए वहां कोई कमरा बुक करा लूं। बगैर नौकर के अब तुमसे कोई सफर कहां हो सकेगा। सैंडर्स को मारने के बाद राजगुरु भगत सिंह के नौकर के रूप में जो लाहौर से बाहर निकले थे उनका इशारा उसी ओर था। राजगुरु के गाल पर एक हल्की सी चपत देते हुए भगत सिंह ने कहा, अच्छा दूध पियो, वादा करता हूं अब तुमसे सूटकेस कभी नहीं उठवाऊंगा। और दोनों हंस पड़े। हंसी मजाक, शरारत और गीत संगीत से जिंदगी

शांति बनाए रखने वाले व्यक्ति थे राजगुरु। लेकिन फांसी की सजा सुनाए जाने से कुछ सप्ताह पहले राजगुरु काफी गंभीर रहने लगे थे। सभी चिंतित हो गए। कुछ को लगा कि मौत को इतना निकट देखकर राजगुरु परेशान हो उठे हैं। एक दिन शाम के धुंधलके में बैरक के बरामदे में जंगलों के पास अकेले बैठे राजगुरु एकटक बाहर की तरफ देख रहे थे। तभी शिव वर्मा उनके पास आए और पूछा, क्या मौत से डर रहे हो या जो कुछ किया है उसका पश्चाताप है? राजगुरु पहले तो मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर कहने लगे, कम से कम तुमसे ऐसे सवाल की आशा नहीं थी। मैं मौत से नहीं डरता, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम लोगों के बीच आने से पहले जीवन के 19 साल मैंने इसी दुनिया में गुजारे थे। मेरी जिंदगी का हर क्षण बोझ था। उस अपमानित जीवन में ये दुनिया मेरे लिए नरक से भी बदतर थी। फिर इन 3 सालों में ही कौन सा जादू हो गया कि यही दुनिया इतनी हसीन लगने लगी है। तुम लोगों का साथ छोड़कर जाने की सोचने पर दर्द होता है। इस प्यार के 2 क्षण और मिल जाएं, ये कौन नहीं चाहेगा। इस स्वाभाविक इच्छा को क्या मौत से डरना कहोगे? और फिर दोनों के बीच बहुत देर तक खामोशी बहती रही। धीरे धीरे फैसले का दिन आ गया। 7 अक्टूबर सन 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की कोठरी में राजगुरु का पुराना स्वभाव वापस आ चुका था। मस्ती, मजाक, छेड़खानी और गाने का सिलसिला फिर चल पड़ा। और जब अंतिम दिन 23 मार्च 1931 की शाम को राजगुरु की कोठरी खोली गई तो बुलंद नारों के साथ उन्होंने दूसरे साथियों को सूचना दे दी कि अब चलने का समय आ गया है। ढलते सूरज की मध्यम रोशनी में राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के साथ जैसे नई दुनिया बसाने के लिए स्वर्ग का द्वार खोलने निकल पड़े। भारत के ऐसे महान सपूत को हमारा शत शत नमन।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिव शेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

नमस्ते, मेरा नाम है साक्षी स्वामी। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम है पेड़ हमारे साथी हैं। पेड़ हमारे साथी है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। पेड़ कितने जरूरी है, फिर भी बेचारे कटते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: वेलकम ऑन दिस सेशन। तो आज हम सेशन जो है, आप सबको पता है लीडरशिप पे ही मैं सेशन लेती हूँ। और सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी कि सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। एवरीबॉडी शुड एक्नॉलेज कि हाँ, मैं एक लीडर हूँ, किसी ना किसी रूप में मैं लीडर हूँ। तो ये सब एग्री करते हैं इस बात पे कि लीडरशिप तो है, हम उसको इनवोक करते हैं कि नहीं करते, वो हमारा डिफरेंट कंसर्न है, बट एवरी बॉडी हैज अ लीडरशिप क्वालिटी इन दैट। एग्री करते हैं आप सब मेरे से? तो चैट में थोड़ा यस लिख दीजिए या हैंड रेस कर दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, एवरीबॉडी एग्रीज दैट एवरीबॉडी हैज द लीडरशिप क्वालिटीज। किसी में परसेंटेज वेरी कर ज्यादा है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, बट एवरीबॉडी हैज दैट, राइट? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत करते हैं कि हर एक में लीडरशिप क्वालिटीज होती है, पर हमें क्या करना होता है, उस लीडरशिप क्वालिटीज को इन्वोक करना होता है। इन्वोक मतलब कि पहचानना होता है और उसको जागरूक करना होता है, जो हम नहीं कर पाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। मे बी कोई भी सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कोई चैलेंजेस ऐसे होते हैं, या हम अनइंटेंशनली भी नहीं कर सकते। इंटेंशंस तो सब में होती है कि हमें लीडर बनना है, पर हम अनइंटेंशनली भी उसको इन्वोक नहीं कर सकते हैं। इन्वोक मतलब कि उनको पहचानना, उनको रिकग्नाइज करना, और उनको एवरी टाइम वी हैव अ फीलिंग इन आवर माइंड, यस वी आर लीडर्स विद इन आवर सेल्स। सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स अलग अलग होती है, कोई बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है, कोई डरता है कि मैं बात बोलूं तो मेरी बात पता नहीं पहचानी जाएगी कि नहीं पहचानी जाएगी, शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं ठीक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो स्मिता उसके ऊपर लाइफ स्किल्स का सेशन लेती है, और वो कल इस बात को भी हाईलाइट करेगी कि हाउ कम्युनिकेशन स्किल हेल्प अस इन डेवलपिंग आर लीडरशिप स्टाइल, आर लीडरशिप विद इन आवर सेल्स। इफ वी हैव लीडरशिप, हाउ टू इन्वोक दैट थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट विच स्मिता विल हाईलाइट टुमारो। द सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जो कहना चाहते हैं अपने, जब हम लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। सबको पता है कि बातचीत के दौरान कम्युनिकेशन के तीन प्रकार के हम यूज करते हैं टूल्स। एक तो हम वर्बली बोलते हैं, दूसरा हम लिख के बताते हैं, और तीसरा 80% ऑफ आर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो स्पीक्स अबाउट आर लीडरशिप क्वालिटीज। कि हम किसी के सामने अगर टिमिड बन के बैठ जाते हैं, टिमिड मीन्स कि हम अपने आप को कमजोर साबित करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस फुली व्हाट वी वांट टू से, दैट इज द बॉडी लैंग्वेज। बट यस, रिटन एंड ओरल आर द टू टूल्स नॉर्मली वी यूज फॉर शोइंग आर लीडरशिप क्वालिटीज एंड ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। दो साइलेंटली ऑल्सो, जो बहुत सारे लोगों का ये भी विचार है और मैं भी सहमत करती हूँ उससे, कि साइलेंट कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट साइलेंट कम्युनिकेशन इज कन्वेड थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। सो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा बात हम ये होते हैं, सोचते हैं कि क्या हम ठीक है या गलत है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कि क्या मैं जो कम्युनिकेट कर रही हूँ, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ये एक्सपीरियंस से, पढ़ने से, सुनने से और अपने आप को एक्सपोजर देने से इन राइट सोसाइटी, मेरे वर्ड्स अंडरलाइन करिए, इन राइट सोसाइटी अगर हम बैठ के कुछ भी बात बोलते हैं या कुछ सुनते हैं या सीखते हैं, तो हमारे अंदर का जो लीडरशिप सैंक्टिटी है, मैं इसको सैंक्टिटी बोलती हूँ, मैं भी पहले ऐसे नहीं थी जो आज जो आपके सामने हूँ, तो इसलिए मैं बहुत क्लियरली आपको समझा पा रही हूँ कि लीडरशिप हर एक में होती है क्वालिटी, पर उसको उसको पॉलिश करना, उसके ऊपर जो धूल मिट्टी पड़ी है उसको हटाना और अपनी बाकी के स्किल्स को एनहांस करना ही हमें हेल्प करता है अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस करने में। तो एक तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो हम कॉन्फिडेंट हो कि हम राइट बोल रहे हैं, राइट वे में कन्वे कर रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज है वो भी ठीक है, और जो हम बोल रहे हैं जिसको हम कंटेंट बोलते हैं वो भी ठीक है। तो ये कैसे आता है? पढ़ने से, सुनने से, आंखों से देखने से, कानों से सुनने से, और सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, उसको जानने से हमारा कॉन्फिडेंस, हमें क्लैरिटी भी आती है, हमें करेज भी मिलता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जो थर्ड पॉइंट है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, सब लेते हैं, सुबह उठते ही चाहे छोटा डिसीजन हो और रात के सोने तक चाहे छोटा डिसीजन हो, चाहे बड़ा डिसीजन हो, चाहे घर के बारे में हो, चाहे समाज के बारे में हो, चाहे बच्चों के बारे में हो, चाहे ऑफिस के बारे में हो, चाहे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में हो, या हम कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं पहले कि ठीक है या नहीं, वो प्रैक्टिस से हमें आता है जब हम उसको एनालाइज करते हैं कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, और फिर हम डिसीजन अपना कन्वे करते हैं। और बहुत बारी हमें एक्सपीरियंस ये होता है कि हम डिसीजन शायद इमोशनली ले रहे हैं या हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके डिसीजन ले रहे हैं। तो ये जो कश्मकश है हमारे दिल में, जो हम ये इसके बारे में सोचते रहते हैं, वो एक आर्ट है, उसको हमें प्रैक्टिस से ही आता है और उसको हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ पीपल के साथ डील करते हैं और हमारा डिसीजन डिपेंड करता है कि हम उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसको हम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन अपना कन्वे करें या नहीं करें, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। और अगर हम इनको ध्यान में नहीं रखते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने डिसीजन गलत भी ले सकते हैं। हम जब अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, कोई उसको एक्सेप्ट करता है, कोई उसको क्रिटिसाइज कर देता है, या कोई उसको डिस्कार्ड कर देता है। सिमिलरली मैं आज अगर सेशन ले रही हूँ, तो अगर यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, 29-30 लोग लाइन पे हैं, उनमें से हर कोई 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ये हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब भी मैं किसी को सोचती हूँ तो मैं एक कुछ हद तक, मे बी 90%, मे बी 80%, मे बी 70% मेरी एब्जॉर्प्शन लेवल होता है। क्यों होता है, ऐसे वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे बहुत डिपेंड करता है कि हम कितने अलर्ट हैं। हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है, शायद घर की टेंशन है, चाहे ऑफिस की टेंशन है, चाहे मैं आई रास्ते में मुझे बस नहीं टाइम से मिली, या मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, या मेरे बच्चे के स्कूल का कुछ है, या हस्बैंड के साथ कोई बात है, एनी रीजन जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है, वो हमारे एब्जॉर्प्शन लेवल को उसका असर होता है, राइट? तो हम तभी कहते हैं कि हमें अपनी सोच को उस हद तक ही एक्सटेंड करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए कि हम उसका उसका असर हमारी दिनचर्या पे नहीं हो। प्रॉब्लम सबके साथ है, चैलेंजेस सबके साथ हैं, पर ये प्रैक्टिस के साथ आता है। अगर हमारे अंदर कुछ लीडरशिप की शक्तियां हैं या कुछ लीडरशिप के भावना है अपने अंदर लीडरशिप को डेवलप करने की, तो विद प्रैक्टिस हम ये जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर जो डे टू डे लाइफ में आते हैं, हम किसी हद तक उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हमें ये हमेशा ये लेसन हमें मिलता है कि हम अपने पास्ट को एनालाइज करें, अपने प्रेजेंट को उसी तरीके से एक्शन लें और अपने फ्यूचर को एनविजन करें। ये लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, क्योंकि लीडरशिप थोड़ा हटके होता है, वो दिनचर्या के साथ हम रोजमर्रा की जिंदगी के साथ उसको नहीं जोड़ सकते हैं। और मैं क्यों बार बार इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि हमें अपनी लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं, जो सो रही हैं, उनको जगाने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आज मैं आपको 10 E's की फिलॉसफी समझाऊंगी कि 10 E's क्या है। E मतलब कि कैपिटल E। एक तो हम बहुत ज्यादा, मैं जिस भी गांव में जाती हूँ, जिस सेंटर में जाती हूँ, हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं, और हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं किसी भी सिचुएशन के साथ। तो जब हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं, तो हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम करते हैं। दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट कि अगर हम इमोशनली बह जाएंगे तो हमें अपने दिमाग से जो सोचना है वो शक्ति हमारी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना है। वी आर वर्किंग विद वुमेन फ्रॉम द पास्ट 2 days। आई वॉज ट्रेवलिंग, आई वॉज इन रामपुर, आई वॉज इन उधम सिंह नगर, आई मेट हंड्रेड्स ऑफ वुमेन जिनको मैं बार बार यही कहती हूँ कि देर इज ए नीड टू ड्रॉ अ बैलेंस बिटवीन इमोशंस एंड योर ब्रेन, दिमाग के साथ। तो ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर ये प्रैक्टिस से आती है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस के जो स्टेप्स हैं मैं आज आपको समझाऊंगी कि क्या स्टेप्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि ऑलवेज अगर कोई हमारे पास सेंटर में आ रही है कोई इशू लेके, अपना पर्सनल इशू है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और हम उसको सुनते नहीं हैं, हम अपना बिना सुने, बहुत 90% लोग क्या होते हैं, सुनने की क्षमता कम रखते हैं और अपना डिसीजन करने हम बहुत जल्दी करते हैं। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि हम बिना सोचे समझे, बिना सुने, बिना उसको एनालाइज करे, हम अपनी बात पहले रखने की कोशिश करते हैं, और ये घर में भी होता है। हमें सिंपैथी से ज्यादा एम्पैथी अपनानी चाहिए। एम्पैथी मींस, एम्पैथी का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को उस सिचुएशन में रख के उस इंसान की प्रॉब्लम को रियलाइज करें। शायद आप उस प्रॉब्लम से ना गुजरे हो और दूसरा इंसान उस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, और वो उसके पास एक ही उम्मीद है कि मैं सेंटर में जाऊंगी, मैं अपनी टीचर से ये बात कहूंगी, या अपने पीयर ग्रुप में ये बात कहूंगी, या मैं अपने कोऑर्डिनेटर के सामने ये बात रखूंगी, और हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हम उनको टाइम नहीं दे पाते। पर हमेशा हमें उनकी सिचुएशन में अपने आप को रख के अगर हम वो प्रॉब्लम को एनालाइज करें, उस प्रॉब्लम को इमोशनली ना देख के, जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स हैं लीडरशिप की, या लाइक किसी की सिचुएशन को समझने की, उसको सामने रख के अगर हम उसको हेल्प करें तो हम बहुत ही रियलिस्टिक वे में उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने दो चीजों को यहाँ पे एम्फेसाइज किया, जो भी मैंने अभी बोला है, कि इमोशंस को कंट्रोल में रख के और एम्पैथी के साथ अगर हम दूसरे की प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं और उसको हम ठीक ढंग की सलाह देते हैं, तो वो इंसान भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा और हमको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने किसी के लिए कुछ किया। तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? ठीक है, आगे चलो। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि वी शुड ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू ब्रेन, बट वी कैन नॉट बी रथलेस। इसमें भी फर्क है। देखिए, एक तो मैं बोल रही हूँ कि आप 100% इमोशनली कोई डिसीजन कन्वे नहीं करें। दूसरा, मैं बोल रही हूँ कि आप अपने दिमाग का, ब्रेन का इस्तेमाल करें, उसको सोचें, उसकी सिचुएशन में अपने आप को रखें, बट हमें बहुत हार्श, बहुत रथलेस जो होते हैं, रथलेस मीन्स विदाउट, मैंने कम्युनिकेशन की पहले बात करी थी आपके साथ, कि विदाउट विदाउट एनालाइजिंग व्हाट वी आर कन्वेइंग, हाउ वी आर कन्वेइंग, व्हाई वी आर सेइंग दिस, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट मैनेजर्स, वी आर लीडर्स। हम यहाँ पे लीडर्स की बात कर रहे हैं। मैनेजर तो ये बोलते ना कि मुझे नहीं पता तेरे घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इट्स योर कंसर्न, मुझे तो ये काम चाहिए चाहिए, मुझे आज ही करके दो, नहीं तो कल से जॉब पे नहीं आना। ऐसे कभी सेंटर्स में बात हुई है? नेवर एवर। मुझे नहीं पता कि आज तक हमने कभी इस लहजे में किसी से बात की है, हम कभी भी नहीं करते हैं। दैट इज द वन ऑफ द मेजर वैल्यू ऑफ रीड इंडिया विच वी पास ऑन टू आर कोऑर्डिनेटर्स, आर टीम, आर स्टेक होल्डर्स, एवरीबॉडी। एम आई राइट? तो रथलेस बिल्कुल नहीं होना। एम्पैथी इज द आंसर, पुटिंग योर सेल्फ इन टू देयर शूज एंड एनालाइज व्हाई शी इज सफरिंग, व्हाई शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम टुडे, और उसको पूरा टाइम देना है उसकी प्रॉब्लम सुनने का। और ये मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ। मैं जब भी सेंटर में जाती हूँ, कोई भी लेडी मेरे पास आती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको टाइम देती हूँ, उसकी बात सुनती हूँ। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें मैं नहीं जा पाई हूँ, जैसे बिहार के सेंटर्स हैं, मैं नहीं जा पाई। बैंगलोर का सेंटर है, कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाई। बागेपल्ली मैं पहले बहुत बार गई हूँ, आंध्रा भी गई हूँ, श्री सिटी भी गई हूँ, पर जितना फ्रिक्वेंटली मुझे जाना चाहिए उतना फ्रिक्वेंटली मैं नहीं ट्रेवल कर पाती हूँ। अर्लियर बिकॉज ऑफ द कोविड, एंड सेकेंडली अभी इतने सारे सेंटर्स बढ़ गए हैं कि वो ट्रैवल करना ही थोड़ा सा टफ हो जाता है। नाउ जब हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, तो हमारे हमें अपनी एक प्रैक्टिस ये भी शार्प करनी चाहिए कि हम उस सिचुएशन को एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें कि व्हाई दिस हैज हैपेंड टू हर। ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। उन रीजंस को हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम उनको एनालाइज नहीं करते हैं, हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं, और हम जल्दी से अपना डिसीजन लेके हम अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं। जब हम इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं, या अगर हम इस तरीके से दूसरों को सलाह देते हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट टर्म होता है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होता। हम उस प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके उस दिन के लिए अपना सोल्यूशन निकाल रहे हैं, पर वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हमें हमेशा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए अपने आप को। जितना हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अपने आप को ये जो वेब है चैलेंजेस का, प्रॉब्लम्स का, डे टू डे लाइफ का, वेब का मतलब क्या होता है, जाला, उससे हम अपने आप को आस्ता आस्ता बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने चौथा ई यहाँ पे क्या बोला, इवैल्यूएट करना, उस सिचुएशन को परखना, उस सिचुएशन को जांचना। और ये हम अगर आदत डालेंगे अपने, तो ये हमारी एक रूटीन बन जाएगी कि व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, व्हाई आई एम एक्टिंग लाइक दिस, व्हाई व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट एक्शन आई एम टेकिंग। ये हमें आदत पड़ जाएगी और कोई ना कोई नेचुरल फिनोमिना हमें आके स्टॉप करेगा कि लेट अस नॉट बी वेरी एग्रेसिव इन कन्वेइंग आवर डिसीजंस, इन यूजिंग द रथलेस लैंग्वेज, इन यूजिंग द वर्ड्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड टू से। तो ये हमें क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश भी करता है और ये डे टू डे लाइफ में हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत असर करती है ये चीज। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिर अगर हमारे में लीडरशिप का स्पार्क है तो हम उस दूसरे पर्सन जो हमारे पास आया है अपनी प्रॉब्लम को लेके, हम उसको एनेबल करते हैं कि अपनी सिचुएशंस को खुद ही एनालाइज करो। हम अपना डिसीजन उनपे नहीं थोपें, हम अपना ये नहीं कन्वे करें कि यस आप तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो अगर हम उनके उनके अंदर एक आदत डालते हैं कि हम उनको एनेबल करते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को खुद एनालाइज करो, और उनको बहुत ही हलीमी से हम उनको समझाते हैं, तो शायद हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद एनालाइज करें, खुद अपने जीवन में आगे बढ़े और अपनी प्रॉब्लम्स को उलझाना की बजाय उनको रिजॉल्व करने की आदत डालें। नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस प्रोसेस से अगर हम चलते हैं, हम उसको एनेबल करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसको किसी ना किसी तरीके से बातचीत करके, समझा के, उसको हेल्प करके उस शक्ति को भी हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उसको एम्पावर भी कर रहे हैं। एम्पावर किसके लिए कर रहे हैं, जो सिचुएशन में वो फंसी हुई है, जो सिचुएशन से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उस सिचुएशन को एनालाइज करके कामली कंपोज मैनर में वो अपने सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढ रही है और हम उसको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरिंग। हम भी ऐसे ही करते हैं। रीड इंडिया क्या करती है, एंगेज करती है, एनकरेज करती है, एम्पावर करती है और आपको आगे बढ़ने का खुद ही आप अपना रास्ता ढूंढते हो। मैं खाली जो आप लोग करते हो उसी को आपके सामने रख रही हूँ, मैं कोई नई चीज आपके सामने नहीं रख रही हूँ, ठीक है? जब हम एम्पावर करते हैं तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इनकलकेटिंग दी हैबिट ऑफ टेकिंग राइट डिसीजंस फॉर राइट एक्शन एट राइट टाइम। आप तीन चीजों को नोट करिए कि जब आप उसको एम्पावर एनेबल कर रहे हो, उसको एम्पावर कर रहे हो, तो आप उसमें एक आदत इनकलकेट कर रहे हो। इनकलकेट का मतलब उसको एक आदत उसमें ये बहुत अच्छे से डाल रहे हो कि वो राइट डिसीजन ले, राइट एक्शन ले उस डिसीजन के ऊपर, और राइट टाइम पे ले। ठीक है, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। तो वो कैसे आती हैं? जब हम पिछले जो 5 स्टेप्स मैंने बताए हैं उन पे हम रेगुलर प्रैक्टिस करने की आदत डालें, उसको रोज प्रैक्टिस करें, अपने दिनचर्या को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को उसके साथ हम जोड़ें। तो मैंने आपसे अभी तक जो बात की है वो इमोशंस की बात की है, एम्पैथी की बात की है, इवैल्यूएट करने की बात की है, एनेबलिंग करने की बात की है, एनकरेज करने की बात की है, और उनको एम्पावर करने की बात की है। तो ये पॉइंट्स आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं सबको मेल भी कर दूंगी। ठीक है, सो विद दीज 5 E's यू आर एनेबलिंग द अदर पर्सन टू एनलाइटन हिज और हर ओन पाथ ऑफ ग्रोथ। तो उसको एक रोशनी की किरण मिलती है कि हाँ, अरे ये तो ठीक ही है, इन्होंने मुझे बताया कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकती हूँ, मुझे इन्होंने रास्ता दिखाया, डिसीजन मेरा है, उन्होंने खाली मुझे रास्ता दिखाया है कि आप इस रास्ते पे भी चल सकती हैं, सेकंड लेन में भी जा सकती हैं, थर्ड में भी जा सकती हैं, फोर्थ में भी जा सकती हैं, चॉइस आपकी है, क्योंकि आपने उसको डिस्कस किया है, उसको एनालाइज किया है, उसको इवैल्यूएट किया है, और आपने अपना राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम इसी बात को आगे लेके चलें तो मैं ये कहूंगी कि ये इतना आसान नहीं है, चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जो कभी तो वो विजिबल हैं सरफेस पे और कभी वो इनविजिबल भी हैं। विजिबल ये है कि हाँ, सामने सिचुएशन खड़ी है, सामने पहाड़ गिर गया है और मुझे सड़क पार करनी है, और जब तक मैं उस पहाड़ को, पत्थर को अपने रास्ते से नहीं निकालूंगी, नहीं आगे धकेलूंगी, तो मैं सड़क पार नहीं कर सकती। कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती हैं जो बिल्कुल इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, बट प्रॉब्लम्स तो हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए भी हमारे को रास्ता ढूंढना है। उन प्रॉब्लम से हम कैसे निकलेंगे, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ का व्हीकल आगे बढ़ाने के लिए। और वो कैसे बढ़ेगा कि हमें अपने आप को सेल्फ एनकरेज भी करना है आगे बढ़ने के लिए। जब तक हम अपने आप को सेल्फ एनकरेज नहीं करेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे और हम कहेंगे कि वी विल गिव अप, नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई कैन नॉट डू दिस, आई शुड नॉट डू दिस। जब ये थॉट्स हमारे माइंड में आने शुरू हो जाएंगे तो हम वेवरिंग माइंड हो जाएगा हमारा, हम फिर भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो शुरू में मैंने क्या बोला कि हम अपने आप को इमोशनली वीक करें या हम अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को दिमाग से सोच के हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। और उसको किसने करना है, आप लोगों ने करना है। कोई भी लीडर आपके दिमाग में घुस के आपकी सोच नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपके इमोशंस को नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपको उंगली पकड़ के चलाना नहीं सिखाएगा। लीडर खाली आपको रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलना किसने है, आपने चलना है। ठोकरें भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, इमोशनली वीकनेस भी आएगी, बट लीडरशिप सेज दैट यू हैव टू ब्रेक द बैरियर्स। ब्रेक द बैरियर्स मीन्स जो भी रास्ते में उलझने आ रही हैं उनको सही दिमाग से, बहुत हलीमी से, पेशेंस से, परसिवरेंस से उनके सॉल्यूशंस निकाल के आगे बढ़ना है. बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, बट बिकॉज हमारा माइंड इतना वेवरिंग होता है, हमारे पे इतने प्रेशर्स होते हैं माइंड पे, हम राइट डिसीजन एट राइट टाइम नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाते हैं. अनलेस वी हैव क्लैरिटी इन आर माइंड, वी कैन नॉट डेवलप द करेज फॉर शेपिंग आर ओन लाइफ टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल. इज इट राइट? अगर हम हमेशा कंफ्यूज ही हैं, हमें क्लैरिटी नहीं है माइंड में, और क्लैरिटी प्रैक्टिस से आती है. अगर आप अपनी दो सिचुएशंस को एनालाइज करके उसका ठीक टाइम पे उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो आपकी क्लैरिटी अपने आप ही शार्प हो जाएगी. ये मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. पर अगर हम हमेशा रट में ही रहेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे, हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस भी नहीं आए. अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे अपने बारे में, दूसरों के बारे में, समाज के बारे में, कि मुझे समाज ने दिया क्या है, मेरे परिवार ने मुझे क्या दिया है, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, अगर हम ये क्वेश्चन मार्क की जिंदगी जिएंगे, तो हमें क्लैरिटी नहीं आएगी. हमें इस क्वेश्चन मार्क की जिंदगी से एफर्मेशन की जिंदगी में आना है कि हाँ, ये चैलेंजेस हैं मेरे सामने, इन चैलेंजेस को मुझे रिजॉल्व करना है, और इन चैलेंजेस की प्रायोरिटी भी आपने तय करनी. कई बार हम क्या करते हैं, एक बहुत प्रायोरिटी सिचुएशन हमारे सामने है, हम उससे आंखें छुपा के हम दूसरी प्रायोरिटीज को रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं. ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हम लोग सब करते हैं, इंक्लूडिंग मी. आज मैं ये सेशन आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं एक लाइफ सिचुएशन आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ. पर हमें प्रायोरिटीज भी अपने आप ही तय करनी है कि ये 100% प्रायोरिटी है, ये 80% है, ये 60% है, ये 40%. ये हमारी दिनचर्या, ऑफिस में भी यही होता है कि हम अपने पूरे 8 घंटे ऐसे ही पास कर देते हैं. हम मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजों को छोड़ के लेस प्रायोरिटी वाली चीजों के ऊपर फोकस कर देते हैं, और मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजें हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं. उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है, जो हम बाकी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, और इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा. और अब हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने आप को एनकरेज भी किया, और हमने अपनी लाइफ में एनविजन भी किया. जो मैंने आपको बोला था ना, मोस्टली स्टेटमेंट ये होती है कि यू लिव इन योर प्रेजेंट, राइट, इन अ मैनर दैट योर पास्ट गिव्स यू द हैप्पीनेस. आज का पल जो प्रेजेंट है, वो पल अगले मोमेंट में वो पास्ट बन जाएगा, बनेगा. जब वो पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट को इस तरीके से जिया है कि आपका पास्ट आपको खुशी नहीं देगा, तो आप दुख को ही लेकर आगे बढ़े. तो आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को यूज नहीं किया, आपने अपने प्रेजेंट को इस तरीके से नहीं जिया कि जब वो पास्ट बने तो आपको उसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, आपको उसमें खुशी मिले. और खुशी अगर हम खाली अपने लिए ढूंढेंगे तो बहुत छोटी सी खुशी होगी, वो एक बिंदु होगा. तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि यू लिव योर प्रेजेंट इन अ मैनर, व्हेन इट बिकम्स पास्ट यू फील हैप्पी अबाउट दैट. ये बहुत चार अक्षर की स्टेटमेंट है पर बहुत पावरफुल है। इस स्टेटमेंट को अगर हम इग्नोर करते हैं, इस स्टेटमेंट को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर तो कभी एनलाइटन फिर हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसमें तो पास्ट का भी इफेक्ट आएगा, प्रेजेंट का भी आएगा और वो हमारा फ्यूचर बनेगा। सो वी हैव टू एनालाइज व्हाट वी आर डूइंग। हम एक समाज में रहते हैं, हमें हमेशा अपने दुख का गाना नहीं गाना है। वी लिव इन अ सोसाइटी, वी कैन नॉट जस्ट सिंग आवर ओन सॉन्ग्स, चाहे हमारी दुख हो चाहे हमारी खुशी हो। वी ऑल्सो हैव टू लेंड आवर इयर्स टू लिसन टू दी सॉन्ग्स ऑफ अदर्स। हमें अपने कान जरूर दूसरों के लिए रखने हैं कि हम उनका भी गाना सुन सके, चाहे वो दुख सैड सॉन्ग हो, चाहे वो खुशी का सॉन्ग हो, चाहे वो स्ट्रगल्स का सॉन्ग हो, चाहे वो ग्लोरी का सॉन्ग हो। हमें दूसरों को भी स्पेस देनी चाहिए उनके बारे में सुनने की, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में। वी जस्ट रिएक्ट, दूसरे इंसान की बात ही खत्म नहीं होती है और हमारा सोचने का स्केल इतना हाई हो जाता है, वो हमें रिएक्ट करने के लिए इतना मजबूर कर देता है कि दूसरे इंसान की बात वो किस लहजे में कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या चीज उसको अंदर से प्रोत्साहित कर रही है ये बात कहने की, हम बिल्कुल उसके ऊपर क्रॉस मार देते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये जो जर्नी है ये लाइफ की हमारे हाथ में है, अब हमने डिसाइड करना है कि हम किस रास्ते पे चलें, कौन सा रास्ता अपनाएं और अपनी लाइफ की डायरेक्शन हम कौन सी रखें। वी शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन आर अचीवमेंट्स एंड कीप ऑन रिड्यूसिंग द लिस्ट ऑफ चैलेंजेस। ये हमारा मिशन होना चाहिए। ये आसान नहीं है, प्रैक्टिस से आता है। जितना हम दूसरों की मदद करेंगे उतना जो सुपर पावर है वो हमारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर हम अपना ही दुख को इतना बड़ा और इतना एनहेंस कर देंगे तो जो हमारी क्षमता है दूसरों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की वो खत्म हो जाएगी। तो इस बात को भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर हम ये आदत डाल लेते हैं, आप अगर मैं कल भी परसों रामपुर में मैं लड़कियों को बोलकर आई थी कि आप अपनी एक डायरी बनाएं और जो भी अच्छी चीज आपने सीखी, आपने समझी और आपने करी उसको अपनी डायरी में लिखें, और मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी मैं वो डायरी देखना चाहूंगी। एंड दैट डायरी इज ए बाइबल फॉर यू, दैट डायरी इज ए कुरान फॉर यू, बिकॉज हमें स्पिरिचुअल बुक्स भी क्या कहती हैं, हम अपने आप को सुधारें, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, हम अपना सुख भी लोगों के साथ बांटे, खाली दुख नहीं बांटे, और दूसरों के दुख में शामिल होके उनके चैलेंजेस में शामिल होके उनको भी हेल्प करें उसमें से बाहर आने की। यही कहते हैं हमारी स्पिरिचुअल होली बुक्स। और अगर हम अपनी एक होली बुक लिखना शुरू कर दें तो कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा आपका, जब एक साल के बाद आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कितनी अच्छाइयाँ हैं, है ना, कितना अच्छा लगेगा आपको वो पढ़ के। तो आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ये आपको हेल्प करेगा जब आप पेपर पे लिखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा अपने अंदर की नेगेटिविटी को भगाने के लिए और पॉजिटिव चीजों को इनवाइट करने के लिए। जो आपकी नेगेटिव चीजें हैं वो आपसे आस्ता आस्ता दूर जाना शुरू कर देंगी और पॉजिटिव चीजें आपके आसपास रहेंगी और आपको हमेशा एक सुकून मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, एक आत्मविश्वास मिलेगा जिससे आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। बस मैं आज इतना ही कहना चाह रही थी। अगर किसी के कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहता हो, तो हमारे पास 10 मिनट हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो मैंने इतने सारे ईज की आपके साथ आज बात करी है, वो मैं शिवानी को दे दूंगी, या मैं इसी मेल पे लिख दूंगी सबको। मैंने बात करी है इमोशंस की, एम्पैथी की, इवैल्यूएशन की, एनकरेजमेंट की, एम्पावरमेंट की, एनेबलमेंट की, एनलाइटनमेंट की, एनविजन करने की, लाइफ्स को एनरिच करने की, और लास्टली जब आप अपनी डायरी लिखना शुरू करेंगे तो आप एम्फसाइज करेंगे दूसरों के सामने में कि इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू, बिकॉज यू हैव जस्टिफिकेशन, यू हैव प्रूफ विद यू दैट यू हैव डन दिस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई कोई कमेंट, और कोई शेयर करना चाहता है कुछ, तो प्लेटफॉर्म आपके पास है। हमारे पास 10 मिनट हैं और हम 10 मिनट में फिर इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच हमें इनक्रेज करने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।
2: मैं सुवर्णा बोल रही हूँ मैम, पूना सेंटर से। बहुत अच्छा सेशन लिया मैम आपने, जैसा मोटिवेट किया, मतलब हम भी आपके सेशन से हम भी बहुत अच्छा, मतलब स्ट्रांग बन जाते हैं आपका सेशन अगर सुना तो।
0: बहुत अच्छी बात है। और एक पॉइंट, आप एक वर्ड शेयर कर दीजिए सबके साथ, जिस जो वर्ड ने आपको मोटिवेट किया है।
2: इमोशनली हम भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं मैम आपका सेशन अगर सुना ना।
0: हाँ,
2: यस
0: वेरी गुड,
2: मैम,
0: वेरी
2: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू मैम।
3: अंजुल द्वारका सेंटर से।
0: हाँ जी अंजू,
3: आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम, आपका लीडरशिप की क्वालिटी जो आपने बताई है।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रैक्टिस करिए उसको, स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन सरपास एवरीबॉडी।
3: जी मैम,
0: ये बहुत जरूरी है। इसको खाली सुनने से तो समझ में आता है, पर प्रैक्टिस करने से और भी ज्यादा अच्छे से। थैंक
3: थैंक यू मैम।
0: यू, थैंक यू अंजू।
4: मैम इस पे चलने के लिए भी हमें पावर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे जरूर इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि बहुत कुछ है जिसपे प्रैक्टिस करना है। ऐसा लगता है चीज टूट जाती है, कुछ चलती रहती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि इसके बाद हमें लगता है कि हमें किस किस जगह चीज को इम्प्लीमेंट करना है। इससे हमें पता चलता है कि हमें अभी और क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
4: जी मैम,
0: पहले अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाना है, फिर दूसरों की लाइफ को भी स्ट्रांग बनाना है। दोनों
4: जी मैम, जी मैम,
0: चीजों का दारोमदार आपके कंधों पे है।
4: जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम।
5: गुड आफ्टरनून मैम, फरहा बोल रही हूँ रामपुर से।
0: फरा, कैसी हो आप?
5: ठीक है मैम। आपने बताया कि हमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है करना, कभी भी अगर हम सेंटर पे बेनिफिशियरीज को सिखाते हैं तो यही नहीं होना चाहिए कि उसका एडमिशन किया और सिर्फ हमारा मतलब है उसको सिखाने से, कि आज उसने क्या सीखा, कल क्या सीखा, वो क्या सीख रहा है, बट उसके साथ हमारा एक अंदर से बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए कि वो फैमिली में कैसा चल रहा है उसका, उसके अंदर की क्या प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर सके। अभी मैंने लाइब्रेरी के सेशन में भी ये शेयर किया था और यहाँ भी शेयर करना चाहती हूँ। एक बेनिफिशियरी मेरे पास आ रही थी और वो आती थी, कंप्यूटर सीखती थी और चली जाती थी। काफी लड़कियां थी जो हंसती भी थी, बोलती भी थी, बट उसको किसी से कोई मतलब नहीं। आई और उसने सीखा और वो चली गई। तो मैंने नोट किया, 15 दिन, 20 दिन, एक दिन मैंने उसे याद करने के लिए कुछ दिया कि आपको ये याद करके लाना है, तो वो अगले दिन याद नहीं करके लाई और बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि मैम आप हमें डांटेंगी। मैंने कहा आपने मतलब देखने से पहले ही सोच लिया कि हमें मैं डांटूंगी। मैंने कहा डांटूंगी नहीं, आप मुझे बताओ कि आप रो क्यों रही हो, कि मैंने ये स्पेलिंग याद नहीं की। तो मैंने कहा आपने याद क्यों नहीं की कि वो मेरी ना मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है, मैंने उससे ऐसी धीरे धीरे बात निकलवाई, मम्मी क्यों परेशान करती कि मेरी पापा ने दूसरी शादी कर ली, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, और वो कहती है अब तुम्हें कहीं पढ़ने नहीं जाना है, घर का काम करना है और भैंसों को देखना है, दूध वूध बेचना है, और तुम्हें कुछ नहीं करना है और मुझे पढ़ना है मैम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी मम्मी से बात करने आऊंगी घर पे और उनको समझाऊंगी, और आप सेंटर पर आओ, आपको जो सीखना है वो सीखो, बट ऐसे परेशान रहने से कुछ नहीं होगा, आपको भी बात करनी होगी खुद के लिए घर पर। तो उसको ये बात काफी समझ में आई, उसने अपने पाप मम्मी तो नहीं सुन रही थी उसकी बात, लेकिन उन्होंने अपने पापा से वो बात की, और हम उसके गाँव गए, हमने उसकी मम्मी से जब फेस टू फेस बात की तो वो बहुत तेज किस्म की थी, वो यही बोल रही थी कि नहीं अब ये क्या करेगी, पढ़ के नहीं पढ़ना है, इसकी शादी करनी है हमें, और ये है और वो, और वो जो उनकी सगी बेटी थी उनको पढ़ा रही थी। मतलब गाँव में ये होता है कि वहां पर सगा सौतेले का थोड़ा सा रखते हैं कि इनको नहीं करना है, तो वहां उनको हमने बहुत इनकरेज किया और बोला कि शादी से पहले अगर आप 1-2 महीने हमारे सेंटर पे भेज दो, पूरी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आप सीखने दो जो वो सीखने के लिए बोल रही है, आप फीस मत देना, आपको लगता है कि मेरी बेटी के लिए वहां फीस जा रही है और मैं नहीं दे सकती, आप फीस मत दीजिएगा, लेकिन इसको भेजो क्योंकि ये सीखना चाहती है। तो वो उस चीज से बहुत खुश हुई और उसकी मम्मी ने ठीक है आधे पौन घंटे के लिए सेंटर पे भेजना शुरू किया। तो वो जो उसकी बातें दिमाग से थी और जो वो सोचती थी, डरती थी, वो टेंशन में रहती थी, तो वो धीरे धीरे दूर हुई। तो वो सारी चीजें आपने हमें बताई कि हमें कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है सेंटर पे, अगर हमारे पास एक एक बेनिफिशियस आ रहा है तो हमें उससे हर एक बेनिफिशियस से बात करना चाहिए, क्या पता हम अपनी बात समझा के उसको कुछ इनकरेज करें उसकी लाइफ के लिए, क्या पता उसकी सोच चेंज करें, उसके जितने भी दिमाग में निगेटिव पॉइंट है उसको दूर करके उसको पॉजिटिव सोच में बदले। तो ये बात आपका ये पॉइंट हमेशा हम नोट भी करते हैं, करते भी आगे, और आज आपने जो बताया वो काफी हमारे लिए काम आता है। थैंक
0: थैंक
5: यू।
0: यू फरा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैं सबको सबको ये बोलना चाहूंगी जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मैं परसों, मैं कब थे हम फरा के सेशन में, ऑन ऑन ट्यूसडे, राइट, ऑन ट्यूसडे मैं स्मिता डिंपल मैम फरा और अकबर के सेशन में सेंटर में थे, और इट वाज अमेज्ड, 50 से ऊपर लड़कियां थी जो इनके सेंटर में बैठी थी और सबने बुर्का पहना हुआ।

0: आई अकबर इज नॉट हियर टुडे. थैंक यू फॉर कमिंग टुडे ऑनलाइन. आज आपका फेस्टिवल है पर फिर भी आप सेशन मिस नहीं कर रही हैं. और उस दिन मेरे सामने से वो आंखों के आगे से वो सीन ही नहीं जा रहा है कि इतनी सारी लड़कियां वहां पे हमें सुनने के लिए आई हुई थी और पीछे की लड़कियां स्टूल्स पे खड़े होके हमारी शक्ल देख के हमें सुनना चाह रही. दैट वाज अमेजिंग फरा. यू आर अ रियल लीडर एंड यू आर वर्किंग इन द
1: थैंक यू
0: कम्युनिटी
1: मैम,
0: वेरी वेल वेरी
1: ये सब
0: वेल.
1: आपसे ही सीखा है मैम, जो आप
0: बहुत
1: सिखाते हैं वो हम आगे करते हैं। थैंक
0: अच्छा
1: यू।
0: लगा उस दिन मुझे. डिम्पल ने अपने सेंटर के, स्मिता ने अपने एक्सपीरियंसेस, फरा ने अपने एक्सपीरियंसेस, जो मैं हमेशा फरा को कोट करती हूँ कि फरा को मैं जब फर्स्ट टाइम मिली थी तो दरवाजे की एक पार्टीशन थी, फरा उधर से बोल रही थी और मैं इधर से बोल रही थी. आज फरा सबके सामने इतनी कॉन्फिडेंटली बात करती है. दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. और अगर हमने ऐसे 10,000 या 20,000 भी लड़कियों को तैयार कर दिया तो वो लड़कियां कभी भी पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को नहीं देखेंगी. और आप लोगों की भी गारंटी है बिकॉज यू पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, राइट? ठीक है. थैंक यू फॉर दैट.
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून.
1: मैं गरिमा
0: हाँ
1: गृह से शशि।
0: जी शशि.
1: यस मैम, मैम लड़कियां आपसे बात करना चाहती मैम, वो आपका सेशन सभी सुन रही हैं और मैम सभी लड़कियां अभी आपके सामने हैं, लाइव हैं, वे कुछ बात करना चाहती हैं मैम।
0: हाँ जी बोलिए. गुड
1: गुड आफ्टरनून
0: आफ्टरनून.
1: मैम,
0: हाँ
1: हम
0: जी
1: जो प्रिपरेशन सीख रहे हैं ना मैम, बहुत अच्छा सीख रहे हैं शशि मैम, हमें बहुत अच्छा सिखा रही है और हम चाहते हैं कि हमें और भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिले. आपका बहुत बहुत धन्यवाद
2: धन्यवाद।
1: मैम. हमने कभी सोचा भी था कि यहाँ प्रिपरेशन भी सिखाया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ गरिमा गृह सेंटर में प्रिपरेशन आके बहुत अच्छा काम हुआ है मैम. एक और तो क्या कहना था ना, सुनना हमें वो पहचानने के लिए मिला है मैम से, शशि मैम से. हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल से बहुत खुशी आ रही है मैम इसी के लिए. थैंक
0: वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. थैंक यू फॉर शेयरिंग. बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के. गरिमा गृह एक ऐसा सेंटर है, मैं सबको बताना चाहूंगी कि कीर्ति नगर में एक एमसीटी का टॉयलेट कॉम्प्लेक्स था जिसको पीवीआर नेस्ट ने बिल्कुल रेनोवेट कर दिया और उसमें दो कमरे हमें दिए हैं जिसमें हमने लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेक्शन और स्टिचिंग सेक्शन और ब्यूटी एंड वेलनेस का सेक्शन बनाया है. और पैर रखने की जगह नहीं होती है, ये सब औरतें इतने इतने उत्साह से उस सेंटर में आती हैं. कोई इनहिबिशन नहीं है कि वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, वहां पे हमें नहीं बैठना, वहां पे हमने नहीं सीखना. जहाँ सीखने की इच्छा होती है वहां पे राह भी निकल आती है. ये मेरा विश्वास था, तभी हमने पीवीआर नेस्ट के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे सेंटर खोला था. थैंक यू सो मच. मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका. फरजाना आप कैमरे में आई और फिर चली गई, आप कुछ कहना चाहती हूँ बोलिए.
3: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका सेशन लेकर हमें ये महसूस होता है कि लीडरशिप सबके अंदर होती है, लेकिन आपका जब हम सेशन लेते हैं ना, हम अपने अंदर से उसे जगा पाते हैं। तो बात है तो सिर्फ उसे जगाने की है मैम, और फिर आपकी बातों से और आपके समझाने के तरीके से, आपके सेशन से हमें इतना अच्छा लगता है कि हमको ये अपने ऊपर कर पाते हैं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मैं भी बहुत कुछ हूँ।
0: अब फरजाना बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये शेयर करने का. और ईद मुबारक, आज आपका त्योहार है और फिर भी आप सेशन अटेंड कर रही हैं. और फरजाना एक ऐसी लड़की है जो इतने रिमोट एरिया से और आगे इतनी बढ़ गई है और इसका थॉट प्रोसेस इतना चेंज हो गया और ये इतनी औरतों को एम्पावर करती है. तो अभी ये अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के कभी नहीं देख सकती है, ये मेरे को पूरा विश्वास है ना फरजाना.
3: जी मैम, मुझे तो ना हर बार और

0: लगता है, मैम ऐसा लगता है, पता नहीं पिछली दवाई भी याद करती हूँ, ऐसा लगता है मैं वो फरजाना हुई नहीं, पता नहीं कैसे ऐसा हो गई। मैं बात करने का तरीका, मतलब जो भी पहले था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैम, सिर्फ जो भी है आपकी वजह से है और हम बहुत अच्छा कर पाए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा करेंगे रीड इंडिया के।
1: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना। सना, यू ऑल्सो केम ऑनलाइन एंड देन यू क्लोज। यस,
2: गुड आफ्टरनून मैम, हाउ
1: गुड आफ्टरनून।
2: आर यू मैम, हैप्पी
1: बिल्कुल
2: ईद।
1: हैप्पी टू यू ऑल, सबके परिवार को बहुत बहुत
0: गंदी थी।
1: मुबारक, और सबने बहुत अच्छी खीर भी बनाई होगी आज, मुझे पता है।
2: यस
1: हाँ
2: मैम, थैंक यू मैम फॉर द सेशन, फॉर टेकिंग आउट टाइम हम लोगों के लिए, इतना टाइम निकालने के लिए थैंक यू
1: नहीं, ये तो मेरा फर्ज है और मेरा काम है,
2: मैम।
1: मेरी
2: एक्चुअली ये सेशन होता है, इसकी वजह से हम लोग इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, ऐसे हमारी बात हो वीडियो कॉल पर, हम एक दूसरे से बात भी कर पाते हैं, सारे सेंटर्स के लोग इकट्ठा होते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, तो हमें भी लगता है बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अदर सेंटर से भी सीखने को मिलती रहती है कि हम अपने अंदर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी लर्निंग्स बढ़ती हैं, तो ये सारे सेशन बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। और मैम कल का सेशन पता मैम का है, वो भी बहुत अवेटेड सेशन
1: और
2: है।
1: बहुत अवेटेड सेशन है। और मैं आपको बताऊं, स्मिता और मैं इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। इट्स नॉट
2: यस
1: दैट
2: मैडम,
1: आई स्पीक एक्सटेम्पोर, मैं पहले अपनी थॉट्स को कोलेट कर लेती हूँ, एक पेपर पे लिख लेती हूँ और स्मिता के साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हम कैसे एम्पावरमेंट जो है या लीडरशिप है, हम हवा में बात नहीं कर सकते। हमें बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करके, उसको समझा के, उसको कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं, वो डिस्कस करने में हमें भी एम्पावरमेंट मिलती है, हमें भी एनकरेजमेंट मिलती है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, पर उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे एड्रेस करना है, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इट्स ए कलेक्टिव सेशन फॉर एवरीवन। हम सारे इकट्ठे तो एक ही प्लेटफॉर्म पे थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की हम आ सकते हैं, अदरवाइज फिजिकली मिलना तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बोला कि मैं फरा के सेंटर पे हम लोग गए थे, इट वॉज इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकती। एंड थैंक्स टू ऑल द गर्ल्स हु केम देयर, मोर देन 50 to 60 गर्ल्स वर देयर, एंड दे वर बबलिंग विद एनर्जी कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो वो
2: बिल्कुल
1: प्रोत्साहन देख के हमें भी एनर्जी मिलती है, हमें भी खुशी होती है, और फिर हमारा और करने का दिल करता है। ठीक है, थैंक
2: वेरी ट्रू
1: यू,
2: मैम,
1: थैंक यू सना,
2: थैंक यू
1: थैंक यू।
2: मैम। मैं सेशन आपका पूरा सुना है, फिलहाल मैं बस में ट्रैवलिंग पे हूँ, पर आपसे बहुत कुछ सीखा सभी लोगों ने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए, और आपसे सीख के कुछ आगे बढ़ने की कोशिश है लाइफ में, जो हम अपने टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम।
1: सुमन इज अनदर एग्जाम्पल, जो जो मैंने आज एक पिक्चर आपकी आंखों के आगे दिखाने की कोशिश की है, सुमन इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरा इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, सना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरजाना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। तो ये हमारे सामने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, और शायद ये लोग ही मुझे एनकरेज करते हैं ये सब बातें करने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें अगर हम सब तक पहुंच जाए तो एक्चुअली रियल माने में हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। थैंक यू सुमन, बस में सेशन सुनने का थैंक यू सो मच, थैंक
2: थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक
1: यू, थैंक
2: यू मैम,
1: यू जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सबको फिर से ईद मुबारक, और सब लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।

0: और उन्होंने खाली हथीन ब्लॉक में हमारे सेंटर को इनॉग्रेट नहीं किया, हरियाणा में हमने जितने भी सेंटर बनाए हैं उन्होंने उनको इनॉग्रेट किया है, क्योंकि वो दिल से बोलते हैं, दिल से वो रीड को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ग्रास रूट्स की के साथ जुड़ी हुई एक संस्था है जो काम करती है और लोगों को साथ लेके चलती है, लोगों के दिलों तक पहुंचती है अपने कार्यक्रम से, ये वो बहुत अच्छे से जान गए हैं। तो डॉक्टर मिश्रा, अलोंग विद यू आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज मिस्टर आर एस दलाल ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज ही सपोर्टेड अस अलॉट एंड टिल टुडे ही इज सपोर्टिंग अस। तो आपने लॉन्च में
1: He's a bubbling star and energized, you know, he's an energizer. He's emotionally charged. He makes you work and work for the community. That is the power that we have learned from him. He has donated his entire haveli for the Eid activities, you know.
0: तो
1: He's
0: झज्जर उन्होंने कैसे हमें अपनी पूरी हवेली दे दी कि गीता जी एक सेंटर मेरी कम्युनिटी के लिए भी बना दीजिए। तो दैट इज जेस्चर ही एक्सटेंडेड टू अस एंड टिल नाउ ही इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग दैट झज्जर विलेज, मेहंदीपुर विलेज, दबोदा विलेज अ ब्यूटिफुल विलेज वेयर वन कैन गो एंड इवन यू नो स्पेंड डेज टुगेदर। The community is so, welcoming, and the plants, the gardens he has created there, it's worth visiting that place also. तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि रीड इंडिया के जितने भी सेंटर हैं वो कम्युनिटी टूरिज्म को भी सपोर्ट करते हैं, बिकॉज होम स्टेज आर वेलकम देयर बाय द कम्युनिटीज एंड वी ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट पीपल कम देयर एंड होम स्टे तो है ही है, पर जो खाना वो लोग हमें परोसते हैं, जो खाना हमें वो खिलाते हैं घर में बिठा के, घर में फ्रेश खाना कुक करके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी वेलकमिंग आई शुड से दैट। और आसिफ अली जी के घर में तो मैंने कम से कम 100 बार ही खाना खाया होगा। उनके घर में उनकी वाइफ को मैं नहीं मिल पाती थी, पर उनके ड्राइंग रूम में बैठ के मैं खाना जरूर खाती थी, इतना तो मैं कह सकती। और मैं वेजिटेरियन थी और उनके घर में तो नॉन वेज इट्स अ कल्चर देयर, आई शुड से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर। बट
1: जी
0: व्हेन आई यूज्ड टू गो विद माय टीम, स्मिता राय, नाहिद जुबेर एंड अदर्स, ही मेड इट अ पॉइंट कि दो डिशेस तो वेजिटेरियन होनी ही है, क्योंकि स्मिता और मैं दोनों ही वेजिटेरियन थे। तो ये हमारी बिगनिंग थी मेवात में चाइसा के सेंटर के साथ। और अभी डॉक्टर मिश्रा यू कैन से समथिंग अबाउट द बेसलाइन।
1: जब आपने मुझे बोला कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है, तो मेरी एक आईएएस फ्रेंड हुआ करती थी, डॉक्टर निरुपमा अनुपमा। तो जो डॉक्टर अनुपमा थी, शी वॉज एन आईएएस ऑफिसर और शी वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मेवात डेवलपमेंट एजेंसी, व्हाट यू कॉल इट, एमडीए। और उस समय बाद में जो भारत के उपराष्ट्रपति बने अंसारी साहब, उनकी पत्नी भी मेवात में कुछ काम करना चाह रही थी। She also told me, डॉक्टर मिश्रा, लेट अस गो टू मेवात एंड डू समथिंग देयर। मैं दोनों के साथ मेवात गया और मैं आपको और अपने दर्शकों को बहुत ही विनम्रता और निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे हिम्मत नहीं हुआ मेवात में काम करने का। लेकिन जब डॉक्टर गीता जी हमको बोली कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है, तो पता नहीं मुझे कहाँ से एनर्जी मिली और मैंने कहा कि मैम लेट अस वर्क देयर। और हम वहां गए। जब हम वहां गए तो मैं एक महिला से मिला और वो महिला अनाज को हिला रही थी। उस महिला के साथ उसके 17 बच्चे थे, जो फोटोग्राफ मेरे पास है। तो और एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग वन मोर बेबी। उसके बाद मैंने देखा वहां का सिचुएशंस, वहां की गंदगी देखी, वहां का बहुत सारी चीजों को हमने देखा। देन आई रियलाइज कि ये एरिया है जहां पर काम करने की जरूरत है। हमने उनके नमाज में भाग लिया, उनसे दोस्ती की और हम वहां पे काम करने लगे। शुरू में थोड़ा सा हुआ, लेकिन बाद में वो हमें इतने प्यार करने लगे, खास के खास करके अशरफ जी, आसिफ जी और सारे लोग, पूरे गांव के लोग, महिलाओं को, वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को, स्कूल के शिक्षकों को, उनको लगा कि ये लोग अपने लोग हैं। और हमने उनकी सारी जानकारी ली। वहां पे हर एक घर में दो चार भैंस है और एक जो दूध वाला होता है जिसको दूधिया कहते हैं, उनसे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। उनके दूध को बहुत ही थ्रो अवे प्राइसेस में खरीदते थे। हमने सारा रिपोर्ट कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो गीता जी ने कहा कि एक प्रपोजल आया, और वो प्रपोजल 2011 में ही आ गया था मैं, और 12 में वो बन गया था। तो वो प्रपोजल आया और गीता जी वर्क डे एंड नाइट, वो एक विजन ही कह सकता है कि अगर कोई दूसरा कंट्री डायरेक्टर होता तो रोड के साइड का ही जगह ले लेता। लेकिन गीता जी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि ये, इन्होंने कहा कि हमें रोड के साइड का जमीन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? कि मदर वाज हिडन इनसाइड हर एंड द मदर से लुक, बच्चे एक्सीडेंट में कुछ हो सकता है, बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो पीछे का वहां भी रास्ता है, पक्की रास्ता हो गया है लिया, और वहां पे काम शुरू करने लगे। बाद में धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिला और लोगों ने ये महसूस किया कि रीड जो है, ये रीड कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, कोई धर्मांतरण की संस्था नहीं है, कोई पॉकेट की संस्था नहीं है, यह कमिटमेंट की संस्था है। इस संस्था में ज्यादातर महिलाएं हैं जो बहुत मातृस्नेह के भाव से काम करना चाहती हैं। और वैसा ही जिस तरह से ये कहने की तो जरूरत है कि गीता जी ने बहुत ही मातृभाव से अपनत्व को लगाते हुए वहां पर काम करना शुरू किया, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। और उससे हमें ये लगता है कि इफ यू वर्क ऑनेस्टली, नो मैटर आप दुनिया के किसी भाग में काम करें, लोग आपको उसी समर्पण से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको गिव बैक आपको मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा। वो जो कंसेप्ट था वो गजब कंसेप्ट था और वो आपने देखा।
0: ओवर टू स्मिता। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर मिश्रा। एज राइटली सेड, इट्स अ वेरी वेरी रिच कल्चर इन दिस कम्युनिटी, वेरी वेरी वार्म वेलकमिंग कम्युनिटी। एज शेयर्ड इन द पीपीटी, देयर आर मेनी मेनी प्रोग्राम्स दैट वी हैव done in partnership with this community. We've done the setting up of community library and resource center. There are many, many women who've been trained on livelihood skills. Then we've had trainings on as advanced computer skilling. This was done through Adobe IT skilling program for youth. Then since past 4 or 5 years, we have been doing Skills to Succeed program in this area and skilling women on enhancing their livelihood skills. We are having programs for mother and girl child literacy in this community. So each household have one mother and her girl child get coming to the center and walking towards a more literate future. So this is beautiful Mewat for us. As far as culture is concerned, they have very beautiful crafts such as they make changeris, the baskets made out of moonj grass. This grass is eco-friendly and it helps in keeping. They normally use it to store food. Like, we have covered more than 12 villages as Kamlesh is rightly.
2: Thank you, Smita. जैसा कि स्मिता ने कहा, लिटरेसी से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके महिलाओं की पढ़ाई तक हमने काम किया। महिलाओं को हमने सक्षम बनाया, उनकी जो कल्चरल स्किल्स थी उसको एनहेंस किया। और कल्चरल स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, अब रीड तो बहुत छोटी सी संस्था है, तो हमने सृष्टि स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएट्स मंगवाए जो डिजाइनिंग ग्रेजुएट्स थे, और उन्होंने मेवात में लाइब्रेरी में रह के रात को वहीं बिस्तर बिछा के सोना और महिलाओं के साथ चर्चा करनी, और महिलाओं के जो हुनर था, जो छिपा हुआ हुनर था, उसको उभारा। और उन्होंने इतने सुंदर प्रोडक्ट्स बनाए जो दरी था और तापर से उन्होंने बास्केट्स और बहुत सारे हमारे गिफ्ट आइटम्स बनाए जो हमने कॉर्पोरेट्स को गिफ्ट दिए, बिकॉज हमें फंड रेज भी करना था और मेवात के लिए फंडिंग लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए. पर मैं उन डोनर्स का भी शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को, हमारे कमिटमेंट को रिकग्नाइज किया. और सीरीज ऑफ डोनर्स आए जिन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं मेवात में काम करने के लिए. तो ये एक मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज वर्क स्पीक्स वॉल्यूम. जब हमने काम किया, डोनर्स ने अप्रिशिएट किया और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर एक साल का एमओयू साइन होता है और कुछ ऐसे डोनर्स हैं जो हमारे साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं उस एरिया में. बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं मेवात में. मैं सबका बहुत ही मतलब कि आई नो देम वेरी वेल, दे आर डूइंग एंड आई एम अप्रिशिएबल ऑफ देयर वर्क ऑल्सो. बट एट द सेम टाइम going to the grassroots, catching their culture, understanding their attitudes and bringing value to their lives was what Reed has done. These are the 3 major achievements we have done in this area. Dr. Mishra, would you like to add something here, what I have said?
1: Yes, ma'am. Without any political motive, you know, yes. Reed has gone there as an organization to work. Without any political motivation, without any political inclination, without any interest. The only interest was to see that people are raising their social economic status, their livelihood. They are well respected people, well educated people, well cultured people. Their culture glory is restored. So these the women are well respected. There is a continuous harmony, you know, visible harmony between men and women, between husband and wife. So these are the things that are clearly visible, tangibly see. People can go and view. You know, that is the USP of working Reed in the Mewat, you know, area. That is really very, very great.
2: Memory goes back when we saw पावर तो है ही नहीं तो कंप्यूटर कैसे सीखेंगे बच्चे. ओ पावर हाउ दे विल रीड द बुक्स. देन वी रिक्वेस्टेड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, दे गेव अस अ स्पेशल ग्रांट टू पुट सोलर पैनल्स इन द एरियाज वेयर वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू द पावर. सो यू कुड सी इन द फिल्म ऑल्सो वी पुट सोलर पैनल्स ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग सो दैट 24/7 there is a power in the library and there is no power cuts and the children can come, enjoy, sit there, talk to each other, learn from each other, study the books, and 50% of the books are their own language. Because we did not want to put the book they cannot touch, they cannot read.
3: बिगावली की रहने वाली हूँ और ताराक्षर में मैं जुड़ी हुई हूँ. मेरे को पढ़ने लिखने में बड़ा मन लग रहा है, अच्छा लगता है. ऐसा है कि हमारे पास में ताराक्षर का अध्यक्ष लेके आए थे सुनील कुमार, तो इन्होंने कहा कि आप पढ़ाई कर लो. हमने कहा ऐसे बुढ़ापे में क्या कौन पढ़ावेगो, कौन पढ़ पावेगो. उसने कहा नहीं जी, कोशिश करके देखो एक बार. तो हमने कोशिश करी तो हमको अच्छा लग रहा है पढ़ने में लिखने में, हमारा मन भी लग रहा है. प्रयोग हम तो हर जगह पे कर लेंगे, कोई हिसाब है, किताब है, घर का धंधा है, घर के बच्चे हैं, घर की पढ़ाई है, काम है, कोई भी सब में काम आती है पढ़ाई, मतलब ठीक है क्या ना, हर चीज में आती है. अब छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको भी बैठा के पढ़ा सकते हैं. बच्चे ये है हर को इसे पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, वो करो.
4: भैया हमने इसलिए पढ़ा, मान पढ़ते तो हमने आवाज दी भैया हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम बैंक में भी काम करते हैं, चाहे घर पे करते हैं, आदमी का नाम भी लिखने सीख जाते हैं, अपनों भी सीख जाते हैं. तो बैंक में जाते अपने पैसा निकाले तो अपने हिसाब करे आते हैं बैंक में जाके. इसीलिए हम भैया के पास पढ़े थे, यही बारे हम अनपढ़ते थे, भैया पढ़ा देंगे तब इससे सीख जाएंगे.
3: मेरा नाम गजनान और हमारे ये भैया आए पढ़ाने के सुखवीर सिंह, और इनने पढ़ाई पूछी कि तुम पढ़ सको पढ़ सको। एक बार आए, दो बार आए, तीसरा के हम बोले अब तो हम पढ़ेंगे। जब ये भैया पढ़ान लगे यहाँ यहाँ स्कूल यहाँ खोल दी हो तो आगे पढ़ाने।
5: आपको क्या फायदा हुआ इससे?
3: अब हम सीखने लग गए, जो भी हम पे आ गए यहाँ पे देख देख के चैट में, पहले हम पे आ गई ना हो कुछ तो हम नाम भी लिख लें। अब हम अपने काम कर ही ले जाइए भैया बताओ।
6: सर और पढ़ गाँव से पढ़ना चाहते अपने बच्चे ने पढ़ा ले, घर का काम कर ले, कोई काम काज आ जाए उसे कर ले, और सेंटर आ जाए कोई काम आ जाए। इसलिए
7: मेरा सीख लूंगी कुछ तो कुछ काम कर बैठूंगी मैं। परेशान आदमी आंगनबाड़ी लग जाए या कुछ सिलाई में लग जाए, कुछ भी काम जो तुम खिलाओगे वो हम करने तैयार हैं।
6: दाम ये सरदार पढ़ाने आवे, हम लोग हम ना पढ़े, पर दो बार आए तीन बार आए हम बोले हम पढ़ेंगे, हमको पहले कुछ नहीं आवे, हम नाम भी लिख लें और जो काम दे पूरा काम कर ले।
8: हम पता एन आर भी ना आवे अब तो एन आर भी सीख लें। अरे बेचारा आया पढ़ने सुखवीर लगो न भाई लाली पढ़ लियो माता जी पढ़ लियो, हम बोले हम ना पढ़े, हम बुढ़ापे में कहा पढ़ेंगे। तो बेचार कई बार आयो फिर हम पढ़ने लग गए, कई सीखो हमने पढ़ना। हम पे अनार भी ना आवे अब तो या भी सीख गए, नाम भी सीख गए अपनो।
9: मेरा नाम अमता है, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ताराक्षर में पढ़ती हूँ। पहले इन लोगों ने अगर हमारे गांव में सर्विस करी थी हमने जानी क्यों कर रहे हैं, और जब हमारे सब आई थी तो पढ़ाई करने के लिए, पहले हम पढ़ाई नहीं जानते थे और अब इससे पढ़ के नहीं पढ़ना सीखे हैं, और इससे पढ़ने से हमें बहुत कुछ आने लगा है। और हमारे गांव के अंदर तीन ताराक्षर एक ज्ञान चौपाली खुली हुई है और हम बचत पढ़ते हैं सभी, और उसके बारे में भी जानते हैं, पहले जानते नहीं थे।
10: मेरा नाम भगवती है, मैं स्वामी के रहने वाली, मुंह पे कुछ भी नहीं आता है, मैं अक्षर समाज जान गई नाम नाम हाँ अक्षर जान गई मैं अक्षर समझ गई नाम लिख लेती हूँ।
11: मेरा नाम रजनी है, मैं स्वामी के की रहने वाली हूँ। मैं पहले से कुछ नहीं जानती थी, अब यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ और बहुत कुछ जान सकती हूँ।
12: मेरा नाम आशा है, मैं स्वामी के योगे में रहने वाली हूँ। मुझे तारा अक्षर से जुड़कर बहुत अच्छा लगा, हमने हम पर पहले अपने साइन भी करने नहीं आते थे, हम पर साइन कर सकते हैं, अक्षरन की पहचान कर सकते हैं।
13: मेरा नाम सरस्वती है, गाँव रिहौली में तारा अक्षर का स्कूल खुला है। ये लोग आए तो कहने लगे हम पढ़ाएंगे, हमें अपनी गाँव की बात समझ में आई, पढ़ाई लिखना शुरू कर दिया। ये इनसे पढ़ के हमें बहुत नॉलेज मिली और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ, हम कुछ भी नहीं जानते थे। और ये गांव के अंदर जो समूह खुली रहती है उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते, बैंक में जाते थे पैसे भरना निकालना कुछ नहीं जानते थे, अब हम खूब पैसे भी निकाल लेते हैं, फार्म वार्म भर देते हैं। पढ़ाई से ये फायदा है कि अपने बच्चे जहाँ भी कहीं पढ़ने जाते पहले कुछ नहीं जानते, उसकी किताब कापी वगैरह देख सकते हैं क्या लिखा है, कहीं हम भी काम करते हैं तो हमारे लिए पैसे वैसे मिलते हैं तो हमें पता नहीं लगता था कितने दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे हैं, तो अब हम उसे पढ़ के बता सकते हैं।
10: अपना नाम कांति।
5: कौन से गाँव से? यहाँ
10: छाए से।
5: तो आपको पहले और अब में क्या फर्क नजर आ रहा
10: है? इतना फर्क है, पहले हम 100-200 रुपया का हिसाब लगा सके, अब हम 500 रुपए तक हिसाब लगा लें। पढ़ाई इतने जब थोड़ी बहुत पढ़े अब थोड़ी बहुत अक्षर हम मिला के मात्रा मिला के सब कुछ सब हम कर लें, मात्रा लगा दें डंडा लगा दें।
14: मेरा नाम मीना है, छाए से रहने वाली हूँ। पहले कुछ ना बनाओ, अब हम लिखनो पढ़ना थोड़ा बहुत आन लगो हिसाब जोड़, जैसे 100-200 रुपया है 500 है उन्हें भी जोड़ सके।
15: मेरा नाम बबीता जी है, छाए से रहने वाली हूँ। पहले कुछ नहीं आता था अब बहुत कुछ सीख गई, बहुत अच्छा लगा पढ़े के, इन्होंने नीतू जी ने बहुत अच्छा सिखाया हमें लोग के सीखे बात अच्छा पढ़ाने लिखना है।
16: हम तारा सर में ट्रेनिंग ली थी हमने, जो कि मतलब अनपढ़ लोगों को पढ़ाना जन अक्षर होते हैं, अब वो पढ़ लिख थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जान गई है और अपना नाम लिखना सीख गई है, अपने गाँव का नाम कहीं भी आ जा सकती है, हिसाब किताब लगा लेती है। इस प्रोग्राम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है इनको भी और हमको भी।
17: तो सबसे पहले हमने औरतों को मोटिवेट किया पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं, उनको मैंने फिर क्लास में बुलाया, बिगावली में मेरी ड्यूटी है, वहाँ पे मैं 3 बैच चलाता हूँ, वहाँ पर 10-10 महिला आती है, प्रत्येक बैच में 10 महिला होती है, बहुत ही अच्छी तरह के वो पढ़ रही है और उनसे मैं बातें करता हूँ, अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है मैं उनके घर जा करके, अगर कोई मना करता है तो उनके घर जा करके परिवार वालों से मिलता हूँ और उनसे समझाता हूँ पढ़ाई के फायदे क्या होते हैं, तो वो भी क्लास में आ जाती है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप भी बहुत खुश हैं इसमें आकर।
18: तारक सर जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि हम इसमें जो निरक्षर महिलाएं हैं उसको साक्षर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी है अम्बेवात इलाके के 3 गांवों में चला हुआ है, छायसा, बिघावली और स्वामी का। इसमें लगभग 90 से 100 महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं इस कार्यक्रम का, और ये तीनों गांवों में कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक गांव में 3 बैचेस चलते हैं, इसे कुल मिला के 9 बैचेस चलते हैं। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, पहले जो महिलाएं बोल नहीं पाती थी किसी के सामने, आज अब वो महिलाएं बोलने लगी हैं और अपने आप पे आत्मनिर्भर हो गई हैं और वो किसी के सामने भी खुलकर उनको जवाब देने लगी, अच्छे से बोलने लगी हैं। और वो पहले उनपे कुछ भी नहीं, लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, अब वो क्या नाम है पढ़ने लगी हैं, लिखने लगी हैं, अपना खुद का नाम लिख सकती है, पति का नाम, अपने बच्चे का नाम, और अखबार भी पढ़ने लगी हैं। इस कार्यक्रम से महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं और हम सभी खुश हैं कि ये कार्यक्रम हमारे इस पिछड़े इलाके मेवात में चलाया जा रहा है।
19: मैं पूरे अपने गांव की औरतों से, बड़े बूढ़ों से ये एक मैसेज देना चाहता हूं, जो भी ये स्कीम है, जो भी संस्थाएं यहां आ रही हैं, वो हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे गांव के हित में, हमारे गांव को अच्छा समझ के इस गांव में वो काम कर रही हैं। इसमें हर एक जन जन को इसमें जुड़ना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। मैं गीता मल्होत्रा जी का और मैडम मई जी का तहदिल से, अपने गांव की तरफ से, अपने तीनों चारों गांव की तरफ से बहुत बहुत दिल से, तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनका एहसान मंद हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे गांव और हमारे अड़ोस पड़ोस को चुना।

0: Wonderful, wonderful. So much to be shown. We have so much of content to be shown to the audience, but the time is so short that we have to move further also. इसके अलावा आप कमेंट्स में भी पढ़ रहे हैं कि मेरी टीम लिखती जा रही है कि हमने क्या क्या और काम किए. तारा अक्षर के अलावा हमने स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एक कार्यक्रम किया यहाँ पे मैजिक बस के साथ मिलके, क्योंकि हमें उनके एटीट्यूड को बदलना था कि हमें लाइफ स्किल्स सिखाने थे. अगर हम लाइफ स्किल्स की बात करें तो वो डायरेक्टली ट्रेनिंग लेने नहीं आते थे. हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से यूथ को लाइफ स्किल्स सिखाए कि कैसे एक लड़की लड़के की इज्जत करती है और लड़का लड़के की इज्जत करता है, कैसे फैमिली में हम एक एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं. तो ये हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को सिखाया था. और इन सब कार्यक्रम को बंद करने का दिल नहीं करता है क्योंकि बहुत बहुत जरूरत है. मैं कहती हूँ जितनी भी पॉपुलेशन है मेवात की, उन सबको इन सब प्रोग्राम्स की बहुत बहुत जरूरत है. इसके आगे की जर्नी में हमने औरतों को स्पिनिंग सिखाई, धागा लेके कैसे धागा बुनते हैं ये उनको सिखाया, चरखा कैसे चलाते हैं, उस धागे से कपड़ा कैसे बनता है, उस कपड़े की सिलाई कैसे करते हैं, ये पूरी जर्नी हमने कंप्लीट करी. यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं, यही सोच के सब कुछ किया कि कभी औरत को काम करने की जरूरत पड़े तो वो अपने हुनर को निखार सके और अपने हुनर को पहचान सके और अपने बुरे टाइम पे इस हुनर को यूज करके अपनी आमदनी को इंक्रीज कर सके. यही हमारा सोच थी और कंट्रीब्यूशन था. अभी हम छायसा से आगे तारू में जाएंगे. तारू में हमने एक और सेंटर लॉन्च किया था तो हमें Amazon ने सपोर्ट किया था. आई वुड लाइक टू शो दैट फिल्म डॉक्टर मिश्रा, रीड इन तारो.
1: इस फिल्म के में जो अभी हमने दिखाया उसके बारे में एक चीज मैं गीता मैम ये कहना चाह रहा हूँ कि जो परिवर्तन आपने देखा वो तो हुआ. सबसे बड़ी बात है कि जो समाज को ये भी, जिस महिलाओं को ये भी नहीं मालूम था कि हम अपने पैसे को कैसे रखें, क्या करें, कहाँ रखें, उनको न्यूमरेसी लिटरेसी का ज्ञान हो गया. इतना ही नहीं, आपने देखा होगा उनके कपड़े साफ हो गए, उनमें हाइजीन का सेंस आया, उनमें हेल्थ और क्लीनिनेस के प्रति एक बहुत बड़ी जवाबदेही का है ना निर्माण हुआ. तो ये जो छोटे छोटे विजिबल चेंज है, वो कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये चेंज अगर आप डे वन से उस दिन तक को देखें तो महिलाओं में जो स्वच्छता, निर्मलता, लिटरेसी न्यूमरेसी, काउंटिंग करना, ये सब चीज में, और एकाएक सारे महिलाओं के चेहरे पे एक गजब ही नैसर्गिक हंसी, उल्लास का भाव था जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है.
2: Partnered with Read India in 2015 to set up Amazon Care Community Outreach Centers in Taulu in the villages Chamwad, Dingaveri and Gujarat. Through these centers, we are covering 5 villages, including Halgar and Sheikhpura. The center focuses on education, women empowerment and livelihood, skill development and entrepreneurship, and health awareness and advocacy. We do focus on education by designing programs on improving reading and writing habits of children, starting in government schools, training Anganwadi teachers on teaching small children through playful activities and the same activities are repeated at the Reed Center. We have a library with more than 1,000 books where children, youth and other community members come and have access to books for reading and reference. We conduct classes to enable youth for competitive examination and do career counseling. Solar panels for regular and uninterrupted supply of power. We have special workshops with women on women empowerment and provide them a safe space to learn, teaching and feeding to start with and enable them to learn how they can start their small enterprise and also collectively join the group for working together to read center. We have also designed the programs to make them learn financial and adult literacy. Women have started moving out from their villages to other read centers and also to other organizations to learn from other women how they are involved in these programs and enhance their networks. Job-oriented workshops are organized for youth, girls and boys, to focus on their future careers and learn specific skills for suitable jobs. Farmers' meetings are conducted on a regular basis with planned visits to other parts of Haryana, including meeting with government officials so that they themselves realize where they are and where they have to reach in relation to profit making, agribusiness they can do. Health intervention is the important component. We do regular workshops on best practices and also partner with other organizations to organize health camps. Audio workshops are being organized at the center to enable youth one voice modulation, and exposure visits are done at community radio stations. Various visuals are displayed at the centers, Anganwadis and the villagers to constantly remind the villagers about best practices. Women and men are understanding the gaps in their lives and uniting together for the progress of their villages, and also focusing on their children's growth by creating positive environment at the read centers and at their homes. Read India and Amazon Care work closely with local government, completing the collective efforts. Within 1 year, this partnership was extended to another village, Tamaspur in Sonipat. The center is repeating the same activities through effective community mobilization, effective involvement of the school teachers and other stakeholders.
3: एक दिन ज्योति ने बताया कि यहाँ सिलाई सेंटर गांव में आया हुआ है जो रीड इंडिया एंड अमेजोन मिलकर चला रहे हैं, तो मैंने आके देखा कि यहाँ सिलाई हो रही है और सिलाई का काम ज्योति सिखाएगी। तब मैंने ज्योति से बात की कि मुझे भी सिलाई सीखनी है, तब ज्योति ने सिलाई सिखाई मुझे, तो मैंने 3 महीने तक सीखी और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कार्यशाला भी होती है, जो फार्मर भी की भी मीटिंग्स हुई, हेल्थ वर्कशॉप भी हुए और पढ़ाई के बारे में बताया, आगे कैसे बढ़ते हैं, सरकारी नौकरियों के बारे में भी बताया। तब मैंने 10वीं के ओपन पेपर फॉर्म भरे और अपनी पढ़ाई चालू की फिर से, और फिर आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ।
4: मैंने सिलाई सीखना मुझे बहुत फायदा हुआ और मैंने देखा कि मैं अपने भी कपड़े सिल सकती हूँ और दूसरों के भी, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है।
5: मैं रीड अमेजोन सेंटर में लाइब्रेरी कम कंप्यूटर की जॉब कर रहा हूँ। मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ बच्चों को सिखा पा रहा हूँ और उनके साथ कुछ सीख भी पा रहा हूँ। यहाँ पे रीड की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम कार्यशाला की जाती है, जैसे इस्लामी सर ने कैरियर गाइडेंस के बारे में बताया, उस प्रोग्राम से बच्चों ने कुछ सीखा और साथ में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है।
6: रीड इंडिया अमेजोन की तरफ से जो सेंटर चल रहा है, इसमें मैं जो छोटे बच्चों का ईसीडी का सेक्शन है वो देती हूँ। यहाँ सेंटर पे नई नई एक्टिविटी होती है, जैसे हेल्थ की भी हुई है या किसी के बारे में भी होती है, तो उसमें भी क्योंकि मैंने खुद ही बी ए करके बी एड करी हुई है, तो उससे मेरे को भी बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ को क्या करती कोई ट्रेन मीटिंग हो रही है तो उसमें मैं भाग ले रही हूँ, तो उससे मेरे को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा।
7: मैंने परंतु करने के बाद जेबीटी किया है और सरकारी नौकरी के लिए स्टेट हरियाणा का एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करना जरूरी है। वो क्लियर करने के लिए किताबों की आवश्यकता थी। मैंने रीड इंडिया एंड अमेजोन की सामुदायिक लाइब्रेरी है, वहां से मैंने मुबारक सर से संपर्क कर 2 बुक्स प्राप्त की और वहां 2 बुक्स लेकर मैंने उनकी पढ़ाई की और टेस्ट आने पर मैंने टेस्ट दिया, जिससे मेरा पहली बार में टेस्ट क्लियर हो गया।
8: यहाँ पर पहले मैंने सिलाई सीखी थी, उसके बाद मैं कंप्यूटर के फिर बच्चों को कंप्यूटर सिखाते, जिस तरह से सिखाने में मुझे भी बहुत फायदा हुआ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा है उसे सिखाते सिखाते, बहुत अच्छा है वैसे यहाँ पे सब चीज, क्योंकि यहाँ पे सिलाई सेंटर कंप्यूटर का भी है, लाइब्रेरी भी है, ECD का भी है, यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें सुधार की गई है। मैं अकेडमी भी जाती हूँ और रीड एंड राइटिंग का कोर्स चल रहा है, बच्चों को कराती हूँ और इससे इधर मीटिंग होती है, इससे किसानों की मीटिंग होती है, इधर डॉक्टर आते हैं और इधर हमने सिलाई भी सीखी है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। मैं रीड इंडिया अमेजोन को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।
9: रीड इंडिया अमेजोन सेंटर में सिलाई सिखाती हूँ, अब तक मैं 10 लड़कियों को सिलाई सिखा चुकी हूँ, जो कि वो अपना काम आराम से कर लेती है और घर में दिन महीने में 2-4 हजार रुपए भी कमा लेती है, अब उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो हर कार्य को अच्छे से कर लेती है।
10: मेरा नाम राम बाबू, आठ जिला में पढ़ता हूँ, अब मैं जब छुट्टी हो जाए सेंटर में आता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, फिर खिलौना से खेलता हूँ, फिर कंप्यूटर पे बैठ जाता हूँ।
11: पहले ये सिलाई सेंटर यही नहीं था, तो अब इसके आने से हमारी जितनी लड़कियाँ हैं औरत है जो यहाँ पे सब सिलाई सीखने के लिए आ जाती है, इससे काफी सुविधा है क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, यही कपड़े सी जाते हैं तो अपना काम हल हो जाता है, पैसे की भी बचत है।

This is a beautiful journey of another village, few of the villages in Mewat. The picture speaks volume because आप देख सकते हैं कि मेवात में ही छाइसा भी है और मेवात में ही तारू भी है और कल्चर कैसे डिफरेंट है आपको बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है कि औरतें खुल के बात कर रही हैं और वहाँ पे हमें औरतों के साथ 3-4 साल काम करने के बाद औरतों ने अपने मुंह खोले और अपनी बात लोगों के सामने रखी. दैट इज द डिफरेंस यू कैन सी विद इन वन आई शुड से द डिस्ट्रिक्ट. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ रीड बिकॉज रीड अंडरस्टैंड्स द कल्चर ऑफ द पीपल, द चैलेंजेस ऑफ द पीपल, the dynamics of the community and work accordingly.

0: कर जाती है कोई बात तो वो रेजिस्ट कर गई एंड शी स्टार्टेड राइटिंग प्रपोजल्स फॉर अदर कम्युनिटीज ऑल्सो. और दिस जर्नी हैज नॉट येट स्टॉप्ड. वी हैव गॉन फ्रॉम तारो टू मोहम्मदपुर आहिर विलेज वेर वी आर अगेन सेटिंग अप द कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर विच इज ऑलरेडी इन ऑपरेशन एंड देन वी मूव्ड ऑन टू नू. कोविड के टाइम पे के पहले सेंटर लॉन्च किया था फरवरी में आई थिंक सो. और उसके बाद कोविड आ गया तो कैसे हमने कोविड के दौरान एकदम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए थे. जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फोन था उनकी ट्रेनिंग तो हम अपने ऑफिस में बैठ के कर लेते थे और जिनके पास नहीं था वो हमारे कम्युनिटी ने स्मॉल स्मॉल बैचेस में बुला के उनके साथ ट्रेनिंग करी, उनको मैसेजेस दिए व्हाट्सएप के थ्रू, उनको फोन के साथ टच में रहे. और जब उनके पास काम नहीं था, उनकी फैमिलीज हार्डशिप में थी, तो हमने अपने डोनर्स से बात करी कि हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हमने उनको राशन के डिस्ट्रीब्यूट किए थे. और दिस इज नॉट, आई वुड लाइक टू से हियर दैट प्रोग्राम्स आर वन थिंग बट रीचिंग आउट टू द कम्युनिटी व्हेन दे नीड अस बैडली दैट इज अनदर थिंग which we did during COVID, and still we are continuing providing our support to them. Shrishta Gaur is the coordinator who is the link between the community and us, and every day she shares with us what exactly the community needs, and Smita Rai speaks with the donors and we convince the donor that we have to strategize the needs of the community in a manner that they should not feel that need is not for them. That is very, very important for us. And we develop our linkages with each child, each woman, each person of the community so that they should feel that read is at their back. That's all I just wanted to say, Dr. Mishra.
1: You compare from the day one to today's situations, one can easily find the difference in their dressing sense, difference in their personality, the way they speak, the way they do the everyday things, the way they present themselves, the way they go to the center, the way they interact with the people. These are all visible changes. If a third party agency comes to evaluate the READ activities at Mewar, they will realize the power of presence of READ in the area. I am telling you as an honest student of anthropology, the change that we have experienced in past 10-12 years, these changes are mainly among the women and also among the youth. The perceptual change, what you see, they have changed their perception about the divide between inside and outside agencies. Now there is no such divide in the locality. If you go there, you are being welcome. Well, initially, first time we went there, we were doubtful. We were a doubtful element for them. They had doubt in everything that we were doing. Now this doubt doesn't exist. Now there is a sense of belonging. कि वो हमारे साथ हैं. नमिता सेज रीड हैज एम्बेडेड इम्प्रेशन द कम्युनिटी एंड दे वेलकम. वो रियली
0: एजुकेटिंग डोनर्स इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. डोनर्स वांटेड अस टू एस्टैब्लिश द सेंटर इन गुड़गांव बट स्मिता कन्विंस्ड देम दैट देयर इज अ नीड इन मेवात. सो वी टुक देम टू मेवात and they saw the area and they realized themselves, yes, there is a deeper and greater need in Mewat rather than establishing or investing in Gurgaon. And we as READ team committed that we are ready to work in that area. Unfortunately, the pandemic came and we immediately switched over to the hybrid model. But we are ready to overcome the challenges. It's never late.

0: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चंचल। आई स्टडी इन 8th क्लास। मैं काफ़ी साल से दिल्ली में रह रही हूँ। दिल्ली में आके मुझे यहाँ ये पता चला कि यहाँ पे एक रीड इंडिया है। वहाँ फिर मुझे धीरे धीरे पता चला यहाँ पे काफ़ी कोर्सेज होती है। फिर मुझे एक बार पता चला कि यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स होता है, तो मेरे को कंप्यूटर कोर्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये करूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बताया था कंप्यूटर के, जब तक कंप्यूटर नहीं सीखते यहाँ आजकल को कुछ नहीं कंप्यूटर के बिना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सीखूँ। मेरे पापा ने बोला कंप्यूटर सीख, मैंने सोचा मैं कंप्यूटर सीखूंगी। और जब से मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, मेरे मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहले मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब से मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं अपने आप में प्राउड फील कर रही हूँ कि हाँ, अगर कोई मेरे को बोलता है तो मैं कर पाती हूँ उसे। दूसरे को नहीं आता तो मैं समझा पाती हूँ। और यहाँ की जो टीचर है वो भी बहुत अच्छे से समझाती है, बहुत अच्छे से बताती है, इतने अच्छे से समझाती है। तो अब मुझे जितना आया है मैं अपनी सिस्टर्स को भी सिखाती हूँ, अपनी फ्रेंड्स को भी सिखाती हूँ, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ यहाँ पे आने के लिए, तुम भी कंप्यूटर कोर्स सीखो। और मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स आती हैं यहाँ पे कंप्यूटर सीखने के लिए, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। तो सो थैंक्स।
1: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है, और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज़ है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी, इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना, और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं, और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं, और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है, तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं। लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे बाय हुक एंड क्रुक, वेदर दे स्टैंड अलोन, वेदर दे हैव चैलेंजेस, वेदर दे हैव पीपल दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे वॉक थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं, चेजिंग योर गोल्स। हम अपने गोल्स को चेज करते हैं कि हम कैसे उनको फुलफिल करें। तो जब हम अपने गोल्स चेज करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस, तो हमें डिसरिगार्ड द पीपल हु टेल यू इट कैन नॉट बी डन। जो लोग बोलते हैं कि ये तो हवा में बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट, राइट? तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चाहिए, और इसका यही मकसद है। डिसरिगार्ड मींस, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बायकॉट कर दो उनके साथ। डिसरिगार्ड मींस डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर टाइम, योर पेशेंस टू लिसन टू देम, दोज हु आर सेइंग इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यू एज ए लीडर हैज सम मिशन, मीनिंगफुल काम करना है आपको। तो अगर आप मीनिंगफुल काम करने में कोई भी ऐसे बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो वो हमें नजरअंदाज कर देना, हमें सुनना ही नहीं है। टर्न अ डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, राइट? बिकॉज क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है। तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे, तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो हमारे एम्बिशंस तो है ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे, तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे, और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, और नेचुरली रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें। हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं, तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है, राइट? होता है ना ऐसे हमारे साथ? और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे। 3-4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप, नो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू, एनी इंटरेस्ट, एनी थिंग इन इट, बिकॉज वी आर नॉट विजनरीज, राइट? दोज हु डिफाइन द गोल्स विद वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन गो अहेड टू देयर लैडर अप। हम बोलते हैं, मतलब कि हम कमिट करते हैं, हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस की तरफ, तो हम
somehow we are able to realize our dreams. Somehow we are able to, you know, ambitiously do the things what we want to do. Do you all agree with me what I have said? Chasing your goals. बिल्कुल ये प्रैक्टिकल चीजें हैं. मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी है यहाँ पे. सारी ये प्रैक्टिकल डे टू डे हमारी लाइफ में हमारे साथ ऐसे ही होता है. तो हम एक स्टोरी छोटी सी मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में. आई विल जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू. सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत. एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे और अगर उन अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टावर है. एंड दे कलेक्टिवली डिसाइडेड कि आज हम टीवी टावर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं. राइट तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में. थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे. कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे ही छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा. मतलब कि दे वर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. तो तीन चार ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टावर तक पहुंच गए. एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टावर. ऊपर टॉप में पहुंच गए एंड दे सेड ओ गॉड इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड. और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी. वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टावर के टॉप पे पहुंच गए. जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे, जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे और उन्होंने वो दो तीन जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे. और जो भी हमने तो इतना शाउट किया था, मत जाओ, डर रहे थे हम लोग, तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना वो फ्रॉग कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बहरा था. वो फ्रॉग ही बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं. लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसने आसपास परवाह ही नहीं करी कि क्या हो रहा है, क्या शोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. बस उसके माइंड में तो एक ही था कि मुझे टीवी टावर पे जाना. तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके. टर्न ए डेफ ईयर टू क्रिटिक्स. तुम सुनो ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा मिशन इतना क्लियर है, तुम्हारा गोल इतना क्लियर है कि आपको वो कंबाइन करना है. बाकी के दो से पूछा कि तुम्हारा क्या था, मतलब कि तुम कैसे चले गए ऊपर. तो उसने बोला कि हमने ये जो डेफ फ्रॉग था उसको फॉलो किया बिकॉज हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर ये हमारा लीडर है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम तो इसके पीछे पीछे चलेंगे तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर. तो हमने तो क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया, रास्ते में हमने किसी की परवाह नहीं करी और हम इसके पीछे पीछे पीछे पीछे चल के ऊपर पहुंच गए इसके साथ. तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे. और फ्रॉग बहुत टिमिड होता है देखा जाए तो, बहुत छोटा सा होता है. तो वो क्या टीवी टावर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊंगा. पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है. और दो लोग जो उसके साथ चढ़े वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे. तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना. और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से, बहुत इजी स्टोरी है और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे. तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई थॉट लेट मी शेयर विद यू. बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको. तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आर बिग गोल्स.
नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व. हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है. वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ. वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आर प्रोग्रेस. बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और हमारी जो अचीवमेंट है उसको वो ब्लॉक कर देती है. वी ऑलवेज डिस्कस एंड हाईलाइट द हर्डल्स एंड आर ऑब्सेस्ड बाय देम एंड फेल टू ऑब्जर्व द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ अस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जब मैं पढ़ रही हूँ तो सुबह मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रही थी तो ये बहुत फिट बैठती है वहां पे कि हम हाइलाइट्स करते हैं जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और हम उस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ कि हम हमेशा फेलियर्स की ही बात करते हैं. पर उसमें से एक जो रे ऑफ होप है, जो एक सनशाइन की छोटी सी किरण है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं. और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ. तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है. हम अपने आप को इतना स्ट्रांगली बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे. तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए. मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस दिस दैट, पर द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन द सॉल्यूशंस. The psychologists have proved that what your mind focuses on that tends to grow. Scientists ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80% जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देते. पर हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें. और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी चेज करना पड़ता है. और अपॉर्चुनिटीज को चेज हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ कि हमें ये करना ही करना है. अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं. ये सारे जार्गन्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना कि हम एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. वॉट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज looking for alternative opportunities. अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ खुल रहा है, तीसरा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, हम कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम अपने जो पड़ाव है उनको पार कर लें. So the problems look bigger. Focus on gaps and resolve the problems. The last point is very very important. कि हम अगर gaps को analyze कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन गैप्स को कैसे रिजॉल्व करें, तो हमारे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर्स आर विजन. ग्रेट लीडर्स हैव अ विजन. They can see into the future. They have a clear, exciting idea of where they are going and what they are trying to accomplish and are excellent at strategic planning. मैंने बहुत simple words में पहली दो slides में बताया. ये definition है कि great leaders vision होती है. हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसकी. They can see the future.
वो जो मैं रे ऑफ सनलाइट की बात कर रही हूँ, दे हैव अ वेरी क्लियर एक्साइटिंग आइडियाज, उनके आइडियाज बहुत क्लियर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, एंड दे आर गोइंग वेयर दे आर गोइंग एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, वो उनको सब क्लियर है, एंड दे हैव वेरी एक्सेलेंट वेरी गुड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑल्सो. तो जो लीडर्स हैं उनमें ये सब हुनर है, और इन हुनर को शेप देके वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही विजनरी कहलाते हैं. दूसरा क्या है, करेज. वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज. अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से जमीन से खड्डे में से निकल के टीवी टॉवर पे क्लाइंब कर गया. हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स दैट यू आर विलिंग टू टेक रिस्क इन द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स विथ नो एश्योरेंस ऑफ सक्सेस. अब आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ, मैं प्रपोजल लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं बिल्कुल नहीं डिफाइन कर पाती हूँ. क्या मुझे पता था कोविड आ जाएगा जब हम प्रपोजल लिख रहे थे? पर हमने क्या किया, कोविड में हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, हम आईसीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम बेटर अचीव कर पाए क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कनेक्ट कर लिया और हमारे कार्यक्रम कहीं पे भी रुके नहीं. तो करेज था कि हम कैसे करें. अभी बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं वो बंद पड़े हैं जो सितंबर 2020-21 में खुलेंगे, बट हम सेंटर्स भी खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग द रिस्क. वाई रिस्क? रिस्क इज नॉट ओनली फॉर माई ओन जॉब, रिस्क इज फॉर द वर्क द होल ऑल द सेंटर्स ऑफ रीड इंडिया इज डूइंग इन इंडिया. दे आर रीचिंग टू 400,000+ पीपल. उनका क्या होगा, वो काम कहाँ जाएगा? वो गोल तो अचीव करना है हमें, तो वो कलेक्टिव गोल है जो हमें अचीव करना है, तो हम रिस्क भी ले रहे हैं, राइट? और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की. मुझे आज नहीं पता कि रीड इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या होगा, बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं, क्या है? ट्रस्ट है. क्या देखते हैं कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं. क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने. जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं. कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन, बट हम आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गए, आईटी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, इमीडिएट नीड्स क्या है, कम्युनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए, इमीडिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स. किसने उनको बोला करने के लिए? हम ही ने बोला. तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया.

और आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपको नहीं पता, आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था। आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि 1 साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे। तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही है, चाहे 2,000 कमाए, चाहे 4,000 कमाए, चाहे 6,000 कमाए, राइट। और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2,000 से 6,000 तक लेके जाए, 6,000 से 12,000 तक लेके जाए, ये कोशिश हमने करनी करनी है। सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है, हम कैसे करें उसको हमें करना है। जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन। ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे, क्योंकि हम मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है। इवन बिजनेस में भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस में तुम झूठ बोल सकते हो, जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट। इट मीन्स दैट यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस टू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ अदर्स विदाउट फीलिंग थ्रेटन्ड। समझ में आया सबको? मतलब कि अगर मैं बहुत ही हलीमी से बात करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, दैट डजेंट मीन कि मैं कमजोर पर्सनैलिटी हूँ या मुझे अपने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका ये मतलब है कि मैं बहुत हलीमी से बात कर रही हूँ, पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ, और मैं जो लोग मुझे वैल्यू मेरे में वैल्यू देखते हैं वो तो मेरे लिए थ्रेट नहीं है, पर अगर मेरी वैल्यूज के ऊपर मतलब कि दे आर थ्रेटनिंग मी, तो आई एम नॉट टेकिंग दोस, राइट। तो ह्यूमिलिटी पर्सनालिटी में लाना बहुत जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द रेयरर एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर्स, बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ वन ईगो। अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे। पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट। इट मीन्स दैट यू आर विलिंग टू एडमिट यू कुड बी रॉन्ग, दैट यू रिकग्नाइज यू मे नॉट हैव द आंसर्स, बट इट मीन्स दैट यू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज डू, विच मैनी पीपल स्ट्रगल टू डू। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्लैग तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए, हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ, मैं तो ठीक था, बिल्कुल, मैं तो टीवी टावर पे चढ़ रहा था, अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता, जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टावर पे चढ़ के क्या करेंगे। पर

इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े, पर उसने क्रेडिट किसको दिया? जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया? जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं श्योर, और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए। लीडर एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं, तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है। और ये अपनी पर्सनालिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं। ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ, ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन। इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट? और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की, वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनालिटी ही वही बन जाती है। तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए, और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं। बिकॉज इफ यू हैव दिस ह्यूमिलिटी एज योर पर्सनैलिटी ट्रेट, देन द रिस्पॉन्स इज 100% श्योर, यू विल डेफिनेटली गेट द रिस्पॉन्स, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। द बेस्ट क्वालिटीज में तीसरा आ रहा है ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। लीडर्स हैव द एबिलिटी टू एंटिसिपेट ट्रेंड्स वेल इन एडवांस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स तो हर एक जगह पे ही होते हैं, एनजीओस मशरूम कर रही हैं इतनी, पर हम उनको थ्रेट ना मान के अगर हम उनके ट्रेंड्स को समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करें, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। दे कॉन्टिन्यूअली आस्क बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग टुडे, वेयर इज द मार्केट गोइंग, वेयर इज इट लाइकली टू बी इन 3 months, 6 months और 1 year और 2 years। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सब लोग प्रोडक्शन यूनिट्स भी चला रहे हैं और वोकेशनल सेंटर्स भी चला रहे हैं। अब आने वाले टाइम में जो एनजीओस पॉलिसी लेवल पे काम कर रही हैं, उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज सरकार कहती है हमें तो अभी मतलब कि ग्रास रूट्स में काम चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या है, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है। तो दैट्स व्हाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले 5 साल से 6 साल से सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है। और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ, तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात करें कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं, कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं, राइट? हम आज के बारे में सोचते हैं और 1 महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस, ओनली द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन एक्यूरेटली एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट्स कैन पॉसिबली सर्वाइव। ओनली लीडर्स विद फोरसाइट कैन गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है, कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे लोन कैसे, सबसे आगे कैसे स्टैंड करें। तो ये जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं,
क्या आप लोग मुझे एक पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं दैट यू रिफाइन एंड मेक एज योर गोल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेकिंग लीडरशिप ट्रेनिंग्स. दिस इज द प्रैक्टिकल एक्शन विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ राइट. तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. कि आप जहां बैठे हो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो, क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे. That will be a great, great contribution from all of you, right? They focus on the strengths of the organization, on the things that the company does best in satisfying demanding customers in a competitive marketplace. आप किस पे focus कर रहे हो? अपनी organization की strength. आपकी strength क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो. आपके पास books हैं. आपके पास computers हैं. आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हो. जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, कभी आपने उनको बोला कि आगे आने वाले टाइम पे देखो कोविड ने ही हमें सिखा दिया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए. जिनको नहीं आता, दे आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएजुकेटेड. बिकॉज अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे. मुझे पेटीएम नहीं आता था, मैंने पेटीएम सीखा. मुझे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन नहीं आती थी, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखी. बिकॉज बैंक कह रहे थे कि 60 प्लस के लोगों को हम बैंक आना अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं एनकरेज करते. तो टाइम ने मुझे सब कुछ सिखाया. इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज राइट, और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं, दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड राइट. Your ability as a leader to call the shots and make sure that everyone is focused and concentrated on the most valuable use of their time is essential to the excellent performance of the enterprise. मैंने जान के ये business language लिखी है यहाँ पे, because हमारा 1/3 focus organization का enterprise ही है. तो इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माय ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है. ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे राइट. The last point is cooperation. Gain the cooperation of others by making a commitment to get along well with each key person every single day. रोज आप अपने connections, अपनी networking, अपने staff का teamwork को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे refine करें इसको. हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं. आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है 5-6 हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन. सी दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. These 5 qualities I have the strength, I can contribute additionally. Do this exercise. This will really help you to do that, right? You always have a choice when it comes to a task. You can do it yourself or you can get someone else to do it for you. Which is it going to be? Ye exercise aapko bahut bahut help karegi.
मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने, बहुत इम्पोर्टेंट है. विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन. ठीक है, आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये सातों पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें, और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताया है अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर. राइट, लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ट्रांसफॉर्मेशनल, हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको. अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 इयर्स ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज. झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना. इज ऑफन डिफाइंड एज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल. दिस स्टाइल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन बाय रिसर्चर बर्नार्ड एम्बास. मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं. ठीक है, दीज लीडर्स टेंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड पैशनेट. दे आर नॉट ओनली कमिटेड टू हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल but also to helping group members fulfill their potential. This sentence mein maine summarize kiya hai jo last 7 points maine bataye hain ek leader ki qualities ke bare mein. ab leader ki qualities to bata di ki leader ko karna kya hai. pehle to humne goals bhi chase kare, fir humne apne wo points bhi yahan pe highlight kare best qualities ke. फिर अभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेस्ट है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है. इमोशनली इंटेलिजेंट का मीन्स है कि मैं दूसरों के पर्सनालिटी की कदर करती हूँ, उनके थॉट्स की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग आई रिस्पेक्ट दैट. और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है, तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये हमें बहुत ध्यान रखना है. रिसर्च शोज दैट दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस. अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हायर होगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन. आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है. तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं हैं. हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं. तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है. द लास्ट स्लाइड इज कि जब हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, मैंने अभी मोटिवेशन वर्ड यूज करा था, तो मोटिवेशन है क्या चीज. हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि हम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है. मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स. इट इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट. मोटिवेशन ये नहीं कि हमने दो बात कर दी तो मोटिवेट हो गए हम. हमें उसको एक्शन में कैसे लाना है, अपने बिहेवियर में कैसे लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. थ्री पॉइंट्स हैं इसके, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी. हम मोटिवेट तो करके हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा. उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं. हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम.
और परसिस्टेंस जो मैंने बोला था, परसिवेरेंस एक स्लाइड में पिछले 3-4 सेशन में मैंने बात की थी, परसिस्टेंस की हम कितना उसको कंटिन्यूअसली करते हैं, चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं। अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं, तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट? हर एक इम्पोर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है। बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट? हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को, हम चल रहे हैं। हम 2 मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं, अब हम नहीं और भाग सकते। वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जांपल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो। तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो, हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है, तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है, राइट? दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या। हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन तीनों पॉइंट से नहीं कर पा रहे, राइट? तो ये बहुत जरूरी है। Help improve the efficiency of people as they work towards goal. Efficiency improve करने की जरूरत है. Help people take action. Encourage people to engage in health-oriented behaviors. Health-oriented behaviors मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं, right? Help people avoid unhealthy and मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स। ये दूसरा रिस्क मैं बात कर रही हूँ कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है उसको रोकने की जरूरत है, राइट? बहुत जरूरत है रोकने की, क्योंकि हम, हमारा माइंड इतना नेगेटिव भागता है कि हम छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, हमें विश्वास ही नहीं बैठता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टवर्थी है, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है यहाँ पे। हेल्प पीपल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स। बहुत इस पे हम बात कर चुके हैं, 10 स्केल फॉर्मूला ही इस पे है। इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 प्रेजेंटेशंस थोड़ी लाइट थी, ये थोड़ी सी मैंने टफ की है। बिकॉज किस लिए टफ की है, ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए, एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको रिट्रेट करूँ, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले

0: सिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे, राइट। और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करें तो हम मोटिवेशन की बात करें, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है? आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है। एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, राइट। इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी कि हम अपनी पूरी एनर्जीज उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें। दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन। दैट्स ऑल। आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसका, ठीक है? 5 मिनट हैं
1: यस
0: हमारे पास। हाँ, और ये स्लाइड्स रो हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं। मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा। अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, राइट। आप प्लीज ये करिए, आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे, पर अगर 8 स्लाइड्स हैं, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के लिए। आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होगी और आप एनकरेज फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपने शार्प कर लेंगे अपने विजन को और एक्शन उसी तरीके से लेंगे। ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की, आप करके देखिए। ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इन टू ए डिस्कशन लेवल कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स, आई एम ओपन फॉर दैट।
1: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। ब्लेम
0: थैंक
1: करके ही हम अपने अपने अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग।
0: हाँ
1: तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, पर्सनल लाइफ में भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी।
0: बिल्कुल,
1: हमेशा कोई
0: पर्सनल
1: चीज
0: लाइफ
1: हो
0: में
1: जाती है, घट जाती है।
0: बहुत बहुत मायने रखता है ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम बिना हम ना सुनने
1: मैम
0: की अपनी जो स्किल है ना उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं, हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं। ये ह्यूमन
1: हाँ जी,
0: बिहेवियर है, टेंडेंसी है। वेरी नाइस,
1: यस
0: कंटिन्यू।
1: मैम, हाँ जी। हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है तो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा। तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में, पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है, एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट, और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें।

0: ये आप बता रहे थे, दिस वाज वेरी नाइस
1: वेरी
0: मैम,
1: नाइसली समराइज,
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस वेरी वेल। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी। मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से।
1: जी
2: जी मैम, जैसा सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को एक क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं। आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में, आपका ये एग्जाम्पल देके, और मैंने उसको ना एक ग्रेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3-4 दिन से। मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था, और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता था कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा। बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है। तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है। तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पे करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा। वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। रियली थैंक यू मैम, आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है।
1: नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना, वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो। पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे, तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए। तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है। देयर एंड देन यू फाइंड अ सोल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
2: बिल्कुल। और एक चीज और, कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे। तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो।
1: बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी। हम
2: जी
1: तो डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको। हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने की, राइट?
2: यस
1: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें, तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है,
2: यस मैम,
1: थैंक यू सो मच। और मैं इनकरेज करूंगी, अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट? बिकॉज लीडर्स तो आपको बनना ही बनना है, राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।

नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखे के अंतर्गत आप तक लाया गया है। श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं बारिश का मौसम आ गया है जिसको हम मानसून सीजन कहते हैं। इसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या स्वच्छता रखनी चाहिए, क्या क्या साफ सफाई रखनी चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी।

मॉनसून स्थिर पानी, मच्छरों और रोग के साथ कई संभव स्वास्थ्य चुनौतियां ला सकता है। मॉनसून क्या है, चलिए जानते हैं। मॉनसून या बरसात का मौसम, मौसम की मिजाज में एक ऋतु संबंधी बदलाव है जो समुद्र से भूमि पर गर्मी, नम हवा, एक निरंतर अवधि के लिए वर्षा की उच्च अवधि बनाता है। गर्मियों के मॉनसून या बरसात के मौसम आमतौर पर बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश के साथ आता है। आइए जानते हैं कि मॉनसून या बरसात का मौसम हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। मॉनसून या बरसात का मौसम आमतौर पर स्वास्थ्य चुनौतियां लाता है। बरसात होने पर हमने कई जगहों पे देखा है कि पानी जो है वो रुक जाता है, नालियों में, हमारे घर के बाहर। इससे क्या होता है कि मच्छरों का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है और मलेरिया और डेंगू जैसे बुखार फैलने की संभावना बढ़ जाती है। हमने ये भी देखा है कि बरसात के मौसम में पेट संबंधी बीमारियां भी होती है कि अगर हम ताज़ा भोजन नहीं खाते हैं, बासी भोजन खाते हैं, तो हमारे पेट में दर्द होता है और हमें दस्त लगने की भी शंका हो सकती है। बरसात के मौसम में खांसी, जुकाम और फ्लू जैसे बीमारियां भी हमें लग सकती हैं।

श्रोताओं, कहीं ना कहीं हम सबके मन में होता है कि हम इन मॉनसून से या बारिश के मौसम से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि बरसात के मौसम में मच्छरों से हमें कैसे बचना चाहिए। मच्छर से बचने वाली क्रीम लगाएं। मच्छरों को अपने वातावरण से बाहर रखने के लिए घर में कॉइल जलाएं। वातावरण को साफ रखें। अपने आसपास घर के कोई पानी जमा होने ना दें। ये सुनिश्चित करें कि मच्छर प्रजनन ना हो सके तो स्थिर पानी को जमा ना होने दें, जैसे कि रूम कूलर, कोई भी कंटेनर पानी का या आपका फूलदान, इसमें पानी जमा ना होने दें। अगर उसमें पानी जमा होता है तो मच्छर वहाँ पर उत्पन्न होंगे। अगर हम अपने घर के आसपास की सफाई रखेंगे और पानी नहीं जमा होने देंगे तो मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे। श्रोताओं, अब जानते हैं कि भोजन और पेय पदार्थ के साथ हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अच्छी तरह से पका हुआ भोजन खाना चाहिए। कच्चे उत्पाद जैसे कि सलाद या फल को भी हम अच्छी तरह से पानी में धोएं। कोशिश कर हल्के गुनगुने पानी में हम सब्जियों को धोएं। इस समय हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह हानिकारक बैक्टीरिया अधिक से अधिक होते हैं। खुद को अच्छी तरह से स्वच्छ और सुरक्षित पीने का पानी के साथ हाइड्रेट रखें, मतलब कि आपको साफ और सुरक्षित पानी पीना है। और इस दौरान हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि हम अपना पानी का इंटेक कम कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। श्रोताओं, आप जानते हैं कि हम अपने आप को कैसे स्वच्छ या साफ रख सकते हैं। अगर हम घर के बाहर जा रहे हैं तो हमारे हाथ में छाता होना चाहिए या रेनकोट होना चाहिए, ताकि हम बारिश से बच सकें और सूखे रह सकें। कीचड़ में चलने से बचें, क्योंकि हमारे पैरों के नाखूनों में ये फंगल इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। खुद को सूखा रखें और गंदे पानी से बचें, क्योंकि इनमें हानिकारक कीटाणु होते हैं। अच्छे से हाथ धोएं शौचालय जाने के बाद और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोने चाहिए। ये हर दिन महत्वपूर्ण है। यह मॉनसून के दौरान वायरस और बैक्टीरिया के प्रयास से निपटने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो घर आकर अपने आप को भी साबुन से धोएं। अपने कपड़ों को डिटॉल और डिटर्जेंट में भिगोकर रखें। अपने आप को सुखाने के बाद कोई भी टैल्कम पाउडर अपने शरीर पर लगाएं। इससे हम अपने आप को फंगल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। श्रोताओं, अपने साथ अपने घर की साफ सफाई का भी हमें ध्यान रखना है। घर को साफ रखना है, घर के आसपास कोई पानी जमा ना होने देना है। घर में डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से, जैसे कि डेटॉल हो गया या सेवलॉन हो गया, उसको पानी में डालकर पोछा लगाना है। घर की सफाई करनी है, ताकि हमारे घर में कोई भी मच्छर उत्पन्न ना हो और हमारे घर में कोई भी इन्फेक्शन ना आ पाए। खासकर उन जगहों पर जहाँ पर भोजन रखा है, और हमें भोजन और पानी को ढककर रखना चाहिए, जिससे कोई भी मच्छर या मक्खी उसके अंदर जाकर इन्फेक्शन ना पैदा कर सके, कोई भी आपकी पेट संबंधी बीमारियां ना हो पाए। श्रोताओं, इस मौसम में हमें अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगे और आप इन सारी बातों का ध्यान रखकर अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मेरा नाम दिव्यांश वर्मा कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने गुरु के ऊपर चार लाइनें बोलना चाहता हूँ। अक्सर अक्सर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते।
1: कैसे हैं सभी लोग?
2: गुड मैम, गुड है मैम।
1: गुड आफ्टरनून
3: मैम, बहुत गर्मी के बाद बहुत अच्छी बारिश हो रही है।
1: और सब कैसे हैं?
4: ठीक है मैम।
1: ठीक है। कोई और कैसे हैं?
5: गुड आफ्टरनून मैम, सब ठीक है? आप कैसी हैं मैम?
1: सब ठीक है जी। और कैसे हैं सब?
4: गुड आफ्टरनून मैम, हम
2: मैम
4: अच्छे
1: अच्छे हैं। और
6: मैम
1: कैसे हैं?
6: अच्छे हैं। आपको देख के थोड़ी एनर्जी फील होने लगी अब।
1: एनर्जी है। और कैसे हैं सब?
7: ठीक है मैम।
1: ठीक है। और कैसे हैं सब? क्या इमोशन है इस
8: अच्छे मैम, बहुत बढ़िया।
1: वक्त? बढ़िया है। और कैसे हैं?
8: मैम को आज सबकी वॉइस सुननी है।
1: मुझे ये जानना है सब हैं कैसे। अभी तक मुझे ये पता है कि 5-6 लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं।
4: मैम सब कुछ ठीक है, बट मौसम खराब है तो गला खराब हो जाता है मैम
1: ठीक है,
4: सबका।
1: लेकिन गला खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वैसे ठीक है ना?
4: मैम
1: आपको सिर्फ सुनना है, ज्यादा बोलना तो है ही नहीं, तो कम से कम वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना? कैसे हैं? मेरे को अभी भी जवाब नहीं मिला है, सिर्फ ठीक है, अच्छे हैं। 4-5 लोगों ने बोला है यहाँ पे, तो 30 से ज्यादा लोग हैं। कुछ तो और महसूस कर रहे होंगे, कुछ कोई तो होगा जो अच्छा नहीं फील कर रहा है कि सब अच्छे हैं।
9: सब अच्छे हैं मैम।
1: सब अच्छे हैं। यहाँ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्वर्णा जी आपके साथ, मेरे ख्याल से आपका ही आंखें दिख रही है शायद, है ना?
10: हाँ
1: हाँ जी। बच्चे कैसे हैं आप लोग?
10: सांगले
1: सांगले, सांगले का
10: मराठी
1: क्या?
10: में बात करते हैं मैम।
1: हाँ, तो सांगले का क्या मतलब होता है?
10: अच्छे हैं हम सब।
1: अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। और कैसे हैं?
10: बोला
1: आपके पीछे मुझे है तो सब अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे के अलावा और किसी को नहीं पता कि वो कैसे हैं, उनका फीलिंग कैसा है, आज मन में क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं अच्छा और कैसे हो, तो हम बोलते हैं सब ठीक है, या फिर जैसा रितु जी ने बताया सब ठीक है लेकिन मौसम खराब है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, देर से पहुंचे कि जहां पहुंचना था, खांसी जुकाम हो गया। बट हम कैसे फील कर रहे हैं ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता, या तो अच्छे हम बोलते हैं कि हम अच्छा ही फील कर रहे हैं, है ना? अभी ये सवाल मैंने कम से कम 15 से 20 बार ही पूछा और सिर्फ यही जवाब मिला कि हम अच्छे हैं। सब मानते हैं यही जवाब मिला हमको? यस।
8: यस मैम,
10: यस मैम,
1: तो आज इसी चीज पे बात करेंगे जिसपे मैम ने कल छोड़ा था। मैम ने कल अपने सेशन में 10 E's की बात करी थी। जो लोग इस सेशन में थे कल, हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैम ने बताया था कि हम किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे, इन डेप्थ हम जानना चाहेंगे हर एक चीज का मतलब क्या है हमारी जिंदगी से। ये जो सेशंस हैं इसमें हम कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ सीख नहीं रहे, बस कोशिश ये है कि अपने आप को थोड़ा बेहतर हम पहचान सके और थोड़ी जो हमारी शक्तियां हैं, जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम उसको और पॉलिश कर सकें, ताकि हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सकें, सोशली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली। क्योंकि सभी यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में या तो कुछ कर रहे हैं या तो कुछ करना चाहते हैं। जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी राह ढूंढ रहे हैं। सही बात है या कोई और भी जुड़े हैं किसी और रीजन से? सही
11: सही बात है मैम, बिल्कुल।
1: बात। चुप तो रह नहीं सकते ना, मैं 5 बार बार पूछती रहूंगी ताकि खुद देखूं सो तो नहीं गया कोई, है ना? तो आज का हमारे ये 40-45 मिनट होंगे, हम उस चीज पे बात करेंगे जो पहला ई था। पहला ई क्या था? किसी ने सुना था ना कल, सबने 10 E नोट किए होंगे। पहला ई क्या था बता सकता है कोई?
9: एम्पावर
1: पावर ऑफ व्हाट?
8: मैम, इमोशनल स्ट्रेंथ।
1: एब्सोल्युटली, मैं तब से यही बात कर रही हूँ कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हम कैसा फील करते हैं, हमारी जिंदगी में इमोशंस क्या रोल फील करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। हम सुबह उठने से लेके जब तक सोने जाते हैं और सोने के बाद भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे सपनों में भी हमारे इमोशंस प्ले करते हैं, हाँ कि ना? अगर आप उदास हैं, अगर आप दुखी हैं और उस फॉर्म में हम सो जाते हैं, तो हमारे सपने भी हमें उसी तरीके के आते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? अगर हम खुश हैं, हमारा दिन अच्छा बीता है, हमने जो चाहा था हमें मिला है, या जो हम अचीव करना चाहते थे, अच्छा सा परिवार भी सुखी है, तो हम अच्छी नींद अगर सोते हैं तो हमें सपने भी अच्छे आते हैं, ऐसा होता है। तो इसका ये मतलब है कि इमोशंस का रोल हमारी जिंदगी में सबसे बढ़ के है। जितना जरूरी खाना पीना, अपने कपड़े, हमारे रहन सहन, हमें अपने फिजिकल नीड्स, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं उनको पहचानना है, उतना ही या शायद कभी कभी उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें हमारी इमोशनल नीड्स को पहचानना। मुझे कोई बता सकता है कि कितने इमोशंस हैं ह्यूमन, एक इंसान में कितने इमोशंस हैं? आपको क्या पता है इस बारे में? कोई गूगल नहीं करेगा इस वक्त? ये नहीं कि जो लोग स्क्रीन पे नहीं है आप गूगल करना शुरू, गूगल में सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप सच्चे हैं तो प्लीज गूगल मत करिए, क्योंकि सबकी स्क्रीन ऑन नहीं है। आप, ये कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने, बस आप अपनी समझ से, जितना हम पढ़े हैं, कोई यहाँ पे 20 साल का है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50 साल का है, इन 50, 20, 30 सालों में आपने कितने इमोशंस महसूस करे होंगे, कोई भी बोल सकता है। और जो नहीं बोल रहे, मैं इनकरेज करूंगी वो भी बोले, क्योंकि यहाँ कोई गलत और सही जवाब नहीं है।
3: बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लाइक खुशी
1: होते हैं, 5, 6 खुशी होती है, और बताइए
3: हम जैसा फील करते हैं वैसा इमोशनल हो जाते हैं हम,
1: जैसे कि दुखी हो गए, खुश हो गया, गुस्सा,
3: गुस्सा आ जाते हैं, कभी कभी अंदर से नाराजगी होती है, बोल नहीं पाते हैं,
1: 6
3: वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी कभी कभी दुखी भी होता है,
1: 8 इमोशंस हो गए। तो बिल्कुल ठीक, 7 या 8 कोर इमोशंस होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमें रूल करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, होस्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन प्लीज। तो अब कायदे से तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन ही नहीं अलाउ हो रही आज शेयर करने के लिए, है ना? मेरा इमोशन इस वक्त क्या होना चाहिए? मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई और होस्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहे स्क्रीन शेयर करने को, या मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए कि अब मैं आगे क्या बोलूंगी, मैंने तो स्क्रीन से देख के पढ़ना था और अब तो मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मैं आगे क्या बोलूंगी, लेकिन मैं फोन करके स्क्रीन शेयर के लिए बोलती हूँ। सो राहुल ने मुझे अलाउ करा है स्क्रीन शेयर करने के, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं?
7: यस मैम।
1: सो आज हम पहले ई पे बात करेंगे, जो मैम ने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम EQ भी बोलते हैं, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ये एक प्रॉपर स्टडी है साइकोलॉजी में, इमोशनल कोशेंट इसको बोलते हैं, लेकिन हम इस पे बहुत ही बेसिक लेवल पे बातचीत करने जा रहे हैं। ये कोई साइकोलॉजी का सेशन नहीं है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट प्रैक्टिकली इस चीज के क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम इस पे आपस में बात करेंगे। मैं कुछ आपको सिखा नहीं सकती क्योंकि आपके इमोशंस आपके हैं, मेरे इमोशंस मेरे हैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि इमोशंस का रोल क्या है और इसको पहचानना और इसको मैनेज करना। हम इमोशंस चेंज तो कर नहीं सकते, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन गुस्से में क्या मैं किसी को थप्पड़ मार रही हूँ, क्या मैं किसी पे चीख चिल्ला के बात कर रही हूँ, या मैं समझबूझ के, समझ से सिचुएशन को हैंडल करके बातचीत कर रहे हैं। और हर बार जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन होता है, हर एक सिचुएशन में हमारे इमोशन अलग होते हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा, हम ये सेशंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई हमारे एक ख्वाब है, हमारा एक गोल है लाइफ में, उसको हमें अटेन करना है, बट उस गोल को अचीव कैसे करना है। तो हमने सोचा चलो हम वो ईज की बात कर रहे हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस से बात करते हैं। जैसा कि सना ने बताया, हमारे कुछ 8 या 9 जो कोर इमोशंस हैं वो हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि हो गया हैप्पी हूँ, सैड हूँ, वरिड हूँ, नर्वस हूँ, गुस्से में आ गई मैं। ये सारे इंग्लिश के, मैंने जो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ 12-14 अलग अलग इमोशंस हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इसके हमारे को हर भाषा में कोई ना कोई इसका एक वर्ड जरूर मिल जाएगा। तो हम आमतौर पर, हमें लगता है कि हमारे करीबन 12 या 13 अलग अलग इमोशंस होते हैं जो हमारी लाइफ, कुछ इमोशंस नेगेटिव होते हैं और कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिहेवियर को दर्शाते हैं। अगर मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसको कहते हैं ना, अरे इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इससे ज्यादा बात मत करो, ये तो एकदम बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी, इससे ज्यादा ज्यादा इससे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारा बिहेवियर हो गया, क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को बहुत उसपे हमारे हमारे जो एक्शन है उसको हमारे को गाइड करता है। कुछ लोग होते हैं इसे कितना भी बात कर लो ना इसे गुस्सा नहीं आता। अब ये तो कहना गलत है कि गुस्से वाला इंसान ठीक नहीं है और जो प्यार से बात कर रहा है वो ही ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है जो गुस्से वाला इंसान है वो ज्यादा समझदारी की बात कर रहा हो, लेकिन उसका बताने का तरीका ऐसा है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इमोशंस को दो भागों में बांटा है, आमतौर पे नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस बोला जाता है। नेगेटिव इमोशंस में गुस्सा आ गया, शर्मिंदा हूँ, उदास हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे नफरत है किसी से, मुझे अफसोस है, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव इमोशन में मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने ऊपर मुझे प्राइड है, यानी कि मुझे गुरूर है अपने काम पे, मुझे गर्व है अपने काम पे, मुझे आशा है, होप है, खुशी है, जॉय है, लव है, ये हमारे अच्छे इमोशंस होते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका यहाँ मैंने नाम दिया है रॉबर्ट, इन्होंने जब स्टडी किया, ये साइकोलॉजिस्ट माननीय साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, इन्होंने ये प्रूव किया अपनी थ्योरी से कि जो ये 7 या 8 इमोशंस होते हैं ये करीबन 34,000 इमोशंस ह्यूमन बीइंग में कॉम्बिनेशन में पैदा कर सकते हैं। हमें ये सब जानने की जरूरत इस वक्त पे नहीं है, हम कोई स्टडी नहीं कर रहे, हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इमोशंस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे एक्शंस इन्हीं से दर्शाए जाते हैं। इसलिए हमें इनको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी और आप अपने इमोशंस मैनेज करना शुरू करोगे, लेकिन हम सबको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरा प्राइम इमोशन क्या है। कोई भी चीज अगर खराब होती है दिन भर में, तो क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या मैं उदास रहती हूँ, या मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं उस सिचुएशन के, मैं कोशिश करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकूं। मकसद यही है कि हम अपने इमोशंस को पहचाने, इसको हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में या फॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन जब हम उठते हैं, उठने से सोने तक, सोने के बाद भी हम इसी 34,000 के जो चक्र है इसमें फंसे रहते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहता है या किसी को कुछ लग रहा है कि गलत है या सही है, हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसकी फीलिंग कैसी होती है, हम इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, नर्वसनेस होती है हमें, जैसे एग्जाम देने जाना है और नेगेटिव इमोशन है, डर है हमारे अंदर, तो डर से क्या होगा, वरी होगी, नर्वसनेस होगी, तो क्या कोई फायदा होगा हमें एग्जाम देने में, नहीं। लेकिन अगर हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, हमने बार बार अपना रिविजन किया है, तो उस नेगेटिव इमोशन को हम पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं, वरी को हम कॉन्फिडेंस में लेके आ सकते हैं, हम वरी जो है हमारी उसको बदल के हम कॉन्फिडेंस में डाल सकते हैं। क्यों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं पहले से तैयारी करो, आखिरी मोमेंट पे कुछ मत छोड़ो, लिखित में प्रैक्टिस करो, बार बार उसका रिविजन करो, ताकि जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो हमारा एक्शन क्या होगा कि हम आधा पेपर भूल जाएंगे, पेपर देख के डर जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा आंसर क्या लिखना है, हो सकता है गलत मलत लिखा है। लेकिन अगर हमने उस नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में अपने एक्शन से बदला हो, तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए उसकी तैयारी हमने नहीं करी, तो भी चैप्टर्स तो हमने सारे पढ़े हैं, तो अपनी समझ बूझ से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ना कि रिएक्ट करेंगे। घर से निकलने से पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पे भी हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती, पूरा दिन खराब हो जाता है, या रास्ते में जा रहे हैं, आजकल बारिश का मौसम है, गाड़ी तेज निकली, कपड़े खराब हो गए, कीचड़ कीचड़ हो गया, गुस्सा आ गया, बस इतना अच्छे से मैं बन ठन के जा रही थी और सारा खराब हो गया, मेरी तो मीटिंग थी, मेरा मेरा तो अच्छा काम होने जा रहा था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हो गया, ये तो सिचुएशन सामने आ गई, अब ये मेरे ऊपर है, मैं अपना इमोशन कैसे संभालूंगी। गाड़ी वाला तो निकल गया, हो सकता है उसकी भी कोई इमरजेंसी हो, तो हम एम्पैथी में बदल सकते हैं अपने इमोशन को, क्योंकि भाई अब तो ये हो गया ना, अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ। अब अगर मेरे को अच्छे मीटिंग में जाना है तो मुझे सॉल्यूशन निकालना है ना उसका, हो सकता है मैं रुक के धो लूं उसको, मेरे चलते चलते तक शायद वो सूख जाए, लेकिन उससे जो मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम करना है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम इमोशनल क्वोशन्ट बोलेंगे कि सिचुएशन आने के बावजूद हम उसको मैनेज कर पाए। ये कोई गुट्टी नहीं है कि हमने घोली पानी में डाली और पी गए, ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा, और अगर हम चाहेंगे तभी ये होगा। अगर हमें लगेगा कि इसके कोई फायदे हैं हमारी जिंदगी में, अगर हमें लगेगा कि नहीं जैसे हम हैं हम वैसे ही ठीक है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, जैसे हम आज तक रिएक्ट करते आए हैं ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लीडरशिप के सेशंस ले रहे हैं और अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू दे रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है और उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम को ना समझ के, प्रॉब्लम को पर्सनलाइज ना करके, सिचुएशनलाइज करके हमें उसके कैसे आंसर्स ढूंढने चाहिए। कई बार बहुत गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। किसी ने तेरे नाम पिक्चर देखी होगी तो देखा होगा ना सलमान खान उसमें वो 10 तक गिनती करता है, किसी ने देखी है वो मूवी? उसमें उस पिक्चर में सलमान खान को बहुत गुस्सा आता है, वो मारता रहता है सबको, लेकिन बाद में शायद जो हीरोइन होती है वो बोलती कि तुम 10 तक गिनती करो तो शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। देखिए किसी ने ये मूवी, या मैं ही सबसे पुरानी हूँ यहाँ पे?
5: मैंने देखी है मैम।
1: देखिए सबने देखी है। तो वो क्यों करता है उसको, उसने एक मैनेजमेंट टेक्निक बना ली कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में रिएक्ट कर जाता हूँ, तो रिएक्ट ना करके मैं कैसे उसे कंट्रोल करूँ और उसको मैं पॉजिटिव, मैंने ये एज ए एग्जाम्पल ही दिया है, लेकिन ये कोई सिंगल तरीका नहीं है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इमोशनल क्वोशंट के ऊपर हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, जिनको की लगता है उनकी जिंदगी में नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाएं और कुछ कुछ स्पीकर्स हैं या कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं, आप पढ़ने की कोशिश करिए उनको, वो आपको शायद एक बेहतर सोशली एंड पर्सनली वो आपको हेल्प करेगा। और जहां तक लीडरशिप की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी है, आपने मैम को कभी रेयर ही गुस्से में देखा होगा, आपने हमेशा देखा है कि वो कितनी बारीकी से इमोशंस को, सिचुएशंस को सिचुएशन पे रखती हैं, पर्सनलाइज नहीं करती हैं। ये बहुत मेहनत से आता है, बहुत एक्सपीरियंस से आता है, ओवरनाइट नहीं आ सकता, बट एज ए लीडर ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोल पे फोकस करना है, इमोशन पे नहीं। मेरे को कैसे बोल दिया इसने, अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मुझे बोल कैसे दिया इसने, बट वो आप उसे पर्सनलाइज ना लीजिए। अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियां, अपनी वीकनेस को पहचानिए एज ए लीडर और उस पर वर्क करिए। अगेन आई वुड से इट इज अप टू अस कि हम इसकी वैल्यू पहचानना चाहते हैं कि नहीं पहचानना चाहते। इस स्लाइड में हम ये बोल रहे हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, इसके ऊपर हम कई चीजें बात कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव इमोशंस खराब होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा भी स्टडी किया है कि जरूरी नहीं है हर बार और हर नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए नेगेटिव ही रिजल्ट लेके आए। कभी कभी आपने सुना होगा ये इंसान ना स्ट्रेस में बड़ा अच्छा काम करता है, ऐसे सुना है किसी ने कि भाई इसको जब बिल्कुल सर पे आ जाती है ना तब इसकी, ये किसी की नहीं सुनता, ये देखना बहुत अच्छा काम करता है तब, क्योंकि उनको मैनेज करना आ गया है ये आर्ट कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। पूरा दिन कुछ, कई हमारी फ्रेंड ऐसी होती थी कुछ नहीं पढ़ती थी, सारा साल ऐसे ही इधर उधर डोलती रहती थी, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आता था वो दिन रात पढ़ाई करके, क्योंकि उनको डर था कि मैं पीछे ना रह जाऊं, तो उस डर को उन्होंने पॉजिटिव इमोशन बनाया और दिन रात पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट लेके पास हो गए, है ना। और कुछ लोग हैं पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बना लेते हैं, हाय मतलब प्रैक्टिस करे जा रहे इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि डर आ गया है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसी को बैलेंस करने की जो कला है उसको इमोशनल क्वोशंट हम कहते हैं। तो हमें हर बार नहीं सोचना कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, कई बार नेगेटिव इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में हमें सीख देने के लिए, ये समझाने के लिए कि शायद हम कहीं गलत जा रहे हैं, शायद हमें जरूरत है अपने कोर्स करेक्शन की। कभी कभी फेलियर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब फेलियर ही नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम राह पे किसी राह पे चल भी रहे हैं कि नहीं, ऐसे अंधाधुंध चले जा रहे हैं। एक रैट रेस में सब सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो हमने EQ समझा, इमोशनल क्वेश्चन समझा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो पजल है जो हम 10 E's की बात कर रहे हैं, वो हमें हेल्प करेगा हमारा गोल डिफाइन करने में, हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन को अब हम लिंक करेंगे कि हम गोल्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने बात करी कि यहाँ सभी लोग किसी ना किसी गोल से या किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए ही यहाँ पे जुड़े हैं। किसी को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी को ग्रेजुएशन करना है, किसी को कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, नर्सिंग का करना है, पार्लर का करना है, स्टिचिंग का करना है, कोई एम्ब्रॉयडरी करके कुछ करना चाहता है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वो कुछ क्या है वो भी तो हमें डिफाइन करना है ना। लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस में ही घिरे रहेंगे, मेरे घर में तो बहुत परेशानी है, मेरे को तो निकलने नहीं दिया जाता, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अरे जाके भी मुझे काम करना पड़ता है, मुश्किल से 1 घंटा निकालती हूँ, अगर हम इन सब चीजों में फंसे रहेंगे तो हम लाइफ में गोल ही सेट नहीं कर पाएंगे। और अगर गोल ही सेट नहीं होगा तो हम उस राह पे चलेंगे कैसे। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन, कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम अपना गोल डिफाइन कर कैसे सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, ये स्लाइड हम आपसे शेयर कर देंगे। अगर हम इन 10 क्वेश्चन के आंसर करने शुरू करें तो हो सकता है हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये हम खुद से पहचान पाए। ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं ये वो ही डिफाइन करे, तभी वो लाइफ में खुश रहेंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि गोल उनका होना चाहिए। हम गाइड कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उस राह पे चलने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर तो हमें ही पता है ना, क्योंकि हम सच्चाई से आंसर देंगे इन इन सब क्वेश्चंस का। मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ तो मुझे खुश क्या करता है? किसी को सिलाई खुशी देती है। अभी हम पीछे किसी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला मुझे, मैं सीख तो स्विंग रही हूँ लेकिन मुझे बनना पार्लर का काम करने में बहुत मजा आता है, तो मैं स्विंग सीख के पार्लर भी करूंगी। ठीक है, आप स्विंग सीख लो, बट वो बहुत क्लियर थी कि मुझे ब्यूटी का काम करने में बहुत मजा आता है, बट हो सकता है उनके परिवार वाले इस वक्त अलाउ ना कर रहे हो या सीट खाली ना हो ब्यूटी और वेलनेस में, तो इसलिए उन्होंने अभी अपना ब्यूटी का बाद में रखा। तो उनको बहुत क्लियर था कि उनको मजा किस चीज में आता है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को एडवांटेजेस में कैसे बदल सकती हूँ, मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए फाइनेंसेस क्या क्या चाहिए होंगे और इन फाइनेंसेस को मैं अरेंज कैसे कर सकती हूँ। क्या कभी कभी हमारा गोल ऐसा होता है कि हमें लगता है ये फुलफिल नहीं हो सकता, कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन वो तो महंगी होती है, मैं पायलट बनना चाहती हूँ लेकिन वो तो बहुत महंगी होती है। उसको आप पहले डिफाइन करेंगे तभी तो, आप पहले पहचानेंगे तभी तो आप उसको ब्रेक डाउन करके उस लेवल तक लेके आएंगे कि उसे पूरा किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको पहचानना कि वो ऐसा काम क्या है जो आप रोज उठ के करीबन 30 40 50 साल तक आगे करना चाहते हैं। जो बच्चे आज 20 साल के हैं वो कम से कम 60 साल तक काम करेंगे, तो 20 से 60 साल की जो जर्नी, यानी कि 40 साल अगर आपको काम करना है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, आजकल तो 80 90 साल के भी जो हमारे मेंटर्स हैं वो भी हमें गाइड करते हैं अभी तक। तो आप सोचिए काम करने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। तो अगर आपको 40 50 60 साल तक आगे काम करना है तो ऐसा क्या काम है कि रोज सुबह उठेंगे तो उतने ही खुशी से आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस रोज आएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी का काम होगा तो चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज तो रोज आएंगे, क्योंकि चैलेंज के बिना तो आई थिंक लाइफ का सर्कल पूरा नहीं है। लेकिन उन चैलेंजेस को हम तभी इंजॉय करेंगे अगर काम हमारी पसंद का है। अगर आज वो काम हम नहीं कर सकते तो मैं उनकी तरफ आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, उनको भी हमें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। बट ज्यादातर लोग जो है ना, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, अगर मैं सिलाई सीखने गई और मेरी सिलाई सबसे अच्छी नहीं हुई तो शायद मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा। अगर मैंने अचार बनाना सीखा और मेरे अचार खराब हो गए तो हो सकता है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। हो सकता है मैंने बिजनेस करना शुरू किया और मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया, तो मेरे पैसे तो खराब हो जाएंगे, तो मैं नहीं करूंगी। ये जो फियर ऑफ फेलियर है, ये हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है। और फियर ऑफ फेलियर हम सब में ही है। ये लाइफ स्किल के सेशन देने से पहले मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर था। अगर लोगों को मेरे सेशन में नींद आने लग गई तो मैं क्या करूंगी, अगर उनको मेरे सेशन अच्छे नहीं लगे, अगर मेरी बातें समझ नहीं आए, अगर वो सिर्फ स्क्रीन ऑन करके बैठे रहे और मेरी बात का कोई मतलब नहीं समझे, तो मुझे कैसे लगेगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर था मेरे अंदर। पर मैंने अपना काम पूरी जस्टिफिकेशन से किया, जो टॉपिक था उसे समझा, उसमें जितनी मेरी समझ थी उसके सारे जो पॉइंट्स थे मैंने लिखे। हो सकता है एक बच्चे को भी या एक बेनिफिशरी को भी उससे फायदा हो जाए। तो वो जो फियर ऑफ फेलियर है ना मेरे, उससे मैं मोटिवेट हुई कि चलो एक, शायद मेरी 4-5 घंटे की मेहनत से हो सकता है एक इंसान को कुछ मोटिवेशन मिल जाए और वो अपने इमोशंस को पॉजिटिव की तरफ मोड़ना चाहे और हो सकता है वो अपना गोल डिफाइन करने में सक्षम हो सके। तो इसलिए फिर वो फियर ऑफ फेलियर को मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो मुझे अच्छे से करना है, फियर ऑफ फेलियर से उसको बांध के नहीं रहना। बट हम सभी आगे बढ़ने से डरते हैं, कुछ नया काम करने को बोलो तो हमें डर लगता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, हमारे ऊपर हमारे लिए ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। सो नेवर बी शाई, नेवर बी अफ्रेड, मतलब कभी डरिए मत कि हम हार जाएंगे, हमें हमें लोग हंसेंगे, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। फेल होंगे ही होंगे। आप कितने बड़ी कंपनी के लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, हमारी लाइब्रेरी में इतनी बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा। बड़ी सी बड़ी कंपनी उठा लीजिए जिसके जो बायोग्राफी है उसमें ये नहीं लिखा होगा, ये ऑटोबायोग्राफी में, कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ या मैं कभी फेल ही नहीं हुई। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ कदम तो गलत हुए ही होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बन गए और एक छोटी सी गलती से भी वापस नीचे आ गए। ऐसे बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं कि कैसे बड़े बड़े एम्पायर्स जो हैं वो नीचे आ गए। तो फेलियर तो पार्ट ऑफ सक्सेस है ही। अगर आप सक्सेस का कर्व पढ़ेंगे तो सक्सेस में फेलियर कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन क्या हम उसे डर के रुक जाएं? ये आपकी मर्जी है। अगर आपको डर के रुकना है तो आप डर के रुकिए, बट अगर आपने हमारे सेशन ज्वाइन किया है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप फियर ऑफ फेलियर से रुक जाएं, थम जाएं। कोशिश करिए उसको आइडेंटिफाई करें, उन जो फेलियर्स हो सकते हैं पहले से उसकी तैयारी करके हम चले आगे। रास्ते में अगर रुकावटें आएंगी तो उसको मैनेज करना हमें सीखना है। आप जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं, मैम ने भी सबको बताया, एक डायरी जरूर मेंटेन करिए। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में अगर तोड़ेंगे, यानी कि हमें एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक साल के अंदर अंदर मैं अपनी बुटीक खोल लूंगी, तो उसको मुझे ये स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बुटीक खोलूंगी तो आज से 3 महीने तक तो पहले मैं बेसिक स्टिचिंग सीखूंगी। बेसिक स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे 10 या 15 लोगों के फ्री में बनाने पड़ेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है। हो सकता है मुझे पैसे मिले उस चीज के, हो सकता है मुझे मेरे मुंह पे आके फेंक दे कि ये क्या क्वालिटी तुमने दिया है, क्या मैं रुक जाऊंगी तब? ये आपकी मर्जी है। अगर आप सीख के आप बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं दोबारा ठीक करके देती हूँ, मैं इसके कोई पैसे भी नहीं दूंगी, ये आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा ही करिए, लेकिन अपने लक्ष्य को ब्रेक करिए कि अगर एक साल में बुटीक खोलना है तो पहले 3 साल में मेरे को बेसिक स्टिचिंग सीखनी है। अब मैं बेसिक स्टिचिंग पे करके सीख रही हूँ कि रीड के सेंटर पे जाके सीख रही हूँ, जहाँ पे मैं सेफ भी हूँ, मुझे अच्छे टीचर मिले हैं। बेसिक के बाद मैंने 3 मंथ्स का एडवांस स्टिचिंग लिया, उसके बाद मैंने छोटा बुटीक खोला, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बड़ा बुटीक खोला। 1 साल में नहीं खोल पाई, हो सकता है 1.5 साल में खोला। अपने गोल को रीएडजस्ट करिए। तो मेरे को मेरा मतलब यह है कि अपने गोल को पहले डिफाइन करिए और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए और हमेशा उसे रिविजिट करिए कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई कि नहीं कर पाई। जहां फेलियर हुआ उस फेलियर को एक्सेप्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए, उसे कुछ सीखिए। एवरी टाइम वी हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स, फ्रॉम द रोड ब्लॉक्स, जो भी बीच में रोड ब्लॉक्स आए हैं, अनहैप्पी सिचुएशंस आई हैं, कोविड आ गया, कोई प्रॉब्लम और आ गई, तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए हमें उसको पॉजिटिव में ही बदलना है। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल की बात करें, बार बार इमोशन आ जाते हैं कि हमें घबराना नहीं है, उनको नेगेटिव इमोशंस में नहीं बदलना है। सॉरी मैंने टाइम भी नहीं देखा। यहाँ पे कुछ किताबें हैं, जरूरी नहीं है ये सारी किताबें हमारे लाइब्रेरी में हो, लेकिन इसके कई कई जो एक्सर्ट्स हैं, यानी कि जो जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं, वो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। बाकी किस लैंग्वेजेस में है मैं रिसर्च कर सकती हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हम चाहें तो उनको पढ़ के हम और अच्छे से अपना गोल डिफाइन करके आगे खुद से बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट नॉट टू फॉलो योर ड्रीम्स, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, कि अपना गोल आइडेंटिफाई करिए और अपने पॉजिटिव इमोशंस को पहचानिए, नेगेटिव इमोशंस को हम किस तरीके से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेशन ऑन द 10 ईज। जो पहला ई था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का, आज हमने वो कवर किया है। अगले सेशन में मैम का लीडरशिप का सेशन होगा, सेकेंड ई पे हम उसके बाद बात करेंगे, राइट? अब इसके साथ कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है या कोई गोल, या आप जिसने डायरी रखनी शुरू करी है कोई फीडबैक देना चाहता है? बिकॉज क्या है ना, हम सुन के बंद कर देंगे ये जूम सेशन और कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहां थे वहीं पे ही रहेंगे। इसलिए वी शुड बी encouraging each other to interact. So I am stopping now and I encourage everybody, aapke saath beneficiaries bhi agar hain to unko bhi encourage kariye ki kuch is in session se agar samajh mein aaya ya kuch seekha, aur mujhe bhi feedback dijiye ki agar ye session bahut verbose tha, yani ki words bahut zyada the, to main ise aur kam aur saral tarike se present karne ki koshish karungi.
5: Hello ma'am, इट्स संगीता फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली।
1: हेलो संगीता जी।
5: यस मैम, जो आपने अभी इमोशंस के बारे में बताया, आई डोंट रिमेम्बर कोविड टाइम पे मैंने एक चैप्टर था घृणा का महत्व, हिंदी में किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना था, दैट वाज अ डिग्री स्टूडेंट, मुझे याद नहीं है। बट वो इमोशंस जो हमारा हेट्रेड इमोशंस है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रही थी, उसको बहुत डिटेलली उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम घृणा नहीं करेंगे तो जो बुराई है उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं तो उससे डर के, अरे लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, इससे डर के गलत काम नहीं करेंगे। वो पूरा बहुत अच्छे से था, तो आप जब समझा रहे थे तो वो चैप्टर में रिकॉल कर रही थी मैम।
1: एब्सोल्युटली राइट, हम कभी कभी इतना डर जाते हैं नेगेटिव इमोशन से ना। जब मैंने पूछा, मैं 100% ये श्योर हूँ कि आज जो 60 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी अच्छा नहीं फील कर रहे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें परेशान कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी परेशानी। सबको ये टाइम सूट करता है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोग अपना वक्त निकाल के एग्जैक्टली 3 बजे आ गए और वो अच्छा भी फील कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हम नहीं बोला नहीं, क्योंकि हम डरते हैं कि हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही सोचा जाएगा, भाई मेरे को नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैंने सुबह खाना नहीं खाया वक्त से, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मेरा नहीं मन है सेशन अटेंड करने का, मेरा नहीं मन है वीडियो पे आने का, मेरा नहीं मन है कुछ बोलने का। तो वो हमारा मन है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। मैं आपकी जिंदगी में आके उसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये हम पे है कि हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। ये हम पे है कि दिन भर में जो हमारे सामने आता है हम उसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सब हमारे हाथ में, क्योंकि ये हमारी लाइफ है।
5: नाउ फॉर दिस आंसर मैम, कि आप कैसी हैं? मैं खुश हूँ मैम।
1: आप खुश हैं, अच्छा, वेरी गुड। और आप खुश हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पॉजिटिव इमोशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है, मतलब इमोशन से हमारे एक्शन होते हैं। मैं जब ये सेशन बना रही थी तो मैंने कई वीडियोज और कई साइकोलॉजिस्ट थी जो थ्योरीज थी उनको पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और मेरे ब्रदर ने तो इस सब्जेक्ट पे पीएचडी, डबल पीएचडी करी है ह्यूमन साइकोलॉजी पे, तो वो अभी भी पढ़ रहा है, उसको करीबन 12 साल हो गए हैं ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए, और अभी भी वो पढ़ रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो हम आधे घंटे के सेशन में तो इस चीज पे बात भी नहीं कर सकते, और मैं तो इस चीज पे बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो जब हम इन चीजों पे मैं पढ़ रही थी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई कि जो पॉजिटिव इमोशन है, इमोशन जो बना है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेराइवेटिव है। इंग्लिश का जो वर्ड है इमोशन, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेरिवेटिव है। इमोशन यानी कि जो हम फील कर रहे हैं उससे हमारा मोशन होगा, उससे हमारा रिस्पॉन्स होगा। जो हमारा इमोशन है उससे हम रिस्पॉन्ड करेंगे। हम खुश हैं तो सब खुश हो जाएगा, हमारे आसपास के लोग खुश होंगे, हम खुशियां फैलाएंगे। अगर हम उदास हैं, गुस्सा है, अब ये इमोशन भी जरूरी तो है हमारे लिए, ये हमारी लाइफ से कोई ले नहीं सकता। तो अगर मैं चिड़चिड़े मूड में हूँ, तो अगर कोई बच्चा आके, मेरा बेटा आके मुझे हग भी कर रहा, मेरे पीछे जाना, मेरे को नहीं करना, मेरा मूड नहीं है, तो उस बेचारे की क्या गलती है? दिन तो मेरा खराब गया है और चिड़चिड़ी तो मैं हूँ, इमोशन तो मेरा खराब था, मैंने अपना खराब इमोशन उसको भी पास ऑन कर। ऐसे ही सेम रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो इमोशन से ही पैदा होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बने ही इमोशन पे हैं। चाहे वो प्रोफेशनल इमोशन है, सोशल इमोशन है, फैमिली इमोशन है, घर के हैं, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, मदर डॉटर, मदर सन, जितने हैं रिलेशनशिप वो इमोशन पे ही बने। तो इसकी अहमियत तो हम हटा नहीं सकते, इसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। आपके लिए मैं नहीं मैनेज कर सकती, आप मेरे लिए नहीं मैनेज कर सकते, अपने अपने पहचान की और अपने अपने मैनेज करने। मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोग प्लीज कुछ शेयर करिए। हेलो
3: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
1: स्वाति जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं?
3: मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे?
1: मैं अच्छी हूँ, मुझे खुशी हो रही है। इतना सारा इंफॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठा किया था पिछले 1.5 दिन में, मैंने सारा शेयर कर दिया। कुछ कुछ चीजें बच गई हैं, मैंने बहुत सारा पढ़ा था लेकिन फिर भी काफी कुछ शेयर कर दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा है।
3: यस मैम, काफी टाइम ना, मतलब कुछ चीजों पे ऐसी धूल सी जम जाती है, तो वो सेशन के जरिए आगे चल के आता है हमारे सामने, और फिर से लगता है कि नहीं, हमें ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। और काफी टाइम पे तो मैम ऐसे होता है कि निगेटिव जो चीजें हमारे साथ घटती है सुबह से लेकर शाम तक, वो ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में घूमती रहती है, और जो कुछ अच्छी बातें होती है ना, तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। तो ऐसा कुछ बताइए कि हम निगेटिव चीजों के जल्दी से भूल जाए।
1: ये जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे, ये सबसे पहले उठ के आया था कि नेगेटिव इमोशंस जो है ना वो सबसे ज्यादा भारी हो जाते हैं। हो सकता है नेगेटिव इमोशन एक होगा, वो इमोशन या सिचुएशन हुई, मान लीजिए लड़ाई हो गई सुबह सुबह किसी से, तो वो हमारा इमोशन नेगेटिव हो गया, या कोई बीमार हो गया घर में तो नेगेटिव इमोशन हो गया हमारा। अब वो नेगेटिव इमोशन पूरा दिन हमारे साथ रहता है, पूरा दिन, पूरे दिन में चाहे 100 से भी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस आए हों, लेकिन जो उसका भार है, जो उसका बोझ है यहाँ पीछे दिमाग में, वो घर कर जाता है, उसको हम जाने ही नहीं दे सकते। अब ये डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने नेगेटिव इमोशन पे बहुत ज्यादा स्टडी करी है। इस पे आप काउंसलर्स जो होते हैं, जो आपने सुना होगा कि काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है, हमारे यहाँ तो इंडिया में मेंटल इलनेस को तो मतलब इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसकी इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करी जाती, लेकिन बाहरी देशों में ये एक कॉमन टॉपिक है। अगर मुझे डिप्रेशन है या मुझे दुख है या मैं नेगेटिव इमोशन से घिरे रहती हूँ, तो हम वो लोग डरते नहीं हैं अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में, या फिर ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाने में जिनसे वो अपनी बात कर सके। एक एक घंटे का सेशन होता है और वो उनसे बात करते हैं। हम यहाँ पे अपनी सहेलियों से बात करके मन हल्का कर लेते हैं, ऐसा होता है। एक सहेली सबकी होती है जिससे अपना पूरे दिन की भड़ास निकाल दो, ऐसा ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अब ठीक लग रहा है, अब मुझे ठीक लग रहा है, अब ठीक। तो ये एक्चुअली हम रियलाइज नहीं करते, ये हमारा नेगेटिव इमोशन मैनेजमेंट का तरीका बन गया है। कुछ कुछ लोग होते हैं अपनी मदर से बात करके बहुत खुश होते हैं, या कुछ अपनी डॉटर से, क्योंकि वो एक ऐसा बॉन्ड है कि कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हम किसी से बात कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई कई लोगों को देखा है कि वो भगवान की मूर्ति से बात करते हैं, कि भाई हम किसी से नहीं बात कर सकते, कभी कभी ना भगवान के पास बैठ के वो अपने मन की पूरी बात कह देते हैं कि अब मैंने आपको बता दिया, अब आप देखो कि क्या हो सकता है। वो और कुछ नहीं है, वो अपने दिल की जो बातें हैं वो बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकाल रहे मतलब उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये चीजें मुझे तकलीफ दे रही है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोझ कम होने लगता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कई बार कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। वो एक सिचुएशन प्रॉब्लम है, ये क्या मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती? अगर मैं उसे नहीं सॉल्व कर सकती तो वैसे भी दुखी होने का मेरा कोई रीजन ही नहीं। अगर मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ तो मुझे ये देखना है कि परेशान होने की बजाय मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं अपने दिन भर की, जो भी दिन भर की परेशानियां हैं अच्छी चीजें उसमें जरूर लिखते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो सीक्रेट डायरी मेंटेन करते हैं, वो किसी को भी पता नहीं होता, सीक्रेट डायरी होती है। आज के दिन की ये चार बातें हैं वो उसमें मैंने लिख दी और मेरी सीक्रेट डायरी सिर्फ मेरे पास रहेगी। ये भी एक तरीका होता है कुछ लोगों का। अब ये तरीका आपका क्या है ये तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, राइट? लेकिन नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देना एक वक्त से ज्यादा वो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ चारों को खराब कर सकता है। फिजिकल हेल्थ कैसे? आप परेशान रहेंगे, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, सिर में दर्द, चक्कर आना, डिप्रेशन होना। फिजिकल कैसे? भूख नहीं लगेगी आपको, गुस्से में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तो फिजिकल हेल्थ वैसे ही खराब हो जाएगी। इमोशनल हेल्थ कैसे? सब आप दुखी हैं, आपके बच्चे दुखी रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपके हस्बैंड, आपकी मदर सब आपसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा दुखी, क्यों तो दुखी रहती है, पता नहीं क्या है, बोलती भी नहीं है क्या प्रॉब्लम है ना। प्रोफेशनल कैसे? आप अपने काम पे ही ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब आपके इमोशंस तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन उसे आइडेंटिटी उसको पहले अपनाना बहुत जरूरी है कि, और ये मानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ शायद कि जिसको इतनी बड़ी दिक्कत है, और भी लोग हैं दुनिया में जो शायद इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतों से, इसमें अमीर गरीब का कोई वो नहीं है। हो सकता है बहुत अमीर लोग हैं, पैसा भरपूर है, फिर भी नेगेटिव इमोशन बहुत सारे हैं। और एक इंसान है जो अपना काम करता है, सिंपल लिविंग है, रोजी रोटी है, घर परिवार है, और आप देखेंगे वो इतना खुश है कि पूछे ही मत। वो कोई मेटीरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं कभी कभी भी बंधी होती। नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस सारे हमारे अंदर हैं, कितनी तवज्जो हमें किसको कब किस वक्त पे देनी है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी, जैसा कि संगीता जी ने भी कहा कि जो नेगेटिव इमोशन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टू कम बैक टू से कि पॉजिटिव इमोशन की महत्व क्या है हमारी लाइफ में, उनसे दोस्ती करने के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होना भी बहुत जरूरी है।
5: एंड वन मोर थिंग मैम, मेरे साथ तो ऐसे होता है मोस्टली, आई थिंक सबके साथ, जब हम हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से जब दुख है किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो कम हो जाता है, एंड हैप्पीनेस वो डबल हो जाती है व्हेन आई

0: पे, उस ट्रिगर पॉइंट पे हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन यानी कि हमारा एक्शन क्या है, उसको पहला ई जो मैम ने कल बताया था, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशेंट, उस बैलेंस को कि नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन का जो वो बैलेंस है, कहाँ भाई नेगेटिव इमोशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा, या तो मैं रो के निकालूंगी, गुस्सा करके निकालूंगी, भड़कूंगी किसी पे, या लिख के, या किसी को बोल के, या किसी और तरीके से नेगेटिव इमोशन तो निकलेगा ही निकलेगा, नहीं निकलेगा तो वो प्रेशर कुकर हो जाएगा, फट जाएगा किसी दिन, तो उसको निकलना भी जरूरी है, बट उसको मैनेज कैसे करेंगे, और मैनेज करने का तरीका हम सबका अपना है, और उसका रिएक्शन का एक्शन भी हमारा अपना है, और उसका रिजल्ट भी हमारा अपना है, राइट? बट इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे को गोल डिफाइन करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव की तरफ कैसे लेके जाना है। तो आज हमने दो चीजों को रिलेट करा है, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, हम दोनों चीजों को अलग अलग भी समझ सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और गोल सेटिंग, कि हमें लाइफ में गोल कैसे सेट करना चाहिए।
1: हेलो मैम
0: हाँ जी ज्योत्सना जी,
1: मैम, मुझे भी आज ये फील हुआ है कि मैं भी अपना जो नेगेटिव इमोशन है वो मतलब कैसे यूटिलाइज करती थी। आज तक पहले मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, जैसे मैं मुझे कभी बहुत ज्यादा किसी से लड़ाई हुई, गुस्सा हुआ तो मैं बहुत ज्यादा काम करती थी, जितने मेरे पेंडिंग्स काम होते थे मैं सारे कंप्लीट कर देती थी उस दिन, जबकि मैं वैसे भी बहुत अच्छा करती थी ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे किसी से गुस्सा हो गया या किसी से फाइट हो गई या कोई बात हुई तो मैंने उस दिन सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिए। तो मुझे आज पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जब मैं गुस्से में आती थी तो मैं ज्यादा काम करती थी, तो अब मुझे ये चीज और आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि मुझे अपने नेगेटिव इमोशन को और कैसे बैलेंस करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मैम जो लोग बहुत डरते हैं कुछ भी मतलब करने से पहले, करना चाहते हैं प्रैक्टिस करते हैं और करने के बाद उन्हें ये डर लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे। वैसे तो ये डर सबके अंदर होता है,
0: हम सब
1: लेकिन सबके अंदर होता है वन टू ऑल, अपने अपने लेवल पे मैम सबके अंदर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। पर ठीक है, आज हमें और गाइडेंस मिली है कि वो अपना स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, थैंक यू।
0: मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर जब गुस्से में आती थी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो जिस दिन उसका खाना बहुत अच्छा बना होता था ना, तो हम उसको कहते हैं आज मम्मा गुस्से में थी क्या। ऐसा बहुत होता है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को भी पॉजिटिव में चेंज कर पाते, हमें पता नहीं होता लेकिन हम वो
1: जी
0: कर सकते हैं।
1: जी
0: हाँ जी तुषार, आप बोलना चाहते हैं?
2: एक साल पहले आप हमारा जो कारेगांव का सेंटर था पुणे में, वहाँ आप चिकित्सा मैम आई थी, तब आपसे जो बात हुई थी मैम उससे जो पॉजिटिव वाइब्स हमें मिले थे वो आज भी हमें काम करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। हर हमारा जो सेंटर है सर मैम, यहाँ पर इंडस्ट्री लेबर और माइन वर्कर्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो उन बच्चों में जो पुअर बैकग्राउंड होते हैं उनका कोई भी एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती उनके घर वालों को, तो यहाँ पर काम करने पर जो बच्चे आते हैं तो उनको नहीं क्या पुराने जमाने में जो टीचर थे हाथ में लाठी लेकर बड़ा बड़ा चश्मा पहनते थे और गुस्से से बोलते थे, ऐसा कंसेप्ट उनके दिमाग में बैठ गया था। लेकिन जब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड के साथ, तो जो तारे जमीन पर में जो आमिर खान सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया था कि ऐसा भी टीचर होता है जो बच्चों के साथ उनका उनके जैसा रहकर काम करता है, और जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डरते हैं सभी चीजों से नई चीजें करने में, तो उनके साथ वैसा रहकर इनकरेज करके उनके अंदर भी जो क्वालिटी होती है वो बाहर निकलने का काम आपके जो सेशंस होते हैं मैम उससे हमें इनकरेजमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, आप जो मोटिवेट करती है हमें और गाइडेड करती है इसलिए।
0: थैंक यू तुषार। हमने ये देखा है कई बार बच्चे डरते हैं साइकिल चलाने से, क्योंकि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, लेकिन पेरेंट्स जो है वो छोड़ तो नहीं देते ना, वो फिर भी इनकरेज करते हैं, नहीं आप साइकिल चलाओ, गिरोगे तो क्या हुआ, कोई वहां पे कुछ बांध देता, कपड़ा बांध देता, अच्छा घुटने नहीं छिलेंगे, कभी हेलमेट पहना देते, अच्छा चोट नहीं लगेगी, तो हम उसको मैनेज करने का तरीके, लेकिन हम रुक तो नहीं जाते ना, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम फियर ऑफ फेलियर नहीं लेके आएंगे, फेल तो होना ही है, लेकिन फियर ऑफ पहले से ही क्यों मान ले कि हम

0: पहले होंगे, अभी पीछे कोई बातचीत चल रही थी तो हमने ये सुना था कि हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्योंकि अर्थ की जो रेडिएशंस है वो खींच रही है हमको अपनी तरफ, ग्रेविटी खींचती है ना, तभी तो हम उड़ते नहीं रहते, हम अर्थ से चिपक के रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। तो हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और जो हम सोचते हैं पावर ऑफ माइंड, वो बात कभी कभी सच हो जाती है। हम कहते हैं ना कि हम आज ये सोच ही रहे थे, अरे और वो हो ही गया। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी में या कई कई किताबों में आप देखोगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हम सोचते हैं वो हम खींचते हैं अपनी तरफ, वो रेडिएशंस हमारी तरफ आती हैं और हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। पहले ही सोच लेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो वैसे ही नहीं कर पाओगे आप तो, है ना? आप, मैं, कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, मैम ने मुझे बताया कि हम इस तरीके से करते हैं, हमने कल पढ़ाई करी, थोड़ा सा तो कुछ मैं निकाल के ला पाई। मैं नहीं कह रही कि मैं एक्सपर्ट हो गई इस टॉपिक में, बट मुझे भी नहीं पता था कि 34,000 इमोशंस होते हैं हमारे अंदर। मुझे लगता था गुस्सा, हंसी, खुशी, यही 4, 5, 8, 10 इमोशन होते हैं। पर सोचो मुझे भी कुछ पता चला, मैं अब और पढ़ूंगी इस बारे में, हो सकता है मैं भी जान पाऊं कि मैं हमेशा हंसती तो नहीं रहती, गुस्सा मुझे भी आता है, लड़ती मैं भी हूँ, बट इन चीजों का हमारी जिंदगी पे क्या असर हो रहा है, वो चीज समझना बहुत जरूरी। तो आज पहला ई हम समझ के गए हैं, और अगर आप चाहें तो आज से लेके अगले सेशन तक आप ये लिख सकते हैं कि हर दिन के एंड सुबह आप कैसा फील करते थे और शाम को आप कैसा फील करते थे। जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं हम लिखते हैं, हम भी देखेंगे 34,000 इमोशन होते कैसे हैं, है ना? सो थैंक यू एवरीबॉडी मेरी बहुत सारी बातें सुनने के लिए। आई विश यू अ वेरी गुड वीकेंड, और आप एंजॉय करिए, अच्छा काम करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए। ये सेशन जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं करिए। हाँ
1: मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ 2 मिनट।
0: जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए सुमन जी।
1: जी मैम, सबसे पहले तो थैंक यू रीड इंडिया का और आप सबका, क्योंकि जो रीड से जुड़ जाता है तो मुझे नहीं लगता वो उसमें नेगेटिविटी इतनी रहती है, और हर वक्त रीड कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हम लोगों के साथ तैयार खड़ा रहता है, और इतना कुछ सिखाया कि कभी कुछ उदासी हो जाती है, कुछ नेगेटिविटी होती है हमारे साथ, तो हम उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी, मुझे नहीं पता ये क्या है, कि जब मैं कभी उदास होती हूँ, कभी नेगेटिविटी मेरे अंदर आती है, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, तो उस चीज में मुझे हैप्पीनेस दिखाई देने लग जाती है अपनी आप ऑटोमेटिक ही। और ये सब शायद मैंने रीड से ही सीखा है और आप लोगों से सीखा है। थैंक यू मैम इसके लिए।
0: थैंक यू सुमन जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। चलिए अब वक्त हो गया, आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट काम करने होंगे, तो अब हम सेशन क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, बाय टू एवरीबॉडी।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: मेरा नाम प्रियंका है, मैं शाबान मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ है। हम परिवार में 5 सदस्य हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और 3 बहन भाई। मेरे भाई 9th क्लास में है, बहन मेरी जॉब करती है, पापा टूरिज्म में है और मम्मी ने यहाँ से रीड इंडिया सेंटर से नर्सिंग का कोर्स किया था। आज वो जॉब कर रही हैं हॉस्पिटल में। मैंने 5 साल पहले रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, उसके बाद मैंने एनटीटी किया और आज मैं एज अ लाइब्रेरियन रीड इंडिया सेंटर में जॉब कर रही हूँ। मेरा जो एम था वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था। अब मैं रीड इंडिया सेंटर की मदद से यहाँ से कोर्स करने के बाद मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ काम करने के साथ साथ मैं अपने घर पे भी बहुत सारे काम करती हूँ। जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी घर पे निभाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ रीड इंडिया सेंटर के साथ निभाती हूँ। अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से करती हूँ। मेरे परिवार में सभी वर्किंग है, तो भाई की, छोटे भाई की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हूँ। मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ। उसके अलावा मैं उसकी स्टडी में हेल्प करती हूँ, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ और उसके अलावा उसकी सारी जिम्मेवारियां मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनके काम भी करती हूँ।
2: हेलो, मेरा नाम निशा सैनी है। मैं जब छोटी थी, 10 साल की थी और 6th क्लास में थी, तो मैं शुरू से ही यहीं पे आना शुरू किया है। और एनजीओ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से पसंद रहा है मेरे लिए, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मैं ना पिछले 7 साल से आती रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब एनजीओ में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं कर लूँगी, अगर कर सकी तो कर लूँगी, अगर जो मुझे इंटरेस्ट रहा जिस चीज़ में, मैं वो करूँगी और एनजीओ में आऊँगी। शुरू से आती रहूँगी। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ा भी है, लेके भी गई हूँ घर, बहुत अच्छी बुक्स हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं, यहाँ के मैम सब अच्छे हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब जो बॉयज़ होते हैं ना, पेरेंट्स ना सिर्फ बॉयज़ की मानते हैं, आजकल के ना बॉयज़ की बहुत डिमांड वगैरह है और गर्ल्स से जो कुछ कर दे, जैसे बॉयज़ के तरह जॉब करना चाहती हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स पता नहीं क्यों पीछे रोकते हैं, क्यों मना करना चाहते हैं। आखिर लड़की भी तो है, करके दिखा सकती है वो लड़की, जो लड़के काम कर सकते हैं ना वो करके दिखा सकते हैं। लड़की को सब लोग कमज़ोर पता नहीं क्यों समझते हैं, आज के देश में नहीं समझना चाहिए। और वो लड़की ताकतवर होती है, वो अच्छी भी होती हैं और वो समझ सकती हैं, वो पेरेंट्स को खुद अच्छे से कमा के खिला सकती है, जितने बॉयज़ कमा के नहीं खिला सकते। बॉयज़ है ना बहुत मतलबी होते हैं, बड़े होते ना अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे बॉयज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बॉयज़ ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और ना ही गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना जानते। जो अच्छे से बात करते हैं पता नहीं कैसी नज़रों से देखते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। वो बॉयज़ है ना बहुत गंदे होते हैं, बॉयज़ की तरफ तो बहुत ही कमी जितना होता है उतना ही तक बात रखें, फ्रेंड है तो फ्रेंड ही तक रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बॉयज़ से ना एकदम जैसे आगे आगे अपना करियर करते हैं वैसे वैसे ना लोग नए नए मिलते हैं और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया। शादी हो जाती है तो उसके बाद अपनी वाइफ की ही सुनते हैं, पता नहीं क्यों सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया हमारे पेरेंट्स ही है, जो कुछ है उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे हमें बचपन से पेरेंट्स ने रखा हम उनकी तरह बड़े होके अच्छे से रखें। मैं एक महिला और लड़की के ऊपर एक कविता है मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि जींस पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं जो सूट पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं सब सारी ज़िंदगी जीऊँ, पर पेरेंट्स ने मेरे को ये सब करने नहीं दिया। जो बॉयज होते हैं उन सबको आज़ादी दी। शादी होने के बाद ससुराल में गई, शादी होने के बाद मैं ससुराल में गई, सास ने बोला ये करो वो करो, लेकिन कुछ भी करने ना दिया। जो कुछ था सब उसके नाम का था, सिंदूर उसके नाम का, चूड़ी उसके नाम की, पायल उसके नाम का, साड़ी उसके नाम की, बिछिया उसके नाम का, नाम प्लेट भी उसके नाम का, नेम भी उसके नाम का, आखिर मेरा क्या है मेरे नाम का। थैंक यू।

0: Good evening, everyone. Welcome to today's episode of Nurturing Grassroots Leaders, Branding the Local Culture with Development. Today's guest will be Mrs. Sana from Barabanki, UP, who's here to share her story with us. As for a little background about her, she did her schooling in Barabanki but got married at a very early age, so had to wait for a while before continuing her studies. She did MA in English Literature and started teaching in Central Academy School. While working there, she and her husband got involved in an organization named ASI, which now goes under the name of Tanager. And while working in ASI, she was given a project regarding different farming communities. And through that, she got to know about Read India organization. She later joined Read India in March 2018 and is currently working as a center coordinator. Her current goal is to make sure that Read India is providing facilities and benefits to as many people as possible. This was just a little background about her, and she is going to explain that in much greater detail. So with that being said, I would like to request Smita ma'am to continue the program.
1: Thank you, Shashank. Thank you for the brief introduction about Sana. I welcome everybody, all our viewers, to another exciting episode of Nurturing Grassroots Leaders. Jaisa ki Shashank ne bataya, humare saath aaj Sana hai. So welcome, Sana. Welcome to our show. तो सना और देर ना करते हुए हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे. आप थोड़ा बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में. ब्रीफ में शशांक ने बताया, बट आप भी बताएं कि कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, कहाँ पे आपने एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर आपकी जैसे जर्नी आगे बढ़ी उसके बारे में आप बताना चाहेंगे.
2: गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए कि मेरी जर्नी हम शेयर कर सकें रीड इंडिया के थ्रू. जितने भी लोग अब सुन रहे हैं, रीड इंडिया में के वजह से आज हम यहाँ तक लाइफ में पहुँच पाए हैं. आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरे नाम से जानते हैं. थैंक्स, वेरी थैंकफुल टू रीड इंडिया फॉर दिस. सो स्टार्टिंग माई जर्नी, मेरी जो बर्थ हुई थी वो मेरे नानी के घर में हुई थी, बरेली में. वो एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में ही है, बट वो दैट इज नियर रामपुर. तो मेरी बर्थ बरेली में ही होती थी मेरे नानी के घर पे. उसके बाद जब वापस आए दादी के घर पे हम लोग, तो मेरी स्कूलिंग शुरू हुई बाराबंकी से. बाराबंकी से हम एट्थ में ही थे, तो फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से थोड़ा सा, एज मेरे फादर फॉरेन में रहते थे, ही वॉज डूइंग हिज जॉब देयर, ही वॉज नॉट लिविंग विद अस. हम लोग अपने दादी के घर में रहते थे बट पापा बाहर काम करते थे. तो ऐसे हमारी लाइफ शुरू हुई. बट जब हम एट क्लास में थे तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स घर में होने लगी थी, मम्मी पापा का ये, तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से. फिर जब मेरा नाइन्थ था, जब टेंथ में मेरे क्लासेस शुरू होने वाले थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बाराबंकी छोड़कर अपने फादर के साथ शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी स्कूलिंग एक रेगुलर CBSE स्कूल से होल्ड होकर के एक प्राइवेट टेंथ की मुझे ऑप्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी CBSE रजिस्ट्रेशन होता है कुछ प्रोसेस, तो वो चल रहा था. तो टेंथ में हमको ऐसे करना पड़ा. फिर टेंथ में होते होते ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई. और फिर ना चाहते हुए भी उस एज पर, एट द एज ऑफ 16 and a half, आई हैड टू गेट मैरिड ड्यू टू दैट. मेरी शादी हुई थी बट एक विल पावर था कि नहीं, ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मतलब दिस इज नॉट फॉर मी. तो मेरी शादी हुई टेंथ में. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. टेंथ का एग्ज़ाम देने वो मुझे लेकर जाते थे. शादी के 3 महीने बाद ही मार्च, जनवरी में शादी हुई, मार्च में एग्ज़ाम्स आ गए. उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया कि मैं पढ़ें, अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें. फिर वो मुझे एग्ज़ाम्स के लिए लेकर जाते थे. फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे ट्वेल्थ भी करना है, तो उन्होंने इमिडिएटली हाँ कर दिया विदाउट एनी थिंग. इवन दो आई वॉज मीन लाइक मेरा बेबी था ऑलरेडी, अब्दुल्ला वॉज बॉर्न आफ्टर टेन, बट अगर तुम्हें करना है तो यू कैन गो फर्दर. तो फिर उन्होंने मुझे 12th करना है. फिर ग्रेजुएशन मैंने इस तरह पूरा किया. 12th के बाद एक्चुअली मेरी बेटी डॉटर भी, फिर मुझे 2 साल के लिए पढ़ाई अपनी रोकनी पड़ी, होल्ड करना पड़ा. बिकॉज इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू स्टडी विद 3 of the kids और 2 twins के साथ. इट वॉज वेरी टफ. सो ऐसे 12th हुआ. उसके बाद हमारा फिर ग्रेजुएशन, फिर मैंने MA किया. इस सारे प्रोसेस के दौरान आई वॉज हैविंग माई फैमिली सपोर्ट अ लॉट. इंटर के बाद MA का फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, तो मुझे लगा कि अब क्या करना है. तो फिर मैंने यही सोचा कि अब स्टडी को ब्रेक लगा देते हैं, बिकॉज आई नीड कि मुझे बाहर जाना चाहिए. घर में बैठकर हमने पढ़ाई तो कर ली, घर में बैठकर सब कुछ कर लिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आई एम मतलब मैं पूरा टाइम फ्री हूँ. देन आई स्टार्टेड मैंने अपनी सीरीज दी, मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ. उन्होंने मुझे बोला कि आपने कहीं पर भी आप इतने बड़े स्कूल में आपने अप्लाई कर दिया सेंटर में, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है. तो मैंने बोला मैम एक्सपीरियंस तो पढ़ाने से ही आएगा, कोई भी फ्रेशर कभी एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, एंड एवरीबडी नीड अ चांस कि वो कुछ अपने आप को प्रूव करे. तो आप एक डेमो दे दो, उसके बाद हम देखते हैं. फिर मैंने उन्हें डेमो दिया तो थैंकफुली मेरा हो गया सिलेक्शन वहाँ पर. इस तरह हमने जॉब स्टार्ट कर दी. जॉब स्टार्ट करने के 3-4 साल के बाद ही मेरा रीड इंडिया के साथ कनेक्शन हुआ थ्रू ऑब्वियसली थ्रू मैनेजर और अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो फिर इस तरह से हम रीड में जॉब स्टार्ट की. रीड में जॉब स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट रीज़न जो मेरा था कि शायद ये बहुत मुझे मतलब हमेशा से एक इनर फीलिंग आती थी कि मुझे सोशल वर्क करना चाहिए. सोशल वर्क करने की जो विल थी उससे ही हमको टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट किया था. बिकॉज आप थोड़ा सा सोशलाइज हो जाते हो जब आप इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप क्लासेस लेते हो, उनमें से कुछ हर बच्चे की एक अलग स्टोरी होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना. मेरा रेसेस का टाइम भी मेरा क्लास में ही जाता था. हम कभी स्टाफ रूम में बैठ कर लंच नहीं करते थे, हम बच्चों के साथ क्लास में, इवन दो वो 10-12 के सीनियर स्टूडेंट्स थे, बट मेरा लंच टाइम क्लास में ही होता था. तो बाकी टीचर्स ऑप्शन भी करते थे कि आपको स्टाफ रूम में आना चाहिए. मैंने बोला नहीं, मेरे एक वो है कि मेरा उनके साथ कुछ है इंट्रैक्शन क्योंकि वो मेरी क्लास है. तो इस तरह से चलता रहा. फिर जब रीड इंडिया के साथ हम कनेक्ट हुए तो रीड इंडिया में के लिए मैंने अपनी जॉब को इमीडिएटली, स्मिता मैम से मेरी पहली मुलाकात दिसंबर में हुई. स्मिता मैम जब पहली बार आई थी यहाँ पर जगह देखने के लिए, गीता मैम, स्मिता मैम एंड नाइट सर, तब भी हम जॉब पर थे, मेरी स्मिता मैम से फर्स्ट टाइम मुलाकात भी नहीं हुई थी. तब जब सेकेंड टाइम में मैम गीता मैम और नाइट सर आए तब हम घर पे थे, इट वॉज डिसम्बर. तो जब मैं गीता मैम से मिली और मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की, मैं शी वॉज लाइक मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, ये भी यहाँ के वीमेन से रिलीज किया है, हम लोग ऐसे काम करते हैं. तो एट द टाइम मतलब मुझे आई वॉज लाइक ब्लैंक, मैम कह रही है क्या ये रियलिटी है, ऐसा होता है, जो ऐसा काम करते हैं. बिकॉज एक इमेज थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक इमेज थी. जब आप न्यूज़ देखते हो, आप आसपास का अपने माहौल देखते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, एनजीओ वाले ऐसा तो काम कर ही नहीं सकते, बस नाम का एनजीओ, मतलब दैट वॉज एन इमेज. अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन से पूछो तो यही इमेज है एनजीओ की. आई वॉज लाइक दैट, मतलब आज शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए बिकॉज आई एम वर्किंग इन एनजीओ टू, बट वो इमेज थी, रियलिटी यही थी मेरे लिए. तो मैम बोल रही थी और मैं सुनी थी ऐसे बैठकर, मैम सामने बैठे हुए थे, बट मैम बोल रही थी और मैं सोची थी अच्छा ऐसा भी होता है. देन मैम हमारा गुसाईगंज का भी सेंटर तब दिसंबर में ही खुला था, हमारे सेंटर के 3 महीने पहले. तो मैम ने बोला कि आप आइए, आप देखिए हमारा क्या है. फिर मैंने एक बार को इमीडिएटली बोला कि मना मत करिएगा, हम लोग जाएंगे क्योंकि मुझे देखना है क्या है, रियलिटी ऐसी है. मैम का सेंटर कहता है, एक बार को भी ये था कि हाँ अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज दैट. जब हम लोगों ने स्टेप इन किया, जब हमने स्टेप इन किया गोसाईगंज के सेंटर के अंदर, मीन्स इट वॉज लाइक मतलब मैं देख रही थी कि स्कूल है, कि ये स्किल सेट्स हैं, मतलब लाइब्रेरी भी है, उसमें कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, मतलब लाइब्रेरी इट वॉज लाइक अ ड्रीम. क्योंकि लाइब्रेरी तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी, जैसे लाइब्रेरी होती है हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे गाँव में लाइब्रेरी है, हमारे शहर में लाइब्रेरी है. और आई वॉज लाइक यार लाइब्रेरी है यहाँ पे, इन्होंने कंप्यूटर्स भी रखे हुए, इन्होंने मशीन भी लगाई, इन्होंने गाँव में ला के प्रोजेक्टर भी लगा रखा है. मीन्स ये सारी चीजें एक बंदे के माइंड को बहुत इम्पैक्ट करती है जिन्हें इसकी वैल्यू पता होती है. तो आई वॉज लाइक की मतलब मैंने बहुत अच्छे से
3: आप थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को, शायद आइडिया नहीं होगा कि ये जो गांव की आप बात कर रहे हैं गोसाईगंज बाराबंकी, इनकी लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए. बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री और समटाइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर व्यूइंग द प्रोग्राम, तो आप थोड़ा बताएंगे जो आप विलेज के, ताकि वो भी विजुअलाइजेशन कर सकें कि जिन गाँव की आप बात बता रहे हैं वो शहर से कितनी दूर है, वहां पे क्या चैलेंजेस हैं. क्योंकि कई बार सुनने वाला ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि शायद एक कंप्यूटर को देखना, हाथ लगाना भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप उसके बारे में भी दीजिए सना.
2: यस, तो गुसाई बाराबंकी जो सेंटर है यूपी में है, गुसाईगंज सेंटर भी यूपी में ही है। इंडिया में यूपी एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश, यूपी सिटी है लखनऊ, विच इज़ वेरी वेल नोन बाई एवरीबडी। लखनऊ के बाहर जब हम आते हैं तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर आता है, बाराबंकी सेंटर जो बड़ा गाँव में जिस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं करेंटली। और गुसाईगंज सेंटर में है वो अदर रूट पर है, वो लखनऊ से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर की रेंज में है। तो ये बड़ा गाँव सेंटर है जिसके पिक्चर्स अभी डिस्प्ले हो रहे हैं। ये वो सेंटर है, ये पूरी लोकेशन है सेंटर की। तो इस तरह से फिर हम जब बस्तिया गए, बस्तिया में मैंने देखा सारी चीजें, फिर मैंने वहाँ के लोगों से बात करना शुरू की कि ये सेंटर के बारे में आपको पता है, आप लोग यहाँ आए हैं इनॉग्रेशन में, आपको क्या लगता है सेंटर में क्या, क्योंकि मतलब मेरे अंदर क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तो यहाँ आया है तो क्यों आया, उसे क्या बताया गया, वो क्यों आया, सेंटर कैसे ही सर्वाइव करेगा, लोगों को इम्पोर्टेंस पता है। तो उन्होंने कहा कि जी जी मैम, यहाँ पे सब गए थे बताने सेंटर के बारे में, हम लोगों को बताया गया सेंटर खुलने वाला है। तो हमने पूछा आप लोग आएंगे सेंटर, क्योंकि गांव में शायद आपने कभी देखा नहीं। बोले मैम यही तो बात है कि हमने तो कभी कंप्यूटर देखे ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं कंप्यूटर होता कैसा है, खाली नाम ही सुने। तो गुसाईगंज जो सेंटर है ना बस्तिया, दैट इज वेरी फार फ्रॉम लखनऊ, और वो बहुत ज्यादा ही मतलब बैकवर्ड है, यू नो मतलब प्रॉपर विलेज, विच इज कॉल्ड अ प्रॉपर विलेज, दैट इज दैट प्रॉपर विलेज, मतलब जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी स्कूल भी शायद वहाँ उनके घर से थोड़ी दूर पर ही होगा, उन्हें स्कूल भी जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो ये सेंटर तो उनके लिए वॉज लाइक अ चांस कि उन्हें लाइफ में कुछ अचीव होने वाला है, वो ऐसे सेंटर पे खुला हुआ था वो जगह। तो वहां से वो मुझे मतलब दिमाग में आ गया कि नहीं, ये बेस्ट है जो बड़ा गाँव में होने वाला है, इट विल चेंज बड़ा गाँव, इट विल गिव अ ट्रांसफॉर्मेशन टू द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन बड़ा गाँव। सो वी वर लाइक ओके, मतलब मी एंड इवल वर सो सैटिस्फाइड कि नहीं अब आप करते हैं, बस अब यही करना है। तो द वेरी नेक्स्ट डे जाने के बाद मैंने जाके सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन लिखा, मैंने कहा मुझे अब काम नहीं करना स्कूल में, मुझे अब यहाँ काम करना है। दैट वाज सो मतलब एक बार वो शायद पहले सोच तो लो, मैंने कहा नहीं मुझे अब यही करना है, मुझे वो जॉब देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, मतलब मुझे करना ही।
3: हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये हमारे ये बाराबंकी सेंटर की है जिसकी बात सना कर रही है, जो हाँ जहाँ पे सना बेस्ड है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं सेटअप है पूरे सेंटर का, और जो विजिटर्स आए हैं ये कैलिसंस के ग्रुप के मेंबर्स हैं, और भी फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं, लोकल टीम से भी बहुत लोग आते हैं। जो ये सेंटर है ये कैलिसंस नाम की एक कंपनी है जो मिंट फार्मर्स के साथ काम करती है, ये उनके सपोर्ट से ये सेंटर चल रहा है। करीबन 3 साल से ये सेंटर इस एरिया में चल रहा है, जिसको कि सना अपनी टीम के साथ और अपने टीम ऑफ वॉलंटियर्स, टीम ऑफ स्टाफ के साथ मैनेज करती है, जिसकी स्टोरी सना बताई। तो सना हमने शुरू से ही देखा आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया, स्पेशली अर्ली मैरिज हुआ, अर्ली आपके बच्चे हो गए, देन इवन देन यू हैव नॉट गिवन अप। सो ये फीलिंग कैसी थी जब आपको, बिकॉज हमने देखा है स्पेशली इंडिया में सर्टन ग्रुप्स में सर्टन एरियाज में तो बिल्कुल इनकरेज ही नहीं करते, स्पेशली शादी के बाद तो ये एकदम ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया जिस तरह का माहौल, जिस तरह का यू नो सपोर्ट आपको मिला है। सो यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट?
2: Yes, ma'am. Ma'am, being in a community, in a Muslim community, is very tough to come out of the house. मतलब हमारे यहाँ का तो culture नहीं है वो कि हम घर से बाहर भी जाएं. But education changes everything. I believe in that. और ये क्योंकि जो लोग इसकी importance ज़्यादा जानते हैं, जिसे ना इकबाल को ये लगता था कि चलो कुछ तो अगर वो करना चाहती है तो करने देते हैं. और हमको ये था कि हमें करना है तो करना है. अगर कोई कुछ बोलता भी है, कुछ रोक भी रहा है, तो वो अपने रोक रहा है, एक दिन बोलेगा, दो दिन बोलेगा, तीन दिन बोलेगा, फिर खत्म हो जाएगा. और वो ही हुआ मैम, दो बार तीन बार सेलिब्रेशन किया, फिर सब सारे चुप हो गए मैम. और अब तो ये है मैम, लोग मेरा नाम लेके अपने घर में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सना मैम को देखो, सना मैम को देखो, कुछ सीख जाते हैं उनसे कैसे वो बच्चे के साथ रहती है, कैसे वो सेंटर का काम करती है, वो घर का भी काम करती है, छोटे बच्चे को भी देखती है, बाहर के बच्चों के साथ भी वो ऐसे बिहेव करती है. तो मैम सुनने में खुद को भी अच्छा लगता है, वेरी ऑनेस्ट, खुद को भी सुनने में बहुत और फील होता है कि मेरे लिए लोग ऐसी बात करने लगे हैं. ये सब कुछ पॉसिबल है तो सिर्फ रेड इंडिया की वजह पे. रेड इंडिया नहीं होता तो डेफिनेटली मेरे बारे में कोई आज ऐसी बात ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि लोग मुझे जानते ही नहीं कि हम कौन हैं.
3: कि ये पॉइंट हम इसीलिए लाना चाहते थे बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है नर्चरिंग ग्रास रूट लीडर्स, तो आप जैसे लीडर्स जो हैं एक इमेज, पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं कम्युनिटी में, जो कि चेंज एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो कैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से, तो ये मैसेज हम आपके माध्यम से ये भी देना चाहते हैं कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो महिलाएं लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, एंड आप उसका जीता जागता एक एग्जाम्पल है जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत लोग होंगे। So that is what I wanted to bring to the audiences. Special mention to you and your family for this initiative जो आपने life changing अपने लिए और अपनी community के लिए लिया है, कि एक second नहीं लगाया और आपने कहा कि मैं अपना job resign कर रही हूँ और मैं रीड के साथ जुड़ के ये कार्यक्रम करना चाहती हूँ। So we congratulate you for this effort and we want to know more about your center now. बाराबंकी में आपका जो ये सेंटर है, इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, कैसे आप कम्युनिटी में जाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको कम्युनिटी में जाने में?
2: मैम, कैलिसंस जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो दिस इज बेसिकली फॉर मेन पावर के, हम मेन पावर को उतना ही टारगेट करते हैं जितना हम बाकी कम्युनिटीज को करते हैं। तो मेन फार्मिंग की अगर हम बात करें, तो मेन फार्मिंग कम्युनिटीज में हमें चैलेंज काम करने में जो हमारे साथ पहला चैलेंज है वो ये था कि वहाँ पर लोग बच्चों से मेंट की फार्मिंग कराते हैं, क्योंकि वो उनका काम है, तो उन्हें सेंटर तक लाना वो अ बिग चैलेंज, क्योंकि उनको समझा के कन्विंस करना कि आप काम छोड़ कर आओ। तो कभी कभी जो हमारे सेंटर पे जो एक्टिविटीज चल रही थी स्टार्टिंग में, जब हमने 2018 में स्टार्ट किया था, तो हमारे पास बेसिक सेविंग, बेसिक कंप्यूटर कोर्स एंड ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स एंड लाइब्रेरी, हमारी चार कॉम्पोनेंट्स तब थे। अभी तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमें ज्यादा मेहनत तब नहीं करनी पड़ी 2018, बिकॉज नया नया सेंटर खुला था यहाँ पर और ऐसा कोई भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी जो जिससे इनको ये बेनिफिट मिलता। तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास बहुत अच्छी फुटफॉल थी 2018, इट वॉज वेरी नाइस। हम लोगों को बहुत कम मोबिलाइजेशन के लिए जाना पड़ता था बिकॉज इतने सारे एडमिशन, 6-7 महीने तो बिल्कुल नहीं करनी पड़े, बट आफ्टर 7 मंथ्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो सिर्फ गांव के ही लोग गा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। और मैं कि एक कैलिसंस उसका हमारा डोनर है, तो वी शुड फोकस मोर ऑन मिंट फार्मिंग कम्युनिटी दैट दे शुड कम टू द सेंटर एंड लर्न समथिंग। तो हमने फिर हमने बासा एक पॉइंट है यहाँ पर 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जहाँ पर बहुत मतलब टोटल कम्युनिटी वहाँ पर फार्मिंग भी करती है और मिंट फार्मर्स ही हैं। तो हमारे एक SHGs के ग्रुप्स थे पहले, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उन ग्रुप्स में जाकर वहाँ पर सारी फीमेल्स आती हैं, वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती हैं। उन ग्रुप्स के अंदर मैंने जाकर के मीटिंग से लेना स्टार्ट किया, हमने उन लोगों से जाकर बात करना शुरू किया कि आप लोग क्यों अपने लड़कियों को बाहर नहीं निकालती हैं। तो वो कहती हैं मैडम हमारे पास, हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो स्कूल जाते हैं फिर वो खेत जाते हैं। तो मैंने कहा कभी ऐसा होता होगा कि वो स्कूल नहीं जाते होंगे, कभी ऐसा होता होगा कि आपका मिल का सीजन 3 महीने ही रहता है, उसके बाद आप तो आप ही रहते हो, मतलब मार्च टू जून एक टाइम है, आप उस टाइम मत भेजो सेंटर पर, बट आप जब भेज सकते हैं, जब आपके बच्चे फ्री रहते हैं, आप उन्हें तब स्किल्स लर्न करने के लिए सेंटर में भेजिए, क्योंकि वो एक ऐसे स्किल्स आप सीख जाएंगे जो आपकी लाइफ टाइम के लिए है। एक बार सेंटर विजिट कर लीजिए, आप देख पाएंगे कि सेंटर में क्या क्या है। लोगों को गांव से उनके घर से निकाल कर सेंटर लाना ही पहले हमारे लिए चैलेंज बना, 7 महीने बाद जब वो लोग नहीं आ रहे थे, तो उन उसके लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा था वो सेंटर लग रहे, क्योंकि आप पूरे गाँव में जाओगे आपको पूरा दिन लग जाएगा, बट एक ग्रुप जहाँ पर कम से कम 40-45 औरतें मौजूद हैं, मतलब उनकी पेरेंट्स हैं और वो हर वुमेन एक अलग फैमिली से आ रही है। तो कहते हैं ना, अगर आपने मदर को एजुकेट कर दिया तो पूरी फैमिली एजुकेट हो गई। तो हमने मदर्स को पकड़ा, मदर्स को बताया कि आपने ये करना है अपने बच्चों के साथ, कि मैम बच्चों को अकेला तो नहीं भेजेंगे, हमने कहा तो आप आइए, आपको आपके लिए भी सेंटर है, सेंटर तो सबके लिए है, आप आइए, आपको हम अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप आइए, आपके हस्बैंड आएंगे, हम उनको भी अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप हमसे भी सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम कंप्यूटर सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम ट्यूशन्स पढ़ाएंगे। इतना इतना बताने के बाद मैम जो स्टार्ट हुए हैं उस गांव के लोग आना, दैट हम लोग को लग रहा था कि हम शायद कम मोबिलाइज करना चाहिए था, तो हम उसको संभाल पाते, इतना स्टाफ होने के बाद भी हमारे लिए वो चैलेंज हो गया कि अभी ने कैसे संभालेंगे। फिर ये हो चीज होती रही, फिर हमारे यहाँ मैम, एक मैम सीनियर मैम हमारी आती थी, उन्होंने बोला कि कम्युनिटी एक्टिविटीज करते हैं। फिर हम सब लोगों ने कम्युनिटी एक्टिविटीज स्टार्ट करी। हम लोग कम्युनिटी में गेम्स लेकर जाते थे, कम्युनिटी के बच्चों के साथ वहीं पर गेम खेलते थे। उसके बाद जब हमारा गेम पूरा हो जाता था तो फिर हम अपनी मोबिलाइजेशन स्टार्ट करते थे, क्योंकि अगर हम मोबिलाइज करने जा रहे हैं तो हम एक ही बंदे से बात कर पाते। उसमें क्या होता था, गेम खेलना स्टार्ट किया, आसपास वाले देख के इकट्ठे हो गए, सारे सोचते थे कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। कभी कभी म्यूजिक बजा देते थे लाउड, लोग घर से निकल के आ जाते थे। फिर मोबाइल लाइब्रेरी की एक्टिविटी हमने स्टार्ट करी, हम लोग वैन में सारी बुक्स, स्पीकर्स, लैपटॉप्स लेकर जाते थे कम्युनिटी में, वहां पर सारे बच्चों को इकट्ठा करना। मैम वहां पर बच्चे तो किनारे रह जाते थे और उनके पेरेंट्स बाहर निकल के आ जाते थे, अच्छा आपके पास ये भी बुक है। हमारे पास ब्रेल्स तक की डिमांड आई थी कि आप ब्रेल्स लेकर आइए मैम, बिकॉज क्योंकि वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ब्रेल्स की जरूरत थी, तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं हुआ दोबारा जाना क्योंकि कुछ टाइम की वजह से। फिर ये कोविड आ गया तो वो चीज थोड़ी सी बीच में रह गई, बट अब वो हम लोग प्लान करेंगे कि हम ब्रेल्स मंगा करके हमको जाके प्रोवाइड करें, एटलीस्ट उनकी भी तो विश है कि वो पढ़ें। अब वो नहीं पढ़ सकते नॉर्मल बुक्स, तो ऑफकोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें वो प्रोवाइड करा सके।
3: अभी हम ऑडियो बुक्स भी लेके आ रहे हैं, सम हमने टाइप किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्पेशली फ्रॉम फॉर द कम्युनिटी हु आर नॉट एबल टू रीड, ये ऑडियो बुक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं आपके सेंटर में, सो दैट जो नहीं पढ़ सकते किताबें वो ऑडियो बुक्स भी सुन सकें। वेरी वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे चल रहे हैं सना। आपने मैंने ये देखा कि आपने हेल्थ के ऊपर और लाइफ स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया है, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड। थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि विद स्पेसिफिक इशूज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ स्किल्स आपने क्या काम किया है?
2: यस मैम, तो हमने हेल्थ के सेशन हमारे यहाँ अप्रैल से, जनवरी 2019 से स्टार्ट हुए थे, तो उसमें डॉक्टर निधि भाटी जो हमारी हेल्थ कंसल्टेंट है, उन्होंने आकर हमारे सेंटर्स पर सेशंस लिए थे। सेंटर के जो बच्चे सेंटर पर मौजूद होते थे वो उन्हें कनेक्ट कर लेते थे अपनी फैमिलीज को ऑनलाइन, तभी भी वो रिकॉर्ड कर लेते थे अपने फोन में हम लोगों को, और वो जाकर अपने मम्मी को बताते थे कि देखिए मैम ने बताया सब्जी ऐसे धो के बनाते हैं, हमने बताया कि ऐसे वॉश करना है, खाना ढक के रखते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैम ने बहुत मेहनत करी इन बच्चों के साथ, मैम क्योंकि मैम डॉक्टर है, तो जब वो बताती थी तो हम लोग जितना बताते थे उससे ज्यादा उनके बताने से उन्हें समझ आता था कि ये उनको बताते थे बच्चों को ये डॉक्टर है, स्पेशली आपसे मिलने आए हैं, आपके लिए सेशन लेने आए हैं। तो सारे बच्चे मतलब एक मैम के एक सेशन में 20-25 ऐसे बेनिफिट हो जाते थे। मतलब फिर उसके बाद मैम ने सेशन लिए, मैम ने हर टॉपिक पर सेशन लिया, मेंस्ट्रुएशन पर, उनकी फिजिकल फिटनेस पर, उनके हाइजीन पर, उनके न्यूट्रिशन पर। मैम ने 2-3 साल में मैम कॉन्टिन्यूसली सेशन ले रही थी और मैम के सेशन से काफी बच्चे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ मैम बच्चों पर, स्पेशली जो गर्ल्स आती थी, ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते थे निधि मैम के सामने कि मैम मुझे भूख ही नहीं लगती, तो मैम उनको बेस्ट सोल्यूशन बताती थी कि आप ऐसे खाओ, आपके टाइम मत खाओ, आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। मैम से बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, मैम उनके आंसर्स करती थी, क्वेरीज उनकी, मैम सारी चीज़ें वो करती थी जो वो बेस्ट अपना दे सकती थी। तो निधि मैम के सेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे सेंटर पर।
3: थैंक यू सना। जब हम आपके सेंटर पर आए तो हमने ये भी देखा कि बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी का काम वहाँ पर चल रहा था, चिकनकारी जो क्राफ्ट लखनऊ का तो फेमस है ही और ये आपके एरिया तक भी काफ़ी स्प्रेड आउट है, सो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने लाइवलीहुड को कैसे प्रमोट किया, बिकॉज मिंट एक बहुत ही कैश क्रॉप की तरह लिमिटेड जो है लाइवलीहुड प्रोग्राम है, सो कैसे आपने और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड कैसे अगर महिलाओं को हेल्प हुआ, एक एडिशनल स्किल थी उनके पास, सो क्या इस चीज़ से उनको थोड़ा बहुत मदद हुई स्पेशली ड्यूरिंग दिस टफ टाइम?
2: चिकनकारी हम लोगों ने स्टार्ट करा था जब हमारा रेस्टोरेंट सेटअप हुआ था, तो चिकनकारी में पहले लोगों को लग रहा था कि यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे दिखेगा क्योंकि लखनऊ के बहुत करीब है, तो फिर हम लोगों ने तो यही बोला कि आप सीख लो, आपको नहीं पता कि टाइम कैसा आएगा, आपका हमेशा आप खेती नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगी कि अभी जो बारिश हो रही है इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँ, तो मैंने उनको यही बोला था कि आप सीखो, आप पहले देखो चिकन क्या है, आप समझो चिकन का काम कैसे होता है, वो कहाँ सेल होगी नहीं होगी वो हमारी हेडेक है, पूरी निर्णय लिखेगा वो हम देखेंगे कि हमें कैसे अलाउड कर रहा है। आप पहले काम सीखो। तो जो जितनी भी लड़कियां थी, जो बहुत सारे बच्चे मैम ऐसे भी थे जो कहते थे कि मैम हम खेती नहीं करना चाहते, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम खेती ना करें तो हम क्या करें। तो मैंने बोला कि यही आंसर है आपके जवाब का कि आप स्किल सीखो, आप चिकनकारी का वर्क सीखो, आप हमारे प्रोडक्शन यूनिट में जो डिजाइनर कुर्ते बन रहे हैं आप उन कुर्तों को सीखो, आप स्टिचिंग सीखो, आप एडवांस स्टिचिंग सीखिए, और आप लिमिट मत रखिए कि अगर आपने सीविंग सीखा है तो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते। आप डेफिनेटली कंप्यूटर के कोर्सेज भी करिए, आप अलग अलग जगह पर वैकेंसी निकलती है, शायद आप हमारे से सीखकर आप कहीं पर काम करने लग जाओ, या चिकनकारी का वर्क ऐसा है हम आपको काम देते रहेंगे, आपको हम उसका पैसा भी देंगे, हम आपको पे करेंगे, आप जो भी पीसेस बनाओगे जितने बनाओगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको पे करेंगे। तो वो लोग पीसेस बनाते थे, हमारे पास थोड़ा सा माल इकट्ठा हुआ, फिर सेलिंग का पॉइंट आया, तो जितने हमारे यहाँ नाम अभी आपने पिक्चर्स डिस्प्ले करे हमारे इतने सारे विजिटर्स आते थे, तो हम लोग हर विजिटर के सामने मिंट, चाहे हमारे कैल्सियम्स के डोनर्स आए या हमारे कोई भी विजिट सेंटर पर होती थी, हम सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करते थे, और वो उन्हें और ऐसा मैम होता भी था कि वो जनरली विद अ गुड हार्ट को बाई भी करते थे उस चीज़ को। मैंने कितनी बार ये चीज़ रिपोर्ट भी करी है कि वो आते थे और वो हमारे प्रोडक्ट्स बाय करते थे। तो उससे उन लड़कियों के फेस पर जब वो प्रेजेंट होती थी ये मैंने इन्होंने खरीद लिया, हमने कहा हाँ तुमने मेहनत करी है इसलिए इन्होंने खरीदा है, इनको ये बाहर भी मिल जाता, ये लखनऊ जाएंगे ये लखनऊ में ले सकते थे, ये दिल्ली जाएंगे दिल्ली में ले सकते थे, बट इन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत करी। मैम दैट वो वर्ड्स उन्हें इतना कॉन्फिडेंस देते थे, उनको मोटिवेशन मिल जाता था कि नहीं मैम आप सही कहती हैं, हम सीख ले हम सीखेंगे इसको।
3: वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसी कोई स्टोरी जो आप इतने सारे बेनिफिशरीज के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ आप काम करें, इतने सारे आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसी कोई एक दो लाइफ चेंजिंग स्टोरी या इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं?
2: श्योर मैम, चिकन की स्टोरी पहले आपको बताते हैं। मैम हमारी जो ट्रेनर थी, ट्रेनर से स्टार्ट करते हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी सेंटर पे ज्वाइन करने से एक साल पहले। मैम मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया, बाद में उनको ही मैंने फाइनलाइज करा जस्ट बिकॉज उनकी क्राफ्ट बहुत अच्छी थी, और जब उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया मैम उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड नहीं है, बिकॉज ही सेड कि अगर मैम हम आपको ये पहले बता देते तो शायद आपको लगता कि नहीं इन्हें रख लेते, बट उनके अंदर वो चीज़ थी कि नहीं मुझे मेरे स्किल जॉब मिलनी चाहिए, मेरे रीजन के लिए जॉब नहीं मिलनी चाहिए, एंड दैट थॉट चेंज माई माइंड कि नहीं शी इज राइट, उनमें स्किल है। मैम जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कुर्ता बनाया और जो मैंने मैम को दिया था गीता मैम को, एंड मैम शी वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी कि मैम ये पहनेंगे, मैम इतनी बड़ी हम 2 कुर्ते देते, सॉरी एक कुर्ता मैम आपको और एक गीता मैम को, तो हम शी वाज लाइक कि ये दोनों मैम इतनी हाई मैम, इतनी हाई प्रोफाइल मैम है, ये हमारे लिए कुर्ते पहनेंगे। मैंने कहा डेफिनेटली पहनेंगी मैम, पहन कर आएंगे और आप देखोगे। तो हम शी वाज लाइक मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं थी खुशी की कि वो कैसे कुर्ता खुश थी। फिर मैम उन्होंने यहाँ पर एक साल डेढ़ साल तक की जॉब की, थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट उन्होंने यहाँ पर एक साल जॉब किया, एंड मैम शी वॉज एबल टू फीड हर किड्स, उनकी 2 बेटियाँ हैं एक बेटा है, मैम शी वॉज सो हैप्पी कि मैम आपने मुझे जॉब दिया, मैम मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर पा रही हूँ। दिस मैम हमारे यहाँ की सेकेंड स्टोरी है, एक सेकेंड स्टोरी है मैम जिसको हम लोगों ने महिपाल जी ने जिसकी स्टोरी कवर की थी, गायत्री पाल मैम उसके, वो यहाँ पर सीविंग पहले करने के लिए आई थी बेसिक सीविंग का कोर्स, मैम उसने बेसिक सीविंग में एडमिशन लिया, उसने बेसिक सीविंग किया, फिर उसने कंप्यूटर्स देखे, बोला कि मैम मैं सीखूँ कैसे, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। मैम मैंने खुद उसे 3 महीने बैठकर इंग्लिश पढ़ाई है और इतनी मेहनत से पढ़ाई है कि मैम उसने फिर कंप्यूटर कोर्स किया है, देन उसने एडवांस टीचिंग में एडमिशन लिया, फिर मैम उसने एडवांस टीचिंग सीखा, उसके बाद बोलते कि मैम मुझे मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मशीन खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है तुम मुझसे ले लो, तुम मशीन खरीद लो। तो बोलती मैम आप वापस ले लेंगी? मैंने कहा नहीं हम वापस ले लेंगे, ठीक है तुम जाओ मशीन खरीद लो। फिर दूसरे दिन आके बोलती मैम थैंक यू बट मैंने मशीन ले ली है। एंड मैम एट दिस टाइम उसके पास इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं, पूरे गांव के मैम वो कपड़े बनाती है, एंड शी इज सो हैप्पी बिकॉज उसके फादर भी नहीं है अभी, जल्दी एफआईआर हो गए, तो शी इज सपोर्टिंग हर मदर, हर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर फॉर इन देयर एजुकेशन। तो मैम खुद को भी फील होता है कि लीड इंडिया के थ्रू हम लोग ये कर पा रहे हैं कि लीड इंडिया ने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रखे हैं कम्युनिटी के लिए कि जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत है मैम। ये इसे हम नहीं एनालाइज कर सकते पैसों के साथ, ये जो खुशी होती है हम यहाँ कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे पैसे के साथ, कि हम पैसे तो कोई भी दे सकता है मैम किसी को। मैम ये स्किल उनके साथ लाइफ टाइम है।
3: वेरी नाइस, ये स्किल उनके पास हमेशा रहेगी लाइफ में, कभी भी कोई भी मुसीबत आए, जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कुछ बारिशों के बारे में, आई थिंक अभी जो रेन्स आ रही हैं उसके बारे में, चाहे कोविड हो चाहे ऐसा कोई।
2: मैम ये दोनों चीजों ने यहाँ की मतलब पूरी कम्युनिटी को हिला दिया था। पहले तो कोविड पूरा 20 जैसे गया मैम, सबके बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए, सबके जो भी स्मॉल स्टार्टअप है वो खत्म हो गए। जो जो हालत मैम, जो रेट फार्मर्स को यहाँ पर मिला है, मतलब उनको तो ये था कि फसल में ना ऐसे आग लगा देते हैं, इसको बेचेंगे नहीं। मैम इतना वो मायूस हो गए थे बिकॉज क्योंकि रेट ही नहीं आ रहा था। अब इतनी बुरी हालत चल रही है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था मैम, गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं थी वो चीज़, बिकॉज वो बिल्कुल हो गया था। और मैम कोविड खत्म हुआ, फिर दूसरा वेव आया, सेकेंड वेव में मैम जो बचा था जिसके पास वो भी खत्म हो गया। उसके बाद से मैम ये रेगुलर रेन अभी हो रही है, आपको न्यूज में देखते होंगे, यूपी में इतने जबरदस्त तरीके से अलर्ट जारी हो गए थे, इतनी ज्यादा बारिश हुई मैम, जिसने जो क्रॉप लगाया था वो सब वेस्ट हो गया, पूरा पूरा पानी भर गया। और एक बार ही हो गया, दो बार के मैम कॉन्टिन्यूस 15-15 दिन बारिश हुई है, 20 दिन बारिश हुई है। ये सारे स्टाफ और बच्चे सेंटर में कैसे आते थे मैम हम लोग जानते, और उससे भी बढ़कर उनके सारे क्रॉप्स बर्बाद हो गए।
3: वेरी हार्टनिंग टू हियर दैट। इस दौरान में अगर किसी की भी कोई कला उनके काम आई है तो शायद जो हमारा मुद्दा है कि एक स्किल आपके पास होना चाहिए, चाहे आज आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ने पे वो काम आ सके उनकी फैमिली के लिए, उनकी लाइफ को जारी रखने के लिए। तो वी होप कि हमारे सेंटर से जिन बच्चों ने या जिन महिलाओं ने कुछ सीखा है उसको वो यूज़ कर रहे हों। सो जी
2: यस मैम, मेरे पास मैम बच्चों के कॉल आने स्टार्ट हुए, बच्चे मिलने भी आए थे सेंटर पर कि मैम आप हमें कुछ काम दे दीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है हम आपको चिकन का देते हैं, आप चिकन का स्टॉक बनाकर आप हमें चिकन करके दो उन कुत्तों पे, हम उनका स्टॉक करेंगे, फिर हम उन्हें सेल आउट करके आपको हम आपके अमाउंट देते हैं, तो एटलीस्ट कुछ हेल्प आपकी हो जाएगी। मैंने उन्हें बोला देखो इसीलिए मैंने बोला था कि चिकन सीख लो, शायद तुम्हें कल काम आए। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये पैंडेमिक आएगा, फिर ये रेन आएगी, फिर पैंडेमिक सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। तो मैम ये सब चीज़ें वो खुद रियलाइज करने लगे कि स्किल सीखना कितना ज़रूरी है। फिर मैम वो बाकी अपने फैमिली वाले बच्चों को भी लेके आते कि मैम इनका भी एडमिशन कर लीजिए, आप इन्हें भी सिखाइए।
3: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं सभी को बताना चाहूँगी कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग वही कपड़ों को हम भी इनक्रेज करते हैं कि इवन विद इन द रीड एंटायर टीम हम लोग चाहते हैं कि हमारे सेंटर्स में जो बन रहा है हम भी उसके क्या कहते हैं, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। तो हम बहुत खुश होते हैं अगर सेंटर से हमें कुछ ऐसा लेने को मिलता है। जिस चिकनकारी कुर्ते की सना बात कर रही थी, हमने उसे बहुत पहना है, आप प्लीज अपनी ट्रेनर को बता दीजिएगा। इनफैक्ट मैम जो है हमारी वो तो कोशिश करती है कि जिस सेंटर पे जाए वो जरूर वहां से एक कुर्ता स्टिच करवाएं, क्योंकि ये जो आपने बात कही थी ना कि जब उस औरत को लगता है कि उसके हाथ का बना हुआ कपड़ा कहीं बाहर जा रहा है और इतना अप्रिशिएट हो रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके, उसको हम किसी भी लीडरशिप सेशन और किसी भी मोटिवेशनल सेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। सो इनफैक्ट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम इन प्रोडक्ट्स को अपने सर्कल में, अपने मार्केट में, जो हमारा नेटवर्क है, रीड का जो नेटवर्क है, उसमें प्रमोट करें, चाहे हमारी फैमिलीज हैं, चाहे हम लोग खुद हैं। सो प्लीज पास दिस मैसेज टू योर टीम आल्सो दैट आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी जो हैं मतलब मार्केट में अप्रिशिएट होते हैं। सो कीप अप द गुड वर्क एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू कॉल आवर कोर मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा, बिकॉज उन्हीं की ये विजन है जिसको हम सब मिल के आगे लेके जा रहे हैं। सो I welcome ma'am to the show. Good evening ma'am. We have Sana from Barabanki today.
4: Yeah, I have been listening the discussions. Sana, your answers were very, very encouraging. Good afternoon. And I highly appreciate your dedication and the commitment you have given to the Reed Community Library and Resource Center in Barabanki in Barabanki. सना बिकॉज मुझे पूरी मेमोरीज मेरी रिवाइव हो गई हैं जब से मैं बाराबंकी जाना शुरू करा था और जगह ढूंढनी शुरू करी थी सेंटर बनाने के लिए व्हेन इंटरैक्टेड विद कैलिसन्स टीम इन यूएस and then we thought that we have to start the work there. जो सबसे पहली कंडीशन हमारी थी कि हम मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड देंगे, बिकॉज तब हमें पता नहीं था कि पैंडमिक आएगा या कुछ और चैलेंजेस आएंगे लाइफ में. सो वी स्टार्टेड दैट वी विल गिव सेकेंड लाइवलीहुड टू द मिंट फार्मिंग कम्युनिटी, बिकॉज मिंट इज अ सीजनल क्रॉप, राइट. And I would like to know from you that how many mint farming communities you reached through your interventions and how many have been benefited from that.
2: Ma'am, we have, as per you know, ma'am, we have reached to till 25 to 30 villages and they have maximum population of mint farmers there. So ma'am, if we calculate like this, that 80% of the population in each village is committed to the center, they are connected, they are coming to the center, they have learned the skills and they have moved out. Ma'am, there are many children in mint. I remember one boy was there, his name was Ram, I think. So he was from mint farming communities and he was working in the farms earlier. But when he came to the center and he said, ma'am, I have passed out my 12th, now what should I do? So I asked him to learn computer, because you're a boy, you can learn computer and do something and you can search for a job also. But not only computer, but you should continue with your studies. So he asked me, ma'am, should I do graduation? So I said, yes, please go and get admission in graduation and come to the center. We will teach you computer, take English classes from here, take the books, use the library. Because, and when he came to the library, he was like, ma'am, itni sari kitabe hai yahan par, ma'am, aap ye bhi kitab hai, ma'am, ye bhi book hai, ma'am, agar main kuch mangau to mil jayega. I was like, yes, please, आप ऑर्डर दीजिए, हम मैम को लिस्ट फॉरवर्ड करते हैं, मैम मुझे सारी बुक प्रोवाइड करवा दीजिए, मैम हमारी डिमांड्स पर सारी बुक इंडिया में देता है, हेड ऑफिस तुरंत अप्रूव करता है बुक्स की जब भी डिमांड जाती है. आप प्लीज मुझे बताइए आपको कौन सी बुक्स चाहिए. तो मैम ही डिमांडेड और बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी, बुक के लिए हमने डाला था, फिर अप्रूवल होके मैम बुक्स भी आ गई थी हमारे पास. मैम वो लाइक ही वाज सिटिंग इन द लाइब्रेरी फॉर 3 to 4 आवर्स रेगुलरली. एंड After that, you won't believe, he was in second year only and he got the job in Lucknow in Fun Mall and he's earning 15 to 18,000 per month right now. And he was like, he came with to me with a box, with a sweet box, and he was like, ma'am, this is all your fault. I said, I didn't say this, I didn't say this, please say thanks to him. These are the stories which inspire me a lot.
4: No, Sana, this is your... contribution. Teed India is just a facilitator, because you are sitting there and you are in touch with the villages. I also wanted to know ki bada gaon mein to bahut sare log aate hain wahan pe, to aas paas ke kitne aur gaon hain jisse community itni door door se chal kar aati hai aapke center pe, aur koi aise public transport bhi nahi hai jahan tak mujhe knowledge hai. So I would also like to listen back to revive my memories about that.
2: Yes, ma'am. Today only I visited one place, Hasnapur, ma'am, and that, ma'am, I was tired by going by car. But ma'am, the children, the girls from that village is coming to the center on bicycles. Ma'am, I was so shocked. Ma'am, आज मैं सोच रही थी कि वो जब बच्चे आएंगे तो मैंने पूछूंगी कि आप 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर आते हो सिर्फ सेंटर के लिए. तो अभी तो वो आए भी नहीं, बारिश होने लगी. But ma'am, इतने ऐसे से विलेजेस है, दिस इज द लेटेस्ट डिस्टेंस आई एम टेलिंग यू, कि ये 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर मैम 25 टू 30 किलोमीटर बहुत टफ है साइकिल चलाकर सेंटर तक आ पाना. एंड मैम दे आर कमिंग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर मैम इतने इतने डिस्टेंस से लड़कियां आती हैं और मैम वो आके बस इतना ही करती है, मैम प्लीज हमारा टाइमिंग मॉर्निंग के बैचेस में लगा दीजिए, हम इवनिंग में जाएंगे तो देर हो जाएगी हमें. तो मैम वो सारे बच्चों को हम लोग मॉर्निंग में इंटरटेन करते हैं, सॉरी क्लासेस की हम लोग मॉर्निंग में ही लेते हैं.
4: सना, ये बात सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स भी कितने सपोर्टिव हैं, बिकॉज वो भी अलाउ करते हैं हमारी बेटियां इतनी दूर साइकिल चला के चली जाए और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि एक सेफ स्पेस पे जा रहे हैं. और रास्ते में भी क्योंकि वो ग्रुप में आती हैं इकट्ठी, तो उनको कोई ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता. दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज you motivate them for continuing their education and they find this space safe, protected, सपोर्ट इतना मिलता है, बुक्स उनको यहाँ से मिलती हैं, नॉलेज सपोर्ट मिलता है, आप उनके इश्यूज रिजॉल्व करती हैं, तो यही एक कम्युनिटी लाइब्रेरी का जो सर्विसेज हैं, यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन व्हाट इज नीडेड एक्चुअली, सो दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड. मैं और भी, मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, पर मैं थोड़ा और भी आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो आप कम्युनिटी को हैंडल करती हैं, जिनको समझाना, मोटिवेट करना, इनकरेज करना और फिर उनको टाइम भी देना, और दूसरी तरफ है आपके विजिटर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल डोनर्स हैं और जो विजिटर्स हैं, क्योंकि कैलिसंस हैव द ऑफिस इन पुणे, दे कम टू यूपी क्वाइट ऑफन बिफोर कोविड, तो आप कैसे अपना दोनों तरफ बैलेंस बना के रखते?
2: Ma'am, sometimes so we have the information that they are coming, and sometimes they come like this only. So, because ma'am, I'm very punctual. I'm regular in the office because I don't like taking leaves at all, and I don't allow the staff also to take leaves unnecessarily. So this is the thing that when they come without any information, we all are here. We all are present in the center. So we know that ki abhi wo aaye hain, so I have to give my at least they take my 1 hour. So I have to stop all the children कि आप लोग लाइब्रेरी में जाके बैठिए, अभी मैं कोई सेशन नहीं लूंगी, अभी मैं इन लोगों से बात कर रही हूँ, फिर मैम उनके साथ पूरा उनको एक्सप्लेन करना पूरे सेंटर के बारे में, कैसे हम काम करते हैं. मैम दे आस्क सो मच अबाउट एवरीथिंग अबाउट इन इंडिया, बिकॉज दे आर नॉट द डोनर्स एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर कमिंग विद द डोनर्स, सो दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो, सो दे डोंट नो व्हाट इज इन इंडिया, सो आई हैव टू एक्सप्लेन देम ईच एंड एवरीथिंग अबाउट रीड, about the community, about the children coming to the center, what services we are giving at the center, what are the facilities that are being offered to the students in the area. So this happens every time, and the visitors are very frequent in Badagaon center. So last year, like pandemic se to abhi tak isse do hi visit hui hai, but 2018 and 19 was full of visitors. Every month there is somebody has to come to the center, and we sometimes feel like surprised that they are saying they're sitting over here in the office, and we see somebody moving inside the office, and I was like, good afternoon sir, तो मैं आप काम कर रहे होते हैं एकदम disturb mind में, and everybody कोई आगे सामने से खड़ा हो जाता है, I was like, I take 2 minutes to think that who are they, and he's like, कभी कभी चेहरे ही नहीं याद आता कि कौन है ये. So it happens sometimes with me.
4: And when you deal with the community, then you just simply motivate them, encourage them, listen to their issues, problems, and then you, inspire them to come to the center regularly, right? So these yes, two ma'am. Things go parallel, right?
2: Exactly, ma'am. I remember one story.
4: Yeah, please continue.
2: Ma'am, I remember one story. There was one girl in my beauty section. She was a trainer in beauty and bar. So she was coming from 7 to 8 kilometers far away. Ma'am, the one boy was there, was continuously उसको परेशान करने जा रहा था मॉर्निंग में आने के टाइम पे, मॉर्निंग शाम को जाने के टाइम पे. Then ma'am, she complained 2-3 times to me कि ma'am मैं नहीं आऊंगी सेंटर, ma'am मुझे नहीं सिखाना, because अभी घर में पता चल जाएगा तो ma'am बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए. And she was a trainer, so even though she was a student, also then I had to take care of it. Then ma'am, हमारे पास एक trainer था हमारा जो हमारे लिए community में जाके session लेता था. I asked, I told her कि अभी घर पे कुछ मत बोलो. Then I have told Deepak, आप जाओ आज ma'am को लेके घर bike से और आप देखो कि ma'am को कौन परेशान कर रहा है. फिर ma'am उन्होंने वो जाके घर पे छोड़ के आया, फिर उसने मुझे आकर बताया कि ma'am ये है. फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला एक बार को कि आप जाइए, आप इनके घर में जाकर कंप्लेन करके आइए कि ये क्यों परेशान कर रहे हैं. मैम एक बार हिमसेल्फ वेंट टू फ्रेंड देयर और उसके बाद ही रिजॉल्व दैट इशू. तो मैम ये सारे चैलेंजेस गांव में बहुत आते हैं, क्योंकि मैम बिल्कुल सन्नाटा होता है, एकदम रास्ता अंधेरा होता है, बाघ होती है आस पास, बहुत सारे फार्म्स होते हैं, बाघ होती है जिसमें रोड पे भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, सारे पेड़ इधर उधर से कवर होते हैं. तो मैम वी फेस दीज चैलेंजेस एवरी टाइम विद गर्ल्स विद बॉयज.
4: Sana, major of the population in Barabanki and Badagaon are Muslim population, right? And many girls come from these families to your center. Are there any stories of delayed age at marriage or continuing higher education, convincing their parents that they want to learn more from the READ Center and establish themselves, then they'll get married?
2: Yes, ma'am. And there was one girl, she was coming to the center from 2018 only. So in 2019, when she was about to get married, she came to me, ma'am, मैंने तो पहले अपने मम्मी पापा को बोल दिया कि आप शादी तो मेरी कर रहे हो, but मैं जब तक अपना अपना एडवांस टीचिंग का कोर्स सेंटर से मेरा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना वहाँ. So ma'am, she was like, she stayed here for 6 months, she learned, completed her course and then she went back. Muslim communities में तो especially जैसे बच्चे 10, 12 के लड़कियाँ आ जाती हैं, parents start searching for their marriage. But ma'am, a big transformation has also come here. बड़ागांव आई हैव आल्सो अर्लियर डिस्कस्ड दैट कि अभी तो पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे बिकॉज दे सी ऑल अदर कम्युनिटीज की उनके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं देन दे गेट मैरिड. यहाँ पर भी मैम लोगों का काफ़ी माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ है. जितने मेरे कम्युनिटी विजिट से जितना मेरा पेरेंट्स के साथ इंट्रैक्शन हुआ है, हम सब लोगों ने उनको यही बोला है कि आप पहले अपने बच्चे को एटलीस्ट फिजिकली फिट हो जाने दीजिए देन लेट हर गेट मैरिड. एजुकेशन तो बाद में आती है, आपको ये स्किल्स सीख रहे हो वो भी बाद में आता है, बट लेट हर गेट फिजिकली फिट टू गेट मैरिड. एटलीस्ट वो 18, 19, 20 साल की होनी चाहिए

0: जो हमारे रेगुलेशंस बने हुए हैं कि मेंटली, फिजिकली, सोशली द गर्ल शुड बी प्रिपेयर टू गेट मैरिड, ओनली देन शी शुड गेट मैरिड. और चौथा कंपोनेंट जो अभी ऐड हो रहा है कि शी शुड बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ऑल्सो, बिकॉज कोविड हैज टॉट अस मैनी थिंग्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड बी रेडी टू यू नो सपोर्ट द फैमिली व्हेन एनी एमरजेंसीज कम इन द फैमिली. सो वो भी हमारे सेंटर की तरफ से आप हमेशा उनको कन्वे करती रहती हैं. सना, अभी हम जो फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम सैटेलाइट्स भी बना देंगे, राइट? और जब हम सैटेलाइट्स बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, और बाई चांस अगर थर्ड वेव आ जाती है और जो बच्चे 25-30 किलोमीटर दूर से आपके सेंटर में आते हैं शायद वो ना आ पाए, तो उनके लिए जो हम सैटेलाइट्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप तो कंप्लीटली तैयार हैं उस काम को करने के लिए, तो हम कब तक ये सैटेलाइट्स बना लेंगे सना?
1: Yes, ma'am. I would like to say that, ma'am, if we are going for the sub center or satellites, we should pay. We should make that satellite for a time period, like 6 months for year or 1 year for at one place. Then we move in other direction, in the other village. Like if it Baragaon is the center, then it has it in its stages. There are many villages, so we should rotate from everywhere after 1 year here and after 1 year in the different villages, because that will help us to build good relations with the community. We will get more people benefited from the center, because if it will be moving, like it will be a mobile center, then it will help many people over there. And if you talk about the district library, if we definitely if it will be a very very good option if we are going with them and we are partnering with them, because that will make an image of Free India more powerful and more accessible to people, because they will know what Feed India is and what facilities what we are giving to the children of everywhere.
0: Very nice. Actually, the thought process which we are having is also matching, and we can do much more whatever we are committed to. And I'm sure that Barabanki Community Library and Resource Center can do wonders. That I am sure, under your guidance and commitment, what you're showing to Read India from the past 3 years. And we will also do the impact studies and get collect the stories what you are sharing on this platform,
1: Sure.
0: so that we can share with the wider community also. At this point, thank you so much for having the brief discussion with me. I would hand over to Smita now.
2: Thank you, ma'am. Thank you for your inspiring interaction with Sana. सो सना, बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो जर्नी है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करके. आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. एनीथिंग एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद योर चिल्ड्रन? कैसे आपके बच्चे, आई नो यू हैव 4 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, सो इतनी स्ट्रांग मदर को, इतनी स्ट्रांग फैमिली को देख के हाउ दे आर फीलिंग, स्पेशली बोथ ऑफ योर गर्ल, द ट्विंस, द ब्यूटिफुल ट्विंस दैट यू हैव. Anything that you want to share about them, how their lives have been impacted due to this entire, REAP initiative being in your village and you being an inspiring person in your own community?
1: Yes, ma'am. Ma'am, from last year, if you talk about COVID only, ma'am, they were like, कुछ करने के लिए नहीं है मम्मा, क्या करेंगे? तो मैंने बोला कुछ नहीं, जब सेंटर खुल रहा है आप सेंटर में आके बैठो, अब बच्चे आते हैं आप उनको पढ़ाओ. इससे क्या होगा, आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, उन बच्चों को भी आपसे सीखने का मिलेगा, बिकॉज आप लोग अच्छे स्कूल्स में जाते हो तो आप उन्हें ज्यादा बेटर पढ़ा सकते हो, आप उनका परस्पेक्टिव समझ सकते हो कि वो क्या है एंड दैट वर्ल्ड. सारे छोटे बच्चों को अभी तक मना लगा, दे वर टेकिंग द क्लासेस देयर एंड दे टेक सो गुड क्लासेस ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन एंड दे आर लाइक, मैम आप पढ़ाइए, दीदी को बोल दीजिए पढ़ाने के लिए. तो आई एम लाइक ओके, जाओ पढ़ा दो आप. इट इज हैपेंड मैम दैट, यस मैम, आई एम It helps, ma'am. Every child, if they share their knowledge with each other, they learn also, and everybody learns. I am learning till date, ma'am. I have learned so much from you, from Geeta, ma'am, from everybody. So, the learning is never ends. I believe that.
2: एंड आपके पेरेंट्स को कैसा लगता है आज, वो सना है जो शायद कहीं पे अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पा रही थी और आज वो लोगों तक एजुकेशन को पहुंचा रही है?
1: Ma'am, actually, my parents are separated. That was the reason I got married.

0: तो मैम पापा के साथ तो ऐसा कोई कनेक्शन ही नहीं है, बट माई मदर फील्स वेरी प्राउड ऑफ अस बिकॉज वी थ्री ऑफ अस आर वेरी यू नो एक्टिव एंड माई माई अदर सिस्टर यू नो माई सिस्टर इज लिविंग इन हांगकांग ऑल्सो शी इज ऑल्सो वर्किंग फॉर एन एनजीओ ओनली एंड शी इज वर्किंग फ्रॉम पास्ट 7 years. So we both are very social and then we help each other a lot in everything.
1: Very nice, Anna. Any last message that you want to give to young girls or women who are in the same position or your community?
0: Yes, ma'am. Ma'am, only I can say only one thing. If you're getting married, if your parents want you to get married early, maybe any because of any reason, आपको ये चाहिए कि आप गिव अप मत करो किसी भी लाइफ स्टाइल को, किसी भी यू नो लाइफ के स्टेज पर. जस्ट डोंट गिव अप एंड कीप लर्निंग, दैट विल हेल्प यू फॉर योर एंटायर लाइफ. नथिंग मच मैम.
1: ऑन दोस इंस्पायरिंग गाइडलाइंस, इफ देयर इज नथिंग एल्स देन वी कैन यू नो क्लोज दिस सेशन फॉर टुडे. थैंक यू सो मच सना फॉर शेयरिंग योर सच अ ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग जर्नी. Thank you, Geeta ma'am, for constantly mentoring us, and thanks to Shashank for moderating the session. We wish you all the very best, Anna. Hopefully, you reach all the communities. And the satellite centers are also as successful as your present center.
0: Yes, ma'am.
1: Thank you so very much for joining us. And we thank our viewers also for patiently viewing our program. We can end the session. We will join you again on Friday with another exciting program on Culture Models.

मेरा नाम मनीषा शर्मा है, मैं बाजरे के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हाल ही में हमारे राजस्थान में बाजरे की फसल तैयार हो रही है। भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आता है। बाजरा खरीफ की फसल में आता है जो जून जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में काटकर तैयार कर लिया जाता है। सर्दियों में बाजरे का सेवन लाभदायक है। बाजरे में सोडियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है तथा पेट दर्द, गैस जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। बाजरे में मौजूद आयरन खून की कमी को भी दूर करता है।

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज चर्चा का विषय है प्रारंभ 2026 नए आयकर अधिनियम पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान। चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। शुभमोय, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: शुभमोय, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की मौजूदगी में आज प्रारंभ 2026 अभियान शुरू किया गया। चलिए सुनते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कार्यक्रम के दौरान क्या कहा।
3: द इनकम टैक्स एक्ट 2025 ऑब्वियसली रिप्लेसेस द 1961 एक्ट इन मेकिंग इट सिंपलर and fair and clear with all these instruments which are also being given for people to use it will certainly set the trend for India to be seen as a very tax friendly country.
1: तो शुभमोय, ये क्या अभियान है और ये क्यों शुरू किया गया है?
2: आपको जैसे पता होगा कि नए इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रावधान जो लाए गए हैं वो मोरलेस शुरू होते हैं 2026 के 1 अप्रैल से, यानी कि कुछ ही दिन आगे की बात कर रहे हैं जब ये शुरुआत हो जाएगा, जो ये कंट्री में हम एक नया इनकम टैक्स एक्ट मिलेगा। और ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 से चल रही इनकम टैक्स एक्ट है, उसके बदले में ये नया एक्ट शुरू होगा। तो ये जो नया एक्ट आया है इनकम टैक्स एक्ट का, ये अभी नेचुरली कहां 1961 वो जो चीज था कहां वो, और आज जो हम 21वीं सदी के बीच में आ गए हैं, इंडियन इकोनॉमी का जो रूप है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इनकम टैक्स एक्ट जो नया बनाया गया है उसका ये अभी नया इकोनॉमी को एड्रेस करने के लिए है, और यही जो पहले इसी चीज को प्रारंभ के हिसाब से भारत सरकार इसको डिफाइनिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये सही चीज है, लोगों के लिए ये समझने के लिए क्लियर होता है कि अभी हमारा इनकम टैक्स का एक नया प्रारूप, एक नया कार्यक्रम, एक नया पहल शुरू हुआ है।
1: जैसा आपने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 इस साल 1 अप्रैल से लागू होगा और ये 1961 के अधिनियम की जगह लेगा, तो जाहिर है कि इसके लगभग 60 साल बाद ये इसमें बदलाव आए हैं। तो ये कारण क्या है, ये बदलाव क्यों लाए गए हैं और आप क्या कुछ इसके मुख्य हमको विशेषताएं बता सकते हैं?
2: सबसे पहले जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ये नया इनकम टैक्स एक्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन चीजों पर ध्यान देता है जिन चीजों पर पहले हमारे पास कोई इस पर कोई खास प्रावधान नहीं थे। मोटा मोटी इसमें इस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई किया गया है, बहुत सारे इसके जो डेफिनेशंस हैं जिनमें बहुत सारे कोर्ट केसेस चलते, फिर बहुत सारे अमेंडमेंट्स की वजह से बहुत सारे जिसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन आ गए थे, उनको सरल किया गया है। इन सभी चीजों को चलते हुए प्रारंभ का जो हम नाम इसलिए देते हैं क्योंकि खासकर इनकम टैक्स एक उन तबकों के लिए बहुत जरूरी होता है जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनके लिए इनकम टैक्स लंबे दौरे की तरफ स्थिर रहे, स्टेबल रहे और उनके लिए सुचारू रहे, ये बहुत जरूरी है। और इस तरफ भारत सरकार का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे जो नए प्रावधान लाए गए हैं, जो नए सिंप्लीफिकेशन किए गए हैं, डेफिनेशनल चेंजेस लाए गए हैं, वो इसीलिए किया गया है।
1: इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं अपने श्रोताओं के साथ कुछ आंकड़े साझा करना चाहती हूं। जैसे शुभमोय भी बता रहे हैं कि पुराना जो अधिनियम था उसको सरल बनाया गया है, तो सरलीकरण जो प्रक्रिया है उसका थोड़ा अंदाजा मैं देना चाहती हूं। नए अधिनियम में अनावश्यक प्रावधानों को और पुरानी जो टर्मिनोलॉजी थी उनको हटा दिया गया है। 1961 के एक्ट में 47 चैप्टर्स थे जबकि 2025 के कानून में 23 चैप्टर्स हैं। 1961 के एक्ट में 819 सेक्शन थे जबकि नए एक्ट में सिर्फ 536 सेक्शन है। और अगर हम शब्दों की संख्या की बात करें तो पुराने एक्ट में 512,000 शब्द थे जबकि उनको घटाकर अब नए एक्ट में 260,000 शब्द उसको कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही नए एक्ट में कुछ नई टेबल्स और फॉर्मूले भी पेश किए गए हैं ताकि जो एक कानूनी भाषा होती है उसको सरल बना दिया जाए। तो शुभमोय, जैसा आप बता रहे थे कि एक तो स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम एक आम नागरिक की बात करें, हमारे और आपकी जैसे आम नागरिक की बात करें, तो ये जो नया अधिनियम है ये आयकर को फाइल करने की प्रक्रिया को या रिवाइज्ड फाइलिंग को या रिफंड क्लेम जैसे चीजों को कैसे और आसान बनाता है?
2: देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में जो मूलभूत बदलाव आया है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार के कई सारे कदमों की वजह से इनकम टैक्स एक्ट की जो चलन है, ये जो चलन है वो अभी बहुत सारे जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए उनके ऊपर से उसका इफेक्ट हट गया है और ये बहुत बड़ी चीज है, जिसलिए भारत में अभी आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डायरेक्ट की इनकम टैक्स फाइलर्स उनके संख्या बढ़ गए हैं, लेकिन इनकम टैक्स देने के लिए जो लोअर इनकम ग्रुप्स थे उनको जो जरूरत था वो हट गया है। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल वित्त मंत्री जी ने 12 लाख रुपए के एनुअल इनकम तक के लोगों को इनकम टैक्स से फ्री कर दिए हैं, मुक्त कर दिए हैं कि उनको इनकम टैक्स फाइल नहीं कर, उनको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और साथ में ही उसके साथ बहुत सारे ऐसे चीजें रूल्स में बदलाव लाए गए जिनके वजह से उनका पूरा प्रोसेस को सिंप्लीफाई ही नहीं, बहुत सारे जगह पे एग्जम्पशंस कर दिया गया। तो इनकम टैक्स अभी किन के ऊपर लागू होता है? आप कह रहे थे साधारण नागरिक, ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि भारत में साधारण नागरिक बोल के हम जब बोलते हैं तो उनके ज्यादातर लोगों के ऊपर इनकम टैक्स का प्रेशर हट गया है, उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाने की, इनकम टैक्स के डिटेल्स करने का, साल में मतलब आमदनी अठन्नी लेकिन रिटर्न देने में 1 रुपया खर्च हो जाता था, वो चीजें हट गया है और ये सच में एक बहुत बड़ी बदलाव है।
1: बिजनेस, कॉरपोरेट और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इस नए अधिनियम में क्या बदलाव है?
2: एक तरफ तो हम कॉरपोरेट्स वगैरह की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जो स्टार्टअप वाले जो छोटे छोटे हम एमएसएमई सेक्टर के जो कंपनियां स्टार्टअप कर रहे हैं भारत के तमाम जगह से, उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट में जो नए जो रूल्स आए हैं, जो नए एक्ट के जो प्रावधान आए हैं, वो बहुत बड़े बदलाव लाए हैं। नया इनकम टैक्स में इसीलिए प्रारंभ से इसको जोड़ा गया क्योंकि आपको याद होगा 1921 में प्रारंभ स्कीम बनाया गया था स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, वही इकोसिस्टम वही प्रारंभ वाला चीज भारत सरकार अभी फिर से उसी को जोड़ रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में अभी जो बदलाव आया है वो भी उनके लिए एक ब्रिज, एक सेतु बन जाता है कि सरकार की जो पुरानी जो प्रॉमिस थी उसको साकार किया जा रहा है। आज का जो प्रारंभ वाला अनाउंसमेंट्स है, प्रारंभ की जो बातें चल रही है, वो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेकेंड वाली चीज जो आप कह रहे थे कि कंपनीज के लिए या जो एस्टेब्लिश्ड इन्वेस्टर्स है, तो इनके लिए बेसिकली क्या किया गया है तो कि बहुत सारे जो हमारे पुराने जो प्रावधान थे खासकर एग्जेम्पशंस वाले, ये एग्जेम्पशंस के बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे बहुत सारी चीजें थे जो आपको बजट के फिगर्स में देखेंगे कि इसके चलते भारत सरकार के करीब 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का घाटा होता था। क्यों? क्योंकि ये सारे एग्जेम्पशंस कोई खास फायदा नहीं देते थे लेकिन ये सारे इनकम टैक्स एक्ट में चारों तरफ बिखरे हुए थे, तो इनको रिमूव किया गया है। साथ में जो डेफिनेशंस हैं कि क्या चीज इनकम बनेगा, जैसे आप देखेंगे एक्सपैट्रिएट्स हमारे देश में आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनके लिए इनकम स्टेटस क्या रहेगा, किस अवस्था में उनके ऊपर टैक्स लगेगी, इन चीजों में बहुत सारे असंगतियां थे, वो सारे असंगतियों को रिमूव किया गया है। क्लैरिटी आया है कि किस कंडीशन में उनको टैक्स भरना पड़ेगा और अगर भरना पड़ेगा तो कितने इजीली और कितने क्लियरली वो दे सकते हैं। हम जब इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो सिर्फ कैपिटल ही नहीं आता है, कैपिटल के साथ काम करने के लिए लोग आते हैं जो हमारे देश में आके कुछ दिनों के लिए काम करेंगे और फिर काम करके चले जाएंगे, तो उनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके लिए पहले कोई भी क्लियरिटी नहीं था। इन सभी चीजों को इस नए इनकम टैक्स में उनके ऊपर ये सारे क्लियर स्टेप्स लाए गए हैं। साथ में हमारे जो सेविंग्स वगैरह बहुत सारी चीजों का जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स थे जिन पर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जम्पशंस थे, प्रोविजंस थे, जो लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो जाता था कि हम अगर सेविंग्स करना चाहें तो किसमें इन्वेस्ट करें, तो वो रिटर्न्स देने के बजाय वो ज्यादा देखते थे कि इसमें टैक्स के छूट किसमें हैं, जो बिल्कुल विसंगत तरीके थे। तो उन सभी चीजों को क्लियर किया गया है इस इनकम टैक्स एक्ट में।
1: पुराने कानून में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के जैसे शब्द इस्तेमाल होते थे, जबकि नए कानून में एक टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका क्या मतलब है?
2: फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो कई सारे डिफरेंस थे कि साल का मतलब क्या होता है, जनवरी 1 से दिसंबर या 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसको क्लियर कर दिया गया है। हर पर्पज के लिए साल का मतलब होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल तक। तो उसके अंदर जब हम टैक्स ईयर बोलते हैं तो टैक्स ईयर का मतलब है पहले असेसमेंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर, ये लोगों को कंफ्यूज करता था, इसीलिए अभी सिर्फ टैक्स ईयर का मतलब है कि द ईयर इन विच इनकम वॉज अर्न्ड, यानी जिस साल मैंने इनकम अर्न किया उसको उसी साल में ही टैक्स किया जाएगा और अलग से कोई असेसमेंट ईयर का सवाल नहीं रहेगा कि मैंने 2000 24-25 में मैंने अगर टैक्स अर्न किया तो 2024 में ही जो रेट था उस रेट में ही उसको उस साल असेस किया जाएगा। अगला कोई असेसमेंट ईयर की नहीं, अभी असेसमेंट ईयर तो ये वाला आ गया है या दूसरा कुछ चार साल चल रहा है, इन सभी चीजों का झमेला नहीं रहेगा। सो प्रीवियस ईयर बोल के जो था कि जिस साल चल रहा है उसका प्रीवियस ईयर, इन सारे जो डेफिनेशनल झमेला है क्लियर, सिर्फ एक ही है टैक्स ईयर, द ईयर इन विच इनकम हैज बीन जनरेटेड, उस साल में क्या रेट था, दैट इज द इनकम।
1: जी, तो ये भी एक सरलीकरण, एक प्रक्रिया जो हम बात कर रहे हैं कि जो नया अधिनियम आया है वो पुराने अधिनियम के तुलना में किस तरह बेहतर है, तो सरलीकरण कर दिया है सरकार ने इसका। अगला सवाल मेरा आपसे ये है शुभमोय, कि आयकर अधिनियम 2025 में वर्चुअल डिजिटल स्पेस और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के कॉन्सेप्ट भी शामिल किए गए हैं, ये क्या है, इन्हें क्यों लाया गया है और करदाताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा?
2: अभी आपको जब बहुत सारे ऐसे एसेट की, पहले हमारे होते थे एक फिजिकल एसेट और एक फाइनेंशियल एसेट, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी में एक वर्चुअल एसेट भी बहुत सारा बन गया है। वर्चुअल एसेट कौन से हैं? जो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो वर्ल्ड में, हालांकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड की तो टैक्सेशन की तो अभी बात नहीं हुई है, लेकिन जब हम किसी नए डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या किसी दूसरे और भी नए नए जो एसेट्स डेवलप कर रहे हैं, इन सारी चीजों को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसके लिए एक नए डेफिनेशन का जरूरत था। तो वर्चुअल एसेट यानी कि ये एसेट वो एसेट्स हैं जो यू कैन नॉट टच एंड फील, लेकिन दे आर अवेलेबल इन द साइबर स्फीयर। हालांकि मैं क्लियर करना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी से हम इसको लिंक ना करें, क्योंकि भारत में भी क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन के उस सिस्टम्स में हम लोग अभी भी आगे चल रहे हैं, वो अभी वहां पे नहीं पहुंचे, लेकिन डिजिटल में बहुत सारे डिजिटल एसेट्स हमारे बन रहे हैं और उन सारी चीजों को टैक्सेशन करने का ये हम लोग उसके, जिसे कहते हैं उसका बुनियादी स्तर होता है कि उसका डिफाइन करना, उसका डिफिनेशन का वो वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर से किया गया है।
1: तो कह सकते हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया में तकनीक का विकास हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो जो हमारे आयकर के जो हमारे नियम कानून है उनको भी उन बदलावों से, उन जो ये विकास हो रहा है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, और इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वर्चुअल डिजिटल स्पेस और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इनको इस नए अधिनियम में शामिल किया गया है।
2: और इसी के चलते हम बहुत सारे, अभी हम देखेंगे कि इसके नए इस्तेमाल, इसके नए जरूरतें और इनकी नई खूबियां वो हमें बहुत जल्दी हमें मिलते जाएंगे। अभी जैसे भारत में हम कह रहे हैं कि हम जीसीसी में हो या दूसरी चीजों में, हम एआई के चलते हम लोग बहुत सारे नए नए चीजें आ रहे हैं, उन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए टैक्सेशन स्ट्रक्चर को अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा, और वो टैक्सेशन स्ट्रक्चर अभी हमारे पास थ्रू द न्यू इनकम टैक्स एक्ट आया है।
1: नए एक्ट में करदाता की जो वॉलंटरी कंप्लायंस है वो उसे कैसे बेहतर बनाता है और मुकदमेबाजी को कैसे कम करता है?
2: सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो नए करदाताओं के लिए, सबसे पहली बात यह है कि कौन टैक्स देगा, इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने होंगे, ये हमारे लिए सबसे पहले, जिसे कहते हैं हमें कोई भी टैक्सेशन स्ट्रक्चर में आने से पहले नए करदाताओं के लिए सबसे पहली बात ये थी कि बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत पड़ रही थी, कि एक नया समरी जो उनको टैक्स का समझा दे, उनको नए किस्म का स्ट्रक्चर में उनको ले आए, उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है समझा दे। आपको याद होगा कुछ सालों पहले हमने एक सिस्टम शुरू हुआ था कि टैक्स पेइंग असिस्टेंट, कि एक असिस्टेंट होंगे जो असिस्टेंट हेल्प करेंगे, ये सब चीजें लोगों के मन में अपने आप में एक टैक्स के ऊपर एक भीति, एक संदेह बना देता है। और हम जब चाहते हैं कि नए टैक्स पेयर्स हमारे बीच में आए, हमारे साथ में जुड़ जाए, बिकॉज उसका टैक्स सिस्टम का अपने आप का बेनिफिट रहता है, तो ये सारी चीजें वे रोड ब्लॉक्स, उस रोड ब्लॉक्स को सिंप्लीफाई करने का इनकम टैक्स एक्ट का है कि भाई इन सभी चीजों की जरूरत नहीं है। जितने सारे फॉर्म्स थे, बहुत सारे फॉर्म्स को सेटल कर दिया गया है, क्लीन कर दिया गया है, तो नए इनकम टैक्स पेयर्स के लिए लाइफ को काफी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया गया है।
1: शुभमोय, आप हमारे साथ सुर्खियों में कार्यक्रम में जुड़े और प्रारंभ 2026 के बारे में और आयकर अधिनियम 2025 के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
0: सुर्खियों में
4: गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सबको। मैं स्टिचिंग ट्रेनर हूँ, मेरा नाम रीना है। मैं गरिमागढ़ में पहली बार आई थी, तो इससे पहले मैं कंपनी में जॉब करती थी, मुझे नहीं लगा था जब लॉकडाउन हुआ था तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बेटा 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, मुझे ऐसे लगा कि मैं उसको आगे नहीं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन फिर गरिमा गृह में मैं आई और शिवानी मैडम से मिली, फिर मुझे जॉब पाकर मुझे इतना अच्छा लगा और मैं अपने आगे बेटा को पढ़ा रही हूँ और मेरी बेटी भी एमए करी है।

0: So today I am going to talk about, do we realize our own potential? See, we feel low sometimes. We feel less energetic. We feel lethargic. We feel demotivated. Our thought process go negative. तो क्या हम हर समय रियलाइज करते हैं कि हमारा पोटेंशियल क्या है? क्या मैं बस इसी सीमित दायरे में ही काम करना चाहती हूँ या मैं इस दायरे से बाहर भी निकलना चाहती हूँ? तो ये जो रियलाइजेशन है एक लीडर को, वो हमेशा अपने सामने ये क्वेश्चन रखना ही चाहिए. कभी भी इस क्वेश्चन को भूलना नहीं चाहिए. बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, पर अगर ये क्वेश्चन हम अपने सामने हमेशा रखें कि डू वी रियलाइज आर ओन पोटेंशियल, बिकॉज अपने दायरे को हम लिमिट नहीं करें, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. व्हेन वी से दैट वी आर लीडर्स एंड वी वांट टू बिकम लीडर्स, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना है. तो जो ट्रू लीडर्स हैं, दे लर्न टू राइज अबव देयर सर्कमस्टांसेस. कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, लीडर्स को अपने आप को ट्यून करना है उसके ऊपर उठने के लिए. कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ नहीं है. लीडर्स को हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करना है और एनालाइज करना है. मैं आगे प्रेजेंटेशन में आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी. तो हमें हमेशा अपने जो सर्कमस्टांसेस है उससे ऊपर उठना है. दे डू नॉट अलाउ एडवर्सिटी टू डैम्पन देयर ड्रीम्स ऑफ मेकिंग इट बिग. जो लीडर्स है वो हमेशा विजनरी होता है, वो बहुत दूर अंदेशी होता है, वो दूर की सोचता है. तो जो भी एडवर्सिटी होती है, द सिचुएशंस अराउंड अस शुड नॉट लेट आर ड्रीम्स गो डाउन द ड्रेन. हमें अपने ड्रीम्स को अब बहुत ऊपर उठा के रखना है. एंड देन वी हैव टू राइज आर सेल्फ अबव द सर्कमस्टांसेस विच आर हैम्परिंग आर ड्रीम्स. ये हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए और हमें करना भी है. वी हैव टू डू दैट. What happens at dream centers? We provide opportunities to those who deprive themselves to learn under any circumstances. See, when I say that you are the leaders in the community, of course you are the leaders because you are the visionaries among those who even don't know themselves. आपको ये पता है ना कि आप उनके साथ काम करते हैं जिनको अपने बारे में भी नहीं पता वो क्या हैं, उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो क्या कर सकते हैं. तो यू पीपल आर द विजनरीज फॉर देम. एंड द वुमेन डजंट रियलाइज द पोटेंशियल दे हैव. सो वंस दे कम टू द लाइब्रेरी विच इज ऑफ कोर्स अ मैजिकल प्लेटफॉर्म फॉर देम. They want to learn stitching, they want to learn beauty and culture, they want to learn computers, they want to bring their children to the library. So many things they want to do together, but under adversities. घर के काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, नेगेटिविटी, हस्बैंड की लाइक यू नो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बच्चों का प्रेशर, बट they are also somewhere we have to make them leaders of their own life. So once given the chance, many women and girls have learned multiple skills. They have beliefs what they can do. And earlier, most of these women were having beliefs that they cannot do. Is it the truth? मेरा ये कहने का मतलब है कि जो औरतें आती हैं सेंटर पे, उनको पहले अपना पोटेंशियल नहीं पता था. वो ये सोचती थी कि ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है, हम सीख ही नहीं सकते, हम टाइम ही नहीं निकाल पाएंगे, हमारे घर का इतना प्रेशर है, हमारी फैमिली का इतना प्रेशर है. बट इन सारी एडवर्सिटीज में से निकल कर वो सेंटर पे आए और उन्होंने सीखा, एक स्किल में रजिस्टर करने के बाद उन्होंने बहुत सारी और भी स्किल्स सीखने की जिज्ञासा रखी और वह अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। तो क्या ये सच्चाई है? सच्चाई है ना, आप लोग सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सब चीजें, राइट? सो इन अ वे व्हाट यू आर डूइंग, मैं आपको बता रही हूँ लीडरशिप क्या है और आप इनडायरेक्टली उनको भी बता रहे हो लीडरशिप क्या है। तो दे आर बिकमिंग द मास्टर्स ऑफ देयर ओन लाइफ, राइट? पहले तो वो यही सोचती थी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर सीखने के बाद उनके बिलीव्स ही चेंज हो गए। तो वी नॉर्मली से दिस इज नॉट फॉर मी, हमेशा यही होता है कि दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, आई एम टू यंग टू लर्न और आई एम टू ओल्ड टू लर्न। ये चार सेंटेंस हमेशा जब हम पहली बार लोगों से बात करते हैं, कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोसाइटी में, मेनी पीपल से कि दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस टू डू, आई एम, मैं बहुत ही अभी यंग हूँ, बहुत लाइफ पड़ी है, मैं कभी भी कर सकती हूँ। या फिर हम कहते हैं कि हम अब बूढ़े हो गए, अब हमें क्या करना है ये करके, लाइफ तो चली गई, अभी क्या सीख के करेंगे। बट इट्स नेवर लेट, वी ग्रो अप बिलीविंग आर लिमिटेशंस और आर वीकनेसेस। हम अपनी पूरी जिंदगी हम उसी में निकाल देते हैं, अपनी सोच को छोटा रख के, लिमिटेशन में रख के, अपने दायरे को छोटा करके, और ये हमारी वीकनेसेस बन जाती हैं। आर बिलीव्स मेक अस लिमिट आर अचीवमेंट्स। और इसका क्या इफेक्ट होता है कि जो हमारी सोच है वो हमारी अचीवमेंट्स के आगे एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है और हमारी जो अचीवमेंट्स है वो लिमिटेड हो जाती हैं। आप एग्री करते हैं जो मैंने ये चार पांच पॉइंट्स आपके सामने रखे? ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स रखे हैं जो हम करते हैं, मैंने उसी को प्रेजेंटेशन में डाला है। डू यू एग्री विथ मी? एनीबॉडी कैन अनम्यूट द माइक एंड से
1: जी यस मैम, आई एम एग्री। यस
0: हाँ।
1: मैम,
0: हाँ, आपको पता है ना कि यही होता है जब औरतें, अब सबके सबके आंखों के सामने एक मूवी चल रही है कि औरतें कैसी थी पहले, अभी सेंटर में आई, हम लोगों ने उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनकी सोच बदल गई, और उनकी सोच बदलने के बाद अब वो मल्टीपल चीजें सीखना चाहती हैं। पर एक्चुअली में क्या होता है कि हम अपनी सोच को इतना लिमिटेड कर लेते हैं कि वो हमारी वीकनेस बन जाती है और हमारी अचीवमेंट के आगे रुकावट आ जाती है। आपने बहुत बहुत लोगों से सुना सुना होगा, मैं तो अपनी लाइफ में ये करना चाहता था पर मैं कर ही नहीं पाया, मैं कुछ और करना चाहती थी पर मैं इस प्रोफेशन में आ गई, मैं तो सर्विस करना चाहती थी पर फैमिली में मैं लाइक आई बिकेम अ हाउसवाइफ, मेरे को तो डॉक्टर बनना था पर मैं तो टीचर बन के रह गई। ये सब क्या नतीजे हैं कि हमने अपनी जो सोच है, जो हमारी बिलीव्स है, जो हमारा विश्वास है अपने ऊपर, आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं एक लिमिटेड दायरे में कर लिया और वो हमारी वीकनेस बन गई और हमारी अचीवमेंट्स जो है वो लिमिटेड रह गई, राइट?
1: ही राइट मैम, एग्जैक्टली ऐसा। मतलब एक्सपीरियंस में पिछले 2 साल से कर रही हूँ। मेरे सेंटर पे जो लड़कियां आ रही हैं या वुमेन्स, तो वो कुछ इसी तरह का कुछ मेरे आगे सवाल रखती हैं कि हम तो ये बनना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ आकर उनको हमारे सेंटर पे इतना फायदा हुआ, उनको उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ और कुछ करने की क्षमता उनको यहाँ से मिली।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबके साथ है, उन औरतों के साथ भी है, कहीं ना कहीं हमारे साथ भी हुआ है, कहीं
1: जी मैम, जी
0: ना
1: जी
0: कहीं हमारे साथ भी हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये भी एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी कि इट्स नेवर लेट। मैंने अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन में ये एक सेंटेंस लिखा था कि टाइम को लिमिटेड मत समझिए, टाइम को बॉन्डिंग मत समझिए, कभी भी किसी भी टाइम पे आप सब कुछ सीख सकते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे बताती हूँ, मतलब कि इट्स मैंने किसी बुक में पढ़ी थी, किसी फॉरेन कंट्री के बच्चे की स्टोरी है, पर पर मैं आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि एक बच्चा था, वो उसके घर में म्यूजिक बहुत चलता था, मतलब कि क्लासिकल म्यूजिक अगर वो सुन रहा है तो वो उसके पेरेंट्स बात करते थे, ये तबला है, ये तानपुरा है, ये हारमोनियम है, ये गिटार है। वो नेचुरली जब आप देखते हैं कोई म्यूजिक कंसर्न तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं तब गाना बजता है, राइट? ऐसे ही होता है ना। पर इंडिविजुअल बंदा जो सीखता है, वो एक बंदा एक इंस्ट्रूमेंट पे बैठ के सीखता है, राइट? कभी भी आप गाने की कोई भी प्रोग्राम देखिए तो ऐसे ही होता है। पर वो जब बच्चा छोटा था, उसने कहा कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, दैट मीन्स विजुअली उसने वो देखा नहीं था कभी, उसने कहा कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे ही बज रहे हैं और एक सिंगल आदमी बजा रहा है। और उसने अपने आप को इतना कमिट कर लिया वो सीखने के लिए, तो वो एक हाथ से तानपुरा बजा रहा है, दूसरे हाथ से हारमोनियम बजा रहा है, अपने गले में उसने गिटार डाली हुई है और अपने पैर से वो ड्रम बजा रहा है। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये सब कोई इंडिविजुअल बजाते हैं। तो सी द काइंड ऑफ बिलीफ ही हैड, और वो वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन बना सिर्फ इसी प्रैक्टिस पे कि उसने अपनी जो सोच थी वो एक दायरे में नहीं रखी, उसको इतना बड़ा कर दिया कि मुझे तो सब कुछ ही सीखना है, और वो सब कुछ ही इंडिविजुअली करा। और क्या अकॉम्प्लिश करा कि पांच लोग जो पांच इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, वो अकेला ही पांच इंस्ट्रूमेंट्स बजा के ही बिकेम द वर्ल्ड रिनाउंड म्यूजिशियन। तो ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हमने करना क्या है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द आउटकम इन योर लाइफ, यू नीड टू स्टार्ट बाय चेंजिंग योर बिलीव्स। वो स्टोरी बिल्कुल फिट हो रही है इस सेंटेंस से, कि अगर हमें अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है, आउटकम्स मतलब कि जो हम काम करते हैं उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, तो अगर वो हमने उसका दायरा बड़ा करना है तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, उस दायरे को भी बड़ा करना होगा। A leader can help the team achieve its potential by constantly challenging the team members to do more, by stretching them and helping them break through their limitations and start believing in their abilities. ये सेंटेंस हमारे पे सब पे बहुत लागू करता है। कोई भी लीडर है, हम सब लीडर हैं, हम सब किसी ना किसी से कुछ ना कुछ काम करवाते हैं, राइट? और अगर हम अपनी टीम मेंबर्स को हमेशा चैलेंज करते रहें कि इससे आगे बढ़ना है, अभी आपने ए अचीव किया है तो ए प्लस बी अचीव करना है, फिर ए प्लस बी प्लस सी अचीव करना है। आप ट्रेनिंग्स में भी ऐसे करते हैं ना, आप 3 महीने के प्रोग्राम को वीकली डिवाइड कर लेते हैं और उसको एक एक हफ्ता सिखाने के बाद इसका 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करते हैं, और उसके जो चैलेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा बीमार है, घर में कुछ काम है, खुद की तबीयत ठीक नहीं है, पर हम उसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ये तो 3 महीने का कोर्स है, तुम्हें पूरा करना ही करना है, तुम जैसे मर्जी आओ। हम उसको काउंसिल भी करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि यू रिजॉल्व योर इश्यूज पर डोंट लीव दिस ट्रेनिंग। तो हम क्या हेल्प कर रहे हैं उनको, हम उनकी लिमिटेशंस को ब्रेक करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि यू कैन डू एंड यू मस्ट डू, राइट? यही आप कर रहे हैं। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है। तभी मैं बार बार बोलती हूँ कि आप सब लीडर्स हैं, सिर्फ आपको अपने अंदर जो लीडर छिपा हुआ है उसके पोटेंशियल को रियलाइज करना है, और यही टाइटल है मेरी स्लाइड का, डू वी रियलाइज आवर ओन पोटेंशियल। अब आप आज से कुछ भी करेंगे, पहले उसको रियलाइज करेंगे कि यस आई एम अ लीडर, मेरे को दूसरों की लाइफ चेंज करनी है, मुझे दूसरों में आत्मविश्वास बढ़ाना है, मुझे दूसरों को हेल्प करना है, काउंसिल करना है उनके चैलेंजेस को दूर करने के लिए। देखिए, काउंसलिंग एक बहुत बड़ा कोर्स है। एक होता है कि मैं काउंसिल कर रही हूँ, काउंसलिंग होती है कि उस बंदे को उसी की बातें सुनकर उसको हेल्प करना अपना डिसीजन लेने के लिए, राइट। हम डिसीजन नहीं थोपते हैं काउंसलिंग में, हम काउंसलिंग में उसके साथ इस तरीके से बातचीत करते हैं, उसको उस पॉइंट पे लाते हैं कि वो अपने डिसीजन खुद ले, राइट। तो जो लीडर है वो भी कुछ हद तक ऐसे ही काम करता है। दूसरों के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज छिपी हुई हैं, जो उनकी एबिलिटीज छिपी हुई हैं, उनको हम उभारने की कोशिश करते हैं और उनके पोटेंशियल को हम इंक्रीज करते हैं। पर वो हम तभी कर पाएंगे ना जब हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे कि वेयर डू वी स्टैंड, राइट। सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू, योर माइंड गेट्स कंडीशन टू लुक फॉर डिफिकल्टी इन अपॉर्चुनिटी। देखिए, सेंटेंस बहुत मीनिंगफुल है कि जब हम नहीं कर पाते हैं तो हम डिफिकल्टीज का बहाना बना लेते हैं। ओ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, मेरे पास ये भी बहुत दूसरी प्रायोरिटीज हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने गोल को शिफ्ट कर देते हैं। हम अपने गोल में और अपने में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। हम अपने आप को एट्यून कर लेते हैं उन उन सारे इश्यूज को लेके, तो हम उस कार्यक्रम में अपॉर्चुनिटी ना ढूंढते हुए हम डिफिकल्टीज को मद्देनजर रखते हैं, अपने आगे रख लेते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं, राइट। बट व्हेन यू आर एबल टू डू, योर माइंड लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटी इन डिफिकल्टी। पर जब हम पूरे ऑड्स को, ऑडिटीज को और एडवर्सिटीज को रिजॉल्व करके हम कुछ अचीव कर लेते हैं, तो उन्हीं डिफिकल्टीज में हमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है। सो व्हाट इज दिस, इट्स ऑल माइंड्स गेम। ये पूरे आपके सोच का, आपके मन की एक गेम है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपके अपने बिलीव्स हैं और आपका अपना कॉन्फिडेंस है। तो अब आप खुद ही मास्टर बन गए इन सारे 5 पॉइंट्स को सोचने के ऊपर। जब ये स्लाइड्स आपके पास आएंगी, आप इन 5 पॉइंट्स को बार बार पढ़िए और अपने आप को एनालाइज करिए, और जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनको भी एनालाइज करिए, और इन 5 पॉइंट्स को मद्देनजर रख के, हर इंडिविजुअल फर्क है, जो आपके पास सीखने के लिए आ रहा है आप उसी तरीके से उसको काउंसिल करिए, उसका मनोबल बढ़ाइए और उसको बोलिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज, इट्स नॉट ए एकेडमिक डिग्री। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप दूसरों के साथ काम करिए, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज करने से आती हैं। आप सोच लो, आप थीसिस पढ़ लो, आप जो मर्जी कर लो, पर जब आप प्रैक्टिकली नहीं इसको करोगे तो ये क्वालिटीज कहीं ना कहीं आपसे दूर जाती जाएंगी और आप इनको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो लीडरशिप क्वालिटीज जो होती हैं वो डे टू डे प्रैक्टिस में लाने की जरूरत होती है। तभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनके साथ प्रैक्टिकली आप ये सब करिए, आपकी अपनी लीडरशिप क्वालिटीज शार्पन हो जाएंगे। जब हम अनसक्सेसफुल होते हैं, राइट, बहुत, ये मैं बिल्कुल आज बिहेवियर को लीडरशिप के साथ लिंक कर रही हूँ, तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। आप बच्चे से ले लीजिए, बच्चे के मार्क्स कम आते हैं ना, पेरेंट्स पूछते हैं इस बार मार्क्स क्यों कम आए, तो वो बच्चा ब्लेम किसको करता है, दूसरों को करता है, वो अपने आप को ब्लेम नहीं करता। वो कभी भी आपने उसके मुंह से ये नहीं सुना कि मैं नहीं पढ़ा जितना मुझे पढ़ना चाहिए था। वो कोई ना कोई और बहाने ढूंढेगा, दूसरों को ब्लेम करेगा। और ये फैमिली लाइफ में भी होता है, व्हेन वी आर अनसक्सेसफुल वी टेंड टू ब्लेम अदर्स, दोज हु आर अराउंड अस, एंड फाइंड एक्सक्यूजेस फॉर अस। इज इट ट्रू? कोई जवाब देगा ये होता है सबके साथ या मेरे साथ ही होता है?
2: जी मैम बिल्कुल होता है, बच्चे भी
3: वेरी
2: यही
3: ट्रू
2: करते
3: मैम,
2: हैं।
0: है ना?
3: वेरी वेरी
0: सब,
3: वेरी वेरी ट्रू मैम।
0: हाँ, तो ये इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और इसमें हमें क्या करना है, परसिवरेंस इज द फोर्थ वर्ड अलोंग विथ पैशन हंगर एंड डिसिप्लिन वी हैव टू ऐड। परसिवरेंस क्या होता है, एक चीज को बार बार करना, बार बार करना, वो इतनी बार करना कि वो आपकी हैबिट बन जाए। ये हमारी सोच पे भी मतलब कि हमें असर करता है, हमारी लैंग्वेज में भी असर करता है, हमारे बिहेवियर में भी असर करता है, हमारे एटीट्यूड में भी असर करता है, और हमारी प्रैक्टिस में भी असर करता है जो हम काम करते हैं। आप शुरू से देखिए, एक बच्चा है वो बहुत गंदा लिखता है, हैंडराइटिंग ये अच्छी नहीं है, हम उसको तरह तरह के हैंडराइटिंग बुक्स लाकर देते हैं कि इसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए, हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए, हम प्रैक्टिस करवाते हैं हर एक चीज की। जब बच्चा बोलना सीखता है हम उसको एक एक वर्ड दिन में 20 बार बुलवाते हैं, क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं कि वो उसका लाइफ का एक पार्ट बन जाए। ऐसे ही जब हम बड़े होते हैं हम ग्रो करते हैं, और अगर हमें अपने में लीडरशिप क्वालिटीज लानी है तो लीडरशिप की क्वालिटीज जो हैं उनको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। और अगर हम नहीं सक्सेसफुल हो रहे, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपने आज एक अच्छा काम किया और आप लीडर बन गए, आपके बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, पर अगर हम कॉन्टिन्यूसली ये सब करते जाएंगे, परसिवरेंस से करेंगे, परसिवरेंस रखेंगे, तो नो डाउट अबाउट दैट आपको अचीवमेंट मिलेगी, आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। That is the mantra. So if you do that, success is sure to come. That means continued efforts to do something to achieve success. So yeah, यहाँ तक तो clear है बिल्कुल। ये तो बहुत ही practical session है आज जो मैं ले रही हूँ, because मैं बहुत ये इन सब चीजों पे stress करना चाह रही थी कि हम day to day life में हम कैसे अपनी leadership quality action में लेकर आए। राइट सो हम हमेशा हमारी लाइफ में सब गुडीज गुडीज नहीं होता है, दो वी एक्सपेक्ट कि सब अच्छा ही हो, बट हमें अच्छा करना है अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए। ये बात जरूर याद रखिएगा, हमें अच्छा करना है अच्छा एक्सपीरियंस। क्वालिटीज होती है कि हमें अपनी लाइफ में अच्छा ही करना है, सो दैट इन रिटर्न भी हमें अच्छा आए और हम सोसाइटी में दूसरों की हेल्प करें। तो देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू फील क्रश्ड, स्टैम्प्ड, और योर गोल और ड्रीम गोज डाउन द ड्रेन। ऐसे होता है ना, बहुत ही डिमोटिवेटेड होते हैं, हमने बहुत मेहनत से कुछ किया पर उसका कुछ फल नहीं आया, हम बोलते हैं कि हमारा गोल ही शैटर्ड हो गया, पता नहीं क्या हो गया। सेल्फ वर्थ, जो आपकी सेल्फ वर्थ है, जो आप कर सकते हैं, उसको इन फेलियर से कभी भी नीचे नहीं आने दें। एवरी टाइम यू रेज योर हेड एंड से अभी नहीं तो कल, इस समय नहीं तो अगले समय, कभी भी उसको नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। ये लीडरशिप क्वालिटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रिमेंबर यू आर स्टिल द टेरिफिक पर्सन यू वर, जब आपने काम किया था आपने, यू वर द वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी, पर अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो आप अपने आप को कभी भी डीमीन नहीं करिए, आप वही हो जो आप पहले थे, वही आप में पोटेंशियल है, वही आप में एनर्जी है। अगर अचीवमेंट आज नहीं मिली तो कल जरूर मिलेगी, ये विश्वास अपने माइंड में आप हमेशा बनाए रखिए। Just because someone chooses to crush you, that does not change your worth one bit. ये बहुत important है। जब मैंने 10 scale formula बनाया था उसमें भी मैंने ये पॉइंट रखा था एंड आई ऑलवेज टॉक टू मैनी पीपल ऑन दिस पॉइंट कि अगर कोई आपको डीमीन करता है, क्रश का मतलब वही है डीमीन करना, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत हम जीते हैं, दैट डज नॉट चेंज योर वर्थ वन बिट, एक पॉइंट भी आपकी वर्थ पे उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए. आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड माइंड पे आता है, साइकी पे आता है, बट यू अट्यून योर माइंड लाइक दैट कि नेक्स्ट मोमेंट यू आर सो कॉन्फिडेंट बिकॉज यू ऑलवेज रियलाइज योर वर्थ. यू आर अ टेरिफिक पर्सन, यू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप. सो अपनी सेल्फ वर्थ को कभी भी कम नहीं होने दें. Never give up, never give up. ये आपका मंत्र होना चाहिए, right? आज मैंने जितने भी स्लाइड्स, मैंने कम स्लाइड्स बनाई थी, पर मैंने इनको इस तरीके से डिजाइन करा था कि ये जो आपकी लाइफ के साथ डायरेक्टली लिंक हो. अब हम थोड़ी सी होली बुक्स में लीडरशिप के बारे में क्या कहा गया उन क्वालिटीज को भी जान लेते हैं, राइट? हम जो भी होली बुक्स पढ़ते हैं या जो भी मॉरल बुक्स पढ़ते हैं, उसमें ट्रूथफुलनेस एक फर्स्ट पॉइंट आता है. व्हेन वी आर ट्रू, वी डू, द एनवायरमेंट अराउंड अस आल्सो बिकम ट्रूथफुल. व्हेन यू आर पॉजिटिव, योर environment become positive, your body energies become positive, or jo aapke andar like what should I say, do jo feelings hoti hain wo bhi positive hoti hain, aur jo aap kaam karte ho wo bhi positive energy se karte ho, to end result bhi positive aata hai. Do good to others, goodness grows and always come back. सब जानते हैं इस चीज को, राइट? हेल्प अदर्स इन डिफिकल्ट सिचुएशंस. सक्सेस लाइज इन योर ओन स्ट्रेंथ. सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है. हमारे सामने बहुत सारी चीजें ऐसे आती हैं कि हम अनड्यू एडवांटेज उठा लें, हम अनडिजर्व्ड क्रेडिट ले लें, हम कहीं कुछ ऐसा गलत कर लें, पर जो लीडर होता है उसका सेल्फ कंट्रोल होना बहुत बहुत जरूरी है. डिफाइनिंग द गोल एंड योर ओन रिजोल्यूशन. गोल तो डिफाइन कर लिया पर अपने आप को कमिट नहीं करा तो हम गोल नहीं अचीव कर पाएंगे. सो डिफाइनिंग द गोल एंड योर ओन रिजोल्यूशन विल हेल्प टू अचीव द गोल. एडहेयर टू द लॉज एंड रेगुलेशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और हमें हर एक चीज का पता होना चाहिए कि एक जो ह्यूमन जो सोसाइटी है उसमें कौन से रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं, कौन से लॉज फॉलो करने हैं, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए. लास्टली, गुड कर्मास डू हेल्प टू वॉक ऑन द स्टेयर्स ऑफ सक्सेस. अगर हम अच्छे कर्म करते जाएंगे, अच्छे काम करते जाएंगे, तो जो सामने सीढ़ियां हैं हमारे, हमारी जो वॉक है, जो हमने क्लाइम करना है सीढ़ियों को, वो सक्सेस की तरफ ही जाएगा, हम नीचे नहीं गिरेंगे. दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू से टुडे. आई होप यू कोरिलेटेड ईच एंड एवरी वर्ड. आपने हर एक वर्ड को अपने साथ जोड़ा, अपनी कम्युनिटी के साथ जोड़ा जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, और इसको आप प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट? थैंक यू सो मच.

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे सागरमाला, भारत की समुद्री कनेक्टिविटी और अवसंरचना में नई उड़ान पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्र। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्वागत है आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद।
1: प्रोफेसर राहुल मिश्रा, आप हमारे सभी श्रोताओं को ये बताएं कि सागरमाला क्या है, ये भारत, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के सुरक्षा और भारत के उस सपने के लिए कितना जरूरी है जिसमें भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है।
2: वैभव जी, सागरमाला जो परियोजना है, ये मार्च 2015 में ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि जो बंदरगाह प्रेरित विकास है, जो हमारा मैरिटाइम कनेक्टिविटी है और मैरिटाइम जो व्यापार है, उसको कैसे सुदृढ़ बनाया जाए और इस तरह विकसित किया जाए कि हमारे जो बंदरगाह है उनका आधुनिकीकरण हो, उनका विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे वो कैसे खरे उतरे, कनेक्टिविटी में कैसे सुधार किया जाए, वैश्विक कनेक्टिविटी में भी, और भारत के जो पोर्ट्स हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, एक मैरिटाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन या पोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो परिकल्पना थी उसको कैसे साकार किया जाए, जो तटीय समुदाय उनके विकास में, उनके अंतर्राष्ट्रीयकरण में कैसे ये योगदान दे, और कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज जिसे हम कहते हैं तटीय शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन, उसको कैसे बढ़ा जाए। तो मोटे तौर पर जो भारत का मैरिटाइम विजन 2030 है और विकसित भारत की जो योजना है सरकार की, उसको साकार करने में कैसे मैरिटाइम सेक्टर और कैसे मैरिटाइम कनेक्टिविटी एक योगदान दे सकता है, उसके लिए इस प्रोग्राम को लाया गया। 11 साल बाद आज हम देखते हैं कि बहुत व्यापक पैमाने पर विकास हुआ है। करीब 850 परियोजनाएं, 845 टू बी प्रिसाइज परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। करोड़ों का निवेश ऑलरेडी हो चुका है। आज तो भारत के 9 पोर्ट्स दुनिया के 100 सबसे अच्छे और सबसे विकसित पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, और मैरिटाइम कनेक्टिविटी और मैरिटाइम अपग्रेडेशन, इन दोनों क्षेत्रों के विकास के साथ साथ जो मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट और ट्रेड है उसको बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान मुझे लगता है सागरमाला ने किया है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देश का जो कुल व्यापार है, अगर हम उसका वॉल्यूम देखें तो 95% सिर्फ भारत के तमाम बंदरगाहों से आता है, और अगर हम इसकी इवैल्यूएशन करें तो इसके वैल्यूएशन में हमें पता चलता है कि 70-75% टोटल जो भारत का व्यापार है वो इस पर निर्भर है। तो बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत ही क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, जिसको विकसित करने के लिए सागरमाला की परियोजना को लाया गया।
1: बिल्कुल, साथ ही साथ आपने बहुत अहम बात कही कि बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाने में सागरमाला परियोजना का बहुत बड़ा हाथ है। आज अगर बात की जाए भारत के जो पोर्ट्स हैं, वो 915 मिलियन टन कार्गो एक साल में या एक वित्तीय वर्ष 2025-26 की अगर बात की जाए उसमें इतना हैंडल करते हैं। कितना जरूरी है भारत के आयात और निर्यात के लिए ये कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता हुआ भारत का जो बंदरगाह, जो पूरी प्रणाली है, वो और ज्यादा मजबूत हो, अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंचे, ताकि दो शब्द कनेक्टिविटी बेहतर हो पाए और साथ ही साथ सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में भारत अग्रणी हो। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
2: भारत की जो तटरेखा है वो 11,099 किलोमीटर की है और लगभग 14,500 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से जुड़ी हुई व्यवस्था है, और हमारे 9 प्रदेश हैं जो पूरी तरह से मैरिटाइम ट्रेड और मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं। यही वो प्रदेश हैं जिनके वजह से हम अपने मैरिटाइम ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को बढ़ा पाए, इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बढ़ा है, और साथ ही साथ हमारे जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल और भूटान जैसे देश भारत पर निर्भर हैं अपने व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात को बढ़ाने के लिए। तो न सिर्फ ये भारत की अपनी आर्थिक नीति और अपनी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट की नीति है, भारत की विदेश नीति में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। भारत के जो छोटे पड़ोसी मित्र देश हैं, इनके लिए भी एक तरह से ये जीवन रेखा का काम करते हैं भारत के पोर्ट्स, और इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि सागरमाला का बहुत बड़ा योगदान है। तो पोर्ट अपग्रेडेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी पे जो रिटर्न टाइम होता था, एक शिप भारत के किसी बंदरगाह पर आया, उसने अपने शिप को डॉक किया और वहां से अनलोडिंग का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में पहले से अभी मुझे लगता है कि पहले 96 घंटे लगते थे, अब वो घटकर 48 घंटे हो गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है।
1: जी बिल्कुल।
2: जो ये टर्न अराउंड है इसकी वजह से ज्यादा व्यापार किया जा सकता है। जो शिप्स आते हैं भारत, कार्गो शिप्स, उनके लिए ये सुविधा बहुत अच्छा सुविधा हो गई है और इससे व्यापार को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
1: और रोजगार जो उपलब्ध होगा भारत के युवाओं के लिए, उसकी दर और ज्यादा बढ़ेगी इसकी वजह से।
2: जी बिल्कुल, रोजगार को बढ़ाने के लिए आपने अगर सागरमाला का तमाम जो दस्तावेज भारत सरकार ने हाल के दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज ने जो भी इस तरह के दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं, उसमें रेखांकित किया गया है कि इस कनेक्टिविटी में, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण में, उनके विकास में, औद्योगिकीकरण में, जो कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट है खासतौर से, उसमें इस बात पर बहुत फोकस किया गया है कि इसमें कैपेसिटी डेवलपमेंट के कार्यक्रम हो, फिशिंग और कोस्टल टूरिज्म को बढ़ाया जाए। पोर्ट डेवलपमेंट के साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि कोस्टल टूरिज्म को और कोस्टल एरियाज में कम्युनिटी डेवलपमेंट को और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाया जाए। तो इससे न सिर्फ रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे बल्कि साथ ही साथ एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। और पिछले 11 सालों में हमने देखा है कि बहुत व्यापक पैमाने पर बढ़ा भी है। अगर आप सुभाष चंद्र पोर्ट कलकत्ता जाएं या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पश्चिम की तरफ, मुंबई की तरफ जाएं, हर तरफ आप देख रहे हैं कि तटीय पर्यटन को बढ़ाने में भी काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और ये एक तरह से इकोसिस्टम बनाने की कोशिश भारत सरकार की है जिसमें न सिर्फ रोजगार बढ़े बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बने जिसमें रोजगार के तमाम स्तरों पर तमाम संभावनाएं सामने आए।
1: सागरमाला 2.0 के लिए भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव है करीबन 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजटीय समर्थन का, और साथ ही साथ प्रमुख जो 12 बंदरगाह हैं और 200 से अधिक जो गैर प्रमुख बंदरगाह हैं उनको और ज्यादा बेहतर बनाने का। जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर निवेशक की बात देखते हैं कि भारत सरकार अपने वादों के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें बंदरगाहों की इस प्रणाली को बेहतर करना है, साथ ही साथ आयात निर्यात को और बेहतर करना है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में अपने आप को अग्रणी बनाना है, निवेशकों के लिए कितना अहम ये एक साइन कह सकते हैं या चिन्ह कह सकते हैं, उनको भारत की ओर आकर्षित करने का ये कितना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है?
2: देखिए, सागरमाला 1.0 अगर हम कहें, सागरमाला की पहली कड़ी थी मार्च 2000

0: है कि भारत के मैरिटाइम ट्रेड को किस तरह से नए स्तर पर ले जाया जा सके, किस तरह से हिंटरलैंड कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए और भारत के जो पोर्ट्स हैं उनकी इनलैंड कनेक्टिविटी, जिससे कि जो हमारा व्यापार तटीय क्षेत्रों में हो रहा है उसको तेजी से कैसे भारत के हिंटरलैंड में लाया जाए, उस पर काफी फोकस करने की कोशिश है। और भारत को वैश्विक मैरिटाइम ट्रेड का एक हब बनाने में भी सागरमाला टूप की बहुत बड़ी भूमिका मैं देखता हूं। अमेरिका और इसराइल के ईरान के साथ युद्ध में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में एक बात बहुत स्पष्ट है कि मैरिटाइम ट्रेड बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है और इसको और सुधारने के लिए जरूरी है कि भारत ज्यादा तेजी से जो ट्रेड हो रहा है, जो शिप्स आ रहे हैं, उनमें माल के उतरने और माल की ढुलाई में बहुत समय न लगे, जल्दी से जल्दी हम ये अनलोडिंग का प्रोसेस करें जिससे कि ट्रेड को और स्मूथ किया जा सके और फास्टन किया जा सके इस प्रोसेस।
1: बिल्कुल प्रोफेसर मिश्रा, आत्मनिर्भरता पर भारत सरकार लगातार जोर दे रही है। हम देख रहे हैं कितने ही ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें भारत लगातार आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और बाकी जो विकसित देश हैं वो भी भारत के मॉडल की तरफ नजर कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि भारत किस तरीके से विकास करता है। जलमार्गों की अभी आपने बात की कि पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है उसकी वजह से जलमार्गों का जो ज्ञान है या उनसे जुड़ी हुई जितनी भी नॉलेज है वो जिस देश के पास हो और अगर वो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में अहम भूमिका निभा रहा हो तो उसके लिए और उसके मित्र देशों के लिए बहुत अहम है। कितना जरूरी होगा भारत के लिए कि जलमार्ग परिवहन न सिर्फ भारत के आसपास अपितु पूरे विश्व में उसका ज्ञान अर्जित करे और अपने जो सपना है विकसित भारत बनने का उसमें उस चीज को पूरी तरह से लगाए।
0: भारत की जो मैरिटाइम ट्रेड की कैपेसिटी है इसको बढ़ाने के लिए ये जानना जरूरी है कि दुनिया के जो अग्रणी देश हैं मैरिटाइम ट्रेड में और पोर्ट डेवलप में उनसे कैसे सीखा जाए और इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के तमाम कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया के तमाम देशों, यूरोप के मुझे लगता है बहुत सारे देशों से इस चीज को सीखने की जरूरत है, पश्चिम एशिया के तमाम मित्र देश हैं जिनसे भारत बहुत कुछ सीख सकता है। तो मुझे लगता है कि ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के तहत इन सपनों को साकार किया जा सकता है। जहां तक मैरिटाइम ट्रेड की सेंट्रलिटी का सवाल है, ये आगे आने वाले समय में विकसित भारत 2047 के उद्देश्य के हिसाब से भी और भारत के एक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए जरूरी है कि मैरिटाइम ट्रेड को और बढ़ाया जाए, इसको और सुगम और ज्यादा इफिशियंट किया जाए और इन तमाम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि पोर्ट्स को और एडवांस किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे। न सिर्फ हम दुनिया के अग्रणी देशों में रहें बल्कि भारत तमाम देशों में टॉप 3 टॉप 5 कंट्रीज में जब आएगा तभी आर्थिक स्तर पर भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा और 2047 का जो हमारा लक्ष्य है भारत का और भारतीयों का, उसको साकार करने में मैरिटाइम ट्रेड, मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट और साथ ही साथ जो कोस्टल टूरिज्म है उसको भी बढ़ाने की बहुत जरूरत है। 1 करोड़ रोजगार इस पूरी परियोजना से निकलने की संभावना है। तमाम भारत के प्रदेश है वो इस पर काम कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार की एजेंसीज हैं जो इस पर काम कर रही है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। मुझे लगता है कि रोजगार के सृजन में भी इसमें फोकस लगातार बनाए रखना होगा जिससे कि हम न सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट में बल्कि टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, कनेक्टिविटी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इनलैंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इन तमाम क्षेत्रों में हम देख सकें कि रोजगार व्यापक पैमाने पर बढ़ा है।
1: बिल्कुल प्रोफेसर मिश्रा, हमने देखा कि किस तरीके से भारत की प्रणालियां मजबूत हैं, इसी वजह से न तेल और गैस के दाम हमारे देश में बढ़े, बिल्कुल विपरीत हुआ बाकी कई देशों में जहां पर तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं इस वक्त पश्चिम एशिया के संघर्ष की वजह से। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कच्चे माल की आवाजाही में कोई परेशानी नहीं हुई, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल लगातार मिलता रहा। कितना जरूरी है ये कि मैन्युफैक्चरिंग हब अगर भारत बनना चाहता है या बनने की दिशा में अग्रसर है तो ये जो सप्लाई चेन है ये बिल्कुल बिना बाधा के स्मूथली चलता रहे और उसमें जल मार्ग से परिवहन की कितनी ज्यादा अहमियत है।
0: देखिए, इन दोनों ही क्षेत्रों में मुझे लगता है कि कार्गो हैंडलिंग जो क्षमता है पश्चिम एशिया की जो क्राइसिस है उससे और पिछले काफी समय से जो भी ऐसे क्षेत्र हैं वेस्ट एशिया में या रशिया यूक्रेन का युद्ध है, इनसे जहां भी समस्याएं दूसरे देशों को हुई, भारत को उतनी समस्या नहीं हुई क्योंकि भारत की कार्गो हैंडलिंग क्षमता बहुत अच्छी है और साथ ही साथ भारत की जो जिसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक कैपेसिटी बहुत अच्छी रही है। इन दोनों ही चीजों में मुझे लगता है कि भारत ने बहुत दक्षता हासिल की है और इस वजह से जो कार्गो हैंडलिंग और कार्गो ट्रांसपोर्ट है उसमें कभी दिक्कत नहीं आई, तो क्राइसिस के मोमेंट में भारत ने अपनी कैपेसिटीज को मैनिफेस्ट किया। आपने दूसरा सवाल ये पूछा कि ये जो क्राइसिस मोमेंट्स हैं या जो ऐसी स्थितियां आई हैं पश्चिम एशिया में उसके मद्देनजर आगे क्या संभावनाएं हो सकती है इनलैंड वाटरवेज को, तो इनलैंड वाटरवेज को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने काफी बड़े कदम उठाए हैं। पिछले 11 सालों में इनलैंड वाटरवेज में जो समय लगता था उसको बहुत बड़े स्तर पर कम किया गया है, खासतौर पर जो रो पैक्स होते थे

0: तो ऐसे शिप्स या ऐसे वो जो वाहन और यात्री दोनों को ले जाते हैं, फेरी सर्विसेज में बहुत बड़ा निवेश हुआ है, करीब 1250 करोड़ के निवेश की बात हुई है और इसमें से 17 परियोजनाएं पूरी भी की जा चुकी हैं। इनलैंड वाटरवेज न सिर्फ गंगा और हल्दिया के बीच में जो उत्तरी भारत में है, बल्कि दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में नर्मदा और मांडवी नदियों में जो शहरों को जोड़ने की बात है, इन तमाम क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और मुझे लगता है इनलैंड वाटरवेज अगर भारत के और सुदृढ़ होते हैं तो भारत का जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो भी बढ़ेगा और इस ट्रेड के बढ़ने से व्यापार करने की क्षमता बढ़ेगी और भारत का विश्व व्यापार में भी योगदान बढ़ेगा। क्योंकि बहुत बार हम ये देखते हैं कि जो हिंटरलैंड स्टेट्स हैं, वो प्रदेश जो सीधे बंदरगाहों से नहीं जुड़े हैं, जिनका समुद्र को एक्सेस नहीं है, उनके एक्सपोर्ट में समस्याएं आती हैं। बहुत समय ऐसा भी होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बंदरगाहों तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाते हैं। जब इनलैंड वाटरवेज कैपेसिटी बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि इन समस्याओं से भी निपटने में हमें मदद मिलेगी और भारत का विश्व व्यापार में भी योगदान बढ़ेगा। और इन तमाम चीजों में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत की जो सप्लाई चेन कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए भी न सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट की जरूरत है बल्कि इनलैंड वाटरवेज को भी सुदृढ़ करने की जरूरत है, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है और यूरोप के तमाम देशों से ये भी सीखने की जरूरत है कि भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनलैंड वाटरवेज को कैसे हम एक केंद्रीय स्थान दें। जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड तीनों ही क्षेत्रों में भारत दुनिया के तमाम देशों से पीछे रहेगा। तो इसलिए भी जरूरी है कि इनलैंड वाटरवेज को आगे बढ़ाया जाए।
1: बिल्कुल प्रोफेसर मिश्रा, इतनी अहम चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, हमारे श्रोताओं को इतने सरल ढंग से आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: सुर्खियों में

नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखने के अंतर्गत आप तक लाया गया है। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। आज का मेरा विषय है लू लगना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हीट स्ट्रोक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, लू चल रही है। लू क्या होता है? लू गर्म हवाएं होती है, और हम अगर ज़्यादा देर गर्मी में या धूप में रहते हैं तो हमें लू लग जाती है, जिसे हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी लू लगने के क्या लक्षण होते हैं और कैसे बचाव कर सकते हो और क्या उपाय होते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि लू लगना क्या होता है या हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक अत्यधिक टेम्परेचर यानी कि तापमान में लंबे समय तक रहने के कारण होता है, और इसे तत्काल इलाज की जरूरत होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं गर्मी का मौसम साल का सबसे कठिन मौसम होता है। हालांकि हर कोई अपने आप को इसके लिए तैयार करता है, लेकिन ये गर्मी तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी आती है। सबसे प्रमुख हीट स्ट्रोक होता है, जिसको हम लू लगना कहते हैं। जब कोई इंसान ज्यादा देर तक धूप में या गर्मी में रहता है, उसके शरीर का जो तापमान होता है 102 या 104 डिग्री जब पहुंच जाता है, तो इसे हीट स्ट्रोक का लक्षण माना जाता है। हीट स्ट्रोक आमतौर पे तब होता है जब शरीर में पानी और नमक की मात्रा कम हो जाती है और पसीना आना भी बंद हो जाता है। सामान्य लक्षणों में घबराहट, बेचैनी, उल्टी और बेहोशी का लक्षण दिखते हैं। बेहोशी को पहला लक्षण माना जा सकता है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ और लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, सिर घूमना, गर्मी के बावजूद पसीने ना आना, लाल गरम और सूखी त्वचा होना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, उल्टी होना, धड़कनों का तेज होना, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट और बेचैनी होना। श्रोताओं, अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पे हमें क्या करना चाहिए। हीट स्ट्रोक से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं मिलता है, तब तक उसको ठंडी जगह में यानी कि पंखे के नीचे रखना चाहिए। पैरों को ऊपर करके रखें। यदि इंसान होश में है तो उसे पानी पिलाएं। धीरे धीरे शरीर को बर्फ के या ठंडे पानी की पट्टियां करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय क्या होते हैं। अगर आप कोई व्यायाम कर रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद पानी पिए। हमें कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास या 2 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में अगर ज़्यादा पानी पियेंगे तो अच्छी बात होती है। ठंडे पानी से नहाएं, हल्का व पौष्टिक खाना खाएं, जैसे कि ककड़ी, तरबूज, नारियल, खरबूजा, बेल को अपने आहार में शामिल करें। खूब सारा पानी पिएं। हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहनें। ज्यादा देर तक बाहर रहने पर शरीर और कपड़ों पे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं आप। छाता या टोपी का उपयोग करें। दिन में जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि हमें कोई काम नहीं करना चाहिए बाहर जाकर, जब तक वो जरूरी ना हो। बच्चों को और बूढ़ों को अगर कोई डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हों तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमें ORS का घोल देना चाहिए। अगर वो ORS का घोल आपके पास नहीं है तो नमक और चीनी का घोल बनाकर बच्चों को और बूढ़ों को और आप भी ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। श्रोताओं, हमें गर्मियों में अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। हल्का खाना चाहिए और पौष्टिक खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस गर्मियों में
अपना, अपने परिवार का, उन सब का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
1: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
0: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
1: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
0: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा इस बुद्धू की तरह, बीमारी और बढ़ जाती है।
1: तुम इतना पैरानोइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
0: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
2: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं। हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सब क्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सब क्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकल कर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
3: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
2: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है। ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। एक्जिमा के मूल कारण और रैशेस के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
1: देखो ना, जहां मुझे खुजली हो रही थी वहां कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओह, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
1: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
1: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
0: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
2: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है, जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
4: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं। एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहां पर भी क्रीम लगाई है वहां पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयां आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीजें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
2: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर में, नंगे पाव ना चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीस यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिए, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर यह इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स हैं तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो है, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर किसी आदमी को जो वॉट्स हैं तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहाँ जहाँ वो नर्व निकलती है उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से ये अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं। अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है तो इसका पूरा इलाज संभव है, लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौर तलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलेनिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलेनिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीस की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीस सिंप्लेक्स और हर्पीस जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

0: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: विटामिन विटामिन ऐसी चीज है जिसे अगर खाया नहीं जाए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। विटामिनों की ये परिभाषा नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्वेंस-ग्योर्गी ने दी थी। उन्होंने विटामिन सी का पता लगाया था और जीवित कोशिकाओं में इसकी भूमिका की खोज की। विटामिन मानव शरीर के सामान्य विकास और कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनमें से कुछ विटामिन तो मेटाबॉलिक क्रियाओं यानी कि शरीर की चयापचय क्रियाओं में कोएंजाइम की तरह से काम करते हैं। कोएंजाइम एक ऐसे गैर प्रोटीन पदार्थ हैं जो कुछ एंजाइम के साथ मिलकर जटिल संरचनाएं बनाते हैं। एंजाइमों के सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन कोशिकाओं की झिल्ली के निर्माण और रखरखाव में मदद करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और चयापचय में भी ये सहायक हैं। जीवित कोशिकाओं में कई जरूरी प्रक्रियाओं में इनकी भूमिका रहती है। जीव जंतुओं को अधिकतर विटामिन बाहर से प्राप्त होते हैं, ये उनके शरीर में नहीं बनते। सिर्फ विटामिन बी और विटामिन डी के निर्माण में जीवों की कुछ भूमिका रहती है। विटामिन डी पाचन प्रणाली में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और विटामिन डी धूप में त्वचा द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ खास तरह के भोजन की आवश्यकता के बारे में विटामिनों की खोज से काफी पहले से पता था। 1970 के दशक में स्कॉटलैंड के एक डॉक्टर जेम्स लिंड ने पता लगाया कि स्कर्वी नाम की बीमारी नींबू का रस पीने से दूर हो जाती है। एक डच चिकित्सक क्रिश्चियन इजिकमैन ने 1890 में बेरीबेरी बीमारी और कुछ खाद्य पदार्थों के बीच संबंध स्थापित किया। 1906 में ब्रिटेन के जैव रसायनज्ञ सर फ्रेडरिक गार्लिन हॉपकिंस ने पता लगाया कि जब जब चूहों को एक खास तरह की खुराक दी जाती है तो उन्हें जीवित रखने के लिए सहायक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। पोलैंड के रसायन शास्त्री कैसिमर फंक ने 1912 में सबसे पहले बेरीबेरी बीमारी की रोकथाम के तरीके का पता लगाया। उन्होंने इसे विटामिन यानी विट प्लस अमीन नाम यानी अमीन नेसेसरी फॉर लाइफ दिया। लैटिन भाषा में जीवन को वाइटा कहा जाता है। आज भली भांति इस बात का पता लग चुका है कि बेरीबेरी बीमारी की रोकथाम करने वाला तत्व और कुछ नहीं बल्कि विटामिन B1 ये थायमिन है। थायमिन एक रासायनिक यौगिक है जिसमें अमाइनो समूह मौजूद रहता है। शीघ्र ही सहायक तत्व के स्थान पर विटामिन शब्द का उपयोग किया जाने लगा। बाद में ये भी पता चला कि विभिन्न विटामिनों के अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं। कुछ में तो अमीनो समूह जरा भी इस्तेमाल नहीं होता, मगर फंक द्वारा इजाद किया गया विटामिन शब्द इस्तेमाल होता रहा। सिर्फ विटामिन की अंग्रेजी स्पेलिंग में से आखिरी अक्षर मा हटा दिया गया। तरह तरह के भोजन में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिनों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहले वर्ग में वे विटामिन आते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी। दूसरे वर्ग में वसा में घुलने वाले विटामिन जैसे कि ए डी ई और के शामिल हैं। विटामिन ए या रेटिनल हमारी आंखों के दृश्य रंगों का आवश्यक घटक है। वसा में घुल सकने वाला ये विटामिन बीटा कैरोटीन नाम के पदार्थ से बनाया जाता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं मछली का तेल, कलेजे का मांस, दूध और इससे बनने वाले पदार्थ, फल तथा सब्जियां आदि। बीटा कैरोटीन जिससे कि विटामिन ए बनाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से मुंह तथा श्वास नलिका की झिल्ली में सूखापन आ जाता है। इसके अलावा अंधापन, शरीर के विकास में असामान्यता और संक्रमण जैसी बीमारियां भी इसकी कमी से हो सकती हैं। विटामिन ए से त्वचा तथा श्लेष्मा बनने वाले ऊतकों का निर्माण भी होता है। विटामिन बी पानी में घुलनशील कई विटामिनों का समूह है। इसके अंतर्गत विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोबिन, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनाकोल कोबेलामिन, नियासिन, निकोटिनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, विटामिन एच और फॉलिक एसिड आते हैं। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों के पाचन में सहायक होता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोतों में अनाज, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालें, मटर और मांस शामिल हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो सकता है। इस बीमारी से शरीर की परिधीय तंत्रिकाओं पर असर पड़ता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द होने लगता है। इसी तरह की एक अन्य बीमारी जिसे वेट बेरी कहा जाता है, भोजन में प्रोटीन और विटामिन बी दोनों की कमी से शरीर के अंगों में तरल पदार्थ का जमाव बढ़ जाता है। इससे अंगों में सूजन आ जाती है और बाद में दिल की बीमारी भी हो सकती है। विटामिन B2 कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के पाचन में सहायक होता है। ये खमीर, जिगर के मांस, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियों और मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर की बढ़वार रुक जाती है। विटामिन B6 खमीर, जिगर, दूध, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालों और अनाज में पाया जाता है। अमीनो एसिड के चयापचय में इस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि इसकी कमी से कोई खास बीमारी होने का खतरा नहीं पाया जाता, मगर आहार में इसकी मात्रा न होने से केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली में गड़बड़ी तथा त्वचा संबंधी सामान्य विकार पैदा हो सकते हैं। विटामिन B12 इसका निर्माण आम तौर पर आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। कलेजे के कच्चे मांस में ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से एक तरह की खून की कमी पैदा हो जाती है। पर्निशियस एनीमिया नाम की इस बीमारी में लाल रक्त कणिकाओं का विकास धीमा पड़ जाता है और मेरुदंड में विकार उत्पन्न होने की आशंका रहती है। पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए का हिस्सा है, जो शरीर में अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आता है। यूनानी भाषा में पेंटोथिन का नाम है, यूनानी भाषा में पेंटोथिन का मतलब है चारों ओर से। इसके प्रमुख स्रोतों में जिगर, खमीर, अंडे, मांस, डेयरी उत्पाद, शीरा, फूलगोभी और फल आदि शामिल हैं। अगर जानवरों को पेंटोथेनिक एसिड से रहित खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं तो उनकी बढ़वार रुक जाती है, उनके बालों का रंग उड़ने लगता है और उनमें त्वचा संबंधी विकार भी पैदा हो जाते हैं। बायोटिन विटामिन एच खाद्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया में भी इसका निर्माण होता है। फैटी एसिड्स के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन एच को एंटी एज फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है। फॉलिक एसिड पत्तेदार सब्जियों, खमीर, जिगर, गुर्दे और ताजे फलों में पाया जाता है। इसे फॉलिक एसिड नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। लैटिन भाषा में पत्तेदार सब्जी को फोलियम कहा जाता है। इस विटामिन की कमी से अस्थि मज्जा में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे परिपक्व रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती। पर्निशियस एनीमिया नाम की बीमारी में रोगी को फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दिए जाते हैं। नाइसिन का इस्तेमाल पेलाग्रा नाम की नाइसिन का इस्तेमाल पेलाग्रा नाम की बीमारी के उपचार में किया जाता है। इस बीमारी में अमाशय और आंत संबंधी विकार पैदा हो जाते हैं तथा खाल फटने व मानसिक गड़बड़ी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। विटामिन सी की आवश्यकता कई शारीरिक प्रक्रियाओं में पड़ती है, खास तौर पर स्वस्थ योजक ऊतकों के लिए ये बेहद जरूरी है। विटामिन सी सब्जियों और ताजे फलों, विशेष रूप से नींबू प्रजाति के फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। इस बीमारी में कमजोरी, जोड़ों में दर्द आदि की शिकायत हो जाती है और बाद में मसूड़ों तथा अन्य अंगों से रक्तस्राव आरंभ हो जाता है। विटामिन डी स्टेरॉल्स नाम के अनेक मिले जुले यौगिकों के समूह का नाम है, मगर मुख्य घटक हैं कोलिकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी कैल्शियम और हड्डियों का निर्माण करने वाले खनिजों को जमा करने के काम आता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। बच्चों को होने वाली इस बीमारी का असर हड्डियों पर पड़ता है। विटामिन डी भोजन में तो मौजूद रहता ही है, धूप में हमारी त्वचा भी इसका निर्माण करती है। विटामिन ई एक तरह के अनेक यौगिकों के समूह का नाम है। इन्हें टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ये यौगिक जैव एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी काम करते हैं, यानी ये फैटी एसिड्स में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते हैं। इस तरह ये विटामिन फैटी एसिड्स को परऑक्साइड्स और रेडिकल से बचाता है। विटामिन ई चोकर वाले आटे, गेहूं के अंकुर, जिगर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। टोकोफेरॉल्स का व्यावसायिक इस्तेमाल वसा, खास तौर पर वनस्पति तेलों में बनाने में भी किया जाता है। विटामिन के पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। आंतों में कुछ लाभप्रद बैक्टीरिया भी इसका निर्माण करते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और इसकी कमी से खून का थक्का आसानी से नहीं जम पाता। विटामिन के अंतर्गत नैप्थेक्विनोन यौगिकों का एक समूह भी आता है। रक्त को जमाने में काम आने वाले रसायनों के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। विटामिनों की आवश्यकता बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पड़ती है। सामान्य संतुलित भोजन में आदमी की जरूरत के तमाम विटामिन मौजूद रहते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग संतुलित भोजन नहीं खाते, जबकि बहुत से अन्य लोग संतुलित भोजन खाने की स्थिति में नहीं होते।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: ना इसी का नाम
1: इसे क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बबलू?
0: ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ है? एनीवेज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस कोकिला एमबीबीएस। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
1: तुम्हें तो रातों रात ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं।
0: हाँ, एक्चुअली लाइफ में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि किसी के काम आने में कितना आत्मिक सुख मिलता है।
1: अच्छा,
0: एक्चुअली मेरे एक दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुंच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
1: ओ तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गेस कर रही हूं तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
0: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट।
3: बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा।
2: ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है।
3: हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है।
2: इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है। गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है, और एक वक्त आता है जब शरीर में हड्डियों के ये जोड़ जवाब देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और किस्म की आर्थराइटिस भी हैं, जो किसी भी उम्र के लोगों में पाई जा सकती हैं।

0: वेलकम बैक। एपिसोड के इस भाग में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के टाइप्स की। हालांकि आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन
1: कोकिला, मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई, आखिर आर्थराइटिस होने की वजह क्या है?
0: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू। एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं।
2: आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है। जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी। हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की, और फिर तय किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान। आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्थराइटिस 4 तरह से हड्डियों पर हमला बोलती है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा गॉटी आर्थराइटिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसे बुढ़ापे की बीमारी भी कहते हैं। बुढ़ापे में जॉइंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं। वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे का जॉइंट्स, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है। लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है। कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं। और अब बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। ये आर्थराइटिस हमारे मेटाबोलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है। इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है। अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है। जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की। इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो और, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है। लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का असर बढ़ता है, कार्टिलेज खिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि अर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर ये रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रिमेटॉइड अर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे

0: इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रिमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रिमेटॉइड अर्थराइटिस होने के कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रिमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
1: अब तो आप समझ ही गए होंगे, अर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
0: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं। तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ न होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है, और मांसपेशियां अगर अच्छी होती हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखें, और इस प्रकार का आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएं और वो जोड़ों को घिसने से बचाएं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपके बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी।
0: गॉटी अर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गॉटी अर्थराइटिस के पेशेंट्स को NS8 के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कॉल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NS8 जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NS8 दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NS8 दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। आर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। ज्यादातर इसका असर बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे और घुटने के जोड़ों पर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ज्यादातर इसका असर शरीर के छोटे जॉइंट्स जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स पर होता है। संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और वजन को नियंत्रण में रखकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट का सामान्यतः NSAID

0: और स्टेरॉयड से इलाज किया जाता है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं, जैसे नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
1: कोकिला, आर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
2: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस, बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
1: बाय।

0: ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी कूड़ा पीछे भी, दाएं भी कूड़ा बाएं भी, यहां भी कूड़ा वहां भी। ए भाई तू जहां रहता है वो कोई कूड़ा घर नहीं, गली में कूड़ा है, पार्कों में कचरा, दुनिया हमारी अब स्वर्ग नहीं। ए भाई
1: जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों की बीमारियों का कारण आपके मोहल्ले का कूड़ा भी हो सकता है? पर यह कूड़ा आता कहाँ से है? अरे जनाब, आप ही के तो घर से। आपने कूड़े को निकाला, भरा और फेंक दिया, और बदले में आपको क्या मिला? बदबूदार नालियाँ, मक्खियाँ जो लाती हैं बीमारियाँ। आपका बच्चा घर से बाहर जाए और बीमारियाँ घर लाए।
2: तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। कर सकते हैं कूड़े का विभाजन। कूड़े को दो तरह के थैले में बांट लें। एक में गीला कूड़ा जैसे कि फल व सब्जियों के छिलके, बचा खाना, और दूसरे थैले में सूखा कूड़ा जैसे कि पेपर और प्लास्टिक डाल दें।
1: सरकार ने आपके मोहल्ले में दो प्रकार के कूड़ेदान रखे हैं, हरा गीले कूड़े के लिए और नीला सूखे कूड़े के लिए। यदि आप कूड़ा अलग अलग करके इसमें डाल देते हैं तो गीले कूड़े में खाद बनाई जा सकती है और सूखे कूड़े को तैयार कर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है।
2: इससे दूर रहेंगी बीमारियां और सुंदर होगा वातावरण। तो अब जब आपका बच्चा घर से बाहर जाए तो बीमारी घर में लेकर ना आए।
1: याद रखिए,
3: कूड़ा निवारण स्वस्थ जिंदगी।

हमारे देश में कृषि पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। देश में कुल 6.50 लाख गांव हैं। इसमें 14 करोड़ से ज्यादा किसान रहते हैं और इनमें लगभग 70% से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में कृषि पर्यटन गांव में रहने वाले लोगों के लिए आय का अच्छा जरिया साबित हो सकता है। वैसे तो गांव की सुंदरता को रोजगार से जोड़ने के लिए कृषि पर्यटन की शुरुआत की गई, लेकिन कृषि पर्यटन शुरू करने के पीछे और भी कई कारण समझ आते हैं। जैसे कृषि जोत का आकार छोटा होना, युवाओं का शहर की तरफ पलायन और जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में आने वाली परेशानियां, इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि पर्यटन खासकर उन शहरी लोगों के लिए अच्छा है जिनका बचपन आमतौर पर घर की चार दीवारी में ही बीत जाता है। वे अनाज, सब्जियां और दूध उत्पादन की प्रक्रिया को भी नहीं जानते। ऐसे लोगों को कृषि पर्यटन खेती के पारंपरिक तरीकों को देखने समझने का मौका देता है। कृषि पर्यटक स्थल पहाड़ी इलाकों में बनाए जा सकते हैं। अगर मैदानी इलाके में कृषि पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं, तो वहाँ की संस्कृति, पार्क और देसी तरीके से मिट्टी और बांस के बने आवास और खाने की सुविधा करनी चाहिए। कृषि पर्यटन स्थल बनाते समय कुछ जगहों को दृश्य स्थल में बदलकर वहाँ पर खेती के पुराने तरीकों और मशीनों का म्यूजियम बना सकते हैं। इसके अलावा कृषि पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों के लिए खेती, बागवानी और पशु उत्पादन से जुड़े कामों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पिछले काफी समय में लोगों की आय भी बढ़ी है और घूमने का शौक भी बढ़ा है। ऐसे में आने वाले समय में कृषि पर्यटन बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है, जो न सिर्फ प्रकृति की गोद में जाने का मौका देता है, बल्कि ग्रामीण आबादी को रोजगार भी देता है।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खेत खलिहान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खेत खलिहान में लगातार हम आपसे जुड़े विषय जो हैं उनको शामिल करते हैं, और हमारे आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो भी आपसे जुड़ा है। आज हम आपको जानकारी देंगे उन्नत बकरी पालन के बारे में, किस तरीके से उन्नत बकरी पालन करके आप मुनाफा कमा सकते हैं, और यही वजह है कि बकरी पालन एक रोजगार का जरिया भी बन चुका है। यही जानकारी देने के लिए हम आ पहुंचे हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के मखदूम में। जी हाँ, और यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक मनोज कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे ये जानकारी लेते हैं किस तरीके से हमारे जो किसान भाई है वो उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खेत खलिहान।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे दर्शक हैं, किस तरीके से उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं, उसके फायदे क्या हैं?
1: देखिए कि बकरी पालन के द्वारा किसान भाई अपनी आर्थिकी उन्नति कर सकते हैं, अपने कुपोषण की समस्या से निजात पा सकते हैं
0: जी।
1: और ये रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। उसके लिए जो बकरी पालन है उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना होगा। जैसे कि उन्नत बकरी प्रबंधन, उन्नत प्रजनन प्रबंधन, उन्नत पोषण प्रबंधन, उन्नत स्वास्थ्य प्रबंधन, उन्नत मार्केटिंग, स्मार्ट मार्केटिंग
0: जी।
1: अगर इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखा जाए तो प्रति बकरी एक किसान एक वर्ष में 6,000 से 10,000 रुपया मुनाफा कमा सकता है।
0: लेकिन इसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे जो, क्योंकि उन्नत बकरी हम पालन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारी नस्ल है उसका चयन कैसे किया जाए, तो कौन सी जो उन्नत नस्लें हैं और कैसे उनका चयन, हमारे जो दर्शक हैं अगर वो बकरी पालन करना चाहते हैं तो चयन करें वो?
1: देखिए, हिंदुस्तान में बकरी की लगभग 24 नस्लें हैं
0: जी,
1: जिनको के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में हमारे पूर्वजों ने वहां की वातावरण एवं परिस्थिति के अनुरूप उनको विकसित किया
0: जी।
1: तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बकरी जिस क्षेत्र की हो वहाँ वही की नस्लों पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बकरी पूर्वी भारत की है, जैसे पूर्वी भारत में ब्लैक बंगाल नस्ल पाई जाती है
0: जी,
1: तो वहाँ के किसान उसी बकरी के ऊपर ध्यान दें। और जैसे उत्तर भारत है या उत्तर प्रदेश है
0: जी,
1: तो उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक बकरी पालन के लिए जो बर्बरी बकरी की नस्ल है
0: जी,
1: ये अति उत्तम है।
0: बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आसानी से बकरी पालन आप कर सकते हैं, लेकिन एक कम से कम अगर हम बात करें तो कितनी जगह इसके लिए चाहिए, क्योंकि बकरी पालन हम कर रहे हैं जगह का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, और कम से कम कितनी बकरियों से इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं?
1: दरअसल ये तो किसान के पास उपलब्ध उसके आर्थिक संसाधन उस पर निर्भर करता है
0: जी।
1: लेकिन जो हमारे संस्थान के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहां पर के 20, 25, 50, 100 बकरी रखकर लोगों ने बकरी पालन शुरू किया है
0: जी,
1: तो 50 से 100 बकरी पालन करने के लिए लगभग 1 से 1.5 एकड़ जगह चाहिए, जिसमें के बकरियों के आवास भी बनेंगे, भूसा स्टोरेज भी बनेगा, दाना स्टोरेज भी बनेगा और बकरियों के बाड़े भी बनेंगे
0: जी।
1: तो वैसे जो है बकरी को, एक बकरी को आवास के लिए 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए बंद आवास में, और इसकी दुगनी जगह चाहिए खुले आवास में।
0: बिल्कुल, जैसा डॉक्टर मनोज ने कहा कि तमाम प्रबंधन जो है वो आपको करने होंगे, बाड़ी की व्यवस्था होती है, और आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर संस्थान द्वारा जो बकरियां हैं उनको रखा जाता है। आपको भी दिखाते हैं और भी जानकारी हम देंगे, आइए हमारे साथ। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा आपने हमें बताया कि उन्नत नस्लें हैं और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं, तो किस तरीके से जो हमारे किसान या दर्शक हैं किस तरीके से वो उन्नत नस्लें ले सकते हैं?
1: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया
0: जी,
1: कि हमारे जो क्षेत्र में जो किसान भाई हैं वो बकरियों की जो उन्नत नस्ल है, जो प्योर ब्रेड है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे
0: जी।
1: तो किसान भाई को जब भी व्यावसायिक बकरी पालन आरम्भ करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो शुद्ध नस्ल के जानवरों को ही रखें
0: जी।
1: अब जैसे कि अभी हम बर्बरी के बाड़े में हैं
0: जी, बिल्कुल,
1: तो अब ये बर्बरी नस्ल के कुछ लक्षणों के बारे में मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे कि ये जो है इसका जो कोट कलर है वो व्हाइट होता है, उस पे ब्राउन स्पॉट होते हैं
0: जी।
1: इसके जो कान हैं वो छोटे होते हैं और इरेक्ट होते हैं
0: जी।
1: आपने देखा हुआ कि हिरण की तरह
0: पहचान
1: से,
0: इसके हम कह सकते हैं
1: ये बर्बरी नस्ल की पहचान है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे जितनी भी बकरियों की नस्लें हैं
0: जी,
1: उनकी अलग अलग पहचान है
0: जी।
1: अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम बकरियों का चुनाव कैसे करें
0: जी,
1: जो प्रजनक बकरे हैं उनका कैसे चुनाव करें?
0: बिल्कुल,
1: तो एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बच्चा प्रजनक बकरी के रूप में चुन रहे हैं वो शुद्ध नस्ल का हो, यानी कि उसके जो माँ बाप हैं वो भी शुद्ध नस्ल के हों।
0: जी
1: दूसरी बात ये है कि उसकी जो बढ़वार है, जो विभिन्न उम्र के सोपान हैं, जैसे कि 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने पे, तो उसकी बढ़वार तेजी से होनी चाहिए और उसकी माँ के नीचे पर्याप्त दूध भी होना चाहिए। तो ऐसा नर प्रजनक बकरे के रूप में बहुत उपयुक्त रहेगा।
0: जी
1: और हम आमतौर पर 10 या 12 महीने की उम्र में ऐसे नर का चुनाव कर लेते हैं।
0: जी
1: उसके बाद हम देखते हैं कि ये बकरियों पे माउंट करता है, उन्हें कवर करता है कि नहीं। अगर ये बकरियों पे माउंट करता है, उनको गर्भाधित करा देता है, तो ऐसा बकरा उत्तम रहता है।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर मनोज, लेकिन इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे, जो ऐसा कि आपने बताया जो बकरा है, लेकिन क्या कुछ उम्र जो होती है वो होती है कि उसके बाद ही उसका चयन आप लोग करते हैं? और एक अगर देखा जाता है कि जिसका बकरे का चयन कर रहे हैं, एक एक एक समय जो है वो निर्धारित होता है कि इतनी उम्र के बाद उसका चयन किया जाएगा?
1: देखिए, ये जो बकरियों में जो उम्र है तो ये उनके आकार पर भी निर्भर करती है। जैसे कि जो बड़े आकार की बकरियां हैं उनमें प्रजनक बकरों को 2 उम्र का होने पर उपयोग में लाना चाहिए, जैसे कि जमुनापारी, सिरोही, झकराना। लेकिन चूंकि ये बर्बरी मध्यम आकार की है, तो जब प्रजनक बकरे की उम्र 1.5 वर्ष हो जाए तब उसे हमें उपयोग में लेना आरंभ करना चाहिए।
0: जी
1: और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक बकरे से एक दिन में 2 या 3 बकरियों को ही गर्भित कराएं। अगर हम एक दिन में ज्यादा बकरियों को गर्भित कराएंगे तो उनके गर्भाधारण करने की संभावना कम रहेगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा कि लगातार आप हमें सावधानियां जो हैं वो आपने बताई, लेकिन प्रजनन के समय भी कुछ तरह की जो सावधानियां हैं वो रखनी होगी, क्योंकि रोग की संभावना रहती है अगर बकरा और बकरी संपर्क में आते हैं।
1: देखिए, जो बकरे से जो प्रमुख बीमारी है जो बकरियों में फैलती है, जिसके द्वारा बहुत ज्यादा एबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, वो है ब्रुसोलेसिस।
0: जी
1: तो इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि हम प्रतिवर्ष बकरे की स्क्रीनिंग कराएं, उसका जो रक्त है उसको लेके जांच करवाएं, क्योंकि अगर कोई बकरा ब्रुसोलेसिस बीमारी से पीड़ित पाया जाता है तो उसे हमें कदापि प्रजनन में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। दूसरी सावधानी हमें यह भी रखनी है कि एक बकरे से एक रेवड़ में केवल उसे 1 से 1.5 वर्ष तक ही उपयोग में लाया जाए, क्योंकि इससे जो बच्चियां पैदा होती हैं वो पुनः जवान हो जाती हैं।
0: जी
1: तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें अंतर प्रजनन से बचाव के लिए इस तरह से मेटिंग प्लान बनाना होगा कि उसकी जो बच्चियां हैं या उसकी जो माँ हैं वो इस बकरे के द्वारा गर्भाधित न हों।
0: जी
1: दूसरा हमें यह भी सावधानी रखनी होगी कि उस बकरे का जो बच्चा पैदा होता है, नर पैदा होता है, वह भी हम उसी रेवड़ में न इस्तेमाल करें। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूंगा कि वो प्रत्येक 1 से 1.5 वर्ष के बाद अपने नर को बदल दें।
0: जी
1: और जो दूसरा प्रजनक बकरा है वो दूसरे किसी किसान भाई के यहाँ से लेके आए।
0: जी
1: इसकी सुगमता के लिए वो ये भी कर सकते हैं कि अपना नर, अपना जो प्रजनक बकरा है वो किसी दूसरे को दे दें और दूसरे का जो प्रजनक बकरा है उसे स्वयं इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अंतः प्रजनन की दर बहुत ज्यादा होने पर उनकी जो वृद्धि दर है, जो बढ़वार दर है, दूध देने की क्षमता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है।
0: बिल्कुल, इसलिए जरूरी यही कि जो तमाम सावधानियां हैं ये हमारे किसान भाइयों को रखनी होगी जो बकरी पालन कर रहे हैं और जो बकरी पालन करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्नत बकरी पालन से जुड़े कुछ और भी पहलू हैं वो भी जानते हैं। आइए हमारे साथ। डॉक्टर मनोज, आपसे हम ये और जानना चाहेंगे, क्योंकि अब बेड़े में हमें यहाँ पर शेड में हम देख पा रहे हैं तमाम जो बकरियां हैं वो यहाँ मौजूद है, लेकिन किस तरीके से यहाँ संस्थान में हमने देखा अलग अलग जो शेड हैं वो बनाई गई हैं, क्या किस वजह से क्या जरूरत पड़ती है अलग अलग शेड्स की?
1: दरअसल ये जो उन्नत बकरी पालन है इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो नर और मादा हैं उनको 3 माह के बाद अलग अलग रखा जाए।
0: जी
1: दूसरा ये है कि फिर जो है जो 3 से 6 माह की, 6 से 12 माह की या उससे जो अधिक उम्र की जो बकरियां हैं उनको फिर से अलग अलग रखा जाता है।
0: जी
1: जैसे कि कोई बकरी गर्भवती है, दूध देने वाली है, उनको भी फिर अलग अलग रखते हैं।
0: बिल्कुल, और जिस शेड में अभी हम हैं कितनी उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं?
1: ये जो इस शेड में जो बकरी हैं ये आप देख रहे हैं ये सभी 6 से 9 माह की हैं।
0: जी
1: तो इस समय क्या है कि इनको एक अलग तरह का दाना, भूसा, चारा दिया जाता है।
0: जी
1: और जब ये बकरी 10 माह की हो जाएंगी
0: जी
1: फिर हम इनको गर्मी में आने पर गर्भाधित कराएंगे।
0: जी
1: अगर इनमें से कोई बकरी अभी गर्मी में आती है स्ट्रेस के स्ट्रेस हो करती है तो हम उसे गर्भाधान के लिए नहीं भेजते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर बकरी के ब्याने के समय उसका जो बच्चा है वो छोटा पैदा होगा
2: जी,
1: बकरी का स्वास्थ्य भी गिर जाएगा और आगे आने वाले ब्यात में उसका उत्पादन कम हो जाएगा
2: जी।
1: इसलिए हम ये तय करते हैं कि जैसे कि बर्बरी नस्ल है कि इसमें जब तक कि बकरी 10 माह की न हो जाए
2: एक औसत उम्र हम मान सकते हैं,
1: औसत उम्र जो है, और उसका जो वजन है वो भी 18 किलो होना चाहिए
2: जी,
1: उसके बाद ही हम बकरी को गर्भाधित कराते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, हम यहाँ देख भी रहे हैं जो बकरियां हैं तमाम वो आहार की आपने बात की थी, चारा प्रबंधन की, किस तरीके से एक विशेष आहार की जरूरत होती है, क्योंकि आपने कहा कि 6 से 9 माह हो चुके हैं इन बकरियों को, और उसके बाद 10 माह की जब बकरी हो जाती है तो वो गर्भ धारण कर सकती है, वहां भी एक अलग आहार की आवश्यकता पड़ती है।
1: देखिये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस समय खासतौर से जैसे बकरी के बच्चे हैं
2: जी,
1: तो जैसे कि जन्म लेने से 3 माह की उम्र तक उनकी जो बढ़वार दर है वो सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि बर्बरी नस्ल में 80 से 100 ग्राम वजन प्रतिदिन बढ़ता है, तो छोटे बच्चे होते हैं उस समय तो हम उनको 50 से 100 ग्राम दाना देते हैं
2: जी,
1: लेकिन जब वो 3 से 6 माह या 6 से 12 माह के हो जाते हैं तो उनकी दाने की मात्रा बढ़ती जाती है
2: जी,
1: लेकिन चूंकि 12 महीने की उम्र पे ये बकरियां परिपक्व हो जाती हैं तो इनको केवल मेंटेनेंस राशन दिया जाता है
2: जी,
1: लेकिन इससे पहले जैसे कि 6 से 9 माह की ये है तो इनको जो दाना है वो इनकी बढ़वार के लिए दिया जाता है।
2: बिल्कुल,
1: तो जैसे कि बर्बरी नस्ल में हम 6 से 9 माह या 6 से 12 माह की उम्र में इनको 300 ग्राम दाना प्रतिदिन देते हैं, अगर ये बकरी जब 10 से 11 माह की हो जाती है और ये गर्भित हो जाती है तो इनकी एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज पे हम उनको 200-250 ग्राम दाना और बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बकरी है ये तकरीबन 8 से 9 माह की है
2: जी,
1: ठीक है ना, और इसका जो वजन है वो तकरीबन 16-18 किलो है।
2: बिल्कुल,
1: अब ये बकरी 1-2 माह के अंदर गर्भ धारण कराने के लिए तैयार है
2: जी,
1: और ये उसकी एकदम परफेक्ट एज है, परफेक्ट अवस्था है, इसका वजन निश्चित तौर पर 18 किलो से अधिक होगा
2: जी।
1: हाँ, तो अगर ऐसी बकरी को हम प्रथम बार गर्भाधित कराते हैं तो आगे चल के ये बहुत ज्यादा प्यांत देगी, अच्छा उत्पादन देगी, ज्यादा बच्चे देगी, ज्यादा दूध भी देगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जो वयस्क बकरियां हैं, जैसा कि हमने देखा अलग अलग उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं, लेकिन जो नवजात हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी कैसे देखभाल करनी है, हम चाहेंगे उनके पास भी हम चलें, उनके बेड़े में, उनके शेड में, और वहां हम जाने कि कैसे उनकी देखभाल आप कर सकते हैं जी।
3: क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने, पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार, हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श में, शुक्रवार शाम 7:30 पर।

0: बिल्कुल डॉक्टर सिंह, यहाँ जैसा कि हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है। और खासतौर से यहाँ अगर डॉक्टर सिंह बात की जाए, हरियाली भी हमें नजर आ रही है, कई तरह के जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं, तो ये सिर्फ छाया के लिए है, इनका कुछ अलग महत्व है?
1: देखिए, जो बकरियों के छोटे बच्चे हैं
0: जी,
1: उनका प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सेंसिटिव विषय है
0: जी।
1: क्योंकि बकरियों में अगर छोटे बच्चों की देख रेख अच्छे से न की जाए,
0: जी
1: उनकी सफाई का ध्यान न रखा जाए,
0: जी
1: उन्हें समय पर पानी न पिलाया जाए, तो वो कमजोर हो जाते हैं, फिर उनमें बीमारी भी तरह तरह की हो जाती हैं।
0: जी
1: तो छोटे बच्चे जहाँ पे हों वहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सफाई बहुत अच्छे से हो,
0: बिल्कुल
1: सफाई बहुत पर्याप्त हो, और उन्हें समय समय पर पीने का पानी और चारा भी मिलता रहे। जैसा कि आपने कहा कि ये जो वृक्ष आपने लगाए हुए हैं ये हरियाली के लिए हैं, ऐसा नहीं है, ये हरियाली के साथ साथ समुचित मात्रा में चारा भी उपलब्ध कराते हैं।
0: जी
1: और जो इन पेड़ों से जो चारा मिलता है वो हाई क्वालिटी का होता है, उच्च गुणवत्ता का होता है, इससे उनकी जो बढ़वार दर है वो बहुत ज्यादा होती है और उनमें बीमारियां भी कम होती हैं।
0: जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे नीम जो है उसकी पत्तियां यहाँ पर फिलहाल जो ये छोटे बच्चे हैं ये खा रहे हैं, और किस तरह की इनके लिए विशेष देखरेख की जरूरत होती है?
1: देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो या बकरियां की सभी अवस्थाओं में वो सभी तरह के चारों को खाती हैं।
0: जी
1: यहाँ आप देख रहे हैं कि नीम है, पीपल है, पाखर है, बरगद है, देसी बबूल है, सुबबूल है, मलबेरी है,
0: जी
1: तो बकरियां इन सबको बहुत चाव से खाती हैं। और मैं किसान भाइयों को एक जरूर कहना चाहता हूं
0: बिल्कुल
1: कि जहां कहीं पर उन्होंने अपने बकरी का बाड़ा बनाया हुआ है
0: जी,
1: कृपया आप इस मॉडल को फॉलो करें और वहां पर तरह तरह के वृक्ष लगवाएं, और जब भी चारे की कमी हो उनको चारा खिलाएं।
0: बिल्कुल, तो ये तमाम सावधानी हम कह सकते हैं हमारे जो किसान भाई हैं उनको रखनी होगी, तभी आप देखिए उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने बात की कि जो छोटे बच्चे उनका कैसे आप ख्याल रखेंगे, इससे ना सिर्फ जो पर्यावरण है वो हमारा अच्छा रहेगा, और एक संदेश भी जाता है कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप एक पेड़ के आप कई पेड़ आप जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपके जो बकरी पालन है, जो बच्चे हैं उनके आहार की बात है, और ये जरूरी है उनको सही आहार मिले, तभी उसके बाद अगर आप सोचते हैं उनको मुनाफा अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि रोजगार के अवसर यहाँ पे संभावनाएं जो है वो काफी है, वो तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा, और मुनाफा तभी होगा जब आप इनकी सेहत का ख्याल रखेंगे। और आज यहाँ पर हम पहुंचे थे मखदूम में, जैसा कि हमने आपको बताया डॉक्टर सिंह जो लगातार हमें जानकारी दे रहे थे, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए, यहाँ से लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से जानकारी लेकर जाते हैं। उसके बाद एक बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर की भी अगर बात की जाए, यहाँ पर हमारे जो किसान हैं वो उन्नत बकरी पालन कर रहे हैं। एक यहाँ पर और भी जो किसान हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं जानकारी लेने के लिए, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं किस तरीके से वो उन्नत बकरी पालन कर रहे हैं और यहाँ इस संस्थान से कितनी जानकारी उन्हें मिली है जिसका फायदा वो अभी तक उठा चुके हैं।
1: केंद्रीय बकरी अनुसंधान से बकरा मुझे प्राप्त हुआ और मुझे बकरियां भी कुछ प्राप्त हुई और बाहर से कुछ मैंने बकरियां परचेज करी, जिसमें मुझे जो है उनसे प्रोडक्शन हुआ और कम टाइम में, कम समय में मुझे अच्छे जो है उनसे बच्चे और उन्नत नस्ल के बच्चे प्राप्त हुए।
2: हमने संस्थान से प्रशिक्षण लिया था अपना ये अक्टूबर 2014 में, और संस्थान का एक कार्यक्रम स्टार्टअप कार्यक्रम के अंतर्गत हमें कुछ ब्रीडिंग मेल और बकरियां मिली थी, जिससे कि नस्ल सुधार में हमने उनको यूज़ किया है। कुछ बकरियां हमने बाजार से भी ली हैं जो कि इतनी प्योर नहीं थी, और जो संस्थान से बक मिला हुआ था हमें प्योर नस्ल के जानवर, उसकी वजह से हमारे यहाँ अब बहुत सारे जानवर प्योर नस्ल के पैदा हो गए हैं और जिनसे हमें जो है काफ़ी मुनाफा हो रहा है।
3: यहाँ से सही नस्ल से हमें जो है फ़ायदा काफ़ी मिला, अच्छी नस्ल पैदा करने की वजह से बाज़ार में उसका रेट काफ़ी बढ़िया मिला और 10,000 से लेके 20,000 25,000 तक के हमने बकरे बाज़ार में सेल करे। एक औसतन करीब 18 से 20,000 रुपये हमें हर बकरे के मिल जाते हैं बाज़ार में।

0: केंद्रीय भक्ति अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए, यहाँ के निदेशक जो हैं मनमोहन सिंह चौहान जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनमोहन सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर संस्थान की हम बात करें, किस तरीके से लगातार जो संस्थान है ये काम कर रहा है?
1: देखो, ये हमारा जो है बकरी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो हमारे यहाँ है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हिंदुस्तान में जितने भी बकरियाँ हैं, जितने भी डिफरेंट ब्रीड्स की हमारे पास जो है जो बकरियाँ हैं, उन पर पहले खोज हो, उन पर हम ये करें कि किस ढंग से अच्छी जो है नस्ल को बढ़ावा दें, और जो नस्ल हमारे पास पैदा हो जाती हैं, जो होती हैं, उसको हम जो ये है कि फार्मर्स तक पहुंचाएं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो ये और भी है कि बकरियों में क्या होता है कि हर बकरी हर जगह नहीं हो सकती है, उपलब्धता नहीं होती। तो हमारा ये है कि कोई खास जो ब्रीड है, जो एक एक जगह, जैसे हमारा है कि जहां बरसात ज्यादा होती है वहां पर कोई ब्रीड होगी, जहां पर बरसात कम होती है वहां पर दूसरी ब्रीड होगी, जहां पर ऐसी है कि कोई जो है उसका जो टेम्परेचर अलग है वहां पर और कोई ब्रीड होगी। तो हमारा ये है कि कौन सी ब्रीड कहां पर फिट होगी, और इस ढंग से हम काम कर रहे हैं। हमारे संस्थान में डिफरेंट एरिया पर हमारे यहाँ हो रहा है काम।
0: बिल्कुल डॉक्टर चौहान, जैसा कि आपने बताया, जो तमाम नस्लें हैं वो इस संस्थान में है, और इसी की जानकारी जो है वो आप लगातार किसानों को भी देते हैं। लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया है, कैसे जो किसान है वो नस्लों के बारे में जाने, यहाँ पहुंचे और इसकी जानकारी ले सकते हैं?
1: हमारे यहाँ क्या होता है कि हम हर साल जो है 4 या 5 हम मतलब किसानों के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं। यहाँ पर किसान आते हैं, हम उनका रखरखाव का ध्यान रखते हैं, 10 से 12 दिन वो हमारे साथ रहते हैं, और उनको जो भी हमारे पास जो ब्रीड है, जो हमारे पास जमुनापारी है, बरबरी है, या जखराना है, उसके बारे में हम ब्रीड के बारे में उनको डिटेल में नॉलेज देते हैं कि कैसे उनका रखरखाव होता है, कौन कौन सी वैक्सीन उनको होगी, कैसे उनके दवाइयों का वो होता है, ताकि जो है वो सारा सीख कर जाते हैं। जब किसान वापस जाते हैं तो उसके बाद में वो अपने यहाँ देखते हुए हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमें इस ब्रीड का ये बकरी चाहिए या ये बकरा चाहिए, तो हमारे पास एक थोड़ा सा गाइडलाइंस है कि किस हिसाब से हमें उनको देना है, और हम किसानों तक वो अपने यहाँ की जो नस्ल है उनको पहुंचाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ साथ हम ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर वो ठीक ढंग से रख रखाव करें, तो उसको डिटेल में हम ये कूद देते हैं कि ताकि आप ये जो आपने जो ब्रीड ले गए हैं इसका रख रखाव कैसे हो सके। अगर उससे हम फोन नंबर ले लेते हैं, उससे फोन पर पूछते हैं कि तुम्हारा ठीक ठाक से हो रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, ताकि हम यहाँ से अपने वैज्ञानिक को
0: समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर चौहान, अगर बात की जाए बकरियों की, तो गरीब की गाय कहा जाता है उसको, लेकिन अब इतने फायदे नजर आते हैं इस गाय के भी, क्योंकि प्रसंस्करण जो है वो काफी ज्यादा हम देखते हैं कि चलन में आ गया, और इसका काफी फायदा जो है वो किसानों को होता है, तो क्या प्रसंस्करण की भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है?
1: देखो, अगर हम इसकी बात करें गरीब की गाय का, तो जो दूध इसका है, दूध में मुख्य गुण कुछ ऐसे हैं जो गाय और भैंस के दूध में नहीं है।
0: जी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे बायोपेप्टाइड्स हैं जो गाय और भैंस में नहीं होते हैं, और इनका काम क्या होता है ये दूध का, कि अगर हम हमारे मानना है कि अगर इसका दूध को पिया जाए तो उससे क्या होगा कि जो भी उसके जो एक तो हजम आराम से हो जाता है, ये कहा गया है कि इसका दूध कहीं ना कहीं आदमी के दूध के बराबर मिलता जुलता है। तो इसका मतलब है कि जो विटामिन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं इसमें इस ढंग से है, ताकि वो बच्चे के लिए भी हो या बड़े के लिए भी ढंग से इस्तेमाल हो सके।
0: जी,
1: और इसमें एक और है कि इसका जो फैट होता है, फैट का साइज जो है वो छोटा होता है, तो जिसको फैट को हजम करने की दिक्कत होती है उसका आराम से हजम हो जाता है। इसके अलावा हमारे इसके दूध में ये पाया गया है कि कुछ ऐसे वो होते हैं कि जो हमारा रोगी के जो रोग के वो होती है, जिसको इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी को कहते हैं कि इनहांस करता है, बढ़ाता है,
0: बिल्कुल उसको बढ़ा सकता है।
1: हाँ, बढ़ा सकता है। तो इसकी वजह से हमारा जो है इस दूध को ही माना गया है कि ये अच्छा है।
0: साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक है, यानी हमारे जो किसान है, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो उन्नत बकरी पालन की ओर आगे बढ़े?
1: देखो, अब सबसे पहले जो भी होता था बकरी पालन, उसमें क्या होता था कि जो बकरी ले गए वो अपने हिसाब से पालते रहते थे। अब हम ये कहते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ से जो शिक्षा है हम दें, हम कई बार ये है कि अपने पंपलेट हैं हमारे यहाँ से छोटी छोटी किताबें हैं जो हिंदी में हमने की हैं, संस्थान से हम डिफरेंट जगह पर दूसरे पार्ट में भेजते हैं। हमारे यहाँ एक ऑल इंडिया जो है कुछ वो है प्रोग्राम है, जिसमें हम की सारे जगह जहाँ जहाँ पर जो भी फार्मर्स हैं, जो भी वहाँ पर है, KBK है, किसी जो है विज्ञान केंद्र है, वहां तक हम पहुंचाते हैं, और ताकि वहां पर फार्मर्स आकर वैज्ञानिक जो ढंग से अगर इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको वो करते हैं, तो इससे एक तो ये है कि कम से कम उसमें कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लें, और दूसरा ये है कि उनको नुकसान ना हो।
0: बिल्कुल देखिए, जो किसान है वो अच्छे से और ज्यादा अच्छे से ना सिर्फ एक आजीविका के रूप में बकरी पालन कर सकते हैं बल्कि पूरे परिवार का उससे भरण पोषण भी कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: साथ ही हमारे दर्शक जो है वो और अच्छे तरीके से अब समझ पाए होंगे कि अगर वो उन्नत तरीके से बकरी पालन करते हैं और उसके साथ साथ देखिए जो वैज्ञानिक पहलू हैं उनका भी आपको ख्याल रखना होगा, तभी एक उन्नत ढंग से आप बकरी पालन कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कार्यक्रम में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

पपीता खाने के जबरदस्त फायदे। पपीता स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसका सेवन न सिर्फ पाचन तंत्र को मजबूती देता है बल्कि ये मोटापे को कम करने में भी सहायक है। हर रोज पपीता खाने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं इसके सेवन के फायदों के बारे में। पेट की बीमारी के इलाज में है पपीता लाभकारी। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो रोजाना पपीते का सेवन करें, इससे पेट साफ होगा। आंखों की रोशनी बढ़ाने में पपीता लाभकारी। पपीते में विटामिन सी तो भरपूर होता ही है, साथ ही विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ ही बढ़ती उम्र से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में भी कारगर है। हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज में पपीता लाभकारी। पपीते में फाइबर, पोटेशियम और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसलिए आपको रोजाना पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। पपीते का सेवन गठिया की बीमारी में भी फायदेमंद है। दरअसल इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, जो गठिया के कारण होने वाले दर्द को दूर करने में मदद करता है। एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग नियमित रूप से पपीते जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, उन्हें गठिया होने की संभावना ज्यादा होती है। मोटापे को कम करने में भी सहायक। एक मध्यम आकार के पपीते में 120 कैलोरी होती हैं। ऐसे में अगर आप वजन घटाने की बात सोच रहे हैं तो अपनी डाइट में पपीते को जरूर शामिल करें। इसमें मौजूद फाइबर्स वजन घटाने में मददगार होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में पपीता फायदेमंद। पपीते में उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, साथ ही ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। अपने इन्हीं गुणों के चलते ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफी असरदार है। इसी तरह से पपीते के सेवन करने से और भी अनेक फायदे हो सकते हैं, जैसे डेंगू बुखार को ठीक करने में कारगर, लीवर को रखे स्वस्थ, इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार, त्वचा के लिए फायदेमंद और बालों के लिए भी फायदेमंद।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंशु सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। ये वो किसान हैं जो कि कृषि स्टार्टअप, पशुपालन या फिर खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। आज के हमारे ऐसे ही सफल किसान हैं पवन कुमार कुशवाहा, जो कि वैसे तो विदेश में यानी ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी खासी नौकरी करते थे, लेकिन उनका मन था स्वदेश में और इसीलिए वापस वो भारत लौटे और कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में उन्होंने अपना हाथ आजमाया। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें काफी नुकसान भी झेलना पड़ा और यहाँ उनका मार्गदर्शन किया कृषि वैज्ञानिकों ने और उन्हें बताया कि कैसे वर्मी कंपोस्ट को अपनाकर वो इस राह में सफलता हासिल कर सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। पवन कुमार कुशवाहा ने इन वैज्ञानिकों की सलाह पर काम किया, आगे बढ़े और आज बन गए हैं हमारे आज के सफल किसान।
1: उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 65% भाग कृषि पर निर्भर है। इसी राज्य से हमारे सफल किसान पवन कुमार कुशवाहा भी आते हैं। कुशीनगर जिला मुख्य रूप से ऐतिहासिक स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। बात करें खेती किसानी की तो यहाँ की मुख्य फसल गेहूं, धान, गन्ना आदि है। कुशीनगर के रहने वाले पवन कुमार कुशवाहा भी इन दिनों खेती किसानी में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। कैसे, तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी।
2: मैं एक इंटरनेशनल जॉब जो मैं ऑस्ट्रेलिया में करता था, तो वहाँ से प्रेरणा मिली कि जॉब के अलावा भी जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, जो अपनी भविष्य की प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग गांव में भी कुछ व्यवस्था डेवलप किया जाए, कुछ फैसिलिटी डेवलप की जाए। तो उसी सोच के तहत मैंने गांव में गौशाला का शुरुआत किया। गौशाला जो जो आगे बढ़ा, चूँकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि चूँकि शहर से दूर हम लोग काम कर रहे हैं, तो किसी वजह से मार्केट जो गौशाले का जो होना चाहिए दूध का जो डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रॉपर हो नहीं पाया, जिसके वजह से मेरा जो बिजनेस था गौशाला वाला थोड़ा सा नुकसान में रहा। तभी उस समय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमको कुछ सहयोग मिला और जो गाय के गोबर से जो पैसे का इनकम किया सकता है, तो कुछ टेक्नोलॉजी कि गाय के गोबर का उपयोग कैसे किया जाए, स्पेशली बायोगैस में और उसका जो वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है उसमें, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं उनके माध्यम से मुझे ये तरीका या टेक्नोलॉजी मिली, उन लोगों ने सिखाया और फिर मैंने वर्मी कंपोस्टिंग और बायोगैस का यूज गाय के गोबर से कैसे किया जाता है उसको शुरुआत किया।
1: पवन कुमार का प्रयास है कि खेती किसानी के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं इनके फार्म में ही उपलब्ध हों। इसी सोच के साथ पवन जी ने शुरुआती दौर में एक छोटे से गौशाला का निर्माण किया। अभी पवन अपने फार्म में गाय, बकरी, मुर्गी एवं मछली का पालन करते हैं। पवन ने कृषि विज्ञान केंद्र से परामर्श लेकर एक छोटी सी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर नई शुरुआत की। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इन्हें बाहर से रॉ मटेरियल लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पशुओं के अवशेषों को प्रयोग में लेकर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। इससे इन्हें काफी फायदा होता है, लेकिन एक सवाल मन में ये भी आता है वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग को लेकर। तो चलिए मार्केटिंग के बारे में जानते हैं हमारे सफल किसान पवन जी से ही।
2: 2012 में मैं वर्मी कंपोस्टिंग किया, धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो मार्केटिंग भी हुआ, क्योंकि जागरूक जो किसानों को करना होता है, उनके साइंटिस्ट जो भी हैं उनके माध्यम से किसान लोगों को जागरूकता मिलती है कि कम से कम अपने वर्मी कंपोस्ट का खेतों में उपयोग करके जो जैविकता है खेती बाड़ी का वो बढ़ाया जाए। तो जो जो समय बढ़ता रहा वैसे वैसे मेरा मार्केटिंग भी डेवलप करता रहा, मैं प्रोडक्शन भी होता रहा। शुरुआत में गाय के गोबर से रहा, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन की डिमांड ज्यादा आती गई तो मेरे लिए चैलेंज था कि भाई उतना गाय उतना मेरे पास गोबर का प्रोडक्शन था नहीं, तो फिर कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट लोगों के माध्यम से जो फसल अवशेष के माध्यम से कैसे वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है, फिर उसकी टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई, फिर उसके बाद से जो भी अन्य पशुओं के जो अवशेष हैं जैसे बकरी की मैगनी या मुर्गी का जो वेस्ट होता है, मलमूत्र होता है, उसके माध्यम से कैसे वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी मुझे प्राप्त हुई, उन लोगों के माध्यम से सीखा मैंने। और आज मेरा वर्मी कंपोस्टिंग का जो रॉ मटेरियल है वो गाय का गोबर भी है, बकरी का जो मैगनी है वो भी है, मुर्गी का खाद भी है, पुआल भी है, भूसा भी है, जो कुछ भी मतलब नेचुरली हमारे पास उपलब्ध है सबका मैं वर्मी कंपोस्टिंग करता हूँ और सक्सेसफुली उसका मार्केटिंग भी करता हूँ। हमारे से लगभग कुशीनगर और आसपास के जितने भी जिले हैं उस सारे जो किसान हैं जो जुड़े हुए हैं, लगभग मोर देन 1000 किसान मेरे पास जुड़े हुए हैं जो वर्मी कंपोस्टिंग का जो उपयोग कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद लेके अपने जमीन की जैविकता बढ़ा रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं और एक इकोनॉमिकल तरीके से खेती कर रहे हैं।
1: वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी प्रणाली है जिसे खेती किसानी के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। जैविक खाद मूल रूप से एक व्यवस्थित कीट पोषण प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के भीतर विद्यमान अन्य जैविक पदार्थों का अवशोषण कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। जैविक खाद विधि से बहुत कम समय में सामान्य तापक्रम के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जा सकती है जिसमें केचुओं की समुचित प्रजातियों का उपयोग होता है। इसमें केचुओं की आंतों में विद्यमान सेलुलाज तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर निगले हुए जैविक पदार्थों का बड़ी तेजी से विघटन करते हैं। ये केचुए अपनी पाचन क्रिया और जैव पदार्थों के संयुक्त मिश्रण के प्रभाव से एक अपशिष्ट पदार्थ बाहर छोड़ते हैं जिसे वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। किसान पवन का मानना है कि अगर सही रख रखाव के साथ केचुए को रखा जाए तो वर्मी कंपोस्ट के लिए फायदा होता है। इस बारे में पवन क्या बताते हैं सुनिए।
2: बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि ये केचुआ कितना हेल्दी है और यही मौसम है जिसमें केचुआ प्रजनन करके अपने बच्चे पैदा करते हैं, इनको जाड़ा बड़ा पसंद है। तो जैसे ही जाड़े का मौसम बीतता है उसके बाद से ये लोग अपना प्रजनन करके अपने अंडे का उत्पादन करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो अंडा है ये अंडा लगभग मैच्योर होने की स्थिति में है और इस अंडे में से 5 से 7 बहुत पतले पतले केचुए निकलेंगे और फिर उसके बाद से धीरे धीरे खाना खा के अपने आप को डेवलप करेंगे। तो इनकी जो जनरेशन होती है, पैदावार होती है, वो तो बहुत शानदार होती है। और लेकिन चूंकि यही एक बहुत नाजुक होते हैं, ये तो जल्दी मरते भी हैं दूसरे कारणों से, लेकिन यह है कि अगर उचित रख रखाव किया जाए, उचित इन लोगों का माहौल दिया जाए तो केचुए की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है और बहुत शानदार उत्पादन करते हैं ये केचुए, खाद भी बनाते हैं, खुद भी डेवलप करते हैं ये।
1: केचुआ बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने वाले होते हैं, वे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का अक्षरण करते हैं और उसका कुछ भाग अपशिष्ट पदार्थ या वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में बाहर छोड़ते हैं। पोषक तत्वों से युक्त वर्मी कास्टिंग पौधों के लिए एक पौष्टिक खाद है। यह कृमि खाद पोषक तत्वों की आपूर्ति एवं पौधों में हार्मोन्स को बढ़ाने के अलावा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाता है जिससे मिट्टी द्वारा पानी और पोषक तत्व धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है।
0: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद के बारे में और विस्तृत जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते हैं सफल किसान।
3: खो गया इंतजाम।
4: किसका? गुड्डी की फीस का।
3: दिखा।
4: 20,000 का लोन तुरंत?
3: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
4: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर।
3: हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आप तक कहानी पहुंचा रहे हैं पवन कुमार कुशवाहा की, यानी उनकी सफलता की कहानी। कैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नौकरी छोड़ी और भारत लौटे और यहां पर अब वो वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं पवन कुमार कुशवाहा का और जानते हैं वर्मी कंपोस्ट के तमाम पहलुओं के बारे में।
1: वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक उत्पादन प्रक्रिया है जो कीटाणुओं के सहयोग से जैविक अपशिष्टों को कंपोस्ट बनाने का काम करती है। यह एक पर्यावरण सौहार्दपूर्ण प्रक्रिया है जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पवन कुमार कुशवाहा ने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जो सिर्फ पवन को ही नहीं बल्कि आसपास के किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। सफल किसान पवन का मानना है कि मिट्टी की सेहत के लिए रासायनिक खाद को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता काफी अच्छी होगी और फसल भी अच्छी होगी। इनका मानना है कि मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए केचुआ काफी उपयोगी है। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं।
2: इतने सालों से मैं ये वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा हूँ, धरती माँ की सेवा कर रहा हूँ। जो मुझे अनुभव मिला है उस अनुभव के आधार पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना है तो सबसे बढ़िया जो साधन है वो ये केचुआ है। इससे बेहतर कोई संसाधन नहीं है केचुआ के अलावा जो मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार सके। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। इसलिए कम से कम इस केचुआ के महत्व को पहचाना जाए। हम ये कहते हैं कि केचुआ गाय का पूरक है। अगर गाय जमीन के ऊपर भगवान के रूप में है तो जमीन के नीचे ये केचुआ भगवान के रूप में है। अगर केचुआ जब तक जिंदा है तब तक धरती माँ स्वस्थ है और हम लोग को स्वस्थ रखने के लिए जो भी अनाज आएगा, जो भी वहां से उत्पादन आएगा, हम लोग खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे।
1: अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन रासायनिक खाद से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। यह सामान्य तौर पर होने वाली खेती से अलग है और इसमें जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग तब और आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ किसान खेती करते हैं। हमारे सफल किसान पवन का मानना है कि अगर किसान वर्म फार्मिंग पर ध्यान दें तो इससे मिट्टी की सेहत में सुधार के साथ किसान की आय में भी वृद्धि होगी।
2: तो अमेरिका जैसे कंट्री में जो लोग थोड़ा जागरूक हैं तो वो लोग वर्म फार्मिंग करते हैं और वही वर्म्स जाके मिट्टी में डालते हैं और लगातार, क्योंकि मिट्टी में भी इनका प्रोडक्शन होता रहता है, तो 3 से 4 साल में 5 साल में जो मिट्टी जो बीमार हो चुकी होती है ना, बंजर हो चुकी होती है, वो दोबारा का उसमें जीवन आ जाता है, जान आ जाता है और दोबारा सजीव हो जाती है। और जब मिट्टी सजीव हो गई तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो वातावरण का जो पेड़ पौधा है, जो इकोसिस्टम है, वो खुद ब खुद अपने आप सुचारू रूप से अपने नेचुरल वे में काम करने लगता है और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है डेवलप हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए वर्म फार्मिंग भी एक कंसेप्ट है जो अपने भारत में लोगों को जानना चाहिए, करना चाहिए।
1: पवन कुमार कुशवाहा अपने गांव में ही पशुपालन के साथ साथ खेती भी कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगाए हुए हैं। इनका मानना है कि गांव में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ साथ गांव का भी विकास होगा। पवन के पशुपालन करने की मुख्य वजह है कि ये पशुओं के अपशिष्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। पवन ने अपने फार्म में वर्मीवास, गोबर और गोमूत्र को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग टैंक लगाए हैं। पवन जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गोमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकम्पोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती।
2: अपने खेती बाड़ी सिस्टम में हम लोग कहते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करना चाहिए एज ए टॉनिक। तो लिक्विड फर्टिलाइजर चूंकि एक तो रासायनिक भी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन है क्या कि गांव का जो इकोसिस्टम है, गांव का जो परिवेश है, उसमें चूंकि गांव के लोग गांव के ही अगर हेल्प करेंगे तो कुछ गांव के लोगों का विकास होगा। तो हम चूंकि गांव में ही रह के ये जो पशुपालन है, चाहे ये जो खाद का जो काम है, वर्मी कंपोस्टिंग है, मैं वो कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास जितने भी पशु हैं, तो पशु का जितना भी अवशेष है, चाहे वो मल के रूप में हो चाहे मूत्र के रूप में हो, मैं उसका उपयोग जीवामृत बनाने में चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने में कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे पास वर्मी वास आ रहा है वो यहाँ पे टैंक में इकट्ठा हो रहा है, जो गौमूत्र आ रहा है वो बगल के टैंक में इकट्ठा हो रहा है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जैसे कि वर्मी वास गौमूत्र से हम जीवामृत डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि इसमें जो गुड़ बनाने का जो अवशेष होता है, जैसे बदर मैया हम लोग अपने भोजपुरी में बोलते हैं, वो है, बेसन है, इसमें प्याज का रस है, इसमें डिकम्पोजर भी डाले हैं, उसमें नीम का भी पत्ता डाले हैं, उसमें प्याज मिर्चा भी है, लहसुन भी है, जो सुरती का डंटल होता है वो डाले हैं। मतलब जो भी इजिली उपलब्ध है अपने गाँव समाज में, जो अपने बाग बगीचे में, सबका उपयोग करके जो जीवामृत बनाया गया है, जो अपने फसलों के जड़ों पे भी दिया जाता है, और साथ में किसी किसान को अगर स्प्रे करना हो तो 1 लीटर में 5 लीटर पानी मिला के वो अपने फूल पत्ती पे चाहे पेड़ पौधे पे स्प्रे करे, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। मतलब कि कुल मिला के ये पौधे का अमृत है, इसलिए इसको हम लोग अपने भाषा में जीवामृत बोलते हैं। तो हम लोग सब डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, और इजिली किसानों के लिए बहुत ही उचित दाम पे उपलब्ध है अपने किसानों के लिए, गाँव समाज के लिए।
7: अगर वर्मी कल्चर को पूर्ण रूप से अपनाया जाए तो खेती के लिए काफी मददगार साबित होगा। वर्मी कल्चर में पौधे और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने का एक लाभकारी तरीका है। वर्मी कल्चर मुख्य रूप से कीड़ों के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि उनकी आबादी बढ़ाई जा सके। फिर फसलों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है।
0: इसी के साथ ही सफल किसान में हर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे पवन कुमार कुशवाहा ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को भी अपनाया है। जानेंगे इसके बारे में भी छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं पवन कुमार के फार्म का, जहां पर वो एकीकृत कृषि प्रणाली को भी अपनाते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी विधि, एक ऐसा तरीका है कृषि का जिसमें तमाम घटकों को साथ लेकर हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। कैसे की जाती है एकीकृत कृषि और कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग से पवन कुमार कुशवाहा को लाभ हो रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से।
1: एकीकृत कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इसमें दो या इससे अधिक उद्यमों का एकीकरण शामिल होता है। इसमें किसान की अधिकतम जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि, कृषि अपशिष्टों का कुशल पुनर्चक्रण, संसाधनों का बेहतर उपयोग और रोजगार पैदा होते हैं। इसमें जोखिम कम होने के साथ स्थिरता भी सुनिश्चित होती है। एकीकृत कृषि प्रणाली का उद्देश्य संबंधित उद्यमों के साथ फसलों की गहनता और विविधीकरण के आधार पर प्रति क्षेत्र प्रति समय उपज को अधिकतम करना है। इसके अलावा यह पोषक तत्व पुनर्चक्रण सुनिश्चित करती है। तालाबों में मछलियों के साथ बत्तख या मुर्गी पालन के अलावा तालाबों के किनारे या तालाबों के ऊपर में पशुओं द्वारा तालाब का निरंतर जैविक निषेचन किया जाता है। इस प्रकार पशु और चारा अपशिष्ट के लाभदायक उपयोग से पशुधन, कृषि और मछली पालन की दक्षता बढ़ जाती है। ऐसे में किसान कई उद्यमों से एक साथ कम लागत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
2: जैसे आप देख रहे हैं, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें मुर्गा पालन और मछली पालन एक साथ करने का प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं कि पशुपालन में अगर एक का वेस्ट मटेरियल दूसरे के लिए अगर रॉ मटेरियल फीड के रूप में काम आ जाए तो आपका इफिशेंसी या जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे मुर्गा पालन प्लस मछली पालन एक साथ ये हो रहा है। जैसे कि नीचे पोखरा है, पॉन्ड है, और ऊपर हमारा कड़कनाथ मुर्गी फार्म है जिसमें जो साइज है उसमें 100-150 मुर्गियाँ आराम से रह लेती हैं। तो दिन में चूंकि हमारा जो ये मुर्गियां हैं बाहर चरती हैं, क्योंकि उनको नेचुरल फीड मिलता है, साथ में धूप की भी आवश्यकता पड़ती है मुर्गियों को, तो वहां पे जाके अपना धूप सेकते हैं, खाना खाती हैं, दिन भर बाहर रहती हैं। लेकिन जैसे होता है रात में वो अपने आप चली आती हैं और रात भर यही करती हैं। तो रात भर जो वो बीट करती हैं तो वो मुर्गियों मछलियों के लिए वो फीड का काम करता है। लेकिन इसमें एक समस्या ये रहती है कि अगर 5 से 6 दिन लगातार अगर पानी को चेंज न किया जाए तो पानी गंदा हो जाता है और मछली

0: भी कर सकते हैं। अपने साथ दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर आज पवन आसपास के लोगों को भी फायदा कर रहे हैं। पवन का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी नौकरी के पीछे भाग रही है, जबकि हम ठान ले तो नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं। पवन आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ संदेश दे रहे हैं, सुनिए।
1: मेरा एक जो खुद का अनुभव है मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं भी जॉब करता था, अभी ऑस्ट्रेलिया में जॉब किया, चाइना में जॉब किया। वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि नहीं कहते हैं कि भाई मन नहीं लगता था, जो मातृभूमि में अपना जो एक प्यार होता है ना, वो खींच के लाता ही लाता है वापस। तो मेरा जॉब करने के साथ प्रयास था कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जो आफ्टर जॉब मतलब रिटायरमेंट के समय में भी अपना कुछ रोजी रोटी के संसाधन डेवलप हो। तो उसी के सिलसिले में जॉब के साथ मैंने ये डेवलप किया, तो लगभग मेरा लगभग 15 साल का ये अनुभव है।
0: कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी लगातार किसानों के हित के लिए काम करते हैं। बात करें एकीकृत कृषि की तो इसे बढ़ावा देने के लिए अधिकारी किसानों को हमेशा जागरूक करते रहते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में रसायन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इस कृषि प्रणाली में मुर्गी पालन के अपशिष्टों को बत्तख और मछली को आहार के रूप में उपयोग दिया जाता है। गोबर का इस्तेमाल खाद के लिए किया जाता है और खेतों में पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा गोमूत्र और नीम के अर्क को खेत में कीटनाशक के रूप में छिड़का जा सकता है। अनाज और इसके भूसे का उपयोग मुर्गी एवं गाय के आहार तथा चावल के भूसे को गाय के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पोल्ट्री की बेडिंग सामग्री का उपयोग खाद में भी किया जा सकता है। तालाब में जलकुंभी की तरह जलीय खरपतवार का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में बेडिंग सामग्री के रूप में किया जा सकता है।
2: आज बढ़ती आबादी को देखते हुए रोजगार की संभावनाएं कम हो चुकी हैं और जो छोटी होती जा रही है, तो ऐसे में हम यही सलाह देना चाहेंगे कि किसान भाई जो एकीकृत कृषि है, एकीकृत कृषि को बढ़ावा दें। इसमें बहुत सारी फसलें हैं, तालाब है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है। इन सबको एक संग्रहित एरिया में, संरक्षित एरिया में, छोटे से एरिया में आप कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से रासायनिक खादों का, उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग खेतीबाड़ी में हो रहा है, इससे हमारी जो जमीन है वो इन रसायनों से के दुष्प्रभाव से दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है। इससे उत्पन्न होने वाले अनाज दूषित हो रहे हैं जिसको हम भोजन में ले रहे हैं, और इसको लेने से हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी शक्ति है, वो छीन होती जा रही है। तो अगर हम अपने खेतों में एकीकृत रूप से खेती करें, तो इसमें इंटीग्रेशन के रूप में अगर खेती करें, तो जिन खेतों में हम रसायनों का प्रयोग कर रहे थे वहाँ पर हम अपने जो एकीकृत खेती हमारी है, जहाँ पर कि हम पशुपालन भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, इनके खाद का जो इनका वेस्ट है इनको सड़ा गला करके अच्छे से खेतों में प्रयोग करेंगे, उस खेतों का जो प्रयोग करेंगे जिस खेत में, उसमें निश्चित ही तौर से जो रासायनिक उर्वरकों की डिमांड है वो कम हो जाएगी, उसमें रोग व्याधियां कम आएंगी और फसल का जो उत्पाद होगा वह बहुत ही अच्छा होगा, रसायन मुक्त होगा।
0: पवन कुमार कुशवाहा एकीकृत प्रणाली को संयमित तरीके से कर रहे हैं और इससे इन्हें काफी फायदा हो रहा है। इन्होंने केचुए के महत्व को समझा और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। अभी इनके साथ करीब 1000 किसान जुड़े हुए हैं। आसपास के किसान इनके फार्म में बने जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद की मार्केटिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी काफी मदद करते हैं। इनकी इस सफलता को देख आसपास के किसान इनसे प्रेरित होकर सलाह भी लेने आते हैं।
3: तो ये था हमारा आज का

सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि पवन कुमार कुशवाहा ने कैसे सफलता हासिल की। हालांकि वो विदेश में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वदेश को ही चुना और वो भी वर्मी कंपोस्ट का क्षेत्र। आशा करते हैं कि उनकी सफलता की कहानी से आपको भी जरूर प्रेरणा मिलेगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी हम कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए, तो आप हमें ईमेल करें, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। सफलता की कुछ ऐसे ही प्रेरणादायी कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।

0: स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका मातंगिनी हाजरा, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि देश के लिए मर मिटने की कोई उम्र नहीं होती। वर्ष 1932 में अपनी झोपड़ी के बाहर से निकलने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुलूस का शंखनाद से स्वागत करने वाली मातंगिनी 62 वर्ष की उम्र में आजादी के आंदोलन से जुड़ी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में इसकी कमान मातंगिनी हाजरा ने संभाली। मातंगिनी ने तामलुक में एक बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया और 29 सितंबर को 6000 लोगों के जुलूस के साथ मातंगिनी हाजरा तामलुक थाने की ओर चल पड़ी। ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी, लेकिन मातंगिनी हाथ में तिरंगा लिए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ बढ़ने लगी। अचानक एक गोली मातंगिनी के दाएं हाथ पर आ लगी। घायल मातंगिनी दूसरे हाथ में तिरंगा लिए फिर आगे बढ़ने लगी। गोलियां चलनी बंद नहीं हुई और लगातार तीसरी गोली 72 वर्ष की मातंगिनी हाजरा के माथे पर जा लगी। आखिरी सांस तक हाथ में तिरंगा और जुबां पर वंदे मातरम, यही थी मातंगिनी हाजरा। अद्भुत साहस, उत्साह और आजादी पाने के ललक से युवाओं को भी पीछे छोड़ने वाली मातंगिनी हाजरा पूरे देश के लिए एक मिसाल है।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: माय नेम इज प्रियंका चंदेलिया। बाय प्रोफेशनली मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैगजीन शूट्स करती हूँ ग्रह शोभा के, एंड रीड इंडिया से मैं कोर्स कर रही हूँ, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग ले रही हूँ, जहाँ मैं दीक्षा मैम से मिली हूँ। दीक्षा मैम बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, सिलेबस भी काफ़ी अच्छे से रीड करा रही हैं मैम, एंड प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे से समझा रही हैं मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एक्चुअली सर मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, शाहबाद मोहम्मदपुर विलेज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, एंड मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब पे है, एमसीडी डिपार्टमेंट में क्लर्क है। मैं मदर भी एमसीडी डिपार्टमेंट में ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर मुझे मॉडल बनना था बट मैं अभी उस लेवल तक जा नहीं पाई, बट मुझे लगा अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं मॉडलिंग लाइन में, बट मुझे इतना उसमें कुछ नहीं लग रहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग से कुछ सीख सकूं, अच्छा कर सकूं, बट यहाँ पे आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है, एंड दीक्षा मैम ने बताया है मुझे कैसे क्या होगा, और एक्चुअली मैं यहाँ पे आने के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई कर चुकी हूँ, पासवर्ड रेस्टोरेंट द्वारका सेक्टर 23, कुछ टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पे। एक्चुअली सर रीड इंडिया से मैंने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था, कुछ टाइम आई थी मैं यहाँ पे 4-5 ईयर्स से पहले, तब से ही मैं रीड इंडिया को जानती हूँ, एंड रीड इंडिया बहुत बेस्ट है। रीड इंडिया से सीखने को काफ़ी कुछ है, अगर हमें उस लायक बनना है तो हम किसी को, मैं बाहर जाके किसी को बता भी सकती हूँ रीड इंडिया से मुझे क्या क्या मिल रहा है एंड मुझे क्या क्या सिखाया जा रहा है। जॉब के अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एंड रीड इंडिया की जो कोर्सेज है वोकेशनल्स वगैरह के, वो बहुत बेस्ट है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
3: मैं पूनम तनवर, शाहबाद गांव में रहने वाली, दिल्ली में, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मुझे अपने पेरेंट्स पे इतना प्राउड है, उन्होंने मेरे लिए आज तक जो किया, सीरियसली उन्होंने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, और मैं अब उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, जो लोग बोले कि ये उनकी बेटी है। मैं अपनी पहचान अपने पेरेंट्स के साथ बनाना चाहती हूँ, उनके लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि लोग देख के बोले कि यहाँ इन्होंने के लिए कुछ किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने मेरा एडमिशन पूर्णिमा स्कूल, इशावाद गांव के पूर्णिमा स्कूल में कराया, वहाँ यहाँ पर मैं बचपन से पढ़ी फिफ्थ क्लास तक, फिर उन्हीं के साथ मैं हर काम, ऐसा एक काम नहीं था जो मैंने उनके बिना आज तक किया, हर चीज़ स्कूल भी, यहाँ तक कि स्कूल लेने जाना, मुझे छोड़ने जाना, मेरे स्कूल सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा मिल्क शेक भी वही बनाते थे, मतलब स्टडीज़ करना, अपने स्कूल से आके जो स्कूल में मैं पूरे दिन मस्ती करती थी, पढ़ाई करती थी, टीचर के साथ फ्रेंड्स के साथ हर बात आके उनसे शेयर करती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले अपने पा के पास जाके अपनी शेयर करती थी। आज भी अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। मुझे अपनी मम्मी से भी बहुत लगाव है, बट लेकिन पा से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने मतलब सारा दिन मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा रहती हूँ। मम्मी मतलब स्कूल में, स्कूल के लिए अगर ट्यूशन छोड़ाना है या फिर और कुछ कर देना, बट लेकिन मैं पा के साथ जो मैं करती हूँ, सीरियसली वो बेस्ट मोमेंट मेरे पापा के साथ जो है, बहुत अच्छे मोमेंट है। मैं अपने लाइफ टाइम अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम उनके लिए जितना करूँ, मैं जितना करूँ उतना ही कम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है। गर्ल पावर जो होती है, वुमेन पावर, वो एक सबसे बेस्ट पावर होती है। वो गॉड ही उनको पावर देके भेजता है। अगर गर्ल्स बनाई है, वुमेन बनाई, तो उनके लिए भी स्पेशल पावर भी उनको दी है। ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, बाहर जाके पढ़ नहीं सकती है, कॉलेज नहीं जा सकती, या फिर ये वाला काम उनके लिए नहीं बनाए। हर काम गर्ल्स के लिए बनाए। अगर भगवान ने गर्ल्स को, वुमेन्स को बनाया, तो उनके लिए भी हर काम बनाया, वो पावर उनके लिए उनको दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गाँव की लड़कियाँ ये नहीं कर सकती है, शहर की लड़कियाँ ये कर सकती है। हर काम लड़कियाँ कर सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ, रीड इंडिया सेंटर पे आके मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाए मैंने, टीचर्स के साथ बहुत मस्ती की। यहाँ पे आके मेरा कोई एम नहीं था कि मैं ये सीख के जाऊँगी, बस मस्ती के लिए आ गई थी। बट लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ सीखने को भी मिला, इतनी अच्छी टीचर्स मिली। उनके साथ जब मतलब वो डांटती भी है तो भी अच्छा लगता है। एक दिन बात ना करो तो टीचर भी परेशान हो जाती है, जिसको क्या हो गया। मतलब हर चीज़ यहाँ की, हर चीज़ अच्छी है।
4: आई एम प्रियंका जायसवाल, आई बिलोंग यूपी इलाहाबाद एंड लिविंग शाहबाद मोहम्मदपुर। मैं यहाँ पे दिल्ली में कोर्स करने के लिए आई, फैशन डिजाइनर कोर्स, एंड वहाँ पे यूपी में अप्लाई नहीं था जॉब, मतलब कोर्स करने के लिए। हमारे पापा यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं उसके उन्हीं के साथ रहती हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलाई इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने गाँव वाली लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती ना, मैं उनको घर के बाहर निकालने के लिए सिलाई सेंटर खोलना चाहती थी, और भी फ्री कोर्सेज के लिए। मैं इतना ही कहूँगी अपने हर लड़की माँ बाप को कि प्लीज़ उन्हें बाहर भेजें, कुछ करने के लिए उनको भेजें। अधिकतर यहाँ पे उसके हस्बैंड यही सोचते हैं कि ये बोझ है, तो ऐसे ना करें, उसे मतलब समझे कि ये बोझ है। कम से कम अगर वो कुछ करेगी बाहर जाके, तो कम से कम उसके घर में हेल्प ही होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। मेरी बचपन से यही हॉबी थी कि मैं पुलिस बनूँ, लेकिन मेरी लंबाई छोटी होने के कारण मैं पुलिस नहीं बन सकी, इसलिए मैं ऐसे ही अपने गांव में ही हेल्प करना चाहती हूँ छोटा मोटा। और मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, जो अभी तक नहीं मिली ना, शायद न मिल पाएगी कभी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी लाइफ अच्छे बनाने के लिए, कोर्स करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही अच्छा मौका है। अपने माँ बाप से कहें हमें घर से बाहर करने के लिए, कोर्सेज के लिए जारी रखें। दिल्ली में पहले हमारे पापा लोग रहते हैं, हम तो बचपन से गांव में थे, तो इंटर मतलब 12th क्लास पास होने के बाद हम दिल्ली आए। जब दिल्ली यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज थे, अच्छे अच्छे भी थे, तो इसलिए मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्सेज अप्लाई कर लिया।
5: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है, और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी, इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है, और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं, पर उसका जो आउटकम है जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं, और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीट इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: मेरा नाम प्रियंका है, मैं शाबान मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मेरा जन्म यही हुआ है। हम परिवार में 5 सदस्य हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और 3 बहन भाई। मेरा भाई 9th क्लास में है, बहन मेरी जॉब करती है, पापा टूरिज्म में है और मम्मी ने यहाँ से रीड इंडिया सेंटर से नर्सिंग का कोर्स किया था। आज वो जॉब कर रही है हॉस्पिटल में। मैंने 5 साल पहले रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, उसके बाद मैंने एनटीटी किया और आज मैं एज अ लाइब्रेरियन रीड इंडिया सेंटर में जॉब कर रही हूँ। मेरा जो एम था वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था। अब मैं रीड इंडिया सेंटर की मदद से यहाँ से कोर्स करने के बाद मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ काम करने के साथ साथ मैं अपने घर पे भी बहुत सारे काम करती हूँ। जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी घर पे निभाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ रीड इंडिया सेंटर के साथ निभाती हूँ। अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से करती हूँ। मेरे परिवार में सभी वर्किंग है, तो भाई की, छोटे भाई की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हूँ। मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ। उसके अलावा मैं उसकी स्टडी में हेल्प करती हूँ, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ और उसके अलावा उसकी सारी जिम्मेवारियां मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनके काम भी करती हूँ।
2: हेलो, मेरा नाम निशा सैनी है। मैं जब छोटी थी, 10 साल की थी और 6th क्लास में थी, तो मैं शुरू से ही यहीं पे आना शुरू किया है। एनजीओ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से पसंद रहा है मेरे लिए, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मैं ना पिछले 7 साल से आती रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब एनजीओ में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं कर लूँगी अगर कर सकी तो कर लूँगी, अगर जो मुझे इंटरेस्ट रहा जिस चीज़ में मैं वो करूँगी और एनजीओ में आऊँगी। शुरू से आती रहूँगी। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ा भी है, लेके भी गई हूँ घर, बहुत अच्छी बुक्स हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं, यहाँ के मैम वैम सब अच्छे हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब जो बॉयज़ होते हैं ना, पेरेंट्स ना सिर्फ बॉयज़ की ही मानते हैं, आजकल के ना बॉयज़ की बहुत डिमांड वगैरह है और गर्ल्स से जो कुछ कर दे, जैसे बॉयज़ के तरह जॉब करना चाहती हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स पता नहीं क्यों पीछे रोकते हैं, क्यों मना करना चाहते हैं। आखिर लड़की भी तो है, करके दिखा सकती है वो लड़की, जो लड़के काम कर सकते हैं ना वो करके दिखा सकते हैं। लड़की को सब लोग कमज़ोर पता नहीं क्यों समझते हैं आज के देश में, नहीं समझना चाहिए। और वो लड़की ताकतवर होती है, वो अच्छी भी होती हैं और वो समझ सकती हैं, वो पेरेंट्स को खुद अच्छे से कमा के खिला सकती है, जितने बॉयज़ कमा के नहीं खिला सकते। और बॉयज़ है ना बहुत मतलबी होते हैं, बड़े होते होते ना अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे बॉयज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बॉयज़ ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और ना ही गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना जानते। जो अच्छे से बात करते हैं पता नहीं कैसी नज़रों से देखते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। वो बॉयज़ है ना बहुत गंदे होते हैं, बॉयज़ की तरफ तो बहुत ही कमी, जितना होता है उतना ही तक बात रखें, फ्रेंड है तो फ्रेंड ही तक रहें, उससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बॉयज़ से ना एकदम जैसे आगे आगे अपना करियर करते हैं वैसे वैसे ना लोग नए नए मिलते हैं और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया। शादी हो जाती है तो उसके बाद अपनी वाइफ की ही सुनते हैं, पता नहीं क्यों सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया हमारे पेरेंट्स ही है, जो कुछ है उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे हमें बचपन से पेरेंट्स ने रखा हम उनकी तरह बड़े होके अच्छे से रखें। मैं एक महिला और लड़की के ऊपर एक कविता है मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि जींस पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं जो सूट पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं सब सारी जिंदगी जीऊं, पर पेरेंट्स ने मेरे को ये सब करने नहीं दिया। जो बॉयस होते हैं उन सबको आज़ादी दी। शादी होने के बाद ससुराल में गई, शादी होने के बाद मैं ससुराल में गई, सास ने बोला ये करो वो करो, लेकिन कुछ भी करने ना दिया। जो कुछ था सब उसके नाम का था, सिंदूर उसके नाम का, चूड़ी उसके नाम की, पायल उसके नाम का, साड़ी उसके नाम की, बिछिया उसके नाम का, नाम प्लेट भी उसके नाम का, नेम भी उसके नाम का, आखिर मेरा क्या है मेरे नाम का। थैंक यू।

0: पिछले 5 सेशन कैसे लगे सबको? मेरे को बताएं, कोई फीडबैक दें कि पिछले 5 सेशन कैसे लगे? किसी के कोई सुझाव, कोई सजेशन, कोई कुछ शेयर करना चाह रहे हैं?
1: जी मैं चंद्रप्रकाश बोल रहा
0: हाँ जी चंद्रकर जी।
1: हूँ। ये 5वां सेशन बहुत बढ़िया है मैम। और इसमें खास बात तो इसमें दो पॉइंट मुझे ज्यादा रहे। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, और एक चैलेंज। यदि जिम्मेदारी और चैलेंज दोनों है तो मैम अपने आप ही गुरु अपने आप आदमी कवर कर सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी,
1: हाँ
0: देखिए उसमें कोई भी एक थिन लाइन की भी वो नहीं आनी चाहिए कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, राइट?
1: हाँ
0: Right?
1: दूसरा
0: वो
1: चैलेंज
0: हर
1: है।
0: एक के लिए बहुत जरूरी है। वेरी गुड। चैलेंजेस तो अभी आज के सेशन में मैं यही बताऊंगी कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम चैलेंजेस को कैसे कम कर सकते हैं। वो खाली सोच है हमारी, उसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। और फिर भी अगर हम नहीं हैंडल कर पा रहे हैं और कोई ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं, और रीड कोई अकेला तो नहीं है, चंद्रप्रकाश जी अकेले तो है नहीं रीड में। रीड में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा उस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए। तो द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू कॉम्युनिकेट इफेक्टिवली, कि हमारी कॉम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, हम लोग शाई फील नहीं करें अपने चैलेंजेस को शेयर करने के लिए। ये फर्स्ट सेशन का थर्ड या फोर्थ स्लाइड है जिसमें मैंने कहा था कि हम आइसोलेशन में कुछ नहीं कर सकते हैं। जब मैंने वो स्टोरी सुनाई थी टी बैग वाली, तो हम आइसोलेशन में तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर आज कोई चैलेंज है राजस्थान में, तो शायद महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मे बी बिहार, और कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट है, किसी के पास तो कोई सोल्यूशन होगा, राइट?
1: बिल्कुल मैम।
0: हाँ, तो हमारा जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है ना, अभी एट प्रेजेंट हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने साइलोज में काम कर रहे हैं, हर सेंटर अपने साइलो में काम कर रहा है। और थोड़ा बड़ा है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम सारे लोग इकट्ठे जुड़ते हैं और हम बात करते हैं। और कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन, सी बहुत जरूरी है। हेल्दी का मतलब है कि हम इकट्ठे मिलके, यू कैन रियली, आई एम अमेज्ड कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितना कुछ हो रहा है। तो अगर हम इसी को अपनी एक स्ट्रेंथ माने, तो हम तो हर एक चैलेंज एड्रेस कर लेंगे, राइट? थैंक यू चंद्रप्रकाश जी, बहुत अच्छा है। इसका मतलब सब लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं इन सेशंस को, एंड आई एम सो हैप्पी कि सीरियस। और मैं भी बहुत सीरियसली काम करती हूँ, मुझे टाइम लगता है अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए, सोचने के लिए कि लिंक कैसे करना है। पिछली प्रेजेंटेशन में मैंने अभी जो 5 प्रेजेंटेशंस में मैं, और फिर मुझे लिंक करना पड़ता है कि मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन किस पे करूंगी, कि वो एक कड़ी बनी रहे, बीच में डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए कोई। तो एनीबॉडी एल्स,
2: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी
0: गुड आफ्टरनून फरा।
2: हैं मैम?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरा। अभी तो तुम तो बहुत अच्छी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आई हो, तुम तो मेरी जगह पे आके सेशन ले सकती हो।
2: नहीं
0: नहीं,
2: जी,
0: हाँ
2: अभी मुझे जो पूरे सेशन में ज्यादातर सबसे अच्छा टॉपिक लगा था वो पैशन आपका, कि हमें हर काम करने के लिए एक हमारे अंदर पैशन होने बहुत जरूरी है। जब भी
0: राइट,
2: अगर हमारे अंदर पैशन होगा तभी हम उस काम को आगे तक कर पाएंगे। पैशन नहीं होगा, जुनून नहीं होगा उस काम के प्रति, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहेंगे कि ये सब हो जाएगा,
0: बिल्कुल
2: नहीं हमें नहीं करना है। तो हमें उसके प्रति एक पैशन होना हमारे दिमाग के अंदर, हमारे अंदर बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। पैशन के साथ हंगर भी होना बहुत जरूरी है उस काम को करने के लिए। पैशन तो है, जुनून है, पर जुनून को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए वो भूख भी होनी चाहिए कि मैं कौन कौन से एक्शन को करूं जिससे मैं अपने मकाम पर पहुंच सकूं।
2: बहुत
0: बहुत
2: बढ़िया,
0: बढ़िया फरा।
2: थैंक यू
0: कोई
2: मैम।
0: एक सिंगल लर्निंग आप अपनी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में से शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड नहीं करी है। देखो, मैंने आप लोगों को स्पॉन्सर किया था, तो आप एक लर्निंग शेयर कर दो प्लीज।
2: यस मैम, मैंने उसमें सबसे जो अच्छा सीखा है, जो सबसे बढ़िया टॉपिक सीखा है कि खुद के लिए जानना कि खुद को किस तरीके से, हम कभी भी अपने लिए नहीं सोच पाते, हम हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं कि हम जैसे पेरेंट्स के लिए, भाई बहन के लिए, अदर किसी काम के लिए, लेकिन हम खुद को कभी नहीं जान पाते कि हमें खुद के लिए भी कोई एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज मैंने उसमें ये सीखी है कि हमें खुद के बारे में लिखना बहुत जरूरी है। जितना भी हम दिन भर में काम करते हैं उसको हम लिखें जरूर, चाहे वो कुछ भी काम हो, उसको हम अपना एक आदत बना लें लिखने का। जैसे हमारा खाने खाने का एक आदत है, चाय पीने की सुबह मॉर्निंग में एक आदत है, तो लिखने की भी हमें हमें अपने अंदर एक आदत बना लेनी चाहिए कि जो भी काम हम दिन भर में करते हैं उसको हमें लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और खुद को
0: बिल्कुल
2: जानना
0: बिल्कुल
2: बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। ये फरा, ये जो लीडरशिप के सेशंस हैं, ये हम खुद को ही तो एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, अंदर हमारे अंदर कितनी शक्ति है
2: यस मैम,
0: ना? हाँ, और ये शक्ति को जानने के लिए जब हम शक्तिशाली होंगे तो हम दूसरों को शक्तिशाली बनाएंगे ना। तो अगर हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर होगा, हमारी लर्निंग क्लियर होंगी, हमारा वे ऑफ वर्किंग क्लियर होगा, हम पैशनेबल होंगे काम करने के लिए, तो तभी हम दूसरों को भी एम्पावर कर पाएंगे, है ना। और लिखने की आदत तो बहुत अच्छी है, ये हमें लिखना भी चाहिए हमारी लर्निंग्स, ये मैंने कहीं पहले भी ये बोला हुआ है, और मैं खुद लिखती हूँ। मैंने ये बोला था, मुझे याद है कि अगर आप सब लोग लिखना शुरू कर दो तो कितनी सारी किताबें हम पब्लिश कर सकते हैं रीड की लाइब्रेरीज में रखने के लिए, जो नई जनरेशन आ रही है वो पढ़े कि आप लोगों ने काम कैसे किया, राइट। तो ये बहुत बहुत जरूरी है लिखना, जो हमने लिखना शुरू किया है आप लोग भी लिखिए, बिकॉज हर एक की कम्युनिटी फर्क है, हर एक के लोग फर्क है, हर एक का चैलेंज फर्क है। और अगर हम काम को देखें, चलो रीड मॉडल तो सबका कॉमन है, बट जो आप प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हैं, जो आप स्किल्स दे रहे हैं वो वेरी कर रहे हैं, है ना। जो आप चंदित बिकार जी वीविंग सिखा रहे हैं, सरा जरी सरदोजी सिखा रही है, कहीं और पे कुछ और चल रहा है, तो इसको प्लीज आप डॉक्यूमेंट करिए। ये एक आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो होगी, ये एक लर्निंग बाइबल होगा दूसरों के लिए जिन्होंने ये चीज करी नहीं है, है ना। और आपकी जनरेशन में अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी वो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेगी, समझेगी कि कैसे किया था, राइट।
2: यस मैम,
0: हाँ। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ, फिर बीच बीच में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सवा तीन,
2: थैंक यू मैम।
0: हाँ, तो हम आज तो हम स्टोरीज ही डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी स्टोरीज मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे आज। और मैं स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर रही हूँ। हाँ, पहली स्टोरी हम आज एक बात करते हैं कि एक गांव था, उसमें एक मॉन्स्टर रहता था। हिम्मत करके एक गांव का आदमी जाता है मॉन्स्टर को किल करने के लिए तलवार लेकर। तो मॉन्स्टर क्या करता है, उससे दुगनी बड़ी तलवार लेकर उसको मार देता है। बहुत लोग डर जाते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद, क्योंकि दिमाग में तो वो और वो बोलते हैं इस मॉन्स्टर को हम खत्म करते हैं और फिर हम मतलब कि अच्छे से रहें। तो दूसरा आदमी कहता है, अच्छा तलवार से तो मरा नहीं, मैं इसको जला के ही आ जाता हूँ। वो उसको जलाने जाता है तो मॉन्स्टर अपने मुंह से फायर बॉल्स निकालना शुरू कर देता है और उस आदमी को जला देता। अब जब ये दो इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो गांव वालों के पास जो सोच है, आप देखिए इस कहानी को अपनी सोच, अपनी एटीट्यूड, अपनी परसेप्शन से जोड़िए। अब वो गांव वाले बहुत ही घबराए हुए कि अब हम इस मॉन्स्टर को कैसे खत्म करें। तो एक दिन एक बच्चा कहता है कि मैं मॉन्स्टर के सामने जाना चाहता हूँ। वो गांव वाले बहुत हैरान कि ये बच्चा मॉन्स्टर के सामने कैसे जाएगा, बच्चा मर गया, मुझे जाना है। तो गांव वाले लोग लेके आए मॉन्स्टर के सामने। तो मॉन्स्टर के सामने वो चाहे कि कोई तलवार होनी चाहिए, कोई बंदूक होनी चाहिए, कोई लाठी होनी चाहिए। वो बेचारा तो एप्पल खा रहा था, उसके हाथ में एप्पल था, वो एप्पल लेके मॉन्स्टर के सामने चला गया और मॉन्स्टर के सामने अपना हाथ खोल के मॉन्स्टर को एप्पल दे देता है कि तुम खा लो। तो मॉन्स्टर वो एप्पल खा लेता है। अब मॉन्स्टर क्या करता है कि अपनी जो मुट्ठी है वो बच्चे के सामने ऐसे करता है, तो लोग बड़े डर जाते हैं कि ये मुट्ठी से तो ये बच्चे को कुचल ही देगा, बच्चा छोटा सा है, मॉन्स्टर तो इतना बड़ा। तो जब वो उसकी मुट्ठी खुलती है तो लोग, गांव वाले लोग इतने हैरान हो जाते हैं, उसमें से उससे भी बड़े दो एप्पल वो बच्चे के सामने टर्न देता है और बच्चे को ऑफर करता है। बच्चा खुशी खुशी अपने दोनों हाथों से वो दोनों एप्पल उठा लेता है। तो वो ना मॉन्स्टर और बच्चे की आपस में दोस्ती हो जाती है। मॉन्स्टर बच्चे की तरफ देखे परसेप्शन उसी समय बदल जाती है कि क्या हम क्यों सोच रहे थे मॉन्स्टर को मारने के लिए। मॉन्स्टर तो हमारे लिए ब्लेसिंग है, उसने तो हमारे बच्चे को देखो दो सोने के पॉट दे दिए जूस भर के, और हम तो सोच रहे थे कि हम इसको मार दें। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स अपीयर एज दे डू बिकॉज ऑफ द वे वी लुक एट दैट, राइट? हमने कभी ये नहीं सोचा कि मॉन्स्टर के साथ जाके बात कर लें या उससे पूछ लें या वो क्या चाहता है हम लोगों से उसके बारे में जान लें। पर वो बच्चे ने उसको फ्रेंडली एटीट्यूड दिखाया और वो बच्चे के साथ फ्रेंड हो गया। हम पते क्या करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, मेरे बच्चे भी वो करते हैं, मैं भी करती हूँ, मेरी फैमिली में भी होता है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी होता है, ऑफिस में भी होता है। हम ना नेगेटिव बात बोलने की आदत बना लेते हैं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा। तो ये स्टोरी मैंने पर्पसली सेलेक्ट करी थी ये सोचने, ये बताने के लिए कि हमारे एटीट्यूड पे, हमारी सोच पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। और जो मैं आपको बता रही थी कि हम घर पे किसी से भी पूछते हैं, कोई बाहर से आया है, तो एक तो ये होता है कि हम बहुत थक गए। और मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मैंने कभी भी कितने भी थके हुए हूँ मैं कभी नहीं बोलती हूँ मैं थक गई, बिकॉज मेरे लिए ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब अगर आप थक गए हो और अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आप थक गए हो, वो क्या करेगा आपको? देखिए, आप हेल्प तो कुछ नहीं है, जो आपका काम है वो आपको करना ही है। सिंपथी गेन करोगे ना, तो क्या आप सिंपथी लेने के लिए अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर रहे हो? नेवर। कोई भी घर में आता है, आप उनसे पूछो, नॉर्मली आपको ये आंसर मिलेगा, हाउ वाज द डे, पूछोगे आज का दिन कैसा था, बहुत ही स्ट्रगलफुल था या कुछ। हमेशा नेगेटिव सोचने को मिलता है, पॉजिटिव बहुत रेयर मिलता है। जब बहुत ही अच्छा पॉजिटिव लेते हैं, हम कभी नहीं बोलते कि आई एम सो थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा निकला और आई एम बैक होम। आई एम जस्ट गिविंग यू टू कंट्रास्ट एग्जांपल्स कि हाउ आर डे टू डे कम्युनिकेशन हैपन्स। एंड जो हम बोलते हैं, जो हमारे अराउंड अनसीन एनवायरमेंट है, वो उसको कैप्चर कर लेता है और आपको वही वापस आता है। तो ये हमारे ये स्टोरी का बहुत अच्छा मॉरल है सीखने के लिए कि हम कभी भी, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं बोले अपनी डे टू डे लाइफ में। नहीं है कि नेगेटिव बात होती नहीं है, नेगेटिव बात होती है, आपको काम को भी देखना है, आपको प्रोग्रेस को भी देखना है। तो नेगेटिविटी, यू कैन नेम देम एज चैलेंज और नेगेटिविटी, वट एवर इट इज, बट द वे ऑफ एक्सप्रेशन इज कि हाउ वी हैव टू यूज द वर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन, बिकॉज जो नेचर है वो हमारी बात को, हमारे वर्ड्स को कैप्चर करती है जो हम समझते नहीं है, और वही हमारे पे वापस रिफ्लेक्शन आता है। अभी हम एक दूसरी और स्टोरी पढ़ते हैं। एक इंजीनियर था, उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। और वैसे तो आर्मी में नेशनल डिफेंस एकेडमी से बच्चे आते हैं जो बहुत ही रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन करते हैं आर्मी, उनकी सिलेक्शन होती है। तो एक दिन कमांडर ने सबको बोला, इंक्लूडिंग दिस इंजीनियर हु ज्वाइन द आर्मी, कि आज संडे है और आज हम 10 मील भागेंगे। वो बच्चे तो नॉर्मल था उनके लिए जो एनडीए पास करके आए थे, पर जो ये इंजीनियर था उसके लिए तो इट वॉज अ न्यू थिंग। और उसने बोला कि आई एम वेरी एंथुजियाजम।

टू रन, वो 2 किलोमीटर ही भागा होगा कि उसकी टांगों ने जवाब दे दिया और वो थक गया। अब क्या हुआ, कमांडर ने उसको क्या बोला, द कमांडर केम नियर टू द इंजीनियर एंड सेड, अर्लियर यू वर रनिंग विद लेग्स, नाउ रन विद द पावर ऑफ माइंड। इट वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल सेंटेंस, आई एम को रिलेटिंग विद वॉट आई सेड अर्लियर, कि जो हम बोलते हैं उसका कभी कभी इतना बड़ा उसका असर हो जाता है, पर अगर हम पॉजिटिव बोलें तो। कमांडर ने उसको क्या बोला, हे इंजीनियर रन रन, बिकॉज पहले तो तुम अपने टांगों से भाग रहे थे, अब अपने माइंड की पावर से भागना शुरू करो। और वो सेंटेंस इंजीनियर के दिमाग में इतना रेजोनेट हो गया कि वो 10 माइल्स वो भाग गया। तो इसका क्या मतलब है कि वो सेंटेंस इतना पावरफुल था कि उसने उसमें, मतलब कि उसकी माइंड को इतना पावरफुल बना दिया कि उसने 10 माइल भाग लिया। अब इसका आगे हमने क्या सीखा इस स्टोरी से, ही रैन ए मॉडेस्टली सक्सेस, दूसरी स्टोरी है ये, कि पहली वाली स्टोरी में वो सेंटेंस इतना पावरफुल था जो मैंने लिंक किया पहले वाले स्टोरी से, कि जो हम बोलते हैं वही हमें वापस मिलता है। अब हम जब किसी को कुछ बोल रहे हैं तो हमें भी अपनी लैंग्वेज में वो सुधार करना चाहिए कि हम किसी को डिमोटिवेटेड लैंग्वेज नहीं बोले, हम किसी को नेगेटिव नहीं बोले, हम हमेशा सबको इनकरेज करें। And you as leaders in the organization have to practice this language, कि जिससे आप सबको motivate करते रहो। अब ये तीसरी story है, एक colonel था, story of a colonel, वो अपना एक restaurant चलाता था और chicken की जो dishes है वो बहुत variety में prepare करता था, पर वहां पे एक फ्लाईओवर बन गया तो उसका जो रेस्टोरेंट था वो बंद हो गया। अब वो नेचुरली सबको पैसा चाहिए तो वो कमाना चाहता, तो उसने कहा कि मैं अपनी जो रेसिपी है ये मैं बेच देता हूँ रेस्टोरेंट्स को और मैं सिखा दूंगा जाके और इट विल बी माय अर्निंग। तो उसने 1000 कॉल करे, किसी ने उसकी रेसिपी नहीं ली। करता रहा और जब उसने 1000 कॉल करने के बाद एक रेस्टोरेंट ओनर ने उसकी रेसिपी लेने के लिए तैयार हो गया। एंड दिस गेव बर्थ टू द वर्ड्स फर्स्ट केंटकी फ्राइड चिकन आउटलेट। आपको पता है कि ये आउटलेट इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मशहूर है। सेम एक्सपीरियंस वॉज विद द वुमेन हु मेड लिज्जत पापड़ इन आवर कंट्री। So now choice is yours. You want to continue your mission or you want to give up in between. उसने 1000 कॉल करी, हम 2 कॉल करके लोगों को कन्विंस नहीं होते तो हम कह देते हैं कि हो नहीं रहा है। See the efforts. Efforts will never go waste. जो नेचर है वो भी हमारी एफर्ट्स को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करती है कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इनको फल देना भी बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि लिज्जत पापड़ का एग्जाम्पल पूजा श्रीवास्तव ने भी दिया था, जिन्होंने उसकी अभी ट्रेनिंग पिछली अटेंड करी थी, कि वो लिज्जत पापड़ भी घर से बनने शुरू हुए थे। और मैं जब भी चंद्र प्रकाश जी को कहती हूँ चंद्र प्रकाश जी पापड़ बनाओ, तो लिज्जत पापड़ की ही ऊंचाई मेरे माइंड में होती है कि आज अगर 10 औरतें गीजगढ़ की पापड़ बनाना शुरू कर देंगी जो इतने अच्छे पापड़ बनाती हैं, तो हम शायद लिज्जत पापड़ के कंपैरेटिवली एक ब्रांड और भी खड़ा कर सकते हैं। बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं उत्तर प्रदेश में, आलू के पापड़ नवरात्रों में, बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं राजस्थान में, और मुझे और जगह का तो इतना पता नहीं है, पर अगर ये 2 लोग इतने अच्छे पापड़ बना सकते हैं और बाकी के सेंटर्स में ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो हमारा एक अपना ब्रांड शुरू हो सकता है ना पापड़ का, बहुत आराम से हो सकता है। बट वही स्लाइड का मैं दोबारा से बोलूंगी, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कंटिन्यू योर मिशन। ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में शायद दोबारा ना आए।

0: ये बात को याद रखना, सक्सेस इन लाइफ इज नॉट डिफाइंड बाय द टैलेंट एंड द फिजिकल एबिलिटी बट बाय द मेंटल स्ट्रेंथ। अब आपको ये सेंटेंस, उन स्टोरीज के मॉडल सारे इस सेंटेंस में आ गए कि टैलेंट से डिफाइन नहीं होता, लोग सीख के भी बहुत कुछ कर लेते हैं। फिजिकल एबिलिटी में वो इंजीनियर भाग ही नहीं पाया बट उसका माइंड बहुत स्ट्रांग था, बट बाय द मेंटल स्ट्रेंथ टू स्टे द कोर्स एंड रन द एक्स्ट्रा माइल। हमें अपने, जो हमने अपने आसपास दायरे बनाए हुए हैं, उन दायरों से बाहर निकल के जो काम हम करते हैं, उसी की सक्सेस हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। सो यू अलाउ ऑब्स्टिकल्स टू कम इन द वे ऑफ योर प्रोग्रेस, यू फाइंड योर सेल्फ सेइंग आई कांट। ऑब्स्टिकल्स क्या आए थे? वो मॉन्स्टर को मारना चाह रहे थे पर मॉन्स्टर उनको मार देता था, तो इट वॉज अ बिग ऑब्स्टिकल। कर्नल भागना, वो इंजीनियर भागना चाह रहा था पर उसकी टांगे जवाब दे रही थी, उसकी टांगे मुड़ रही थी, दैट वॉज अ बिग ऑब्स्टिकल। बट उसके माइंड ने उसको बोला तुम कर सकते हो। तीसरी स्टोरी में अगर वो 1000 कॉल्स तक नहीं जाता तो वो अपनी रेसिपी को बुक्स में बंद करके ही रख देता, पर ही वेंट एक्स्ट्रा माइल। सो यू फाइंड योर सेल्फ सेइंग आई कांट, बट वेन यू रन विद योर माइंड, द पावर ऑफ योर माइंड, यू बिकम अनस्टॉपेबल। योर माइंड सेज आई कैन। सब एग्री करते हैं मेरे साथ ये इन तीन कहानियां सुन के मेरे से?
1: जी मैम,
0: सही मैम। तो ये बहुत जरूरी है अपनी माइंड की पावर को एनालाइज करना, राइट? तो ये सेशन में मैंने दो चीजें आपको बताई। एक तो मैंने स्टोरी सुनाई कि माइंड कितना पावरफुल होता है। दूसरा मैंने आपको स्टोरी टेलिंग सेशन कैसे हैंडल करते हैं और कैसे हम इसको लिंक करते हैं वो भी बता दिया, राइट? क्योंकि अगर मैं खाली स्लाइड से डालती रहूंगी और पॉइंट से लिखती रहूंगी ना, तो उसमें फिर आपके लिए आगे सेशन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो आप यहाँ तो ये स्टोरीज रिपीट करिए जैसे मैंने हिंदी में आपको सुनाई है, या फिर आप स्टोरीज बदल भी सकते हैं और ढूंढ के, राइट? तो आज का सेशन में मैं यही कहना चाह रही थी, द कंक्लूजन ऑफ द सेशन इज कि डोंट अलाउ एनी वन और एनी एनी सिचुएशन और एनी इंसिडेंस टू ओवर पावर योर माइंड। ये सब माइंड का ही खेल है। जितना माइंड आपका स्ट्रांग होगा, जितना आप उसको पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप उसको पॉजिटिवली लेंगे, उतना ही सक्सेसफुल आप बनेंगे।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: हेलो, मेरा नाम नीलम है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बार रीड इंडिया वाले हमारे उधर सर्वे करने आए थे, उनके थ्रू मुझे रीड इंडिया के बारे में पता लगा, फिर मैं इधर आने लग गई, मैं रीड इंडिया से जुड़ गई। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से पार्लर भी सीखा है और कंप्यूटर भी। इस टैग के कोर्स में मैंने IT बनाना और किसी की लोकेशन सेंड करना, और पहले मैं घंटों उसकी लाइन में, बैंक की लाइन में खड़ी रहती थी, बट जब से फ़ोन मतलब इसकी नॉलेज मुझे हुई है कंप्यूटर की, तब से मैं अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकती हूँ, पैसे भेज सकती हूँ, और उससे मतलब कैब करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीड इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लग गई थी, अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होकर सोच सकती हूँ और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन नहीं रहने लग गया था। अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए, आपको नहीं सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे। मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो कुछ अच्छा ही पता लगे अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, बहुत कुछ आप यहाँ आके जान सकते हैं। थैंक यू रेड इंडिया।
2: हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लेंसी एंड आई पास 10th क्लास। देन आई थिंक टू जॉइन रीड इंडिया एकेडमी टू इम्प्रूव माय कंडीशन। मैंने एकेडमी ज्वाइन की रीड इंडिया और उसमें हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ TEG, टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स। ये एक कोर्स है जो वुमेन और गर्ल्स के लिए है। ये वुमेन और गर्ल्स की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये प्रोग्राम चला है तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और आगे भी ये प्रोग्राम चल रहा है। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज का भी, और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ। और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है, और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है। पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सबकी ज़रूरत होती थी, लेकिन आज कल मैं खुद कर रही हूँ ये सब और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती। बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी।
3: गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ तनु तनवर। आई पास 10th क्लास एंड आई जॉइन रीड इंडिया एकेडमी इन शाहबाद मोहम्मदपुर। दिस इज़ ओनली वन एकेडमी हु टीच अस कंप्यूटर। दिस एकेडमी हेल्प्स टू बी अ वुमेन इंडिपेंडेंट। रीड इंडिया स्टार्ट्स टैग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स ओनली टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन फॉर वुमेन्स। And it helps us in form filling, and also we helps our parents. Then we also reserve tickets. Thank you.
4: I'm Shweta. I study in IGNOU University, or I done NPTT course for Polytechnic Institute, Rajouri Garden. और हमारे जो यहाँ पे शाहबाद में ये है ना NGO, मैं यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ टैग की, तो इससे मेरे को काफ़ी चेंजेस आए हैं और थोड़ा सा लगा के भाई यहाँ पे आके हाँ बाकी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी हेल्प है, मतलब टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और दूसरा फिर इससे ये है कि नॉलेज बढ़ती है यहाँ पे आके एक दूसरे को, मतलब हम जाके जैसे हम आ रहे हैं किसी को बता रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं, जैसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है। और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो। और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली, टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, कुछ भी हो, जिससे लड़कियां घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इस लाइन में आने से, क्योंकि इनमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए। इसमें नॉर्मली होता है फाइनली, मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है, और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे मतलब भाई होती है कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनका आगे, तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा मतलब चेंजेस आ जाते हैं। और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे ये कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में, और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं। तो इससे हमें हमारी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं। एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में। मतलब जितना बढ़ो आगे उतना कम है, और हर किसी को बढ़ना चाहिए, किसी एक को नहीं, हर किसी को, जहाँ से जैसी हेल्प मिलती है, जो मिलती है वो करनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यही कर सकता है, यही बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सबको है मतलब एक फ्रीडम होती है अपने आप में, लाइफ अपनी है, किसी का प्रेशर नहीं होता कोई के मतलब हम किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर दें, या मतलब बोल ले नहीं, कुछ नहीं करें, आगे नहीं बढ़े। एक दो बार मतलब होता है भाई, डर होता है एक, लेकिन बार बार निकलने से ना सब डर खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है ख़त्म करने से ख़त्म होएगा, ऐसे डरने से तो डर बढ़ता ही है, कोई मतलब दूसरा उसको ख़त्म नहीं कर सकता आके। अब हम हैं जैसे कुछ होती हैं लड़कियाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को फ्रीडम होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था ट्वेल्थ कर लिया, पास आउट हो गया, स्कूल शादी कर दो, ये वो, लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करें ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े, और वो अपने पैरों पर खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो। तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है, उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए, चलो भाई कोई नहीं, उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से, ऐसे भी नहीं कि लड़ लो, ये कर दो वो कर दो, नहीं, प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है। तो इसलिए हमें जितना हो सके ना अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए, लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड और दुनिया में अपनी पहचान हो।
5: I'd like to call the speakers and you talk about how the role of transformative libraries are implementing this mission on ground and where Reed libraries could learn further and move further on this journey. So first in this series, I'd like to call upon Dr. Shantanu Ganguly. Please, sir. A big round of applause.
6: Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Geeta for inviting me to share my experiences with all of you. Thank you very much, Geeta. I think since morning I learned a lot. I don't know what is the acronym stands for Read Word. And I did it myself. R stands for resilience. E stands for enlightenment or engagement. A stands for access to knowledge resources. And D stands for development. That is how the entire Read Word stands for. That is what I could coin. Second thing is that my colleague, Mr. Bibhutinath Jha, Bibhuti, can you please stand up? My colleague, Mr. Bibhutinath Jha is there. In fact, he told me, sir, हमें यहां से जब हम जाएंगे तो हमें कुछ करके जाना चाहिए. I said, क्या करेंगे, अभी तो हम मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है. Just a 1 month back, I have taken over Ashoka.

government is necessary. And the technology was, currently there is a boom. Like Jay already talked about the artificial intelligence. It is in a very big way, it is coming up. I was reading and there is something called as frugal innovation, which is currently social and frugal innovation is one of the big thing. In fact, when one of my event, Geeta was also one of the speakers, the Professor Sarabindu Bhaduri was talking about how the frugal innovation is making a radical change in the current context. Ask frugal innovation. Frugal innovation hai kya? These are very big, big jargons. Let me easy way mein aap logo ko batata hun. Aapke paas resources ki constraint hai. Jab aap rural community pe kaam kar rahe hain, to wahan par aapke paas resources ki kami hai. Aur usi kami ke saath, jab aap koi solution leke aate hain, aur wo solution ek dusre cheez pe rupantarit hota hai, to usko hum frugal innovation kehte hain. It's a very simple, crude way. And so we are looking towards a smart library now. Smart ka matlab aisa nahi, maine acha dress pehna hai, Jay ne badhiya dress pehna hai, madam ne pehna hai, aisa smart nahi hai. Smart word ka maine coin kiya hai, mere ko word coin karna acha lagta hai. Sustainable, measurable, achievable, retrievable and transformational. Sustainable. Green library leke bahut baatein ho rahi hai. Aap logon ko malum hai ki IFLA ne already ek documentation bhi release kiya hai. We have to talk about green library. So much of renewable energy is used in the green libraries. Humne apni HDFC library ke andar jo hai sensor based lights lagai hai. Agar is room ke andar koi nahi baitha hai, nobody is sitting here in this room, to kya ye lights jalni chahiye? We should save this energy, na? So, wo kaise karenge? Paperless library humne start kiya hai apne HDFC library mein. Maximum communication hamari online mein ho rahi hai. Futuristic. There are case studies. I could have presented those case studies. Wahan par augmented reality, virtual reality ka applications kiya ja raha hai. Aur wo bhi higher education sector mein. And the third, but not the least, is the sustainable development goals. Already, sir ne hume bahut logon ne bataya, SDGs ko agar aap nahi batayenge, to aap nahi survive kar sakte aaj ke date mein. SDGs is must. Aur SDG ka, jo sustainable goals hain, jo sare goals hain, main kai goals pe kaam kiya hua hai maine, ek chota si cheez aapko main batata hun. I was working in VHEI, Voluntary Health Association of India. और हम वहां पर एक छोटा सा न्यूज़लेटर निकालते थे हमारी चिट्ठी आपके नाम हमारी लाइब्रेरी से और वो 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होता था. तो आई वाज वर्किंग विद दिस सहारिया ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश की सहारिया ट्राइब्स के साथ जब मैं काम किया वहां पर, तो वहां पर एक चाय वाला जो है वो शाम के टाइम एक छोटा सा अपना एक वो कैंडल टाइप लेके बैठता था और गांव वालों को साथ में बिठा देता था. और साथ में वो जो हमारी चिट्ठी आपके नाम की हम जो डॉक्यूमेंट उनको देते थे, जो पतला सा न्यूज़लेटर देता था, उसको पढ़ के सुनाता था. और उसमें कौन सी स्पेसिफिक चीजें होती थी? एनवायरमेंट की नॉलेज देते थे हम लोग, पर्यावरण की नॉलेज देते थे, पानी का नॉलेज देते थे, ऐसे बहुत सारी चीजों की नॉलेज हम उनको डिसमिनेट करते थे. हेल्थ का, स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा देते थे, क्योंकि ये जो गर्मी का टाइम आ रहा है, बरसात का टाइम है, ये सबसे ज्यादा बीमारियों का जन्म लेता है. इन चीजों की हम देते थे. सो वी स्टार्टेड हिटिंग ऑन दीज एरियाज एंड इन फैक्ट आई हैव डन क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूसिवली ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. मेजरेबल, इट्स द लाइब्रेरी एनालिटिक्स. आज के डेट में इतनी रिसोर्सेस हम खरीदे जा रहे हैं, लेकिन क्या उसकी इस्तेमाल प्रॉपर हो रही है? कितने किताबें लोगों ने रैक से निकाल के खोल के देखा है? लोग तो डिजिटल वर्ल्ड में घूम रहे हैं. आजकल के बच्चे भी जेन सी जनरेशन है, वो डिजिटल वर्ल्ड में है. कितने किताबें रैक से निकाल के देखते हैं?
टीचिंग एनालिटिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा, रीड इंडिया जय के जय इज अ फाउंडर ट्रस्टी गीता मैम है, मैम प्लीज आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एज एन एक्सटर्नल एडवाइजर कि अगर आप कोई ऑनलाइन में लाइब्रेरी साइंस के बच्चों का कोर्स करवाना चाहते हैं, आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट. आई हैव गॉट 40 रिसर्च प्रोग्राम वीडियोज इन स्वयं पोर्टल. मैंने खुद ट्रेन किया है, मैं हार्ड कोर ट्रेनर. आई थिंक वन ऑफ माई स्टूडेंट मे बी स्टडिंग देयर. ऐसा कई लोगों को किया है. और आज जब हम लोगों को कोई लाइब्रेरी इंटर्न्स की जरूरत पड़ती है, आई डोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन टू कम एंड वर्क विथ मी बिकॉज देयर इज अ गैप एंड वी ऑल ऑफ अस हैव टू मिनिमाइज दैट गैप. एंड द लास्ट कॉम्पोनेंट इज सेंटिमेंट एनालिटिक्स. जो भी चीज हम खरीदते हैं, जो भी चीज हम लेते हैं, कुछ भी करते हैं, सेंटिमेंट एनालिटिक्स, उसका आपका जो फीडबैक है वो जानना बहुत जरूरी है. वो आपने कैसे किया है. एंड इज अ वेरी बेसिक मेथड. आई कैन ट्रेन पीपल ऑन दीज एरियाज. अचीवेबल, दैट इज बेसिकली जितना हम अभी कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड आइसबर्ग मेटाफर, नॉलेज मेटाफर है. एक्चुअल सेंस में अगर देखा जाए, सिंस आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ आई वर्क ऑन केम सिस्टम्स, आई हैव इंप्लीमेंटेड क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ केम सिस्टम. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ केम. इनफैक्ट इन एक्सएससी और पीडब्ल्यूसी I have given a lot of trainings. Even in Ernst & Young, McKinsey, lot of sessions I have taken on KM systems implementation. I'll give you an example. I was working in Bhopal, in one of the leading multinational NGO there. Unke wahan par mere ko, there was something called as State Climate Change Knowledge Management System banana tha. अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एनएपीसीसी के अंडर में हमें स्टेट क्लाइमेट चेंज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था. सो आई वेंट देयर अलॉन्ग विद माई क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट. हमने वहां पर बनाने के लिए गया. जब मैं वहां बनाने के लिए गया तो देर वॉज अ स्टेक होल्डर वर्कशॉप वॉज टेकिंग प्लेस एंड सी हाउ डू वी नो कैच द टैसिड नॉलेज देयर. वहां गांव के लोग आए हुए थे. उन्होंने हम लोगों को वाटर लेके बड़ी प्रॉब्लम हो रहा था कि कहां पर पानी का कैसा लेवल है, उसका ग्राउंड लेवल पे कैसा है, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत खपत है, इतनी पानी मिलती नहीं है, बहुत जमीन के नीचे चला जाता है, बहुत ड्रिलिंग करनी पड़ती है तब जाके पानी निकलता है. देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम विद वाटर. जब हमने वहां के गांव के लोगों से, कई लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला हम आपको मट्टी उठा के बता सकते हैं कि यहां पर आपको पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा. And he has a, and you won't imagine, I mean I'm having my goosebumps, that guy, the way he picked up the soil and said, yahan par kitna pani kitne gradient mein aapko mil jayega. He said that. I mean this is unimaginable. And how do we capture that knowledge? That is actually the below the surface. We don't know these techniques. In fact, some of these areas I have also worked extensively in the northeastern belt with all the 9 sisters, jahan par is tarah ki knowledge ko preserve karne ka, conserve karne ka bahut prayas kiya ja raha hai, bahut prayas kiya ja raha hai. So best possible way to retrieve. So retrieval is a very important thing. Kitna badhiya aap retrieve kar rahe ho, kyunki resources ke to kami nahi hai. लेकिन आज के डेट पे एक्चुअल रिसोर्स जब आपको निकाल के ले आना है, समुन्द्र में से 2 बूंद पानी आपको निकाल के ले आना है, क्या आपके पास उस तरह का डीप लर्निंग का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है विच कैन टेक आउट दैट एक्चुअल इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्चुअल, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉन्टेक्चुअल सर्चिंग. मशीन लैंग्वेज को यूज करके कॉन्टेक्चुअल सर्चिंग में उस इंफॉर्मेशन को निकाल के ले आना. In fact, we are working towards that particular platform and very soon we are going to have that in our own library also. The next component is transformational. Now, when I talk about transformational, this is a very big word. What is that transformational? हमें अपने आप में एक बार देखना चाहिए. हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम.
We are talking about digitization. We are talking about digitalization. Or we are talking about digital transformation. कौन सी एरिया पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं? डिजिटाइजेशन, आपके पास इतने सारे पेपर्स हैं, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया डिजिटल में, हो गया आपका. डिजिटलाइजेशन इज अ प्रोसेस बेस्ड एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन वेर एवरीथिंग गोज इन टू द डिजिटल फ्रेमवर्क विच इज अ वेरी लॉन्ग वे जर्नी एंड इट इज नॉट अ वेरी इजी थिंग ऑल्सो. आई वॉज रीडिंग दिस बुक 4.0 इनसाइट एंड one of the important area was knowledge 4.0. आज के डेट में एक नया टर्मिनोलॉजी, ये वंस अगेन इज अ जार्गन, लेकिन हम सब करते हैं. यहां पर बैठ के मैं पीछे से बहुत सारी सामान खरीदा है आज मैंने. आई बॉट मेनी थिंग्स फॉर माई वाइफ, माई डॉटर, माई फैमिली मेंबर्स. जो चीज मेरे को बाहर पीछे देखने को मिला एंड आई वॉज कंप्लीटली फ्लैबरगास्टेड आफ्टर सीइंग दैट, को क्रिएटिव, कोलाबोरेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिमुलेशन एनालिटिक्स बेस्ड. जब तक आप करोगे नहीं, एक धागा को कैसे, अगर आप वो मूवीज को देखेंगे जो WE का मूवी, जैसे एक धागा को कितना बारीक से वो उसको डाल रहे थे और उसके अंदर उसको स्टिचिंग कर रहे थे, ये प्रोसेस को कोई अगर नहीं देखेगा तो समझ में नहीं आएगा. इनफैक्ट अंडर द NEP 2020 इन माई पास्ट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन एट NIMS यूनिवर्सिटी, द फैशन डिपार्टमेंट वॉज अंडर मी and I started working towards sustainable fashion where different kinds of reused materials in the fashion industry, how they can be further taken to a next level. I worked on that level also. So if I look at these five laws of library science which was coined by S.R. Ranganathan and I relate them with artificial intelligence, I find that there is a very correlation with that. Starting from books are for use, every reader his or her book, every book its reader, save the time of the reader, and library is a growing organism. But what is most important today, we need to empower our information professionals. Hamare jitne bhi information professionals, library information professionals hain, unko sahayata chahiye, kaise wo practically apne systems mein jaye aur wahan seekhe. और वहां पर इंप्लीमेंट करे चीजों को, ये हमें चाहिए. लाइब्रेरी हैज कम अप ऑन अ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लाइक डेटा माइग्रेशन, कंप्लीटली अ डेटा बेस्ड, इट इज अ कंप्लीटली एन ऑटोमेटेड बेस्ड. ये बहुत टेक्निकलिटी है इसके अंदर, हम लोगों को कंप्यूटर साइंस के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है, हम कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट नहीं है. शेल्फ मैनेजमेंट, फॉर्म्स प्रोसेसिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर गई है. जैसे स्मार्ट लाइब्रेरीज की मैंने बात की, इसी तरह पेट्रॉन्स विल एंगेज ऑन द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस. मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे आप लोग फेसबुक या किसी भी चीज पे या अमेजॉन में कभी भी कोई किताब खरीदते हैं, मैं एक किताब को खरीदा तो मेरे नीचे जो है वो चार पांच और किताबों का रिकमेंडेशन दे देते हैं कि आप इन किताबों को भी ले सकते हैं. हाउ आई मीन साइकोलॉजी, how they read our psychology and gives us from our own request that what are the things I should take later. Aur wo recommendations automatically mera usage ko badhana ke koshish karega. I'm working on this with my team on this. User services like chatbots, we are going to implement very soon on this. AI applications and there are many more things. I mean library analytics mein agar main, jaise for example if I want to look at मेरा मिसिंग बुक कहां गया, अभी तो रैक में था, कोई लेके चला गया, कहां गया है, हाउ डू आई ट्रैक दैट. देयर इज अ टेक्नोलॉजी विच हैज कम अप, वी आर वर्किंग ऑन टुवर्ड्स दैट आल्सो. लाइक आई एम अ यूजर ऑफ अ बुक, मेरे को ये किताब चाहिए, आई रिजर्व दैट बुक फ्रॉम माई ओन काउंटर, मेरे पास मेरे मोबाइल पे मैंने उसको वो किया. एंड देयर इज अ लाइब्रेरी GPS सिस्टम वी आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट, फिर accordingly it will through that technology it will take me to that rack and will tell me your book is here so you can get it issued. It's a library GPS system. These kinds of technologies are available but it is the right time to implement or not. But
Most of these technologies are international, but what we need is basically an indigenous technologies and all. We need to have an indigenous technologies. Same with information retrievals. I mean, I can keep on going on. These are all AI based things. It takes a lot of time for me to describe. Data analytics has come up in a big way for decision making process. Collaboration and knowledge sharing. आज के डेट में मैं कहे साइलोस मेंटालिटी नहीं चलता है नॉलेज 4.0 में. ये मेरा है, मैं अपने कंप्यूटर में रखूंगा, मैं शेयर नहीं करूंगा, ये नहीं चलेगा. आई नो दी हाउ दी कॉर्पोरेट सेक्टर लाइक एसेंशियर एंड अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ देर वर्क. आई हैव सीन देर वर्क. इवन देयर कंप्यूटर्स आर ऑल्सो थ्रू देयर सर्वर. देयर लैपटॉप इज कनेक्टेड टू द सर्वर. जो भी वो करेंगे वो सिस्टम पे काम करेंगे और वो सारा कुछ वहां पर कैप्चर होता जा रहा है ऑनलाइन में. सो नथिंग इज योर्स, इट इज ऑल कोलाबोरेटिव. एनीबडी कैन हैव अ लुक एट इट. आई हैव सीन देयर सिस्टम्स. एआई फॉर कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशंस. ऑटोमेटिकली क्लासिफिकेटेड सिस्टम्स हैव ऑलरेडी बीन. देयर आर सेवरल लीडिंग यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, दे हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड सच काइंड ऑफ अ थिंग. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू लुक एट इट ऑन दीज एरियाज. एआई फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस. मेरा एक्स प्रोफेसर, वो हमेशा इस तरह की किताबें, इस तरह के रिसोर्सेज मांगते हैं. वो आगे जाके भी इस तरह का मांगेंगे. हु डज दैट प्रेडिक्शन? सो देयर आर प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हैज कम अप ऑन एआई बेस्ड. वो आगे क्या मांगेंगे उसकी एनालिसिस पे हम जा रहे हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड देयर आर टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट. सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजिकल वन कॉम्पोनेंट इज दैट देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट. क्या है कि हर कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानता. That is the biggest thing. So what for that? What is the solution? We have a solution like Grid India. They can launch a what is called as a online skill based programs. You can earn a revenue from that too. But one of the important thing is technology obsolescence. 2 saal kaam kiya, 3 se 3 saal pata chala uska naya version aa gaya. So that's a very big problem. So technological constants, and there is a privacy issues are also there, ethical issues are there. Jitna digital hota ja raha hai utna jyada aapki ethical issues mein questions raise ho raha hai, and digital rights management wagera pe bhi bahut jyada questions raise ho raha hai. Social media is a very big thing, all of you know, you are all there. So there was a, I just want to end here. There is a IFLOS statement on libraries and artificial intelligence. In fact, on just a few weeks back when Geeta was also there, so we organized a open access where IFLA president was there, Vicky MacDonald. So what she says that the adoption of the artificial intelligence, that is AI and machine learning, in private and public spheres is rapidly growing. The policy statement aims to outline the key consideration for the use of these technologies in the library sector and suggest the roles which libraries should strive to take on in a society with a growing AI integration. AI integration is a very, very important thing. So thank you very much. Thanks for your patient listening.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: कैसे हैं सभी लोग?
1: गुड मैम, गुड
0: गुड
1: है मैम।
0: आफ्टरनून
1: मैम, बहुत गर्मी के बाद बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ठीक
0: और सब कैसे हैं? ठीक
1: है मैम। गुड
0: है। कोई और कैसे हैं?
1: आफ्टरनून मैम, सब ठीक है? आप कैसी हैं मैम? गुड
0: सब ठीक है जी। और कैसे हैं सब?
2: आफ्टरनून मैम। हम
1: मैम अच्छे,
2: आपके
1: गुड
2: आप अच्छे हैं। और कैसे
1: मैम
0: हैं?
1: अच्छे हैं। आपको देख के थोड़ी एनर्जी फील होने लगी अब।
0: एनर्जी है। और कैसे हैं सब? ठीक
1: ठीक है मैम, अच्छे
0: है। और कैसे हैं सब? क्या इमोशन है इस
1: है
0: वक्त?
1: मैम, बहुत बढ़िया।
0: बढ़िया है। और कैसे हैं?
1: मैम को आज सबकी वॉइस सुननी
0: मुझे ये जानना है सब हैं कैसे। अभी तक मुझे ये पता है कि पांच छह लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं।
2: मैम। सब कुछ ठीक है, बट मौसम खराब है तो गला खराब हो जाता है मैम
0: ठीक है,
2: सबका।
0: लेकिन गला खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वैसे ठीक है ना?
2: मैम
0: आपको सिर्फ सुनना है, ज्यादा बोलना तो है ही नहीं, तो कम से कम वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना? कैसे हैं? मेरे को अभी भी जवाब नहीं मिला है, सिर्फ ठीक है, अच्छे हैं। चार पांच लोगों ने बोला है यहाँ पे, तो 30 से ज्यादा लोग हैं। कुछ तो और महसूस कर रहे होंगे, कुछ कोई तो होगा जो अच्छा नहीं फील कर रहा है कि सब अच्छे हैं।
1: सब अच्छे हैं मैम। हाँ
0: सब अच्छे हैं। यहाँ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्वर्णा जी आपके साथ, मेरे ख्याल से आपका ही आंखें दिख रही है शायद, है ना?
2: अच्छे
0: हाँ जी। बच्चे कैसे हैं आप लोग?
2: हैं, मराठी
0: सांगले, सांगले का
2: में
0: क्या?
2: बात करते हैं मैम वो।
0: हाँ, तो सांगले का क्या मतलब होता है? अच्छे
2: अच्छे हैं हम सब।
0: हैं, सब अच्छे हैं। और कैसे हैं? महाराज
2: बड़ा
0: आपके पीछे मुझे
2: बोला
0: है तो सब अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे के अलावा और किसी को नहीं पता कि वो कैसे हैं, उनका फीलिंग कैसा है, आज मन में क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं अच्छा और कैसे हो, तो हम बोलते हैं सब ठीक है, या फिर जैसा ऋतु जी ने बताया सब ठीक है लेकिन मौसम खराब है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, देर से पहुंचे कि जहां पहुंचना था, खांसी जुकाम हो गया। बट हम कैसे फील कर रहे हैं ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता, या तो अच्छे हम बोलते हैं कि हम अच्छा ही फील कर रहे हैं, है ना? अभी ये सवाल मैंने कम से कम 15 से 20 बार ही पूछा और सिर्फ यही जवाब मिला कि हम अच्छे हैं। सब मानते हैं यही जवाब मिला हमको, यस।
1: यस मैम,
2: यस मैम,
0: तो आज
2: यस
0: इसी चीज पे बात करेंगे जिस पे मैम ने कल छोड़ा था। मैम ने कल अपने सेशन में 10 E's की बात करी थी। जो लोग इस सेशन में थे कल, हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैम ने बताया था कि हम किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे, इन डेप्थ हम जानना चाहेंगे हर एक चीज का मतलब क्या है हमारी जिंदगी से। ये जो सेशंस हैं इसमें हम कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ सीख नहीं रहे, बस कोशिश ये है कि अपने आप को थोड़ा बेहतर हम पहचान सके और थोड़ी जो हमारी शक्तियां हैं, जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम उसको और पॉलिश कर सके, ताकि हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके, सोशली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली। क्योंकि सभी यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में या तो कुछ कर रहे हैं या तो कुछ करना चाहते हैं। जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी राह ढूंढ रहे हैं। सही बात है, या कोई और भी जुड़े हैं किसी और रीजन से? सही
2: सही बात है मैम, बिल्कुल।
0: बात। चुप तो रह नहीं सकते ना, मैं पांच बार बार पूछती रहूंगी ताकि कोई देखू सो तो नहीं गया कोई, है ना? तो आज का हमारा ये 40-45 मिनट होंगे, हम उस चीज पे बात करेंगे जो पहला ई था। पहला ई क्या था? किसी ने सुना था ना कल, सबने 10 E नोट किए होंगे। पहला ई क्या था बता सकता है कोई?
2: एम्पावर
0: पावर ऑफ व्हाट?
1: मैम, इमोशनल स्ट्रेंथ।
0: एब्सोल्युटली। मैं तब से यही बात कर रही हूँ कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हम कैसा फील करते हैं, हमारी जिंदगी में इमोशंस क्या रोल फील करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। हम सुबह उठने से लेके जब तक सोने जाते हैं और सोने के बाद भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे सपनों में भी हमारे इमोशंस प्ले करते हैं, हाँ कि ना? अगर आप उदास हैं, अगर आप दुखी हैं और उस फॉर्म में हम सो जाते हैं, तो हमारे सपने भी हमें उसी तरीके के आते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? अगर हम खुश हैं, हमारा दिन अच्छा बीता है, हमने जो चाहा था हमें मिला है, या जो हम अचीव करना चाहते थे, अच्छा सा परिवार भी सुखी है, तो हम अच्छी नींद अगर सोते हैं तो हमें सपने भी अच्छे आते हैं, ऐसा होता है। तो इसका ये मतलब है कि इमोशंस का रोल हमारी जिंदगी में सबसे बढ़ के है। जितना जरूरी खाना पीना, अपने कपड़े, हमारे रहन सहन, हमें अपने फिजिकल नीड्स, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं उनको पहचानना है, उतना ही या शायद कभी कभी उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें हमारी इमोशनल नीड्स को पहचानना। मुझे कोई बता सकता है कि कितने इमोशंस हैं, ह्यूमन एक इंसान में कितने इमोशंस हैं, आपको क्या पता है इस बारे में? कोई गूगल नहीं करेगा इस वक्त, ये नहीं कि जो लोग स्क्रीन पे नहीं है आप गूगल करना शुरू, गूगल में सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप सच्चे हैं तो प्लीज गूगल मत करिए, क्योंकि सबकी स्क्रीन ऑन नहीं है। आप, ये कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं, बस आप अपनी समझ से जितना हम पढ़े हैं, कोई यहाँ पे 20 साल का है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50 साल का है, इन 50, 20, 30 सालों में आपने कितने इमोशंस महसूस करे होंगे, कोई भी बोल सकता है। और जो नहीं बोल रहे मैं इनकरेज करूंगी वो भी बोले, क्योंकि यहाँ कोई गलत और सही जवाब नहीं है। कितने
2: मैम बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लाइक खुशी
0: होते
2: हो,
0: हैं? 5, 6 खुशी होती है, और बताइए। हेलो,
2: हम जैसा फील कर रहे होते हैं वैसा इमोशनल हो जाते हैं हम,
0: जैसे कि दुखी हो गए, खुश हो
2: जैसे
0: गया, गुस्सा
2: हम
0: हो
2: गुस्सा आ
0: गया,
2: जाते हैं, कभी कभी अंदर से
0: 5,
2: नाराजगी होती है, बोल नहीं पाते हैं तो
0: छः,
2: वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी कभी कभी
0: सात खुश,
2: देखिए भी होता है।
0: 8, 8 इमोशंस हो गए। तो बिल्कुल ठीक, 7 या 8 कोर इमोशंस होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमें रूल करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, होस्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन प्लीज। तो अब कायदे से तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन ही नहीं अलाउ हो रही आज शेयर करने के लिए, है ना? मेरा इमोशन इस वक्त क्या होना चाहिए, मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई और होस्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहे स्क्रीन शेयर करने को, या मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए कि अब मैं आगे क्या बोलूंगी, मैंने तो स्क्रीन से देख के पढ़ना था और अब तो मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मैं आगे क्या बोलूंगी, लेकिन मैं फोन करके स्क्रीन शेयर के लिए बोलती हूँ। सो राहुल ने मुझे अलाउ करा है स्क्रीन शेयर करने के लिए। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? फुल
2: यस मैम, यस
0: स्क्रीन
2: मैम,
0: दिख रहा है। सो आज हम पहले ई पे बात करेंगे, जो मैम ने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम EQ भी बोलते हैं, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ये एक प्रॉपर स्टडी है साइकोलॉजी में, इमोशनल क्वोशेंट इसको बोलते हैं, लेकिन हम इस पे बहुत ही बेसिक लेवल पे बातचीत करने जा रहे हैं। ये कोई साइकोलॉजी का सेशन नहीं है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट प्रैक्टिकली इस चीज के क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम इस पे आपस में बात करेंगे। मैं कुछ आपको सिखा नहीं सकती क्योंकि आपके इमोशंस आपके हैं, मेरे इमोशंस मेरे हैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि इमोशंस का रोल क्या है और इसको पहचानना और इसको मैनेज करना। हम इमोशंस चेंज तो कर नहीं सकते, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन गुस्से में क्या मैं किसी को थप्पड़ मार रही हूँ, क्या मैं किसी पे चीख चिल्ला के बात कर रही हूँ, या मैं समझ बूझ के, समझ से सिचुएशन को हैंडल करके बातचीत कर रहे हैं। और हर बार ही जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन होता है, हर एक सिचुएशन में हमारे इमोशन अलग होते हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा, हम ये सेशंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई हमारे एक ख्वाब है, हमारा एक गोल है लाइफ में, उसको हमें अटेन करना है, बट उस गोल को अचीव कैसे करना है। तो हमने सोचा चलो हम वो ईज की बात कर रहे हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस से बात करते हैं। जैसा कि सना ने बताया, हमारे कुछ 8 या 9 जो कोर इमोशंस हैं वो हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि हो गया हैप्पी हूँ, सैड हूँ, वरिड हूँ, नर्वस हूँ, गुस्से में आ गई मैं। ये सारे इंग्लिश के, मैंने जो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ 12-14 अलग अलग इमोशंस हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इसके हमारे को हर भाषा में कोई ना कोई इसका एक वर्ड जरूर मिल जाएगा। तो हम आमतौर पे, हमें लगता है कि हमारे करीबन 12 या 13 अलग अलग इमोशंस होते हैं जो हमारी लाइफ, कुछ इमोशंस नेगेटिव होते हैं और कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिहेवियर को दर्शाते हैं। अगर मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसको कहते ना, अरे इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इससे ज्यादा बात मत करो, ये तो एकदम बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी, इससे ज्यादा ज्यादा इससे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारा बिहेवियर हो गया है। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को बहुत उस पे, हमारे हमारे जो एक्शन है उसको हमारे को गाइड करता है। कुछ लोग होते हैं इसे कितना भी बात कर लो ना, इसे गुस्सा नहीं आता, अब ये तो कहना गलत है कि गुस्से वाला इंसान ठीक नहीं है और जो प्यार से बात कर रहा है वो ही ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है जो गुस्से वाला इंसान है वो ज्यादा समझदारी की बात कर रहा हो, लेकिन उसका बताने का तरीका ऐसा है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इमोशंस को दो भागों में बांटा है, आमतौर पे नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस बोला जाता है। नेगेटिव इमोशंस में गुस्सा आ गया, शर्मिंदा हूँ, उदास हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे नफरत है किसी से, मुझे अफसोस है, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव इमोशन में मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने ऊपर मुझे प्राइड है, यानी कि मुझे गुरूर है अपने काम पे, मुझे गर्व है अपने काम पे, मुझे आशा है, होप है, खुशी है, जॉय है, लव है, ये हमारे अच्छे इमोशंस होते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका यहाँ मैंने नाम दिया है रॉबर्ट, इन्होंने जब स्टडी किया, ये साइकोलॉजिस्ट माननीय साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, इन्होंने ये प्रूफ किया अपनी थ्योरी से कि जो ये 7 या 8 इमोशंस होते हैं ये करीबन 34,000 इमोशंस ह्यूमन बीइंग में कॉम्बिनेशन में पैदा कर सकते हैं। हमें ये सब जानने की जरूरत इस वक्त पे नहीं है, हम कोई स्टडी नहीं कर रहे, हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इमोशंस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे एक्शंस इन्हीं से दर्शाए जाते हैं। इसलिए हमें इनको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी और आप अपने इमोशंस मैनेज करना शुरू करोगे, लेकिन हम सबको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरा प्राइम इमोशन क्या है। कोई भी चीज अगर खराब होती है दिन भर में तो क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या मैं उदास रहती हूँ, या मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूँ उस सिचुएशन के, मैं कोशिश करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकूँ। मकसद यही है कि हम अपने इमोशंस को पहचाने, इसको हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में या फॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन जब हम उठते हैं उठने से सोने तक, सोने के बाद भी हम इसी 34,000 के जो चक्र है इसमें फंसे रहते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहता है या किसी को कुछ लग रहा है कि गलत है या सही है, हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसकी फीलिंग कैसी होती है, हम इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, नर्वसनेस होती है हमें, जैसे एग्जाम देने जाना है और नेगेटिव इमोशन है, डर है हमारे अंदर, तो डर से क्या होगा, वरी होगी, नर्वसनेस होगी, तो क्या कोई फायदा होगा हमें एग्जाम देने में, नहीं। लेकिन अगर हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, हमने बार बार अपना रिविजन किया है, तो उस नेगेटिव इमोशन को हम पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं, वरी को हम कॉन्फिडेंस में लेके आ सकते हैं, हम वरी जो है हमारी उसको बदल के हम कॉन्फिडेंस में डाल सकते हैं। क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं पहले से तैयारी करो, आखिरी मोमेंट पे कुछ मत छोड़ो, लिखित में प्रैक्टिस करो, बार बार उसका रिविजन करो, ताकि जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो हमारा एक्शन क्या होगा कि हम आधा पेपर भूल जाएंगे, पेपर देख के डर जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा आंसर क्या लिखना है, हो सकता है गलत मलत लिखा है। लेकिन अगर हमने उस नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में अपने एक्शन से बदला हो तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए उसकी तैयारी हमने नहीं करी, तो भी चैप्टर्स तो हमने सारे पढ़े हैं, तो अपनी समझ बूझ से हम रिस्पॉन्ड करेंगे ना कि रिएक्ट करेंगे। घर से निकलने से पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पे भी हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती, पूरा दिन खराब हो जाता है, या रास्ते में जा रहे हैं, आजकल बारिश का मौसम है, गाड़ी तेज निकली, कपड़े खराब हो गए, कीचड़ कीचड़ हो गया, गुस्सा आ गया, बस इतना अच्छे से मैं बन ठन के जा रही थी और सारा खराब हो गया, मेरी तो मीटिंग थी, मेरा मेरा तो अच्छा काम होने जा रहा था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हो गया, ये तो सिचुएशन सामने आ गई, अब ये मेरे ऊपर है, मैं अपना इमोशन कैसे संभालूंगी, गाड़ी वाला तो निकल गया, हो सकता है उसकी भी कोई इमरजेंसी हो, तो हम एम्पैथी में बदल सकते हैं अपने इमोशन को, क्योंकि भाई अब तो ये हो गया ना, अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ, अब अगर मेरे को अच्छे मीटिंग में जाना है तो मुझे सॉल्यूशन निकालना है ना उसका, हो सकता है मैं रुक के धो लूँ उसको, मेरे चलते चलते तक शायद वो सूख जाए, लेकिन उससे जो मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम करना है उस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम इमोशनल क्वोशन्ट बोलेंगे कि सिचुएशन आने के बावजूद हम उसको मैनेज कर पाए। ये कोई गुट्टी नहीं है कि हमने घोली पानी में डाली और पी गए, ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा। और अगर हम चाहेंगे तभी ये होगा। अगर हमें लगेगा कि इसके कोई फायदे हैं हमारी जिंदगी में, अगर हमें लगेगा कि नहीं जैसे हम हैं हम वैसे ही ठीक है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे हम आज तक रिएक्ट करते आए हैं ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लीडरशिप के सेशंस ले रहे हैं और अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू दे रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है और उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम को ना समझ के, प्रॉब्लम को पर्सनलाइज ना करके, सिचुएशनलाइज करके हमें उसके कैसे आंसर्स ढूंढने चाहिए। कई बार बहुत गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। किसी ने तेरे नाम पिक्चर देखी होगी तो देखा होगा ना सलमान खान उसमें वो 10 तक गिनती करता है। किसी ने देखी है वो मूवी? उसमें उस पिक्चर में सलमान खान को बहुत गुस्सा आता है, वो मार मारता रहता है सबको, लेकिन बाद में शायद जो हीरोइन होती है वो बोलती है कि तुम 10 तक गिनती करो तो शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। देखी है किसी ने ये मूवी या मैं ही सबसे पुरानी हूँ यहाँ पे?
3: मैंने देखी है मैम,
2: मैम
0: सबने देखी है। तो वो क्यों करता है? उसको,
2: मैम
0: उसने एक मैनेजमेंट टेक्निक बना ली कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में रिएक्ट कर जाता हूँ, तो रिएक्ट ना करके मैं कैसे उसे कंट्रोल करूँ और उसको मैं पॉजिटिव। मैंने ये एज ए एग्जाम्पल ही दिया है, लेकिन ये कोई सिंगल तरीका नहीं है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इमोशनल क्वोशंट के ऊपर हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारा मेटीरियल अवेलेबल है, जिनको कि लगता है उनकी जिंदगी में नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाएं और कुछ कुछ स्पीकर्स हैं या कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं आप पढ़ने की कोशिश करिए उनको, वो आपको शायद एक बेहतर सोशली एंड पर्सनली वो आपको हेल्प करेगा। और जहां तक लीडरशिप की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी है। आपने मैम को कभी रेयरली गुस्से में देखा होगा, आपने हमेशा देखा है कि वो कितनी बारीकी से इमोशंस को, सिचुएशंस को सिचुएशन पे रखती हैं, पर्सनलाइज नहीं करती। ये बहुत मेहनत से आता है, बहुत एक्सपीरियंस से आता है, ओवरनाइट नहीं आ सकता, बट एज ए लीडर ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें गोल पे फोकस करना है, इमोशन पे नहीं। मेरे को कैसे बोल दिया इसने, अरे मैं तो ये हूं मैं तो वो हूं, मुझे बोल कैसे दिया इसने। बट वो आप उसे पर्सनलाइज ना लीजिए। अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियां अपनी वीकनेस को पहचानिए एज ए लीडर और उस पे वर्क करिए। अगेन आई वुड से इट इज अप टू अस कि हम इसकी वैल्यू पहचानना चाहते हैं कि नहीं पहचानना चाहते। इस स्लाइड में हम ये बोल रहे हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, इसके ऊपर हम कई चीजें बात कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव इमोशंस खराब होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा भी स्टडी किया है कि जरूरी नहीं है हर बार और हर नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए नेगेटिव ही रिजल्ट लेके आए। कभी कभी आपने सुना होगा ये इंसान ना स्ट्रेस में बड़ा अच्छा काम करता है, ऐसे सुना है किसी ने कि भाई इसको जब बिल्कुल सर पे आ जाती है ना तब इसकी, ये किसी की नहीं सुनता, ये देखना बहुत अच्छा काम करता था, क्योंकि उनको मैनेज करना आ गया है ये आर्ट कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। पूरा दिन कुछ, कई हमारी फ्रेंड ऐसी होती थी कुछ नहीं पढ़ती थी, सारा साल ऐसे ही इधर उधर डोलती रहते थे, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आता था तो दिन रात पढ़ाई करके, क्योंकि उनको डर था कि मैं पीछे ना रह जाऊं, तो उस डर को उन्होंने पॉजिटिव इमोशन बनाया और दिन रात पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट लेके पास हो गए, है ना। और कुछ लोग हैं पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बना लेते हैं, हाय मतलब प्रैक्टिस करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि डर आ गया है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसी को बैलेंस करने की जो कला है उसको इमोशनल क्वोशंट हम कहते हैं। तो हमें हर बार नहीं सोचना कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, कई बार ही नेगेटिव इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में हमें सीख देने के लिए, ये समझाने के लिए कि शायद हम कहीं गलत जा रहे हैं, शायद हमें जरूरत है अपने कोर्स करेक्शन की। कभी कभी फेलियर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब फेलियर ही नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम राह पे, किसी राह पे चल भी रहे हैं कि नहीं, ऐसे अंधाधुंध चले जा रहे हैं, एक रैट रेस में सब सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो हमने ईक्यू समझा, इमोशनल क्वोशंट समझा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो पजल है जो हम 10 E's की बात कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा हमारा गोल डिफाइन करने में, हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन को अब हम लिंक करेंगे कि हम गोल्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम हमने बात करी कि यहाँ सभी लोग किसी ना किसी गोल से या किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए ही यहाँ पे जुड़े हैं। किसी को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी को ग्रेजुएशन करना है, किसी को कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, नर्सिंग का करना है, पार्लर का करना है, स्टिचिंग का करना है, कोई एम्ब्रॉयडरी करके कुछ करना चाहता है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वो कुछ क्या है वो भी तो हमें डिफाइन करना है ना। लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस में घिरे रहेंगे, मेरे घर में तो बहुत परेशानी है, मेरे को तो निकलने नहीं दिया जाता, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अरे जाके भी मुझे काम करना पड़ता है, मुश्किल से 1 घंटा निकालती हूँ, अगर हम इन सब चीजों में फंसे रहेंगे तो हम लाइफ में गोल ही सेट नहीं कर पाएंगे, और अगर गोल ही सेट नहीं होगा तो हम उस राह पे चलेंगे कैसे। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन, कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम अपना गोल डिफाइन कर कैसे सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, ये स्लाइड हम आपसे शेयर कर देंगे। अगर हम इन 10 क्वेश्चन के आंसर करने शुरू करें तो हो सकता है हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये हम खुद से पहचान पाए। ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं ये वो ही डिफाइन करे, तभी वो लाइफ में खुश रहेंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि गोल उनका होना चाहिए। हम गाइड कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उस राह पे चलने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर तो हमें ही पता है ना, क्योंकि हम सच्चाई से आंसर देंगे इन इन सब क्वेश्चंस का। मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे खुश क्या करता है? किसी को सिलाई खुशी देती है। अभी हम पीछे किसी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला मुझे, मैं सीख तो सुइंग रही हूँ लेकिन मुझे बनना पार्लर का काम करने में बहुत मजा आता है, तो मैं स्विंग सीख के पार्लर भी करूंगी। ठीक है, आप स्विंग सीख लो, बट वो बहुत क्लियर थी कि मुझे ब्यूटी का काम करने में बहुत मजा आता है, बट हो सकता है उनके परिवार वाले इस वक्त अलाउ ना कर रहे हो या सीट खाली ना हो ब्यूटी और वेलनेस में, तो इसलिए उन्होंने अभी अपना ब्यूटी का बाद में रखा। तो उनको बहुत क्लियर था कि उनको मजा किस चीज में आता है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को एडवांटेजेस में कैसे बदल सकती हूँ, मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए फाइनेंसेस क्या क्या चाहिए होंगे और इन फाइनेंसेस को मैं अरेंज कैसे कर सकती हूँ। क्या कभी कभी हमारा गोल ऐसा होता है कि हमें लगता है ये फुलफिल नहीं हो सकता, कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन वो तो महंगी होती है, मैं पायलट बनना चाहती हूँ लेकिन वो तो बहुत महंगी होती है। उसको आप पहले डिफाइन करेंगे तभी तो, आप पहले पहचानेंगे तभी तो आप उसको ब्रेक डाउन करके उस लेवल तक लेके आएंगे कि उसे पूरा किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको पहचानना कि वो ऐसा काम क्या है जो आप रोज उठ के करीबन 30, 40, 50 साल तक आगे करना चाहते हैं। जो बच्चे आज 20 साल के हैं वो कम से कम 60 साल तक काम करेंगे, तो 20 से 60 साल की जो जर्नी, यानी कि 40 साल अगर आपको काम करना है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, आजकल तो 80, 90 साल के भी जो हमारे मेंटर्स हैं वो भी हमें गाइड करते हैं अभी तक, तो आप सोचिए काम करने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। तो अगर आपको 40, 50, 60 साल तक आगे काम करना है तो ऐसा क्या काम है कि रोज सुबह उठेंगे तो उतने ही खुशी से आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस रोज आएंगे, ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी का काम होगा तो चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज तो रोज आएंगे, क्योंकि चैलेंज के बिना तो आई थिंक लाइफ का सर्कल पूरा नहीं है। लेकिन उन चैलेंजेस को हम तभी एंजॉय करेंगे अगर काम हमारी पसंद का है। अगर आज वो काम हम नहीं कर सकते तो मैं उनकी तरफ आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, उनको भी हमें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। बट ज्यादातर लोग जो है ना, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, अगर मैं सिलाई सीखने गई और मेरी सिलाई सबसे अच्छी नहीं हुई तो शायद मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा, अगर मैंने अचार बनाना सीखा और मेरे अचार खराब हो गए तो हो सकता है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, हो सकता है मैंने बिजनेस करना शुरू किया और मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया तो मेरे पैसे तो खराब हो जाएंगे तो मैं नहीं करूंगी। ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है, और फियर ऑफ फेलियर हम सब में ही है। ये लाइफ स्किल के सेशन देने से पहले मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर था, अगर लोगों को मेरे सेशन में नींद आने लग गई तो मैं क्या करूंगी, अगर उनको मेरे सेशन अच्छे नहीं लगे, अगर मेरी बातें समझ नहीं आई, अगर वो सिर्फ स्क्रीन ऑन करके बैठे रहे और मेरी बात का कोई मतलब नहीं समझे तो मुझे कैसे लगेगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर था मेरे अंदर, पर मैंने अपना काम पूरी जस्टिफिकेशन से किया, जो टॉपिक था उसे समझा, उसमें जितनी मेरी समझ थी उसके सारे जो पॉइंट्स थे मैंने लिखे। हो सकता है एक बच्चे को भी या एक बेनिफिशियरी को भी उससे फायदा हो जाए, तो वो जो फियर ऑफ फेलियर है ना मेरे, उससे मैं मोटिवेट हुई कि चलो एक शायद मेरी 4-5 घंटे की मेहनत से हो सकता है एक इंसान को कुछ मोटिवेशन मिल जाए और वो अपने इमोशंस को पॉजिटिव की तरफ मोड़ना चाहे और हो सकता है वो अपना गोल डिफाइन करने में सक्षम हो सके। तो इसलिए फिर वो फियर ऑफ फेलियर को मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो मुझे अच्छे से करना है, फियर ऑफ फेलियर से उसको बांध के नहीं रहना। बट हम सभी आगे बढ़ने से डरते हैं, कुछ नया काम करने को बोलो तो हमें डर लगता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, हमारे ऊपर हमारे लिए ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। सो नेवर बी शाय, नेवर बी अफ्रेड, मतलब कभी डरिए मत कि हम हार जाएंगे, हमें हमें लोग हंसेंगे, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। फेल होंगे ही होंगे, आप कितनी बड़ी कंपनी के लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, हमारी लाइब्रेरी में इतनी बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा। बड़ी सी बड़ी कंपनी उठा लीजिए जिसके जो बायोग्राफी है उसमें ये नहीं लिखा होगा ये ऑटोबायोग्राफी में कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ या मैं कभी फेल ही नहीं हुई। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ कदम तो गलत हुए ही होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बन गए और एक छोटी सी गलती से भी वापस नीचे आ गए। ऐसे बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं कि कैसे बड़े बड़े एम्पायर्स जो हैं वो नीचे आ गए। तो फेलियर तो पार्ट ऑफ सक्सेस है ही, अगर आप सक्सेस का कर्व पढ़ेंगे तो सक्सेस में फेलियर कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन क्या हम उससे डर के रुक जाए, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको डर के रुकना है तो आप डर के रुकिए, बट अगर आपने हमारे सेशन ज्वाइन किया है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप फियर ऑफ फेलियर से रुक जाएं, थम जाएं। कोशिश करिए उसको आइडेंटिफाई करें, उन जो फेलियर्स हो सकते हैं पहले से उसकी तैयारी करके हम चले आगे। रास्ते में अगर रुकावटें आएंगी तो उसको मैनेज करना हमें सीखना है। आप जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं, मैम ने भी सबको बताया, एक डायरी जरूर मेंटेन करिए, जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं। हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में अगर तोड़ेंगे, यानी कि हमें एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं अपनी बुटीक खोल लूंगी, तो उसको मुझे ये स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बुटीक खोलूंगी तो आज से 3 महीने तक तो पहले मैं बेसिक स्टिचिंग सीखूंगी। बेसिक स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे 10 या 15 लोगों के फ्री में बनाने पड़ेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है। हो सकता है मुझे पैसे मिले उस चीज के, हो सकता है मुझे मेरे मुंह पे आके फेंक दे कि ये क्या क्वालिटी तुमने दिया है। क्या मैं रुक जाऊंगी तब, ये आपकी मर्जी है। अगर आप सीख के आप बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं दोबारा ठीक करके देती हूँ, मैं इसके कोई पैसे भी नहीं दूंगी, ये आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा ही करिए। लेकिन अपने लक्ष्य को ब्रेक करिए कि अगर 1 साल में बुटीक खोलना है तो पहले 3 साल में मेरे को बेसिक स्टिचिंग सीखनी है। अब मैं बेसिक स्टिचिंग पे करके सीख रही हूँ कि रीड के सेंटर पे जाके सीख रही हूँ जहाँ पे मैं सेफ भी हूँ, मुझे अच्छे टीचर मिले हैं। बेसिक के बाद मैंने 3 मंथ्स का एडवांस स्टिचिंग लिया, उसके बाद मैंने छोटा बुटीक खोला, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बड़ा बुटीक खोला। 1 साल में नहीं खोल पाई, हो सकता है 1.5 साल में खोला। अपने गोल को रीएडजस्ट करिए। तो मेरा मतलब यह है कि अपने गोल को पहले डिफाइन करिए और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए और हमेशा उसे रिविजिट करिए कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई कि नहीं कर पाई। जहां फेलियर हुआ उस फेलियर को एक्सेप्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए, उसे कुछ सीखिए। एवरी टाइम वी हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स, फ्रॉम द रोड ब्लॉक्स। जो भी बीच में रोड ब्लॉक्स आए हैं, अनहैप्पी सिचुएशंस आई हैं, कोविड आ गया, कोई प्रॉब्लम और आ गई, तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए हमें उसको पॉजिटिव में ही बदलना है। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल की बात करें, बार बार इमोशन आ जाते हैं कि हमें घबराना नहीं है, उनको नेगेटिव इमोशंस में नहीं बदलना है। सॉरी मैंने टाइम भी नहीं देखा। यहाँ पे कुछ किताबें हैं जरूरी नहीं है ये सारी किताबें हमारे लाइब्रेरी में हो, लेकिन इसके कई कई जो एक्सर्ट्स हैं, यानी कि जो जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं, वो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। बाकी किस लैंग्वेजेस में है मैं रिसर्च कर सकती हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हम चाहें तो उनको पढ़ के हम और अच्छे से अपना गोल डिफाइन करके आगे खुद से बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट नॉट टू फॉलो योर ड्रीम्स, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव कि अपना गोल आइडेंटिफाई करिए और अपने पॉजिटिव इमोशंस को पहचानिए। नेगेटिव इमोशंस को हम किस तरीके से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेशन ऑन द 10 E's। जो पहला ई था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का, आज हमने वो कवर किया है। अगले सेशन में मैम का लीडरशिप का सेशन होगा, 2nd E पे हम उसके बाद बात करेंगे, राइट? अब इसके साथ कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है या कोई गोल, या अब जिसने डायरी रखनी शुरू करी है कोई फीडबैक देना चाहता है? बिकॉज क्या है ना, हम सुन के बंद कर देंगे ये जूम सेशन और कहीं आगे नहीं पढ़ पाएंगे, जहां थे वहीं पे ही रहेंगे। इसलिए वी शुड बी एनकरेजिंग ईच अदर टू इंटरैक्ट। सो आई एम स्टॉपिंग नाउ एंड आई एनकरेज एवरीबडी, आपके साथ बेनिफिशरीज भी अगर हैं तो उनको भी एनकरेज करिए कि कुछ इस इन सेशन से अगर समझ में आया या कुछ सीखा, और मुझे भी फीडबैक दीजिए कि अगर ये सेशन बहुत वर्बोस था, यानी कि वर्ड्स बहुत ज्यादा थे, तो मैं इसे और कम और सरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी।
3: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बायरेडीपल्ली.
0: हेलो संगीता जी।
3: यस मैम, जो आपने अभी इमोशंस के बारे में बताया, आई डोंट रिमेम्बर कोविड टाइम पे मैंने एक चैप्टर था घृणा का महत्व, हिंदी में किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना था. दैट वाज अ डिग्री स्टूडेंट, मुझे याद नहीं है. बट वो इमोशंस जो हमारा हेट्रेड इमोशंस है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रही थी, उसको बहुत डिटेलली उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम घृणा नहीं करेंगे तो जो बुराई है उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं तो उससे डर के, अरे लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, इससे डर के गलत काम नहीं करेंगे. वो पूरा बहुत अच्छे से था. तो आप जब समझा रहे थे तो वो चैप्टर में रिकॉल कर रही थी मैम.
0: एब्सोल्युटली राइट। हम कभी कभी इतना डर जाते हैं नेगेटिव इमोशन से ना। जब मैंने पूछा, मैं 100% ये श्योर हूँ कि आज जो 60 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी अच्छा नहीं फील कर रहे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें परेशान कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी परेशानी। सबको ये टाइम सूट करता है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोग अपना वक्त निकाल के एग्जैक्टली 3 बजे आ गए और वो अच्छा भी फील कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हम नहीं बोला नहीं, क्योंकि हम डरते हैं कि हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही सोचा जाएगा। भाई मेरे को नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैंने सुबह खाना नहीं खाया वक्त से, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मेरा नहीं मन है सेशन अटेंड करने का, मेरा नहीं मन है वीडियो पे आने का, मेरा नहीं मन है कुछ बोलने का। तो वो हमारा मन है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। मैं आपकी जिंदगी में आके उसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये हम पे है कि हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। ये हम पे है कि दिन भर में जो हमारे सामने आता है हम उसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सब हमारे हाथ में, क्योंकि ये हमारी लाइफ है।
3: नाउ फॉर दिस आंसर मैम, कि आप कैसी हैं. मैं खुश हूँ मैम.
0: आप खुश हैं? अच्छा, वेरी गुड। और आप खुश हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पॉजिटिव इमोशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है, मतलब इमोशन से हमारे एक्शन होते हैं। मैं जब ये सेशन बना रही थी तो मैंने कई वीडियोस और कई साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज थी उनको पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मेरे ब्रदर ने तो इस सब्जेक्ट पे PhD, डबल PhD करी है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे। तो वो अभी भी पढ़ रहा है, उसको करीबन 12 साल हो गए हैं ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए, और अभी भी वो पढ़ रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो हम आधे घंटे के सेशन में तो इस चीज पे बात भी नहीं कर सकते, और मैं तो इस चीज पे बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो जब हम इन चीजों पे मैं पढ़ रही थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई कि जो पॉजिटिव इमोशन है इमोशन जो बना है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेराइवेटिव है. इंग्लिश का जो वर्ड है इमोशन, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेरिवेटिव है. इमोशन यानी कि जो हम फील कर रहे हैं उससे हमारा मोशन होगा, उससे हमारा रिस्पॉन्स होगा. जो हमारा इमोशन है उससे हम रिस्पॉन्ड करेंगे. हम खुश हैं तो सब खुश हो जाएगा, हमारे आसपास के लोग खुश होंगे, हम खुशियां फैलाएंगे. अगर हम उदास हैं, गुस्सा है, अब ये इमोशन भी जरूरी तो है.

0: डॉटर मदर सन जितने हैं रिलेशनशिप वो इमोशन पे ही बने, तो इसकी अहमियत तो हम हटा नहीं सकते, इसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। आपके लिए मैं नहीं मैनेज कर सकती, आप मेरे लिए नहीं मैनेज कर सकते, अपने अपने पहचान के और अपने अपने मैनेज करने। मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोग प्लीज कुछ शेयर करिए। हेलो
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
0: स्वाति जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे?
0: मैं अच्छी हूँ, मुझे खुशी हो रही है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठा किया था पिछले 1.5 दिन में, मैंने सारा शेयर कर दिया। कुछ कुछ चीजें बच गई हैं, मैंने बहुत सारा पढ़ा था लेकिन फिर भी काफी कुछ शेयर कर दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा है।
1: यस मैम, काफी टाइम ना, मतलब कुछ चीजों पे ऐसी धूल सी जम जाती है, तो वो सेशन के जरिए आगे चल के आता है हमारे सामने और फिर से लगता है कि नहीं, हमें ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। और काफी टाइम पे तो मैम ऐसे होता है कि निगेटिव जो चीजें हमारे साथ घटती है सुबह से लेकर शाम तक, वो ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में घूमती रहती है, और जो कुछ अच्छी बातें होती है ना, तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। तो ऐसा कुछ बताइए कि हम निगेटिव चीजों के जल्दी से भूल जाए।
0: ये जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे, ये सबसे पहले उठ के आ रहा था कि नेगेटिव इमोशंस जो है ना वो सबसे ज्यादा भारी हो जाते हैं। हो सकता है नेगेटिव इमोशन एक होगा, वो इमोशन या सिचुएशन हुई, मान लीजिए लड़ाई हो गई सुबह सुबह किसी से, तो वो हमारा इमोशन नेगेटिव हो गया, या कोई बीमार हो गया घर में तो नेगेटिव इमोशन हो गया हमारा। अब वो नेगेटिव इमोशन पूरा दिन हमारे साथ रहता है, पूरा दिन, पूरे दिन में चाहे 100 से भी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस आए हों, लेकिन जो उसका भार है, जो उसका बोझ है यहाँ पीछे दिमाग में, वो घर कर जाता है, उसको हम जाने ही नहीं दे सकते। अब ये डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने नेगेटिव इमोशन पे बहुत ज्यादा स्टडी करी है। इस पे आप काउंसलर्स जो होते हैं, जो आपने सुना होगा कि काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है, हमारे यहाँ तो इंडिया में मेंटल इलनेस को तो मतलब इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसकी इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करी जाती, लेकिन बाहरी देशों में ये एक कॉमन टॉपिक है। अगर मुझे डिप्रेशन है या मुझे दुख है या मैं नेगेटिव इमोशन से घिरे रहती हूँ, तो हम वो लोग डरते नहीं हैं अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में या फिर ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाने में जिनसे वो अपनी बात कर सके। एक एक घंटे का सेशन होता है और वो उनसे बात करते हैं। हम यहाँ पे अपनी सहेलियों से बात करके मन हल्का कर लेते हैं, ऐसा होता है। एक सहेली सबकी होती है जिससे इतना पूरे दिन की भड़ास निकाल दो, ऐसा ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अब ठीक लग रहा है, अब मुझे ठीक लग रहा है, अब ठीक। तो ये एक्चुअली हम रियलाइज नहीं करते, ये हमारा नेगेटिव इमोशन मैनेजमेंट का तरीका बन गया है। कुछ कुछ लोग होते हैं अपनी मदर से बात करके बहुत खुश होते हैं, या कुछ अपनी डॉटर से, क्योंकि वो एक ऐसा बॉन्ड है कि कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हम किसी से बात कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई कई लोगों को देखा है कि वो भगवान की मूर्ति से बात करते हैं कि भाई हम किसी से नहीं बात कर सकते। कभी कभी ना भगवान के पास बैठ के वो अपने मन की पूरी बात कह देते हैं कि अब मैंने आपको बता दिया, अब आप देखो कि क्या हो सकता है। वो और कुछ नहीं है, वो अपने दिल की जो बातें हैं वो बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये चीजें मुझे तकलीफ दे रही है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोझ कम होने लगता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कई बार कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। वो एक सिचुएशन प्रॉब्लम है, ये क्या मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती? अगर मैं उसे नहीं सॉल्व कर सकती तो वैसे भी दुखी होने का मेरा कोई रीजन ही नहीं। अगर मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ तो मुझे ये देखना है कि परेशान होने की बजाय मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं अपने दिन भर की, जो भी दिन भर की परेशानियां हैं, अच्छी चीजें उसमें जरूर लिखते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो सीक्रेट डायरी मेंटेन करते हैं, वो किसी को भी पता नहीं होता, सीक्रेट डायरी होती है, आज के दिन की ये 4 बातें हैं वो उसमें मैंने लिख दी और मेरी सीक्रेट डायरी सिर्फ मेरे पास रहेगी। ये भी एक तरीका होता है कुछ लोगों का। अब ये तरीका आपका क्या है ये तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, राइट? लेकिन नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देना एक वक्त से ज्यादा वो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ चारों को खराब कर सकता है। फिजिकल हेल्थ कैसे? आप परेशान रहेंगे, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, सिर में दर्द, चक्कर आना, डिप्रेशन होना। फिजिकल कैसे? भूख नहीं लगेगी आपको, गुस्से में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तो फिजिकल हेल्थ वैसे ही खराब हो जाएगी। इमोशनल हेल्थ कैसे? सब आप दुखी हैं, आपके बच्चे दुखी

0: रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपके हस्बैंड, आपकी मदर सब आपसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा दुखी, क्या तो दुखी रहती है, पता नहीं क्या है, बोलती भी नहीं है क्या प्रॉब्लम है ना। प्रोफेशनल कैसे, आप अपने काम पे ही ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब आपके इमोशंस तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन उसे आइडेंटिटी, उसको पहले अपनाना बहुत जरूरी है कि, और ये मानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ शायद कि जिसको इतनी बड़ी दिक्कत है, और भी लोग हैं दुनिया में जो शायद इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतों से, इसमें अमीर गरीब का कोई वो नहीं है। हो सकता है बहुत अमीर लोग हैं, पैसा भरपूर है, फिर भी नेगेटिव इमोशन बहुत सारे हैं। और एक इंसान है जो अपना काम करता है, सिंपल लिविंग है, रोजी रोटी है, घर परिवार है, और आप देखेंगे वो इतना खुश है, इतना खुश है कि पूछे ही मत। वो कोई मेटीरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं कभी कभी भी बनती होती। नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस सारे हमारे अंदर हैं, कितनी तवज्जो हमें किसको कब किस वक्त पे देनी है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी, जैसा कि संगीता जी ने भी कहा कि जो नेगेटिव इमोशन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टू कम बैक टू से कि पॉजिटिव इमोशन की महत्व क्या है हमारी लाइफ में, उनसे दोस्ती करने के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होना भी बहुत जरूरी है।
1: एंड वन मोर थिंग मैम, मेरे साथ तो ऐसे होता है मोस्टली, आई थिंक सबके साथ, जब हम हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से जब दुख है किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो कम हो जाता है, एंड हैप्पीनेस वो डबल हो जाती है व्हेन आई शेयर विद समबडी एल्स.
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये फॉर्मूला भी है कहीं पे, मैंने ये भी पढ़ा था, ऐसा हैप्पीनेस का फॉर्मूला एंड जो नेगेटिव एंगर का जो फॉर्मूला है, बिल्कुल आपने जो बोला ऐसा है, एक उन्होंने डिराइव करके लिखा हुआ। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ साइकोलॉजी में कि वो फॉर्मूला डिराइव कर दूं, लेकिन आई रेड अबाउट इट।
1: यस मैम, जब गुस्सा होता है बर्स्ट हो जाता है तो वो अपने आप कम हो जाता है, और दुख रहते हैं किसी से बोल के रो देते हैं तो भी वो इमोशन बस कम हो जाता है, और हैप्पीनेस किसी से
0: लेकिन
1: भी कितना भी शेयर करो डबल ट्रिपल होता जाता है.
0: हमें ये ध्यान रखना है कि गुस्से में हम गुस्सा कर किस पे रहे हैं, कहीं गुस्से में हम ऐसा गुस्सा किसी पे ना कर दें कि जो हमारा पूरा रिलेशनशिप उससे खराब है। उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। उस पॉइंट पे, उस ट्रिगर पॉइंट पे हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन यानी कि हमारा एक्शन क्या है, उसको पहला ई जो मैम ने कल बताया था, ई क्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट, उस बैलेंस को कि नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन का जो वो बैलेंस है, कहाँ भाई नेगेटिव इमोशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा, या तो मैं रो के निकालूंगी, गुस्सा करके निकालूंगी, भड़कूंगी किसी पे, या लिख के, या किसी को बोल के, या किसी और तरीके से नेगेटिव इमोशन तो निकलेगा ही निकलेगा। नहीं निकलेगा तो वो प्रेशर कुकर हो जाएगा, फट जाएगा किसी दिन, तो उसको निकलना भी जरूरी है। बट उसको मैनेज कैसे करेंगे, और मैनेज करने का तरीका हम सबका अपना है, और उसका रिएक्शन का एक्शन भी हमारा अपना है, और उसका रिजल्ट भी हमारा अपना है, राइट? बट इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे को गोल डिफाइन करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव की तरफ कैसे लेके जाना है। तो आज हमने दो चीजों को रिलेट करा है, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, हम दोनों चीजों को अलग अलग भी समझ सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और गोल सेटिंग, कि हमें लाइफ में गोल कैसे सेट करना चाहिए।
1: हेलो मैम. मैम
0: हाँ जी ज्योत्सना जी,
1: मुझे भी आज ये फील हुआ है कि मैं भी अपना जो नेगेटिव इमोशन है वो मतलब कैसे यूटिलाइज करती थी. आज तक पहले मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, जैसे मैं मुझे कभी बहुत ज्यादा किसी से लड़ाई हुई, गुस्सा हुआ तो मैं मतलब कैसे यूटिलाइज करती थी. आज तक पहले मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, जैसे मैं मुझे कभी बहुत ज्यादा किसी से लड़ाई हुई, गुस्सा हुआ तो मैं बहुत ज्यादा काम करती थी, जितने मेरे पेंडिंग्स काम होते थे मैं सारे कंप्लीट कर देती थी उस दिन, जबकि मैं वैसे भी बहुत अच्छा करती थी ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे किसी से गुस्सा हो गया या किसी से फाइट हो गई या कोई बात हुई तो मैंने उस दिन सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिए. तो मुझे आज पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जब मैं गुस्से में आती थी तो मैं ज्यादा काम करती थी. तो अब मुझे ये चीज और याद है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि मुझे अपने नेगेटिव इमोशन को और कैसे बैलेंस करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मैम जो लोग बहुत डरते हैं कुछ भी मतलब करने से पहले, करना चाहते हैं प्रैक्टिस करते हैं और करने के बाद उन्हें ये डर लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे. वैसे तो ये डर सबके अंदर होता है,
0: हम सब
1: लेकिन सबके अंदर होता है वन टू ऑल, अपने अपने लेवल पे मैम सबके अंदर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं. पर ठीक है, आज हमें और गाइडेंस मिले कि वो अपना स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन. थैंक्स
0: मैम,
1: टू यू
0: मेरी
1: एंड
0: एक फ्रेंड थी, उसकी मदर जब गुस्से

0: में आती थी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो जिस दिन उसका खाना बहुत अच्छा बना होता था ना, तो हम उसको कहते आज मम्मा गुस्से में थी क्या। ऐसा बहुत होता है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को भी पॉजिटिव में चेंज कर पाते, हमें पता नहीं होता लेकिन हम वो कर सकते हैं।
1: जी
0: हाँ जी, तुषार आप बोलना चाह रहे।
1: हाँ जी, 1 साल पहले आप हमारा जो कारेगांव का सेंटर था पुणे में, वहाँ आप इस समय आई थी, तब आपसे जो बात हुई थी मैम, उससे जो पॉजिटिव वाइब्स हमें मिले थे, वो आज भी हमें काम करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। हर हमारा जो सेंटर है सर मैम, यहाँ पर इंडस्ट्री वर्क और माइन वर्कर्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो उन बच्चों में जो पुअर बैकग्राउंड होते हैं उनका कोई भी एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती उनके घर वालों को, तो यहाँ पर काम करने पर जो बच्चे आते हैं तो उनको नहीं क्या पुराने जमाने में जो टीचर थे हाथ में लाठी लेकर बड़ा बड़ा चश्मा पहनते थे और गुस्से से बोलते थे, ऐसा ऐसा कंसेप्ट उनके दिमाग में बैठ गया था। लेकिन जब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड के साथ, तो जो तारे जमीन पर में जो आमिर खान सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, कि ऐसा भी टीचर होता है जो बच्चों के साथ उनका उनके जैसा रहकर काम करता है, और जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डरते हैं सभी चीजों से, नई चीजें करने में, तो उनके साथ वैसा रहकर इनकरेज करके उनके अंदर भी जो क्वालिटी होती है वो बाहर निकलने का काम आपके जो सेशंस होते हैं मैम, उससे हमें इनकरेजमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, आप जो मोटिवेट करते हैं हमें और गाइडेड करते हैं, इसलिए
0: थैंक यू तुषार। हमने ये देखा है कई बार बच्चे डरते हैं साइकिल चलाने से क्योंकि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, लेकिन पेरेंट्स जो है वो छोड़ तो नहीं देते ना, वो फिर भी इनकरेज करते हैं, नहीं आप साइकिल चलाओ, गिरोगे तो क्या हुआ। कोई वहां पे कुछ बांध देता है, कपड़ा बांध देता है, अच्छा घुटने नहीं छिलेंगे, कभी हेलमेट पहना देते, अच्छा चोट नहीं लगेगी, तो हम उसको मैनेज करने का तरीका। लेकिन हम रुक तो नहीं जाते ना, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम फियर ऑफ फेलियर नहीं लेके आएंगे। फेल तो होना ही है, लेकिन फियर ऑफ, पहले से ही क्यों मान ले कि हम फेल होंगे। अभी पीछे कोई बातचीत चल रही थी तो हमने ये सुना था कि हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं क्योंकि अर्थ की जो रेडिएशंस है वो खींच रही है हमको अपनी तरफ, ग्रेविटी खींचती है ना, तभी तो हम उड़ते नहीं रहते, हम अर्थ से चिपक के रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। तो हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और जो हम सोचते हैं पावर ऑफ माइंड, वो बात कभी कभी सच हो जाती है। हम कहते हैं ना कि हम आज ये सोच ही रहे थे, अरे और को हो ही गया, क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी में या कई कई किताबों में आप देखो कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हम सोचते हैं वो हम खींचते हैं अपनी तरफ, वो रेडिएशंस हमारी तरफ आती हैं और हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। पहले ही सोच लेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो वैसे ही नहीं कर पाओगे आप तो, है ना? आप, मैं, कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, मैम ने मुझे बताया कि हम इस तरीके से करते हैं। हमने कल पढ़ाई करी, थोड़ा सा तो कुछ मैं निकाल के ला पाई। मैं नहीं कह रही कि मैं एक्सपर्ट हो गई इस टॉपिक में, बट मुझे भी नहीं पता था कि 34,000 इमोशंस होते हैं हमारे अंदर। मुझे लगता था गुस्सा, हंसी, खुशी, यही 4, 5, 8, 10 इमोशन होते हैं। पर सोचो मुझे भी कुछ पता चला, मैं अब और पढ़ूंगी इस बारे में, हो सकता है मैं भी जान पाऊँ कि मैं हमेशा हंसती तो नहीं रहती, गुस्सा मुझे भी आता है, लड़ती मैं भी हूँ, बट इन चीजों का हमारी जिंदगी पे क्या असर हो रहा है वो चीज समझना बहुत जरूरी। तो आज पहला ई हम समझ के गए हैं, और अगर आप चाहें तो आज से लेके अगले सेशन तक आप ये लिख सकते हैं कि हर दिन के एंड सुबह आप कैसा फील करते थे और शाम को आप कैसा फील करते थे। जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं हम लिखते हैं। हम भी देखेंगे 34,000 इमोशन होते कैसे हैं, है ना? सो थैंक यू एवरीबॉडी मेरी बहुत सारी बातें सुनने के लिए। आई विश यू अ वेरी गुड वीकेंड, और आप एंजॉय करिए, अच्छा काम करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए। ये सेशन जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं करिए। हाँ
1: मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ 2 मिनट।
0: जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए सुमन जी।
1: जी मैम, सबसे पहले तो थैंक यू रीड इंडिया का और आप सबका, क्योंकि जो रीड से जुड़ जाता है तो मुझे नहीं लगता वो उसमें नेगेटिविटी इतनी रहती है, और हर वक्त रीड कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हम लोगों के साथ तैयार खड़ा रहता है, और इतना कुछ सिखाया कि कभी कुछ उदासी हो जाती है, कुछ नेगेटिविटी होती है हमारे साथ,
2: तो हम उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी, मुझे नहीं पता ये क्या है, कि जब मैं कभी उदास होती हूँ, कभी नेगेटिविटी मेरे अंदर आती है, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, तो उस चीज में मुझे हैप्पीनेस दिखाई देने लग जाती है अपनी आप ऑटोमेटिकली। और ये सब शायद मैंने रीड से ही सीखा है और आप लोगों से सीखा है। थैंक यू मैम इसके लिए।
0: थैंक यू सुमन जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। चलिए अब वक्त हो गया, आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट काम करने होंगे, तो अब हम सेशन क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, बाय टू एवरीबॉडी।

0: हमारे सभी व्यूअर्स का वेलकम कर रही हूँ एक और कार्यक्रम में, रिकग्नाइजिंग द लीडर्स फ्रॉम आवर ग्रासरूट्स। ये एक यूनिक कहानी है जहाँ पे आर एस दलाल, उनका जो दिल है वो इतना बड़ा है कि वो अपने गांव को जितना देना चाहते हैं उससे भी ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो हर वक्त अपनी कम्युनिटी को गिव बैक कर सके। तो यही एक स्टोरी है जो हम आज आपके साथ लेके आए हैं, और इस स्टोरी को और अपनी कहानी को नरेट करने के लिए हमारे साथ ऋतु हजर से जुड़ी है। वेलकम ऋतु।
1: मैम मैं सोनीपत से हूँ, मैंने बीए बीएड किया हुआ है, और मैम मेरी शादी यहाँ पे हुई 2012 में मेरी शादी हुई। उस टाइम यहाँ पे हवेली की रिनोवेशन चली हुई थी। 2014 में यहाँ पे रीड इंडिया ने सेंटर ओपन किया। यहाँ पे रीड इंडिया ने मल्टी टास्क लेडीज के लिए रखा।
0: व्यूअर्स को बताना चाहूंगी जो पिक्चर्स शशांक अभी शो कर रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी लाइब्रेरी जो झज्जर में है, जो मिस्टर दलाल के जो एंसेस्ट्रल हवेली है उसमें सेटअप है। इसमें एक लाइब्रेरी है जिसकी लाइब्रेरियन ऋतु है, वो बात कर रही थी कि उन्होंने किस तरीके से सेंटर पे काम करते हुए ही अपना जो है लाइब्रेरी में ही उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया है इस सेंटर के दौरान, इस सेंटर के साथ जुड़े रहने के दौरान। तो इसमें जो बच्चों के कार्यक्रम है वो भी आप देख पा रहे हैं। अभी हम मिस्टर दलाल की फोटो भी हमने अपने व्यूअर्स को दिखाई थी, वी विल कम बैक टू दैट अगेन। तो ऋतु आप बताइए कि किस तरीके से सेंटर से कम्युनिटी को बेनिफिट हुआ है, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और बाकी जो हमारे संसाधन चल रहे हैं इसमें लाइवलीहुड को लेके, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को लेके, उसमें थोड़ा आप शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ।
1: मैम जैसा कि 2014 में जब सेंटर की ओपनिंग तब हुई थी तब गांव कुछ और था, और आज 2021 में गांव कुछ और है। स्टार्टिंग में मैम यहां पे जो लेडीजें थी उनको ये नहीं पता था कि ये सेंटर किस लिए खुला है, क्या इसका पर्पज है। उन्होंने यहाँ पे आके सिलाई सीखी, क्योंकि गांव का जो एरिया होता है वहां पे 11th और 12th में ही लड़की को सिलाई सिखा दी जाती है और फिर बाद में उसकी शादी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे आके लोगों ने इंटरनेट से कनेक्ट हुए, समाज को देखा, यहाँ पे विजिटर्स आए उनके बिहेवियर को देखा कि वो कितना स्टडी कर चुके हैं, आज समाज कितना ऊपर जा चुका है, वो समाज में एक मतलब एक आईना है ये सेंटर समाज का। यहाँ की औरतों ने शुरुआत में सिलाई सीखी, महिलाओं ने सिलाई धीरे धीरे सीखी, फिर उसको एक रोजगार बनाया कि हम सीख रहे हैं तो साथ ही साथ हम अपने घर परिवार के लिए कुछ ना कुछ कमाएं। वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी क्योंकि इससे पहले उनके सामने कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसा स्किल नहीं था। स्किल था बट वो बाहर उभर के नहीं आया था, सेंटर ने उस स्किल को उभारा है।
0: इसी तरीके से हम स्पोर्ट्स का भी काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे कैसे गांव में स्पोर्ट्स को, एक स्पोर्ट्स की पूरी टीम बनी है आपकी एरिया में, और एक बहुत ही बड़े दर्जे पे मैच भी हुआ था फुटबॉल का, तो उसके बारे में आप कुछ शेयर करेंगी कैसे फोकस।
1: मैम यहाँ पे टाइम टू टाइम टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें बॉयज गर्ल्स जितने भी यूथ हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं, और वो स्टेट लेवल तक भी जा चुके हैं, और यहाँ तक कि सर हर साल में जो वुमेन्स डे होता है उस पे लेडीज के लिए कि लेडीज भी आगे आए, वो भी स्पोर्ट्स को देखे कि स्पोर्ट्स क्या है जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, यहाँ पे सर उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स रखवाते हैं, जैसे रनिंग का हो गया, मटका कंपटीशन हो गया, साइकिलिंग कंपटीशन हो गया। मैम जैसा कि हर इंसान के मन में पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग होती है, जब स्टार्टिंग में सेंटर ओपन हुआ था तो हम लोगों को लेकर काफी नेगेटिव थिंकिंग थी कि ये तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, हर मंथ इनको सैलरी मिल जाएगी बस काम खत्म। लेकिन अब जब हम हर बार सर्वे करते हैं वो देखते हैं कि ये अपने नियर बाई जो विलेज है वहां पे भी वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ की औरतें बहुत खुश होती हैं। हम पहले हाउस वाइफ के उसमें जाने जाते थे कि ये उसकी पत्नी है, ये उसकी उसकी लड़की है, इस तरह से जाने जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे औरतों को खुद के उनके नाम से जाना जाने लगा है कि ये जो है प्रोडक्शन की यूनिट है इसमें 20 महिलाएं हैं, इस महिला का नाम ये है, इस महिला का नाम ये है, तो मैम बहुत ज्यादा चेंज आया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट हमने कम्युनिटी को देखा है कि इंडिपेंडेंट हो गई है, और हमारे लिए भी पॉजिटिव थिंकिंग आई है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भी सोशल वर्क कर रहे हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं निस्वार्थ काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो निस्वार्थ काम करते हैं।
0: वेरी नाइस। और आपकी जो हवेली है वो भी सस्टेनेबल है, क्योंकि जिस तरीके से इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है और डिजाइन है, ये ज्यादा बिजली खर्च नहीं करते, तो जो हमारा ये कार्यक्रम है ये कल्चर को भी प्रिजर्व करने की बात करता है, किस तरीके से हमारे गांव में हमारे जो रीच के सेंटर्स हैं वो नॉट ओनली क्राफ्ट्स एंड कल्चर, बल्कि जो हमारे रहन सहन का तरीका है, खान पान का तरीका है, उसके ऊपर भी हम जितना हो सके नेचर और सस्टेनेबल तरीके से काम कर सके।
1: अभी जैसे कोरोना टाइम में घर में लाइट्स की प्रॉब्लम थी, नेटवर्क्स की प्रॉब्लम थी, सेंटर पे वाईफाई होने के कारण यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, एक दिन में कम से कम 60-70 स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते थे, अपने प्रैक्टिस करते थे, टेस्ट देते थे, उसी टाइम एग्जाम भी होते थे, तो उनके लिए बाहर नेटवर्क में आना बहुत मुश्किल हो गया था, तो यहाँ पर बैठकर वो अपना काम पूरा करते थे। और मैम जैसे कि कोरोना की वैक्सीनेशन है, तो सेंटर पर इतनी सफाई है, यहाँ पर टॉयलेट्स हैं, वाटर की फैसिलिटी है, लाइट्स की फैसिलिटी है, वाईफाई की फैसिलिटी है, तो ये सब कुछ कोरोना की जो वैक्सीनेशन टीम है उनको ये सब फैसिलिटी चाहिए थी, तो यहाँ पे आके हम उन्होंने यहाँ पे हर हफ्ते हफ्ते में 2 बार या 1 बार यहाँ पे कैंप लगता है, सिर्फ वो इस हवेली में जो फैसिलिटी है उनके लिए नहीं आते, कि वो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, यहाँ पे 2 गांव है मैम, मेहंदीपुर है और डाबोदा है, दोनों अलग अलग गांव हैं, तो दोनों गांव के लोग इस सेंटर से कनेक्ट हैं, उनको हर गांव में रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो किसी को बोलेंगे कि यहाँ पे वैक्सीनेशन चली हुई है, तो वो एक बंदा 10 लोगों को बताएगा कि आज वैक्सीनेशन शुरू हो रखी है, तो मैम इससे उन लोगों को भी बहुत फायदा है कि उनको घर घर जाकर बताना नहीं पड़ता, हम भी उनको बताते हैं कि आज के टाइम में वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है, और मैम एक सेंटर एक मतलब उनके लिए भी एक बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड बन गया, मतलब हर बंदे के लिए चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि कोरोना का टाइम ऐसा था जिसमें हर व्यक्ति निराश बैठा था कि हम क्या करें, बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएं, लेकिन यहाँ पर आकर बच्चों ने पूरा पूरा दिन वाईफाई यूज किया, क्योंकि घर में नेट का पैकेज खत्म हो जाता है, और एक घर में ये है कि फोन की दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तो हम भी अपना पर्सनल फोन उनके साथ शेयर कर देते थे कि आप अपना लिंक इस पे डालिए और आप पढ़ाई कीजिए।
0: वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग ऋतु। आपके यहाँ पे शुरुआती तौर में एक CSC भी चला था, जिसमें कि पेंशन और जितना भी अकाउंट बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज थी वो भी आपने गांव में उपलब्ध कराए, तो थोड़ा उसका भी आप चर्चा करें।
1: मैम CSC और CSV सेंटर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन यहाँ पे आती है, और यहाँ पे कम से कम 450 या 500 के करीब लोगों का अकाउंट ओपन हो चुका है, जो कि यहाँ से पेंशन लेके जाते हैं, अपना जो बजट है उनका अपनी बचत यहाँ पे डाल के जाते हैं, ऑनलाइन जितनी भी सर्विस है जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो वो यहाँ से करवा के जाते हैं, यहाँ से एकदम से, जैसे मैम ट्रैवल की मैंने आपसे कहा था कि ट्रैवल की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो बुजुर्ग वहां पे जा नहीं सकते और हर मंथ उनको पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि पेंशन से कुछ घर ऐसे हैं जिनका पेंशन से ही गुजारा चल रहा है, जो बुजुर्ग हैं अकेले रहते हैं तो वो यहाँ पे आके पेंशन लेते हैं और उन्हें टाइम टू टाइम पेंशन मिलती है, और ऑनलाइन CSC CSP उनको इतना प्रॉफिट दे रही है कि बच्चों के जैसे ऑनलाइन एडमिशंस हैं तो वो यहाँ पे आके ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन लेते हैं, फीस पे करते हैं, ऑनलाइन टिकट ट्रैवल टिकट बुक कराते हैं, तो मैम ये भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। और मैम यहाँ पे एक फोटोकॉपी की भी मशीन रखी हुई है, फोटोकॉपी के लिए दूसरे गांव में कम से कम 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था उनको फोटोकॉपी के लिए, लेकिन जब से सेंटर ओपन हुआ है तब से मशीन यहाँ पे होने के कारण लोगों का इतना इतना मतलब उनको प्रॉफिट मिला है इससे भी, कि क्योंकि फोटोकॉपी ऐसी चीज है कि आज के टाइम में हर फॉर्म के लिए किसी ना किसी कॉपी की जरूरत होती है, तो वो यहाँ से कॉपी करवा के जाते हैं और यहाँ से फायदा उठाते हैं, और हम भी उनसे बहुत कम प्राइस में उनकी फोटोकॉपी करते हैं, जिससे कि वो यहाँ पे खुश होके आते हैं।
0: थैंक यू हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हमारे साथ हमारी मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा जुड़ी हैं। मैम वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू स्मिता। मैं जो इसी प्लेटफॉर्म पे याद करना चाहती हूँ कि डॉक्टर मिस्टर दलाल से मैं कैसे मिली थी। हमने एक सेंटर बनाया था खैंसा में जो कटिंग ब्लॉक में है, तो उसके इनॉग्रेशन के लिए मैंने मिस्टर दलाल को बोला था कि आप आए। वो पूरे पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे सेंटर लॉन्च करने के लिए आए थे, और तब से उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे गाँव मैं अपनी हवेली लेता हूँ और वहाँ पे आप सेंटर बनाए। और 2012 में मैंने कनाडा का सेंटर लॉन्च किया था, और 2014 में शायद हमने मैंने पुलिस काम करना शुरू किया। तो इट टुक मी 2 इयर्स टू फाइनलाइज द प्रपोजल, बिकॉज इट वाज नॉट दैट वेरी इजी टू स्टार्ट द रीच सेंटर। सो मेनी फॉर्मेलिटीज एंड सो मेनी डॉक्यूमेंटेशन आर So, but I would like to say that this partnership and this association has given so much to Deep India from Mr. Dalal. I would like to recognize here that every time he is ready to help us, every time he is ready to walk with us wherever we are facing any challenges or wherever we are facing any issues. A mature guidance and help is highly appreciated. और ये जो झज्जर का सेंटर है ये बहुत ही प्यारा हमारे दिल के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ इन्होंने और भी पुलिस ऑफिसर्स को एनकरेज किया कि आप अपनी भी हवेली लो। तो 2 साल पहले टांगागिरी एक गांव है जो मैंने खुद के साथ लिया, और वहाँ पे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी हवेली हमें दे दी और बोला कि यहाँ पे भी आप इनका सेंटर बना सकते हैं। और वहाँ पे भी हमने स्टाफ रखा, स्कूल चलाया, सरला जी हैं जो वहाँ पे सिटिंग एंजिन चलाती है, और उर्वशी मैम हैं जो उस हवेली के ओनर हैं, और वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट का काम करने के लिए। द पॉइंट हियर आई एम मेकिंग इज द विलिंगनेस टू गिव बैक टू योर कम्युनिटी, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर ये थॉट हर एक के मन में हो तो हमारे गांव तो कभी भी पिछड़े नहीं रह पाएंगे, वो हमेशा शहरों से भी आगे बढ़ जाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं जो यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जैसे ही गांव में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वुमेन कम फॉरवर्ड इन अ ग्रेट वे। They are the role models. They are the mentors. I should not say that I am the mentor. I just play the role. But these women like Ritu and many other Kavita ji, many other have taken the position of mentors now, mentoring the rural women who are residing with them in the villages. और सेंटर में वो खाली हुनर सीखने नहीं आती है, बट सेंटर में वो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने आती है, अपने परिवार के लिए वो क्या कर सकती है वो सीखने आती है, और एक कोहेसिवनेस बनती है गांव में कि यस ये हमारा हमारा सेंटर है। और जैसे अभी एक वीडियो शशांक ने दिखाई थी उसका टाइटल था हमारा हरियाणा, पर मैं ये कहूंगी कि ये लोग अभी ये नारा बोल सकते हैं हमारा मंदिर, हमारा चर्च, हमारी गांधा खेड़ी। सो वो सिचुएशन आ गई है अब, और सच में मैं बोल रही हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग आई हाईली हाईली अप्रिशिएट मिस्टर दलाल्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द टीम हु हैज रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड सो वेल एंड नर्चर्ड द सेंटर लाइक देयर ओन हाउस। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे जो आयुष से हमारा जो नेटवर्क है, हमारे जो क्लीग्स हैं जो सेंटर में काम करते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन में ऋतु और कविता में देख रही हूँ पिछले 6-7 साल से, वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पक्का विश्वास है बहुत सारी औरतों में भी हुई है काम करने के, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक जी है उनके मन में कि हमें कुछ करना है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ऋतु जी, मैं आपसे एक बस यही सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने हजारों में औरतों को किया है, आप मेहंदीपुर गांव से आगे भी गई हैं और आसपास के गांव में भी आपने औरतों को मोटिवेट किया है कि आपके सेंटर में आए और जो ट्रेनिंग दिए, बहुत लड़के भी कंप्यूटर सीखने आ रहे हैं, बहुत लड़कियां भी आती हैं।
1: मैम, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक करना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया, सर ने दिया, आप दोनों ने मिलकर एक खंडर में जान डाल दी है, क्योंकि जैसे एक शरीर और आत्मा का मिलन होता है, वैसे ही सेंटर, अगर अकेला एक सेंटर होता और उसमें और कुछ नहीं होता तो वो एक अकेला सेंटर कुछ नहीं कर पाता। वैसे ही कम्युनिटी है मैम, अगर हम हैं, हमारे साथ कम्युनिटी नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। हमारे साथ कम्युनिटी ने मिलकर इतना हम लोगों को भी सपोर्ट किया है, जो हम उनसे बोलते हैं कि आप आइए, हमारी एक रिक्वेस्ट करने पर वो हमारे सेंटर पर आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो औरतों में है, औरतों को स्टिचिंग का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लगता है कि वो उसमें मगन हो जाती हैं। हम उनका 1.5 घंटे का बैच बनाते हैं, लेकिन वो 1.5 घंटे में यहाँ से जाना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि कम से कम हमें 3-4 घंटे आप लोग यहाँ पे बैठने दीजिए। तो जब हम लोगों के बैच फिनिश हो जाते हैं तो वो सैटरडे को आती हैं, हमसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम, आप कविता से भी रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम थोड़ा सा और ज्यादा टाइम दीजिए, मुझे ये करना है। जो हमारे पुराने जो यहाँ पे जा चुके हैं, जैसे 2016 में या 17 में जो बेनिफिशरी रह चुके हैं, वो यहाँ पे आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आज भी सेंटर पर आकर कविता से बात करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ये न्यू फैशन चला हुआ है, हमें ये बताइए। तो मैम, हम लोगों को इतना अच्छा लगता है कि लोग, यहाँ की औरतें हैं जो सिलाई से इतनी जुड़ी हुई हैं, वो एकदम कपड़े में इतना मगन हो जाती हैं। प्रोडक्शन का जब हम लोग काम करवाते हैं, कुर्तियां जब लेडीज सीलती हैं, तो वो इतनी मगन हो जाती हैं कि कविता उनको बोलती है कि आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं हम बताएंगे नहीं, हम आपको करके दिखाएंगे। तो मैम, वो इतना इतना अच्छा काम करती हैं कि बहुत ज्यादा, कि उनके बगैर हम कुछ नहीं है। लेडीजों ने हम लोगों को आगे बढ़ाया है, हमारे सेंटर को आगे बढ़ाया है, सेंटर में जान उन औरतों ने डाली है, क्योंकि वो इतना मेहनत करती हैं, इतना परिश्रम करती हैं, इतना खुश होती हैं, यहाँ पे बच्चों को लेके आती हैं। तो मैम, वो भी आपको बार बार थैंक करती हूँ।
2: बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ऋतु और कविता जो आप कह रही हैं, क्योंकि ये ही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, हम सब की, मैं तो ये बोलूँगी, नॉट हमारी यानी हम सब की, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या करना चाहते हैं आप लोग, आप सबको बताइए कि आपके दिल में क्या है और इसको कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज इतना जील है, इतना कमिटमेंट है, बहुत सारी औरतें जुड़ी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है, वो थोड़ा हमें
1: बताएं। मैम, जैसा कि हमारे यहाँ पे मल्टी फैसिलिटीज हैं, तो मैम हम हर फैसिलिटी से कुछ ना कुछ इनकम ले सकते हैं। हम औरतों को ये बोलते हैं कि आप, आज हमारे पास प्रोडक्शन की 20 की यूनिट है, तो हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर वो हमारी 50 या 100 की यूनिट हो, जिससे कि हम बड़े लेवल पर हम वर्क कर सकें, क्योंकि अभी हम जो क्लॉथ मार्केट में लेके जाते हैं वो कम प्राइस में सेल होता है, तो उसको हम चाहते हैं कि और हम उसको मार्केट में ना सेल करके अपना खुद का नाम दें, क्योंकि मैम मार्केट में जो हम लोगों ने जितना रिसर्च किया है, मार्केट में जो एक शॉप वाला होता है वो इतना पैसा उनसे कमाता है हमसे बिल्कुल सस्ते प्राइस में, जो कि जो मेहनत करते हैं उन बंदों को कम पैसा मिलता है, और जो खरीदता है उसको, जो उसको पीस को खरीद कर बेचता है वो इतना इनकम कमाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी एक ऐसा बड़े लेवल का वर्क हो कि हम खुद इंडिपेंडेंटली अपना नाम उससे जोड़ें, एक बड़ी यूनिट बनाएं, और हम लोग जितने भी नियर बाय विलेज में गए हैं वहां पे भी हम लोगों की यूनिट्स हो, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं या ऑफलाइन कोर्सेज हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ हर किसी चीज से अगर हमें थोड़ा थोड़ा भी पैसा मिलता है तो हम और हमारे जो साथ वर्क कर रहे हैं बेनिफिशरी हैं उनको भी प्रॉफिट हो और ये हवेली इसी तरह रनिंग करती रहे। और जो आने वाला फ्यूचर है उसमें अभी जो औरत यहाँ से 100 रुपए कमा रही है, हम चाहते हैं कि वो यहाँ से 50,000 कमाए।
2: वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बड़ी सोच है रितु, और हम मिलके इसको पूरा करेंगे, मैं इसकी एश्योरेंस देती हूँ। तो सिर्फ अगर कमिटमेंट है आप में और मेहनत करने की क्षमता है तो ड्रीम्स तो फुलफिल हो ही जाते हैं। मैं रितु को बोलना चाहूंगी कि अगर वो कोई एक मैसेज हमारे सारे रीड की वुमेन के लिए कहना चाहे तो प्लीज शी शुड शेयर विद अस।
1: मेरा यही मैसेज है कि हमारा जितना भी रीड का स्टाफ है, हम मिलकर, अलग अलग ना हो, मिलकर कुछ ऐसा प्लान करें जिससे जितनी भी कम्युनिटी है उसको फायदा हो, और वो जैसा कि अभी मैम कर रही हैं, हमें भी गीता मैम जैसा और रंजीव दलाल सर जैसा लीडर बनना चाहिए कि इन फ्यूचर में जब हमारे हम ना रहे तो लोग हमें याद करें कि इन लोगों ने क्या किया है। गीता मैम इतना बड़ा एम लेकर चली हुई हैं निस्वार्थ भाव से, क्योंकि आज का जो टाइम है वो अपने लिए सोचता है, न्यू जनरेशन सिर्फ अपने लिए काम करती है। तो हम जो है, हमें भी मैम ने ऐसा बना दिया है, सर ने ऐसा बना दिया है कि हम ये मैसेज हर किसी तक पहुंचाए कि निस्वार्थ भाव का से काम करें, अपने लिए नहीं समाज के लिए जिए, जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए जिए, उनके लिए कुछ करें जितना आप कर सकते हो, क्योंकि शिक्षा हर किसी के पास है लेकिन शिक्षा को बांटना बहुत जरूरी है। शिक्षा से व्यक्ति शिक्षित तो हो जाता है लेकिन जब तक वो अपनी शिक्षा को दूसरों तक नहीं बांटता वो इंसान अनपढ़ है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जितना जिसके पास जो स्किल है वो हमें समाज में बांटना है, और आगे हमें अपनी जनरेशन को भी यही सिखाना है। एक कोरोना ने हमें इतना बड़ा मैसेज दे दिया है कि जब तक हम हैं, हमारे शरीर में जान है, तब तक सब कुछ है, जब हम नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो अभी समाज में देखा गया है कि लोगों ने कोरोना ने लोगों को अकेला कर दिया है, तो हमें अकेला नहीं रहना है, हमें मिलकर रहना है, हमें ऐसा काम करना है जिससे पूरा समाज को बेनिफिट हो। थैंक यू मैम।
2: थैंक यू सो मच, इतना अच्छा मैसेज रितु आपने दिया, एंड सेल्फलेस लाइफ इज द मैसेज व्हिच यू हैव गिवन टू एवरीवन, एंड मुझे पक्का विश्वास है कि जितनी भी औरतें, जितना भी लोग रीड इंडिया के साथ जुड़े हैं, उन सबकी सोच यही है कि कैसे हम दूसरों के लिए सर्विस कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों के साथ अपनी एजुकेशन को शेयर कर सकते हैं। वंडरफुल मैसेज रितु, एंड थैंक यू सो मच। स्मिता, यू वुड लाइक टू कंक्लूड द प्रोग्राम?
0: सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू दलाल सर फॉर टेकिंग दैट इनिशिएटिव, एंड ऑफ कोर्स टू डॉक्टर गीता मल्होत्रा फॉर, यू नो, सो मेनी रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। इसके पीछे बहुत काम होता है जो कभी कभी हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते, बहुत मेहनत लगती है लोगों को जोड़ने में, इस मुकाम तक लाने में कि इस सेंटर को आज इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, 8-9 सर्विसेज इस एक अकेले सेंटर से प्रोवाइड हो रही हैं, और कोशिश ये है कि इसको धीरे धीरे करके सेल्फ सस्टेन किस तरीके से बनाया जाए और बिल्कुल जो है सेल्फलेस होके निस्वार्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों ही हमारे मेंटर्स जो हैं मिस्टर दलाल एज वेल एज डॉक्टर गीता इसी इसी जुट में जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से ये कम्युनिटी सेंटर सेल्फ सस्टेन हो और ये आगे बढ़ता जाए और एक रोल मॉडल की तरीके से हम इसको भारतवर्ष में प्रेजेंट कर सकें. सो थैंक यू वेरी मच टू आवर व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस. दिस वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी दैट वी वॉन्टेड टू शेयर विद यू. थैंक यू सो मच.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं। लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे बाय हुक एंड क्रुक, वेदर दे स्टैंड अलोन, वेदर दे हैव चैलेंजेस, वेदर दे हैव पीपल दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे वॉक थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं, चेजिंग योर गोल्स। हम अपने गोल्स को चेज करते हैं कि हम कैसे उनको फुलफिल करें। तो जब हम अपने गोल्स चेज करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस, तो हमें डिसरिगार्ड द पीपल हु टेल यू इट कैन नॉट बी डन। जो लोग बोलते हैं कि ये तो हवा में बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने लाइक वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट, राइट? तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चाहिए, और इसका यही मकसद है। डिसरिगार्ड मींस, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बायकॉट कर दो उनके साथ। डिसरिगार्ड मींस डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर टाइम, योर पेशेंस टू लिसन टू देम, दोज हु आर सेइंग इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यू एज ए लीडर हैज सम मिशन, मीनिंगफुल काम करना है आपको। तो अगर आप मीनिंगफुल काम करने में कोई भी ऐसे बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो वो हमें नजरअंदाज कर देना, हमें सुनना ही नहीं है। टर्न अ डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, राइट? बिकॉज क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है। तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे, तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो हमारे एम्बिशंस तो है ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे, तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे, और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, और नेचुरली रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें। हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं, तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है, राइट? होता है ना ऐसे हमारे साथ? और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे। 3-4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप, नो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू, एनी इंटरेस्ट, एनी थिंग इन इट, बिकॉज वी आर नॉट विजनरीज, राइट? दोज हु डिफाइन द गोल्स विद वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन गो अहेड टू देयर लैडर अप। हम बोलते हैं, मतलब कि हम कमिट करते हैं, हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस की तरफ, तो हम
somehow we are able to realize our dreams, somehow we are able to ambitiously do the things what we want to do. Do you all agree with me what I have said? Chasing your goals. बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी है यहाँ पे, सारी ये प्रैक्टिकल डे टू डे हमारी लाइफ में हमारे साथ ऐसे ही होता है. तो हम एक स्टोरी छोटी सी मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में, आई विल जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू. सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत. एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे और अगर उन अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टावर है, एंड दे कलेक्टिवली डिसाइडेड कि आज हम टीवी टावर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं. राइट, तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में. थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे. कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापिस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा. मतलब कि दे वर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. तो तीन चार ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टावर तक पहुंच गए, एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टावर, ऊपर टॉप में पहुंच गए, एंड दे सेड ओ गॉड इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड. और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी, वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टावर के टॉप पे पहुंच गए. जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे, जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे और उन्होंने वो दो तीन जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे. और जो भी हमने तो इतना शाउट किया था, मत जाओ, डर रहे थे हम लोग, तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना, वो फ्रॉग कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बहरा था, वो फ्रॉग ही बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं. लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसने आसपास परवाह ही नहीं करी कि क्या हो रहा है, क्या शोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. बस उसके माइंड में तो एक ही था कि मुझे टीवी टावर पे जाना. तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके, टर्न ए डेफ ईयर टू क्रिटिक्स. तुम सुनो ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा मिशन इतना क्लियर है, तुम्हारा तुम्हारा गोल इतना क्लियर है कि आपको वो कंबाइन करना है. बाकी के दो से पूछा कि तुम्हारा क्या था, मतलब कि तुम कैसे चले गए ऊपर, तो उसने बोला कि हमने ये जो डेफ फ्रॉग था उसको फॉलो किया, बिकॉज हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर ये हमारा लीडर है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम तो इसके पीछे पीछे चलेंगे तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर. तो हमने तो क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया, रास्ते में हमने किसी की परवाह नहीं करी और हम इसके पीछे पीछे पीछे पीछे चल के ऊपर पहुंच गए इसके साथ. तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे. और फ्रॉग बहुत टिमिड होता है देखा जाए तो, बहुत छोटा सा होता है, तो वो क्या टीवी टावर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊंगा. पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है. और दो लोग जो उसके साथ चढ़े वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे. तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना, और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से, बहुत इजी स्टोरी है और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे. तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई थॉट लेट मी शेयर विद यू. बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको. तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आर बिग गोल्स.
नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व. हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है. वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स. वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आर प्रोग्रेस. बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और हमारी जो अचीवमेंट है उसको वो ब्लॉक कर देती है. वी ऑलवेज डिस्कस एंड हाईलाइट द हर्डल्स एंड आर ऑब्सेस्ड बाय देम एंड फेल टू ऑब्जर्व द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ अस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जब मैं पढ़ रही हूँ तो सुबह मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रही थी तो ये बहुत फिट बैठती है वहां पे कि हम हाइलाइट्स करते हैं जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और हम उस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ कि हम हमेशा फेलियर्स की ही बात करते हैं. पर उसमें से एक जो रे ऑफ होप है, जो एक सनशाइन की छोटी सी किरण है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं. और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ. तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है. हम अपने आप को इतना स्ट्रांगली बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे. तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए. मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस दिस दैट, पर द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन द सॉल्यूशंस. The psychologists have proved that what your mind focuses on that tends to grow. Scientists ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80% जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देते. पर हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें. और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी चेज करना पड़ता है. और अपॉर्चुनिटीज को चेज हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ कि हमें ये करना ही करना है. अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं. ये सारे जार्गन्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना कि हम एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज. अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ खुल रहा है, तीसरा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, हम कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम अपने जो पड़ाव है उनको पार कर लें. सो द प्रॉब्लम्स लुक बिगर, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स. द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर गैप्स को एनालाइज कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन गैप्स को कैसे रिजॉल्व करें, तो हमारे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर्स आर विजन. ग्रेट लीडर्स हैव अ विजन. They can see into the future. They have a clear, exciting idea of where they are going and what they are trying to accomplish and are excellent at strategic planning. मैंने बहुत simple words में पहली दो slides में बताया. ये definition है कि great leaders vision होती है. हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसकी. They can see the future.
वो जो मैं रे ऑफ सनलाइट की बात कर रही हूँ, दे हैव अ वेरी क्लियर एक्साइटिंग आइडियाज, उनके आइडियाज बहुत क्लियर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, एंड दे आर गोइंग वेयर दे आर गोइंग एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, वो उनको सब क्लियर है, एंड दे हैव वेरी एक्सेलेंट वेरी गुड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑल्सो. तो जो लीडर्स हैं उनमें ये सब हुनर है, और इन हुनर को शेप देके वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही विजनरी कहलाते हैं. दूसरा क्या है, करेज. वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज. अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से जमीन से खड्डे में से निकल के टीवी टॉवर पे क्लाइंब कर गया. हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स दैट यू आर विलिंग टू टेक रिस्क इन द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स विथ नो एश्योरेंस ऑफ सक्सेस. अब आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ, मैं प्रपोजल लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं बिल्कुल नहीं डिफाइन कर

ट्रैवल भी कर रहे हैं बिकॉज वी आर टेकिंग द रिस्क. Why risk? Risk is not only for my own job. Risk is for the work, the whole, all the centers of Read India is doing in India. They are reaching to 400,000 plus people. Unka kya hoga? Wo kaam kahan jayega? Wo goal to achieve karna hai hume. To wo collective goal hai jo hume achieve karna hai. To hum risk bhi le rahe. Right? और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की. मुझे आज नहीं पता कि रीड इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या होगा बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं. क्या है? ट्रस्ट है. क्या देखते हैं? कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं. क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने. जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज है, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं. कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे. इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन, बट हम आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गए. आईटी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है? इमीडिएट नीड्स क्या है? कम्युनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए. इमीडिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स. किसने उनको बोला करने के लिए? हम ही ने बोला. तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया. और कोई ऐसा डोनर नहीं है एक्सेप्ट 1 or 2 अमॉन्ग 13-14 डोनर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी ने एक साल में ही हमारे साथ काम करके बंद कर दिया हो. दे ऑल आर कंटिन्यूइंग विद अस. सो बिकॉज देयर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ और बिजनेस, एवरी कमिटमेंट यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक entails a risk of some kind. हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क तो है ही है, पर हम रिस्क को सोच के बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे. हम करके उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे वो हमारा एक्शन है. राइट? तो जब हम कहते हैं वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन, तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हम रिस्क को साथ में लेके चलते हैं और रिस्क को मिटिगेट करना भी हमें सिचुएशंस सिखाती हैं. राइट? तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर. आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. और आपको नहीं पता, आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था. आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि एक साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे. तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही है, चाहे 2000 कमाएं, चाहे 4000 कमाएं, चाहे 6000 कमाएं. राइट? और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2000 से 6000 तक लेके जाए, 6000 से 12000 तक लेके जाए. ये कोशिश हमने करनी है. सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है. हम कैसे करें उसको हमें करना है. जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है. इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन. ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस. कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे. क्योंकि हम मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है. इवन बिजनेस में भी बहुत जरूरी है. मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस में

0: झूठ बोल सकते हो, जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट? इट मीन्स दैट यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस टू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ अदर्स विदाउट फीलिंग थ्रेटन्ड। समझ में आया सबको? मतलब कि अगर मैं बहुत ही हलीमी से बात करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, दैट डजेंट मीन कि मैं कमज़ोर पर्सनैलिटी हूँ या मुझे अपने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका ये मतलब है कि मैं बहुत हलीमी से बात कर रही हूँ पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ और मैं जो लोग मुझे वैल्यू मेरे में वैल्यू देखते हैं वो तो मेरे लिए थ्रेट नहीं है, पर अगर मेरी वैल्यूज के ऊपर मतलब कि दे आर थ्रेटनिंग मी तो आई एम नॉट टेकिंग दोज, राइट? तो ह्यूमिलिटी पर्सनालिटी में लाना बहुत जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द रेयरर एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ वन्स ईगो। अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे। पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट? इट मींस दैट यू आर विलिंग टू एडमिट यू कुड बी रॉन्ग, दैट यू रिकग्नाइज यू मे नॉट हैव द आंसर्स, बट इट मींस दैट यू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज डू, विच मैनी पीपल स्ट्रगल टू डू। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्लैग तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए। हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ, मैं तो ठीक था, बिल्कुल, मैं तो टीवी टावर पे चढ़ रहा था, अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता, जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टावर पे चढ़ के क्या करेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े, पर उसने क्रेडिट किसको दिया? जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया? जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं शोर, और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए। लीडर एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं, तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है। और ये अपनी पर्सनैलिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं। ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन, इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट? और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनैलिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ही वही बन जाती है। तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए, और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं। बिकॉज इफ यू हैव दिस ह्यूमिलिटी एज योर पर्सनालिटी ट्रेट, देन द रिस्पॉन्स इज 100% श्योर, यू विल डेफिनेटली गेट द रिस्पॉन्स, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। द बेस्ट क्वालिटीज में तीसरा आ रहा है ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। लीडर्स हैव द एबिलिटी टू एंटिसिपेट ट्रेंड्स वेल इन एडवांस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स तो हर एक जगह पे ही होते हैं, एनजीओस मशरूम कर रहे हैं इतनी, पर हम उनको थ्रेट ना मान के अगर हम उनके ट्रेंड्स को समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करें, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें तो ये बहुत अच्छी बात होती है. दे कॉन्टिन्यूली आस्क बेस्ड ऑन वॉट इज हैपनिंग टूडे, वेयर इज द मार्केट गोइंग, वेयर इज इट लाइकली टू बी इन 3 months, 6 months और 1 year और 2 years. दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. फॉर एग्जाम्पल, अब आप सब लोग प्रोडक्शन यूनिट्स भी चला रहे हैं और वोकेशनल सेंटर्स भी चला रहे हैं. अब आने वाले टाइम में जो एनजीओस पॉलिसी लेवल पे काम कर रही हैं उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज सरकार कहती है हमें तो अभी मतलब कि ग्रास रूट्स में काम चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या है, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है. तो दैट्स व्हाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले 5 साल से 6 साल से सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंड ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है. और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात करें कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे. दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं, राइट? हम आज के बारे में सोचते हैं और 1 महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं. बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस, ओनली द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन एक्यूरेटली एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट्स कैन पॉसिबली सर्वाइव. ओनली लीडर्स विद फोरसाइट कैन गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे लोन कैसे, सबसे आगे कैसे स्टैंड करें. तो ये जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन. हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? क्या आप लोग मुझे 1 पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं दैट You refine and make as your goal, which is very, very important when we are taking leadership trainings. This is the practical action which you can do for yourself, right? तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. कि आप जहां बैठे हो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो, उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो, क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे. दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? They focus on the strengths of the organization, on the things that the company does best in satisfying demanding customers in a competitive marketplace. आप किस पे फोकस कर रहे हो? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ. आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हो. जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, कभी आपने उनको बोला कि आगे आने वाले टाइम पे देखो कोविड ने ही हमें सिखा दिया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए. जिनको नहीं आता, दे आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएजुकेटेड. बिकॉज अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे। मुझे पेटीएम नहीं आता था, मैंने पेटीएम सीखा। मुझे बैंकिंग ट्रांजेक्शंस ऑनलाइन नहीं आती थी, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखी। बिकॉज बैंक कह रहे थे कि 60+ के लोगों को हम बैंक आना अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं एनकरेज करते। तो टाइम ने मुझे सब कुछ सिखाया। इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज, राइट, और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं, दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड, राइट। योर एबिलिटी एज ए लीडर टू कॉल द शॉर्ट्स एंड मेक श्योर दैट एवरी वन इज फोकस्ड एंड कंसेंट्रेटेड ऑन द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ देयर टाइम इज एसेंशियल टू द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। मैंने जान के ये बिजनेस लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे, बिकॉज हमारा 1/3 फोकस ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्राइज ही है। तो इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माई ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है। ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे, राइट। द लास्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन। गेन द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स बाय मेकिंग ए कमिटमेंट टू गेट अलोंग वेल विद ईच की पर्सन एवरी सिंगल डे। रोज आप अपने कनेक्शंस, अपनी नेटवर्किंग, अपने स्टाफ का लाइक यू नो टीम वर्क को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे रिफाइन करें इसको, हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं। आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है, 5 है 6 है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन। सी दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। These 5 qualities I have the strength, I can contribute additionally. Do this exercise. This will really help you to do that, right? You always have a choice when it comes to a task. You can do it yourself or you can get someone else to do it for you. Which is it going to be? ये exercise आपको बहुत बहुत help करेगी। मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट है विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ठीक है, आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये 7 पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें, और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताया है अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर, राइट। लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल, हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको। अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 ईयर्स ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज। झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना। इज ऑफन डिफाइंड एज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल। दिस स्टाइल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन बाय रिसर्चर बर्नार्ड एम बास। मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, दीज लीडर्स टेंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड पैशनेट। दे आर नॉट ओनली कमिटेड टू हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल बट ऑल्सो टू हेल्पिंग ग्रुप मेंबर्स फुलफिल देयर पोटेंशियल। ये एक सेंटेंस में मैंने समराइज किया है जो लास्ट 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं एक लीडर की क्वालिटीज के बारे में। अब लीडर की क्वालिटीज तो बता दी कि लीडर को करना क्या है। पहले तो हमने गोल्स भी चेज करे, फिर हमने अपने वो पॉइंट्स भी यहाँ पे हाईलाइट करे बेस्ट क्वालिटीज के। फिर अभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेस्ट है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। इमोशनली इंटेलिजेंट का मीन्स है कि मैं दूसरों के पर्सनालिटी की कदर करती हूँ, उनके थॉट्स की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग आई रिस्पेक्ट दैट। और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है। तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये हमें बहुत ध्यान रखना है। रिसर्च शोज दैट दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हायर होगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन। आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है। तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं हैं। हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं। तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है। द लास्ट स्लाइड इज कि जब हम मोटिवेशन की बात करें, मैंने अभी मोटिवेशन वर्ड यूज करा था, तो मोटिवेशन है क्या चीज? हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि हम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। इट इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट। मोटिवेशन ये नहीं कि हमने दो बात कर दी तो मोटिवेट हो गए हम। हमें उसको एक्शन में कैसे लाना है, अपने बिहेवियर में कैसे लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 पॉइंट्स हैं इसके, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। हम मोटिवेट तो करके हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा। उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम। और परसिस्टेंस जो मैंने बोल रहा था, परसिवेरेंस एक स्लाइड में पिछले 3-4 सेशन में मैंने बात की थी परसिस्टेंस की, हम कितना उसको कंटिन्यूअसली करते हैं चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं। अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट। हर एक इम्पोर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है। बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट, हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को, हम चल रहे हैं, हम 2 मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं अब हम नहीं और भाग सकते। वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो। तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है, राइट। दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या। हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन तीनों पॉइंट से नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो ये बहुत जरूरी है. हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीपल एज दे वर्क टुवर्ड्स गोल. एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की जरूरत है. हेल्प पीपल टेक एक्शन. एनकरेज पीपल टू एंगेज इन हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स. हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं, राइट? हेल्प पीपल अवॉइड अनहेल्थी एंड मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स. ये दूसरा रिस्क मैं बात कर रही हूँ कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है उसको रोकने की जरूरत है, राइट? बहुत जरूरत है रोकने की, क्योंकि हम हमारा माइंड इतना नेगेटिव भागता है कि हम छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, हमें विश्वास ही नहीं बैठता. ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टवर्थी है, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है यहाँ पे. हेल्प पीपल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स. बहुत इस पे हम बात कर चुके हैं, 10 स्केल फॉर्मूला ही इस पे है. इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस. तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 प्रेजेंटेशंस थोड़ी लाइट थी, ये थोड़ी सी मैंने टफ की है. बिकॉज किस लिए टफ की है, ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए. एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए. अगर मैं इसको रिट्रेट करूँ, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले बात की, फिर मैंने एक लाइट सी स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम नेगेटिव ना सोचें, हम प्रॉब्लम्स को ना फोकस करें, हम उसमें जो एक सूर्य की किरण आ रही है उसकी तरफ देखें और आगे बढ़ें. फिर मैंने बेस्ट क्वालिटीज क्या है लीडरशिप की, उस पर मैंने 7 क्वालिटीज की बात की, विजनरी, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन. ये एक संस्था के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं. ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी. फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है. इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है, पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे, राइट? और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करें तो हम मोटिवेशन की बात करें, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है? आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है. एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, राइट? इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी कि हम अपनी पूरी एनर्जी उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें. दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन. That's all. आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं. तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसको. ठीक है, 5 मिनट है
1: yes, हमारे पास.
0: और ये स्लाइड्स जो हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं, मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा. अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, राइट? आप प्लीज ये करिए, आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे, अगर 8 स्लाइड्स है, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के लिए। आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होएगी और आप एनकरेज फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपने शार्प कर लेंगे अपने विजन को और एक्शन उसी तरीके से लेंगे। ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की, आप करके देखिए। ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इन टू ए डिस्कशन लेवल कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स, आई एम ओपन फॉर दैट।
1: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। ब्लेम करके ही हम अपने अपने अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग।
0: हाँ
1: तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, पर्सनल लाइफ में भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी।
0: बिल्कुल,
1: हमेशा कोई चीज
0: पर्सनल
1: हो
0: लाइफ
1: जाती है, घट जाती है।
0: बहुत बहुत मायने रखता है ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम बिना हम ना सुनने कि अपनी जो स्किल है ना उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं। हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं। ये ह्यूमन
1: हाँ जी,
0: बिहेवियर है, टेंडेंसी है। वेरी नाइस,
1: यस
0: कंटिन्यू।
1: मैम, हाँ जी। हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है तो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा। तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में, पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है, एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट, और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें। ये आप
0: वेरी
1: बता रहे थे, दिस वाज वेरी नाइस
0: वेरी
1: मैम,
0: नाइसली समराइज
1: थैंक यू सो
0: किया,
1: मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस वेरी वेल। एनीबडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी। मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से। जी मैम, जैसे सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं। आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में, आपका ये एग्जाम्पल देके, और मैंने उसको ना एक गेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3-4 दिन से। मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था, और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता था कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा। बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है। तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पे करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा। वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, रियली थैंक यू मैम। आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो। पर पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए. तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है. देयर एंड देन यू फाइंड अ सोल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
2: यस बिल्कुल. और एक चीज और कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे. तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था. लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो.
0: बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी.
2: जी
0: हम तो डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको. हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने की, राइट?
2: यस
0: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है,
2: यस मैम.
0: थैंक यू सो मच. और मैं इनकरेज करूंगी अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट? बिकॉज लीडर्स आपको बनना ही बनना है, राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

भक्ति विराग प्रचंड ज्ञान में, स्वगौरव में, अन्न दान में, अमृत वर्षक काव्य गान में भारत सर्वोत्कृष्ट देश है। धैर्य शक्ति में, सैन्य शक्ति में, परोपकार उदार भाव में, सार शास्त्र के ज्ञान दान में भारत सर्वोत्कृष्ट देश है। भारत महिमा के ये अमर गायक हैं सुप्रसिद्ध तमिल महाकवि भारतियार, जिन्हें हम सुब्रमण्यम भारती के नाम से जानते हैं। वो एक महान राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक, समाज सुधारक और पत्रकार भी थे। भारती जी राष्ट्रप्रेम के एक विलक्षण गायक थे, जिन्होंने मात्र 40 वर्ष की छोटी सी अवधि का एक विराट जीवन जिया और इतने छोटे से जीवन में उन्होंने विपुल साहित्य रचा और साहित्य आकाश के सदा उदित नक्षत्र बन गए। अपनी लेखनी से उन्होंने तमिल भाषियों के मन में ऐसी स्वातंत्र्य चेतना जगाई कि अनगिनत नर नारी और युवा स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। समय के साथ उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि देश ही नहीं बल्कि विदेश की अलग अलग भाषाओं में भी उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ। सुब्रमण्यम भारती का जन्म 11 दिसंबर सन 1882 को तमिलनाडु के एट्टयपुरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चिन्ना स्वामी और माता का नाम लक्ष्मी अम्माल था। बचपन से ही भारती जी का जुड़ाव एट्टयपुरम के राजघराने से रहा, क्योंकि उनके पिता वहां काम करते थे। 5 वर्ष की आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया, इसलिए पिताजी और नानाजी की छत्रछाया में उनका बचपन व्यतीत हुआ। भारती जी की आरंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में ही हुई, लेकिन बचपन से ही उनका मन साहित्य और काव्य जगत में विचरण करता था। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने काव्य लेखन आरंभ कर दिया था। उनके पिता चाहते थे कि वे एक गणितज्ञ बने। कहा जाता है कि एक बार पिता के ये पूछने पर कि सवाल हल कर लिया, कविता की लय में उन्होंने जवाब दिया, सवाल गोंद की तरह मूक हैं, जड़वत हैं, सवाल भिन भिनाते हैं। वे एक नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न कवि थे। कविताएं लिखने के लिए उन्हें कागज कलम की आवश्यकता नहीं होती थी। मन अनायास भाव सागर में गोते लगाता और वो सहज ही गा उठते। जब वो 11 वर्ष के थे तभी उनकी ख्याति राज दरबार तक पहुंच चुकी थी। राजा के आमंत्रण पर उन्होंने राज दरबार में काव्य पाठ किया तो उपस्थित विद्वान उनकी प्रतिभा देखकर सुखद आश्चर्य से भर उठे और उन्हें भारती की उपाधि प्रदान की गई। इस तरह बालक सुबैया सुब्रमण्यम भारती नाम की नई पहचान के साथ वापस लौटा। किशोरावस्था में ही उनका विवाह चिलम्मा के साथ संपन्न हुआ। जल्दी ही उनके पिता भी चल बसे, इसलिए आगे की शिक्षा के लिए वे अपनी बुआ के घर वाराणसी आ गए। यहां रहकर उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। बनारस का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यहीं युवा होते भारती जी का परिचय अध्यात्म और राष्ट्रवाद से हुआ, जिसने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। इन्हीं वर्षों में बड़ी बड़ी मूछों के साथ सर पर पगड़ी धारण किए सुब्रमण्यम भारती की छवि उभरी। ये वो भारती थे जो न केवल तन से बल्कि मन और आत्मा से भी भारतीयता के रंग में पूरी तरह रंगे हुए थे।

चार वर्ष बाद जब भारती जी अपने गृह नगर लौटे तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य से एट्टयपुरम में उन्होंने अध्यापन का कार्य आरंभ किया। यूं भारती जी की पकड़ बंगाली, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच और तमिल सहित कई भाषाओं में थी, लेकिन वो हमेशा ही मातृभाषा में शिक्षा के पक्षधर थे। साथ ही वो कहा करते थे कि हम तमिल भाषियों को हिंदी अवश्य सीखनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र के लिए हमें एक सामान्य भाषा की आवश्यकता है। आजीविका हेतु उन्हें मद्रास आना पड़ा। यहां विख्यात तमिल दैनिक स्वदेश मित्रन में वो सहायक संपादक हो गए। इस माध्यम से अब उनकी कविताएं जन जन तक पहुंचने लगीं। भारती जी तमिल काव्य की सुदीर्घ परंपरा से परिचित थे तथा लोक संगीत और लोक साहित्य के प्रति भी वे आकर्षित थे। उन्होंने अत्यंत सरल भाषा में गद्य कविता का आरंभ कर तमिल नई कविता का मार्ग प्रशस्त किया। भारती जी की लेखनी ने जैसे तमिल भाषा को पुनर्जीवित कर वहां के जनमानस को भी तंद्रा से जगा दिया। अपनी एक कविता अग्निकण में वो कहते हैं, मिला एक अग्निकण जिसे रख दिया वृक्ष के कोटर में, वहीं आग की लपटों से सारा वन हुआ भस्म। उनका आशय स्पष्ट था कि पराधीन प्राणों में अगर क्रोध की ज्वाला जगा दी जाए तो समस्त देशवासी अग्निपुरुष हो सकते हैं और अंग्रेजों के जंगल राज को जलाकर भस्म किया जा सकता है। वाराणसी में एनी बेसेंट के भाषण से भारती जी बहुत प्रभावित हुए थे और राष्ट्र चेतना के स्वर तभी से उनके भीतर बहुत गहरे जा बसे थे। सन 1905 से वे सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे। बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे देशभक्तों ने उन्हें अत्यंत प्रभावित किया था। आगे चलकर वे सिस्टर निवेदिता के संपर्क में भी आए। भारती जी के ओजस्वी लेख और कविताएं स्वाधीनता संग्राम में मानो अस्त्र बन गए थे। सन 1905 के बंग भंग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। अपने प्रखर विचारों के कारण उन्हें स्वदेश मित्रन छोड़ना पड़ा। तब उन्होंने अपना साप्ताहिक पत्र आरंभ किया जिसका नाम था इंडिया। इस पत्र में उनके क्रांतिकारी लेखों के कारण अंग्रेज सरकार बौखला गई। सन 1908 में उनकी पहली कविता की पुस्तक सॉन्ग ऑफ फ्रीडम प्रकाशित हुई। ये भारती जी का मात्र एक साहित्यिक हस्ताक्षर नहीं था, बल्कि इसमें विदेशी शासन की दासता तोड़ने का प्रबल आह्वान भी था। इस तरह सुब्रमण्यम भारती ने मद्रास में स्वाधीनता आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। आर्थिक तंगी से उनका परिवार सदा जूझता रहा, लेकिन इससे न तो उनके काव्य प्रेम पर कोई प्रभाव पड़ा और न ही राष्ट्र प्रेम पर। जीवन को लेकर उनके सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट थे। एक बार एक भिखारिन चिंदियों में लिपटी अपने बच्चे और स्वयं के लिए वस्त्र मांगने उनके द्वार पर आई। भारती जी ने इतने अर्थाभाव में भी रस्सी पर सूख रहे कपड़े उसे दान में दे दिए। पत्नी चेलम्मा के विरोध पर उनका जवाब था, इन पक्षियों को देख रही हो, कितनी प्रसन्नता से दाना भी चुगते हैं और दाना खत्म हो जाने पर चहकते हुए आपस में खेलने लगते हैं। तो फिर हम इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसे संत तुल्य व्यक्तित्व को भला कब कोई अभाव सता सकता था।

भारती जी का जीवन कितने ही अभावों से गुजरा, लेकिन उनका सृजन संसार हमेशा समृद्ध रहा। प्रकृति की गोद में उन्हें अथाह शांति मिलती और ध्यान में डूबे एक योगी की तरह वो अपने आसपास को, अपने जीवन, अपने समय को सहज ही गा उठते। अपनी कविता समय एक परिकल्पना में वो कहते हैं, वो एक शक्तिशाली लहर थी, उछलती टूटती हतप्रभ करने वाली, गति से आती उग्र ताकतों जैसे जो उद्वेलित करती है मन को, मैंने देखा वो समय था। और हम कुछ ही थे जो किनारों से उसका प्रवाह देख रहे थे, जब एक बलवती इच्छा हमें घेर लेती है और हम तुमुल कोलाहल में कूद पड़ते हैं लहरों से लड़ते हुए। जीवन के ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए भी भारती जी की साहित्य साधना कभी बाधित नहीं हुई, साथ ही उनकी लेखनी राष्ट्र चिंतन से भी कभी मुक्त नहीं हुई। वो सदा जनमानस को जगाते रहे। परिणाम स्वरूप उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ और वो पौंडिचेरी चले गए, क्योंकि फ्रांसीसी उपनिवेश में होने के कारण ये स्थान उन दिनों सुरक्षित था। यहां उनके द्वारा बिताए गए 10 वर्ष साहित्य सृजन में व्यतीत हुए, लेकिन यहां भी भारती जी ब्रिटिश राज का प्रबल विरोध करते हुए श्री अरविंद के संपर्क में रहे। सन 1910 के बाद सुब्रमण्यम भारती का लेखन मात्र पत्रों में स्तंभ लेखन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं। ये सारी कृतियां प्रकाशन के बाद बहुत प्रसिद्ध हुईं। भगवद गीता का तमिल अनुवाद कन्नन पाटू यानी श्रीकृष्ण गान, कोयल पाटू अर्थात कोयल गान, और उनकी कालजयी रचना पांचाली शपथम का पहला भाग यहीं प्रकाशित हो गया था। सुब्रमण्यम भारती ने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों का अंग्रेजी से तमिल में अनुवाद भी किया, ताकि दूसरी भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं को तमिल भाषी भी पढ़ें और ज्ञान अर्जित करें। अपनी मातृभाषा तमिल के प्रति उनके मन में एक आंतरिक श्रद्धा थी, इसलिए मातृभाषा के उन्नयन के लिए वे आजीवन प्रयत्नशील रहे। जब पौंडिचेरी से वे वापस लौटे तो सन 1918 में कडलोर के पास गिरफ्तार कर लिए गए। 24 दिन तक वो कैद में रहे। इस दौरान उनकी तबीयत खराब रही और फिर वो रिहा कर दिए गए। सन 1919 में गांधी जी के मद्रास प्रवास के दौरान उन्हें बापू का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। उन्होंने गांधी जी को महात्मा गांधी शीर्षक की एक कविता समर्पित की। गांधी जी उनकी लेखनी से अत्यंत प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने कहा था, भारती देश का ऐसा रत्न है जिसकी सुरक्षा और संरक्षण होना चाहिए। भारती जी ने जाति प्रथा का विरोध किया, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया और सबसे बड़ी बात, उनकी कथनी और करनी हमेशा एक समान रही। मंदिर में एक हाथी द्वारा पटके जाने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के बाद वो ठीक तो हुए, लेकिन जीवन ने फिर अधिक दिन उनका साथ नहीं दिया। 12 सितंबर सन 1921 को उन्होंने अंतिम सांस ली। मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने मद्रास के सागर तट पर गीत गाया था, यही उनकी अंतिम कविता थी, जिसमें वे 30 कोटि जन के समान अधिकार और भारत पर भारत की जनता के शासन और उनकी अमरता का स्वप्न बुन रहे थे। ऐसे महान राष्ट्रभक्त दक्षिण के इस महाकवि भारतियार को हमारा शत शत नमन।

गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम स्मिता है. लास्ट टाइम हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारे लाइफ स्किल के सेशंस होंगे वो लीडरशिप सेशंस के पैरेलल चलेंगे. जो जो टॉपिक्स मैम कवर करेंगे, हम उसको एक एक टॉपिक को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ लीडर तो ठीक है कि हमें वो चीजें समझनी, एज एन इंडिविजुअल भी हम उससे कैसे शुरुआत कर सकते हैं. मैम की प्री कमिटमेंट की वजह से इस बारी जो हमारा सेशन है वो अभी अगले वीक पोस्टपोन हो गया है. सो आई थॉट कि एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीम वर्क का, हमने पहले भी ये वाला सेशन लिया था, बट कुछ नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं, नए बेनिफिशरीज जुड़े हैं. सो मे बी वी कैन स्टार्ट विथ टीम वर्क, कि टीम वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कि हमें एक साथ जुड़ के काम करना क्यों जरूरी है. सो आई होप जिनको ये रेपिटेटिव लग रहा होगा, इसका मतलब है आपने टीम वर्क में काम करना शुरू कर दिया है. और कुछ अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो टुवर्ड्स द एंड, छोटा सेशन है ये, वी विल हैव अराउंड 30 मिनट्स ऑफ माई स्पीकिंग एंड देन वी कैन शेयर योर व्यूज. तो टीम वर्क से क्या समझ में आता है, किसी को कुछ पता है ये टर्म टीम वर्क क्या होती है? टीम वर्क इंग्लिश की टर्म है, इसका मतलब है कि एक साथ जुड़ के एक होता है कि अकेला चलता है, एक इंसान अकेला काम करता है, और दूसरा होता है कि हम आते दुनिया में अकेले हैं लेकिन रहना तो हमें सबके साथ है. और घर में हो गया, प्रोफेशनली हो गया, पर्सनली हो गया, हम कोई भी काम अलग से नहीं करते, अकेले नहीं करते, कुछ लोगों के साथ जुड़ के, कुछ लोगों की मदद से करते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ के करते हैं, उसको हम टीम वर्क कह सकते हैं. रीडनिया में जो काम करते हैं लोग, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टीम वर्क है, क्योंकि हम समुदाय के साथ काम करते हैं, समुदाय के लिए काम करते हैं और समुदाय में रह के काम करते हैं. हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वो कम्युनिटी के अंदर हैं, कम्युनिटी के लिए हैं, और कम्युनिटी ही उनसे हमारे हम उनसे सेंटर्स के थ्रू इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि वो, अगर हमारे सेंटर्स पे कोई आता नहीं है तो हमारे सेंटर की कोई वैल्यू नहीं है. वो मशीनें, वो किताबें, वो जितनी हमने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, चाहे वो मशीनें हैं, चाहे ब्यूटी का सामान है, इसीलिए हमारे सेंटर्स आज, जो जो 15-15 साल पुराने सेंटर्स भी हैं, आज भी वो लोग क्यों काम कर पा रहे हैं, क्योंकि नया नया समुदाय जुड़ रहा है और जो पुराना समुदाय है, जो पुराने बेनिफिशरीज हैं, जो पुराने बच्चे हैं जो सीख के गए हैं, वो आज भी आते हैं. शायद कुछ बच्चे किताबें पढ़ना शुरू किया था उन्होंने और आज वो कोई ना कोई लघु उद्योग की ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे भी बच्चे होंगे जो हमारे साथ पिछले 5-10 सालों से जुड़े हैं. तो उनको हम क्यों जोड़ के रख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम जो है वो समुदाय का है. और हम अपनी सर्विसेज अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं देंगे तो कोई हमारे सेंटर पे नहीं आएगा. कभी कभी हम ऐसा भी सुन देंगे, एनजीओ तो बहुत सारे हैं लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं वो हमारे सेंटर पे आके सीखना चाहते हैं. कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या क्वालिटीज हैं हमारे सेंटर में, स्पेशली लड़कियां क्यों आके सीखना चाहती हैं? आप सभी लोग करीबन 10 साल, 8 साल, 5 साल, 2 साल से सेंटर चला रहे हैं. कोई मुझे बता सकता है कि जब हम टीम वर्क की बात करते हैं या टीम की बात करते हैं, टीम वर्क तो छोड़

0: जो टीम वर्क से हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि वो चार लोग जिनके साथ हम रीड में जुड़े हैं, यानी कि आप हो गए, लाइब्रेरियन हो गया, ट्रेनर हो गया, लेकिन अब हम अपने बेनिफिशरीज को नहीं भूल सकते। वो लोग जो हमारे साथ आके हमारे लिए जुड़ के काम कर रहे हैं, उनको हम नहीं भूल सकते। मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल दूंगी, जो हम रामपुर में विजिट किया था, उसका मैं अभी अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आपको क्यों लगता है कि समुदाय हमारे साथ जुड़ के क्यों रहता है, बार बार क्यों आता है, साल दर साल, 10 साल, 15 साल तक क्यों आता है हमारे पास, हमारे सेंटर्स में? फ्री दे रहे हैं क्या, इसलिए आता है या कोई और रीजन है?
1: मैम, हमारा कमिटमेंट, जो हमारी कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट है, जिस
0: क्या
1: तरह से हम कम्युनिटी
0: कमिटमेंट?
1: को लेकर चलते हैं अपने साथ, मैम, जो कनेक्शन हमने उनके साथ बिल्डअप किया है, जो कॉन्फिडेंस कम्युनिटी को हमारे ऊपर है, हमारे साथ सीखने में है, वो चीज उन्हें अलग जगह नहीं मिल रही, इसलिए वो हमारे साथ कनेक्टेड है। 5 साल से हम उन्हें रिटेन कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द गुड कॉज। और उन्हें भी पता है कि वी आर डूइंग इट, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वी आर डूइंग इट विदाउट एनी प्रॉफिट। तो दिस इज आवर डेडिकेशन टुवर्ड्स अवर वर्क विच इज कनेक्टिंग द कम्युनिटीज।
0: तो आवर डेडिकेशन को हम एक पॉइंट रखते हैं कि हम जो एज ए टीम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम डेडिकेटेड है, यानी कि वो चार पांच लोग जो सना के सेंटर में हैं, और सना के पास दो सैटेलाइट सेंटर्स भी थे, जो इनकी टीम है वो एक क्वालिटी सर्विस दे पा रही है अपनी कम्युनिटी को, इसीलिए उनकी जो कम्युनिटी है वो लगातार साल दर साल इनसे जुड़ी हुई है। सिंस वी प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ट्रस्ट फैक्टर, दीक्षा ने मैसेज में लिखा है। थैंक यू दीक्षा। और कोई बताना चाहेगा? इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारी एज ए टीम, एज ए रीड इंडिया, आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हैं, क्या 80 लोग एक टीम है या हम अलग अलग सेंटर से जुड़े हैं? अगर हम एक हैं तो हमारी एक कॉमन क्वालिटी क्या है एज ए टीम? अगर हम अलग अलग हैं तो हमारे अलग अलग क्या क्वालिटीज हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। एनीबडी एल्स कोई कोशिश करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा?
2: गुड आफ्टरनून
0: गुड आफ्टरनून स्वाति
2: मैम।
0: जी।
2: मैम, एक तो सेफ इन्वायरमेंट है फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड बॉय स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड सेकंड ये है कि हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट होता है उनके साथ वो भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे एरिया के होते हैं, उसके साथ साथ ही जो 3 महीने वो हमारे पास रहते हैं, तो उन 3 महीनों में हम भी उनको ज्यादा अच्छे से मतलब पहचान सकते हैं, और वो भी हमें अच्छे से जानते हैं, तो एक अटैचमेंट बन जाती है। छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, तो हमारे पास 3 टू 6 ईयर एज ग्रुप से लेकर मतलब अडल्ट तक के सारे लेवल का कुछ ना कुछ सबको सीखने का चांस है, सीखने के लिए साधन है हमारे पास, तो इसलिए वो हमारे पास मतलब सालों तक अटैच रहते हैं।
0: राइट राइट। थैंक यू स्वाति। और कोई कुछ बताना चाहेगा? बिल्कुल ठीक बोला है स्वाति ने कि जो क्वालिटी सर्विस है, जो डेडिकेशन है, और जो हम उनको जानने की कोशिश करते हैं, एक एक रिलेशनशिप बना के रखते हैं उनसे, उनकी तकलीफें जो हैं या उनके जो चैलेंजेस हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं।
3: लाइट ऑफ हो जाएगी, लगभग देखिए लाइट्स आ गई है ना, ये यूपीएससी का यूपीएससी का।
0: तो वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड। ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जैसे कि सना हो गई, स्वाति हो गई, एवरी ईच वन ऑफ अस, जितने भी लोग हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर्स हैं, सालों से जो जुड़े हुए हैं, हम लोग एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं। फर्दर जा रहे हैं एज इन हम लोगों के घर में जा जाके उनको निकाल के लेके आते हैं कि नहीं, आप आइए हमारे सेंटर पे सीखिए। सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ वेरी गुड टीम, जहाँ पे हम बियॉन्ड आवर कमिटमेंट जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वी बिलीव इन आवर मिशन। हम बिलीव करते हैं कि कोई हमारे सेंटर पे आएगा तो वो हमारे सेंटर से कुछ सीख के ही जाएगा, कुछ लेके ही जाएगा, और ऐसी चीज लेके जाएगा जो हमेशा साल दर साल उसके साथ रहेगी। क्योंकि अगर हमने किसी को कोई स्किल दे दिया तो वो स्किल हम वापस तो नहीं ले सकते ना। आपने किसी को 100 रुपए दे दिए तो वो 100 रुपए तो खत्म हो जाएंगे, वो शायद खाना खरीद लेगा उसका, या कपड़ा खरीद लेगा, या अपनी कोई भी जरूरत की चीज खरीद लेगा। लेकिन जिसको हमने कला दे दी एक बार, चाहे वो स्टिचिंग की स्किल है, ब्यूटी की स्किल है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की स्किल है, या फिर सॉफ्ट स्किल है, यानी कि बातचीत करने का तरीका, या अपना आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सॉफ्ट स्किल हो गई, टेक्नोलॉजी स्किल हो गई, तो वो स्किल तो कोई वापस नहीं ले सकता। बट वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड, हम लोग एज अ टीम काम करके एक और दरिया जो है वो पार करते हैं, जो कि है सोशली सोशली जो दबाया जाता है कि नहीं आपको नहीं जाना है, सेंटर पे नहीं जाना है, बाहर नहीं निकलना है, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उस बांध को भी हम तोड़ें। दिस इज वन ऑफ द कोर क्वालिटी ऑफ आवर टीम, जो रीट की जो टीम है ये कोर क्वालिटी बन गई है। एनीबडी एल्स, कोई और कुछ, किसी ने कमेंट में लिखा है कुछ, लेट मी जस्ट रीड दैट। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ज्योत्सना जी लिख रहे हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वेरी गुड। कैन यू डिफाइन पॉजिटिव एनवायरनमेंट?
2: गुड आफ्टरनून मैम,
0: गुड आफ्टरनून,
2: गुड आफ्टरनून
0: गुड
2: ऐसी
0: आफ्टरनून।
2: सोन। हाँ जी,
0: हाँ
2: सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग यहाँ पे आते क्यों, एक उनको ट्रस्ट होता है न्यू इंडिया के नाम से, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं और लड़कियों को भेजते हैं हमारे यहाँ पे कि उनको पता है कि यहाँ पे बच्चियां जा रही हैं, लेडीज हमारे घर से कोई भी लेडीज जा रही है तो यहाँ पे सेफ है इस चीज के लिए। और जो भी सिखाया जाएगा, जो भी चीज होगी यहाँ पे अच्छे से ही सिखाया जाएगा, उनकी ग्रोथ ही होगी, कभी वो डाउन नहीं होगी किसी चीज के लिए। तो कुछ
0: बिल्कुल
2: बेनिफिशियरीज मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, उनसे आपसे बात भी करना चाहते हैं। डायरेक्ट आप उन्हीं से बात करिए, वो लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, क्या उनको आने से फायदा है, वो क्यों सीखते हैं यहाँ पे आने के बाद, बताओ
0: राइट
2: बेटा, आप बता
0: राइट,
2: सकते हो कोई भी?
0: गुड आफ्टरनून।
2: पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, हमें यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ हम आगे भी बढ़े और इससे हेल्प मिले तो उसके लिए हम आते हैं।
0: ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू
2: रागिनी
0: सो
2: आप
0: मच।
2: बोलना, बोल कुछ बोलो। गुड आफ्टरनून,
0: गुड आफ्टरनून,
2: हाँ मुझे ना सिलाई करना बहुत पसंद है इसलिए मैं आती हूँ।
0: तो रीट के सेंटर पे क्यों आते? सिलाई सेंटर तो बहुत सारे खुले हुए हैं,
2: हाँ
0: बहुत सारे
2: सीख
0: खुले।
2: भी रहे हैं उसके साथ, नए नए डिजाइन में मतलब सीख रहे हैं, जो बन रहा है वो सीख रहे हैं, मैम अच्छे से बताती हूँ इसके साथ।
0: अच्छा
2: बताओ
0: अच्छा
2: प्रोडक्शन में आप काम करके पैसे भी कमा रहे हो इस टाइम? हाँ काम करके पैसे भी मिलते हैं।
0: अच्छा पैसे भी मिलते हैं इसलिए आप आपको यहाँ आना अच्छा लगता है कि सीख भी रहे हैं और प्रोडक्शन का काम भी आ रहा है।
2: हाँ
0: वेरी
2: जी
0: गुड वेरी गुड, थैंक यू ज्योत्सना जी। यू वर ट्राइंग टू से समथिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बारे में, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे। हेलो
2: हाँ जी मैम, हेलो मैम, हेलो
0: आप
2: मैम, बोलिए बोलो बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि
0: सुमन
2: स्टूडेंट्स जब यहाँ आते हैं वो
0: जी, सुमन जी आप म्यूट। हाँ
2: हम जब आते हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉपर क्लियर नहीं होता उनके माइंड में, बहुत कुछ चीजें होती हैं और थोड़ा सा ऐसे एनवायरनमेंट से आते हैं जो वो बहुत पॉजिटिव साइड पे सोचते नहीं है। तो यहाँ पे आके जब उन लोगों को हर चीज पॉजिटिवली सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है तो उनके माइंड्स काफी क्लियर हो जाते हैं और पॉजिटिव सोचा। और सबसे अच्छी चीज है कि हम जो एनवायरमेंट है स्टडी वाला रखते हैं, और चीजों पे बातें करना, डिस्कस करना या कुछ ऐसी चीजें करना, उसमें हम लोग बच्चों को इंटरेस्ट लेने ही नहीं देते, जिससे क्या होता है वो लोग पॉजिटिव सीखते भी हैं और साथ साथ बात भी पॉजिटिव करते हैं। और एक
0: राइट
2: ही जगह उन्हें तीन तीन चार चीजें सीखने के लिए यहाँ पे मौका भी मिलता है। जैसे मैम कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेकअप सीख रहे हैं या वो कंप्यूटर सीख रहे हैं, लेकिन उनका बाद में इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हम थोड़ा सा और भी कुछ सीख लें और आगे सीखें, तो ऐसे भी वो सीख सकते हैं।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू जसन जी। सो मैंने कहा था मैं एक एग्जांपल दूंगी कि किस तरीके से हमारी टीम एक कदम आगे ही चल के काम करती है। अभी हम रिसेंटली रामपुर में गए थे और करीबन मेरे को लगता है 50, बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी उस दिन, और 50 से भी ज्यादा लड़कियां उस सेंटर में बैठी हुई थी। नया सेंटर जो रिलोकेट किया है हमने, हमारा रामपुर में जो सेंटर है, बहुत गर्मी थी एकदम। लेकिन एक एक बच्चा जो था, एक एक स्टूडेंट्स जो था, वो कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ ना कुछ एक उमंग थी उनके अंदर कि हाँ हम रीड सेंटर पे आए हैं तो रीड सेंटर से कुछ सीख के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। इतना एनर्जी था, पहले शुरुआत में वो बहुत घबरा रहे थे बोलने में, बहुत ज्यादा, पहली बारी मिले थे, मैम थी हमारे साथ तो बहुत ज्यादा उनको हिचकिचाहट हो रही थी बोलने के लिए। लेकिन 5-10 मिनट के बाद वो लोग कंफर्टेबल हुए, और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कोई भी लड़कियां, इतना उनके पास था शेयर करने के लिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी आई जब हमारी टीम ने उनको ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं आप आइए सेंटर पे, आइए सीखिए, यहाँ पे सीखने के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल यानी कि आपस में जब आता है लोग इंसान मिलते हैं तो उनको लगता है कि हम और भी कुछ सीख सकते हैं। देखो सिलाई तो कोई भी सिखा देगा, कोई भी सेंटर पे जाएंगे आप सीख जाएंगे, ब्यूटी भी आप कहीं ना कहीं सीख जाएंगे, आप हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग भी सीख जाएंगे, लेकिन एक माहौल जो हम क्रिएट करके रखते हैं अपने सेंटर में, जिसमें जो आप ही ने मुझे बताया कि हम पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं, हम एक अच्छे तरीके से सिखाते हैं, जो सना ने बोला कि जो भी हम सिखाते हैं हम बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग देते हैं, हम सेफ एनवायरमेंट रखते हैं कि ताकि अगर लड़कियां आ रही हैं उनके पेरेंट्स को कोई ऐसा हिचकिचाहट ना हो। ज्योत्सना जी ने बोला कि हम फोकस करते हैं जिस काम के लिए आए हैं, पहले हम वो काम करें, उस पे फोकस रहें, इधर उधर गॉसिप नहीं करें, नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं फैलाएं। तो ये सारी चीजें जो कंपोनेंट्स है ना, ये मिलके ही किसी टीम को सक्सेस करा पाती है। तो यही कुछ चीजें आज मैं एक छोटी सी मैंने पीपीटी बनाई है, आई जस्ट ट्राई एंड शेयर विद यू। ऑलराइट, सो टीम वर्क यानी कि एक ग्रुप में एक साथ होके हमें जो एक कॉमन गोल, अब हमारे केस में कॉमन गोल क्या है कि हमारे सेंटर को इसी तरीके से ग्रोथ मिलती रहे, हमारा सेंटर कभी भी ऐसा ना हो कि हमारा सेंटर तो खुला है लेकिन कोई वहां सीखने ही नहीं आना चाहता। तो एक कॉमन गोल जो है, हम आज जितने 89 पीपल जुड़े हुए हैं, हम सबका एक कॉमन गोल है कि आपका छोटे दर पे गोल ये है कि आपका सेंटर जो है वो साल दर साल चलता रहे, उसमें बढ़ोतरी होती रहे और थोड़ा थोड़ा करके हम उसको सेल्फ सस्टेन कर सकें। ऐसे ही अगर हम सारे सेंटर्स को ले लेंगे और इन सबका जो एक कॉमन गोल होगा वो यही होगा कि हमारे सेंटर्स चलते रहें, इनमें कोई रुकावट नहीं आए, और जो हम मिशन है जो हमारा, जो कि कम्युनिटी को सर्विस देने का हमारा गोल है, वो हम एक साथ अचीव करें। अगर आप में से कोई भी एक सेंटर वो गोल अचीव करने में नाकाम हो जाता है, किसी एक सेंटर पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उंगली किसके ऊपर उठेगी? सीधा रीड इंडिया के ऊपर। तो जो टीम है हमारी, जो हम टीम वर्क की आज बात कर रहे हैं, तो अगर एक भी पुर्जा उस टीम का कमजोर हो जाता है या उसकी वैल्यूज मैच नहीं होती या वो किसी और रास्ते पे निकल जाता है, तो जो हमारी टीम है, जो एक माला है, अगर उसमें से एक मोती निकल जाता है तो माला टूट जाएगी। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि लगातार हम सेंटर से जुड़े रहें, हम सेंटर्स को अपनी कोर वैल्यूज से जोड़ के रखें, क्योंकि हम टीम वर्क की इंपॉर्टेंस समझते हैं। और इसीलिए रीट जो है, मैम भी है, हम सबको नर्चर करती हैं कि हम सबका जो कॉमन गोल है वो हमेशा एक ही रहे और लाइव रहे, यानी कि हम उसे चेंज कर सकते हैं ग्रोथ की तरह, लेकिन ऐसा ना हो कि अलग ही दिशा में चला जाए। मान लीजिए कोई सेंटर बोलता है ठीक है अब तो मुझे ये करना ही नहीं है, अब मैं इसमें जिम खोलना जा रहा हूँ, अब मैं अपना सेंटर में जिम खोलूंगा, जी अब तो ये सेंटर हमारे को दे दिया गया, अब मैं इसमें जिम खोलूंगा, जिम की बहुत डिमांड है। क्या ये हमारा गोल है? नहीं, हमारा गोल है स्किलिंग का, हमारा गोल है एजुकेशन का, हमारा गोल है सॉफ्ट स्किलिंग का, हमारा गोल है कि हम महिलाओं को या लड़कियों को या जो कम्युनिटी है ऐसे एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उनकी ऑल्टरनेट इनकम हो सके, जिससे हम सेंटर भी सेल्फ सस्टेन कर सके। यही 5-6 गोल है, इसके अलावा तो और कोई गोल नहीं है हमारा। तो ये कॉमन गोल को डिफाइन करना और सभी पूरी टीम जो है, जो जितने भी लोग एक टीम में जुड़े हैं उसकी तरफ काम करने से ही वो हमारा गोल अचीव हो सकता है। कभी भी टीम में हम ये नहीं कह सकते अच्छा मैं तो अच्छा कर रही हूँ। कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, या आपके फाइनेंशियल डेटा नहीं आया, या आपकी रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं आ रही। बोले नहीं मैंने तो दे दिया था, आगे उन्होंने नहीं दिया, या आधी ही आई या आधी रिपोर्ट ही आई, बट हमारा अचीव तो नहीं हुआ ना। तो टीम में जो लीडर होता है या जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, या चलिए मुझे ज्यादा तजुर्बा है, या कभी कभी लीडर जो होता है हम चुनते नहीं है लेकिन वो इतना रिस्पेक्ट कमांड करता है कि उसको मान लेते हैं कि हाँ ये लीडर है, तो ये एज ए लीडर या एज ए कोर मेंबर ऑफ एनी टीम, आप हम सबका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम कभी भी आई विन यू लूज, मतलब मैं तो जीतूं और तुम हार जाओ, कि दूसरे को नीचे खींच के हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। ये टीम अच्छी टीम के कॉम्पोनेंट नहीं है, अच्छी टीम की कॉम्पोनेंट है कि मैं भी जीतूं तुम भी जीतो, यानी कि हम दोनों मिलके प्रोग्रेस करें। मेरी प्रोग्रेस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तुम्हारी कम हो सकती है, कि तुम्हारी कभी ज्यादा हो सकती है, मेरी कम हो सकती है, राइट? सो टीम में सबका मिल बांट के काम करना, सबके रोल्स डिफाइन होना। अगर रोल्स सही से डिफाइन नहीं होंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन में कोई भी ढंग से काम नहीं कर सकता। घड़ी जो होती है, घड़ी में पीछे हमको सिर्फ 3 सुइयां दिखती हैं, राइट? लेकिन कभी अगर हम उसको पलट के खोल के देखें तो पीछे बहुत सारे छोटे छोटे छोटे छोटे पुर्जे हैं जो काम करते हैं। अगर उनमें से एक भी पुर्जा काम करना बंद कर देता है तो घड़ी सही टाइम नहीं दिखाएगी, या टाइम दिखाएगी ही नहीं, राइट? वो तीनों सुइयां शायद मूव नहीं करेंगी या गलत मूव करेंगी। तो हम जो पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के आगे हमारी लीडरशिप है, हमारी ट्रस्टीज हैं, हमारी रिपोर्ट्स हैं, हमारी वेबसाइट है, लेकिन इसको बनाता कौन है? बनाते तो हम लोग हैं। तो जब हम आपसे रिपोर्ट्स लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, फोटोज लेते हैं, आप ये सोचिए, आप वो घड़ी का वो छोटा पुर्जा है जिसको टाइम तो देखेगा कोई, कोई होगा कॉर्पोरेट, उसने देखना है कि हाँ ये लोग क्या काम कर रहे हैं, तो वो टाइम दिखाना हो गया। लेकिन पीछे का काम तो हम सब मिलके कर रहे हैं ना, तो अपने काम को हम कभी भी छोटा नहीं सोचेंगे। कुछ भी अगर रीड में कुछ काम चल रहा है तो आप ये सोचिए कि ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी तो मुझे दिया गया है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, कि कभी भी मत सोचिए कि आई एम अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग टीम, अगर मैं ये नहीं भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अगर मैं 100% नहीं दूंगा इसका या नहीं दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़े। सो फॉर अ गुड टीम सारे कॉम्पोनेंट्स का एक साथ जुड़ के अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है। अभी हमने बात करी कि रोल्स डिफाइन होने बहुत जरूरी होते हैं एक टीम में। अगर रोल्स डिफाइन नहीं होंगे कि भाई किसने सुबह सफाई करनी है, किसने स्विंग की क्लासेस लेनी है, किसने रिपोर्ट भेजनी है, किसने फाइनेंस का हिसाब रखना है, किसने देखना है कि भाई चाय पत्ती दूध चीनी सेंटर में है कि नहीं, किसने देखना है कि किताबें सही से लगी हुई हैं, मशीनें ठीक से काम कर रही हैं, अगर ये रोल्स ठीक से डिफाइन नहीं होंगे तो हमारा जो लाइब्रेरी है, हमारा जो सेंटर है, वो नहीं चलेगा, वो सही से नहीं चलेगा। देर इज सम जोक गोइंग ऑन, जो हमारा ये सेंटर है जूम यूजर वाला, आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू हियर दैट जोक। आप याद रखिएगा, वी विल कम बैक टू यू एंड वील हियर योर जोक। सो इस जो जो टीम वर्क होता है उसमें ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अभी सना ने और जो दो तीन लोगों ने बोला, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम फुल डेडिकेशन के साथ अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं, उसी तरीके से एक अच्छी टीम का काम करने के लिए टीम में आपस में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। हम समय समय पे आपको पूरे आई वुड रिक्वेस्ट जूम यूजर, इधर आप चले जाएं बिकॉज देर इज सम गॉसिप गोइंग ऑन, या फिर आप अपनी स्क्रीन बंद कर दीजिए बिकॉज मेरे लिए बहुत अटेंशन डाइवर्शन हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। आई कैन हियर यू लाफिंग एंड आई कैन हियर यू यू नो इट इज वेरी इरिटेटिंग। आई एम श्योर आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आप स्क्रीन बंद कर लीजिए, सिर्फ नाम वास्ते आप ऑनलाइन रह सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज विद यू, राइट? प्लीज स्विच ऑन योर स्विच ऑफ योर स्क्रीन। आप अपने जोक्स कंटिन्यू करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, राइट? ऑनेस्टी के साथ काम करना बहुत जरूरी है एक टीम में, बिकॉज अगर हम ऑनेस्ट नहीं होंगे तो दैट मीन्स हम टीम में इक्वली ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आ रहे, तो कहीं ना कहीं हम चीजों को छुपा रहे हैं, और ये हमारी टीम की हेल्थ के लिए और हमारी टीम की ग्रोथ के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आज आप यहाँ पे हैं, हो सकता है आप आगे जाके किसी और कंपनी में जाएंगे या किसी बड़ी संस्था के साथ काम कर सकते हैं। तो एज ए लीडर, क्योंकि हम लीडरशिप के भी सेशन लेते हैं, एज ए लीडर और एज ए मेंबर ऑफ द टीम, बहुत जरूरी है कि हम कोई चीज अगर हमें पता चली है और हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो हमें सब मेंबर्स के साथ वो शेयर करना चाहिए। सो ऑनेस्टी इज वन ऑफ द कोर कॉम्पोनेंट ऑफ अ गुड टीम। ऑलराइट, आई विन यू विन आई विन हमने बात कर ली है, इसके इसके लिए कोई एग्जाम्पल्स अगर किसी के पास हैं तो वी विल बी हैप्पी टू नो अबाउट दैट। टीम में ना तीन, जो हम जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, आपकी लाइब्रेरीज में बहुत किताबें होंगी टीम वर्क के ऊपर, हाउ टू विन पीपल, अच्छे जो टुगेदरनेस के ऊपर जो किताबें हैं, उसमें तीन चीजें बहुत जरूरी हैं कि ट्रस्ट, टॉलरेंस एंड टुगेदरनेस। यानी कि ट्रस्ट मतलब हमें पूरा ट्रस्ट होना चाहिए अपनी टीम के ऊपर, बट ट्रस्ट आएगा कैसे? वो ट्रांसपेरेंसी से आएगा, जिसकी बात हमने पहले वाली स्लाइड में करी। टॉलरेंस, अब टॉलरेंस सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान को अलग चीज मोटिवेट करती है, हर इंसान के लिए अलग चीज जो है वो अच्छी है या बुरी है। तो हम एक टीम में एक जैसे तो नहीं होते, हर टीम में अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 90 लोग हैं, तो हर कोई अलग अलग होगा, तो टॉलरेंस बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल अभी जो जनाब यहाँ बैठे हुए थे तीन चार लोग, उनके लिए कुछ और इम्पोर्टेंस था, बट हमें हमें उनके लिए भी टॉलरेंट होना है. मे बी आज वो सुन रहे हैं ये चीज, हो सकता है कल उनके काम पे आए, आज नहीं इम्पोर्टेंट लग रहे, बट वो आगे जाएंगे किसी कंपनी में काम के लिए जाएंगे, तब शायद ये बात मेरी उनको याद रहे या याद आ जाए जब उनको कहा जाएगा कि टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है. सो हमें हर किसी को टॉलरेट करना सीखना पड़ता है, और जिनके पॉजिटिव्स हैं जो नेगेटिव्स हैं उस पे काम करना चाहिए एज ए गुड टीम. अगर एक टीम में किसी की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो और लेकिन अगर उनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो एज ए टीम लीडर हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं लेकिन स्पीकिंग स्किल्स तो अच्छी नहीं है, तो हम यू नो वी वोंट गिव यू अ रोल. हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं, तो हमें स्ट्रेंथ्स देखनी है कि हमारे टीम में जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स क्या है. किसी की फाइनेंस में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की क्रिएटिविटी में बहुत अच्छी हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइनेंस में अच्छी है, लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि कुछ बोर्ड पे लिख दो या ड्रॉ कर दो, तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है और ड्रॉइंग तो उससे भी बुरी है. लेकिन कोई बोले कि इसका फटाफट एक्सेल में कुछ बना दो, इसका जोड़ तोड़ कर दो, इसको बताओ कि इसका क्या, इसकी एक रिपोर्ट बनानी है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो मेरे लिए बहुत आसान है. तो मुझे ही पता है, तो मैं अपनी जो मेरे लीडर है मैंने उनको पहले ही बताया कि अगर इस तरीके का काम करेंगे तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी, और अगर इस तरीके का काम मुझे दिया जाएगा तो शायद मेरी कैपेबिलिटी उसमें नहीं है. सो वी हैव टू बी टॉलरेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्किल्स बट ऑल्सो टेम्परामेंट. टेम्परामेंट मतलब कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत विनम्र होते हैं, कुछ लोगों को जल्दी मतलब एकदम से वो घबरा जाते हैं, टेंशन आ जाते हैं, और काम करने में उनका दिमाग नहीं लगता, डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं. तो वी हैव टू एज ए टीम लीडर हमें उनको फीडबैक देना है. आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा अटेंशन डाइवर्ट कर लेता है हम लोगों की. बार बार हम फोन देखते हैं, बार बार हम फोन पे देखते हैं कि क्या चल रहा है, अच्छा क्या न्यूज है. हम लोग भी न्यूज आज सुबह, कल से तो मैं भी न्यूज बार बार देख रही हूँ कि दिल्ली में क्या हो रहा है, अच्छा फ्लडिंग कहाँ पे हो रही है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टीम में हमें टॉलरेट करनी है, लेकिन हमारा गोल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. अगर कोई रिपोर्ट आज जानी है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आज जानी है, तो एज ए लीडर हमें ये देखना है कि टीम में टॉलरेंस की जगह तो है लेकिन कॉम्प्लेसेंसी यानी कि काम ना हो इस चीज की जगह नहीं है, क्योंकि फिर हमारी टीम फेल हो जाएगी. ट्रस्ट टॉलरेंस टुगेदरनेस तो होगी लेकिन टीम फेल हो जाएगी, है ना. सबसे ऊपर गोल है, गोल के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है वो हम पहला कंपोनेंट था कि टीम में सबका एक साथ मिलके चलना बहुत जरूरी है फॉर अ सक्सेसफुल टीम. टीम में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की कमियों को टॉलरेट करना कुछ हद तक हमें सीखना चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ आके भी बोल जाए तो हम बोले नहीं नहीं ये तो हमारा टीम मेंबर है और ये नहीं नहीं हम तो इसको कुछ कहेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है. टॉलरेंस एज फार एज इट इज एडिंग टू आवर गोल राइट एंड टुगेदरनेस. हम अकेले तो कुछ, अकेले तो टीम है ही नहीं, अकेले तो फिर हम इंडिविजुअल है राइट. एक ये खरगोश और कछुए की कहानी हम सबने सुनी है बचपन में, हमने ये कहानी छोटे बचपन से सुनते आए हैं कि एक खरगोश था और एक कछुआ था, और ये दोनों ही रेस लगाते हैं, और खरगोश सो जाता है क्योंकि उसे लगता है अरे मैं तो इतना तेज भाग रहा हूँ और इतनी तेजी से मैं फटाफट कर लूंगा, और मैं सो जाता हूँ, थोड़ी देर सो भी जाऊंगा. उसने पेड़, एक पेड़ ढूंढा और उस पेड़ के नीचे सो गया. इतने में जो कछुआ था वो अपने गोल पे कायम रहा, धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो गोल की तरफ बढ़ता रहा, और उसने देखा कि कछुआ तो उसने देखा कि खरगोश तो सो रहा है, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं इसको जगाता नहीं हूँ, ये तो सो ही रहा है, इन एनी केस मुझे जीतना है, ये रेस जीतने के लिए है, मैं आगे बढ़ता हूँ. तो कछुआ जो था धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अंत में वो रेस जीत गया. जब खरगोश उठा तो उसने देखा अरे मैं तो सो गया था और मैं ये रेस हार गया. ये स्टोरी सुनी है किसी ने पहले या इससे अलग कोई स्टोरी सुनी है किसी ने कछुए और खरगोश की? आप
2: हाँ जी सर,
0: सुनी है
2: अभी
0: मैम, सबने
2: सबके पास किया है
0: सब
2: मैंने।
0: सबने सुनी है. इस स्टोरी में एक ट्विस्ट लेके आते हैं. इस स्टोरी को अगर एज ए टीम सुनाना है हमको तो हम कैसे सुनाएंगे? अगर खरगोश और कछुए की टीम है, अभी क्या था कि कछुआ अलग भाग रहा था, खरगोश अलग भाग रहा था, वो एज ए टीम नहीं भाग रहे थे। कछुए की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी और खरगोश की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी। अभी वो तो जंगल में रहते हैं, लेकिन हम लोग तो इंसान हैं, हमें तो एक साथ जुट के काम करना है, और हम हमारी क्वालिटीज कछुए और खरगोश जैसी ही है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग अलग है। हाँ, हम सबकी जो शक्तियां हैं या सबकी जो वीकनेसेस हैं, वो सबकी अलग अलग हैं। अगर ये स्टोरी थोड़ी सी टीम वर्क में सुनाई जाए, तो उसमें हम ये डाल सकते हैं कि कछुआ और खरगोश एक रेस में थे। उस रेस में कई रुकावटें थी। पहले तो बहुत रास्ता जो था वो पथरीला था, बहुत उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता था, और आगे जाके नदी आती है और फिर पहाड़ आता है। ये रेस उनको पार करनी थी। तो जब कछुए और खरगोश ने देखा कि ये रेस तो इम्पॉसिबल है पार करना, अलग अलग अगर हम करेंगे तो एक पड़ाव तक जाके हम रुक जाएंगे, हम ये रेस नहीं पार कर सकते। तो फिर कछुए और खरगोश ने बोला कि ठीक है, क्यों ना हम टीम वर्क में काम करें। जब हम टीम वर्क में काम करेंगे, तो जो पथरीला रास्ता है वो खरगोश फटाफट पार कर लेगा और मैं खरगोश के ऊपर चढ़ जाऊंगा, और जो पानी का रास्ता है वो कछुआ फटाफट पार कर लेगा और खरगोश उसके ऊपर चढ़ जाएगा। जो पहाड़ का रास्ता है वो फिर खरगोश कवर करके ऊपर पहुंच जाएगा और कछुआ उसके साथ चला जाएगा। तो अगर रेस पार करनी थी तीनों दोनों को, तो ये तीनों पड़ाव पार करने थे। अब अकेले तो वो शायद नहीं कर पाते, खरगोश पानी में डूब जाता और ये दोनों ही हार जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारी इज्जत का सवाल है और हम एज ए टीम काम करेंगे। सो एज ए टीम हमें ये देखना है कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, क्या हमारे टीम वर्क करने से वो इश्यूज पार हो सकते हैं। क्योंकि हमारा गोल क्या था कि वो रेस को पार करना, गोल ये नहीं था कि जीतेगा कौन, राइट? अगर गोल रिडिफाइन कर दिया जाए, अगर गोल कॉमन हो, जो कि रीट का गोल है, कॉमन गोल है, हम कोई कंपनी नहीं है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, हम एक संस्था है जो समाज समुदाय के साथ काम कर रहे हैं, समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या हमारे गोल में इंडिविजुअल का जीतना जरूरी है, या एक टीम का एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ना ज्यादा जरूरी है? कठिनाइयां उसमें भी आएंगी, हो सकता है कछुआ जो है खरगोश का भार ना सहन कर पाए, बट धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो एज अ टीम शायद वो रेस पार कर लेंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म्ड है कि अकेले वो नहीं पार कर सकते। हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लियर रोल्स हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो। आप देखेंगे बार बार मैम हमें कम्युनिकेट खुद से करती हैं, जहां भी चैलेंज आता है वो खुद से फोन उठाती हैं, हर एक से बात करती हैं, और जो प्रॉब्लम एरियाज है उसको वहीं के वहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो एज ए लीडर हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। जो कम्युनिकेशन है वो लगातार सही तरीके से चलती रहे इन इन अ ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल्स हम आसपास अपने, जैसे कि यहाँ इस फोटो में दिखाया गया है, चींटियां जो है बड़े से बड़ा पहाड़ उठा लेती हैं, अपने भार से कई गुना ज्यादा भार वो उठा लेती हैं एज ए टीम जब काम करती हैं। इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आप देखें हनी बीज जैसे काम करती है ना, उनका रोल्स बहुत डिफाइंड होता है। रानी मक्खी कौन सी है और वर्कर बी कौन सी है, शहद कौन इकट्ठा करके लाएंगी, और रानी मक्खी की जो क्या कहते हैं सोल्जर बीज होती हैं वो कौन सी हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन क्लियरली कि किसका क्या रोल है एक टीम में, क्योंकि जो कॉमन गोल है हमें वो अचीव करना है, राइट? और ज्यादातर टीम्स, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां आप देखोगे, ज्यादातर टीम्स जो है ना वो फेल इसलिए करती हैं क्योंकि शायद उनकी लीडरशिप अच्छी नहीं होती। शायद लीडर अच्छा है, लेकिन लीडर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। शायद कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही है, लेकिन उनके गोल्स ही डिफाइन नहीं है। भाई बहुत अच्छे से किया, लेकिन पता ही नहीं जाना कहाँ है, पता ही नहीं है करना क्या है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कम्युनिकेशन अच्छे रखें, अपने लीडर को इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, गोल्स क्लियर होने चाहिए कि टीम किस लिए काम कर रही है। ये जो सेंटर हमने खोला है, इतनी जगह पे जो हमारा सेंटर है, किस लिए क्यों काम कर रहा है? और
1: हेलो,
0: हर,
1: मैं
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: स्मिता जी हेयर। आई वुड लाइक टू ऐड वन स्टोरी। अभी मैंने फुल टाइम पे एक बिजनेस था, वो
0: मैं एक मिनट अपना
1: अगर
0: कैमरा ऑफ करती हूँ क्योंकि मेरे को ना आवाज थोड़ी कम आ रही है, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ जी आप बोलिए, आप कंटिन्यू करिए।
1: I heard कि somebody was saying कि हम should work like sunflowers. तो why sunflower? Because sunflower हमेशा सन की तरफ देखता है to get energy. और वो पूरा दिन सन की तरफ देखता है, सन की तरफ ही जैसे साइड पे सन हमारा जाता है, सनफ्लावर उधर ही मुड़ जाता है एनर्जी के लिए, ताकि वो अपना बाकी का जो उसका प्रोसेस है वो पूरा कर सके. एंड एट द टाइम्स जब सन नहीं होता है, वेदर की वजह से या कोई और रीजन, तो सन के ना होने पे सनफ्लावर का मैंने सुना कि वो सनफ्लावर्स एक दूसरे की तरफ फेस कर लेते हैं टू एक्सचेंज एनर्जी. तो जब हम अपनी टीम के साथ काम करते हैं, हमारा है, हमारे मेंटर्स हैं, वो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, जहाँ तक वो कर सकते हैं वो करते हैं. जब वो लोग अपने किसी और काम में हैं, तो वी शुड ऑल्सो वर्क लाइक सनफ्लावर्स, एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी टीम को हमें हर तरह से, हर हर सिचुएशन हम लोगों को आगे लेके जाने के लिए वी शुड वर्क. आई जस्ट वांट
0: इट इज अ ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेशन सीमा जी। अगर आप अलाउ करेंगी तो मैं ये स्लाइड अपने पैक जो हमारा पीपीटी है इसमें ऐड करना चाहूंगी। आई हैव नेवर हर्ड सच अ ब्यूटिफुल थिंग, मतलब डेफिनेटली ये वर्थ ऐड करने का है कि जब जब सूरज चमकता है, यानी कि जब पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तब तो हम एज ए टीम काम कर रहे हैं, बट जब कठिनाइयां आ जाती हैं तो हमें एक दूसरे की तरफ देखना है, एक दूसरे का साथ जो है वो एज सनफ्लावर, एज ए गुड टीम मेंबर हमें वी शुड नॉट यू नो लेट गो कि अगर आज कठिनाइयां हैं तो आज हम टीम नहीं है, अब हम अलग अलग काम करेंगे। जब तक कि सब कुछ अच्छा था तब तक हम एक अच्छी टीम की तरह काम कर रहे थे, आज क्योंकि प्रॉब्लम आ गई, सन नहीं है, अब हमें रोशनी नहीं मिल सकती, तो रोशनी हमें एक दूसरे से लेनी है। वेरी गुड, थैंक यू सीमा मैम। सो दैट वॉज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन आई हैड क्रिएटेड जस्ट ऑन टीम वर्क, वो हम आपसे शेयर कर देंगे। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है, चाहे आज यहाँ पे हैं आप, चाहे कल बड़े हो किसी कंपनी में जाएंगे, चाहे हम ये प्रोफेशनली बात करें तो ज्यादा मतलब ये स्लाइड्स रहेंगी, पर्सनली भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्सनली भी हम घर में अकेले नहीं होते, हमारे माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, और जब अगर शादी हो जाती है स्पेशली फॉर लेडीज महिलाओं के लिए, हम दूसरे घर जाते हैं तो सास ससुर हो सकते हैं, वहां पे पूरी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, तो उनको भी हम कैसे एक परिवार को एक टीम की तरह देखें, ये भी शायद सोचने की हमें जरूरत है, क्योंकि आजकल इतने मनमुटाव हैं, इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि वही वाला एटीट्यूड है ना कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, लेकिन हम सबको तो ये नहीं समझा सकते, सिर्फ खुद को ये समझा सकते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को हम आप तक इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हो सकता है ये छोटी सी चीज किसी की लाइफ में कोई बदलाव लेके आ सके। मुझे मेरे काम का ये पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे करने में मजा आता है आपसे सीख, जैसे आज मैंने नई चीज सीखी है सीमा मैम से, ऐसे ही मैं चाहूंगी जो लोग लगातार जुड़ रहे हैं वो कोई ना कोई नई चीज, कोई एक नई सीख हम सबके साथ शेयर करें, बिकॉज सिर्फ मेरा बोलना अच्छा नहीं है, सब सबके पास वो नॉलेज है, सभी पढ़ रहे हैं, सभी के पास वो एग्जाम्पल्स हैं। और कुछ भी एग्जाम्पल सही या गलत नहीं होता, क्योंकि हम सब लाइफ से सीख रहे हैं, अगर हम सभी शेयर करने शुरू करेंगे तो आप सोचिए कितना कुछ हम सीखने को मिलेगा। इस सेशन में आना कोई जबरदस्ती नहीं है, जिनको लग रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट काम है या कुछ और प्रायोरिटी है, आप प्लीज मत आइए इस सेशन में, ये सेशन इन एनी केस आपसे शेयर कर दिया जाएगा जब आपको लगेगा कि आपके पास वक्त है और आपका दिमाग इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, आप तभी भी सुन सकते हैं। सो देर इज नो मैंडेटरी, यहाँ कोई अटेंडेंस नहीं है, रिकॉर्ड किया जाता है जस्ट क्योंकि ये सेशन हम आपसे शेयर करेंगे ताकि वो आप जब चाहें सुन सकते हैं। ये जूम जूम यूजर का जोक तो हम सबको सुनना है राइट, वो क्या जोक चल रहा था, फतेहपुर सेंटर, फतेहपुर राइट।
3: सॉरी भाई, आई एम सो सॉरी। जो ये चला था कि आपने वहां पे एक पॉइंट रखा था कि सब जो लीडर होता है वो ये चेक करता है कि जो किचन में चीनी है या नहीं, या फिर चाय की पत्ती है या नहीं, मैम। बट एज अ लीडर मैं ऐसा कुछ मैंने गलती की, तो सो मुझे हंसी आई अपने ऊपर कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ आज, मैम जो बात कह रही है वो रियलिटी में मेरे साथ ऐसा हो रहा है,
0: राइट
3: इसलिए मुझे
0: हमने
3: मैम,
0: खेल,
3: या मैम डर
0: बहुत
3: नॉट
0: अच्छा
3: जोक मैम,
0: पॉइंट,
3: या मैम।
0: बहुत अच्छा
3: स्ट्रोक की
0: पॉइंट
3: तरह।
0: है।
3: यस सर, क्योंकि
0: नहीं
3: मैंने
0: मैंने
3: एक
0: ये
3: गलती फील की कि मुझे
0: ना,
3: इतने में किया है, सो मुझे थोड़ी सी हंसी आई अपने ऊपर आई इस बात को लेकर के, और मेरे
0: नो
3: जो मेंबर्स
0: प्रॉब्लम,
3: हैं उनको भी लगा कि तो सो सॉरी मैम, मैंने ऐसा कोई
0: नो नो सॉरी की
3: गलत
0: बात ही नहीं है,
3: रिस्पॉन्स।
0: मुझे लगा कोई अच्छी बात चल रही है तो
3: नो
0: हमारा
3: नो
0: भी
3: नो
0: होना
3: नो
0: चाहिए। तो
3: नहीं
0: मैंने
3: नहीं
0: ये
3: नो
0: नहीं बोला था कि लीडर जो है वो ये देखेगा चाय पत्ती है कि नहीं, मैंने
3: या
0: बोला
3: मैम
0: था,
3: या मैम
0: मैंने ये
3: बिल्कुल
0: कहा था कि रोल्स बहुत जरूरी हैं डिफाइन होना हमारे सेंटर में या हमारी टीम में, किसका क्या रोल है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, जैसे हमारे ऑफिस में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुछ चीजों का हिसाब रखना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे जो और 10 लोग हैं उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर वो मान लीजिए कोई 2 लोग उसमें से उस दिन नहीं आए, तो एज ए टीम मैं ये नहीं कह सकती ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। एज ए गुड टीम मुझे थोड़ा सा आइडिया है अगर, तो मैं कह सकती हूँ ठीक है आज वो नहीं आए तो मैं उसका उसकी जगह ये काम करने को तैयार हूँ। तो दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड टीम वर्क, राइट। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? वेरी
2: गुड आफ्टरनून मैम, सुनीता
0: गुड
2: फ्रॉम।
0: आफ्टरनून।
2: मैम जैसा कि आपने आज सारे पॉइंट इतने अच्छे से बताया, तो उसी का एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि जो स्प्रिंगवुड स्कूल शीतला कॉलोनी का है, इतना प्रोग्रेस कर रहा है, टीम वर्क की वजह से ही कर रहा है। कहाँ लास्ट सेशन जुलाई में मेरे पास 11 एनरोलमेंट थे और अभी मेरे पास 75 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं
0: वेरी गुड, वेरी गुड।
2: और पेरेंट्स आ रहे हैं, और इसके लिए मुझे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ रहा है, और ये रिजल्ट है हमारे टीम वर्क का और आपके सेशंस का, और जो भी मेरी हेल्पर्स हैं, मेड हैं, और जो भी मेरी टीचर्स हैं वो मुझे पूरा सपोर्ट करती है। अगर टीम वर्क ना होता तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। थैंक
0: नहीं कर
2: यू सो मच।
0: पाते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे टीम्स अच्छी नहीं थी और वो नहीं कर पाई, क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे थे कि भाई हमारी सैलरी आई कि नहीं आई, फोकस यही था कि इस मंथ हमारी सैलरी आई नहीं तो अब हम काम नहीं करेंगे। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमारे पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने आए। सैलरी इज नॉट एन इश्यू, बट अगर हमारा स्कूल चल ही नहीं रहा है, अगर हमारे बच्चे आ ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं तो कमी हमारे अंदर है ना, उस कमी को तो हम समझेंगे ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। वरना अगर बच्चे ही नहीं है, बच्चे हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे हैं ही नहीं, तो फिर स्कूल सिर्फ किताबें चेयर टेबल रखने से तो कोई फायदा ही नहीं है ना, अगर 10 ही बच्चे हैं। सो वेरी गुड एग्जाम्पल सुनीता जी, आपकी टीम इतने अच्छे से 75 बच्चों को मोबिलाइज कर पाई, अपनी अपने आप को आप सेल्फ सस्टेन कर पा रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अ टीम, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं था।
2: यस मैम, यस मैम। हेलो मैम,
0: हेलो हेलो, हाउ आर यू? गुड
2: आई एम फाइन मैम। क्या
0: दैट आपने ज्वाइन किया है,
2: मैम?
0: अच्छा लगा आपका देख के कि आपने ज्वाइन किया है।
2: मैम, हमारे सेंटर में बहुत सारी लेडीज ऐसी थी कि उनके घर वाले मतलब उनको यहाँ भेजते नहीं थे। तो जब नई नई लेडीज आती थी तो बोलती थी हमारे घर वाले नहीं भेज रहे, तो हमने घर वालों के साथ बात की, तो अब खुद घर वाले आके यहाँ छोड़ देते हैं लेडीज को। देखते हैं कि खुद लेडीज इतना अच्छा टीम बना के सीख रही है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है मैडम, और लेडीज को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम एक जगह पे आके इतना अच्छा सीख रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए मैम, आप उनके साथ भी बात कर लीजिए। देखो बहुत सारे
0: हेलो
2: स्टूडेंट्स हैं।
0: हेलो हेलो एवरीबॉडी, आपको कैसे?
4: मैम, वही हम बता रहे कि हमें इधर रीड इंडिया में आके बहुत अच्छा लगता है। रीड इंडिया, रीड मीन्स पढ़ना सीखना। यहाँ पे आके हम जो पढ़ते सीखते, मतलब पार्लर हुआ, जो जो इधर है वो सब हम पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमारे घर वाले हमें ना इनक्रीज करते कि लेडीज है, सिर्फ लेडीज है इधर, कि आप जाओ पढ़ो, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ो, आगे पढ़ो जैसा। और फिर इधर सोना मैडम भी हमें इंक्रीज करते कि ना आप आइए, और लेडीज होंगे, स्टूडेंट होंगे, कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट है, वो भी इधर आते हैं, स्कूल से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में हमें अच्छा लगता है। थैंक
0: अच्छा
2: यू
0: ठीक है, आपको सबको मैं देखती हूँ काफी सारे यंग बच्चे हैं। सो
2: हाँ
0: अगला सेशन अगर हम इंटरव्यू स्किल्स पे रखें या फिर रेज्यूमे राइटिंग पे रखें, सो विल अगर जो जो लीडरशिप से लिंक्ड होगा वो तो हम करेंगे ही, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यूथ हियर, तो यूथ के लिए अगर एक सेशन आप चाहेंगे तो हम रख सकते हैं। ये काफी इम्पैक्टफुल रहेगा मुझे ऐसा लगता है, बट आप बता सकते हैं इफ इफ यू नीड, हम रेज्यूमे राइटिंग या इंटरव्यू स्किल्स पे एक सेशन कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन। ठीक है जी, ऑल राइट। सो सभी अगर किसी को और कुछ इनपुट देना है, कुछ शेयर करना है, तो प्लीज करिए, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन।
1: जी मैम, सुमन
0: हाँ जी सुमन जी,
1: मैम, सबसे पहले आपका थैंक यू, रीड का थैंक यू कि हम लोग इतना कुछ सीखते हैं रीड से, और टीम वर्क में आप लोगों से सीखा है टीम वर्क में कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है। और शीतला बलून जैसे भी स्कूल हमारा टीम वर्क में बहुत अच्छा चल रहा है, उसी तरह से सेंटर में भी हम लोग टीम वर्क में ही काम कर रहे हैं। जो टीम है यहाँ की बहुत कोऑपरेटिव है, जैसे स्वाति जी हैं, मास्टर जी हैं, और सभी लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं और नए भी आ रहे हैं, टीम वर्क हुआ तभी हम लोग जो लेडीजों को रोजगार देने का एक मिशन है इसको हम लोग चला पाए, और इसको हम लोग आगे लेके जाना चाह रहे हैं इसीलिए। और आज वाले सेशन से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो थैंक यू मैम इस चीज के लिए, थैंक यू।
0: थैंक यू। मुझे भी सीखने को मिला, क्योंकि मुझे सीमा मैम ने एक बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई है, और डेफिनेटली ये जो स्लाइड्स आपके पास पहुंचेंगी, ये स्टोरी उसका पार्ट होगी। सो थैंक यू मेरी नॉलेज भी बढ़ाने के लिए, एंड आई होप ऐसे एग्जाम्पल्स और भी आए आगे। सो आप लोग सब सेफ रहेगा, स्पेशली जहाँ बहुत बारिश हो रही है। सीमा मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
5: स्मिता जी, मैं आप सबको शायद पता भी है, मैंने कॉर्पोरेट के साथ भी बहुत साल तक काम किया है, तो एक बहुत ही मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत रिनाउंड कंपनी, उसके सीईओ, उनके साथ मेरी मीटिंग थी रिगार्डिंग माय कैफेटेरिया सॉर्ट ऑफ। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग, वो मैं मेरे को इतना अजीब लगा। मैंने बहुत बहुत बार बहुत लोगों से सुना था कि कॉर्पोरेट सेक्टर इज लाइक एक दूसरे को क्रश करके ही आप ऊपर जा सकते हैं, है ना, टीम वर्क का तो कोई सवाल ही नहीं होता होगा। वो
0: बिल्कुल
5: इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ से मेरी बात हो रही थी, कि स्ट्रेट अवे सेड ऑन माय फेस, ही सेड कि 10 में से आपको आगे बढ़ना है तो 9 को यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, उसके बाद ही आप नंबर 1 पे आ सकती है। मैम बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, तो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आपने आपको सर्वाइव करना है, तो आप अपने आप को यूनिक रखिए, 9 को हटाइए, तब आप पहले नंबर पे आए। वो मेरे लिए बहुत खराब था सुनना, बिकॉज मैंने ऐसा सुना था, लेकिन अपने सामने मैंने ये देखा कि वो खुद मुझे कह रहे हैं कि आप अपने आप को सबसे अलग रखिए, सबको पीछे छोड़ के ही आपकी तरक्की हो। लेकिन आज मैं रीड इंडिया के साथ काम कर रही हूँ, एंड वी आर टेकिंग सेशंस ऑन लीडरशिप, ऑन टीम वर्क, एंड सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट, सो लकी कि हाँ, हम लोग टीम वर्क के बारे में सेशंस ले रहे हैं, टीम वर्क में और कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने अपने सेंटर्स पे हम टीम बना के काम कर रहे हैं, और एक बिग फैमिली, बिग टीम इंडिया की फैमिली जो कि महाराष्ट्र और कहाँ कहाँ तक पूरे इंडिया में पहुंची हुई है, उस पे हम लोग सब काम कर रहे हैं। वी आर नॉट क्रशिंग एनीबडीज हेड, वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर। थैंक यू सो मच इंडिया, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सीमा मैम। इट इज अ रियल थिंग। ऐसा ऐसा कॉरपोरेट में ऐसा ऐसा हर रोज हर घड़ी होता है कि हम किसी को दबा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पे ही हम देखेंगे कि हमें आगे बढ़ना है तो किसी को तो दबाना ही पड़ेगा, किसी को साथ लेके। सिर्फ हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ही चाहते हैं कि शायद मतलब माँ बाप ही हैं जो एक एक तरीके से चाहते हैं कि मतलब बच्चे हमसे भी आगे बढ़ जाएं। शायद और कोई इस दुनिया में नहीं चाहेगा कि कोई और मुझसे आगे बढ़ जाए, बट एज ए टीम जब हमें काम करना है, मैम ने मुझे कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका। वो हमेशा बोलेंगी, अच्छा तुम ये भी कर लो, अच्छा वो ये भी कर लो, अच्छा ये भी कर लो। अब वो करना है नहीं करना है वो मेरे ऊपर है, राइट? सो हमने मैम से सीखा है कि एज ए लीडर किस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं विद आवर टीम। अकेले तो वो शायद मेरे को लगता है यूएन की भी हेड, मतलब यूएन में, यूनाइटेड नेशन में किसी, हो सकता है किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सब पार्ट में वो किसी लीडरशिप रोल पे होती है, बट उन्होंने ये अपने ऊपर रखा है कि मुझे सबको साथ लेके चलना है, रीड में काम करना है। अगर वो अकेले निकल जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी किसी मतलब सबसे आगे ही निकल जाएंगी, बट हम 5 लाख लोगों से जुड़ के हम कहते हैं कि हम आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हुए हैं, 80 लोगों के साथ शायद 10-10 लोग बैठे होंगे तो हम 800 लोग हो गए, 800 लोगों की भी फैमिली हो गई, तो आप उसको अगर 10 से गुणा करते हैं तो 8,000 लोग हो गए। ऐसे करते करते हम कहते हैं कि रीड सेंटर पे पिछले 17 साल से करीबन 5 लाख लोग आए हैं। अब वो 5 लाख लोग कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो सीख के गए होंगे, चाहे वो यही सीख के गए होंगे किताब खोल के पढ़ना कैसे है, दो शब्द पढ़ के गए होंगे, कुछ सीख के गए होंगे, तो रीड का गोल यही है। और रीड का ये गोल हम इकट्ठे ही उसको अचीव कर सकते हैं, एक साथ ही अचीव कर सकते हैं, अकेले नहीं अचीव कर सकते। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम, स्पेशली इन आवर केस। और कहीं बाहर भी जाते हैं आप लोग, जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे आगे लाइफ में, आप ये देखेंगे कि हर कोई इसमें बिलीव नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आई विन यू लूज एटीट्यूड पे ही काम करते हैं। हमें कैसा होना है ये हमारी चॉइस है। जैसे सीमा मैम ने बोला, शायद वो उस कंपनी में काम नहीं करना चाहती थी, बट वो कंपनी में कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा, और वो अगर लीडर कह रहा है कि यू हैव टू विन, तो ही और शी हैज टू विन अगर उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें अपने अंदर कौन सी वैल्यूज लानी है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये चॉइस हमारे हाथ में है। तो जो लोग रीड में जुड़े हैं उनको तो हम यही कहेंगे कि प्लीज आप टीम वर्क में काम करिए, आई विन यू विन, मतलब हो सकता है विन थोड़ी छोटी हो लेकिन सबकी विन हो, इसी में ही हमारा यही हमारा कॉमन गोल। सो थैंक यू मुझे बर्दाश्त करने के लिए 1 घंटे के लिए, एंड लिसनिंग टू मी एंड शेयरिंग सो मेनी नाइस थिंग्स। सो कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी
3: मैम,
0: हाँ जी
3: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने टीम वर्क के बारे में मुझे बताया, हम लोगों को अच्छा लगा, और कि ये नॉलेज बढ़ती है कि हम कैसे टीम वर्क करेंगे, कैसे लोगों के साथ मेंटेन होकर के अपने वर्क को आगे बढ़ाएंगे। बट मैम, एक इन्फ्लुएंस करना होता है, किसी को बताना होता है कि कई बार हम ऐसी जगह पे स्टे करते हैं, रहते हैं, जहाँ पे हमने अपना सेंटर ओपन कर रखा है, कुछ करना चाहते हैं। वहाँ की जो आसपास के लोग हैं ना, वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं। अब वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं तो वो निकल ही नहीं रहे उससे, तो उन्हें कैसे, किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करें? मैम ये तो समझ, हम लोग क्या है कि अभी कम एज के हैं, कुछ इतनी नॉलेज नहीं होती है, अभी जस्ट है, ग्रो है, यूथ है,
0: तो
3: तो इतना सम...
0: इसका, हाँ इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगी, मेरे पास तो महारथी है इसका जवाब देने के लिए, मेरे पास सीमा जी है, फरा है।
3: मैम
0: नहीं नहीं 1 मिनट आप रुकिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट फरा, सीमा जी, मीना, सना, ये
3: जी,
0: तो आप कंजर्वेटिव कम्युनिटी की बात कर रहे हैं।
3: हाँ जी मैम,
0: सो
3: कंजर्वेटिव के लिए। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल आपको जवाब यहीं पे मिलेगा। सो प्लीज प्लीज बी माय सपोर्ट, मैं इसमें वीक हूँ, मेरी टीम मुझे सपोर्ट करेगी।
1: यस मैम, एक्चुअली मैम आदित्य इज फ्रॉम माय सेंटर ओनली फतेहपुर। तो मैम अभी न्यूली लॉन्च सेंटर है, तो इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। ये मैंने आदित्य को भी बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, बिकॉज इतनी जल्दी कम्युनिटी बाहर नहीं आती है। वी रियली नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस।
0: राइट, सो फरा आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी फतेहपुर सेंटर को? आप बताएं कि कंजर्वेटिव कम्युनिटी में कैसे लोगों को बाहर निकालते हैं।
5: पहले तो मैं थोड़ा सा हिंदी में जानना चाहूंगी क्योंकि इंग्लिश मेरे इतनी जल्दी समझ में नहीं
0: तो वो
5: आता।
0: ये कह रहे हैं फरा कि उनकी कम्युनिटी में लड़कियों, उनकी जो समुदाय है वो इतना खुले दिमाग का नहीं है। अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो प्लीज मुझे माफ करेगा, बट आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि वो लड़कियों को नहीं निकलने दे रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि सेंटर पे लड़कियां आए या महिलाएं आए या कोई भी आए सेंटर पे सीखने के लिए।
5: जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी इनका नया सेंटर खुला है, और अगर इनका नया सेंटर खुला है तो इतनी जल्दी वो लोग बाहर नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे। इनको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, उन लोगों को समझाना पड़ेगा। और अगर इन्होंने एक दो लड़कियां या 5 लड़कियों को भी बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छी वहां पर सेंटर की बातें पहुंची, तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियां खुद आना शुरू हो जाएगी, इनको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट ये है कि हम समझा कैसे रहे उन्हें, हम किस तरीके से बता रहे हैं, क्या चीज उन तक पहुंच रही है, कि सिर्फ हम सिखा रहे हैं। 1 मिनट, सॉरी, ऐसा लग रहा है मैं खुद से बात कर रही हूँ। तो हम वहां पर क्या चीज पहुंचा रहे हैं, पहले हम उनको बताएंगे कि हमारा सेंटर किस लिए खुला है। लाइब्रेरी है, सिलाई है, पार्लर है, कंप्यूटर है, बट खुला है लेकिन लड़कियों के लिए क्यों खुला है, लड़कियां आगे इससे सीख के क्या करेंगी, उनके लिए ये किस तरीके का प्रॉफिट हो सकता है, किस तरीके से वो सक्षम बन सकती है, तो वो थोड़ा सा आप उनको समझाइएगा। और अगर वो आपकी बात नहीं समझे तो दो तीन टीचर्स को लड़कियों को लेके जाइए, उनसे थोड़ा सा बात करवाइए। जब तक आप अच्छे से नहीं समझाएंगे तब तक वहां के लोग नहीं निकल पाएंगे।
0: थैंक यू
1: मैम
0: फरा,
1: जी, नमस्ते स्मिता जी। जी
0: नमस्ते नमस्ते। थोड़े आप हेल्प करेंगे हमारे दोस्त को, यहाँ पे इनका
1: जी
0: नया
1: जी
0: सेंटर खुला है।
1: मैम, देखो सबसे पहले हमने जिस गांव में भी आज सेंटर निकालते हैं, नई कम्युनिटी होती है, तो सबसे पहले लोगों के साथ हमें एक रिश्ता बनाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जैसे हम लोग किसी गांव में जाते हैं और हमारी मीटिंग लेके जाते हैं,
6: कि हम रीड इंडिया में ये एक्टिविटीज कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि उसके घर पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कभी किसी का कोई बीमार है या उसके बच्चे को कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले हम उसकी बात सुने। हो सकता है कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हम हल कर दें। कभी कभी स्कूल में अपनी पहचान होती है कि चलो तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हम करवा देते हैं, कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल तक ले गए, तो एक बार हमने जिस बंदे का काम कर दिया तो वो हमेशा हमारा फ्रेंड बन जाता है। फिर उसको आप कहीं कहीं पे भी बोलो कि तुम इस सेंटर में आ जाओ तो वो तुरंत आने को तैयार है। और उसी गांव में जो हमारे सेंटर से जो लड़कियां सीख के गई हैं, देखो जब 10 लड़कियां दूसरी होती हैं और 5 लड़कियां हमारे जो सेंटर से निकल के जाती हैं उनमें एक अलग ही चेंज होता है। तो उन्हीं के माध्यम से वहां पे जाके कम्युनिटी में उनकी मीटिंग करवाएं कि देखो ये आपके यहाँ से लड़कियां नहीं थी और इनमें इनसे पूछो कि इन्होंने वहां पे क्या क्या देखा, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो शुरुआत में ये चीजें अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे कम्युनिटी का एक रिश्ता बन जाता है हम लोगों के साथ, तो वो बहुत हेल्प करता है। जैसे अभी भी हम लोग नए नए और गांव को जोड़ रहे हैं तो उसमें भी हम यही प्रोसेस कर रहे हैं। 5-7 लड़कियों को जिन्होंने ट्रेनिंग ली है मैं उनको लेके जाते हैं, उनसे बात कराते हैं, तो ऑटोमेटिक 10-10 20-20 रजिस्ट्रेशन डेली होते हैं।
0: थैंक यू मीना
5: अच्छा
0: जी।
5: बताइए सर कि वहां लड़कियां निकलना क्यों नहीं चाह रही है? क्या वो स्कूल नहीं जाती या फिर वो पेरेंट्स मना कर रहे हैं या वो कुछ कुछ से खुद से कुछ सीखना नहीं चाहती? कैसा माहौल है वहां का क्योंकि हमने नहीं
3: एक्चुअली
5: देखा ना।
3: एक्चुअली मैम टाउन एरियाज में क्या है कि जब थोड़ा जो पिछले होते हैं ना, थोड़ा सा जब थोड़ा सा ग्रो करते हैं, तो आजकल आपको पता है ना, सोशल मीडिया जो बहुत बच्चों को टाइम जो है वो खराब करवा रहा है, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो उनका मन ही नहीं करता है कि कुछ स्किल डेवलपमेंट करें, कुछ सीखें, या आते भी हैं तो कुछ नए तरीके से, या फिर लोग जॉब के लिए करते हैं कि हाँ ये ऑप्शन है तो मुझे सिर्फ जॉब सीधे मिल जानी चाहिए, वो स्किल डेवलपमेंट के लिए बढ़ ही नहीं रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आते हैं क्लास में बैठे, कोई कॉलेज भी जा रहा है, पढ़ रहा है, फिर वहां से निकल रहा है, उनको मार्क्स की चिंता भी नहीं है, उनके पेरेंट्स को उनकी जो बिहेवियर है या जो उनकी आजकल जो टाइम का चल रहा है उसकी भी कोई चिंता नहीं है, कोई गेम खेल रहा है तो कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, तो ये सारी चीजें लोगों के अंदर बनती जा रही है। एक्चुअली वो कंजर्वेटिव है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, अंदर से वो एकदम शांत है क्योंकि वो बच्चों को कुछ कहते ही नहीं है कि यहाँ पे ये सेंटर ओपन हुआ है, यहाँ पे आप स्किल डेवलपमेंट कर लो। तो इसके लिए मैम कोशिश की जा रही है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंस करने का क्या और भी रीजन हो सकता है? जब मैंने अच्छे अच्छे सारे उनको चीजें बताई कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, एजुकेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, एजुकेशन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आप बैठ के, ढेर सारी बुक्स हैं आपके पास, कोई भी बुक आप बैठ के पढ़ सकते हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, तो लोग आते हैं, लोग विजिट करते हैं, फिर चले जाते हैं, उसके बाद बात ही नहीं करते, भूल जाते हैं। तो ये चीज करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन
5: आप एक चीज कर सकते हैं, आप देखिए कि किस तरह की स्किल्स की जरूरत है उस वाले एरिया में, आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी स्किल्स के लिए

0: और
1: टैक्सी भी
0: आपकी
1: मोस्ट
0: सिटी
1: इम्पोर्टेंट।
0: ज्यादा डेवलप है तो फिर आप एडवांस कोर्स वहां स्टार्ट कर लिए, जैसे कि अगर बच्चे बेसिक कंप्यूटर नहीं सीखना चाह रहे कि बेसिक तो हमें आता ही है, तो थोड़ा टेली सी टेट मतलब ये चीजें स्टार्ट करिए, ट्रिपल सी का कोर्स वगैरह, कि जिससे बच्चों को सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट आए, वो लगे कि हाँ हमारे लिए सेंटर खुला, ये नहीं कि हमने बेसिक चीजें रख दी है, बेसिक कंप्यूटर सिखा रहे हैं, बेसिक सिलाई सिखा रहे हैं, बेसिक पार्लर सिखा रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं सिखा सकते, तो बच्चों को लगता है कि ज्यादा जहाँ एरिया डेवलप होता है कि ये चीजें तो हमें बेसिकली घर में आती है, हमारे किस काम आने वाली चीजें, तो
1: एक्चुअली
0: थोड़ा सा
1: मैम,
0: एडवांस भी रखिए।
1: मैंने ये भी बताया कि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ
0: ओपन
1: बच्चों को।
0: फ्रेंडली
1: तो मैंने ये
0: माहौल
1: भी कहा
0: चाहिए।
1: कि 10th और 12th तक के बच्चों को मैं एजुकेशन भी दे सकता हूँ। आपके कोई इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, या आपके कुछ ऐसे ही आपके अंदर कुछ फीलिंग्स टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो मुझे बताइए, शेयर कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं ट्यूशन के लिए भी कह रहा हूँ, स्पेशली बताने के लिए कि हमें
0: हाँ,
1: अलग से।
0: आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं।
1: थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी हेल्प किया। हम लोग ट्राई करेंगे और बेटर करेंगे। ओके मैम,
0: ओ
1: या
0: थैंक
1: मैम,
0: यू, ये टीम वर्क का
1: थैंक
0: बहुत अच्छा एग्जाम्पल था मेरे सामने सामने, सभी लोग चाह रहे थे कि इनका सेंटर जो है वो किसी तरीके से चल चल पड़े, और शायद हम लोग कभी मिले भी नहीं है और शायद हमने अभी आपका सेंटर देखा भी नहीं है, बट एवरीबडी वांटेड कि ये टीम, ये रीड का सेंटर है और ये चल नहीं रहा है। सो कितनी मतलब कितने पैशन के साथ सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, तो आई थिंक इससे ज्यादा लाइव एग्जाम्पल नहीं हो सकता था टीम वर्क का। आई एम सॉरी, मैं आपका नाम नहीं जान पा रही, फतेहपुर से जो है
1: आदित्य श्रीवास्तव,
0: आदित्य,
1: आदित्य।
0: आदित्य आपके ना ये जो सना का सेंटर है यहाँ पे कुछ बच्चों ने, आपका जो सना का ये जो सेंटर है यहाँ पे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से सीख के अभी वो कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको भी बुला सकते हैं अपने सेंटर पे ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और वो बच्चे भी शुरुआत में शायद उतना ध्यान नहीं देते थे और शायद वो इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन आज 5 साल के बाद वो जहाँ पे है, मैंने हमने खुद सुना है उनके मुंह से कि कितना फायदा हुआ है सेंटर को। सना प्लीज हेल्प हिम टू मोबिलाइज, एंड आप कोशिश करिए कि जो आपका
1: यस
0: जो जो स्टोरीज थी, जो जो बच्चे वो पीछे बोल रहे थे हम जब आए थे ज्ञानेश सर के साथ, दोज
1: मैम,
0: पीपल गो टू हिज सेंटर एंड वो मोबिलाइज करने में थोड़ा मदद करें, ये बताते हुए कि उनको कैसे फायदा हुआ है, शायद किसी को देख के हम सीख जाएं कि हाँ यू नो दिस सेंटर कैन बी एड वैल्यू टू अस।
1: लोग
0: गुड आफ्टरनून,
1: वर्क कर रहे हैं उस पर।
0: ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, थैंक यू। हाँ जी ऋतु
1: मैम
0: जी,
1: मैम, मैं भी एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ।
0: हाँ जी
1: अभी मैम हमें जब टारगेट मिला था, तो हमने नूना माजरा, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है मैम, तो वो लोकेशन हमने ली थी। वहाँ के सरपंच इतने हठी थे कि मतलब वो मान ही नहीं रहे थे कि भाई आप लोग एनजीओ चला रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो हमने उनको मतलब अपना पूरा डिटेल दिखाया, ऑनलाइन भी दिखाया उनको सारा। तो वो उनको डाउट्स थे जो उनके वो क्लियर हो गए। पैम्पलेट्स भी हमने दिखाई। फिर हमने सर को कहा कि आप हमारे सेंटर पे विजिट करिए, और
0: जी
1: आई नहीं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो सर आए यहाँ पे, सर ने देखा कि हमें जो XDCP सर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रेडी हो गए। और फिर उन्होंने खुद ही, आशा वर्कर हैं और आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनके साथ हम लोगों की मीटिंग करवाई। क्योंकि पहले वो हमें गांव में जाने ही नहीं दे रहे थे, बात ही नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा विजिट था वो सरपंच के साथ था कि हम सरपंच से बात करें कि वहां का कैसा माहौल है, हमें कहाँ बिल्डिंग लेनी चाहिए। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था कि, तो हम भी इतने हताश हो गए थे कि भाई पता नहीं यहाँ पे सेंटर चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन सर के विजिट से, क्योंकि हमने इतना उनको पूरा प्रूफ दिखाया कि हमारे कितने सारे सेंटर्स हैं, सारा उनको डिटेल दिखाया, तो वो एग्री हो गए। फिर अब वो इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि पानी की हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने हमें फ्री जो जो गांव में पंचायत घर होते हैं वो हमें दिलाया है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सपोर्ट करवाया उन्होंने, और बहुत सारा सपोर्ट करवाया है। क्योंकि जो ये हमारा कम्युनिकेट है वो देख के कि मतलब कम्युनिटी में हम कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिले, बात की उन्होंने, तो मैम ऐसे भी उनके डाउट्स क्लियर होते हैं लोगों के। तो जब हम विजिट करवाते हैं, कम्युनिटी से मिलवाते हैं, तो जो डाउट होते हैं जिस बंदे के वो क्लियर हो जाते हैं यहाँ
0: बिल्कुल
1: पे
0: बिल्कुल
1: आके। तो हमें
0: बिल्कुल
1: अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही वर्क अगले बंदे को दिखाने पड़ते हैं कि हमारे आगे कैसे सपोर्ट मिल रहे हैं हमें, और हम लोग क्या कर रहे हैं। थैंक
0: बिल्कुल
1: यू।
0: ठीक बिल्कुल, क्योंकि एनजीओ बहुत सारे चल रहे हैं और शायद सभी एनजीओ का अपना अपना कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगा। हमारा स्ट्रेंथ जो शुरुआत में बताया था कि हम

0: जो कमिट करते हैं वो कम्युनिटी को डिलीवर करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। सो थैंक यू वंस अगेन। टाइम बहुत हो गया है, लोग छोड़ के मतलब बैठे हैं अपना काम। सो आई विश एवरीबडी सेफ। बहुत
1: हेलो,
0: बातचीत कहीं हो रही है। सो कौन बोलना चाह रहा है? फरजाना, फरजाना।
1: नमस्ते
0: हाँ जी
1: मैम।
0: नमस्ते।
1: मैं सर के लिए एक थोड़ी सी बात मैं भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही एरिया से बिलोंग करती हूँ। वो सर से सर आप ना टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हमको पता है अभी आपका सेंटर नया नया है, और क्योंकि ऐसे एरिया में बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो एक दूसरे को कामयाब होते देखते हैं ना, तो उनके उनको देखा देख तो वो खुद को उनके मन में एक एहसास उठता है कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि बहुत से लोग देखा देख भी आते हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सीरीड इंडिया हमेशा बड़ा है और बढ़ता रहेगा, देखना एक दिन
0: वेरी
1: बहुत
0: गुड,
1: अच्छा से
0: थैंक
1: बढ़ेगा।
0: यू
1: जी मैम,
0: फरजाना, थैंक यू। राइट,
1: थैंक यू मैम।
0: ऑल राइट, थैंक यू एवरीबॉडी, स्टे सेफ, एंजॉय, बाय बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: नमस्कार। आज हम मेवात की बात करने जा रहे हैं और मेवात में जो रीड इंडिया का प्रयोग है उसका बात करने जा रहे हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ है रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर गीता मल्होत्रा जी। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेवात। मेवात इज ए लोकेलिटी वेयर मेवातीज मोस्टली मुस्लिम्स आर लिविंग। This locality is just 35 kilometers away from Gurgaon, the mega city, and 50 kilometers away from Delhi, in the most developed, growing industrial state of Haryana. And if you go to that state, people are in a pathetic conditions. Most of the truck drivers, the maximum truck drivers that we have, are from Mewat. The rate of illiteracy is very high. Women are not allowed to go to the school and do the proper schooling. The situation of male literacy is also not very prominent. There is a complete sense of ignorance. People don't know how to do, what to do. And there is an inherent history of Mewat. They were the warriors. They fought against the Mughals. And Mughals didn't take care of them. They thought that they are the warriors, they are the looters, they are the necrosis people, they are not the good people, so they were always sidelined by the Mughals. Then came the British. They were the real freedom fighters. You can find many villages in Mewat where in one mound 30-35 men were buried because they were the freedom fighters. In 1857 and also in the later phase of Indian freedom movement, if the Mewat is being properly studied, explored, if the historians are taking interest into it, then you will realize the role of Mewat in the freedom struggles. There are many people in Mewat who often call me and say, Misra Sahab, बहुत सारी चीजें खत्म हो रही है, आप उनके बारे में कुछ कर लो, गीता मैम कुछ कर ले, नहीं तो सारे चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आप क्या करोगे। एंड बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस वी डू व्हाट एवर मैक्सिमम वी कैन डू इन दैट मेवात। रीड इंडिया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर गीता मल्होत्रा इंचर्ड into that locality where women were not even allowed to talk with the women. The every person outsider was kind of alien for them. They were not allowed, even the male were not allowed to have, you know, proper interactions with them. And with this situation, Dr. Gita Malhotra with her team went there and they have two things to convince them. Culture matters, number one, and understand that, respect that nativity, the native cultures. With these two things, they motivated the people. They said, we are not outsiders. They ate together. They talked together. They could somehow manage to convince them that we are not alien. We are an insiders. We have come here with the message to improve your lifestyle, the way you want to improve yourself. And that was the power of Dr. Gita Malhotra and the entire team of Reed India and the Reed Global. They changed the world. How do they change the world? That is also a very interesting, Dr. Gita ji will tell you. But I must tell you, after 1 year and so, they happily agreed to donate the land and they themselves constructed the library. Reed India paid the cost of the library, not the land. And some of them also contributed significantly, nominal, but that contribution was significant. And then the library was made, women started reading. Now the women which were motivated by Read India, they are the representatives of the Gram Panchayat and they are powerful women. And the new beginning was made and prevalence of Read India can easily be found in the locality of Mewat. Mewat is now divided into two districts. Initially, it was a Mewat district. That was Firozpur, Jhirka, Nuh, Tavru, Punahana, Hathin and Nagina. Now the Hathin part is in Palwal district and remaining is in you know the Mewat district. So before I go to invite Dr. Geeta Malhotra ji to talk about her experience and experience of Read India, her innovations and everything that she did. Now, without any delay, I would request Dr. Geeta Malhotra, the country director of Read India, divisionary, the leader, the master. She is a proper leader who works 24/7. And this is, I remember one thing, I am not exaggerating. I have been feeling her commitment. I am the witness from last 12 years, what she has been doing and how she has been motivating, energizing, emotionally evaporating the people who have been working with her. So, Geeta ji, aapka bahut bahut swagat hai. Humne chaha tha ki log jo hai, wo dekh le ki aap kaise karti hai. After presence, I have seen people stitching their vision, decision and future. I have seen women reading and writing. I have seen women, you know, using the library. I have seen people using the computer. I have seen women reading. So, you know, this is a new discovery that you have created. Please.
1: Thank you. Thank you, Dr. Mishra, for such a elaborate description, which I don't need at all. But I'm so thankful to you for giving this gesture to me. You know that I am very simple, very introvert person, but I do believe in doing. I do believe in action. That's what you have narrated. Thank you so much. मेरा जो सोच है आप मुझे अपने 5 मिनट की एक्सप्लेनेशन में 2012 में ले गए मुझे 2012 में जब मैं रीड ग्लोबल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रीड ग्लोबल के साथ बात कर रही थी 2012-14 कुछ ऐसे ही है मुझे पक्का याद नहीं है बट हाँ 7 साल पहले की बात है मुझसे टीना शाबिका हमारी उस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी शी वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट टाइम एंड द ईयर शी जॉइंड शी केम टू चाइसा विलेज टू डू द स्टोन लिंग सेरेमनी ऑफ द कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर शी केम इन मे इट वॉज वेरी हॉट एंड आई टुक हर टू चाइसा फॉर स्टोन लिंग सेरेमनी But before stone laying ceremony, she asked me that Geeta, one of my very close friend settled in Singapore would like to dedicate one of the library in her mother's name. Her mother was live. She's live now also. But she said, "Ki I would like to build a community library, but let me know the area, the geography, who need the most." That time back home, I was interacting with Mewat people, the stakeholders there, and Asif Ali, who was the sarpanch that time, came to my house in Gurgaon and said that Geeta ji, we need the most. Hamari community ko bahut zarurat hai. Agar aap wahan aake study karein. जो डॉक्टर मिश्रा ने स्टडी करी तो आपको पता चलेगा कि कितनी जरूरत है तो आई वॉज कन्विंस्ड आई विजिटेड द एरिया आई सैट विद हिम आई सैट विद अदर मेवाती स्टेक होल्डर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हाउस द लैंड आई वॉज द ओनली वुमेन ऑल वर मैन बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट that I have to come back again in this area. I have to work in that area. Mujhe wahi kaam karna hai. Mujhe unhi logon ke saath kaam karna hai. Because one thing which I experienced, because I am a great observer for culture and attitude of the people, they gave me lot of respect. Lot of respect. First time, the woman came in one room, they gathered. They did not come out where I was sitting with the stakeholders. They told me later on that the women are waiting inside the room. when I went inside, there were more than 100 women sitting in just in each other's on each other's lap, and they welcomed me. They said, "Hum aapko dil se swagat karte hain aur aapka bahut bahut welcome hai. Aap hamare liye, hamare bachiyon ke liye, hamare bachchon ke liye, hamare samuday ke liye kuch kariye." That changed my mind 100%. I said, whatever challenging it would be, but I have selected a community. Next very day, I called my executive director in US and said, I have found a community where I would like to set up a community library and resource center. Then I started working there. And that Singapore friend of my executive director committed that she will come on the inauguration of the building, which was great, great emotional attachment with the building, which I'm going to show you the inauguration also. Then we did the stone laying ceremony. Asif Ali had a house on the main road of Hathin block in Chansa village. He said, ma'am, the whole land, whole building is for you. You decide what you want to take. Then I said, okay, main road part I will not take because the children will come. It will be risky for them to cross the road and come through the main road because it was part of the highway. I said, give me the backyard. And he divided completely half of his land. उन्होंने वो प्रोग्राम देख भी रहे होंगे जरूरी, मैंने उनको लिंक भेजा है. एंड ही वो इतने जेनरस थे, मैं ये एक्नॉलेजमेंट हिंदी में बोलना चाह रही हूँ उनके लिए. वो इतने जेनरस थे, उन्होंने अपने प्लॉट की जो लंबाई थी उसको बिल्कुल आधा करके उसमें दीवार बना दी और बोला, ये पीछे वाला लैंड आपका, आप जो मर्जी करिए, आप बिल्डिंग आप सेंटर बनाइए, मेरी 100% सपोर्ट आपके साथ है. तो दैट वॉज द कमिटमेंट ही गेव मी एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट एंड ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन एरिया. मैं मिस्टर आर एस दलाल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी इस फोरम पे, क्योंकि ही वॉज द वन हु एनकरेज्ड. ही इज द रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर ऑफ हरियाणा. व्हेन बिफोर द बिल्डिंग वॉज यू नो इनॉग्रेटेड, आई वेंट टू हिम एंड आई सेड, सर आपके एरिया में हमने कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर बनाया है और मैं आपको इन्वाइट करने आई हूँ कि आप उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करिए. एंड ही वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी और उन्होंने बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया और दैट वॉज द जर्नी वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड दैट वॉज ग्रेट ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड फॉर अस बिकॉज एट द बैक ऑफ अस उनका हाथ था, उनका आशीर्वाद था, उनकी सपोर्ट थी और आज तक हर रोज जो एक मैसेज वो नहीं भेज लेते हमें एनकरेजमेंट का, वो आराम से नहीं बैठते हैं. तो मैं उनकी एसोसिएशन को यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहती हूँ. और उन्होंने खाली हथीन ब्लॉक में हमारे सेंटर को इनॉग्रेट नहीं किया, हरियाणा में हमने जितने भी सेंटर बनाए हैं उन्होंने उनको इनॉग्रेट किया है, क्योंकि वो दिल से बोलते हैं, दिल से वो रीड को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ग्रास रूट्स की के साथ जुड़ी हुई एक संस्था है जो काम करती है और लोगों को साथ लेके चलती है, लोगों के दिलों तक पहुंचती है अपने कार्यक्रम से, ये वो बहुत अच्छे से जान गए हैं. तो डॉक्टर मिश्रा, अलोंग विद यू आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज Mr. R. S. Dalal on this platform because he supported us a lot and till today he is supporting us. So, aapne launch
0: mein. He's a doubling star. He is a bubbling star, an energizer, you know, he is an energizer. He is emotionally charged. He makes you work and work for the community. That is the power that we have learned from him. He has donated his entire Haveli for the Eid activities, you know.
1: तो झज्जर उन्होंने कैसे हमें अपनी पूरी हवेली दे दी कि गीता जी एक सेक्टर मेरी कम्युनिटी के लिए भी बना दीजिए. तो दैट इज जस्ट ही एक्सटेंडेड टू अस एंड टिल नाउ ही इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग दैट झज्जर विलेज, मेहंदीपुर विलेज, दबोदा विलेज अ ब्यूटिफुल विलेज वेयर वन कैन गो एंड इवन यू नो स्पेंड डेज टुगेदर. The community is so, you know, welcoming, and the plants, the gardens he has created there, it's worth visiting that place also. So, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि Read India के जितने भी सेंटर हैं, वो community tourism को भी support करते हैं, because home stays are welcomed there by the communities, and we always make it a point that people come there and होम स्टे तो है ही है, पर जो खाना वो लोग हमें परोसते हैं, जो खाना हमें वो खिलाते हैं घर में बिठा के, घर में फ्रेश खाना कुक करके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी वेलकमिंग, आई शुड से दैट. और आसिफ अली जी के घर में तो मैंने कम से कम 100 बार ही खाना खाया होगा. उनके घर में उनकी वाइफ को मैं नहीं मिल पाती थी, पर उनके ड्रॉइंग रूम में बैठ के खाना जरूर खाती थी, इतना तो मैं कह सकती. और मैं वेजिटेरियन थी, और उनके घर में तो नॉनवेज इट्स अ कल्चर देयर, आई शुड से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर. बट व्हेन आई यूज्ड टू गो विद माय टीम, स्मिता राय, नाहिद जुबेर एंड अदर्स, ही मेड इट अ पॉइंट कि दो डिशेस तो वेजिटेरियन होनी ही है, क्योंकि स्मिता और मैं दोनों ही वेजिटेरियन थे. तो ये हमारी बिगनिंग थी मेवात में चाइसा के सेंटर के साथ. और अभी डॉक्टर मिश्रा, यू कैन से समथिंग अबाउट द बेसलाइन.
0: जब आपने मुझे बोला कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है, तो मेरी एक आईएएस फ्रेंड हुआ करती थी डॉक्टर निरुपमा, अनुपमा. तो जो डॉक्टर अनुपमा थी, शी वाज एन आईएएस ऑफिसर और शी वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मेवात डेवलपमेंट एजेंसी, व्हाट यू कॉल इट, एमडीए. और उस समय बाद में जो भारत के उपराष्ट्रपति बने अंसारी साहब, उनकी पत्नी भी मेवात में कुछ काम करना चाह रही थी. शी ऑल्सो टोल्ड मी, डॉक्टर मिश्रा, लेट अस गो टू मेवात एंड डू समथिंग देयर. मैं दोनों के साथ मेवात गया और मैं आपको और अपने दर्शकों को बहुत ही विनम्रता और निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे हिम्मत नहीं हुआ मेवात में काम करने का. लेकिन जब डॉक्टर गीता जी हमको बोली कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है, तो पता नहीं मुझे कहाँ से एनर्जी मिली और मैंने कहा कि मैम लेट अस वर्क देयर. और हम वहां गए. जब हम वहां गए तो मैं एक महिला से मिला और वो महिला अनाज को फैला रही थी. उस महिला के साथ उसके 17 बच्चे थे, जो फोटोग्राफ मेरे पास है. तो और And she was expecting one more baby. उसके बाद मैंने देखा वहां का सिचुएशन, वहां की गंदगी देखी, वहां का बहुत सारे चीजों को हमने देखा. Then I realized कि ये एरिया है जहां पर काम करने की जरूरत है. हमने उनके नमाज में भाग लिया, उनसे दोस्ती की और हम वहां पे काम करने लगे. शुरू में थोड़ा सा हुआ, लेकिन बाद में वो हमें इतने प्यार करने लगे, खास करके अशरफ जी, आसिफ जी और सारे लोग, पूरे गांव के लोग, महिलाओं को, वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को, स्कूल के शिक्षकों को, उनको लगा कि ये लोग अपने लोग हैं. और हमने उनकी सारी जानकारी ली. वहां पे हर एक घर में 2-4 भैंस है और एक जो दूध वाला होता है जिसको दूधिया कहते हैं, उनसे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था. उनके दूध को बहुत ही थ्रो अवे प्राइसेस में खरीदते थे. हमने सारा रिपोर्ट इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है. उसके बाद जो गीता जी ने कहा कि एक प्रपोजल आया, और वो प्रपोजल 2011 में ही आ गया था मैं, और 12 में वो बन गया था. तो वो प्रपोजल आया और गीता जी वर्क डे एंड नाइट. वो एक विजन ही कह सकता है कि अगर कोई दूसरा कंट्री डायरेक्टर होता तो तो रोड के साइड का ही जगह ले लेता। लेकिन गीता जी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि ये इन्होंने कहा कि हमें रोड के साइड का जमीन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? मदर वॉज हिडन इन साइड हर एंड द मदर से लुक, बच्चे एक्सीडेंट में कुछ हो सकता है, बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो पीछे का वहां भी रास्ता है, पक्की रास्ता हो गया है लिया और वहां पे काम शुरू करने लगे। बाद में धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिला और लोगों ने ये महसूस किया कि रीड जो है ये रीड कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, कोई धर्मांतरण की संस्था नहीं है, कोई पॉकेट की संस्था नहीं है, यह कमिटमेंट की संस्था है। इस संस्था में ज्यादातर महिलाएं हैं जो बहुत मातृस्नेह के भाव से काम करना चाहती हैं। और वैसा ही जिस तरह से ये कहने की तो जरूरत है कि गीता जी ने बहुत ही मातृभाव से अपनत्व को लगाते हुए वहां पर काम करना शुरू किया, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। और उससे हमें ये लगता है कि इफ यू वर्क ऑनेस्टली नो मैटर, आप दुनिया के किसी भाग में काम करें, लोग आपको उसी समर्पण से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको गिव बैक आपको मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा। वो जो कंसेप्ट था वो गजब कंसेप्ट था और वो आपने देखा।
1: ओवर टू स्मिता। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर मिश्रा। As rightly said, it's a very, very rich culture in this community, very, very warm, welcoming community. As shared in the PPT, there are many, many programs that we have done in partnership with this community. We've done the setting up of community library and resource center. There are many, many women who've been trained on livelihood skills. Then we've had trainings on as advanced computer skilling. This was done through Adobe IT skilling program for youth. Then since past 4 or 5 years, we have been doing Skills to Succeed program in this area and skilling women on enhancing their livelihood skills. We are having programs for mother and girl child literacy in this community. So each, have one mother and her girl or child get coming to the center and walking towards a more literate future. So this is beautiful Mevat for us. As far as culture is concerned, they have very beautiful crafts such as they make changeris, the baskets made out of moonj grass. This grass is eco-friendly and it helps in keeping. They normally use it to store food. Like, we have covered more than 12 villages as Kamlesh is rightly. Thank you, Smita. जैसा कि स्मिता ने कहा, लिटरेसी से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके महिलाओं की पढ़ाई तक हमने काम किया, महिलाओं को हमने सक्षम बनाया, उनकी जो कल्चरल स्किल्स थी उसको एनहांस किया। और कल्चरल स्किल्स को एनहांस करने के लिए अब रीड तो बहुत छोटी सी संस्था है, तो हमने सृष्टि स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएट्स मंगवाए जो डिजाइनिंग ग्रेजुएट्स थे, और उन्होंने मेवात में लाइब्रेरी में रह के रात को वहीं बिस्तर बिछा के सोना और महिलाओं के साथ चर्चा करनी और महिलाओं के जो हुनर था, जो छिपा हुआ हुनर था, उसको उभारा और उन्होंने इतने सुंदर प्रोडक्ट्स बनाए, जो दरी था और तापर से उन्होंने बास्केट्स और बहुत सारे हमारे गिफ्ट आइटम्स बनाए जो हमने कॉर्पोरेट्स को गिफ्ट दिए, बिकॉज हमें फंड रेज भी करना था और मेवात के लिए फंडिंग लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। पर मैं उन डोनर्स का भी शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को, हमारे कमिटमेंट को रिकग्नाइज किया, और सीरीज ऑफ डोनर्स आए जिन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं मेवात में काम करने के लिए। तो ये एक मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज वर्क स्पीक्स वॉल्यूम। जब हमने काम किया, डोनर्स ने अप्रिशिएट किया, और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर एक साल का एमओयू साइन होता है और कुछ ऐसे डोनर्स हैं जो हमारे साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं उस एरिया में। बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं मेवात में, मैं सबका बहुत ही मतलब कि आई नो देम वेरी वेल, दे आर डूइंग एंड आई एम अप्रिशिएबल ऑफ देयर वर्क ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम गोइंग टू द ग्रास रूट्स, कैचिंग देयर कल्चर, अंडरस्टैंडिंग देयर एटीट्यूड्स एंड ब्रिंगिंग वैल्यू टू देयर लाइफ्स वॉज वॉट रीड हैज डन। दीज आर द 3 मेजर अचीवमेंट्स वी हैव डन इन दिस एरिया। Dr. Mishra, would you like to add something here, what I have said?
0: Without any political motive, you know, yes. Reed has gone there as an organization to work without any political motivation, without any political inclination, without any interest. The only interest was to see that people are raising their social economic status, their livelihood, they are well-respected people, well-educated people, well-cultured people, their culture glory is restored. So these the women are well-respected. There is a continuous harmony, you know, visible harmony between men and women, between husband and wife. So these are the things that are clearly visible, tangibly see. People can go and view. You know, that is the USP of working Reed in the Mewat, you know, area. That is really very, very great.
1: Memory goes back when we saw power to hai nahi, to computer kaise seekhenge bachche?
0: Yes.
1: Oh, power, how they will read the books. Then we requested Bill and Melinda Gates Foundation. They gave us a special grant to put solar panels in the areas where we are facing problems with regard to the power. So you could see in the film also, we put solar panels on top of the building so that 24/7 there is a power in the library and there is no power cuts and the children can come, enjoy, sit there, talk to each other, learn from each other, study the books, and 50% of the books are their own language. Because we did not want to put the book, they cannot touch, they cannot read.
2: बिगावली की रहने वाली हूँ और ताराक्षर में मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे को पढ़ने लिखने में बड़ा मन लग रहा है, अच्छा लगता है। ऐसा है कि हमारे पास में ताराक्षर का अध्यक्ष लेके आए थे सुनील कुमार, तो इन्होंने कहा कि अब पढ़ाई कर लो। हमने कहा ऐसे बुढ़ापे में क्या हो, कौन पढ़ावे गो, कौन पढ़ पावे गो। उसने कहा नहीं जी, कोशिश करके देखो एक बार। तो हमने कोशिश करी तो हमको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में लिखने में हमारा मन भी लग रहा है। प्रयोग हम तो हर जगह पे कर लेंगे, कोई हिसाब है, किताब है, घर का धंधा है, घर के बच्चे हैं, घर की पढ़ाई है, काम है, कोई भी दूसरा सब में काम आती है पढ़ाई, मतलब ठीक है क्या ना, हर चीज में आती है। अब छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको भी बैठा के पढ़ा सकते हैं, बच्चे ये है हर को इसे पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, वो करो।
3: पहले भैया हमने इसलिए पढ़ा, मान पढ़ते तो हमने आवाज दी कि भैया हम पढ़ जाएंगे तो हम बैंक में भी काम करते हैं, चाहे घर पे करते हैं, आदमी का नाम भी लिखने सीख जाते हैं, अपनों भी सीख जाते हैं, बैंक में जाते अपने पैसा निकाले तो अपने हिसाब करे आते हैं बैंक में जाके। इसीलिए हम भैया के पास पढ़े थे, यही बारे हम अनपढ़ते थे, भैया पढ़ा देंगे तब इससे सीख जाएंगे।
2: मेरा नाम गजना है और हमारे ये भैया आए पढ़ाने के सुखवीर सिंह, और इनने पढ़ाई पूछी कि तुम पढ़ सको, पढ़ सको। एक बार आए, दो बार आए, तीसरा के हम बोले अब तो हम पढ़ेंगे। जब ये भैया पढ़ाने लगे यहाँ स्कूल नहीं खोल दी हो तो आगे पढ़ाने।
4: आपको क्या फायदा हुआ इससे?
2: अब हम सीखने लग गए, जो भी हम पे आ गए, जो यहाँ पे देख देख के चैट में पहले हम पे आ गई ना हो कुछ, तो हम नाम भी लिख लें, अब हम अपने काम कर ही ले जाइए। भैया बताऊ
5: सर्वे और पढ़ से पढ़ना चाहते, अपने बच्चे ने पढ़ा ले, घर का काम कर ले, कोई काम काज आ जाए उसे कर ले, और सेंटर आ जाए कोई काम आ जाए, इसलिए
2: सीख लूंगी कुछ। तो कुछ काम कर बैठूंगी ना, परेशान आदमी आंगनबाड़ी लग जाए या कुछ सिलाई में लग जाए, कुछ भी काम जो तुम खिलाओगे वो करने पर जाने
5: पढ़ाने आवे। हम लोग हम ना पढ़े पर दो बार आए तीन बार आए, हम बोले हम पढ़ेंगे, हमको पहले कुछ नहीं आवे, हम नाम भी लिख ले और जो काम दे पूरा काम कर ले।
6: हम पैसा एन आर भी ना आवे अब तो एन आर आने भी सीख ले। अरे बेचारा आया पढ़ने के सुखबीर कहला को ना भाई लाली पढ़ लियो माता जी पढ़ लियो, हम बोले हम ना पढ़े हम अब बुढ़ाते में कहा पढ़ेंगे। तो बेचार कई बार आयो फिर हम पढ़ने लग गए, कई सीखो हमने पढ़नो, हम पे एन आर भी ना आवे अब या भी सीख गए नाम भी सीख गए अपना।
7: मेरा नाम अंता है, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ताराक्षर में पढ़ती हूँ। पहले इन लोगों ने आकर हमारे गांव में सर्वे करी थी, हमने जाने क्यों कर रहे हैं, और जब हमारे सब आई थी तो हम पढ़ाई करने लगे। पहले हम पढ़ाई नहीं जानते थे और अब इससे पढ़ते नहीं हम पढ़ना सीखे हैं, और इससे पढ़ने से हमें बहुत कुछ आने लगा है। और हमारे गाँव के अंदर तीन ताराक्षर एक ज्ञान चौपाली खुली हुई है और हम बचत पढ़ते हैं सभी, और उसके बारे में भी जानते हैं, पहले जानते नहीं है।
8: मेरा नाम भगवती है, मैं स्वामी के रहने वाली, मुंह पे कुछ भी नहीं आता है, मैं अक्षर समाज जान गई नाम नाम हाँ अक्षर जान गई हूँ, मैं अक्षर समझ गई नाम लिख लेती हूँ।
9: मेरा नाम रजनी है, मैं स्वामी के की रहने वाली हूँ। मैं पहले से कुछ नहीं जानती थी और यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ और बहुत कुछ जान सकती हूँ।
10: मेरा नाम आशा है, मैं स्वामी के योगे में रहने वाली हूँ। मुझे तारा अक्षर से जुड़कर बहुत अच्छा लगा, हमने हम पर पहले अपने साइन भी करने नहीं आते थे, हम पर साइन कर सकते हैं, अक्षरन की पहचान कर सकते हैं।
11: मेरा नाम सरस्वती है, गाँव रिहौली में तारा अक्षर का स्कूल खुला है। ये लोग आए तो कहने लगे हम पढ़ाएंगे, हमें ये बात समझ में आई और पढ़ाई लिखना शुरू कर दिया। ये इनसे पढ़ के हमें बहुत नॉलेज मिली और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ, हम कुछ भी नहीं जानते थे। और ये गांव के अंदर जो समूह खुली रहती है उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते, बैंक में जाते थे पैसे भरना निकालना कुछ नहीं जानते थे, अब हम खूब पैसे भी निकाल लेते हैं, फार्म वार्म भर देते हैं। पढ़ाई से ये फायदा है कि अपने बच्चे जहाँ भी कहीं पढ़ने जाते पहले कुछ नहीं जानते, उसकी किताब कॉपी वगैरह देख सकते हैं क्या लिखा है, कहीं हम भी काम करते हैं तो हमारे लिए पैसे वैसे मिलते हैं तो हमें पता नहीं लगता था कितने दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे हैं, तो अब हम उसे पढ़ के बता सकते हैं।
12: अपना नाम कांति।
13: कौन से गाँव से है?
12: छाए से।
13: तो आपको पहले और अब में क्या फर्क नजर आ रहा
12: है? इतना फर्क है, पहले हम 100-200 रुपया का हिसाब लगा सके, अब हम 500 रुपए तक हिसाब लगा लें। पढ़ाई इतने जब थोड़ी बहुत पढ़े अब थोड़ी बहुत अक्षर मिला के मात्रा मिला के सब कुछ अब हम कर लें, मात्रा लगा दें डंडा लगा दें।
14: मेरा नाम मीना है, छाए से रहने वाली हूँ। पहले कुछ ना बना हो अब हम लिखनो पढ़ना थोड़ा बहुत आने लगो, हिसाब जोड़ जैसे 100-200 रुपए आए 500 है उन्हें भी जोड़ सके।
15: मेरा नाम बबीता जी है, छाए से रहने वाली हूँ। पहले कुछ नहीं आता था अब बहुत कुछ सीख गई, बहुत अच्छा लगा पढ़े के, इन्होंने नीतू जी ने बहुत अच्छा सिखाया हमें लोग के सीखे बात पे, अच्छा पढ़ा लिखना।
16: हम चार तारा अक्षर में ट्रेनिंग ली थी हमने, जो कि मतलब अनपढ़ लोगों को पढ़ाना जन अक्षर होते हैं, अब वो पढ़ लिख थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जान गई है और अपना नाम लिखना सीख गई है, अपने गाँव का नाम कहीं भी आ जा सकती है, हिसाब किताब लगा लेती है। इस प्रोग्राम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है इनको भी और हमको भी।
17: तो सबसे पहले हमने औरतों को मोटिवेट किया पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं, उनको मैंने फिर क्लास में बुलाया, बिगाह में मेरी ड्यूटी है वहाँ पे, मैं तीन बैच चलाता हूँ, वहाँ पर 10-10 महिला आती है, प्रत्येक बैच में 10 महिला होती है, बहुत ही अच्छी तरह के वो पढ़ रही है और उनसे मैं बातें करता हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है मैं उनके घर जा करके, अगर कोई मना करता है तो उनके घर जा करके परिवार वालों से मिलता हूँ और उनसे समझाता हूँ पढ़ाई के फायदे क्या होते हैं, तो वो भी क्लास में आ जाती हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप भी बहुत खुश हैं इसमें आकर।
13: ताराक्षर जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि हम इसमें जो निरक्षर महिलाएं उसको साक्षर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी है अम्बेवात इलाके के तीन गाँव में चला हुआ है, छायसा बिघावली और स्वामी का, इसमें लगभग 90 से 100 महिलाएं इसका लाभ उठा रही है इस कार्यक्रम का, और ये तीनों गाँवों में कार्यक्रम चल रहा है, प्रत्येक गाँव में 3 बैचेस चलते हैं, इसे कुल मिला के 9 बैचेस चलते हैं, और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। पहले जो महिलाएं बोल नहीं पाती थी किसी के सामने, आज अब वो महिलाएं बोलने लगी हैं, और अपने आप पे आत्मनिर्भर हो गई हैं और वो किसी के सामने भी खुलकर उनको जवाब देने लगी, अच्छे से बोलने लगी हैं। और वो पहले उन पे कुछ भी नहीं, लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, अब वो क्या नाम है, पढ़ने लगी हैं, लिखने लगी हैं, अपना खुद का नाम लिख सकती है, पति का नाम, अपने बच्चे का नाम और अखबार भी पढ़ने लगी है। इस कार्यक्रम से महिलाएं बहुत ज्यादा खुश है और हम सभी खुश हैं कि ये कार्यक्रम हमारे इस पिछड़े इलाके मेवात में चलाया जा रहा है।
18: मैं पूरे अपने गांव की औरतों से, बड़े बूढ़ों से ये एक मैसेज देना चाहता हूं, जो भी ये स्कीम है, जो भी संस्थाएं यहां आ रही हैं, वो हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे गांव के हित में, हमारे गांव को अच्छा समझ के इस गांव में वो काम कर रही हैं। इसमें हर एक जन जन को इसमें जुड़ना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। मैं गीता मल्होत्रा जी का और मैडम मई जी का तहदिल से, अपने गांव की तरफ से, अपने तीनों चारों गांव की तरफ से बहुत बहुत दिल से, तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इनका एहसान मंद हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे गांव और हमारे अड़ोस पड़ोस को चुना।

0: Wonderful, wonderful. So much to be shown. We have so much of content to be shown to the audience, but the time is so short that we have to move further also. इसके अलावा आप कमेंट्स में भी पढ़ रहे हैं कि मेरी टीम लिखती जा रही है कि हमने क्या क्या और काम किए. तारा अक्षर के अलावा हमने स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एक कार्यक्रम किया यहाँ पे मैजिक बस के साथ मिलके, क्योंकि हमें उनके एटीट्यूड को बदलना था कि हमें लाइफ स्किल्स सिखाने थे. अगर हम लाइफ स्किल्स की बात करें तो वो डायरेक्टली ट्रेनिंग लेने नहीं आते थे. हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से यूथ को लाइफ स्किल्स सिखाए कि कैसे एक लड़की लड़के की इज्जत करती है और लड़का लड़के की इज्जत करता है, कैसे फैमिली में हम एक एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं. तो ये हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को सिखाया था. और इन सब कार्यक्रम को बंद करने का दिल नहीं करता है क्योंकि बहुत बहुत जरूरत है. मैं कहती हूँ जितनी भी पॉपुलेशन है मेवात की, उन सबको इन सब प्रोग्राम्स की बहुत बहुत जरूरत है. इसके आगे की जर्नी में हमने औरतों को स्पिनिंग सिखाई, धागा लेके कैसे धागा बुनते हैं ये उनको सिखाया, चरखा कैसे चलाते हैं, उस धागे से कपड़ा कैसे बनता है, उस कपड़े की सिलाई कैसे करते हैं, ये पूरी जर्नी हमने कंप्लीट करी. यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं, यही सोच के सब कुछ किया कि कभी औरत को काम करने की जरूरत पड़े तो वो अपने हुनर को निखार सके और अपने हुनर को पहचान सके और अपने बुरे टाइम पे इस हुनर को यूज करके अपनी आमदनी को इंक्रीज कर सके. यही हमारा सोच थी और कंट्रीब्यूशन था. अभी हम छायसा से आगे तारू में जाएंगे. तारू में हमने एक और सेंटर लॉन्च किया था, तो हमें Amazon ने सपोर्ट किया. I would like to show that film, Dr. Mishra, Read in Taro.
1: इस फिल्म के में जो भी हमने दिखाया उसके बारे में एक चीज मैं गीता मैम ये कहना चाह रहा हूँ कि जो परिवर्तन आपने देखा वो तो हुआ. सबसे बड़ी बात है कि जो समाज को ये भी, जिस महिलाओं को ये भी नहीं मालूम था कि हम अपने पैसे को कैसे रखें, क्या करें, कहाँ रखें, उनको न्यूमरेसी लिटरेसी का ज्ञान हो गया. इतना ही नहीं, आपने देखा होगा उनके कपड़े साफ हो गए, उनमें हाइजीन का सेंस आया, उनमें हेल्थ और क्लीनिनेस के प्रति एक बहुत बड़ी जवाबदेही का है ना निर्माण हुआ. तो ये जो छोटे छोटे विजिबल चेंज है, तो कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये चेंज अगर आप डे वन से उस दिन तक को देखें तो महिलाओं में जो स्वच्छता, निर्मलता, लिटरेसी न्यूमरेसी, काउंटिंग करना, ये सब चीज में, और एकाएक सारे महिलाओं के चेहरे पे एक गजब ही नैसर्गिक हंसी, उल्लास का भाव था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है.
2: Partnered with Read India in 2015 to set up Amazon Care Community Outreach Centers in Taulu in the villages Chamwaj, Dingaveri and Gujarat. Through these centers, we are covering 5 villages, including Nihalgarh and Sheikhpur. The center focuses on education, women empowerment and livelihood, skill development and entrepreneurship, and health awareness and advocacy. We do focus on education by designing programs on improving reading and writing habits of children, studying in government schools, training Anganwadi teachers on teaching small children through playful activities, and the same activities are repeated at the Read Center. We have a library with more than 1,000 books where children, youth and other community members come and have access to books for reading and reference. We conduct classes to enable youth for competitive examination and do career counseling. We have funds for regular and uninterrupted supply of power. We have special workshops with women on women empowerment and provide them a safe space to learn, teaching in PB to start with and enable them to learn how they can start their small enterprise and also collectively join the group for working together to reach center. We have also designed the programs to make them learn financial and adult literacy. Women have started moving out from their villages to other read centers and also to other organizations to learn from other women how they are involved in these programs and enhance their networks. Job-oriented workshops are organized for youth, girls and boys to focus on their future careers and learn specific skills for suitable jobs. Farmers' meetings are conducted on a regular basis with planned visits to other parts of Haryana, including meeting with government officials so that they themselves realize where they are and where they have to reach in relation to profit-making, agribusiness they can do. Health intervention is the important component. We do regular workshops on best practices and also partner with other organizations to organize health camps. Audio workshops are being organized at the center to enable youth one voice modulation, and exposure visits are done at community radio stations. Various visuals are displayed at the centers, Anganwaris and the villagers to constantly remind the villagers about best practices. Women and men are understanding the gaps in their lives and uniting together for the progress of their villages, and also focusing on their children's growth by creating a positive environment at the Reed centers and at their homes. Reed India and Amazon Care work closely with local government, completing the collective efforts. Within 1 year, this partnership was extended to another village, Tamaspur in Sonipat. The center is creating the same activities through effective community mobilization, effective involvement of the school teachers and other stakeholders.
3: एक दिन ज्योति ने बताया कि यहाँ सिलाई सेंटर गांव में आया हुआ है जो रीड इंडिया एंड अमेजोन मिलकर चला रहे हैं, तो मैंने आके देखा कि यहाँ सिलाई हो रही है और सिलाई का काम ज्योति सिखाएगी। तब मैंने ज्योति से बात की कि मुझे भी सिलाई सीखनी है। तब ज्योति ने सिलाई सिखाई मुझे, तो मैंने 3 महीने तक सीखी और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कार्यशाला भी होती है, जो फार्मर भी की भी मीटिंग्स हुई, हेल्थ वर्कशॉप भी हुए और पढ़ाई के बारे में बताया, आगे कैसे बढ़ते हैं, सरकारी नौकरियों के बारे में भी बताया। तब मैंने 10वीं के ओपन पेपर फॉर्म भरे और अपनी पढ़ाई चालू की फिर से, और फिर आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ।
4: मैंने सिलाई सीखना मुझे बहुत फायदा हुआ और मैंने देखा कि मैं अपने भी कपड़े सिल सकती हूँ और दूसरों के भी, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है।
5: मैं रीड अमेजोन सेंटर में लाइब्रेरी कम कंप्यूटर ट्रेनिंग की जॉब कर रहा हूँ। मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ बच्चों को सिखा पा रहा हूँ और उनके साथ कुछ सीख भी पा रहा हूँ। यहाँ पे रीड की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम कार्यशाला की जाती है, जैसे इस्लामी सर ने कैरियर गाइडेंस के बारे में बताया, उस प्रोग्राम से बच्चों ने कुछ सीखा और साथ में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है।
6: रीड इंडिया अमेजोन तरफ से जो सेंटर चल रहा है, इसमें मैं जो छोटे बच्चों का ईसीडी का सेक्शन है वो देखती हूँ। यहाँ सेंटर पे नई नई एक्टिविटी होती है, जैसे हेल्थ की भी हुई है, लोगों के बारे में भी होती है, तो उसमें भी क्योंकि मैंने खुद भी बीए करके बीएड की हुई है, तो उससे मेरे को भी बेनिफिट मिल रहा है कि आपको कह रही थी कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें भाग ले रही हूँ, तो उससे मेरे को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा।
7: मैंने परंतु करने के बाद जेबीटी किया है और सरकारी नौकरी के लिए स्टेट हरियाणा का एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करना जरूरी है। वो क्लियर करने के लिए किताबों की आवश्यकता थी। मैंने रीड इंडिया एंड अमेजोन के सामुदायिक लाइब्रेरी है, वहां से मैंने मोबाइल सर से संपर्क कर 2 बुक्स प्राप्त की और वहां 2 बुक्स लेकर मैंने उनकी पढ़ाई की और टेस्ट आने पर मैंने टेस्ट दिया, जिससे मेरा पहली बार में टेस्ट क्लियर हो गया।
8: यहाँ पर पहले मैंने सिलाई सीखी थी, उसके बाद मैं कंप्यूटर के और बच्चों को कंप्यूटर सिखाते, जिससे उसे सिखाने में मुझे भी बहुत फायदा हुआ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा है उसे सिखाते सिखाते। बहुत अच्छा है वैसे यहाँ पे सब चीज, क्योंकि यहाँ पे सिलाई सेंटर कंप्यूटर का भी है, लाइब्रेरी भी है, ईसीडी का भी है, यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें सुधार की गई है। मैं अकाडमी भी जाती हूँ और रीड एंड राइटिंग का कोर्स चल रहा है, बच्चों को कराती हूँ और इससे इधर मीटिंग होती है, इससे किसानों की मीटिंग होती है, इधर डॉक्टर आते हैं और इधर हमने सिलाई भी सीखी है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। मैं रीड इंडिया अमेजोन को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।
9: रीड इंडिया अमेजोन सेंटर में सिलाई सिखाती हूँ, अब तक मैं 10 लड़कियों को सिलाई सिखा चुकी हूँ, जो कि वो अपना काम आराम से कर लेती हैं और घर में दिन महीने में 2-4 हजार रुपए भी कमा लेती है, अब उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो हर कार्य को अच्छे से कर लेती है।
10: मेरा नाम राम बाबू, आठ जिला में पढ़ता हूँ। अब मैं जब छुट्टी हो जाए सेंटर में आता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, फिर खिलौना से खेलता हूँ, फिर कंप्यूटर पे बैठ जाता हूँ।
11: पहले ये सिलाई सेंटर यही नहीं था, तो अब इसके आने से हमारी जितनी लड़कियाँ हैं औरत हैं जो यहाँ पे सब सिलाई सीखने के लिए आ जाती हैं, इससे काफी सुविधा है क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, यही कपड़े सी जाते हैं तो अपना काम हल हो जाता है, पैसे की भी बचत है।

0: this is a beautiful journey of another village, few of the villages in Mewat. The picture speaks volume because आप देख सकते हैं कि मेवात में ही छाइसा भी है और मेवात में ही तारू भी है और कल्चर कैसे डिफरेंट है आपको बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है कि औरतें खुल के बात कर रही हैं और वहां पे हमें औरतों के साथ 3-4 साल काम करने के बाद औरतों ने अपने मुंह खोले और अपनी बात लोगों के सामने रखी. दैट इज द डिफरेंस यू कैन सी विद इन वन आई शुड से द डिस्ट्रिक्ट. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ रीड बिकॉज रीड अंडरस्टैंड्स द कल्चर ऑफ द पीपल, द चैलेंजेस ऑफ द पीपल, द डायनेमिक्स ऑफ द कम्युनिटी एंड वर्क अकॉर्डिंगली. That is how we are succeeding and walking step by step with very much consciousness and a great, you know, vision so that we can empower people, we can move from one village to another village. Aur ye wala center bhi inaugurate karne ke liye Gurgaon ke commissioner all the way Taro jinhone ye center inaugurate kiya tha aur unhone bahut si blessings di aur bola ki aap ऐसे नेक कार्यक्रम को कभी बंद मत करिएगा और ये चलता रहे. तो स्मिता को ये बात बहुत ही लाइक एक दिमाग में जैसे एक रेजिस्ट कर जाती है कोई बात, तो वो रेजिस्ट कर गई एंड शी स्टार्टेड राइटिंग प्रपोजल्स फॉर अदर कम्युनिटीज आल्सो. और दिस जर्नी हैज नॉट येट स्टॉप्ड. वी हैव गॉन फ्रॉम तारू टू मोहम्मदपुर आहिर विलेज where we are again setting up the community library and resource center which is already in operation, and then we moved on to Nu. covid ke time pe ke pehle center launch kiya tha February mein, I think so. और उसके बाद कोविड आ गया तो कैसे हमने कोविड के दौरान एकदम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए थे. जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फोन था उनकी ट्रेनिंग तो हम अपने ऑफिस में बैठ के कर लेते थे और जिनके पास नहीं था वो हमारे कम्युनिटी ने स्मॉल स्मॉल बैचेस में बुला के उनके साथ ट्रेनिंग करी, उनको मैसेजेस दिए व्हाट्सएप के थ्रू, उनको फोन के साथ टच में रहे. और जब उनके पास काम नहीं था, उनकी फैमिलीज हार्डशिप में थी, तो हमने अपने डोनर्स से बात करी कि हम इन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हमने उनको राशन पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे. और दिस इज नॉट आई वुड लाइक टू से हियर दैट प्रोग्राम्स आर वन थिंग बट रीचिंग आउट टू द कम्युनिटी व्हेन दे नीड अस बैडली दैट इज अनदर थिंग व्हिच वी डिड ड्यूरिंग कोविड एंड स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग प्रोवाइडिंग आवर सपोर्ट टू देम. श्रेष्ठा God is the coordinator who is the link between the community and us, and every day she shares with us what exactly the community needs, and Smita Rai speaks with the donors and we convince the donor that we have to strategize the needs of the community in a manner that they should not feel that need is not for them. That is very, very important for us, and we develop our linkages with each child, each woman, each person of the community so that they should feel that read is at their back. That's all I just wanted to say, Dr. Mishra.
1: You compare from the day one to today situations, one can easily find the difference in their dressing sense, difference in their, personality, the way they speak, the way they

0: कैसे हैं सभी लोग?
1: गुड मैम,
0: सब
1: गुड
0: अच्छे?
1: है मैम।
0: गुड
1: गुड है
0: आफ्टरनून मैम।
1: मैम। बहुत गर्मी के बाद बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ठीक
0: और सब कैसे हैं? ठीक
1: है मैम।
0: है। कोई और कैसे हैं? सब
1: गुड आफ्टरनून मैम, सब ठीक है? आप कैसी हैं मैम? गुड
0: ठीक है जी। और कैसे हैं सब?
2: आफ्टरनून मैम। हम
1: मैम
2: अच्छे
1: अच्छे। गुड
0: अच्छे हैं। और
1: मैम,
0: कैसे हैं?
1: अच्छे हैं। आपको देख के थोड़ी एनर्जी फील होने लगी अब।
0: एनर्जी है। और कैसे हैं सब?
1: ठीक है मैम, ठीक
0: ठीक है। और कैसे हैं सब? क्या इमोशन है इस
1: है
0: वक्त?
1: मैम, बहुत बढ़िया।
0: बढ़िया है। और कैसे हैं?
1: मैम को आज सबकी वॉइस सुननी है।
0: मुझे ये जानना है सब हैं कैसे। अभी तक मुझे ये पता है कि पांच छह लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। ठीक
1: मैम सब कुछ ठीक है, बट मौसम खराब है तो गला खराब हो जाता है मैम
0: है,
1: सबका।
0: लेकिन गला खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वैसे ठीक है ना?
1: मैम
0: आपको सिर्फ सुनना है, ज्यादा बोलना तो है ही नहीं, तो कम से कम वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना? कैसे हैं? मेरे को अभी भी जवाब नहीं मिला है, सिर्फ ठीक है, अच्छे हैं। चार पांच लोगों ने बोला है यहाँ पे, तो 30 से ज्यादा लोग हैं। कुछ तो और महसूस कर रहे होंगे, कुछ कोई तो होगा जो अच्छा नहीं फील कर रहा है कि सब अच्छे हैं।
1: सब अच्छे हैं मैम।
0: सब अच्छे हैं। यहाँ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्वर्णा जी आपके साथ, मेरे ख्याल से आपका ही आंखें दिख रही है शायद, है ना?
2: हाँ,
0: हाँ जी। बच्चे कैसे हैं आप लोग?
2: सांगले अच्छे हैं।
0: सांगले, सांगले का
2: मराठी
0: क्या
2: में
0: मतलब?
2: बात करते हैं मैम।
0: हाँ, तो सांगले का क्या मतलब होता है?
2: अच्छे हैं हम सब।
0: अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। और कैसे हैं? महाराज
2: तुम्हें
0: आपके पीछे मुझे
2: बोला
0: है तो सब अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे के अलावा और किसी को नहीं पता कि वो कैसे हैं, उनका फीलिंग कैसा है, आज मन में क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं अच्छा और कैसे हो, तो हम बोलते हैं सब ठीक है, या फिर जैसा रितु जी ने बताया सब ठीक है लेकिन मौसम खराब है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, देर से पहुंचे कि जहां पहुंचना था, खांसी जुकाम हो गया। बट हम कैसे फील कर रहे हैं ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता, या तो अच्छे हम बोलते हैं कि हम अच्छा ही फील कर रहे हैं, है ना? अभी ये सवाल मैंने कम से कम 15 से 20 बार ही पूछा और सिर्फ यही जवाब मिला कि हम अच्छे हैं। सब मानते हैं यही जवाब मिला हमको? यस।
1: यस मैम,
2: यस मैम, तो
1: यस
0: आज
1: मैम।
0: इसी चीज पे बात करेंगे जिसपे मैम ने कल छोड़ा था। मैम ने कल अपने सेशन में 10 ईज की बात करी थी। जो लोग इस सेशन में थे कल, हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैम ने बताया था कि हम किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे, इन डेप्थ हम जानना चाहेंगे हर एक चीज का मतलब क्या है हमारी जिंदगी से। ये जो सेशंस हैं इसमें हम कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ सीख नहीं रहे, बस कोशिश ये है कि अपने आप को थोड़ा बेहतर हम पहचान सके और थोड़ी जो हमारी शक्तियां हैं, जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम उसको और पॉलिश कर सकें, ताकि हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके, सोशली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली। क्योंकि सभी यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में या तो कुछ कर रहे हैं या तो कुछ करना चाहते हैं। जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी राह ढूंढ रहे हैं। सही बात है, या कोई और भी जुड़े हैं किसी और रीजन से? सही
1: सही बात है मैम, बिल्कुल।
0: बात। चुप तो रह नहीं सकते ना, मैं 5 बार बार पूछती रहूंगी ताकि खुद देखू सो तो नहीं गया कोई, है ना? तो आज का हमारा ये 40-45 मिनट होंगे, हम उस चीज पे बात करेंगे जो पहला ई था। पहला ई क्या था? किसी ने सुना था ना कल, सबने 10 ई नोट किए होंगे। पहला ई क्या था बता सकता है कोई?
1: एम्पावर
0: पावर ऑफ व्हाट?
1: मैम, इमोशनल स्ट्रेंथ।
0: एब्सोल्युटली। मैं तब से यही बात कर रही हूँ कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हम कैसा फील करते हैं, हमारी जिंदगी में इमोशंस क्या रोल फील करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। हम सुबह उठने से लेके जब तक सोने जाते हैं, और सोने के बाद भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे सपनों में भी हमारे इमोशंस प्ले करते हैं, हाँ कि ना? अगर आप उदास हैं, अगर आप दुखी हैं और उस फॉर्म में हम सो जाते हैं, तो हमारे सपने भी हमें उसी तरीके के आते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? अगर हम खुश हैं, हमारा दिन अच्छा बीता है, हमने जो चाहा था हमें मिला है, या जो हम अचीव करना चाहते थे, अच्छा सा परिवार भी सुखी है, तो हम अच्छी नींद अगर सोते हैं तो हमें सपने भी अच्छे आते हैं, ऐसा होता है। तो इसका ये मतलब है कि इमोशंस का रोल हमारी जिंदगी में सबसे बढ़ के है। जितना जरूरी खाना पीना, अपने कपड़े, हमारे रहन सहन, हमें अपने फिजिकल नीड्स, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं उनको पहचानना है, उतना ही या शायद कभी कभी उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें हमारी इमोशनल नीड्स को पहचानना। मुझे कोई बता सकता है कि कितने इमोशंस हैं, ह्यूमन एक इंसान में कितने इमोशंस हैं? आपको क्या पता है इस बारे में? कोई गूगल नहीं करेगा इस वक्त? ये नहीं कि जो लोग स्क्रीन पे नहीं है आप गूगल करना शुरू करें, गूगल में सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप सच्चे हैं तो प्लीज गूगल मत करिए, क्योंकि सबकी स्क्रीन ऑन नहीं है। आप, ये कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं, बस आप अपनी समझ से, जितना हम पढ़े हैं, कोई यहाँ पे 20 साल का है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50 साल का है, इन 50, 20, 30 सालों में आपने कितने इमोशंस महसूस करे होंगे, कोई भी बोल सकता है। और जो नहीं बोल रहे, मैं इनकरेज करूंगी वो भी बोले, क्योंकि यहाँ कोई गलत और सही जवाब नहीं है। कितने
2: बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लाइक खुशी
0: होते
2: हो,
0: हैं? 5, 6। खुशी होती है, और बताइए। हेलो,
2: जैसा फील कर होते हैं वैसा इमोशनल हो जाते हैं हम,
0: जैसे कि दुखी हो गए, खुश हो
2: जैसे
0: गया, गुस्सा
2: हम
0: हो
2: गुस्सा आ
0: गया।
2: जाते हैं, कभी कभी अंदर से
0: पांच,
2: नाराजगी होती है, बोल नहीं पाते हैं तो
0: छह,
2: वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी कभी
0: सात,
2: कभी
0: सात
2: देखिए
0: इमोशन,
2: भी होता है।
0: आठ, आठ इमोशंस हो गए, तो बिल्कुल ठीक। 7 या 8 कोर इमोशंस होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमें रूल करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, होस्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन प्लीज। तो अब कायदे से तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन ही नहीं अलाउ हो रही आज शेयर करने के लिए, है ना? मेरा इमोशन इस वक्त क्या होना चाहिए? मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई और होस्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहे स्क्रीन शेयर करने को, या मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए कि अब मैं आगे क्या बोलूंगी, मैंने तो स्क्रीन से देख के पढ़ना था और अब तो मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मैं आगे क्या बोलूंगी, लेकिन मैं फोन करके स्क्रीन शेयर के लिए बोलती हूँ। सो राहुल ने मुझे अलाउ करा है स्क्रीन शेयर करने के। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं?
2: यस मैम,
0: फुल स्क्रीन दिख रहा है। सो आज हम पहले ई पे बात करेंगे, जो मैम ने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम ई क्यू भी बोलते हैं, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ये एक प्रॉपर स्टडी है साइकोलॉजी में, इमोशनल क्वोशेंट इसको बोलते हैं, लेकिन हम इस पे बहुत ही बेसिक लेवल पे बातचीत करने जा रहे हैं। ये कोई साइकोलॉजी का सेशन नहीं है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट प्रैक्टिकली इस चीज के क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम इस पे आपस में बात करेंगे। मैं कुछ आपको सिखा नहीं सकती, क्योंकि आपके इमोशंस आपके हैं, मेरे इमोशंस मेरे हैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि इमोशंस का रोल क्या है, और इसको पहचानना और इसको मैनेज करना। हम इमोशंस चेंज तो कर नहीं सकते, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन गुस्से में क्या मैं किसी को थप्पड़ मार रही हूँ, क्या मैं किसी पे चीख चिल्ला के बात कर रही हूँ, या मैं समझ बूझ के, समझ से सिचुएशन को हैंडल करके बातचीत कर रहे हैं। और हर बार ही जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन होता है, हर एक सिचुएशन में हमारे इमोशन अलग होते हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा, हम ये सेशंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई हमारे एक ख्वाब है, हमारा एक गोल है लाइफ में, उसको हमें अटेन करना है, बट उस गोल को अचीव कैसे करना है। तो हमने सोचा चलो हम वो ईज की बात कर रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस से बात करते हैं। जैसा कि सना ने बताया, हमारे कुछ 8 या 9 जो कोर इमोशंस हैं वो हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि हो गया हैप्पी हूँ, सैड हूँ, वरिड हूँ, नर्वस हूँ, गुस्से में आ गई मैं। ये सारे इंग्लिश के, मैंने जो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ 12-14 अलग अलग इमोशंस हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इसके हमारे को हर भाषा में कोई ना कोई इसका एक वर्ड जरूर मिल जाएगा। तो हम आमतौर पे, हमें लगता है कि हमारे करीबन 12 या 13 अलग अलग इमोशंस होते हैं जो हमारी लाइफ। कुछ इमोशंस नेगेटिव होते हैं और कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिहेवियर को दर्शाते हैं। अगर मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसको कहते हैं ना, अरे इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इससे ज्यादा बात मत करो, ये तो एकदम बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी, इससे ज्यादा ज्यादा इससे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारा बिहेवियर हो गया। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को बहुत उस पे हमारे हमारे जो एक्शन है उसको हमारे को गाइड करता है। कुछ लोग होते हैं, इसे कितना भी बात कर लो ना, इसे गुस्सा नहीं आता। अब ये तो कहना गलत है कि गुस्से वाला इंसान ठीक नहीं है और जो प्यार से बात कर रहा है वो ही ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है जो गुस्से वाला इंसान है वो ज्यादा समझदारी की बात कर रहा हो, लेकिन उसका बताने का तरीका ऐसा है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इमोशंस को दो भागों में बांटा है, आमतौर पे नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस बोला जाता है। नेगेटिव इमोशंस में गुस्सा आ गया, शर्मिंदा हूँ, उदास हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे नफरत है किसी से, मुझे अफसोस है, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव इमोशन में मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने ऊपर मुझे प्राइड है, यानी कि मुझे गुरूर है अपने काम पे, मुझे गर्व है अपने काम पे, मुझे आशा है, होप है, खुशी है, जॉय है, लव है, ये हमारे अच्छे इमोशंस होते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका यहाँ मैंने नाम दिया है रॉबर्ट, इन्होंने जब स्टडी किया, ये साइकोलॉजिस्ट माननीय साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, इन्होंने ये प्रूव किया अपनी थ्योरी से कि जो ये 7 या 8 इमोशंस होते हैं ये करीबन 34,000 इमोशंस ह्यूमन बीइंग में कॉम्बिनेशन में पैदा कर सकते हैं। हमें ये सब जानने की जरूरत इस वक्त पे नहीं है, हम कोई स्टडी नहीं कर रहे, हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इमोशंस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे एक्शंस इन्हीं से दर्शाए जाते हैं। इसलिए हमें इनको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी और आप अपने इमोशंस मैनेज करना शुरू करोगे, लेकिन हम सबको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरा प्राइम इमोशन क्या है। कोई भी चीज अगर खराब होती है दिन भर में तो क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या मैं उदास रहती हूँ, या मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूँ उस सिचुएशन के, मैं कोशिश करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकूँ। मकसद यही है कि हम अपने इमोशंस को पहचाने, इसको हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में या फॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन जब हम उठते हैं उठने से सोने तक, सोने के बाद भी हम इसी 34,000 के जो चक्र है इसमें फंसे रहते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहता है या किसी को कुछ लग रहा है कि गलत है या सही है? हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसकी फीलिंग कैसी होती है? हम इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, नर्वसनेस होती है हमें, जैसे एग्जाम देने जाना है और नेगेटिव इमोशन है, डर है हमारे अंदर, तो डर से क्या होगा? वरी होगी, नर्वसनेस होगी, तो क्या कोई फायदा होगा हमें एग्जाम देने में? नहीं। लेकिन अगर हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, हमने बार बार अपना रिविजन किया है, तो उस नेगेटिव इमोशन को हम पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं? वरी को हम कॉन्फिडेंस में लेके आ सकते हैं, हम वरी जो है हमारी उसको बदल के हम कॉन्फिडेंस में डाल सकते हैं। क्यों? हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं पहले से तैयारी करो, आखिरी मोमेंट पे कुछ मत छोड़ो, लिखित में प्रैक्टिस करो, बार बार उसका रिविजन करो, ताकि जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो हमारा एक्शन क्या होगा कि हम आधा पेपर भूल जाएंगे, पेपर देख के डर जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा आंसर क्या लिखना है, हो सकता है गलत मलत लिखा है। लेकिन अगर हमने उस नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में अपने एक्शन से बदला हो तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए उसकी तैयारी हमने नहीं करी तो भी चैप्टर्स तो हमने सारे पढ़े हैं, तो अपनी समझ बूझ से हम रिस्पॉन्ड करेंगे ना कि रिएक्ट करेंगे। घर से निकलने से पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पे भी हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती, पूरा दिन खराब हो जाता है, या रास्ते में जा रहे हैं, आजकल बारिश का मौसम है, गाड़ी तेज निकली, कपड़े खराब हो गए, कीचड़ कीचड़ हो गया, गुस्सा आ गया, बस इतना अच्छे से मैं बन ठन के जा रही थी और सारा खराब हो गया, मेरी तो मीटिंग थी, मेरा मेरा तो अच्छा काम होने जा रहा था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हो गया, ये तो सिचुएशन सामने आ गई, अब ये मेरे ऊपर है, मैं अपना इमोशन कैसे संभालूंगी? गाड़ी वाला तो निकल गया, हो सकता है उसकी भी कोई इमरजेंसी हो, तो हम एम्पैथी एम्पैथी में बदल सकते हैं अपने इमोशन को, क्योंकि भाई अब तो ये हो गया ना, अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ, अब अगर मेरे को अच्छे मीटिंग में जाना है तो मुझे सॉल्यूशन निकालना है ना उसका, हो सकता है मैं रुक के धो लूँ उसको, मेरे चलते चलते तक शायद वो सूख जाए, लेकिन उससे जो मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम करना है उस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम इमोशनल क्वोशन्ट बोलेंगे कि सिचुएशन आने के बावजूद हम उसको मैनेज कर पाए। ये कोई गुट्टी नहीं है कि हमने घोली पानी में डाली और पी गए, ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा। और अगर हम चाहेंगे तभी ये होगा। अगर हमें लगेगा कि इसके कोई फायदे हैं हमारी जिंदगी में, अगर हमें लगेगा कि नहीं जैसे हम हैं हम वैसे ही ठीक है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे हम आज तक रिएक्ट करते आए हैं ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लीडरशिप के सेशंस ले रहे हैं और अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू दे रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है और उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम को ना समझ के, प्रॉब्लम को पर्सनलाइज ना करके, सिचुएशनलाइज करके हमें उसके कैसे आंसर्स ढूंढने चाहिए। कई बार बहुत गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। किसी ने तेरे नाम पिक्चर देखी होगी तो देखा होगा ना सलमान खान, उसमें वो 10 तक गिनती करता है। किसी ने देखी है वो मूवी? उसमें उस पिक्चर में सलमान खान को बहुत गुस्सा आता है, वो मारता रहता है सबको, लेकिन बाद में शायद जो हीरोइन होती है वो बोलती कि तुम 10 तक गिनती करो तो शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। देखिए किसी ने ये मूवी, या मैं ही सबसे पुरानी हूँ यहाँ पे? देखिए
2: मैंने देखी है मैम, ठीक
0: सबने देखी है। तो वो क्यों करता है,
2: है मैम।
0: उसको उसने एक मैनेजमेंट टेक्निक बना ली कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में रिएक्ट कर जाता हूँ, तो रिएक्ट ना करके मैं कैसे उसे कंट्रोल करूं और उसको मैं पॉजिटिव, मैंने ये एज ए एग्जाम्पल ही दिया है, लेकिन ये कोई सिंगल तरीका नहीं है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इमोशनल क्वोशंट के ऊपर हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारा मेटीरियल अवेलेबल है, जिनको कि लगता है उनकी जिंदगी में नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाएं और कुछ कुछ स्पीकर्स हैं या कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं आप पढ़ने की कोशिश करिए उनको, वो आपको शायद एक बेहतर सोशली एंड पर्सनली वो आपको हेल्प करेगा। और जहां तक लीडरशिप की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी है। आपने मैम को कभी रेयर ही गुस्से में देखा होगा, आपने हमेशा देखा है कि वो कितनी बारीकी से इमोशंस को, सिचुएशंस को सिचुएशन पे रखती हैं, पर्सनलाइज नहीं करती। ये बहुत मेहनत से आता है, बहुत एक्सपीरियंस से आता है, ओवरनाइट नहीं आ सकता। बट एज ए लीडर ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोल पे फोकस करना है, इमोशन पे नहीं। मेरे को कैसे बोल दिया इसने, अरे मैं तो ये हूं मैं तो वो हूं, मुझे बोल कैसे दिया इसने। बट वो आप उसे पर्सनलाइज ना लीजिए। अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियां अपनी वीकनेस को पहचानिए एज ए लीडर और उस पर वर्क करिए। अगेन आई वुड से इट इज अप टू अस कि हम इसकी वैल्यू पहचानना चाहते हैं कि नहीं पहचानना चाहते। इस स्लाइड में हम ये बोल रहे हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, इसके ऊपर हम कई चीजें बात कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव इमोशंस खराब होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा भी स्टडी किया है कि जरूरी नहीं है हर बार और हर नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए नेगेटिव ही रिजल्ट लेके आए। कभी कभी आपने सुना होगा ये इंसान ना स्ट्रेस में बड़ा अच्छा काम करता है, ऐसे सुना है किसी ने कि भाई इसको जब बिल्कुल सर पे आ जाती है ना तब इसकी, ये किसी की नहीं सुनता, ये देखना बहुत अच्छा काम करता है, तब क्योंकि उनको मैनेज करना आ गया है ये आर्ट कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। पूरा दिन कुछ, कई हमारी फ्रेंड ऐसी होती थी कुछ नहीं पढ़ती थी, सारा साल ऐसे ही इधर उधर डोलती रहती थी, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आता था तो दिन रात पढ़ाई करके, क्योंकि उनको डर था कि मैं पीछे ना रह जाऊं, तो उस डर को उन्होंने पॉजिटिव इमोशन बनाया और दिन रात पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट लेके पास हो गए, है ना। और कुछ लोग हैं पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बना लेते हैं, हाय मतलब प्रैक्टिस करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि डर आ गया है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसी को बैलेंस करने की जो कला है उसको इमोशनल क्वोशंट हम कहते हैं। तो हमें हर बार नहीं सोचना कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, कई बार नेगेटिव इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में हमें सीख देने के लिए, ये समझाने के लिए कि शायद हम कहीं गलत जा रहे हैं, शायद हमें जरूरत है अपने कोर्स करेक्शन की। कभी कभी फेलियर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब फेलियर ही नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम राह पे, किसी राह पे चल भी रहे हैं कि नहीं, ऐसे अंधाधुंध चले जा रहे हैं, एक रैट रेस में सब सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो हमने ईक्यू समझा, इमोशनल क्वोशंट समझा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो पजल है जो हम 10 E's की बात कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा हमारा गोल डिफाइन करने में, हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन को अब हम लिंक करेंगे कि हम गोल्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम हमने बात करी कि यहाँ सभी लोग किसी ना किसी गोल से या किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए ही यहाँ पे जुड़े हैं। किसी को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी को ग्रेजुएशन करना है, किसी को कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, नर्सिंग का करना है, पार्लर का करना है, स्टिचिंग का करना है, कोई एम्ब्रॉयडरी करके कुछ करना चाहता है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ क्या है वो भी तो हमें डिफाइन करना है ना। लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस में घिरे रहेंगे, मेरे घर में तो बहुत परेशानी है, मेरे को तो निकलने नहीं दिया जाता, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अरे जाके भी मुझे काम करना पड़ता है, मुश्किल से 1 घंटा निकालती हूँ, अगर हम इन सब चीजों में फंसे रहेंगे तो हम लाइफ में गोल ही सेट नहीं कर पाएंगे, और अगर गोल ही सेट नहीं होगा तो हम उस राह पे चलेंगे कैसे। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन, कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम अपना गोल डिफाइन कर कैसे सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, ये स्लाइड हम आपसे शेयर कर देंगे। अगर हम इन 10 क्वेश्चन के आंसर करने शुरू करें तो हो सकता है हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये हम खुद से पहचान पाए। ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं ये वो ही डिफाइन करे, तभी वो लाइफ में खुश रहेंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि गोल उनका होना चाहिए। हम गाइड कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उस राह पे चलने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर तो हमें ही पता है ना, क्योंकि हम सच्चाई से आंसर देंगे इन इन सब क्वेश्चंस का। मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ तो मुझे खुश क्या करता है? किसी को सिलाई खुशी देती है। अभी हम पीछे किसी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला मुझे, मैं सीख तो स्विंग रही हूँ लेकिन मुझे बनना पार्लर का काम करने में बहुत मजा आता है, तो मैं स्विंग सीख के पार्लर भी करूंगी। ठीक है, आप स्विंग सीख लो, बट वो बहुत क्लियर थी कि मुझे ब्यूटी का काम करने में बहुत मजा आता है, बट हो सकता है उनके परिवार वाले इस वक्त अलाउ ना कर रहे हो या सीट खाली ना हो ब्यूटी और वेलनेस में, तो इसलिए उन्होंने अभी अपना ब्यूटी का बाद में रखा। तो उनको बहुत क्लियर था कि उनको मजा किस चीज में आता है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को एडवांटेजेस में कैसे बदल सकती हूँ, मुझे अपना गोल

करने के लिए फाइनेंसेस क्या क्या चाहिए होंगे और इन फाइनेंसेस को मैं अरेंज कैसे कर सकती हूँ। क्या कभी कभी हमारा गोल ऐसा होता है कि हमें लगता है ये फुलफिल नहीं हो सकता कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन वो तो महंगी होती है, मैं पायलट बनना चाहती हूँ लेकिन वो तो बहुत महंगी होती है। उसको आप पहले डिफाइन करेंगे तभी तो, आप पहले पहचानेंगे तभी तो आप उसको ब्रेक डाउन करके उस लेवल तक लेके आएंगे कि उसे पूरा किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको पहचानना कि वो ऐसा काम क्या है जो आप रोज उठ के करीबन 30, 40, 50 साल तक आगे करना चाहते हैं। जो बच्चे आज 20 साल के हैं वो कम से कम 60 साल तक काम करेंगे, तो 20 से 60 साल की जो जर्नी, यानी कि 40 साल अगर आपको काम करना है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, आजकल तो 80, 90 साल के भी जो हमारे मेंटर्स हैं वो भी हमें गाइड करते हैं अभी तक। तो आप सोचिए, काम करने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। तो अगर आपको 40, 50, 60 साल तक आगे काम करना है तो ऐसा क्या काम है कि रोज सुबह उठेंगे तो उतने ही खुशी से आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस रोज आएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी का काम होगा तो चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज तो रोज आएंगे, क्योंकि चैलेंज के बिना तो आई थिंक लाइफ का सर्कल पूरा नहीं है। लेकिन उन चैलेंजेस को हम तभी इंजॉय करेंगे अगर काम हमारी पसंद का है। अगर आज वो काम हम नहीं कर सकते तो मैं उनकी तरफ आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, उनको भी हमें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। बट ज्यादातर लोग जो है ना, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगी। अगर मैं सिलाई सीखने गई और मेरी सिलाई सबसे अच्छी नहीं हुई तो शायद मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा। अगर मैंने अचार बनाना सीखा और मेरे अचार खराब हो गए तो हो सकता है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। हो सकता है मैंने बिजनेस करना शुरू किया और मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया तो मेरे पैसे तो खराब हो जाएंगे, तो मैं नहीं करूंगी। ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है, और फियर ऑफ फेलियर हम सब में ही है। ये लाइफ स्किल के सेशन देने से पहले मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर था। अगर लोगों को मेरे सेशन में नींद आने लग गई तो मैं क्या करूंगी, अगर उनको मेरे सेशन अच्छे नहीं लगे, अगर मेरी बातें समझ नहीं आई, अगर वो सिर्फ स्क्रीन ऑन करके बैठे रहे और मेरी बात का कोई मतलब नहीं समझे तो मुझे कैसे लगेगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर था मेरे अंदर, पर मैंने अपना काम पूरी जस्टिफिकेशन से किया। जो टॉपिक था उसे समझा, उसमें जितनी मेरी समझ थी उसके सारे जो पॉइंट्स थे मैंने लिखे। हो सकता है एक बच्चे को भी या एक बेनिफिशियरी को भी उससे फायदा हो जाए, तो वो जो फियर ऑफ फेलियर है ना मेरे, उससे मैं मोटिवेट हुई कि चलो एक, शायद मेरी 4-5 घंटे की मेहनत से हो सकता है एक इंसान को कुछ मोटिवेशन मिल जाए और वो अपने इमोशंस को पॉजिटिव की तरफ मोड़ना चाहे, और हो सकता है वो अपना गोल डिफाइन करने में सक्षम हो सके। तो इसलिए फिर वो फियर ऑफ फेलियर को मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो मुझे अच्छे से करना है, फियर ऑफ फेलियर से उसको बांध के नहीं रहना। बट हम सभी आगे बढ़ने से डरते हैं, कुछ नया काम करने को बोलो तो हमें डर लगता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे हमारे ऊपर, हमारे लिए ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। सो नेवर बी शाय, नेवर बी अफ्रेड, मतलब कभी डरिए मत कि हम हार जाएंगे, हमें हमें लोग हंसेंगे, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। फेल होंगे ही होंगे। आप कितनी बड़ी कंपनी के लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, हमारी लाइब्रेरी में इतनी बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा। बड़ी सी बड़ी कंपनी उठा लीजिए जिसके जो बायोग्राफी है उसमें ये नहीं लिखा होगा, ये ऑटोबायोग्राफी में, कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ या मैं कभी फेल ही नहीं हुई। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ कदम तो गलत हुए ही होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बन गए और एक छोटी सी गलती से भी वापस नीचे आ गए। ऐसे बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं कि कैसे बड़े बड़े एम्पायर्स जो हैं वो नीचे आ गए। तो फेलियर तो पार्ट ऑफ सक्सेस है ही। अगर आप सक्सेस का कर्व पढ़ेंगे तो सक्सेस में फेलियर कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन क्या हम उससे डर के रुक जाए, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको डर के रुकना है तो आप डर के रुकिए, बट अगर आपने हमारे सेशन ज्वाइन किया है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप फियर ऑफ फेलियर से रुक जाएं, थम जाएं। कोशिश करिए उसको आइडेंटिफाई करें, उन जो फेलियर्स हो सकते हैं पहले से उसकी तैयारी करके हम चले आगे। रास्ते में अगर रुकावटें आएंगी तो उसको मैनेज करना हमें सीखना है। आप जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं, मैम ने भी सबको बताया, एक डायरी जरूर मेंटेन करिए। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, हम उसको

0: छोटे स्टेप्स में अगर तोड़ेंगे, यानी कि हमें एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक साल के अंदर अंदर मैं अपनी बुटीक खोल लूंगी, तो उसको मुझे ये स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बुटीक खोलूंगी तो आज से 3 महीने तक तो पहले मैं बेसिक स्टिचिंग सीखूंगी। बेसिक स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे 10 या 15 लोगों के फ्री में बनाने पड़ेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है। हो सकता है मुझे पैसे मिले उस चीज के, हो सकता है मुझे मेरे मुंह पे आके फेंक दे कि ये क्या क्वालिटी तुमने दिया है। क्या मैं रुक जाऊंगी तब? ये आपकी मर्जी है। अगर आप सीख के आप बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं दोबारा ठीक करके देती हूँ, मैं इसके कोई पैसे भी नहीं दूंगी, ये आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा ही करिए, लेकिन अपने लक्ष्य को ब्रेक करिए कि अगर एक साल में बुटीक खोलना है तो पहले 3 साल में मेरे को बेसिक स्टिचिंग सीखनी है। अब मैं बेसिक स्टिचिंग पे करके सीख रही हूँ कि रीड के सेंटर पे जाके सीख रही हूँ, जहाँ पे मैं सेफ भी हूँ, मुझे अच्छे टीचर मिले हैं। बेसिक के बाद मैंने 3 मंथ्स का एडवांस स्टिचिंग लिया, उसके बाद मैंने छोटा बुटीक खोला, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बड़ा बुटीक खोला। 1 साल में नहीं खोल पाए, हो सकता है 1.5 साल में खोला। अपने गोल को रीएडजस्ट करिए। तो मेरा मतलब यह है कि अपने गोल को पहले डिफाइन करिए और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, और हमेशा उसे रिविजिट करिए कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई कि नहीं कर पाई। जहां फेलियर हुआ उस फेलियर को एक्सेप्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए, उसे कुछ सीखिए। एवरी टाइम वी हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स, फ्रॉम द रोड ब्लॉक्स। जो भी बीच में रोड ब्लॉक्स आए हैं, अनहैप्पी सिचुएशंस आई हैं, कोविड आ गया, कोई प्रॉब्लम और आ गई, तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए हमें उसको पॉजिटिव में ही बदलना है। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल की बात करें, बार बार इमोशन आ जाते हैं कि हमें घबराना नहीं है, उनको नेगेटिव इमोशंस में नहीं बदलना है। सॉरी मैंने टाइम भी नहीं देखा। यहाँ पे कुछ किताबें हैं, जरूरी नहीं है ये सारी किताबें हमारे लाइब्रेरी में हो, लेकिन इसके कई कई जो एक्सर्ट्स हैं, यानी कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाकी किस लैंग्वेजेस में है मैं रिसर्च कर सकती हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हम चाहें तो उनको पढ़ के हम और अच्छे से अपना गोल डिफाइन करके आगे खुद से बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट नॉट टू फॉलो योर ड्रीम्स, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव कि अपना गोल आइडेंटिफाई करिए और अपने पॉजिटिव इमोशंस को पहचानिए। नेगेटिव इमोशंस को हम किस तरीके से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेशन ऑन द 10 ईज। जो पहला ई था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का, आज हमने वो कवर किया है। अगले सेशन में मैम का लीडरशिप का सेशन होगा, सेकेंड ई पे हम उसके बाद बात करेंगे, राइट? अब इसके साथ कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है, या कोई गोल या अपने डायरी रखनी शुरू करी है, कोई फीडबैक देना चाहता है? बिकॉज क्या है ना, हम सुन के बंद कर देंगे ये जूम सेशन और कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहां थे वहीं पे ही रहेंगे। इसलिए वी शुड बी एनकरेजिंग ईच अदर टू इंटरैक्ट। सो आई एम स्टॉपिंग नाउ एंड आई एनकरेज एवरीबडी, आपके साथ बेनिफिशरीज भी अगर हैं तो उनको भी एनकरेज करिए कि कुछ इस इन सेशन से अगर समझ में आया या कुछ सीखा, और मुझे भी फीडबैक दीजिए कि अगर ये सेशन बहुत वर्बोस था, यानी कि वर्ड्स बहुत ज्यादा थे, तो मैं इसे और कम और सरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी।
1: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बाइरेडीपल्ली.
0: हेलो संगीता जी।
1: यस मैम, जो आपने अभी इमोशंस के बारे में बताया, आई डोंट रिमेम्बर कोविड टाइम पे मैंने एक चैप्टर था घृणा का महत्व, हिंदी में किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना था. दैट वाज अ डिग्री स्टूडेंट, मुझे याद नहीं है. बट वो इमोशंस जो हमारा हेट्रेड इमोशंस है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रही थी, उसको बहुत डिटेलली उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम घृणा नहीं करेंगे तो जो बुराई है उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं तो उससे डर के, अरे लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, इससे डर के गलत काम नहीं करेंगे. वो पूरा बहुत अच्छे से था. तो आप जब समझा रहे थे तो वो चैप्टर

0: रिकॉल कर रही थी मैम।
1: एब्सोल्युटली राइट. हम कभी कभी इतना डर जाते हैं नेगेटिव इमोशन से ना. जब मैंने पूछा, मैं 100% ये श्योर हूँ कि आज जो 60 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी अच्छा नहीं फील कर रहे. कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें परेशान कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी परेशानी. सबको ये टाइम सूट करता है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोग अपना वक्त निकाल के एग्जैक्टली 3 बजे आ गए और वो अच्छा भी फील कर रहे हैं. पॉसिबल ही नहीं. लेकिन हम नहीं बोला नहीं, क्योंकि हम डरते हैं कि हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही सोचा जाएगा. भाई मेरे को नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैंने सुबह खाना नहीं खाया वक्त से, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मेरा नहीं मन है सेशन अटेंड करने का, मेरा नहीं मन है वीडियो पे आने का, मेरा नहीं मन है कुछ बोलने का. तो वो हमारा मन है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते. मैं आपकी जिंदगी में आके उसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये हम पे है कि हम उसे मैनेज कैसे करेंगे. ये हम पे है कि दिन भर में जो हमारे सामने आता है हम उसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सब हमारे हाथ में, क्योंकि ये हमारी लाइफ है.
0: नाउ फॉर दिस आंसर मैम, कि आप कैसी हैं? मैं खुश हूँ मैम।
1: आप खुश हैं? अच्छा, वेरी गुड. और आप खुश हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पॉजिटिव इमोशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है, मतलब इमोशन से हमारे एक्शन होते हैं. मैं जब ये सेशन बना रही थी तो मैंने कई वीडियोस और कई साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज थी उनको पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. और मेरे ब्रदर ने तो इस सब्जेक्ट पे पीएचडी, डबल पीएचडी करी है ह्यूमन साइकोलॉजी पे, तो वो अभी भी पढ़ रहा है. उसको करीबन 12 साल हो गए हैं ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए, और अभी भी वो पढ़ रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है. तो हम आधे घंटे के सेशन में तो इस चीज पे बात भी नहीं कर सकते, और मैं तो इस चीज पे बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है. तो जब हम इन इन चीजों पे मैं पढ़ रही थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई कि जो पॉजिटिव इमोशन है, इमोशन जो बना है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेराइवेटिव है. इंग्लिश का जो वर्ड है इमोशन, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेरिवेटिव है. इमोशन यानी कि जो हम फील कर रहे हैं उससे हमारा मोशन होगा, उससे हमारा रिस्पॉन्स होगा. जो हमारा इमोशन है उससे हम रिस्पॉन्ड करेंगे. हम खुश हैं तो सब खुश हो जाएगा, हमारे आसपास के लोग खुश होंगे, हम खुशियां फैलाएंगे. अगर हम उदास हैं, गुस्सा है, अब ये इमोशन भी जरूरी तो है हमारे लिए, ये हमारी लाइफ से कोई ले नहीं सकता. तो अगर मैं चिड़चिड़े मूड में हूँ तो अगर कोई बच्चा आके, मेरा बेटा आके मुझे हग भी करता, मेरे पीछे डर, मेरे को नहीं करना, मेरा मूड नहीं है अभी, तो उस बेचारे की क्या गलती है? दिन तो मेरा खराब गया है और चिड़चिड़ी तो मैं हूँ, इमोशन तो मेरा खराब था, मैंने अपना खराब इमोशन उसको भी पास ऑन कर. ऐसा ही सेम रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो इमोशन से ही पैदा होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बने ही इमोशन पे हैं. चाहे वो प्रोफेशनल इमोशन है, सोशल इमोशन है, फैमिली इमोशन है, घर के हैं, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, मदर डॉटर, मदर सन, जितने हैं रिलेशनशिप वो इमोशन पे ही बने. तो इसकी अहमियत तो हम हटा नहीं सकते, इसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं. आपके लिए मैं नहीं मैनेज कर सकती, आप मेरे लिए नहीं मैनेज कर सकते, अपने अपने पहचान के और अपने अपने मैनेज करने. मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोग प्लीज कुछ शेयर करिए. हेलो
2: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
1: स्वाति जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं?
2: मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे?
1: मैं अच्छी हूँ, मुझे खुशी हो रही है. इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठा किया था पिछले 1.5 दिन में, मैंने सारा शेयर कर दिया. कुछ कुछ चीजें बच गई हैं, मैंने बहुत सारा पढ़ा था लेकिन फिर भी काफी कुछ शेयर कर दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा है.
2: यस मैम, काफी टाइम ना, मतलब कुछ चीजों पे ऐसी धूल सी जम जाती है, तो वो सेशन के जरिए आगे चल के आता है हमारे सामने, और फिर से लगता है कि नहीं, हमें ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। और काफी टाइम पे तो मैम ऐसे होता है कि निगेटिव जो चीजें हमारे साथ घड़ती है सुबह से लेकर शाम तक, वो ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में घूमती रहती है, और जो कुछ अच्छी बातें होती है ना, तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। तो ऐसा कुछ बताइए कि हम निगेटिव चीजों के जल्दी से भूल जाए।
1: ये जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे, ये सबसे पहले उठ के आया था कि नेगेटिव इमोशन जो है ना वो सबसे ज्यादा भारी हो जाते हैं. हो सकता है नेगेटिव इमोशन एक होगा, वो इमोशन या सिचुएशन हुई, मान लीजिए लड़ाई हो गई सुबह सुबह किसी से, तो वो हमारा इमोशन नेगेटिव हो गया, या कोई बीमार हो गया घर में तो नेगेटिव

0: हो गया हमारा, अब वो नेगेटिव इमोशन पूरा दिन हमारे साथ रहता है, पूरा दिन, पूरे दिन में चाहे 100 से भी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस आए हों, लेकिन जो उसका भार है, जो उसका बोझ है यहाँ पीछे दिमाग में, वो घर कर जाता है, उसको हम जाने ही नहीं दे सकते। अब ये डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने नेगेटिव इमोशन पे बहुत ज्यादा स्टडी करी है। इस पे आप काउंसलर्स जो होते हैं, जो आपने सुना होगा कि काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है, हमारे यहाँ तो इंडिया में मेंटल इलनेस को तो मतलब इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करी जाती, लेकिन बाहरी देशों में ये एक कॉमन टॉपिक है। अगर मुझे डिप्रेशन है, या मुझे दुख है, या मैं नेगेटिव इमोशन से घिरे रहती हूँ, तो हम वो लोग डरते नहीं हैं अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में, या फिर ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाने में जिनसे वो अपनी बात कर सके। एक एक घंटे का सेशन होता है और वो उनसे बात करते हैं। हम यहाँ पे अपनी सहेलियों से बात करके मन हल्का कर लेते हैं, ऐसा होता है, एक सहेली सबकी होती है जिससे इतना पूरे दिन की भड़ास निकाल दो, ऐसा ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अब ठीक लग रहा है, अब मुझे ठीक लग रहा है, अब ठीक। तो ये एक्चुअली हम रियलाइज नहीं करते, ये हमारा नेगेटिव इमोशन मैनेजमेंट का तरीका बन गया है। कुछ कुछ लोग होते हैं अपनी मदर से बात करके बहुत खुश होते हैं, या कुछ अपनी डॉटर से, क्योंकि वो एक ऐसा बॉन्ड है कि कोई चेंज नहीं कर सकता, तो हम किसी से बात कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई कई लोगों को देखा है कि वो भगवान की मूर्ति से बात करते हैं, कि भाई हम किसी से नहीं बात कर सकते, कभी कभी ना भगवान के पास बैठ के वो अपने मन की पूरी बात कह देते हैं कि अब मैंने आपको बता दिया, अब आप देखो कि क्या हो सकता है। वो और कुछ नहीं है, वो अपने दिल की जो बातें हैं वो बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये चीजें मुझे तकलीफ दे रही है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोझ कम होने लगता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कई बार कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। वो एक सिचुएशन प्रॉब्लम है, ये क्या मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती? अगर मैं उसे नहीं सॉल्व कर सकती तो वैसे भी दुखी होने का मेरा कोई रीजन ही नहीं। अगर मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ तो मुझे ये देखना है कि परेशान होने की बजाय मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं अपने दिन भर की, जो भी दिन भर की परेशानियां हैं, अच्छी चीजें, उसमें जरूर लिखते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो सीक्रेट डायरी मेंटेन करते हैं, वो किसी को भी पता नहीं होता, सीक्रेट डायरी होती है, आज के दिन की ये 4 बातें हैं वो उसमें मैंने लिख दी और मेरी सीक्रेट डायरी सिर्फ मेरे पास रहेगी। ये भी एक तरीका होता है कुछ लोगों का। अब ये तरीका आपका क्या है, ये तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, राइट? लेकिन नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देना एक वक्त से ज्यादा वो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ चारों को खराब कर सकता है। फिजिकल हेल्थ कैसे? आप परेशान रहेंगे, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, सिर में दर्द, चक्कर आना, डिप्रेशन होना। फिजिकल कैसे? भूख नहीं लगेगी आपको, गुस्से में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तो फिजिकल हेल्थ वैसे ही खराब हो जाएगी। इमोशनल हेल्थ कैसे? सब आप दुखी हैं, आपके बच्चे दुखी रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपके हस्बैंड, आपकी मदर सब आपसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा दुखी, क्यों तो दुखी रहती है, पता नहीं क्या है, बोलती भी नहीं है क्या प्रॉब्लम है ना। प्रोफेशनल कैसे? आप अपने काम पे ही ध्यान नहीं दे पाएंगे, अब आपके इमोशंस तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन उसे आइडेंटिटी, उसको पहले अपनाना बहुत जरूरी है, कि और ये मानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ शायद, कि जिसको इतनी बड़ी दिक्कत है, और भी लोग हैं दुनिया में जो शायद इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतों से, इसमें अमीर गरीब का कोई वो नहीं है, हो सकता है बहुत अमीर लोग हैं, पैसा भरपूर है, फिर भी नेगेटिव इमोशन बहुत सारे हैं। और एक इंसान है जो अपना काम करता है, सिंपल लिविंग है, रोजी रोटी है, घर परिवार है, और आप देखेंगे वो इतना खुश है कि पूछे ही मत। वो कोई मेटीरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं कभी कभी भी बंधी होती। नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस सारे हमारे अंदर हैं, कितनी तवज्जो हमें किसको कब किस वक्त पे देनी है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी, जैसा कि संगीता जी ने भी कहा, कि जो नेगेटिव इमोशन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टू कम बैक टू से कि पॉजिटिव इमोशन की महत्व क्या है हमारी लाइफ में, उनसे दोस्ती करने के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होना भी बहुत जरूरी है।
1: एंड वन मोर थिंग मैम, मेरे साथ तो ऐसे होता है मोस्टली, आई थिंक सबके साथ, जब हम हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से जब दुख है किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो कम हो जाता है, एंड हैप्पीनेस वो डबल हो जाती है व्हेन आई शेयर विद समबडी एल्स।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये फॉर्मूला भी है कहीं पे, मैंने ये भी पढ़ा था, ऐसा हैप्पीनेस का फॉर्मूला एंड

0: जो नेगेटिव एंगर का जो फॉर्मूला है, बिल्कुल आपने जो बोला ऐसा है, एक उन्होंने डिराइव करके लिखा हुआ। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ साइकोलॉजी में कि वो फॉर्मूला डिराइव कर दू, लेकिन आई रेड अबाउट इट।
1: यस मैम, जब गुस्सा होता है, बस्ट हो जाता है, तो वो अपने आप कम हो जाता है, और दुख रहते हैं, किसी से बोल के रो देते हैं, तो भी वो इमोशन बस कम हो जाता है, और हैप्पीनेस किसी से
0: लेकिन
1: भी कितना भी शेयर करो, डबल ट्रिपल होता जाता है।
0: हमें ये ध्यान रखना है कि गुस्से में हम गुस्सा कर किस पे रहे हैं, कहीं गुस्से में हम ऐसा गुस्सा किसी पे ना कर दें कि जो हमारा पूरा रिलेशनशिप उससे खराब है। उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। उस पॉइंट पे, उस ट्रिगर पॉइंट पे हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन यानी कि हमारा एक्शन क्या है, उसको पहला ई जो मैम ने कल बताया था, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट, उस बैलेंस को कि नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन का जो वो बैलेंस है, कहाँ भाई नेगेटिव इमोशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा, या तो मैं रो के निकालूंगी, गुस्सा करके निकालूंगी, भड़कूंगी किसी पे, या लिख के, या किसी को बोल के, या किसी और तरीके से नेगेटिव इमोशन तो निकलेगा ही निकलेगा। नहीं निकलेगा तो वो प्रेशर कुकर हो जाएगा, फट जाएगा किसी को, तो उसको निकलना भी जरूरी है। बट उसको मैनेज कैसे करेंगे, और मैनेज करने का तरीका हम सबका अपना है, और उसका रिएक्शन का एक्शन भी हमारा अपना है, और उसका रिजल्ट भी हमारा अपना है, राइट? बट इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे को गोल डिफाइन करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव की तरफ कैसे लेके जाना है। तो आज हमने दो चीजों को कोरिलेट करा है, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, हम दोनों चीजों को अलग अलग भी समझ सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और गोल सेटिंग, कि हमें लाइफ में गोल कैसे सेट करना चाहिए।
1: हेलो मैम
0: हाँ जी ज्योत्सना जी,
1: मैम, मुझे भी आज ये फील हुआ है कि मैं भी अपना जो नेगेटिव इमोशन है वो मतलब कैसे यूटिलाइज करती थी। आज तक पहले मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, जैसे मैं मुझे कभी बहुत ज्यादा किसी से लड़ाई हुई, गुस्सा हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा काम करती थी, जितने मेरे पेंडिंग्स काम होते थे मैं सारे कंप्लीट कर देती थी उस दिन, जबकि मैं वैसे भी बहुत अच्छा करती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन मेरे किसी से गुस्सा हो गया या किसी से फाइट हो गई या कोई बात हुई, तो मैंने उस दिन सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिए। तो मुझे आज पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जब मैं गुस्से में आती थी तो मैं ज्यादा काम करती थी। तो अब मुझे ये चीज और याद है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि मुझे अपने नेगेटिव इमोशन को और कैसे बैलेंस करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मैम, जो लोग बहुत डरते हैं कुछ भी मतलब करने से पहले, करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और करने के बाद उन्हें ये डर लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे। वैसे तो ये डर सबके अंदर होता है,
0: हम सब
1: लेकिन सबके अंदर होता है, वन टू ऑल, अपने अपने लेवल पे मैम, सबके अंदर होता है। लेकिन स्टूडेंट्स को फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, पर ठीक है, आज हमें और गाइडेंस मिली है कि वो अपना स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। थैंक्स
0: मैम,
1: टू यू
0: हमेशा
1: एंड एनी।
0: मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर जब गुस्से में आती थी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो जिस दिन उसका खाना बहुत अच्छा बना होता था ना, तो हम उसको कहते हैं आज मम्मा गुस्से में थी क्या। ऐसा बहुत होता है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को भी पॉजिटिव में चेंज कर पाते, हमें पता नहीं होता लेकिन हम वो
1: जी
0: कर सकते हैं।
1: जी
0: हाँ जी तुषार, आप बोलना चाह रहे।
1: एक साल पहले आप हमारा जो कारेगांव का सेंटर था पुणे में, वहाँ आप मैम आई थी, तब आपसे जो बात हुई थी मैम, उससे जो पॉजिटिव वाइब्स हमें मिले थे, वो आज भी हमें काम करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। हर हमारा जो सेंटर है सर मैम, यहाँ पर इंडस्ट्री लेबर और माइन वर्कर्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो उन बच्चों में जो पुअर बैकग्राउंड होते हैं, उनका कोई भी एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती उनके घर वालों को, तो यहाँ पर काम करने पर जो बच्चे आते हैं, तो उनको नहीं क्या पुराने जमाने में जो टीचर थे, हाथ में लाठी लेकर बड़ा बड़ा चश्मा पहनते थे और गुस्से से बोलते थे, ऐसा कंसेप्ट उनके दिमाग में बैठ गया था। लेकिन जब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड के साथ, तो जो तारे जमीन पर में जो आमिर खान सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, कि ऐसा भी टीचर होता है जो बच्चों के साथ उनका उनके जैसा रहकर काम करता है, और जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डरते हैं सभी चीजों से, नई चीजें करने में, तो उनके साथ वैसा रहकर इनकरेज करके उनके अंदर भी जो क्वालिटी होती है वो बाहर निकलने का काम
2: आपके जो सेशंस होते हैं मैम, उससे हमें इनक्रेजमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, आप जो मोटिवेट करते हैं हमें और गाइडेड करते हैं, इसलिए।
0: थैंक यू तुषार। हमने ये देखा है कई बार बच्चे डरते हैं साइकिल चलाने से क्योंकि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, लेकिन पेरेंट्स जो है वो छोड़ तो नहीं देते ना, वो फिर भी इनकरेज करते हैं, नहीं आप साइकिल चलाओ, गिरोगे तो क्या हुआ, कोई वहां पे कुछ बांध देता है, कपड़ा बांध देता है, अच्छा घुटने नहीं छिलेंगे, कभी हेलमेट पहना देते, अच्छा चोट नहीं लगेगी, तो हम उसको मैनेज करने का तरीका, लेकिन हम रुक तो नहीं जाते ना, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम फियर ऑफ फेलियर नहीं लेके आएंगे, फेल तो होना ही है, लेकिन फियर ऑफ, पहले से ही क्यों मान ले कि हम फेल होंगे। अभी पीछे कोई बातचीत चल रही थी तो हमने ये सुना था कि हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं क्योंकि अर्थ की जो रेडिएशंस हैं वो खींच रही हैं हमको अपनी तरफ, ग्रेविटी खींचती है ना, तभी तो हम उड़ते नहीं रहते, हम अर्थ से चिपक के रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, तो हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और जो हम सोचते हैं पावर ऑफ माइंड, वो बात कभी कभी सच हो जाती है। हम कहते हैं ना कि हम आज ये सोच ही रहे थे, अरे और को हो ही गया, क्यों, क्योंकि ये साइकोलॉजी में या कई कई किताबों में आप देखो कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हम सोचते हैं वो हम खींचते हैं अपनी तरफ, वो रेडिएशंस हमारी तरफ आती हैं और हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पहले ही सोच लेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो वैसे ही नहीं कर पाओगे आप तो, है ना, आप मैं कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, मैम ने मुझे बताया कि हम इस तरीके से करते हैं, हमने कल पढ़ाई करी, थोड़ा सा तो कुछ मैं निकाल के ला पाई, मैं नहीं कह रही कि मैं एक्सपर्ट हो गई इस टॉपिक में, बट मुझे भी नहीं पता था कि 34,000 इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, मुझे लगता था गुस्सा, हंसी, खुशी, यही 4, 5, 8, 10 इमोशन होते हैं, पर सोचो मुझे भी कुछ पता चला, मैं अब और पढ़ूंगी इस बारे में, हो सकता है मैं भी जान पाऊं कि मैं हमेशा हंसती तो नहीं रहती, गुस्सा मुझे भी आता है, लड़ती मैं भी हूँ, बट इन चीजों का हमारी जिंदगी पे क्या असर हो रहा है वो चीज समझना बहुत जरूरी। तो आज पहला ई हम समझ के गए हैं, और अगर आप चाहें तो आज से लेके अगले सेशन तक आप ये लिख सकते हैं कि हर दिन के एंड सुबह आप कैसा फील करते थे और शाम को आप कैसा फील करते थे, जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं हम लिखते हैं, हम भी देखेंगे 34,000 इमोशन होते कैसे हैं, है ना। सो थैंक यू एवरीबॉडी मेरी बहुत सारी बातें सुनने के लिए, आई विश यू अ वेरी गुड वीकेंड, और आप एंजॉय करिए, अच्छा काम करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए, ये सेशन जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं करिए। हाँ
1: मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ 2 मिनट।
0: जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए सुमन जी।
1: जी मैम, सबसे पहले तो थैंक यू रीड इंडिया का और आप सबका, क्योंकि जो रीड से जुड़ जाता है तो मुझे नहीं लगता वो उसमें नेगेटिविटी इतनी रहती है, और हर वक्त रीड कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हम लोगों के साथ तैयार खड़ा रहता है। और इतना कुछ सिखाया कि कभी कुछ उदासी हो जाती है, कुछ नेगेटिविटी होती है हमारे साथ, तो हम उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी, मुझे नहीं पता ये क्या है, कि जब मैं कभी उदास होती हूँ, कभी नेगेटिविटी मेरे अंदर आती है, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, तो उस चीज में मुझे हैप्पीनेस दिखाई देने लग जाती है अपनी आप ऑटोमेटिक ही। और ये सब शायद मैंने रीड से ही सीखा है और आप लोगों से सीखा है। थैंक यू मैम इसके लिए।
0: थैंक यू सुमन जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। चलिए अब वक्त हो गया, आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट काम करने होंगे, तो अब हम सेशन क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, बाय टू एवरीबॉडी।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: और फिर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मुझे सिलाई करना लगभग आ चुका है, जैसे कि मास्क बनाना, बच्चों के कपड़े सिलना, औरतों के ब्लाउज सिलना, ये सब मैं कर लेती हूँ। अगर अवसर आया तो ये सब मैं सिलकर बाहर को निर्यात कर सकती हूँ। कोमल पाल है, मेरी उम्र 17 साल है। मैंने रीड इंडिया सेंटर सिमराई बाराबंकी ट्रेनिंग ली है। पहले मुझे मतलब सिलाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, उसके बाद मैंने मतलब अपने कपड़े स्वयं सिल सकते हैं, अपने पूरे घर परिवार के, और जो मतलब जो पहले था जो पैसे दूसरे को देते थे, अब वो पैसे मतलब खुद मतलब बचत कर सकते हैं। और मेरे ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया।
1: मेरा नाम विमलेश है। हमें अनेक प्रकार के हमारे जीवन में बदलाव आए हैं सिलाई को लेकर, और जब मैं जो भी चाहती हूँ सिलाई से संबंधित जो ग्रुप बनाकर वो आगे काम भी कर सकती हूँ, अपना सिलाई का कोई सेंटर खोल सकती हूँ, या समूह बनाकर मैं इकट्ठे कपड़े सिल सकती हूँ, सिलकर मार्केट में भेज सकती हूँ, जो भी चाहती हूँ सिलाई संबंधित कार्य कर सकती हूँ।
2: असम है, मेरी उम्र 21 ईयर है। मैं बी ए द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ। मेरे ग्राम का नाम कटारी चंदाय है। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरे गांव में रीड इंडिया का सेंटर खुला, उसके बाद हमने इसमें एडमिशन लिया और आज हम अच्छे से कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों को कंप्यूटर सीखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के घर से 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर सेंटर है और वहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ता था, इसलिए घर के पेरेंट्स भी इसकी इजाज़त नहीं देते थे। उसके बाद जब से ये सेंटर खुला तब से हम लड़कियाँ आत्मनिर्भर हुए और कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान सके, और आज स्थिति ये है कि हम लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अच्छे से चला भी रहे हैं, और ऐसा रीड इंडिया सेंटर की वजह से हुआ। कंप्यूटर को सीखकर हम आगे नए रोजगार के अवसर अच्छे से खोज सकते हैं।
3: आई एम राखी फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और इसे लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निधि मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया इस ट्रेनिंग में, जैसे कि हेल्थ वर्कर क्या होते हैं, वह समूह जो हेल्थ की जानकारी रखता है उसे हेल्थ वर्कर कहते हैं। इसमें हेल्थ वर्कर का कार्य रहता है कम्युनिटी डेटा इकट्ठा करना, उसमें मतलब जन्म और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब जानकारियाँ ली जाती हैं। हमारे आसपास की सफाई भी जरूरी होती है, शारीरिक हाइजीन में होता ही है। और मैम ने बताया था कि हमें हैंड वॉश कैसे करना चाहिए, तो हैंड वॉश के मैम ने 5 चरण बताए थे, जिसका हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। यदि हम रेगुलर हाथ धोएंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी, हम स्वच्छ रहेंगे। तो मैम ने बताया कि हमें वो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में हमें कॉफ़ी की मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। मैम ने बताया शारीरिक क्रियाएं वगैरह जो होती हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में बहुत कुछ बताया है, जो हमने अच्छे समझाए, सबको समझाया भी है। हमारे आसपास जो व्यक्ति थे हमने उनको हमारे मतलब संपर्क में उनको बताया कि मैम ने हमें ये बताया है, आप भी इसका उपयोग करें, समय पर एंटीबायोटिक दवाएँ लें। मैम ने हमें ये जल्द से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, ORS घोल हैजा में लिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसे हमें लेना चाहिए, ये अच्छा होता है। और मैम ने COVID-19 के बारे में भी बताया था जो चल रहा है, इसे हमें बचना चाहिए, ये खांसी और छींक के माध्यम से फैल रहा है, इसलिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैम ने एस्थमा के बारे में बताया था कि ये सांस की बीमारी होती है, जिससे मतलब हमारी जो सांस नली होती है वो उसमें सूजन आ जाती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और बलगम आता है, तो मतलब सांस लेने में मतलब सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो इसके उपचार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करना चाहिए। और बस मैम ने बहुत कुछ बताया है, हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं इस संस्था को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा है और हमें बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू।
4: आई एम पूनम कश्यप फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्क

0: ट्रेनिंग ली है और हमें इस ट्रेनिंग में कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया है और उनकी रोकथाम के बारे में और हमें किस प्रकार से उनका उपचार करना चाहिए वो भी बताया गया है। रीड इंडिया संस्था द्वारा हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। इसमें हमें मीना दीदी ने कई प्रकार की बातें समझाई हैं। उन्होंने हमें संस्था पर बुला करके कई प्रकार से बीमारियां जो चल रही हैं कई प्रकार की उनके बारे में जानकारी दी है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी बट हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू, मैं रीड इंडिया का धन्यवाद करती हूँ।
1: मेरा नाम सरोज सुमन है, मैं खाकरा की रहने वाली हूँ। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें दीदी ने बताया कि हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और कैसे हमें बीमारियों से लड़ना है और कोरोना के बारे में भी बताया और हमें ब्लड प्रेशर हाई व लो के बारे में बताया। कोरोना काल में हमें किस प्रकार से अपनी सावधानी बरतनी है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, इस प्रकार हमें बताया। इससे हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है और हमने गांव में जो लोग जानते नहीं थे उन्हें जाकर घर घर जाकर उन्हें बताया समझाया किस प्रकार हमें रहना है। धन्यवाद।
2: मेरा नाम मीना पांचाल है, मैं खाकरा गांव से रहने वाली हूँ। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है। इसमें दीदी ने कोरोना के बारे में जानकारी दी है, कोरोना काल में कैसे हमें अपना सावधानियां रखनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बारे में बताया दीदी ने। और हमें ब्लड प्रेशर में बीपी लो हाई कैसे चेक करना चाहिए उसके बारे में, पल्स रेट के बारे में भी बताया कि हमें कैसे नापनी चाहिए, पल्स रेट का पता कैसे लगता है वो बताया। और उन्होंने पानी से होने वाली बीमारियां, हवा से होने वाली बीमारियां, घर की सफाई आदि के बारे में हमें बताया है। शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद।
3: हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशी ठाकुर है, विलेज कांकरा राजस्थान से हूँ। मैंने रीन इंडिया के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है जो डॉक्टर निधि गुलाटी द्वारा ली गई थी। निधि गुलाटी मैम ने हमें सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्या होता है और कम्युनिटी से कैसे जुड़ना होता है इसके बारे में हमें बताया। साथ ही मैम ने हमें कोरोना काल में स्टे होम स्टे सेफ के बारे में बताया। फिर मैम ने हमें हाउ टू हैंड वॉश के बारे में बताया और फर्स्ट एड इसके हमें अच्छे से डिटेल्स में समझाया और हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया और अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ाए। शारीरिक क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग के बारे में हमें डिटेल में समझाया और ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें पल्स कैसे चेक करते हैं इसके बारे में समझाया। मैम ने हमें अच्छे से बताया कि हमें 2 फिंगर्स को थंब के नीचे रखकर कैसे हमारी 1 मिनट तक हमें हमारी पल्स चेक करनी चाहिए। साथ ही अपना बीपी बढ़ने पर हमें ज़रूरी पल्स चेक कराने के बाद ही अपना बीपी के बारे में श्योर होना चाहिए और नॉर्मल बीपी कितना होता है, हाई बीपी कितना होता है इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने हमारे बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया और बॉडी टेम्परेचर हमारा 2 तरीके से नापे जाता है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट से। इसके बारे में हमें मैम ने बहुत डिटेल से बताया और इसके बाद मैम ने हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब होता है। मैम ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर हमें 1 मिनट तक चेक करवाना चाहिए और हमारा दिल 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। साथ ही वर्कआउट या कॉफ़ी टी पीने पर हमारा ब्लड प्रेशर हमें नहीं चेक कराना चाहिए क्योंकि ये एज यूजली सही नहीं आएगा, ये गलत ही आएगा। और साथ ही हमें बताया कि ब्लड प्रेशर 2 तरीकों का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही मैम ने हमें बताया कि ग्रामीणों में नॉर्मल क्या क्या बीमारियां होती है और उनके बारे में डिटेल से समझाया, जैसे टीवी, शुगर, पीलिया, चिकन पॉक्स, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, ऐसी कैंसर जैसी और भी कई बीमारियों के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, लीवर, किडनी, इसके बारे में मैम ने हमें बताया। साथ ही हमारी बोन्स किस तरह से काम करती है और ये कैसे हमारी बॉडी में जुड़ी हुई है और भी काफ़ी सारी जानकारी मैम ने हमें डीपली समझाई और ये बहुत ही अच्छी जनरेशन अच्छे से मैम ने हमें समझाया। एंड थैंक यू वेरी मच हमें इतनी सारी डिटेल्स।
0: मैंने

0: हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हमें टैली के बारे में पहले कुछ भी मालूम नहीं था कि टैली क्या होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई सूचना मतलब कोई जानकारी नहीं थी हमें। लेकिन उस ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है और हमने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने बीए कर रखी है, और जैसे कि इसमें लागत मूल्य के बारे में सिखाया गया, लागत मूल्य वह होता है जिसमें कोई माल अथवा सेवा ऐसे जो करे वह प्राप्त किया जाता है, उसको लागत मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य वह होता है वसूली मूल्य जिसे बाजार में कोई चीज या कोई संपत्ति को बेचकर जो राशि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, उसको वसूली मूल्य कहा जाता है। और जैसे कि संपत्तियां के बारे में बताया गया था, संपत्ति तीन चार प्रकार की होती है, जैसे कि चल अचल द्रश्य अदृश्य। द्रश्य संपत्ति वह होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो द्रश्य संपत्ति होती है। अदृश्य संपत्ति उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एहसास नहीं कर सकते, तो वह अदृश्य संपत्ति होती है। बहुत सारी चीजें की जानकारी दी गई मैम ने, और बाद में हमें सभी प्रकार के जो अकाउंट होते हैं उनकी एंट्री करना सिखाया है मैम ने।
1: हेलो, मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं बारा जिले के मुसिन माता गांव की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते ना तो कोई कहीं जा सकता है और ना ही कहीं से आ सकता है, तो इस माहौल में रीड इंडिया के द्वारा डेली हमें जूम ऐप पर घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई, और उसमें हमें खाता खोलने के बारे में, लेन देन के बारे में, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया। और मान लो जैसे कोई बिजनेस करना हो या फिर दुकान खोलनी हो तो उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं, और साथ ही ये भी बताया गया कि डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और भी टेली के बारे में जैसे हमें पहले कुछ नहीं आता था और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर हमसे पहले जो लड़कियां थी उन्होंने इसके बारे में सीखा और हमें इसके बारे में बताया विस्तार से सब कुछ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप की परचेज कैसे करते हैं, माल खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, और लेन देन के बारे में बताया और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमें बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और हमने उनसे क्वेश्चन भी किए और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें सब कुछ बताया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रीड इंडिया को, टेली को और मैम्स को, जिन्होंने हमें घर बैठे ही कोरोना काल में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई। थैंक यू।
2: हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते और रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा है और बारा जिले के पास ही के गांव की मैं रहने वाली हूँ, समरानिया से। रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद इसलिए क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में टेली की ट्रेनिंग घर पर ले पाना बहुत मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन फिर भी हमने टेली की ट्रेनिंग करी रीड इंडिया की तरफ से, जो कि बहुत अच्छे से कर पाए हम लोग। इतना सब कुछ सीखने को मिला हमें घर रहकर, कैसे क्या खरीदना है, कैसे क्या बेचना है, क्रय विक्रय परचेज करना, लेन देन कैसे करना चाहिए, कैसा क्या देखना चाहिए, जो कि हम पहले नहीं सीख पाए थे। मैंने बहुत कोशिश करी थी सीखने की लेकिन मैं नहीं सीख पाई थी, लेकिन इसमें रीड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनर थे हमारे मैडम, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सिखाया, जो हम भूल जाते थे वो भी बार बार उन्होंने हमें बताया। उनकी मदद से हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए, पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। मैडम सर सभी ने बहुत अच्छे से सिखाया, ट्रेड इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूछे सवाल, जिनके ट्यूशन जो कि हम नहीं कर पाते थे, वो ट्यूशन उन्होंने पूछकर हमारी कमियां भी दूर करी हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली है।
3: हेलो, मेरा नाम मुस्कान मनर्जी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ। और मैंने जब रीड इंडिया के बारे में सुना, मेरे पापा ने आके मुझसे बोला कि वहाँ पर रीड इंडिया की ट्रेनिंग हो रही है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आके मैंने फॉर्म भरा और एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद मुझे पहले से कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी थी, फिर भी मैंने यहाँ पे फोटोशॉप और भी कई चीज़ें सीखी है। सीखने के बाद मैं यहाँ से लैपटॉप लेके गई थी। मुझे बोला गया कि यहाँ से लैपटॉप ले जाओ, और तुम और भी बच्चे, रिश्तेदार, तुम्हारी मम्मी, इनकी जो भी महिलाएं हैं उनको तुम सिखाओ। तो मैं यहाँ से ले गई और उनको मैंने सिखाया। मैंने भी उनको वही सिखाया जो मैंने सीखा था, जैसे कि यहाँ से फोटोशॉप के अंदर जैसे फिल्टर, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर करना, उसके बाद वो शरीर को अलग करने करके वहाँ पे चेहरा लगाना, ये सब मैंने सीखा था। जो जो मैंने वो सब अपने बच्चों को, इनके अपने स्टूडेंट को मैंने सिखा दिया।
4: हेलो नमस्कार रेड इंडिया वाले, मैं मंजू हूँ। मैं गांव परानिया की रहने वाली हूँ और मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ। मैं महिला समूह की सदस्य हूँ और मैं राजविका से जुड़ी हुई हूँ। हमें पता चला है कि ये रेड इंडिया वाले फ्री में कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना सिखा रहे हैं महिलाओं को, लड़कियों को। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर कुछ सीखा है, हमने जानकारी ली है यहाँ पर, हमने यहाँ पर फोटोशॉप वगैरह सीखा है हमें। और मुझे राजीविका वालों ने CSC ID बनाकर दे दी है, तो हम मैं पैसे की लेन देन कर रही हूँ। थैंक यू रेड इंडिया।
5: रेड इंडिया माध्यम से मैं जुड़ी हुई थी और ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था, जो उसमें मुझे बहुत जानकारी मिली है, जैसे कि मोबाइल के बारे में, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, और बैंक का जो है, जो उसमें खाता नंबर, आधार कार्ड का नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, उसमें नुकसान हमको ही होगा, इसलिए इसका जानकारी हमको मिला है। हम पहले से, मान लो किसी ने फोन कर दिया कि जे तुम्हारा मोबाइल में इतना पैसा है, लॉटरी लग गया, तुमको जो नंबर दे दो बैंक का या आधार कार्ड का नंबर, ऐसे नहीं देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जैसे मोबाइल में फोन आए कि तुम्हारा फोटो भेजो या कुछ और भी भेजो, नहीं भेजना चाहिए, उसमें हमारा ही खराब होगा, इसलिए हम नहीं भेजते हैं, हम इसमें सतर्क रहते हैं। और भी है बहुत सारे, जो अभी मीटिंग में हम मिला हुए थे जो ट्रेनिंग में, जो उसमें भी हम बढ़िया तरह से सीख गए। और मोबाइल में ऐसा करना चाहिए, उसमें स्टोर पासपोर्ट लगाना चाहिए, जो कोई लेके छेड़छाड़ी ना करे, और कहीं पे भी जाओ फिर भी नेट नेट मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत खांसी भी आए, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कम करो और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखो। ट्रेनिंग से हमें बहुत सारी जानकारी मिला है, जो इसलिए आप सबको धन्यवाद।
6: नमस्ते, मेरा नाम काजल बाला, गांव नाटे से। मैं रीड इंडिया संस्था साइबर सेफ्टी से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें हमारे जैसे पर्सनल नंबर, मैसेज, OTP, ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग नहीं करनी चाहिए। हमें बैंक संबंधी ऐसे कोई मैसेज आए उस पर हमें क्लिक नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिले, जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। और इसके अंतर्गत हम जैसे शॉपिंग करते हैं, उसके लिए अलग अलग वेबसाइट का हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए जो हमें पता ना हो, और ना ही हमें इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ जानकारी ऐसी, मतलब जो ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ की जानकारी भी नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ हमने इस संस्था में सीखी है, और ये खुद मैंने भी, मतलब ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, और मैं इसके बारे में जैसे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड सभी को मैं इसके बारे में जागरूक करूँगी कि कैसे सेव रखा जा सकता है हमारे बैंक अकाउंट, हमारी OTP, ये सब मैं उनको भी इस सब करके जागरूक करवाऊंगी।
7: मेरा नाम अंकिता बंसल है, मैं भवरगढ़ 12 राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन में अभी तक BSC किया है, मैंने रीड इंडिया से साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग ली है। इस ट्रेनिंग में मुझे साइबर क्राइम से कैसे बचे के बारे में बताया गया था और हम किस तरह से अपने मोबाइल के डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में बताया था। हम जैसे कि हमें किसी भी फर्जी ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिनमें होता है कि तुम इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें वाउचर मिलेगा, कोई गिफ्ट फ्री मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ फर्जी होता है। वो कुछ हैकर्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों के द्वारा बनाई गई साइट होती है जो कि आपके फोन में आपके डाटा को चुरा सकती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उनके पास पहुंचा के वो आपको एक साइबर क्राइम के थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपसे किसी भी तरह का कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपको कोई भी लिंक या फिर ईमेल जो भी है उन्हें नहीं खोलना चाहिए। ये लिंक्स कभी कभी हमारे फोन में एंटीवायरस भी ला देते हैं। इसके अलावा जो हमारा पासवर्ड होता है वो लंबी डिजिट का होना चाहिए, लाइक तुम्हारा नाम हमें भी छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। उसमें हैशटैग, @ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए ताकि कोई उन्हें हैक ना कर सके। और इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के सभी जो भी एप्स होते हैं उनमें प्राइवेसी रखनी चाहिए ताकि आपके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चले। इस तरह से हम हमारे मोबाइल डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू।
8: राठौरे, मैं बबरगढ़ की रहने वाली हूँ और रीड इंडिया से हमें होम मेकिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी गई थी और इस पे हम घर पर बैठकर इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और इससे हमें रीड इंडिया पर हमें बॉडी बैग्स और बॉडी बटर ये चीज़ें हमको सिखाई गई थी और इनमें वो शहद, घी और वो ग्रीसलीन और डिबाम ये चीज़ों से हमने वो प्रोडक्ट बनाया था। इसको पैकिंग किया था और इसको तीन तरीके से हमने पैकिंग किया था, लिपस्टिक के शेप में और डिब्बी में और वो पोटली वाले में और रीड इंडिया में। यह सब चीज़ हमको रिया दीदी ने सिखाया था और इसमें मीना दीदी भी की और हम 8-10 लड़कियों ने ये चीज़ सीखी थी। थैंक यू रीड इंडिया।
9: मेरा नाम लीना यादव है, ग्राम हरिद्वार पोस्ट बोयल तहसील सावर डिस्ट्रिक्ट 12 से बिलोंग करती हूँ। मैंने रीड इंडिया ऑनलाइन सेलिंग से ट्रेनिंग ली थी जिसमें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करना, प्रोडक्ट सेलिंग करना, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया था। हमको प्रोडक्ट कैसे सेल करना चाहिए ये हमें आना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे शेयर कर सकते हैं, इन सब चीजों को लेके हमको उस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। जैसा कि हमको सीखने को मिला, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई सारे वेबसाइटें होती हैं जिनसे हमको ये सब कुछ शेयर करना होता है। फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर डालकर हम उसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी जानी मानी वेबसाइट से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अनजानी वेबसाइटों से ऑनलाइन शॉपिंग ना करें और सार्वजनिक वाईफाई से बचें। और भी कई सारी चीजें थी उसमें, पेज बनाना, ये सब कुछ था उसी में। और अपना ऑनलाइन, अपना मोबाइल, लैपटॉप वगैरह सब अप टू डेट रखें और OTP वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। ये कई सारी चीजें हम लोगों को उसी के अंतर्गत सीखने को मिली। मैं बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन सेलिंग के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारियां मिली हैं। थैंक यू।
10: मेरा नाम जया बंसल है और मैंने रीड इंडिया से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा है। इसमें मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब पर किस तरह से मार्केटिंग की जाती है वो सब सीखी है और फेसबुक पर पेज बना कैसे बनाया जाता है ये सब सीखा है, किस तरह से फेसबुक पर मार्केटिंग की जाती है और व्हाट्सएप पर किस तरह से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, किस तरह से सेलिंग की जाती है और इस तरह से। और मैं करती भी हूँ, प्रोडक्ट्स डालती भी हूँ, इससे मेरी इनकम भी बढ़ी है और इस तरह से मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू रीड इंडिया।
11: मेरा नाम सुनीता, मैं ग्रेटर नोएडा से आती हूँ। मैंने सीखा है यहाँ पे तुड़पाई करना सीख लिया, प्लाजो बनाना सीख लिया और पेंटिंग बनाने से लिए पेंटिंग ये बना ली मैंने और अब वो बना के आई हमारे वाले बाद वो प्लाजो।
12: अभी जो यहाँ पे रीड के माध्यम से राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो भी उसमें भी आप थे?
11: हाँ दो, मैं दो बार ले गई थी।
12: दो बार आप लेके गए?
13: मेरा नाम मीसा सिंह गौतम है और मैं तुगलपुर की रहने वाली हूँ और यहाँ मैं सिलाई मशीन सीखना चाहती थी पर वहाँ कहीं दुकान वकान भी नहीं थी। अब ये तो बहुत महंगे होंगे उसमें सिखाते थे। आसपास की लड़कियाँ सिलाई मशीन सीखने के लिए जाती थी और मैंने उनसे पूछा भी कि आप कहाँ जाती है तो उन्होंने बताया कि एक केंद्र खुला पड़ा है बिनटेक केंद्र, तो मैं भी उनके साथ जाने लगी यहाँ से सीखने लगी और मुझे आता भी कुछ नहीं था। मैंने तुरपाई से स्टार्ट किया था और मुझे अब सूट सलवार में बना लेती हूँ और यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अनजान इंसान मतलब अनजान जो लड़कियाँ बढ़ती आती हैं वहाँ कैसे रहा जाता है और कोई भी मतलब बुरा बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब सही है। जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ से हमें मतलब बहुत काम वाम मिल रहा था और मैं जब भी सीखने आती थी क्योंकि यहाँ मतलब बहुत कम उसने सिखाया था और हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि बाहर जाके क्या करना है। और यहाँ से मैंने अपनी एक मैंने सोचा है कि मैं जब यहाँ से पूरी मशीन सीख लूंगी जब मुझे वो डिप्लोमा मिल जाएगा तो मैं एक दुकान भी खोलूंगी अपनी जिसपे मैं औरों को भी सिखा सकूँ और अपना काम भी वो कर सकूँ।
14: नमस्ते आप सभी को, मेरी तरफ से मैं तनु सैफी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था और यहाँ सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि यहाँ मतलब बहुत अच्छे सिलाई सिखाते हैं और यहाँ सबकी केयर भी बहुत अच्छे से होती है, सबकी हैप्पीनेस का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीख ली बनाने में, कपड़े में बहुत सारे कपड़े सीख लिए जैसे सूट सलवार प्लाजो पैंट बहुत सारे।
12: खुद कटिंग कर लेती हूँ? पहले आपको कटिंग आती थी या पहले सिलाई आती थी?
14: कैंची भी चलाने नहीं आती थी।
12: कैंची भी चलाने नहीं आती थी? अच्छा, तो अभी सीखने के बाद आपका क्या है कि मैं क्या करना चाहती हूँ आप लाइफ में?
14: मैं ये दूसरों की हेल्प पहले तो,
12: हाँ,
14: और फिर अपनी छोटी से शॉप
12: बुटीक टाइप। अच्छा, बुटीक खोलना चाहती हैं आप यहाँ सीखने के बाद?
15: मेरा नाम गीता है और मैं यही पास के तुगलपुर गांव से आती हूँ। पहले मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती थी और लेडीजों के साथ, बहुत लेडीज पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी यहाँ और फिर पढ़ते पढ़ते एक साल सा हो गया। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे मुझे सिलाई का शौक था, थोड़ा थोड़ा घर में ही मतलब करती रहती थी और मैंने सीखा भी था कहीं थोड़ा बहुत। रीड इंडिया की तरफ से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे काम भी यहाँ रीड इंडिया की तरफ से ही मिला है। पहले घर में रहती थी ना, मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, ऐसे लगता था कहाँ कैद में रहती हूँ और यहाँ आके तो एक नई जिंदगी सी मिली है। बस यही है कि उन्होंने हमें काम दिया, यहाँ बच्चों के लिए सेंटर खोला और फ्री चल रहा है यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़े खुशी से आते हैं बच्चे। कौन सिखाता है, नहीं तो हजार हजार रुपए देते हैं मंथ के यहाँ पे, तो बच्चे गरीब बच्चे नहीं सीख पाते। बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो मतलब टाइम से पहले आ जाते हैं सीखने के लिए, मतलब उनको लगन है सीखने की।
12: लगन है सीखने की।
16: उनका फायदा मेरे गांव, मुझे कुछ लोगों से पता चला कि हमारे गांव में रीड इंडिया सेंटर है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कोर्सेज होते हैं जिनमें से कि मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में सीखा है। इसके बारे में पहले मुझे कुछ नहीं पता था बट अब बहुत कुछ पता है, मैं इसके बारे में सीख रही हूँ, सीख चुकी हूँ और जानकारियाँ मैं देती रहूंगी। और इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक इन सब पे कैसे हम ऑनलाइन सेविंग कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चल रहा है।
17: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूनम नाथ का जिन्होंने मुझे रीड इंडिया सेंटर से जुड़ने का मौका दिया। फिर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ महिपाल सर का जिन्होंने मुझे रीड इंडिया फैमिली का हिस्सा बनाया और उससे जोड़ा, सभी को जानने का एक मौका दिया। रीड इंडिया के बारे में मैं नहीं जानती थी बट जब यहाँ पे जुड़ी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और जो जो मैंने सीखा वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि फोटोज वगैरह, एडिटिंग वगैरह, वीडियोस, शॉर्ट्स फोटोज ये सब लेना मुझे नहीं मालूम था। जब मैं रेडियो सेंटर से जुड़ी मुझे मालूम हुआ, इन सब चीजों से मैं अनजान थी बट जुड़ी तो मैंने एडिटिंग सीखी, वॉइस स्किल। जरूरी नहीं कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारी वॉइस स्किल कैसी है ये मायने रखता है, हम कैसे बोलते हैं, कितना उतार चढ़ाव हमारी आवाज में है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, जरूरी ये है। जैसा कि अब वॉइस स्किल में मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ कितना ठहराव रखना है लेकिन जब महिपाल सर ने हमें इतना सब कुछ सिखाया, हमने सीखा भी और बहुत कुछ किया भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में हम सभी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। हम सभी ने आज से पहले ऐसा जीवन कभी नहीं देखा था, बट इस दौर में हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला। जैसे कि सब अपने घर में हैं, हम भी हैं, हम भी इस समय में हम खाली नहीं बैठे। रीड इंडिया सेंटर से हम लोग जुड़े, फिर हमने सीखा कि ऐसे दौर में हर इंसान जब घर में बैठता है तो हर इंसान बोर होता है, दम घुटने लगता है लोगों का घर में बैठ के। लेकिन इस दौर में हमने घर में बैठ के नहीं बल्कि हमने सीखा, ऑनलाइन क्लास ली, सर से हमने बहुत कुछ सीखा। अब जैसा कि हमने बहुत सारे एफएम रेडियोस को सुना होगा, बट हमने सुना ही था लेकिन कभी उन्हें करीब से नहीं जाना था। लेकिन रीड इंडिया सेंटर के जुड़ने के कारण हमने इसे करीब से जाना और उसे देखा और किया। और जैसा कि हम जानते लोगों की आवाजों को सुनते हैं पर ये नहीं जानते कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। जब हम इससे जुड़े तो हमने किया तो हमें पता चला कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम लोगों को सिर्फ वॉइस के थ्रू हम सुनते हैं बट कभी जाना नहीं। जब किया तो लगता है कि हाँ कितनी मुश्किल है ये चीजें। बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें जानकर। करने के बाद बहुत मतलब कि हमने किया तो बहुत एक्सपीरियंस मिला। अब जो मैं आपके सामने जो बोल पा रही हूँ ये सब महिपाल सर, पूनम मैम की, इन सभी की बदौलत है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बोलने का ला पा रही हूँ आप सभी के सामने। इससे पहले मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी, बोलने मेरी आवाज भी नहीं निकलती थी। इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद लेना चाहती हूँ और रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सब कुछ सीखने का मौका मिला।
18: हेलो, मेरा नाम तनु है, मैं शाहबाद में रीड इंडिया सेंटर से बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो और ऑडियो एडिटिंग का कोर्स किया है। पहले हमें नॉलेज थी बट इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी अभी हमारी डेवलप हो गई है। अभी हमें यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी स्किल सीखने को मिली है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब हम यहाँ से वीडियो खुद बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे आकर बहुत फ़ायदा हुआ है, सीखने को मिला है। थैंक यू।
19: मेरा नाम रितिका है, मैं 16 साल की हूँ और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर की हूँ। मैंने रीड इंडिया से एडिटिंग का कोर्स किया है। ये कोर्स करने के बाद मैंने इसको अपनी स्कूल लाइफ में यूज किया है। जितनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जितनी भी वीडियोस एडिटिंग होती हैं क्लास की, वो सब मैं ही करती हूँ। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। अब मैं कोई भी काम आसानी से कर लेती हूँ। हमारी स्कूल असेंबलीज होती हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सब मैं ही देखती हूँ एडिटिंग करने के लिए। और फ्यूचर में मैं इसको अपनी करियर में यूज करना चाहूंगी। थैंक यू।
20: मेरा नाम माया श्री है, मैं 32 साल की हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर द्वारका सेंटर से टैली का कोर्स कर रही हूँ। मुझे टैली के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ रीड इंडिया सेंटर पर आने के बाद टैली के बारे में मेरी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हुई है। इसलिए मैं अब अपनी नॉलेज को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आती हूँ।
21: मेरा नाम वंशिका जैन है, मैं 17 साल की हूँ। मैं यहाँ रीड इंडिया द्वारका सेंटर में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीख रही हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखा और मैं अपने फोटोज एडिटिंग आसानी से कर सकती हूँ। और मैंने पोस्टर डिजाइनिंग करना सीखा और पैम्पलेट्स बनाना सीखा और मैं इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर रही हूँ। और मैं अपना करियर ग्राफिक डिजाइनिंग में बनाना चाहती हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बनाना चाहती हूँ।
22: मेरा नाम उपासना है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर के बारे में अपनी एक फ्रेंड से सुना। यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स मैंने किया जहाँ पे मुझे सिखाया गया कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू अपना प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए वो भी सेफली। थैंक यू।
23: मेरा नाम रेशमा वर्मा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। जब पहले मैं यहाँ रीड इंडिया सेंटर में एडवांस्ड कोर्स कर रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी पर मेरे हाथ में सफाई नहीं थी और ना मुझे इतनी ज्यादा चीजें आती थी जो आजकल चल रही है। अब मेरे हाथ में सफाई भी आ गई है, जैसे जिप लगाना और चैन वगैरह लगाना, सब प्लाजो में जेब लगाना, इन सब चीजों में। और अब मैं मुझे यहाँ आके बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला है, जैसे पैंट, प्लाजो, फ्रॉक सूट, ये सब। और अब मैं बहुत खुश हूँ सीखने के बाद। मैं अपने सूट अपने आप सिलती हूँ और मैं अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हूँ कि मैं हमारी रीड इंडिया सेंटर से सिलाई सीखी है। और वहाँ के मैडम और बाकी स्टाफ सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं और बहुत अच्छे से। बताते हैं, चाहे कितनी बार भी पूछो बहुत अच्छे से बताते हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ, आगे जब मुझे कहीं जॉब मिलेगी तो मैं जॉब करूंगी, और नहीं तो मैं अपना घर बैठ के सिलाई भी करूंगी, अपने भी बाहर के भी, और आगे कभी फ्यूचर में मिला तो कहीं और अप्लाई जरूर करती रहूंगी, जहाँ नौकरी मिले वहाँ मैं करूंगी। धन्यवाद।
0: मेरा नाम गरमा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने डीडीडीएस सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, और मुझे पहले थोड़ा बहुत आता था, और अब यहाँ पे आने के बाद मुझे सब कुछ आ गया है लगभग। अभी बस फिनिशिंग थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहूंगी, जिसमें मेरे पास थोड़े बहुत पैसे या कुछ भी होगा, जिससे मैं अपना कुछ कर सकूंगी, अपना काम निकाल पाऊंगी और अपना कुछ करियर कर पाऊंगी। जॉब भी करना चाहूंगी, अगर मेरे को फैसिलिटी मिलेगी आगे चल के तो मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगी।
1: मेरा नाम अर्चना तिवारी है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर गांव में रहने वाली हूँ। मैंने रेड इंडिया से स्टिचिंग एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले मुझे फिनिशिंग नहीं आती थी, अब मैंने सब कुछ सूट वगैरह, गले की डिजाइन, बाजू, सब कुछ करना सीख लिया है। अब मैं खुद से अपना कुछ करना चाहती हूँ।
2: मेरा नाम बेबी श्वेता है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रेड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले भी मुझे सिलाई आती थी, लेकिन जब से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, जब से मेरे कपड़ों में और अच्छी फिनिशिंग आती है, मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने के लिए मिला, जैसे कि चोली कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, अम्ब्रेला कट बाजू, बोट नेक। और पहले मुझे गले की डिजाइन वगैरह, सूटों के डिजाइन, ये सब अच्छी तरीके से सिलना नहीं आता था। जब से मैंने ये एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छे से सिलना आता है, मेरे कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के कपड़े खुद ही सिलती हूँ। मेरे पास बाहर से भी कुछ कपड़े सिलने के लिए आते हैं, जिससे मेरी अपनी खुद की जरूरतें पूरी हो जाती है। इस एडवांस स्टिचिंग करने से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। थैंक यू।
3: मेरा नाम मंजू है, मेरी उम्र 28 साल है। रीड इंडिया से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी निजी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले मेरे पास स्टिचिंग के लिए कपड़े आते थे, लेकिन उनमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाती थी, लेकिन रीड इंडिया में आने के बाद मैंने फिनिशिंग के साथ साथ बहुत सारे नए नए डिज़ाइन बनाने सीखे। हाँ, मुझे नई नई डिज़ाइन सीखने को मिले जो मुझे पहले नहीं आते थे, लेकिन ये कोर्स करने के बाद मेरे पास बाहर से कपड़े सिलने के लिए भी आने लगे। रेड इंडिया में आने से पहले मुझे पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे दूसरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ और खुद ही अपना पैसे कमा सकती हूँ, और अब मैं बाहर से गारमेंट स्टिचिंग करके अपने इनकम पा रही हूँ। रेड इंडिया में आने के बाद मुझे बहुत खुशी और सफलता मिली है।
24: मेरा नाम मीनू है, मैंने रेड इंडिया सेंटर से ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। पहले मैं इतनी कैपेबल नहीं थी, जो मैं किसी के पास बोल नहीं पाती थी, बट मैं बोलती भी हूँ, और मैं एक रिसेप्शन की जॉब भी करती हूँ शाहबाद मोहम्मदपुर में। थैंक यू सो मच।
25: मेरा नाम किरण राजपूत है, मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ, और मैंने रेड इंडिया से मार्केटिंग ऑनलाइन का कोर्स किया था, जिसका बेनिफिट ये हुआ है मुझे कि मैं अपने जो काम मैं कर रही थी उसको मैं अच्छी तरह से और प्रेजेंट कर पाई हूँ, और मार्केटिंग स्केल को और अच्छे से समझ पाई हूँ कि किस तरह से हम लोग मार्केटिंग को ऑनलाइन के साथ क्रिएट कर सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से हम और ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के आगे प्रेजेंट करने में हमें मुझे आसानी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रीड इंडिया का, जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स चलाया, जिससे कि मुझे बहुत बहुत बेनिफिट फ़ायदा हुआ है। थैंक यू फॉर द रीड इंडिया।
26: हेलो, मेरा नाम आशु है, मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के बारे में मेरी फ्रेंड से पता लगा, मैं यहाँ आई, फिर मेरी सुमन मैम से बात हुई। सुमन मैम ने मुझे बताया यहाँ पर मैं पार्लर एंड सिलाई सेंटर का भी काम सिखाया जाता है। फिर मैंने हर्बल के प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैंने हर्बल के प्रोडक्ट में लिप स्क्रब, लिप बाम एंड बॉडी लोशन, फेस क्रीम और साबुन बनाना सीखा। मैंने उसको खुद घर पे यूज़ किया और मेरी फैमिली में भी यूज़ किया, उसके बहुत ही बेटर रिजल्ट आया। एंड थैंक यू सुमन मैम। मैम, थैंक यू रीड इंडिया सेंटर, थैंक यू सो मच।
4: नमस्कार, मेरा नाम सरिता सुबेदी, मैं शाहबाद के रहने वाली हूँ। मुझे अपने फ्रेंड से पता चला रीड इंडिया के बारे में। जैसे मैं वहाँ जाके पता करी तो वहाँ मुझे पता चला कि हर्बल प्रोडक्ट के अलावा वहाँ पर सिलाई, कंप्यूटर और पार्लर के कोर्स भी सिखाई जाती है। जैसे मैं सुमन मैम से मिली और सुमन मैम से जानकारी ली कि यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट बनाने सिखाई जाती है, तो मैंने ज्वाइनिंग किया और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से नेचुरल, बिल्कुल बिना केमिकल के प्रोडक्ट बनाना सिखाया, हर्बल प्रोडक्ट, जिसमें से बॉडी सोप, बॉडी वाटर, लिप बैम, लिप स्क्रब, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाना सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बॉडी लिप बाम, बॉडी स्क्रब एंड फेस क्रीम मैंने बनाया भी खुद और यूज किया, मेरे फैमिली को भी यूज कराया, सबको बहुत अच्छा लगा और सब ने मतलब बहुत तारीफ किया। इसीलिए थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रेड इंडिया इतने अच्छे प्रोडक्ट सिखाने के लिए, थैंक यू सो मच।
5: मेरा नाम सोनिया है और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना था तो मैं ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए पूछने गई तो मुझे वहाँ फीस बहुत महंगी बताई जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। तो मुझे किसी से रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं रीड इंडिया सेंटर में गई और मैंने वहाँ जाके मैम से पूछा कि मैम मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, तो मैम ने मुझे ब्यूटिशियन के कोर्स के बारे में बताया और साथ में वहाँ स्टिचिंग, कंप्यूटर और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है। तो मैंने वहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं ब्यूटिशियन का कोर्स करते करते और मुझे बेसिक पार्लर पूरा आ चुका है। तो मैं रीड इंडिया सेंटर को और सुमन मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिसके वजह से मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स पॉसिबल हुआ हो पाया है, क्योंकि महंगी फीस की वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया सेंटर।
6: हाय, माझं नाव सामी, मी जोगेश्वर आहे, माझं शिक्षण 11वीपर्यंत झालेलं आहे। मी रीड इंडियामध्ये 3 महिन्यामध्ये कोर्स करते, त्यामध्ये मी ब्लाऊज, साधा ब्लाऊज, कटोरी ब्लाऊज, परत प्रिन्स कटोरीवाला ब्लाऊज वगैरे सर्व शिकते।
7: हाय, मेरा नाम है रेशमा अब्दुलरऊफ जोगिनकर, मैंने 12वीं की हूँ साइंस से, गोरेगाँव से, और मैं 3 महीने से रीड इंडिया से कोर्स कर रही हूँ बेसिक पेलर कोर्स का, और उसके बाद मैंने उसमें सीखी हूँ झबला, बिनवाही का, सादी चड्डी, फैंसी बॉनेट, उसके बाद प्रिंस कटोरी ब्लाउज, फ्रॉक और पंजाबी सूट। थैंक यू।
8: हाय, माझे नाव अक्षत अशोक कांबळे, मी ऍग्रीकल्चर डिग्रीमध्ये डिग्री करत आहे आणि इथे खामगाव मंडी इंडियामध्ये मशीन शिवण क्लास करत आहे। त्याच्यामध्ये जे दररोजच्या लागण्यासाठी जे कपडे आहेत त्याच्यामध्ये शिकवलं जाते आणि इथे खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या, रेड इंडियामध्ये खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या मिळाल्या, त्यामुळे त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करते। थँक्यू।
9: नमस्कार, माझं नाव मनवा जीवन अडवीलकर, माझं शिक्षण पीवाय बीए मधून झालेलं आहे। मी इथे रेड इंडिया सेंटरमध्ये 3 महिन्यापासून कोर्स करत आहे। त्या कोर्समध्ये मी बिनबाईचा झबला, कटोरी ब्लाऊज, प्रिन्स कटोरी, साधा ब्लाऊज, ड्रेस हे सगळं शिकली आहे। थँक्यू रीड इंडिया।
10: माझं नाव नौशीन वजीर जोगिनकर, माझं शिक्षण 12वी, मी रीड इंडिया सेंटरमध्ये कोर्स केला आहे शिवण क्लास, 3 महिन्याचा कोर्स आहे, त्याच्यामध्ये बिनभाईचा झबला, चड्डी, सलवार कमीज, ब्लाऊज हे सर्व शिकवले गेलं आहे। हा कोर्स भेटण्यामधून तुमचे आम्ही आभारी आहोत।
27: थँक्यू। रीड इंडिया सेंटर से आपने कौन सी ट्रेनिंग ली?
28: कंप्यूटर की और पार्लर की।
27: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में बताएं।
28: ट्रेनिंग लेने से हमें ये फायदा हुआ है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, उससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं।
27: आप आगे क्या करना चाहती हैं?
28: कंप्यूटर ही कोचिंग देंगे और कंप्यूटर में स्कोप है, कंप्यूटर से ही जॉब करेंगे। यहाँ पर
27: आपका नाम क्या है?
28: स्वाति।
27: आपकी उम्र?
28: 24।
27: रीड इंडिया सेंटर से आपने कोई ट्रेनिंग ली?
28: यस, मैम हमने 2 ट्रेनिंग ली थी, पार्लर का और कंप्यूटर का।
27: तो आपने कंप्यूटर में क्या
28: नेटवर्किंग
27: बेसिक सीखा आपने। और पार्लर में?
28: पार्लर में मैंने कटिंग, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग।
27: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं?
28: कंप्यूटर सीखने के बाद घर पर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग कराते हैं कंप्यूटर के बारे में, उससे अच्छी खासी इनकम होती है।
27: और पार्लर का?
28: पार्लर में मैम बस साइड में चल रहा है।
27: अच्छा, जीवन के निर्णय और पारिवारिक निर्णय लेने की आपकी क्षमता में कोई सुधार हुआ?
28: यस मैम, पहले से ज्यादा इनकम होने लगी है, सैलरी बढ़ने लग गया।
27: गुड, आप आगे क्या करना चाहती हैं?
28: मैम पार्लर नहीं कर रहा है, पार्लर खोल रहे
27: हैं। अपना पार्लर खोल रहे हैं? अच्छा, तो पार्लर की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब आप चाहते हो अपना पार्लर?
11: माझे नाव आदिती संजय वाळणकर, माझ्या गटाचे नाव महालक्ष्मी गट, गाव विनेरे, आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड मेणबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटर मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवी उमेद मिळाली। रीड इंडिया सेंटर विनेरे व टाटर मॅडम यांचे आम्ही आभार मानतो।
12: जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे। आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटर मॅडमनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे सुद्धा मार्गदर्शन केले। मार्केटिंगचे आश्वासन मॅडमनी आम्हाला दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आम्हाला नवीन उमेद मिळाली आहे। त्यामुळे आम्ही टाटर मॅडम आणि रीड इंडिया संस्थेचे विनेरेकडून आभार मानत आहोत।
13: माझे नाव शर्मिला मंगेश विसापूरकर, माझ्या गटाचे नाव जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे। आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले। मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवीन उमेद मिळाली। या वतीने टाटरा मॅडम, रीड इंडिया व टाटरा मॅडम यांचे मी आभार मानतो।
14: माझे नाव श्वेता संतोष सकपाळ, वय 24 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरे येथून मी ग्राफिक डिझाईनचा कोर्स केला। यामध्ये मला फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझाईन आणि व्हिडिओ बनवायला शिकवलं। त्याचा आम्ही नक्कीच भविष्यात उपयोग करू व रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला जे फ्रीमध्ये कोर्स प्रोव्हाइड केले त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद।
15: माझं नाव श्वेता रोशन सप्पा, वय 29 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरेकडून आम्हाला ग्राफिक डिझायनिंगचा कोर्स शिकवण्यात आला। या कोर्समध्ये आम्ही फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझायनिंग आणि व्हिडिओ कशा बनवायचा हे शिकलो। या शिक्षणाचा उपयोग आम्ही भवितव्यात नक्कीच करू। रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला हा जो कोर्स फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केला त्याबद्दल त्यांचे मनापासून धन्यवाद।
16: मेरा नाम लक्षा है, मैं रीड इंडिया पडवाई सेंटर सिलाई सीखी है। मैं पडवाई में रहती हूँ और मैं इस सेंटर में आती जाती रहती हूँ। इस सेंटर से मैंने अच्छी सिलाई सीखी है, अपने घर के कपड़े सिलती हूँ और मोहल्ले के भी कपड़े सिलती हूँ। इस रीड इंडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। इस रीड इंडिया में सिलाई सीख कर और सिलाई करती हूँ मैं और कपड़े सिलती हूँ, उससे जो पैसा आता है मैं अपने कॉलेज की फीस करती हूँ, जमा करती हूँ।
17: मेरा नाम निशा है, मैं पढ़वाई रीड इंडिया से सिलाई सीखी है। मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और तरह तरह के डिजाइन के कपड़े सीना चाहती हूँ। और मेरा एक सपना ये है कि मैं एक सेंटर खोल सकूँ जिससे बच्चों को अच्छे से डिजाइन के कपड़े सिखा सकूँ। मेरे तरफ से सेंटर को धन्यवाद।
18: मेरी एज 21 है, मैं ब्लास्ट गेट पर रहती हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, मुझसे काफी कपड़े सिलाई के आ गए हैं, जैसे कि डिजाइनिंग कुर्ती, डिजाइनिंग पैंट लाजो, गरारा, फरारा, लहंगा, चोली वगैरह वगैरह काफी सिलाई आ चुकी है। और मेरे डिजाइनिंग मैं अपने डिजाइन खुद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना डिजाइन सिलाई करना। और मेरे डिजाइन सिलाई के लोग भी मतलब कहते हैं मेरे भी सीधे, इस वजह से मेरे मतलब काफी सिलाई आती है घर पर। और मैं सिलाई की वजह से अपने घर में काफी हेल्प कर सकती हूँ। और मैं पहले मतलब अभी कुछ नहीं कह सकती थी अपने बारे में, पर अब मैं सबसे कुछ भी कह सकती हूँ और मैं अपना खर्च खुद ही उठा सकती हूँ। पढ़ाई वगैरह का भी काफी कुछ अपने लिए कर सकती हूँ मैं। एडवांस सिलाई सीख के मुझे काफी लाभ हुआ है।
0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा है। मैं कलघर में घोसियान मोहल्ले में रहती हूँ। या कलघर सेंटर हर्बल कॉस्मेटिक का कोर्स कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। जैसे कि लिप बाम, बॉडी वैक्स, बॉडी बटर और वगैरह काफी कुछ सीखने मिला है और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं रेड इंडिया कलर सेंटर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम है और मेरी एज 18 इयर्स है और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर रेड इंडिया सेंटर आने से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ आने के लिए भी बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इनकम की प्रॉब्लम थी। मेरे पापा प्लम्बरिंग का काम करते हैं, मम्मी सिलाई करती हैं, तो मैं सोचती थी कि शायद मैं कुछ कर सकूँ अपने मम्मी पापा के लिए या अपने खुद के लिए, कि मैं अपना खुद खर्च अपना खुद लूँ, मम्मी पापा से नहीं लूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने खुद काम करूँ, खुद कुछ भी करके अपना खुद ही निकालूँ खुद भी। फिर मैंने मुझे यहाँ पर रेड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आई। मैंने यहाँ पर आके बेसिक सिलाई का भी कोर्स किया है और ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। इसके वजह से मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स और मेंटल हेल्थ का कोर्स है और ये सब लेने के बाद मेरा माइंड बहुत फ्री रहता है। पहले मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी और अब अच्छे से मैं सबसे बोल पाती हूँ, बात कर पाती हूँ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट जागा है, दूसरों के सामने बोलने का, कुछ करने का एक हिम्मत आई है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल। यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे, बहुत अच्छा लगता था यहाँ आके, और अब भी मैं पूरी कम्प्लीट फेस स्टिचिंग कर चुकी हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इससे मैं अपनी इनकम भी अच्छे से काम कर लेती हूँ और मैं अपने खर्च खुद निकालती हूँ, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और पहले मैं मेरी पढ़ाई रुक चुकी थी इस काम पैसों की वजह से ही और पापा की मजदूरी के काम की वजह से ही, मगर जब से मैंने अपना काम शुरू किया है या मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया है, उसके बाद मैं अपने खर्च और स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई खुद में करती हूँ, खुद अपना खर्च निकालती हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैंने अपने डिज़ाइन अपलोड किए और मैं उसको अब सेल करती हूँ इस पर। उससे मुझे बहुत अच्छी इनकम हो जाती है और अपने मैं इस वजह से अपने घर में भी पूरी हेल्प देती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई वगैरह भी खुद कर लेती हूँ। और मेरे रेड इंडिया सेंटर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है और मैं रेड इंडिया सेंटर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच रेड इंडिया सेंटर।

एवरीबॉडी इज वेलकम ऑन दिस सेशन। तो आज हम सेशन जो है, आप सबको पता है लीडरशिप पे ही मैं सेशन लेती हूँ। और सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी कि सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। एवरीबॉडी शुड एक्नॉलेज कि हाँ, मैं एक लीडर हूँ, किसी ना किसी रूप में मैं लीडर हूँ। तो ये सब एग्री करते हैं इस बात पे कि लीडरशिप तो है, हम उसको इनवोक करते हैं कि नहीं करते, वो हमारा डिफरेंट कंसर्न है, बट एवरीबॉडी हैज अ लीडरशिप क्वालिटी इन दैट। एग्री करते हैं आप सब मेरे से? तो चैट में थोड़ा यस लिख दीजिए या हैंड रेस कर दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, एवरीबॉडी एग्रीज दैट एवरीबॉडी हैज द लीडरशिप क्वालिटीज।

भी नहीं कर सकते। इंटेंशंस तो सब में होती है कि हमें लीडर बनना है, पर हम अनइंटेंशनली भी उसको इन्वोक नहीं कर सकते। इन्वोक मतलब कि उनको पहचानना, उनको रिकॉग्नाइज करना, और उनको एवरी टाइम वी हैव अ फीलिंग इन आवर माइंड, यस वी आर लीडर्स विद इन आवर सेल्स। सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स अलग अलग होती है। कोई बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है, कोई डरता है कि मैं बात बोलूं तो मेरी बात पता नहीं पहचानी जाएगी कि नहीं पहचानी जाएगी, शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं ठीक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो स्मिता उसके ऊपर लाइफ स्किल्स का सेशन लेती है, और वो कल इस बात को भी हाईलाइट करेगी कि हाउ कम्युनिकेशन स्किल हेल्प अस इन डेवलपिंग आर लीडरशिप स्टाइल, आर लीडरशिप विद इन आवर सेल्स। इफ वी हैव लीडरशिप, हाउ टू इन्वोक दैट थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट विच स्मिता विल हाईलाइट टुमारो। द सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जो कहना चाहते हैं अपने, जब हम लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। सबको पता है कि बातचीत के दौरान या कम्युनिकेशन के तीन प्रकार के हम यूज करते हैं टूल्स। एक तो हम वर्बली बोलते हैं, दूसरा हम लिख के बताते हैं, और तीसरा 80% ऑफ आर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो स्पीक्स अबाउट आर लीडरशिप क्वालिटीज। कि हम किसी के सामने अगर टिमिड बन के बैठ जाते हैं, टिमिड मीन्स कि हम अपने आप को कमजोर साबित करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम लाइक वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस फुली व्हाट वी वांट टू से, दैट इज द बॉडी लैंग्वेज। बट यस, रिटन एंड ओरल आर द टू टूल्स नॉर्मली वी यूज फॉर शोइंग आर लीडरशिप क्वालिटीज एंड ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। दो साइलेंटली ऑल्सो, जो बहुत सारे लोगों का ये भी विचार है और मैं भी सहमत करती हूँ उससे, कि साइलेंट कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट साइलेंट कम्युनिकेशन इज कन्वेड थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। सो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा बात, हम ये होते हैं सोचते हैं कि क्या हम ठीक है या गलत है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कि क्या मैं जो कम्युनिकेट कर रही हूँ, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ये एक्सपीरियंस से, पढ़ने से, सुनने से और अपने आप को एक्सपोजर देने से इन राइट सोसाइटी, मेरे वर्ड्स अंडरलाइन करिए, इन राइट सोसाइटी अगर हम बैठ के कुछ भी बात बोलते हैं या कुछ सुनते हैं या सीखते हैं, तो हमारे अंदर का जो लीडरशिप सैंक्टिटी है, मैं इसको सैंक्टिटी बोलती हूँ, मैं भी पहले ऐसे नहीं थी जो आज जो आपके सामने हूँ, तो इसलिए मैं बहुत क्लियरली आपको समझा पा रही हूँ कि लीडरशिप हर एक में होती है क्वालिटी, पर उसको उसको पॉलिश करना, उसके ऊपर जो धूल मिट्टी पड़ी है उसको हटाना और अपनी बाकी के स्किल्स को एनहांस करना ही हमें हेल्प करता है अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस करने में। तो एक तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो हम कॉन्फिडेंट हो कि हम राइट बोल रहे हैं, राइट वे में कन्वे कर रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज है वो भी ठीक है, और जो हम बोल रहे हैं जिसको हम कंटेंट बोलते हैं वो भी ठीक है। तो ये कैसे आता है? पढ़ने से, सुनने से, आंखों से देखने से, कानों से सुनने से, और सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, उसको जानने से हमारा कॉन्फिडेंस, हमें क्लैरिटी भी आती है, हमें करेज भी मिलता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जो थर्ड पॉइंट है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं।

0: लेते हैं, सब लेते हैं। सुबह उठते ही चाहे छोटा डिसीजन हो, और रात के सोने तक चाहे छोटा डिसीजन हो चाहे बड़ा डिसीजन हो, चाहे घर के बारे में हो चाहे समाज के बारे में हो, चाहे बच्चों के बारे में हो चाहे ऑफिस के बारे में हो, चाहे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में हो, या हम कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेते हैं। डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं पहले कि ठीक है या नहीं। वो प्रैक्टिस से हमें आता है, जब हम उसको एनालाइज करते हैं कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, और फिर हम डिसीजन अपना कन्वे करते हैं। और बहुत बारी हमें एक्सपीरियंस ये होता है कि हम डिसीजन शायद इमोशनली ले रहे हैं, या हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके डिसीजन ले रहे हैं। तो ये जो कश्मकश है हमारे दिल में, जो हम ये इसके बारे में सोचते रहते हैं, वो एक आर्ट है। उसको हमें प्रैक्टिस से ही आता है, और उसको हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ पीपल के साथ डील करते हैं, और हमारा डिसीजन डिपेंड करता है कि हम उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं, उसके रेपरकशंस क्या होंगे, उसको हम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन अपना कन्वे करें या नहीं करें। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, और अगर हम इनको ध्यान में नहीं रखते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने डिसीजन गलत भी ले सकते हैं। हम जब अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, कोई उसको एक्सेप्ट करता है, कोई उसको क्रिटिसाइज कर देता है, या कोई उसको डिस्कार्ड कर देता है। सिमिलरली मैं आज अगर सेशन ले रही हूँ, तो अगर यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, 29-30 लोग लाइन पे हैं, उनमें से हर कोई 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ये हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब भी मैं किसी को सोचती हूँ तो मैं एक कुछ हद तक, मे बी 90%, मे बी 80%, मे बी 70% मेरी एब्जॉर्प्शन लेवल होता है। क्यों होता है, ऐसे वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे बहुत डिपेंड करता है कि हम कितने अलर्ट हैं। हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है, शायद घर की टेंशन है, चाहे ऑफिस की टेंशन है, चाहे मैं आई रास्ते में मुझे बस नहीं टाइम से मिली, या मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, या मेरे बच्चे के स्कूल का कुछ है, या हस्बैंड के साथ कोई बात है, एनी रीजन जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है, वो हमारे एब्जॉर्प्शन लेवल को उसका असर होता है, राइट? तो हम तभी कहते हैं कि हमें अपनी सोच को उस हद तक ही एक्सटेंड करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए, कि हम उसका उसका असर हमारी दिनचर्या पे नहीं हो। प्रॉब्लम सबके साथ है, चैलेंजेस सबके साथ हैं, पर ये प्रैक्टिस के साथ आता है। अगर हमारे अंदर कुछ लीडरशिप की शक्तियां हैं, या कुछ लीडरशिप के भावना है अपने अंदर लीडरशिप को डेवलप करने की, तो विद प्रैक्टिस हम ये जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर, जो डे टू डे लाइफ में आते हैं, हम किसी हद तक उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हमें ये हमेशा ये लेसन हमें मिलता है कि हम अपने पास्ट को एनालाइज करें, अपने प्रेजेंट को उसी तरीके से एक्शन लें, और अपने फ्यूचर को एनविजन करें। ये लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, क्योंकि लीडरशिप थोड़ा हटके होता है, वो दिनचर्या के साथ, हम रोजमर्रा की जिंदगी के साथ उसको नहीं जोड़ सकते हैं। और मैं क्यों बार बार इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि हमें अपनी लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं, जो सो रही हैं, उनको जगाने की जरूरत है। मैं यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आज मैं आपको 10 E's की फिलॉसफी समझाऊंगी कि 10 E's क्या है। E मतलब कि कैपिटल E। एक तो हम बहुत ज्यादा, मैं जिस भी गांव में जाती हूँ, जिस सेंटर में जाती हूँ, हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं, और हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं किसी भी सिचुएशन के साथ। तो जब हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं तो हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम करते हैं। दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट कि अगर हम इमोशनली बह जाएंगे तो हमें अपने दिमाग से जो सोचना है वो शक्ति हमारी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना है। वी आर वर्किंग विद वुमेन फ्रॉम द पास्ट 2 डेज। आई वॉज ट्रेवलिंग, आई वॉज इन रामपुर, आई वॉज इन उधम सिंह नगर। आई मेट हंड्रेड्स ऑफ वुमेन जिनको मैं बार बार यही कहती हूँ कि देर इज अ नीड टू ड्रॉ अ बैलेंस बिटवीन इमोशंस एंड योर ब्रेन, दिमाग के साथ। तो ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर ये प्रैक्टिस से आता है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस के जो स्टेप्स हैं मैं आज आपको समझाऊंगी कि क्या स्टेप्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि ऑलवेज अगर कोई हमारे पास सेंटर में आ रही है कोई इशू लेके, अपना पर्सनल इशू है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और हम उसको सुनते नहीं हैं, हम अपना बिना सुने, बहुत 90% लोग क्या होते हैं, सुनने की क्षमता कम रखते हैं और अपना डिसीजन करने हम बहुत जल्दी करते हैं। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि हम बिना सोचे समझे, बिना सुने, बिना उसको एनालाइज करे हम अपनी बात पहले रखने की कोशिश करते हैं, और ये घर में भी होता है। हमें सिंपैथी से ज्यादा एम्पैथी अपनानी चाहिए। एम्पैथी मींस, एम्पैथी का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को उस सिचुएशन में रख के उस इंसान की प्रॉब्लम को रियलाइज करें। शायद आप उस प्रॉब्लम से ना गुजरे हो और दूसरा इंसान उस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, और वो उसके पास एक ही उम्मीद है कि मैं सेंटर में जाऊंगी, मैं अपनी टीचर से ये बात कहूंगी, या अपने पीयर ग्रुप में ये बात कहूंगी, या मैं अपने कोऑर्डिनेटर के सामने ये बात रखूंगी, और हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हम उनको टाइम नहीं दे पाते। पर हमेशा हमें उनकी सिचुएशन में अपने आप को रख के अगर हम वो प्रॉब्लम को एनालाइज करें, उस प्रॉब्लम को इमोशनली ना देख के, जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स हैं लीडरशिप की या लाइक किसी की सिचुएशन को समझने की, उसको सामने रख के अगर हम उसको हेल्प करें तो हम बहुत ही रियलिस्टिक वे में उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने दो चीजों को यहाँ पे एम्फेसाइज किया, जो भी मैंने अभी बोला है, कि इमोशंस को कंट्रोल में रख के और एम्पैथी के साथ अगर हम दूसरे की प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं और उसको हम ठीक ढंग की सलाह देते हैं, तो वो इंसान भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा और हमको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने किसी के लिए कुछ किया। तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? ठीक है, आगे चलो। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि वी शुड ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू ब्रेन बट वी कैन नॉट बी रथलेस। इसमें भी फर्क है। देखिए, एक तो मैं बोल रही हूँ कि आप 100% इमोशनली कोई डिसीजन कन्वे नहीं करें। दूसरा, मैं बोल रही हूँ कि आप अपने दिमाग का, ब्रेन का इस्तेमाल करके करें, उसको सोचें, उसकी सिचुएशन में अपने आप को रखें, बट हमें बहुत हार्श, बहुत रथलेस जो होते हैं, रथलेस मींस विदाउट, मैंने कम्युनिकेशन की पहले बात करी थी आपके साथ कि विदाउट विदाउट एनालाइजिंग व्हाट वी आर कन्वेइंग, हाउ वी आर कन्वेइंग, व्हाई वी आर सेइंग दिस, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट मैनेजर्स, वी आर लीडर्स। हम यहाँ पे लीडर्स की बात कर रहे हैं। मैनेजर तो ये बोलते ना कि मुझे नहीं पता तेरे घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इट्स योर कंसर्न, मुझे तो ये काम चाहिए चाहिए, मुझे आज ही करके दो, नहीं तो कल से जॉब पे नहीं आना। ऐसे कभी सेंटर्स में बात हुई है? नेवर एवर। मुझे नहीं पता कि आज तक हमने कभी इस लहजे में किसी से बात की है, हम कभी भी नहीं करते हैं। दैट इज द वन ऑफ द मेजर वैल्यू ऑफ रीड इंडिया विच वी पास ऑन टू आर कोऑर्डिनेटर्स, आर टीम, आर स्टेक होल्डर्स, एवरीबॉडी। एम आई राइट? तो रथलेस बिल्कुल नहीं होना। एम्पैथी इज द आंसर, पुटिंग योर सेल्फ इन टू देयर शूज एंड एनालाइज व्हाई शी इज सफरिंग, व्हाई शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम टुडे, और उसको पूरा टाइम देना है उसकी प्रॉब्लम सुनने का। और ये मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ। मैं जब भी सेंटर में जाती हूँ, कोई भी लेडी मेरे पास आती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको टाइम देती हूँ, उसकी बात सुनती हूँ। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें मैं नहीं जा पाई हूँ, जैसे बिहार के सेंटर्स हैं, मैं नहीं जा पाई। बैंगलोर का सेंटर है, कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाई। बागेपल्ली मैं पहले बहुत बार गई हूँ, आंध्रा भी गई हूँ, श्री सिटी भी गई हूँ, पर जितना फ्रिक्वेंटली मुझे जाना चाहिए उतना फ्रिक्वेंटली मैं नहीं ट्रेवल कर पाती हूँ। अर्लियर बिकॉज ऑफ द कोविड, एंड सेकेंडली अभी इतने सारे सेंटर्स बढ़ गए हैं कि वो ट्रैवल करना ही थोड़ा सा टफ हो जाता है। नाउ जब हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, तो हमारे हमें अपनी एक प्रैक्टिस ये भी शार्प करनी चाहिए कि हम उस सिचुएशन को एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें कि व्हाई दिस हैज हैपेंड टू हर। ऑल ऑफ सडन तो नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। उन रीजंस को हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम उनको एनालाइज नहीं करते हैं, हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं, और हम जल्दी से अपना डिसीजन लेके हम अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं। जब हम इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं, या अगर हम इस तरीके से दूसरों को सलाह देते हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट टर्म होता है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होता। हम उस प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके उस दिन के लिए अपना सोल्यूशन निकाल रहे हैं, पर वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हमें हमेशा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए अपने आप को। जितना हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम अपने आप को ये जो वेब है चैलेंजेस का, प्रॉब्लम्स का, डे टू डे लाइफ का, वेब का मतलब क्या होता है, जाला, उससे हम अपने आप को आस्ता आस्ता बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने चौथा ई यहाँ पे क्या बोला, इवैल्यूएट करना, उस सिचुएशन को परखना, उस सिचुएशन को जांचना। और ये हम अगर आदत डाल लेंगे अपने, तो ये हमारी एक रूटीन बन जाएगी कि व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, व्हाई आई एम एक्टिंग लाइक दिस, व्हाई व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट एक्शन आई एम टेकिंग। ये हमें आदत पड़ जाएगी, और कोई ना कोई नेचुरल फिनोमिना हमें आके स्टॉप करेगा कि लेट अस नॉट बी वेरी एग्रेसिव इन कन्वेइंग आवर डिसीजंस, इन यूजिंग द रथलेस लैंग्वेज, इन यूजिंग द वर्ड्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू से। तो ये हमें क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश भी करता है, और ये डे टू डे लाइफ में हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत असर करती है ये चीज। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिर अगर हमारे में लीडरशिप का स्पार्क है, तो हम उस दूसरे पर्सन जो हमारे पास आया है अपनी प्रॉब्लम को लेके, हम उसको एनेबल करते हैं कि अपनी सिचुएशंस को खुद ही एनालाइज करो। हम अपना डिसीजन उनपे नहीं थोपें, हम अपना ये नहीं कन्वे करें कि यस आप तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो अगर हम उनके उनके अंदर एक आदत डालते हैं कि हम उनको एनेबल करते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को खुद एनालाइज करो, और उनको बहुत ही हलीमी से हम उनको समझाते हैं, तो शायद हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद एनालाइज करे, खुद अपने जीवन में आगे बढ़े, और अपनी प्रॉब्लम्स को उलझाना की बजाय उनको रिजॉल्व करने की आदत डाले। नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस प्रोसेस से अगर हम चलते हैं, हम उसको एनेबल करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उनको एम्पावर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है, उसको किसी ना किसी तरीके से बातचीत करके, समझा के, उसको हेल्प करके, उस शक्ति को भी हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उसको एम्पावर भी कर रहे हैं। एम्पावर किसके लिए कर रहे हैं? जो सिचुएशन में वो फंसी हुई है, जो सिचुएशन से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उस सिचुएशन को एनालाइज करके कामली कंपोज मैनर में वो अपने सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढ रही है, और हम उसको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरिंग। हम भी ऐसे ही करते हैं। रीड इंडिया क्या करती है? एंगेज करती है, एनकरेज करती है, एम्पावर करती है, और आपको आगे बढ़ने का खुद ही आप अपना रास्ता ढूंढते हो। मैं खाली जो आप लोग करते हो उसी को आपके सामने रख रही हूँ, मैं कोई नई चीज आपके सामने नहीं रख रही हूँ, ठीक है? जब हम एम्पावर करते हैं, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इनकलकेटिंग दी हैबिट ऑफ टेकिंग राइट डिसीजंस फॉर राइट एक्शन एट राइट टाइम। आप तीन चीजों को नोट करिए कि जब आप उसको एम्पावर एनेबल कर रहे हो, उसको एम्पावर कर रहे हो, तो आप उसमें एक आदत इनकलकेट कर रहे हो। इनकलकेट का मतलब उसको एक आदत उसमें ये बहुत अच्छे से डाल रहे हो कि वो राइट डिसीजन ले, राइट एक्शन ले उस डिसीजन के ऊपर, और राइट टाइम पे ले, ठीक है? ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो वो कैसे आती हैं? जब हम पिछले जो पांच स्टेप्स मैंने बताए हैं उनपे हम रेगुलर प्रैक्टिस करने की आदत डालें, उसको रोज प्रैक्टिस करें, अपने दिनचर्या को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को उसके साथ हम जोड़ें। तो मैंने आपसे अभी तक जो बात की है वो इमोशंस की बात की है, एम्पैथी की बात की है, इवैल्यूएट करने की बात की है, एनेबलिंग करने की बात की है, एनकरेज करने की बात की है, और उनको एम्पावर करने की बात की है। तो ये पॉइंट्स आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं सबको मेल भी कर दूंगी, ठीक है? सो विथ दीज फाइव ईज यू आर एनेबलिंग द अदर पर्सन टू एनलाइटन हिज और हर ओन पाथ ऑफ ग्रोथ। तो उसको एक रोशनी की किरण मिलती है कि हाँ, अरे ये तो ठीक ही है, इन्होंने मुझे बताया कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकती हूँ, मुझे इन्होंने रास्ता दिखाया, डिसीजन मेरा है, उन्होंने खाली मुझे रास्ता दिखाया है कि आप इस रास्ते पे भी चल सकती हैं, सेकंड लेन में भी जा सकती हैं, थर्ड में भी जा सकती हैं, फोर्थ में भी जा सकती हैं। चॉइस आपकी है, क्योंकि आपने उसको डिस्कस किया है, उसको एनालाइज किया है, उसको इवैल्यूएट किया है, और आपने अपना राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम इसी बात को आगे लेके चलें, तो मैं ये कहूंगी कि इतना आसान नहीं है। चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जो कभी तो वो विजिबल हैं सरफेस पे, और कभी वो इनविजिबल भी हैं। विजिबल ये है कि हाँ, सामने सिचुएशन खड़ी है, सामने पहाड़ गिर गया है और मुझे सड़क पार करनी है, और जब तक मैं उस पहाड़ को, पत्थर को अपने रास्ते से नहीं निकालूंगी, नहीं आगे धकेलूंगी, तो मैं सड़क पार नहीं कर सकती। कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती हैं जो बिल्कुल इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, पर प्रॉब्लम्स तो हैं। उन प्रॉब्लम्स के लिए भी हमारे को रास्ता ढूंढना है। उन प्रॉब्लम से हम कैसे निकलेंगे, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ का व्हीकल आगे बढ़ाने के लिए। और वो कैसे बढ़ेगा, कि हमें अपने आप को सेल्फ एनकरेज भी करना है आगे बढ़ने के लिए। जब तक हम अपने आप को सेल्फ एनकरेज नहीं करेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे, और हम कहेंगे कि वी विल गिव अप, नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई कैन नॉट डू दिस, आई शुड नॉट डू दिस। जब ये थॉट्स हमारे माइंड में आने शुरू हो जाएंगे, तो हम वेवरिंग माइंड हो जाएगा हमारा, हम फिर भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो शुरू में मैंने क्या बोला, कि हम अपने आप को इमोशनली वीक करें, या हम अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को दिमाग से सोच के हम अपने आप को स्ट्रांग करें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। और उसको किसने करना है, आप लोगों ने करना है। कोई भी लीडर आपके दिमाग में घुस के आपकी सोच नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपके इमोशंस को नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपको उंगली पकड़ के चलाना नहीं सिखाएगा। लीडर खाली आपको रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलना किसने है, आपने चलना है। ठोकरें भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, इमोशनली वीकनेस भी आएगी, बट लीडरशिप सेज दैट यू हैव टू ब्रेक द बैरियर्स। ब्रेक द बैरियर्स मीन्स जो भी रास्ते में उलझने आ रही हैं, उनको सही दिमाग से, बहुत हलीमी से, पेशेंस से, परसिवरेंस से, उनके सॉल्यूशंस निकाल के आगे बढ़ना है। बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, बट बिकॉज हमारा माइंड इतना वेवरिंग होता है, हमारे पे इतने प्रेशर्स होते हैं माइंड पे, हम राइट डिसीजन एट राइट टाइम नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाते हैं। अनलेस वी हैव क्लैरिटी इन आर माइंड, वी कैन नॉट डेवलप द करेज फॉर शेपिंग आर ओन लाइफ टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। इज इट राइट? अगर हम हमेशा कंफ्यूज ही हैं, हमें क्लैरिटी नहीं है माइंड में, और क्लैरिटी प्रैक्टिस से आती है। अगर आप अपनी दो सिचुएशंस को एनालाइज करके उसका ठीक टाइम पे उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो आपकी क्लैरिटी अपने आप ही शार्प हो जाएगी। ये मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर अगर हम हमेशा रट में ही रहेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे, हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस भी नहीं आए। अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे अपने बारे में, दूसरों के बारे में, समाज के बारे में, कि मुझे समाज ने दिया क्या है, मेरे परिवार ने मुझे क्या दिया है, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, अगर हम ये क्वेश्चन मार्क की जिंदगी जिएंगे तो हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। हमें इस क्वेश्चन मार्क की जिंदगी से एफर्मेशन की जिंदगी में आना है कि हाँ ये चैलेंजेस हैं मेरे सामने, इन चैलेंजेस को मुझे रिजॉल्व करना है और इन चैलेंजेस की प्रायोरिटी भी आपने तय करनी है। कई बार हम क्या करते हैं, एक बहुत प्रायोरिटी सिचुएशन हमारे सामने है, हम उससे आंखें छुपा के हम दूसरी प्रायोरिटीज को रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हम लोग सब करते हैं इंक्लूडिंग मी। आज मैं ये सेशन आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं एक लाइफ सिचुएशन आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। पर हमें प्रायोरिटीज भी अपने आप ही तय करनी है कि ये 100% प्रायोरिटी है, ये 80% है, ये 60% है, ये 40%। ये हमारी दिनचर्या ऑफिस में भी यही होता है कि हम अपने पूरे 8 घंटे ऐसे ही पास कर देते हैं, हम मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजों को छोड़ के लेस प्रायोरिटी वाली चीजों के ऊपर फोकस कर देते हैं और मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजें हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं। उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है जो हम बाकी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ और इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। और अब हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने आप को एनकरेज भी किया और हमने अपनी लाइफ में एनविजन भी किया। जो मैंने आपको बोला था ना, मोस्टली स्टेटमेंट ये होती है कि यू लिव इन योर प्रेजेंट, राइट, इन अ मैनर दैट योर पास्ट गिव्स यू द हैप्पीनेस। आज का पल जो प्रेजेंट है वो पल अगले मोमेंट में वो पास्ट बन जाएगा, बनेगा। जब वो पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट को इस तरीके से जिया है कि आपका पास्ट आपको खुशी नहीं देगा तो आप दुख को ही लेकर आगे बढ़े। तो आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को यूज नहीं किया, आपने अपने प्रेजेंट को इस तरीके से नहीं जिया कि जब वो पास्ट बने तो आपको उसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, आपको उसमें खुशी मिले। और खुशी अगर हम खाली अपने लिए ढूंढेंगे तो बहुत छोटी सी खुशी होगी, वो एक बिंदु होगा। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि यू लिव योर प्रेजेंट इन अ मैनर, व्हेन इट बिकम्स पास्ट यू फील हैप्पी अबाउट दैट। ये बहुत 4 अक्षर की स्टेटमेंट है पर बहुत पावरफुल है। इस स्टेटमेंट को अगर हम इग्नोर करते हैं, इस स्टेटमेंट को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर तो कभी एनलाइटन फिर हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसमें तो पास्ट का भी इफेक्ट आएगा, प्रेजेंट का भी आएगा और वो हमारा फ्यूचर बनेगा। सो वी हैव टू एनालाइज व्हाट वी आर डूइंग। हम एक समाज में रहते हैं, हमें हमेशा अपने दुख का गाना नहीं गाना है। वी लिव इन अ सोसाइटी, वी कैन नॉट जस्ट सिंग आवर ओन सॉन्ग्स, चाहे हमारी दुख हो चाहे हमारी खुशी हो। वी ऑल्सो हैव टू लेंड आवर इयर्स टू लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ अदर्स। हमें अपने कान जरूर दूसरों के लिए रखने हैं कि हम उनका भी गाना सुन सके, चाहे वो दुख सैड सॉन्ग हो, चाहे वो खुशी का सॉन्ग हो, चाहे वो स्ट्रगल्स का सॉन्ग हो, चाहे वो ग्लोरी का सॉन्ग हो। हमें दूसरों को भी स्पेस देनी चाहिए उनके बारे में सुनने की, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में। वी जस्ट रिएक्ट दूसरे इंसान की बात ही खत्म नहीं होती है और हमारा सोचने का स्केल इतना हाई हो जाता है, वो हमें रिएक्ट करने के लिए इतना मजबूर कर देता है कि दूसरे इंसान की बात वो किस लहजे में कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या चीज उसको अंदर से प्रोत्साहित कर रही है ये बात कहने की, हम बिल्कुल उसके ऊपर क्रॉस मार देते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये जो जर्नी है ये लाइफ की हमारे हाथ में है, अब हमने डिसाइड करना है कि हम किस रास्ते पे चलें, कौन सा रास्ता अपनाएं और अपनी लाइफ की डायरेक्शन हम कौन सी रखें। वी शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन आर अचीवमेंट्स एंड कीप ऑन रिड्यूसिंग द लिस्ट ऑफ चैलेंजेस, ये हमारा मिशन होना चाहिए। ये आसान नहीं है, प्रैक्टिस से आता है। जितना हम दूसरों की मदद करेंगे उतना जो सुपर पावर है वो हमारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर हम अपना ही दुख को इतना बड़ा और इतना इतना एनहेंस कर देंगे तो जो हमारी क्षमता है दूसरों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की वो खत्म हो जाएगी। तो इस बात को भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर हम ये आदत डाल लेते हैं, आप अगर मैं कल भी परसों रामपुर में मैं लड़कियों को बोलकर आई थी कि आप अपनी एक डायरी बनाएं और जो भी अच्छी चीज आपने सीखी, आपने समझी और आपने करी उसको अपनी डायरी में लिखें, और मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी मैं वो डायरी देखना चाहूंगी। एंड दैट डायरी इज ए बाइबल फॉर यू, दैट डायरी इज ए कुरान फॉर यू, बिकॉज हमें स्पिरिचुअल बुक्स भी क्या कहती हैं, हम अपने आप को सुधारें, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, हम अपना सुख भी लोगों के साथ बांटे, खाली दुख नहीं बांटे, और दूसरों के दुख में शामिल होके उनके चैलेंजेस में शामिल होके उनको भी हेल्प करें उसमें से बाहर आने की। यही कहते हैं हमारी स्पिरिचुअल होली बुक्स। और अगर हम अपनी एक होली बुक लिखना शुरू कर दें तो कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा आपका, जब एक साल के बाद आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कितनी अच्छाइयां हैं, है ना, कितना अच्छा लगेगा आपको वो पढ़ के। तो आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ये आपको हेल्प करेगा जब आप पेपर पे लिखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा अपने अंदर की नेगेटिविटी को भगाने के लिए और पॉजिटिव चीजों को इनवाइट करने के लिए। जो आपकी नेगेटिव चीजें हैं वो आपसे आस्ता आस्ता दूर जाना शुरू कर देंगी और पॉजिटिव चीजें आपके आसपास रहेंगी और आपको हमेशा एक सुकून मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, एक आत्मविश्वास मिलेगा जिससे आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। बस मैं आज इतना ही कहना चाह रही थी। अगर किसी के कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहता हो तो हमारे पास 10 मिनट हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो मैंने इतने सारे ईज की आपके साथ आज बात करी है वो मैं शिवानी को दे दूंगी या मैं इसी मेल पे लिख दूंगी सबको। मैंने बात करी है इमोशंस की, एम्पैथी की, इवैल्यूएशन की, एनकरेजमेंट की, एम्पावरमेंट की, एनेबलमेंट की, एनलाइटनमेंट की, एनविजन करने की, लाइफ्स को एनरिच करने की, और लास्टली जब आप अपनी डायरी लिखना शुरू करेंगे तो आप एम्फेसाइज करेंगे दूसरों के सामने में कि इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू, बिकॉज यू हैव जस्टिफिकेशन, यू हैव प्रूफ विद यू दैट यू हैव डन दिस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई कोई कमेंट और कोई शेयर करना चाहता है कुछ तो प्लेटफॉर्म आपके पास है, हमारे पास 10 मिनट हैं और हम 10 मिनट में फिर इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच, हमें इनक्रेज करने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।
2: मैं सुवर्णा बोल रही हूँ मैम, पूना सेंटर से। बहुत अच्छा सेशन लिया मैम आपने, जैसा मोटिवेट किया, मतलब हम भी आपके सेशन से हम भी बहुत अच्छा मतलब स्ट्रांग बन जाते हैं आपका सेशन अगर सुना तो।
0: बहुत अच्छी बात है। और एक पॉइंट आप एक वर्ड शेयर कर दीजिए सबके साथ, जिस जो वर्ड ने आपको मोटिवेट किया है।
2: इमोशनली हम भी स्ट्रांग बन जाते हैं मैम आपका सेशन अगर सुना ना।
0: हाँ, वेरी
2: यस
0: गुड
2: मैम,
0: वेरी
2: थैंक यू मैम।
0: गुड।
3: मैम अंजुल द्वारका सेंटर से।
0: हाँ जी अंजू,
3: आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम, आपका लीडरशिप की क्वालिटी जो आपने बताई है।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस। प्रैक्टिस करिए उसको, स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन सरपास एवरीबॉडी।
3: जी मैम,
0: ये बहुत जरूरी है, इसको खाली सुनने से तो समझ में आता है, पर प्रैक्टिस करने से और भी ज्यादा अच्छे से। थैंक
3: थैंक यू मैम।
0: यू, थैंक यू अंजू।
4: मैम इस पे चलने के लिए भी हमें पावर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे जरूर इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि बहुत कुछ है जिसपे प्रैक्टिस करना है। ऐसा लगता है चीज टूट जाती है, कुछ चलती रहती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि इसके बाद हमें लगता है कि हमें किस किस जगह चीज को इम्प्लीमेंट करना है। इससे हमें पता चलता है कि हमें अभी और क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है।
0: बिल्कुल
4: एग्जाम
0: बिल्कुल,
4: जी मैम,
0: पहले अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाना है, फिर दूसरों की लाइफ को भी स्ट्रांग बनाना है। दोनों
4: जी मैम, जी मैम,
0: चीजों का दारोमदार आपके कंधों पे है।
4: जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम।
5: गुड आफ्टरनून मैम, फरहा बोल रही हूँ रामपुर से।
0: फरा कैसी हो आप?
5: ठीक है मैम।
0: बिल्कुल
5: आपने बताया कि हमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है करना, कभी भी अगर हम सेंटर पे बेनिफिशियरीज को सिखाते हैं तो यही नहीं होना चाहिए कि उसका एडमिशन किया और सिर्फ हमारा मतलब है उसको सिखाने से कि आज उसने क्या सीखा, कल क्या सीखा, वो क्या सीख रहा है, बट उसके साथ हमारा एक अंदर से बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए कि वो फैमिली में कैसा चल रहा है उसका, उसके अंदर की क्या प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर सके। अभी एक ही अभी मैंने लाइब्रेरी के सेशन में भी ये शेयर किया था और यहाँ भी शेयर करना चाहती हूँ। एक बेनिफिशियरी मेरे पास आ रही थी और वो आती थी, कंप्यूटर सीखती थी और चली जाती थी। काफी लड़कियां थी जो हंसती भी थी, बोलती भी थी, बट उसको किसी से कोई मतलब नहीं, आई और उसने सीखा और वो चली गई। तो मैंने नोट किया 15 दिन 20 दिन, एक दिन मैंने उसे याद करने के लिए कुछ दिया कि आपको ये याद करके लाना है, तो वो अगले दिन याद नहीं करके लाई और बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कि मैम आप हमें डांटेंगी। मैंने कहा आपने मतलब देखने से पहले ही सोच लिया कि हमें मैं डांटूंगी। मैंने कहा डांटूंगी नहीं, आप मुझे बताओ कि आप रो क्यों रही हो कि मैंने ये स्पेलिंग याद नहीं की। तो मैंने कहा आपने याद क्यों नहीं की कि वो मेरी ना मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने उससे ऐसी धीरे धीरे बात निकलवाई, मम्मी क्यों परेशान करती कि मेरी पापा ने दूसरी शादी कर ली, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और वो कहती है अब तुम्हें कहीं पढ़ने नहीं जाना है, घर का काम करना है और भैंसों को देखना है, दूध वूध बेचना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है और मुझे पढ़ना है मैम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी मम्मी से बात करने आऊंगी घर पे और उनको समझाऊंगी और आप सेंटर पर आओ, आपको जो सीखना है वो सीखो, बट ऐसे परेशान रहने से कुछ नहीं होगा, आपको भी बात करनी होगी खुद के लिए घर पर। तो उसको ये बात काफी समझ में आई, उसने अपने पाप मम्मी तो नहीं सुन रही थी उसकी बात, लेकिन उन्होंने अपने पापा से वो बात की और हम उसके गाँव गए, हमने उसकी मम्मी से जब फेस टू फेस बात की तो वो बहुत तेज किस्म की थी, वो यही बोल रही थी कि नहीं अब ये क्या करेगी पढ़ के, नहीं पढ़ना है, इसकी शादी करनी है हमें और ये है और वो, और वो जो उनकी सगी बेटी थी उनको पढ़ा रही थी। मतलब गाँव में ये होता है कि वहां पर सगा सौतेले का थोड़ा सा रखते हैं कि इनको नहीं करना है, तो वहां उनको हमने बहुत इनकरेज किया और बोला कि शादी से पहले अगर आप 1-2 महीने हमारे सेंटर पे भेज दो, पूरी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आप सीखने दो जो वो सीखने के लिए बोल रही है, आप फीस मत देना, आपको लगता है कि मेरी बेटी के लिए वहां फीस जा रही है और मैं नहीं दे सकती, आप फीस मत दीजिएगा लेकिन इसको भेजो क्योंकि ये सीखना चाहती है। तो वो उस चीज से बहुत खुश हुई और उसकी मम्मी ने ठीक है आधे पौन घंटे के लिए सेंटर पे भेजना शुरू किया। तो वो जो उसकी बातें दिमाग से थी और जो वो सोचती थी, डरती थी, वो टेंशन में रहती थी, तो वो धीरे धीरे दूर हुई। तो वो सारी चीजें आपने हमें बताई कि हमें कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है सेंटर पे, अगर हमारे पास एक एक बेनिफिशियरी आ रहा है तो हमें उससे हर एक बेनिफिशियरी से बात करना चाहिए, क्या पता हम अपनी बात समझा के उसको कुछ इनकरेज करें, उसकी लाइफ के लिए, क्या पता उसकी सोच चेंज करें, उसके जितने भी दिमाग में निगेटिव पॉइंट है उसको दूर करके उसको पॉजिटिव सोच में बदले। तो ये बात आपका ये पॉइंट हमेशा हम नोट भी करते हैं, करते भी आगे, और आज आपने जो बताया वो काफी हमारे लिए काम आता है। थैंक यू
0: फरा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैं सबको सबको ये बोलना चाहूंगी जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मैं परसों मैं कब थे हम फरा के सेशन में, ऑन ट्यूसडे राइट, ऑन ट्यूसडे मैं स्मिता टिम्पल मैम फरा और अकबर के सेशन में सेंटर में थे और इट वाज अमेज्ड। 50 से ऊपर लड़कियां थी जो इनके सेंटर में बैठी थी और सबने बुर्का पहना हुआ था। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, मेरी हालत एकदम खराब थी बिकॉज मुझे बहुत पसीना आता है वहां पे, तो आई वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। पर वो माहौल देख के ना मैं अपने आप को रोक पाई, ना स्मिता अपने आप को रोक पाई, ना डिम्पल अपने आप को रोक पाई, ना फर्रा रोक पाई और ना ही अकबर रोक पाया। हम पांचों ने इतना उन लोगों के साथ बातचीत की, इतना उन लोगों को समझाया, और वो ना वर्ड्स अपने आप आते हैं उनसे बात करने के लिए। एंड फर्रा, अकबर इज नॉट हियर टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे ऑनलाइन। आज आपका फेस्टिवल है पर फिर भी आप सेशन मिस नहीं कर रही हैं। और उस दिन मेरे सामने से वो आंखों के आगे से वो सीन ही नहीं जा रहा है कि इतनी सारी लड़कियां वहां पे हमें सुनने के लिए आई हुई थी और पीछे की लड़कियां स्टूल्स पे खड़े होके हमारी शक्ल देख के हमें सुनना चाह रही थी। दैट वॉज अमेजिंग फरा, यू आर अ रियल लीडर एंड यू आर वर्किंग इन द कम्युनिटी वेरी वेल।
5: ये सब आपसे ही सीखा है मैम, जो आप सिखाते हैं वो हम आगे करते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा उस दिन मुझे, डिम्पल ने अपने सेंटर के, स्मिता ने अपने एक्सपीरियंसेस, फरा ने अपने एक्सपीरियंसेस, जो मैं हमेशा फरा को कोट करती हूँ कि फरा को मैं जब फर्स्ट टाइम मिले थी तो दरवाजे की एक पार्टीशन थी, फरा उधर से बोल रही थी और मैं इधर से बोल रही थी। आज फरा सबके सामने इतनी कॉन्फिडेंटली बात करती है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और अगर हमने ऐसे 10,000 या 20,000 भी लड़कियों को तैयार कर दिया तो वो लड़कियां कभी भी पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को नहीं देखेंगी, और आप लोगों की भी गारंटी है बिकॉज यू पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड दैट राइट। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट।
6: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून
6: मैम। मैं गरिमा ग्रेसी शशि।
0: हाँ जी शशि।
6: यस मैम, लड़कियां आपसे बात करना चाहती मैम, वो आपका सेशन सभी सुन रही हैं और मैम सभी लड़कियां अभी आपके सामने हैं लाइव में, वे कुछ बात करना चाहती हैं मैम।
0: हाँ जी बोलिए।
7: गरिमा ग्रेसी सीख रहे हैं ना मैम, बहुत अच्छा सीख रहे हैं शशि मैम, हमें बहुत अच्छा सिखा रही है और हम चाहते हैं कि हमें और भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ ट्यूशन भी सिखाया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ गरिमा ग्रेस सेंटर में ट्यूशन आके बहुत अच्छा काम हुआ है मैम। एक और तो कहना आता है ना सुनना, हमें वो पहचानने के लिए मिला है मैम से, शशि मैम से, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से बहुत खुशी आ रही है मैम।
0: Very nice. Thank you for sharing. बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के। गरिमा ग्रह एक ऐसा सेंटर है, मैं सबको बताना चाहूंगी कि कीर्ति नगर में एक एमसीटी का टॉयलेट कॉम्प्लेक्स था जिसको पीवीआर नेस्ट ने बिल्कुल रेनोवेट कर दिया और उसमें दो कमरे हमें दिए हैं जिसमें हमने लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेक्शन और स्टिचिंग सेक्शन और ब्यूटी एंड वेलनेस का सेक्शन बनाया है। और पैर रखने की जगह नहीं होती है, ये सब औरतें इतने इतने उत्साह से उस सेंटर में आती हैं कोई इनहिबिशन नहीं है कि वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, वहां पे हमें नहीं बैठना, वहां पे हमने नहीं सीखना। जहां सीखने की इच्छा होती है वहां पे राह भी निकल आती है, ये मेरा विश्वास था। तभी हमने पीवीआर नेस्ट के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे सेंटर खोला था। थैंक यू सो मच, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फरजाना, आप कैमरे में आई और फिर चली गई, आप कुछ कहना चाहती हैं?
8: थैंक यू मैम,
0: बोलिए।
8: थैंक यू सो मच, आपका सेशन लेकर हमें ये महसूस होता है कि लीडरशिप सबके अंदर होती है, लेकिन आपका जब हम सेशन लेते हैं ना, हम अपने अंदर से उसे जगा पाते हैं। तो बात है तो सिर्फ उसे जगाने की है मैम, और फिर आपकी बातों से और आपके समझाने के तरीके से, आपके सेशन से हमें इतना अच्छा लगता है कि हमको ये अपने ऊपर कर पाते हैं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मैं भी बहुत कुछ हूँ।
0: अब फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये शेयर करने का, और ईद मुबारक, आज आपका त्योहार है और फिर भी आप सेशन अटेंड कर रही हैं। और फरजाना एक ऐसी लड़की है जो इतने रिमोट एरिया से और आगे इतनी बढ़ गई है, और इसका थॉट प्रोसेस इतना चेंज हो गया, और ये इतनी औरतों को एम्पावर करती है। तो अभी ये अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के कभी नहीं देख सकती है, ये मेरे को पूरा विश्वास है ना फरजाना
8: जी। मैम मुझे तो ना हर बार और अच्छा लगता है मैम, ऐसा लगता है ना पिछली जब मैं प्यार करती हूँ ऐसा लगता है मैं वो फरजाना हुई नहीं, पता नहीं कैसे ऐसे हो गई मैं। बात करने का तरीका, मतलब जो भी पहले था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैम, सिर्फ जो भी है आपकी वजह से है और हम बहुत अच्छा कर पाए, और आगे भी इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा करेंगे रीड इंडिया के।
0: थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना। सना, यू आल्सो केम ऑनलाइन एंड देन यू क्लोज्ड। यस,
9: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून,
9: हाउ आर यू मैम? हैप्पी
0: हैप्पी ईद टू यू ऑल, सबके परिवार को बहुत बहुत मुबारक। और सबने बहुत अच्छी खीर भी बनाई होगी आज, मुझे पता
9: है। यस मैम, थैंक यू मैम फॉर द सेशन, फॉर टेकिंग आउट टाइम हम लोगों के लिए, इतना टाइम निकालने के लिए थैंक यू।
0: नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है और मेरा काम है
9: मैम। एक्चुअली ये सेशन होता है, इसकी वजह से हम लोग इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, ऐसे हमारी बात हो वीडियो कॉल पर, हम एक दूसरे से बात भी कर पाते हैं, सारे सेंटर्स के लोग इकट्ठा होते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, तो हमें भी लगता है बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जो अदर सेंटर से भी सीखने को मिलती रहती है कि हम अपने अंदर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी लर्निंग्स बढ़ती हैं। तो ये सारे सेशन बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। और मैम कल का सेशन पता मैम का है, वो भी बहुत अवेटेड सेशन है।
0: बहुत अवेटेड सेशन है, और मैं आपको बताऊं स्मिता और मैं इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। इट्स नॉट दैट आई स्पीक एक्सटेम्पोर, मैं पहले अपने थॉट्स को कोलेट कर लेती हूँ, एक पेपर पे लिख लेती हूँ और स्मिता के साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हम कैसे यू नो एम्पावरमेंट जो है या लीडरशिप है, हम हवा में बात नहीं कर सकते, हमें बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करके, उसको समझा के, उसको कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं, वो डिस्कस करने में हमें भी एम्पावरमेंट मिलती है, हमें भी एनकरेजमेंट मिलती है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, पर उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे एड्रेस करना है, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इट्स ए कलेक्टिव सेशन फॉर एवरीवन। हम सारे इकट्ठे तो एक ही प्लेटफॉर्म पे थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की हम आ सकते हैं, अदरवाइज फिजिकली मिलना तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बोला कि मैं फरा के सेंटर पे हम लोग गए थे, इट वाज इतनी गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकती। एंड थैंक्स टू ऑल द गर्ल्स हु केम देयर, मोर देन 50 to 60 गर्ल्स वर देयर एंड दे वर बबलिंग विद एनर्जी कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो वो प्रोत्साहन देख के हमें भी एनर्जी मिलती है, हमें भी खुशी होती है, और फिर हमारा और करने का दिल करता है। ठीक है,
9: वेरी गुड मैम,
0: थैंक यू सर,
9: थैंक यू मैम।
10: मैं सेशन आपका पूरा सुना है, फिर अभी मैं बस में ट्रैवलिंग पे हूँ, और आपसे बहुत कुछ सीखा सभी लोगों ने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। और आपसे सीख के कुछ आगे बढ़ने की कोशिश है लाइफ में, जो हम अपने टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम।
0: सुमन इज अनदर एग्जाम्पल, जो मैंने आज एक पिक्चर आपकी आंखों के आगे दिखाने की कोशिश की है। सुमन इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरा इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, सना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरजाना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। तो ये हमारे सामने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, और शायद ये लोग ही मुझे इनकरेज करते हैं ये सब बातें करने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें अगर हम सब तक पहुंच जाए तो एक्चुअली रियल माने में हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बस में सेशन सुनने का। थैंक यू सो मच।
10: थैंक यू मैम। थैंक यू।
0: थैंक यू।
6: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू जी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। सबको फिर से ईद मुबारक, और सब लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: एज ए पार्ट ऑफ द करियर काउंसलिंग में आज के सेशन में हम टीचिंग जॉब से रिलेटेड अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल लेवल पे हैं या कॉलेज लेवल पे हैं, तो आज हम सब के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ टीचिंग स्किल्स क्या क्या होती हैं, क्या चीजें आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको एक यू कैन बिकम ए गुड टीचर, तो ये सारे इश्यूज पे आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी तक पिछले सेशंस में हमने सिविल सर्विसेज के बारे में, फिर हमने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में किया था डिस्कस, तो आज का जो सारा सेशन है वो टीचिंग जॉब से रिलेटेड है। फिर लास्ट में आपकी जो क्वेरीज होंगी डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में, वो भी हम इस सेशन में सारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिये सबसे पहली चीज क्या है, देखिये टीचिंग जो है ना वो एक नोबल प्रोफेशन, और ऐसा नहीं कि मतलब आप को अगर अच्छा टीचर बनना है तो अच्छा टीचर आप किसी भी स्टैंडर्ड की क्लास के लिए बन सकते हैं। चाहिए क्या कि आपके अंदर हो, जोश हो पढ़ाने का, यू मस्ट हैव पैशन फॉर द टीचिंग, टैलेंट, नॉलेज धीरे धीरे इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है, तो ये अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और विद द पैसेज ऑफ की आप एक बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं। तो हमारा जो मेजर पॉइंट है कि जब हम टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। सीटेट है, एसटेट है, रीट है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, डीएसएसबी, केवीएस, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्मी स्कूल्स, तो मतलब इस तरह की सारी टर्म्स जो है वो जब भी कोई पर्सन एक गवर्नमेंट टीचिंग के टुवार्ड्स प्लानिंग करता है तो इस सारी चीजों के बारे में उसे पता होना चाहिए। उससे क्या रहता है कि अगर आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर है कि हमें टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आप उसी तरीके से अपने करियर को शेप अप कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग में जाने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए कुछ असेंशियल क्वालिफिकेशंस भी हैं, कुछ आपको टेस्ट भी क्वालिफाई करने रहते हैं, तो उसके लिए इट्स बेटर कि आप यू कैन प्लान अर्ली, जितना जल्दी आप प्लान करेंगे उतना ही फिर आप एक अपने राइट ट्रैक पे जा सकते हैं। तो आज के सेशन में आपको मैं इन सब टर्म्स के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, किस एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये सारा आपको मैं आज के सेशन में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज क्या है बेटे कि हाँ अभी मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो जस्ट एक मैंने एक वो दिया है, परव्यू दिया है, अभी हम आगे एक एक फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जब आप टीचर की बात करते हैं तो ये कुछ जनरल सी वैकेंसीज होती है हमारे पास में,

तक का, और इसमें एंट्री के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। तो आज अब हम समझेंगे कि करके कि सबसे एलिमेंट्री पर क्या क्वालिफिकेशन होती है और कैसे आप टीचर बनते हैं। तो सबसे पहले बात मैं करूंगा यहाँ पर सी टेट और एस टेट के बारे में, जो स्कूल लेवल टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं हमारे। जो सी टेट होता है, इसमें आपके क्लास वन से लेकर एट क्लास तक के टीचर आप बनते हैं, और उसके बाद में जो पीजीटी की वैकेंसीज होती है वो स्टेट वाइज आती है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये क्लियर हो कि प्राइमरी टीचर होता है फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के जो क्लासेज है उनको जो टीचर टीच करता है उसे हम प्राइमरी स्कूल टीचर भी कहते हैं, पीआरटी भी कह देते हैं, एलिमेंट्री टीचर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है सिक्स्थ क्लास से लेकर एट्थ क्लास तक। तो सिक्स्थ क्लास से लेकर एट्थ क्लास तक जो टीचर होते हैं वो टीजीटी टीचर उन्हें बोला जाता है, और ऐसे ही जो नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक होते हैं उन्हें पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कह देते हैं। तो नाइन्थ से ट्वेल्थ तक आपके पीजीटी टीचर्स कहा जाता है, सिक्स टू एट में टीजीटी, और क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक प्राइमरी टीचर होते हैं। अब इनके लिए अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आज अभी हम डिस्कस करेंगे सी टेट के बारे में। क्लास वन से लेकर क्लास एट तक अगर आपको टीचर बनना है, मतलब प्राइमरी टीचर बनना है या टीजीटी टीचर अगर आपने बनना है, तो उसके लिए आपके लिए सी टेट क्वालिफाई करना मस्ट है। मतलब दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, कहीं भी जहां भी वैकेंसीज निकलती हैं, या आपकी केवीएस में निकलती है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, या आर्मी स्कूल्स के अंदर, जवाहर नवोदय के अंदर, जहां भी वैकेंसीज निकलती है, तो सीटेट आपके लिए एक असेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। अब हम सबसे पहले ये समझे कि सीटेट की फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सीटेट जो है वो साल में दो बार कंडक्ट होता है। अभी इस साल कोविड 19 के कारण अभी एग्जाम अभी था सितंबर के मंथ में, तो उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। बट जनरली सीटेट का जो एग्जामिनेशन है साल में दो बार आपका होता है, ठीक है, और क्लास वन से लेकर क्लास एट तक के लिए, तो मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, उसके साथ साथ टीजीटी टीचर के लिए, दोनों के लिए सीटेट का एग्जाम होता है। इसमें दो पेपर आपके होते हैं, फर्स्ट इज पेपर वन, सेकेंड इज पेपर टू। पेपर वन जो आपका होता है वो होता है क्लास वन से फाइव के लिए, और पेपर टू होता है सिक्स टू एट के लिए। इसका मतलब अगर आप क्लास वन से लेकर क्लास एट तक कोई भी क्लास के लिए टीच करना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे पेपर वन और मैंने अनम्यूट कर दिया है, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्या है, पेपर वन और पेपर टू अपीयर करते हैं। दोनों की क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग हैं। जैसे आपको क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ में अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो ट्वेल्थ में 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, या आपके पास में कैंडिडेट शुड क्लियर ग्रेजुएशन विद 45% और ट्वेल्थ विद 50%। सी टेट के लिए जैसे एक तो जो आपका एलिमेंट्री टीचर्स के लिए है तो ट्वेल्थ में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। जेबीटी या आपने एनटीटी का कोई भी ट्रेनिंग किया हुआ है वो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जामिनेशन होता है, जैसे पेपर वन जो है, पेपर वन मतलब एलिमेंट्री क्लासेज के लिए क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक के लिए, तो उसमें आपका ये 150 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, लैंग्वेज वन एंड टू, ये दो लैंग्वेजेस में आपको देना है, मतलब टू लैंग्वेजेस आपकी होती है, जनरली हम इंग्लिश और हिंदी लेते हैं, इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये मतलब फाइव सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं। 30-30 मार्क्स के फाइव सब्जेक्ट आते हैं। 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है जो पेपर वन होता है, जिसके थ्रू अगर आप पेपर वन क्वालिफाई करते हैं तो एलिमेंट्री टीचर, जिसको हम क्लास वन से क्लास फाइव तक की जो टीचिंग है वो आप हर गवर्नमेंट जॉब में एंटाइटल हो जाते हैं। आप देखते हैं कई बार दिल्ली में काफी वैकेंसीज आती है, जब भी आती है, या आजकल तो अगर एज ए गेस्ट टीचर भी लगाना है वहां भी आपको सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो करने के लिए आपको पहले पेपर

वन जो देना है वो आपका ये रहता है 1 to 5 के लिए, और सिमिलरली पेपर टू होता है, पेपर टू स्कीम है, उसमें क्या है कि बाकी सब चीजें सेम है, जैसे आपके फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सेम है डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज भी आपको टू लैंग्वेजेस आपको लेनी होती है, इंग्लिश और हिंदी, उसके साथ साथ फिर आपको या तो मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, या आपका सोशल स्टडीज और सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब आप जैसे मैथ्स के टीचर रहेंगे या साइंस के टीचर रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना रहता है, और 60 मार्क्स का आपका पेपर रहता है वो, तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो एक तरह से अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि सीटेट आपने क्वालिफाई करना है, और अब मैं आपको बताऊं भी कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो इतने डेप्थ नहीं होते, मतलब जैसे आपकी लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, या इसके साथ साथ आप जो मैथमेटिक्स साइंस या एसएस पढ़ते हैं तो वो 8th स्टैंडर्ड तक का आपको क्लियर होना चाहिए, और उसमें भी बेटर यही है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को अपना फॉलो करिए, और एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। तो अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक का एनसीईआरटी आपने मैथमेटिक्स का, साइंस का और एसएस का आप उसको स्टडी करिए। उसके साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए आप बीएड के लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स आती हैं, तो कोई एक अच्छी सी बुक आप परचेज कर सकते हैं, या मार्केट में भी एक नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल जिसमें अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, पेडागोजी की, तो आप उन बुक्स को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं सीटेट के, क्योंकि हर साल में 2 बार होता है और पेपर पेंसिल बेस्ड होता है, तो उसके पेपर्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप 4-5 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे, एक वहां से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका सीटेट के बारे में है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीटेट के अंदर। हाँ, आप चाइल्ड देखिए उसमें क्या है कि अरिहंत पब्लिकेशन बुक आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, ठीक है, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका प्रतियोगिता किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है, या बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की बुक्स होती है। अगर आप मतलब अगर आपने जेबीटी किया है, बीएड आपने किया है, तो बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स होती है, तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जनरली सीटेट में देखा गया है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बुक है, ये जो ध्रोवर की बुक है, प्रतियोगिता ध्रोवर है, ये एक तरह का पब्लिकेशन है, तो इनकी भी अच्छी बुक्स है, ठीक है। बट उसमें वही सेम चीज है जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया, तो पहले एक स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करिए, एक बुक को जब आप कहते हैं उसके बाद फिर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन है, और जो बुक आप पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हैं क्या उस बुक में उस लेवल के क्वेश्चंस कवर्ड है या नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है। मैं आपको बीएड की जो बुक्स आती है उसमें नेम ऑथर आपको मैं कंफर्म करके एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सीटेट के एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता आपका, तो आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना सीटेट का प्रिपरेशन करिए। हाँ, ये एक चीज मैं फिर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, क्योंकि साल में 2 बार होता है और सारे पेपर्स अवेलेबल है, तो आप अगर 5-7 पेपर्स उनको अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है वो सारे स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब उसमें कोई चेंज होने का नहीं है, कोई आपका जो करंट का क्वेश्चन तो आता नहीं उसमें, तो सारे हैं जो आपके फिक्स ही हैं, तो पिछले कुछ सालों के पेपर जब आप चेक करते हैं तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है, और फिर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक पहला स्टेप है आपके लिए, अगर आपको प्राइमरी या टीजीटी टीचर में जाना है तो आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना। आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटेट के एग्जाम की मतलब दे ऑल्सो आस्क फॉर क्वालिफिकेशन इन सीटेट, तो मतलब ये आपको पहला स्टेप आता है।
अभी ऑटोमेटेड एंटिटी के बारे में भी आता हूँ। अब इसके बाद सेकंड होता है हमारा जेबीटी, मतलब अब मैं आपको बताऊंगा कुछ हमारे जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे जेबीटी कह लीजिए या आपका एंटिटी का प्रोग्राम होता है 2 ईयर का, या इसके अलावा आपका DLED होता है, ठीक है, जो बेसिकली डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, ठीक है। तो देखिए क्या रहता है कि 12th के बाद आप जेबीटी कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री जो टीचर है, जो प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर के लिए या तो आपने जेबीटी किया हो, जिसको हम जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं, जो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग है ये 12th के बाद होती है, ये एक तरह का डिप्लोमा होता है 2 ईयर्स का, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। इसमें स्टेट वाइज कॉलेजेस हैं, बाकी फॉर्म्स निकलते हैं जब आप 12th के एग्जाम देते हैं उसके बाद में। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th में 45% की है, राइट। ये एक तरह से जो DLED होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के इक्वल होता है, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। ऐसी एंटिटी का आपका होता है, उसमें भी आपको 2 ईयर का डिप्लोमा रहता है एंटिटी का, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको जहां से भी आप ये जेबीटी करें, चाहे आप अपना DLED करें, चाहे आप एंटिटी करें, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कई बार मार्केट में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है जो रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो वो फिर बाद में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आज से 4-5 साल पहले, व्हाट हैपेंड, आज से 4-5 साल पहले जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ था, ठीक है। तो जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ तो बहुत लोगों ने जम्मू से जेबीटी किया, ठीक है, और बाद में फिर पता चला कि वो तो आपका वैलिड नहीं है। तो ये इस तरह से कई बार प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि जिसमें हम ऐसा अपना कोर्स डिप्लोमा कर लेते हैं और जो बाद में वैलिड नहीं होता, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है इसमें कि आप जहां से भी करिए वो आपका वैलिड होना चाहिए। तो जेबीटी है चाहे आपका एंटिटी है, ये आपको एक टाइप से मतलब एक टाइप से एलिमेंट्री जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उनके लिए ये मस्ट होती है ये क्वालिफिकेशन आप। अब इसमें स्टैंडर्ड मतलब क्या पैटर्न क्या है, पैटर्न कैसी है, देखिए कैसे वैकेंसीज आती हैं और कैसे आप उनमें अप्लाई करते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट का अपना पैटर्न है, जैसे मैं पहले हरियाणा की आपको बताऊं, हरियाणा में क्या है कि HTET का फॉर्म निकाला जाता है। वैसे तो जो CTET है वो पूरे इंडिया में वैलिड है, ठीक है, बट हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में एज ए टीचर लगाने के लिए HTET का फॉर्म निकाला जाता है, जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो जो TET का मतलब यही होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब हरियाणा में क्या है कि 3 स्टेजेस में वैकेंसीज आती है, मतलब उसमें आपके प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज आती है, आपके TGT की वैकेंसी आती है जिसको हम ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, और ऐसे ही आपकी PGT की वैकेंसी आती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी टीचर जो होते हैं वो Class 1 से लेकर Class 5 तक के लिए हैं, जो TGT टीचर होते हैं वो Class 6 से लेकर 8 तक के लिए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं 8 से अबो। अब इनके लिए जो क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग हैं, जैसे जो PGT आपकी जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है उसमें आपकी 12th होनी चाहिए, और 12th के साथ साथ आपने JBT किया हो, एंटिटी का कोर्स किया हो, या आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, ठीक है, तो उसमें आप प्राइमरी टीचर के लिए एंटाइटल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जाना है, जिसको हम TGT कहते हैं, तो TGT के लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ BEd करनी है। अब देखिए BEd क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिएगा अगर आपको प्राइमरी टीचर से ऊपर किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो TGT है और चाहे वो PGT है, तो दोनों के लिए BEd होना आपके लिए मस्त है, ठीक है। और ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या होता है कि मास्टर डिग्री के साथ साथ BEd होना चाहिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है कि प्राइमरी टीचर के लिए तो 12th इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, साथ में आपने JBT NTT कुछ भी किया हो। अगर आपने TGT टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको BEd करनी है, और उसके बाद अगर आपने PGT के लिए जाना है तो मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये HTET की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो इसलिए जनरली बच्चों को टीचिंग के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है
कि बेटे आप पहले अपनी ग्रेजुएशन करिए सबसे पहले तो, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन होने के बाद आप बीएड करो, ठीक है। नहीं, इसमें केवल आर्ट से या साइंस नहीं, इसमें आप बेटे किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी टीचर है वो तो किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, आपके पास चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आपके पास में कॉमर्स है चाहे आर्ट्स है, आपने उसके बाद में जेबीटी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप टीजीटी के लिए जाते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, वो भी आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, उसके बाद आपको बीएड करना होता है। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जाते हैं फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन में भी एज ए मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके साथ साथ मास्टर्स में भी आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपका जो एस्टेट क्वालिफाइड है वो भी मैथमेटिक्स में ही क्वालिफाइड होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन ज्यादा रहती है, अदरवाइज हम जो टीजीटी है या जो आपके प्राइमरी टीचर्स है उसमें कॉमन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब इन सब का अलग अलग एग्जाम है, तो जनरली क्या होता है कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की क्वालिफिकेशन पूरी है तो आप बाकी सबके लिए भी एग्जाम अपियर कर सकते हैं। हरियाणा में जो एस्टर 2020 की जो एज आई है 18 से लेकर 38 इयर्स तक है, बट कुछ कैटेगरीज में एज का रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पैटर्न रहता है, एक बार मैं एस्टेट का आपको पैटर्न बताऊं। एस्टेट का तीनों लेवल के जो पेपर होते हैं, पेपर वन है चाहे पेपर टू है चाहे पेपर थ्री है, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, 2.5 आवर के अंदर आपने करने होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और तीन अलग अलग पेपर हैं, अगर आपको प्राइमरी का देना है तो आप पेपर वन देंगे, ऐसे ही अगर आपको टीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर टू देंगे, और अगर आपको पीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर थ्री देंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना ही सेक्शनल कट ऑफ होता है। जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो बिल्कुल सेम, जो सब्जेक्ट का पैटर्न है कि हरियाणा में अब पीछे इन्होंने सब्जेक्ट्स में चेंज किया था, जैसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। जनरली जो सीटेट में है उसमें ये चीज नहीं आती, आपने देखा होगा अभी मैंने पीछे आपको सीटेट का पैटर्न बताया जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी थी, वहां दो लैंग्वेजेस थी, ठीक है। अब हरियाणा में क्या पैटर्न है, आपका मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस, तो 30 क्वेश्चंस आएंगे। ये एक तरह के बहुत ही जनरल से क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में सभी टॉपिक से आपके जो कवर हो जाते हैं जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, ये सारे टॉपिक आते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ऐसे जो मैथमेटिक्स होता है वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जैसे एक जनरल आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें अब बेसिक अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के भी होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का, फिर हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस है, फिर आपका मैथमेटिक्स है 30 मार्क्स का, एनवायरमेंटल स्टडी जिसको हम ईवीएस कह देते हैं। तो ये हमारा पेपर वन है एलिमेंट्री टीचर के लिए हरियाणा के अंदर। इसके साथ साथ आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पेपर टू अपियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर टू किस टाइप का है, क्या पैटर्न है पेपर टू के अंदर, तो इसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स के हैं, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी इंग्लिश यहाँ तक कॉमन है, फिर आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एसएस, साइंस या कुछ भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हुआ है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फिर आप वैकेंसीज जो निकलती हैं उसमें आप अप्लाई करते हैं। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए फिर आपको जिस सब्जेक्ट में आपने, जैसे आपको साइंस में जाना है या अगर आपको मैथमेटिक्स में जाना है तो उसी सब्जेक्ट का पेपर आप उसमें अपियर करते हैं, ठीक है। तो एस्टेट का जो पेपर जनरली होता है, आपने अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो 5 ईयर तक वैलिड होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हर साल आपको देना है, ऐसे ही आपका सीटेट का पेपर है कि आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो कुछ सालों तक वो पेपर आपका चलेगा, ठीक है। तो ये एक तरह की मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब हरियाणा में वैकेंसीज का पैटर्न कैसे होता है
कि पहले तो आपका एस्टेट का पेपर होता है, एस्टेट का पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, फिर अलग अलग वैकेंसीज आएंगी, फिर वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसमें से जो बच्चे निकलते हैं उनकी फिर फाइनल जाके ज्वाइनिंग होती है। हाँ, ये हरियाणा में 5 साल का ना बेटे एस्टेट जो है, ये अभी शायद कुछ चेंज करने की इसमें बात चल रही है 7 साल के लिए, क्योंकि पीछे जो एस्टेट सीटेट एस्टेट हुआ था उसके बाद में फिर वो तब उसके बाद की वैकेंसी ही नहीं आई बहुत सालों से, तो ये कुछ उसमें चल रहा है अभी, इसको 7 साल के लिए कर दें तो ये पीछे दैट वाज इनटू द न्यूज ऑल्सो। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे राजस्थान है वहां पे रीट का पेपर होता है, जैसे हरियाणा में आपका एस्टेट का पेपर है, ऐसे ही राजस्थान के अंदर रीट का पेपर होता है, तो वो भी बेसिकली इसीलिए है। जैसे आपकी वैकेंसी अभी जैसे पीछे इट वाज इनटू द न्यूज कि रीट 2020 में अराउंड, हाँ यूपी का भी होता है बेटे, यूपी का टेट होता है, तो उसमें हर स्टेट अपना पेपर कंडक्ट कराता है, बट मोर और लेस जो इनके सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सभी स्टेट्स में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एज ए सब्जेक्ट आता है, सभी स्टेट्स में आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज है, उसके साथ साथ फिर आपका सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स एज ए ऑप्शनल, जैसे भी आपने जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे रिसेंट में राजस्थान में री 2020 का, हाँ मतलब अप्लाई आप कर सकते हो बेटे, क्या होता है ना देखिए, क्या जैसे हरियाणा में भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई यूपी का बच्चा उसे एस्टेट देना तो वो यहाँ भी अपीयर कर सकता है, क्योंकि जो टीचिंग जॉब में कोई ये तो फिक्स नहीं होता कि हरियाणा का ही होना चाहिए, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरह के उनके टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब वैकेंसी से पहले आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले ये टेस्ट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ, इसमें बेटे जो आपका जीके का पैटर्न होता है, बस वही थोड़ा डिफरेंस है कि उसमें जैसे हरियाणा में क्या है कि आपका अभी पहले उसमें जीके का सेक्शन नहीं आया करता था, तो लास्ट ईयर से उसमें जैसे 30 क्वेश्चन में 10 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के, 10 मार्क्स रीजनिंग के और 10 मार्क्स जो है वो जनरल अवेयरनेस के उसमें ऐड कर दिए हैं, तो वो जो 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के हैं उसमें फिर वो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही और स्टेट्स में भी ऐसा ही होता है कि जैसे आप हम रीट की बात करें तो रीट का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से है, जैसे उसमें भी रीट में भी 2 लेवल के पेपर्स रहते हैं, लेवल 1 है और लेवल 2 है, तो लेवल 1 जो है वो आपका एलिमेंट्री टीचर के लिए है, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लैंग्वेज मैथमेटिक्स एनवायरमेंटल स्टडीज रहता है। नहीं एक्चुअली देखिए क्या है बेटे कि प्राइमली ये जो टीचिंग के टेस्ट है ना, देखो ज्यादातर मैं आपको वैसे पर्सनल ओपिनियन दूं, इसमें हरियाणा में यूपी में राजस्थान में टीचर्स की जो सैलरीज है, ठीक है, या अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट टीचर्स की जो वैकेंसीज है वो कंपैरेटिवली अदर स्टेट के मुकाबले में ज्यादा आती है। महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसी काफी कम आती है क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्यादा टीचर लगाए जाते हैं, तो वो अपना इस तरह का उनका भी एग्जाम होता है, वैसे होता है मतलब वो भी अपना टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, या कई बार क्या करते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम है उसी के मार्क्स के बेसिस पे, मतलब अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके बेसिस पे वो करते हैं, पर एज ए जनरल नॉर्थ इंडिया में टीचर्स की सैलरी ज्यादा है एज कंपेयर टू द महाराष्ट्र और वेन यू गो इन टू द साउथ, तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ में बहुत बच्चे ऐसे हैं बेटे जो एक टाइप से टीचिंग के लिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये रीट का ये पेपर 1 है, ऐसे ही आपका पेपर 2 होता है, हाँ ऐसे ही आपका पेपर 2 होता है जिसमें आपका अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे हरियाणा में है, चाहे आपका राजस्थान में है, चाहे यूपी में है, कि ये रेगुलर अफेयर है, हर साल 2 साल के बाद में कुछ ना कुछ वैकेंसी आती है, कोई ना कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे यहाँ पे टीचिंग जॉब्स के लिए काफी बच्चे जाते हैं।
तो स्कूल लेवल में टीचर बनने के लिए आप दो तीन चीजें बेटे आप अपना ध्यान रख लीजिए, ये मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दूं। एक तो आप बेटे ये लेवल्स इनको समझो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर आपको प्राइमरी टीचर्स में जाना है तो ट्वेल्थ के बाद आप कुछ ना कुछ अपना जेबीटी करिए, चाहे आप बेटे एनटीटी का कोर्स करिए, ठीक है, चाहे आप डीएलडी करिए, ठीक है, मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ आपने, चाहे आप डीएड करो। रीट में क्या है कि इसमें रीट में यहां पर आपका लेवल थ्री की वैकेंसी नहीं है, जैसे लेवल टू में तो वो साइंस और एसएसटी में चॉइस नहीं देके कुछ क्वेश्चन साइंस के होते हैं, मतलब उसमें एक तरह से जो कॉम्बिनेशन मेक किया हुआ है साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन हो गया, तो कुछ क्वेश्चन साइंस के कुछ क्वेश्चन मैथ के हैं, एसएसटी का भी कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया उसमें। पर मैं एक जनरल अपना वो बताऊं आपको बेटे कि अगर आप टीचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी लेवल के लिए, तो टीजीटी लेवल में तो आप ये मान के चलो बेटे आपको मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी तीनों सब्जेक्ट्स में ही आप अपनी कमांड लेके चलिए, क्योंकि पीजीटी में फिर भी कुछ स्पेसिफिक आपका वो हो जाता है कि आप मैथ्स के टीचर हैं या साइंस के आप टीचर हैं, पर जनरली टीजीटी में ये देखा गया है कि सेम टीचर जो है वही मैथ्स भी ले रहा है, साइंस भी ले रहा है, एसएसटी भी ले रहा है। तो आप थोड़ा सा मतलब अगर स्टार्टिंग से अपना परव्यू ऐसा लेके चलिए कि तीनों, क्योंकि देखिए आपको ओनली एट्थ क्लास तक का मैथ्स करना है, एट्थ क्लास तक की आपको साइंस करनी है, एट्थ क्लास तक का आपको एसएसटी पढ़ना है, तो वो तीनों सब्जेक्ट्स को अगर आप कमांड लेके चलेंगे तो आगे फिर आपको हर तरह का एग्जाम क्वालिफाई करना इजी हो जाता है। तो मेन थिंग आपने अब ये ध्यान रखना है बेटे कि अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं तो ट्वेल्थ करने के बाद से ही अपना जेबीटी कर लीजिए, एनटीटी कर लीजिए, कोई भी एक आधा कोर्स करिए, डिप्लोमा करिए टीचिंग के अंदर, और फिर आप प्राइमरी के लिए एंटाइटल है और सीटेट का पेपर क्वालिफाई करिए। सिमिलरली अगर आप अपना लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं तो ट्वेल्थ के बाद आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आप बीएड करिए। अब देखिए दिक्कत क्या है, आजकल की बीएड भी आपकी टू इयर्स की है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको दो साल बीएड में स्पेंड करने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो पांच साल ट्वेल्थ के बाद कम से कम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बीएड में कुछ चेंज किया गया है, अब देखो जब अप्लाई होगा तभी वो चीजें क्लियर हो पाएंगी, बट अभी जो एट प्रेजेंट जो पैटर्न यही है कि आपको ट्वेल्थ के बाद कम से कम फाइव इयर्स लगाने पड़ेंगे, तीन साल का ग्रेजुएशन और टू ईयर का बीएड। और वही अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपको मास्टर डिग्री भी करनी है, तो कम से कम सेवन ईयर ट्वेल्थ के बाद आपको स्टडी करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप अपना टेस्ट क्वालिफाई करिए जो अलग अलग होते हैं और फिर आप कहीं जाके अप्लाई कर पाएंगे। रीट की बेटे आपकी राजस्थान में लोकल लेवल की काफी किताबें आती हैं, मतलब जैसे आप राजस्थान में किसी भी जहां भी आप स्टे करते हैं कोई ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो एक तरह से जो पब्लिकेशन नहीं है, बट कई सारी जो बुक्स अवेलेबल है उपकार पब्लिकेशन की भी आती है रीट की, या आपके लोकल में भी कई इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो काफी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी अपने स्टडी मटेरियल भी आते हैं। तो ऐसे तो क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग नहीं करता तो मुझे वहां की बुक्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। अब जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा में तो हरियंत पब्लिकेशन की बुक चलती है, ठीक है, या यहाँ पर विद्यापीठ टाइम्स है, और भी कई सारे लोकल पब्लिकेशंस हैं जिनकी काफी बुक्स आती हैं। तो अब सेकंड पॉइंट क्या बेटे कि ये जो वैकेंसीज कहाँ कहाँ निकलती है, टीचर की वैकेंसीज कहाँ कहाँ आती है, एक तो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, ठीक है, जैसे नहीं महाराष्ट्र में इस तरह का एग्जाम नहीं है बेटे। महाराष्ट्र में क्या है कि वो एक तो आपका जो सीटेट का एग्जाम एक तो लेते हैं, मतलब प्राइमरी टीचर के लिए या आपका जो टीजीटी के लिए, ठीक है, हम मेडिकल तो वो तो बेटे बाद की स्टेज है ना, वो तो क्या होता है कि वो तो जैसे पहले आपने ये टेस्ट क्वालिफाई किया जो भी आपने एसटेट सीटेट या रीट जो भी आपने दिया, उसके बाद फिर वैकेंसीज आती है, स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है, जैसे हरियाणा अपनी वैकेंसी अलग निकालता है, यूपी की वैकेंसीज आती है, राजस्थान में वैकेंसीज आती है, दिल्ली में डीएसएसबी की वैकेंसीज आती है, ठीक है, तो उसमें भी कई बार काफी टीचर्स की जॉब्स आती है। आपका केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय है, तो केवीएस में
सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, तो केवीएस की भी काफी वैकेंसीज आती है, हर साल एक तरह का फिक्स पैटर्न है, ठीक है। तो ऐसी आर्मी स्कूल्स है इंडिया में, नंबर ऑफ आर्मी स्कूल्स आर देयर, आर्मी स्कूल्स भी अपनी वैकेंसीज निकालते हैं टीचर की। इसके साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय है, इनकी भी वैकेंसीज आती है। तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी सीटेट होती है, तो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है और उसके बाद आप वहाँ फॉर्म फिलअप करते हैं, फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद वो अपना टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। अब टेस्ट कंडक्ट होता है, उसमें फिर जैसे जैसे आपका स्कोर आता है, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तो ये सारी चीजें इस तरह का रहता है। हाँ एक्चुअली क्या है कि देखो इसमें क्या है कि मैक्सिमम तो आपकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, बट कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी आपको सीटेड मांगते हैं। एक्चुअली इंडिया में क्या पैटर्न हो गया कि आपको अगर टीचर बनना है, अगर चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, चाहे आप एक्चुअल गवर्नमेंट जॉब पे है, तो उसमें सीटेड तो आपसे मांगेंगे मांगेंगे। तो मतलब आपके लिए ये पहली चीज है कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सीटेट मस्ट बी क्वालिफाइड, क्योंकि तभी आप फिर कहीं एंटाइटल हो पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि सीटेट का पेपर तो आपका पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो स्कूल लेवल में इस तरह से अलग अलग एरियाज में वैकेंसीज आपकी आती है, ठीक है। तो बाकी फिर भी ये है कि देखिए अगर आप मेहनती हैं, आप पढ़ने वाले हैं, टाइम तो लगता है, क्योंकि अभी पिछले जैसे मैं आपको बताऊं आज से 3-4 साल पहले हरियाणा में हजारों में वैकेंसी आई थी। मतलब हालात ये थी कि जिस पर्सन की क्वालिफिकेशन पूरी है, अगर उसने अपना एमए एमएससी जो भी किया हुआ है और उसने एस्टेट का पेपर क्वालिफाइड है, तो वो जॉब पे लग गया था। फिर उसके बाद में वैकेंसी आनी कम हो गई, या पिछले 3-4 सालों से वैकेंसी काफी कम है, ठीक है। तो फिर भी क्योंकि जो टीचिंग की वैकेंसी है, अगर आपकी स्पेयर होती है तो उसके बाद वैकेंसीज निकालनी पड़ती है। चाहे अभी जैसे मैं पढ़ रहा था, आज ही चेक कर रहा था कि राजस्थान में री 2020 के अंदर 30,000 की अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज आएंगी। तो 30,000 वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है। अब 30,000 वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की है, तो अगर क्वालिफिकेशन पूरी है, हमने मेहनत कर रखी है, तो उनको कहीं ना कहीं हम अपना वे आउट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसा होता है, जनरली क्या होता है कि देखिए आप अपना अपने क्वालिफिकेशन पूरा किया, अपना आपने स्टार्टिंग में प्राइवेट स्कूल में टीच करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे एक्सपीरियंस एड ऑन होता जाता है, और जब भी आपकी एक टाइम से गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज निकलती है, तो आप वहां अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी सेटलमेंट हो ही जाती है, जॉब कहीं ना कहीं आपको लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारी स्कूल लेवल की टीचिंग जॉब्स होती है, ये सारी टाइप की आपकी वैकेंसीज है। हर साल फॉर्म निकलते हैं, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सीटेट का है वो तो साल में 2 बार एग्जाम होता है, एसटेट भी ऑलमोस्ट साल में 1 बार तो कंडक्ट होता ही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप रीट की, मतलब अगर आप राजस्थान की बात करें, तो साल 1.5 साल में 1 बार एग्जाम जरूर होता है, यूपी टेट का भी एग्जाम होता है, ठीक है। तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, तो वहां तो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एक रेगुलर उस पर होते ही है। डीएसएससी की भी वैकेंसीज आती रहती है, मतलब हर साल 2 साल में वैकेंसीज आती है। केवीएस की ऑलमोस्ट हर साल वैकेंसी आती है, आर्मी स्कूल्स की है चाहे जवाहर नवोदय की है, तो ये वैकेंसी तो रेगुलर बेसिस पे आती है। तो अगर हमारी क्वालिफिकेशन पूरी है, और इनमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कोई ऐसा वो नहीं कि हम ये कहें कि पेपर आउट हो गया, सिफारिश चल गई, आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपने अचीव करना है, और उसके बाद आपका टेट क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली अप्लाई करते रहते हैं। मार्क्स की वेटेज रहती है, आपके 12th में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में कितने हैं। देखिए अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा एजुकेशनल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, पढ़ने में हम अच्छे हो, तभी आगे हम एक वी कैन बिकम ए गुड टीचर। तो ये तो सारा मैंने आपको स्कूल वहीं, फिर हम पास में ऐसा नहीं कि हम स्कूल लेवल पे, हम कॉलेज लेवल पे भी जा सकते हैं एज ए टीचर। तो कॉलेज लेवल में जैसे हरियाणा में है या और स्टेट्स में है, तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज होती है, मतलब जो कॉलेज जो कैडर की वैकेंसीज आती है, जिनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। और ऐसे ही जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग,
मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, तो उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं।